0: खेली थी उसे अंडर 19 वर्ल्ड कप के 38 साल के इतिहास की सबसे महान पारी कहा जा रहा है। सबसे महान पारी क्यों कहा जा रहा है, स्टैट देखने से इसका जवाब मिल जाएगा। वैभव ने महज 80 गेंदों पर 175 रन ठोक दिए। वैभव ने इस पारी में 15 छक्के और 15 चौके लगाए, यानी 150 रन सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए अपने खाते में जोड़ लिए। 55 गेंदों पर शतक पूरा किया, बाद के 75 रन सिर्फ 25 गेंदों पर ठोक दिए। महज 71 गेंदों पर 150 रन पूरे कर लिए, जो यूथ वनडे इतिहास का सबसे तेज 150 है। इतना ही नहीं, वैभव ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में कुल 30 छक्के लगाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस के नाम था, जिन्होंने 2022 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में 18 छक्के लगाए थे। पूरे टूर्नामेंट में वैभव 439 रन के साथ सेकेंड टॉप स्कोरर भी रहे। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहने के साथ वैभव ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप से ठीक पहले अंडर 19 एशिया कप में 12 दिसंबर 2025 को यूएई के खिलाफ वैभव ने 95 गेंदों पर 171 रन कूटकर विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए थे। इस आतिशी पारी में वैभव ने 9 चौके और 14 छक्के लगाए थे। कहने की जरूरत नहीं कि सबसे तेज और सबसे कम उम्र से जुड़े रिकॉर्ड्स के सरताज बन चुके हैं वैभव। 24 दिसंबर 2025 को रांची के JSCA ओवल ग्राउंड में वैभव ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि कई विश्व कीर्तिमान ध्वस्त हो गए। विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल के खिलाफ हुए मुकाबले में वैभव ने सिर्फ 84 गेंदों पर 15 छक्कों और 16 चौकों की मदद से 190 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी थी। इस मैच में सिर्फ 59 गेंदों पर 150 रन पूरे कर वैभव ने लिस्ट ए मैच में फास्टेस्ट 150 का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के नाम था, जिन्होंने साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 64 बॉल पर 150 रन बनाए थे। तूफान थोड़ी देर के लिए हो तो राहत, नहीं तो कहर बन जाता है। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के मैदान के टिक कर रहने वाले तूफान नहीं बल्कि बवंडर हैं। इसीलिए विरोधियों के लिए कहर नहीं बल्कि महाकहर बन रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैभव 13 साल की उम्र में एक मैच में ट्रिपल सेंचुरी भी लगा चुके हैं। रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में वैभव ने 332 रनों की नाबाद पारी खेली थी। अभी तो ये यूथ इंडिया की रहनुमाई कर रहे हैं, इंतजार कीजिए इनके टीम इंडिया में शामिल होने का। इसकी पूरी संभावना है कि साल 2027 के वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए ओपनिंग करेंगे और बहुत संभव है कि भारत तब वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक लगाएगा।
1: 15 साल के वैभव की कामयाबी क्रिकेट के बड़े बड़े धुरंधरों को भी हैरान करने लगी है। आईपीएल में अपने से दोगुने ढाई गुने उम्र के घातक गेंदबाजों को भी वो न सिर्फ सहजता से खेल रहे हैं बल्कि कायदे से धुलाई भी कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इतनी छोटी उम्र में ही वैभव इतने दिग्गज बल्लेबाज कैसे बन गए। दरअसल इसके पीछे कहानी है एक अधूरे सपने की, जो कभी वैभव के पिता ने देखा था। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन हालात की दुश्वारियों की वजह से उनका ये सपना अधूरा रह गया। पर अपने उसी अधूरे सपने को संजीव ने अपने बेटे वैभव के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया। वैभव के क्रिकेटर बनने की पूरी कहानी आपके दिल को छू लेगी।
0: सर पर कामयाबी के ताज के साथ मन में विनम्रता का संस्कार हिंदुस्तान की संस्कृति का सनातन हिस्सा है। मैच 15 की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी का बेनजीर परचम लहरा चुके वैभव सूर्यवंशी सनातन संस्कार के युगीन संवाहक हैं। जिस मैच में वैभव ने रिकॉर्ड्स की छड़ी लगा दी, उसके प्री मैच शो के दौरान जब उन्होंने सुनील गावस्कर और संजय बांगर को देखा तो दौड़कर उनके पास गए और पूरी विनम्रता के साथ उनके पैर छू लिए। वैभव के संस्कार की निश्चल सादगी देखिए कि गावस्कर और बांगर के साथ मौजूद

0: शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: Traditional universities weren't made for everyone. WGU breaks with tradition. With programs designed for busy working adults, you can get classroom ready on your schedule. Start your journey today. Learn more at wgu.edu.
2: शनि देव की कौन सी राशि धन की सबसे बड़ी राशि है? शनि देव की कौन सी राशि के लोग भयंकर लापरवाह होते हैं? और शनि देव की कौन सी राशि बृहस्पति के लिए बड़ी निगेटिव होती है? कौन सी हैं शनि देव की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards. Free shipping with no minimum purchase. Triple points on 2 purchases and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: IPL का सबसे बड़ा धुरंधर वैभव के बल्ले ने मचाया बवंडर। उम्र 15 साल बना गेंदबाजों का काल। सिक्सर का बेमिसाल बेबी बॉस। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर

0: खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।
2: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
3: So they were disallowed from speaking their language.
2: In-depth conversations with A-list celebrities.
4: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
2: True crime podcasts you just can't stop listening to.
5: Others escape justice to live and die in infamy. These
2: plus the news and sports content you crave in podcast form.
6: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
2: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
7: शनि देव की कौन सी राशि धन की सबसे बड़ी राशि है? शनि देव की कौन सी राशि के लोग भयंकर लापरवाह होते हैं? और शनि देव की कौन सी राशि बृहस्पति के लिए बड़ी निगेटिव होती है? कौन सी हैं शनि देव की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
10: चारधाम यात्रा में लगातार भक्तों का आना जारी, अब तक करीब 27 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। हेमकुंड साहिब में नहीं थम रही बर्फबारी, हिमपात के बीच भी उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब, करीब 30,000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक पहुंचेंगी मुजफ्फरपुर की शाही लीची, दिल्ली रवाना हुई 2000 कार। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल भिड़ंत, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच।

0: पार्क में अब चीता, निर्वा और उसके तीन शावकों को भी खुले माहौल में सैर करने का मौका बाड़े से खुले जंगल में छोड़ा गया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की।
0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। ये देखते हैं खास कार्यक्रम अच्छी बात धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।

अंजना नंदन श्री हनुमान जी महाराज लंका पहुंच गए। लंका में अशोक वाटिका में है, अशोक वाटिका में माता सीता जी अशोक के पेड़ के नीचे शोक में बैठी। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे शोक में बैठी। अब शोक को मिटाएं कैसे, ये बड़ी चिंता। धन्य है हनुमान जी महाराज श्री वीर बजरंग बली, मानो क्या अद्भुत संकेत दिया। अशोक वृक्ष से माता सीता कह रही, हे अशोक तू अपने नाम का कम से कम लिहाज तो रख, हमारे शोक को मिटा। नाम अशोक है, मैं शोक में हूं, कम से कम अपने नाम की इज्जत तो रख। तो हनुमान जी को लगा शोक मिटाने वाला नाम तो एक ही है, वो राम नाम है, और हम राम कहेंगे तो ये पूछेंगी कौन है। तो हनुमान जी ने एक जुगति अपनाई। जुगति क्या अपनाई, जो मुद्रिका लाए थे वो हनुमान जी ने गिराई।

उस मुद्रिका में है राम। और जैसे ही इतना कहा माता सीता जी ने, तुरंत हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई, मुद्रिका में लिखा राम। और जैसे ही सीता माता की नजर मुद्रिका पर अंगूठी पर पड़ी तो अंगूठी को देखते ही मुंह से निकला राम राम राम राम। ऊपर बैठे हनुमान जी बोले बन गया काम। अब बन गया काम, राम राम कहा अब काम बन गया। और हनुमान जी मेरे पागलो एक बात तुम याद रखना, आराम कौन कौन पाना चाहता, हाथ उठाओ, आराम कौन कौन पाना चाहता है किसी भी चीज में, रोग में, बाधा में, जिंदगी में, पीड़ा में, समस्याओं में, आराम कौन कौन पाना चाहता है, हाथ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे उन्हें आराम लगा है क्या भाई, पेट ही खराब हो तो उठाओ। चलो आराम चाहिए। एक हमारे पास मंत्र है, कहो तो दें, दें। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, पूछो क्या, आ राम की शरण में, राम राम कर। आ राम की शरण में राम राम कर, इससे मिलेगा आराम। तो जैसे ही माता सीता जी ने कहा राम राम राम, हनुमान जी बोले बन गया काम। लेकिन माता जानकी जी ने मुद्रिका तो पहचान ली, चकित चिताओं मुद्री पहचान ली, पर ये मुद्री आई कहां से? किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप सामने चले जाओ। हनुमान जी बोले हम जा नहीं सकते सामने, क्यों? राम जी ने रोका है। रोका? हाँ। माता जानकी जी का जब ब्याह हुआ और अयोध्या आई तो अयोध्या में महलों के खंभों में बंदरों की आकृति बनी थी, वो दिखने में सजीवित लगते थे, उनको देखकर माताजी डर गई पहले ही दिन। तो माता कौशल्या ने अंक में भर के कहा बेटी क्या हुआ? माता सीता बोली ये बंदर हैं, हमें इनको देखकर डर लग रहा। माता जानकी जी बोली, माता कौशल्या बोली ये बंदर तो हैं पर असली नहीं है, नकली है। तो जब वन को जाने लगे तो माँ कौशल्या ने राम जी को यही समझाया बेटा जो आकृति देख करके डर जाती है उसको वन में मत ले जाओ, वहां तो जिंदा बंदर मिलेंगे, क्या हाल होगा। तो हनुमान जी को वही बात समझाई राम जी ने, सुनो जाना तो पर डायरेक्ट मत जाना, जब वो छवि देखकर डर जाती तो तुम्हें तो देखकर और डर जाएंगी, वानरा राम धीसम, आप तो वानरों के राजा हो तो सामने डर जाएंगी, इसलिए सामने मत जाना, डायरेक्ट मत जाना। इसलिए हनुमान जी ने ऊपर से ही एक उपाय किया, वो उपाय क्या था सुनो।

हनुमान जी लंका में पेड़ के ऊपर ही बैठकर कथा सुनाने लगे। क्या करने लगे? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, कथा सुना रहे। तो किसी ने पूछा कि आप पेड़ पे क्यों बैठे? बोले कथावाचक ऊपर ही बैठता है, श्रोता नीचे बैठे, इसलिए हम ऊपर बैठे। अच्छा, बहुत अच्छी बात, पर एक बात और बता। हाँ। बोले आप कथावाचक हो? बोले बिल्कुल है। हनुमान जी बोले कथावाचक ऐसे वैसे नहीं, खानदानी। बोले खानदानी? हाँ, खानदानी कथावाचक क्या होता है? बोले हम पहले से ही कथा करते आ रहे। हनुमान जी से किसी ने कहा, तो किसी ने कहा कि कब से कर रहे? हनुमान जी बोले हमारा एक और रूप है। बोले कौन सा? बोले रुद्र रूप। शंकर अवतार में तो जब राम जी जन्म लेते तब हम कथा ही सुनाते हैं, उस रूप में भी हम कथा सुनाते, इस रूप में भी हम कथा सुनाते हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पायसु समय शिवासन भाखा। तो बोले उस रूप में भी हम कथा करते, इस रूप में भी कथावाचक है, तो हम खानदानी कथावाचक, क्योंकि शंकर जी ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही शंकर सुमन। केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग। तो हम तो खानदानी कथावाचक हैं। तो किसी ने कहा कि लंका में और कथा? बोले हाँ। बोले एक बात बताओ, लंका में यदि कथा कर ही रहे तो पेड़ में छिपे क्यों? छुपे क्यों? हनुमान जी बोले लंका में छुपे ही रह के कथा कर ले वही बहुत है। आओ, आओ, आओ, लंका में छुप के ही कथा हो जाए वही बहुत है, वरना रावण निपटा देगा। कथा बचाई में मिलती है दक्षिणा, मिलेगी मौत। इसलिए छुप के ही जान, इसलिए हनुमान जी छुप करके बैठे हुए कथा सुना रहे। रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जहां कथा सुनाना प्रारंभ की, माता जानकी जी का दुख भाग गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जहां दुख भागा, माता जानकी जी ने ऊपर देखा, कथा सुंदर है पर कथावाचक नहीं दिख रहा। कथा तो सुंदर है भाई, कोई बोल रहा हो पर दिख ना रहा हो, मन में आने ही लगता भाई कहाँ हो, कौन हो, दिखो तो। हनुमान जी की तरफ, हनुमान जी ऊपर छुपे बैठे कथा सुना रहे, माता जानकी जी बीच में ही बोली भाई कथा तो बड़ी सुंदर है, कथावाचक कौन है, दर्शन दो। हनुमान जी बोले माता कथा ही सुन लो, कथावाचक देखने लायक नहीं। तो माता जानकी जी बोली क्यों? हनुमान जी बोले माँ केवल कथा ही सुंदर है, कहने वाला तो बंदर है। वानराराम धीसम, कहने वाला बंदर है। माता जानकी जी ने कहा फिर भी सन्मुख आओ। जैसे ही इतना कहा तो तब हनुमंत निकट चली गया। जैसे ही निकट गए तो हनुमान जी बंदर, और जानकी माता ने जैसे ही देखा तो माता जानकी जी ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी ने माता जानकी जी को देखा, फिर बैठी मन विस्मय भयाऊ, मन में विस्मय हो गया। क्या विस्मय? कहीं रावण की कोई चाल तो नहीं, कोई रावण की करतूत तो नहीं है, चाल तो नहीं, चाल। तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, देखो दूत कैसा होना चाहिए मेरे पागलो, याद रखना दूत और पूत, पूत मतलब बेटा, याद रखना। दूत वही श्रेष्ठ है जो स्वामी के नाम को बढ़ाए, और पूत वही श्रेष्ठ है जो पिता के नाम को आगे बढ़ाए। और जितने यहां पर पुत्र बैठे हैं, युवान बच्चे बैठे हैं, युवान बहनें बैठी हैं, हम सभी युवान बच्चों से, युवान बेटियों से और बहनों से और भाइयों से प्रार्थना करेंगे, मेरे पागलो बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाने जाएं, बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। इसलिए तुम ऐसा नाम कमाना, ऐसी उपलब्धि पाना, ऐसा यश कमाना कि तुम्हारी माँ या तुम्हारा पिता किसी गली से निकले तो तुम्हें देखकर, उनको देखकर के लोग कहें ये फलाने के पिताजी चले जा रहे हैं, माता जी चले जा रहे हैं, ऐसे पूत होना चाहिए। धन्य है हनुमान जी, क्या परिचय देते हैं। हनुमान जी से माता जानकी जी ने पूछा कौन हो?

हम राम जी के दूत हैं। अच्छा, राम जी के दूत हो, एक बात बताओ। हाँ, नर बानर हूं संग कहूं कैसे? ये तुम बानर, राम जी नर, दोस्ती कैसे हो? कारण बताओ। हनुमान जी ने पूरा कारण बताया, लेकिन हनुमान जी ने बताया कैसे, ये बड़ा महत्वपूर्ण, इसका अर्थ का बड़ा महत्वपूर्ण होता बोलने का, कि कैसे बोलना चाहिए ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे समझो, किसी लड़की के लिए लड़का देखने जाओ तो यदि कोई पड़ोसी कह दे कि भाई, कोई पूछे कि क्यों अमुक अमुक व्यक्ति का लड़का कैसा है, हमें बेटी का विवाह करना है, यदि वो कह दे खाते पीते घर के हैं, तो समझ जाना अमीर हैं। पर कोई कह दे पीता खाता है देखो, एक शब्द ऊपर नीचे किया, मामला बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया है? तो प्रेजेंटेशन बोलने से प्रेजेंटेशन का बड़ा फर्क पड़ता है, कि कैसे बोल रहा, कैसे प्रस्तुतिकरण है, इसका बड़ा प्रभाव। यही कथा हम गा रहे, यही कथा कोई और भी गावे, तो सबकी अपनी प्रेजेंटेशन का महत्व होता है भाई, अपने अपने भाव का अर्थ होता है। तो ऐसे ही शब्दों का हनुमान जी ने प्रेजेंटेशन कैसी की, जरा सुनो। हनुमान जी ने नर बानरों का संग कैसे हुआ ये बताया, कैसे बताया, कपी

वचन बोले तो प्रेम पूर्वक। और प्रेम, अच्छा प्रेम की पहचान क्या है? जब प्रेम होता ना तब बातें नहीं, जवान नहीं बोलती, आंखें बोलती हैं। और जिससे प्रेम होता है उससे आंखें बोलती हैं। और मेरे पागलो, हनुमान जी जब बोलने लगे तो आंखों से आंसू बहने लगे, नेत्र धार बहने, नेत्रों से आंसू। अच्छा हंसा तो जा सकता पर जबरदस्ती रोया नहीं जा सकता। दो कारण से ही रो सकते, या तो प्रेम में ज्यादा खुशी में या ज्यादा दुखी में। कई लोग ऐसे उन्हें रोना आता ही नहीं, पर जो परमात्मा से प्रेम करते उन्हें रोना पड़ता है। जिन्हें परमात्मा से प्रेम का अर्थ है रोना, भक्ति का अर्थ है रोना, इसका पता तो आंखों से ही लगता। हनुमान जी की आंखों में आंसू आए, आंखों के आंसू को देखकर माता जानकी जी पहचान गई, ये साधारण नहीं है, ये जो कह रहे सच कह रहे। इसलिए माता जानकी जी ने कहा, माता जानकी जी के उपजा मन विश्वास, विश्वास भरोसा जाग गया। अंत में माता जानकी जी ने मान लिया, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास, ये राम जी का दास है। जैसे ही इतना कहा तो माता जानकी जी ने हनुमान जी से पूछा, एक बात बताओ, जितना हम प्रभु को याद करते हैं, प्रभु तो नहीं करते हो, वो तो व्यस्त रहते, उनको हमारी याद आई? बताओ, हमें इतने दिन हो गया आज तक खबर नहीं ली। इतना प्रेम करते थे राम जी हमसे कि जब एक कौवा का रूप धारण करके जयंत आया तो उसके पीछे तीर लगा दिया, और हम इतने दिन से यहां हैं, रावण के पीछे कुछ नहीं लगाया। लगता है भगवान हमें भूल गए, भगवान ने हमें विसार दिया। अच्छा और कोई होता तो यही कहता कि आप ठीक कह रही, हम समझाएंगे, हम उन्हें समझाएंगे, ठीक से समझाएंगे, आप चिंता ना करो। लेकिन धन्य है हनुमान जी, दूत ऐसा होना चाहिए। हनुमान जी बोले, मां जितना आप प्रभु को याद करती हो, प्रभु भी आपको उससे ज्यादा याद करते हैं। माता जानकी जी ने कहा, पर जयंत आया था तो तब तो तीर पीछे लगा दिया था, अब तो रावण हमें ले गया, आज तक पीछे नहीं लगाया। हनुमान जी खड़े होकर के बोले, मां हम भी तो राम जी के ही तीर बनकर आए, तीर बनकर के ही आए हैं, रावण के पीछे भी तीर लगा दिया। माता जानकी जी बोली, कौन सा तीर? हनुमान जी बोले, आपके पुत्र रूपी दास रूपी तीर को राम जी ने लगा दिया। और बात भी सही है, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही बात चलो हनुमाना, जैसे राम जी का बाण ऐसे हनुमान जी चले, तो बात बिल्कुल सही कही। हनुमान जी के पास भक्ति है, क्या है बोलो, अरे जोर से तो बोलो, भक्ति है। भगत जी एक बात बहुत सिद्धांतिक रूप से है, आप भगवान के पास जाएंगे तो भगवान आपको दो चीजें सामने रख देंगे, एक माया एक भक्ति। जब भी आप भगवान के पास जाएंगे भगवान दो चीजें सामने रखेंगे, एक माया एक भक्ति। और भगवान आपसे कहेगा, आप चुनो। ज्यादातर लोग माया को चुनते हैं, बुरा न मानना, यहां छत्तीसगढ़ में जितने यहां कोरबा में कथा में बैठे, ज्यादातर लोग भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते। भगवान को नहीं चाहते, ना, भगवान से चाहते। ये भक्ति नहीं है, जो भी तुम नारियल में अर्जी लगाओ, उतना लड़का की शादी हो जाए, मोड़ी ठीक हो जाए, टुरी टुरामन की बुद्धि ठीक हो जाए, और जो है मकान बन जाए, दुकान हो जाए, ये भगवान को ऊपर कहो कि आज तो हम भक्ति करे आए, ठटरी के मरे हलवा भक्ति करे आए, ये भक्ति नहीं है। दो प्रकार से होता है, या तो तुम भगवान को चाहो या भगवान से चाहो। भगवान से चाहोगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा, और भगवान को चाहोगे तो तुम दुनिया को नचाओगे। तो भगवान के पास जाओगे तो दो वस्तुएं मिलेंगी, एक माया एक भक्ति। भगवान कहेंगे मांगो, तो आप क्या लोगे हैं? बोलो बोलो क्या लोगे, माया के भक्ति? दमा दो, तुम बताओ। ज्यादा गहरी कथा नहीं हमें सुनानी चाहिए, पता लगे इनकी जिंदगी आज ही शुरू हुई, आज ही बैराग्य जब जाए।
फिर भी दमा दो, कोई बात नहीं, सुनो सुनो, क्या मांगोगे भगवान से? माया के भक्ति, अरे बोलो, हाँ भक्ति, भक्ति कौन कौन मांगना चाहता? हाथ उठा। वाह, सब सबरी मीरा भाई, सब छत्तीसगढ़ में आ गए, अच्छी बात, चलो बहुत अच्छी बात, ये तो प्रसन्नता की बात है कि आप लोग समझ पा रहे। हाँ, तो भगवान से मांगोगे माया या भक्ति, तो भगवान से पूछा जाए कि माया में क्या फायदा और भक्ति में क्या फायदा, तो भगवान एक उत्तर देंगे। पूछो क्या, भगवान कहेंगे सुनो बेटे, यदि तुम्हें खुद नाचना है तो माया ले लो, यदि तुम्हें हमें नचाना है तो भक्ति ले लो। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है। आता है भजन, अरे भक्त

गाओ गाओ गाओ गाओ दोनों हाथ उठा के भगत की भगत के बस में है भगवान। तो धन्य है भक्ति मंत श्री हनुमंत जी, क्या अद्भुत दूत का दायित्व निभाते हैं। माँ जितना आप याद करती प्रभु भी आपको उतना ही याद कर। अच्छा हाँ, तो हमारे पीछे माँ हम राम जी के दूत बनकर आए, तीर बनकर आए, अब रावण के पीछे लग गए, आप चिंता ना करो। बचन नया

0: कपि मृदु वचन विनीता। माता जानकी जी ने पूछा, प्रभु कैसे हैं? हनुमान जी ने आंखों में आंसू भर के कहा, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निके। भाई लक्ष्मण के सहित राम जी ठीक है, पर मां एक दिक्कत है। क्या? जितना आपके मन में दुख है उससे ज्यादा डबल प्रेम राम जी के हृदय में आपके लिए है। अच्छा हाँ। और जैसे इतनी खबर सुनी
1: तो रघुपति कर संदेश अब सुन जननी।
2: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
3: After multiple assassination attempts, they can't even get...
4: They're reliable.
5: Always when I need them.
2: To live sports action.
6: One hand jam by LeBron on the break.
7: That's another three, Steph Curry.
2: And your favorite music.
8: Well, the dawn begins to crack.
2: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
9: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
10: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Costs shouldn't be a barrier to a teaching career. That's why WGU makes earning a degree in education affordable with flat rate tuition and scholarship opportunities. Make an investment toward making a difference. Learn more at wgu.edu.
2: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn, available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
3: So they were disallowed from speaking their language.
2: In-depth conversations with A-list celebrities.
4: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
2: True crime podcasts you just can't stop listening to.
5: Others escape justice to live and die in infamy. These
2: plus the news and sports content you crave in podcast form.
6: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
2: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
7: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
8: It's my music and it's my station.
7: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
9: शनि देव की कौन सी राशि धन की सबसे बड़ी राशि है? शनि देव की कौन सी राशि के लोग भयंकर लापरवाह होते हैं? और शनि देव की कौन सी राशि बृहस्पति के लिए बड़ी निगेटिव होती है? कौन सी हैं शनि देव की राशियां और क्या है उनका प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
10: दूत वही श्रेष्ठ है जो स्वामी के नाम को बढ़ाए, और पूत वही श्रेष्ठ है जो पिता के नाम को आगे बढ़ाए। और जितने यहां पर पुत्र बैठे हैं, युवान बच्चे बैठे हैं, युवान बहनें बैठी हैं, हम सभी युवान बच्चों से, युवान बेटियों से और बहनों से और भाइयों से प्रार्थना करेंगे। मेरे पागलों, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाने जाएं, बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
12: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
13: चारधाम यात्रा में लगातार भक्तों का आना जारी, अब तक करीब 27 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। हेमकुंड साहिब में नहीं थम रही बर्फबारी, हिमपात के बीच भी उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब, करीब 30,000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक पहुंचेगी मुजफ्फरपुर की शाही लीची, दिल्ली रवाना हुई 2,000 कार्टन। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल भिड़ंत, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। कूनो नेशनल पार्क में अब चीता निर्वा और उसके 3 शावकों को भी खुले माहौल में सैर करने का मौका, बाड़े से खुले जंगल में छोड़ा गया।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
13: आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल भिड़ंत, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के लिए उतरेगी डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी, पहले प्लेऑफ में गुजरात को 92 रनों से दे चुकी है मात। दोनों टीमें एक बार फिर से आईपीएल ट्रॉफी उठाने को बेकरार, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात दोनों ने एक एक बार जीता है खिताब। विराट कोहली और आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार पर सबकी नजर, 2025 में पाटीदार की कप्तानी में भी आरसीबी ने जीता था पहला आईपीएल खिताब। आरसीबी की कप्तान पाटीदार के पास धोनी और रोहित के क्लब में शामिल होने का एक मौका है। गुजरात की तरफ से शुभमन गिल के बल्ले से टीम और फैंस को उम्मीद है। क्वालिफायर टू में गिल के 104 रनों की बदौलत फाइनल में पहुंची है टीम। ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा सकते हैं गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल, फिलहाल 722 रन के साथ वैभव सूर्यवंशी से 54 रन पीछे। पर्पल कैप की दौड़ में गुजरात के कागिसो रबाड़ा 28 विकेट के साथ सबसे आगे। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए वैभव सूर्यवंशी, मंत्री इरफान अंसारी ने किया ऐलान। सूर्यवंशी के जुड़ने से स्वास्थ्य, फिटनेस और खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के अभियान को मिलेगी रफ्तार। चारधाम यात्रा में लगातार भक्तों का आना जारी, चारधाम यात्रा में अब तक कुल करीब 27 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 30 मई को चारधाम यात्रा पहुंचे करीब 79,000 श्रद्धालु, हेमकुंड साहब पहुंचे 26,000 से ज्यादा भक्त। केदारनाथ धाम में एक दिन में 24,000 से ज्यादा भक्तों ने किया दर्शन, कुल संख्या 10 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम में अब तक 7.5 लाख भक्तों ने दर्शन किए, एक दिन में 26,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों के साथ साथ लगातार बढ़ रही वाहनों की संख्या, यातायात को लेकर प्रशासन कर रहे हैं सभी बंदोबस्त। यमुनोत्री धाम में शनिवार को पहुंचे 12,500 से ज्यादा श्रद्धालु, भक्तों की कुल संख्या 4 लाख के पार। गंगोत्री धाम में भक्तों की कुल संख्या 4.5 लाख के पार, एक दिन में 13,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। रुद्रप्रयाग में इन दिनों चारधाम यात्रियों के साथ पर्यटकों की भारी आवाजाही, जगह जगह बन रही है जाम की स्थिति। केदारनाथ के धाम समेत द्वितीय केदार मदमहेश्वर, तृतीय केदारनाथ तुंगनाथ और पर्यटक स्थल चोपता उमड़ रहे हैं लोग। रुद्रप्रयाग में बढ़ती भीड़ के बाद प्रशासन सतर्क, भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन के लिए किए जा रहे हैं व्यापक इंतजाम। तमिलनाडु के डिंडीगुल में भव्य रूप से मनाया गया वैकासी विसागम उत्सव। तमिल कैलेंडर के विकासी महीने में विशाखम क्षेत्र के दिन मनाया जाता है पर्व। वैकासी विसागम उत्सव पर डिंडीगुल के मंदिरों में भव्य सजावट, मुख्य रूप से भगवान मुरुगन की होती है पूजा अर्चना। डिंडीगुल की गलियों से निकली गई भगवान मुरुगन की शानदार शोभा यात्रा, लाखों भक्त शामिल हुए। तमिलनाडु के शिवगंगा में वैकासी विसागम उत्सव पर सभी मुरुगन मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। मदुरई में भी भगवान मुरुगन की विशेष पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तीसरी आंख से निकले 6 दिव्य तेज से हुआ था भगवान मुरुगन का जन्म। हेमकुंड साहिब में मौसम बदलते ही बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी, मौसम की मनमानी के बीच भी भक्तों का जोश है। जून के महीने के शुरुआत के बावजूद थमने का नाम नहीं ले रहा बर्फबारी का दौर, बर्फबारी के बीच सिखों के इस पवित्र तीर्थ स्थल पर उमड़ रहा श्रद्धालुओं का मेला। यात्रा मार्ग पर फिसलन बढ़ने से पुलिस सेवादार और SDRF कर रही है यात्रियों की मदद, लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या। वीकेंड पर शनिवार के दिन हेमकुंड साहब पहुंचे 2,616 श्रद्धालु, करीब 30,000 हुई संख्या। हेमकुंड साहब में शुक्रवार को तड़के सुबह से ही जबरदस्त बर्फबारी, पूरे क्षेत्र में बिछी बर्फ की मोटी चादर। मई के अंत में भी बर्फ से चमका रोहतांग दर्रा, 13,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीला नजारा बरकरार, सैलानियों की भारी भीड़। स्नो स्कूटर और स्कीइंग का मजा लेते हुए नजर आए पर्यटक, का बर्फ में सेल्फी और रील्स का बढ़ा क्रेज। कभी बर्फबारी तो कभी फुहारों का सिलसिला, बर्फ के गोले बनाकर खेलते हुए नजर आए पर्यटक। बर्फीले पहाड़ों ने पर्यटकों का किया मंत्रमुग्ध, बादलों के बीच खुलते नजारे बने आकर्षण का मुख्य केंद्र, रोहतांग बना गर्मी से राहत पाने का सबसे बड़ा केंद्र। मनाली में होटल्स और होम स्टे बुकिंग फुल, पर्यटन कारोबार में भारी तेजी दर्ज। स्कूल से रात पाने कांगड़ा घाटी की ओर उमड़े तीर्थयात्री, धर्मशाला और आसपास के इलाकों में बड़ी सैलानियों की आमद। ज्वालामुखी और बज्रेश्वरी मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें, बाणगंगा और झीलों में बोटिंग का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भारी बुकिंग से पर्यटन कारोबारों में तेजी, धर्मशाला और चामुंडा क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं सैलानी। मसूरी सुहाना मौसम बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, देहरादून मसूरी मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें। होटल्स और पर्यटन स्थलों पर बड़ी भारी डिमांड, भीड़ नियंत्रण करने के लिए वीकेंड पर वन वे सिस्टम लागू। गर्मी से राहत पाने के लिए मनाली में बढ़ी सैलानियों की आमद, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हुई। वीकेंड पर बन रही है भारी जाम की स्थिति, स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए कसी कमर। मनाली में पीक सीजन में लगातार बढ़ रही है पर्यटकों की भारी भीड़, लगभग 80-90% तक हो चुकी है होटल्स में ऑक्यूपेंसी। कोटा दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के कार्यक्रम में हुए शामिल। अलीगढ़ में परिवहन विभाग ने आयोजित किया जॉब फेयर, बड़ी संख्या में महिला कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटर शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक का पहुंचेगी मुजफ्फरपुर की शाही लीची, दिल्ली रवाना हुई 2000 कार्टन। विशेष रेफ्रिजरेटर वैन से भेजी गई प्रीमियर क्वालिटी की लीची, 1 जून तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद। कुरू नेशनल पार्क में बड़ी खबर, चीता निर्वा और उसके 3 शावकों को बाड़े से खुले जंगल में छोड़ा गया। कुनो में बड़ा हुआ चीतों का कुनबा, अब्बा कुनो के खुले जंगल में कुल चीतों की संख्या 20। बाड़े से खुले जंगल में छोड़े गए 3 शावकों में 2 नर और 2 मादा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 134वां एपिसोड। पश्चिम बंगाल, पश्चिम एशिया संकट, ऊर्जा बचत, पद्म पुरस्कार पर रख सकते हैं अपनी बात। दिल्ली में 5 साल बाद मई का महीना दर्ज हुआ सबसे साफ, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश के बीच हवा की गुणवत्ता में सुधार। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल में 10% की बढ़ोतरी, ईंधन अधिभार के नाम पर यूपीपीसीएल ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया। 4 साल बाद उत्तर प्रदेश को मिलेगा पूर्णकालिक डीजीपी, सूत्रों के हवाले से खबर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भेजे डीजीपी के लिए 3 नाम। आईपीएल के समापन के साथ आयोजित होगी आईसीसी की वार्षिक बोर्ड बैठक, खबर है कि पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी वर्चुअली होंगे शामिल। तेज बारिश के साथ दिल्ली में चली धूल भरी आंधी, कनॉट प्लेस इलाके में झमाझम बारिश। चंडीगढ़ में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, तापमान में गिरावट। चंडीगढ़ में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, मशहूर सुखना लेक से तस्वीरें निकलकर सामने आई। हरियाणा के अंबाला में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, भीषण गर्मी से राहत। तिरुवनंतपुरम के कई इलाकों में तेज बारिश, सड़कों पर भर गया लबालब पानी, बारिश से बचने के लिए छाता का उपयोग करते हुए नजर आए लोग। चुरू के सरदार शहर में रेगिस्तान में धूल भरी आंधी से दिन में ही छाया अंधेरा, आसमान में छाए धूल के गुब्बारे ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवाओं के कारण लोगों को घरों और सुरक्षित स्थानों पर रहना पड़ा। कुछ मीटर दूर तक देख पाना भी मुश्किल हो गया, लो विजिबिलिटी के चलते सड़कों पर सन्नाटा। श्रीगंगानगर में भी रेत के बवंडर के दिन मनाया दिन को रात, करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी। करीब 30 मिनट तक बवंडर ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया, आसमान में रेत के घने गुबार की वजह से विजिबिलिटी रही बहुत कम। फिल्म कारा हिरण का पोस्टर रिलीज हुआ, सलमान खान लॉरेंस विवाद पर बनी फिल्म 20 जून को आएगा टीजर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होंगे रणबीर कपूर के रामायण के एक्शन सीन, फिल्म को मिला प्लैनेट ऑफ द एप्स और द एवेंजर्स जैसी फिल्मों के एक्शन सीक्वेंस को डिजाइन करने वाले एक्शन आर्टिस्ट टेरी नोटरी का सामना। फिल्म ये जवानी है दीवानी ने पूरे कर लिए रिलीज के 13 साल। 10 जुलाई को मुंबई के षणमुखानंद हॉल में होगा द ड्रीम गर्ल डायमंड जुबली कॉन्सर्ट। वेब सीरीज ब्राउन का ट्रेलर हुआ रिलीज, नए अवतार में नजर आए करिश्मा कपूर। लुधियानिया की राजधानी विल्नियस में जमा हुए दुनिया भर से आए सूप के शौकीन अनोखे सूप फेस्टिवल में हिस्सा लिया। बहुत खास होता है ये लुधियानिया का गुलाबी सूप जिसे सॉल्टी बारसियाई से भी जाना जाता है। लुधियानिया के बहुत पसंद किया जाने वाला एक पारंपरिक ठंडा तरल पदार्थ। लगातार 4th साल मनाया जा रहा है गुलाबी सूप का ये सालाना जश्न। इस फेस्ट में साल करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इस जश्न में नावों की परेड, वेटर रेस और एक विशाल गुलाबी स्लाइड जैसी गतिविधियां भी शामिल होंगी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
14: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
15: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
0: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
17: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
18: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
17: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
19: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
18: अविश्वास में विश्वास बसता है,
17: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
21: गुड न्यूज टुडे।
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
0: वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
17: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
18: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे शनि के शुभ योग कौन से हैं और इनका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। अब जान लेते हैं दिनांक 31 मई 2026 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है वृषभ राशि में, बुध बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मेष राशि में और इसी आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम शनि के शुभ योगों की बात करें उसके पहले ये जानते हैं कि शनि का हमारे जीवन में रोल क्या है, शनि की हमारे जिंदगी में भूमिका क्या है। देखिए, शनि को नवग्रहों में सेवक कहा जाता है। सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति, उसी तरह से शनि सेवक है। इसको न्याय का अधिपति भी कहा जाता है, न्याय का देवता भी मानते हैं और शनि अनुशासन और कठोरता का ग्रह माना जाता है। शनि कानून, नौकरी, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी और संघर्ष से संबंध रखता है। अगर शनि के शुभ योग कुंडली में हैं, तो ये जीवन को प्रगति की तरफ ले जाते हैं, जीवन में उन्नति करवाते हैं और संघर्ष थोड़े कम कर देते हैं। हालांकि शनि के शुभ योगों का प्रभाव थोड़ा विलंब से होता है। चंद्रमा के शुभ योग हों, मंगल के शुभ योग हों, तो उसका प्रभाव जीवन में जल्दी होगा। शनि के शुभ योग अगर कुंडली में हैं, तो इसका प्रभाव थोड़े विलंब से होता है, इसका प्रभाव आने में समय लगता है। शनि के शुभ योगों पर हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। शनि का जो पहला शुभ योग है उसका नाम है शश योग। क्या होता है शश योग? जो है वो शनि का सबसे बड़ा राजयोग है और ये शनि का पंच महापुरुष योग है। शनि अगर कुंडली में मकर, कुंभ या तुला राशि में बैठा हो तो शश नामक महायोग बन जाता है, लेकिन इसके लिए शनि लग्न से केंद्र में होना चाहिए। अगर शनि लग्न से केंद्र में हो, तुला, मकर या कुंभ राशि में हो, तो कुंडली में शश योग बन जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपार धन संपत्ति और अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और ऐसे लोग बहुत नीचे स्तर से उठकर जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। ये योग धनवान भी बनाता है, करियर में, जीवन में बड़ा नाम बनाता है, बड़ी सफलता देता है, लेकिन चूंकि शनि का राजयोग है
इसीलिए जीवन में संघर्ष के बाद ही व्यक्ति को बड़ी सफलता मिल पाती है। अगर आपकी कुंडली में शश योग है तो अपने से छोटों का हमेशा सम्मान करिए। जो लोग आपसे निर्बल हैं, दुर्बल हैं, पद में, प्रतिष्ठा में, स्टेटस में, उनका ध्यान रखिए और उनका सम्मान करिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। शनि के दूसरे शुभ योग की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। शनि का दूसरा शुभ योग है सप्तमस्थ शनि, यानी सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि। शनि सप्तम भाव में कुंडली में अगर बैठा हो तो ये भी शनि की एक शुभ स्थिति है। शनि सप्तम भाव में दिग्बली हो जाता है और यहां पर बैठा हुआ शनि सामान्यतः व्यक्ति को धनवान बनाता है। सप्तम भाव में शनि बैठा हो तो व्यक्ति धीरे धीरे बहुत सारा पैसा कमाता है। हालांकि सप्तम भाव में शनि बैठा हो तो सामान्यतः विवाह में विलंब होता है। अपने से ज्यादा बड़े उम्र की लड़की या लड़की से विवाह होता है या किसी ऐसे लड़की या लड़के से विवाह होता है जो दिखने में ज्यादा उम्र का दिखाई देता हो। सप्तम भाव में शनि के होने पर व्यक्ति कर्मठ होता है और अपने परिश्रम से आगे बढ़ता है। और ज्यादातर देखा गया है कि जिनके सप्तम में शनि हो ऐसे लोगों का भाग्य विवाह के बाद उदित हो जाता है। सप्तम भाव में जिनके शनि हो लोहे का, मशीनरी का, कंस्ट्रक्शन का, पॉलिटिक्स का ऐसा काम कर सकते हैं या ऐसे क्षेत्रों में जा सकते हैं। सप्तम के शनि की मुश्किल सिर्फ

लड़की से विवाह कराता है ऐसा देखा गया है। अगर आपकी कुंडली के सातवें भाव में शनि है तो नियमित रूप से शनि देव की पूजा करिए, आप अपने करियर में और धन के मामले में ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनि का राजयोग बनता है तो आप ये मत समझिए कि जीवन में चीजें आसानी से मिलेंगी। मिलेंगी जरूर, बहुत बढ़िया मिलेंगी और स्थाई मिलेंगी, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। शनि का जितना बड़ा राजयोग होगा मेहनत उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन राजयोग भी बहुत बड़ा होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली में शनि का राजयोग है वो आपको फल नहीं दे रहा है, तो आप अपने खान पान को पवित्र करिए, नियमित रूप से शनि देव की पूजा करिए और जितना संभव हो सके लोगों की सहायता करिए, अन्न का, वस्त्र का, भोजन का दान करिए। अगर आप इतना काम रेगुलरली नियमित रूप से करने लगें तो शनि का राजयोग आपको फल अवश्य देगा। तो आज हमने बात की शनि के शुभ योगों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। पति पत्नी को आग्नेय कोण के कमरे में यानी साउथ ईस्ट के कमरे में रहने से बचना चाहिए। अगर पति पत्नी आग्नेय कोण के कमरे में रहेंगे तो बेवजह के विवाद और बेवजह के झगड़े परेशान करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 31 मई 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल सूर्य देव को रोली मिला हुआ जल अर्पित करें। इसके बाद लोटे के किनारे पर लगी हुई रोली अपने मस्तक पर लगा लें। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: चारधाम यात्रा में लगातार भक्तों का आना जारी, अब तक करीब 27 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। हेमकुंड साहिब में नहीं थम रही बर्फबारी, हिमपात के बीच भी उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब, करीब 30,000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। मई महीने में शिमला में पर्यटकों का उमड़ा सैलाब, 7 लाख गाड़ियों पहुंची शिमला, जाम से निपटने के लिए शिमला पुलिस ने बनाया मेगा प्लान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक पहुंचेंगी, मुजफ्फरपुर की शाही लीची दिल्ली रवाना हुई 2000 कार्टन। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल भिड़ंत, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच।

0: दोनों नेशनल पार्क में अब चीता, निर्वा और उसके तीन शावकों को भी खुले माहौल में सैर करने का मौका। बाड़े से खुले जंगल में छोड़ा गया।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
4: नमस्कार।
3: तो आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं शनि की राशियों की। तो आखिरकार शनि की राशियां कौन सी हैं और क्यों इन राशियों को इतना खास माना जाता है और इन लोगों को, इन जातकों को अपने जीवन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
4: अगर आपको हर समय हर स्थिति परिस्थिति में स्वास्थ्य में समस्या रहती हो, सेहत में दिक्कत रहती हो, तो हर शनिवार को खाने पीने की वस्तु का दान करिए। निर्धन व्यक्ति को या जिसको जरूरत है, शनिवार को खाने पीने की चीज दीजिए, काफी बेहतर होगा।
3: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 31 मई 2026 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है।
4: दिनांक 31 मई 2026 दिन रविवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, दोपहर 2:14 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, शाम के 4:12 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
3: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं शनि की राशियों की। तो पंडित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि शनि की जो राशियां होती हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं।
4: जी देखिए, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं शनिदेव की राशियों के बारे में। शनिदेव की राशियां कौन सी हैं और उनकी विशिष्टता क्या है। शनि वायु तत्व का सबसे प्रमुख ग्रह है। जैसे पृथ्वी तत्व पर बुध का अधिकार है, वैसे ही वायु तत्व पर शनि का अधिकार है। शनि दो राशियों के स्वामी हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। मकर राशि मुख्यतः पृथ्वी तत्व की राशि है और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। मकर राशि को मटीरियलिस्टिक राशि, भौतिकवादी राशि माना जाता है। इसीलिए मकर वालों को शनि जीवन में धन, संपन्नता, रुपया, बंगला, गाड़ी ये सब देता है, जबकि कुंभ राशि इंटेलेक्चुअल राशि है, बुद्धिमता की राशि है। तो शनि कुंभ वालों को ज्ञान और आध्यात्म देता है। शनि के ज्यादातर जो गुण हैं या शनि की जो ज्यादातर निकटता है वो कुंभ राशि के साथ है। शनि कुंभ राशि के ज्यादा निकट माने जाते हैं।
3: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
4: मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके समस्या रह सकती है, सतर्क रहें। व्यर्थ की चिंता हो सकती है। करियर में बड़ा निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या हल होगी। करियर में कुछ परिवर्तन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। करियर में सफलता मिलेगी। सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
3: तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि की सबसे पहली राशि यानी मकर राशि के बारे में। इसकी क्या कुछ विशेषताएं होती है और किन बातों का ध्यान मकर राशि वालों को रखना चाहिए, आइए जानते हैं।
4: देखिए, शनि की जो पहली राशि है मकर यानी कैप्रिकॉर्न, ये कर्म की राशि है, मेहनत की राशि है और धन की राशि भी है। तो पृथ्वी तत्व की राशि है मकर और इस पृथ्वी तत्व के राशि के स्वामी हैं शनि देव। मकर राशि पर शनि और बुध दोनों का प्रभाव होता है, यानी मकर वालों की कुंडली में अगर मकर राशि है और बुध थोड़ा भी बेहतर है तो बुध मकर वालों को बहुत बुद्धिमान बना देता है। मकर वाले जो लोग होते हैं वो सामान्यतः चालाक, मौका परस्त और धनवान होते हैं। किसी भी आदमी के करियर पर, उसके रोजगार पर, कोई भी आदमी हो, सबसे ज्यादा जिस राशि का असर पड़ता है वो मकर राशि है। और मकर राशि के लोग अपने विषय में माहिर होते हैं। जो भी सब्जेक्ट हो इनका, जो भी काम करते हैं उसमें परफेक्ट होते हैं। और मकर राशि करियर और रोजगार को सीधे तौर से प्रभावित करती है। मकर वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये अपनी योग्यता को लेकर अहंकारी हो जाते हैं। मकर वाले अब मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनको ये लगता है कि मेरी ही मेहनत सबसे ज्यादा है। अहंकार मकर वालों के अंदर जल्दी आता है। अगर आपकी राशि मकर है तो सलाह लेकर एक पन्ना धारण करना चाहिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और मकर वाले अगर जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, जीवन की बाधाओं से बचना चाहते हैं, तो इनको नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करना इनके लिए शुभ होगा।
3: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
4: कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, चिंताओं से राहत मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम इस समय टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, संतान की चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
3: तो चलिए कार्यक्रम में अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
4: जी, आज का पहला प्रश्न वैभव जी ने हमें लिखा है और वैभव जी हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 18 फरवरी 1996, जन्म का समय शाम के 6:12, जन्म स्थान है लखनऊ। वैभव कह रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहता हूं, क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से हो सकेगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैभव, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2027 में जून से दिसंबर वाले समय में आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से हो जाएगा, लेकिन विवाह के पहले एक बार कुंडली जरूर चेक करवा लीजिएगा और अगर उसमें कोई कमी है तो उसका उपाय करने के बाद तब विवाह करिएगा। आपका विवाह बेहतर हो, जीवन अच्छा रहे, इसके लिए एक पीला पुखराज वजन में 5-6 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करिएगा। रोज सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा।
3: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब समय हो गया है आज का दूसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी को आप नोट कर सकते हैं और इसी ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं।
4: जी अगला प्रश्न अजय कुमार शर्मा ने हमें लिखा है और ये देवरिया उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 मई 1979, जन्म का समय रात में 8:10, जन्म का स्थान है टांडा उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं देवरिया से। अजय जी कह रहे हैं कि मैंने अभी लोन लेकर अपना व्यापार भी शुरू किया है, घर भी बनवाया है, तो मुझे लोन से छुटकारा कब तक मिलेगा और व्यापार को बेहतर करने के लिए मैं क्या करूं? अजय जी, लोन से छुटकारा पाने में अभी वक्त लगेगा। साल 2028-29 तक जाते जाते आप लोन से कुछ हद तक छुटकारा पा सकेंगे। व्यापार आपका बेहतर है, व्यापार में आप तरक्की करेंगे, उसमें ज्योतिष के हिसाब से कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। एक पन्ना बनवा के पहने, 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह और शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
3: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं शनि ग्रह की दूसरी राशि यानी कि कुंभ राशि के बारे में, जिसे अंग्रेजी में एक्वेरियस कहते हैं। क्या इसकी विशेषताएं हैं और किन बातों का ध्यान इन जातकों को रखना चाहिए, उसके बारे में पंडित जी से जानते हैं।
4: अब जानते हैं शनि देव की दूसरी राशि के बारे में जिसका नाम है कुंभ यानी एक्वेरियस। क्या विशेषताएं हैं? कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है और इस राशि के स्वामी भी शनि हैं। एक तो शनि का तत्व भी है इनके पास, वायु तत्व, और दूसरा इनके स्वामी भी शनि हैं, तो इनके ऊपर शनि का इंपैक्ट जबरदस्त होता है। इनका जीवन कुल मिला जुलाकर शनि पर ही निर्भर करता है। कुंभ राशि वालों के अंदर आध्यात्म, अंतर्ज्ञान और कला के गुण पाए जाते हैं और कुंभ वाले अगर सही रास्ते पे चलें तो समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करते हैं। फिल्मों में चले जाते हैं, पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, सोशल सर्विस में चले जाते हैं और दुनिया पे असर डालते हैं। अगर इनको जीवन में सही दिशा मिले, क्योंकि कुंभ वालों के भटकने की संभावना बहुत होती है, अगर इनको जीवन में सही दिशा मिले तो ये जीवन में विशेष हो जाते हैं, जीवन में विशेष सफलता पा जाते हैं। कुंभ वालों की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है लापरवाही और आलस्य। सारी योग्यता, सारी काबिलियत, सारी खूबी होने के बावजूद इनकी लापरवाही और इनका आलस्य इनको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता। अगर आपकी राशि कुंभ है तो नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिएगा। शिव मंत्र का जप करिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और गलत आदतों में मत पड़िए, गलत हरकतें गलत आदतों में इन्वॉल्व मत होइए। भटकने से, नशा करने से, गलत संगति से कुंभ वालों को बचने का प्रयास अवश्य करना चाहिए।
3: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
4: तुला राशि, करियर के मामले में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग हैं, मानसिक चिंता समाप्त होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
3: अगर आपकी राशि भी मकर है और जीवन में समस्याएं आ रही हो, बार बार बाधाओं का सामना आपको करना पड़ रहा हो तो क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
4: देखिए, मकर वाले अगर जिद्दी ना हो, अहंकार ना करें तो जीवन में सामान्यता मुश्किलें आएंगी नहीं। लेकिन अगर आपकी राशि मकर है और जीवन में मुश्किल आ गई है तो क्या करेंगे, इनको हमेशा अपने करियर और परिवार में संतुलन रखना चाहिए। ये काम के मामले में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि परिवार की तरफ ध्यान नहीं देते। स्वास्थ्य के मामलों में खास तौर से खान पान और डाइजेशन के मामले में इनको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मकर वाले बड़े साहसी होते हैं, लेकिन साहस का मतलब ये नहीं है कि हर मामले में आप रिस्क लेने लगें। जीवन में बड़े रिस्क लेने से बचना चाहिए, हर समय जोखिम ना लें। अगर आपकी राशि मकर है तो रोज शाम को शनि मंत्र का अधिक से अधिक जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। और जब मौका मिले गरीबों की, निर्धनों की सहायता करिए। अन्न वस्त्र चिकित्सा जैसा भी करना चाहें, यथाशक्ति गरीबों की सहायता करिए, आपको लाभ होगा।
3: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। तो क्या आपकी राशि भी कुंभ है और क्या आपको जीवन में बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, समस्याएं आपको जीवन में बार बार घेर ले रही हैं? तो आइए पंडित जी से जानते हैं क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं।
4: देखिए, कुंभ वालों के साथ ज्यादा मुश्किल नहीं है, केवल आलस्य और लापरवाही इनके जीवन में मुश्किलें बढ़ा देती है। क्या उपाय करें कुंभ वाले अगर जीवन में समस्या आ रही है तो? देखिए, अगर आपकी राशि कुंभ है तो थोड़ा मेहनत करिए, आलस्य और लापरवाही से बचिएगा। ज्यादा आलस्य और लापरवाही आपको मुश्किल में डाल देगी। कुंभ वालों को एक साथ बहुत सारे काम में हाथ नहीं डालना चाहिए, एक बार में एक ही काम करें तो इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। जीवन में जितना ज्यादा आध्यात्मिक होंगे, पूजा उपासना साधना करेंगे, भगवान की तरफ झुकाव होगा, उतना ही आप जीवन की मुश्किलों से बचेंगे। नियमित रूप से उपवास रखिए, दान करिए, पूजा उपासना, मंत्र जप, दान ध्यान, इनका अगर आप ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
3: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कुछ कहता है।
4: मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, करियर की बाधाएं दूर होंगी, परिवार में कोई शुभ कार्य होगा, खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
3: तो चलिए, अब समय हो गया है आज का तीसरा सवाल लेने का। तो पंडित जी, आज का अगला सवाल आप किसका ले रहे हैं उसके बारे में बताएं।
4: जी, अगला प्रश्न अर्चना सिंह ने हमें लिखा है और अर्चना हमें मेल लिखती हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 20 सितंबर 1984। जन्म का समय सुबह के 6:15। जन्म का स्थान है बरेली। मेल लिखती हैं वाराणसी से। अर्चना जी कह रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए मैं क्या उपाय करूं? अर्चना जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अपने खान पान का, लीवर का, डाइजेशन का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि पेट से संबंधित समस्याएं आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। जून 2027 तक अभी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, डॉक्टर की परामर्श मानिए, वो आपके लिए जरूरी है। चिकित्सा में लापरवाही मत करिए। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह के समय एक बार नारायण कवच का पाठ करें या सुनें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी।
3: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले याद दिला दूं कि अगर आप भी कोई प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई परेशानी, दुख, तकलीफ है, तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अंतिम यानी कि चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
4: जी, आज का अंतिम प्रश्न राजेंद्र झा ने हमें लिखा है और राजेंद्र झा जी दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 नवंबर 1970, जन्म का समय सुबह के 6 बजे, जन्म स्थान है दरभंगा, बिहार। राजेंद्र जी कह रहे हैं कि मेरे पास नौकरी के 2 ऑफर आए हुए हैं, एक नौकरी दिल्ली में ही है और एक नौकरी के लिए जगह बदलनी पड़ेगी, तो मुझे कौन सी नौकरी करनी चाहिए? राजेंद्र जी, ज्योतिष के हिसाब से इस समय जगह बदलना बहुत अच्छा नहीं है। नौकरी बदल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी आप चेंज कर लीजिए, लेकिन जगह बदलने के लिए रुक जाइए। दिल्ली NCR में जो नौकरी है उसी को ज्वाइन कर लीजिए, यहीं रहिए, बेहतर होगा, क्योंकि आपके परिवार को आपकी जरूरत है और अभी दूर जाने से थोड़ा पारिवारिक जीवन पे बुरा असर पड़ सकता है। आपका करियर और जीवन बेहतर हो इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने, रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा।
3: तो पंडित जी, मकर और कुंभ राशि के बारे में हमने आज के कार्यक्रम में बात की, क्या शनि के अलावा किसी और ग्रह से भी इन दोनों राशियों का संबंध होता है?
4: जी देखिए, मकर राशि वैसे तो शनि की राशि है, लेकिन मकर राशि मंगल की बड़ी प्रिय राशि है। मंगल मकर राशि में बड़े मजबूत हो जाते हैं और मकर बृहस्पति की बड़ी निगेटिव राशि है। बृहस्पति जब मकर में बैठते हैं तो वो बड़े कमजोर हो जाते हैं। तो मकर राशि का संबंध शनि के साथ तो है, लेकिन बृहस्पति और मंगल से भी इसका कनेक्शन पाया जाता है। कुंभ राशि पूरी तरह से शनि की राशि है, लेकिन ज्योतिष के विद्वान कहते हैं कि जब बृहस्पति कुंभ राशि में बैठते हैं तो वो उच्च के बृहस्पति का फल देते हैं, यानी कुंभ राशि का संबंध भी बृहस्पति के साथ है। और जब भी बृहस्पति कुंभ में हो तो वो कर्क के बृहस्पति का, उच्च के बृहस्पति का फल प्रदान करते हैं।
3: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जिनका बर्थडे, जिनका जन्मदिन 31 मई को है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
4: जिन लोगों का जन्मदिन 31 मई को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है, करियर की स्थिति मध्यम रहेगी, धन की स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी। अक्टूबर के महीने से आपकी स्थितियों में सुधार होना आरंभ होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
3: तो चलिए अब कार्यक्रम में समय हो गया है ये जानने का कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
4: देखिए, बहुत बार कुंडली में शाप होते हैं, दोष होते हैं, तो पूर्व जन्म के शाप को, दोष को समाप्त कैसे किया जाए? देखिए, किसी भी तरह का कुंडली या जीवन में शाप होता है वो सामान्यतः राहु से या केतु से संबंध रखता है। इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण की या भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। अगर शाप का प्रभाव ज्यादा है तो श्रीमद् भागवत का पाठ करने से या श्रीमद् भागवत सुनने से काफी हद तक शाप से मुक्ति मिल जाती है।
3: तो चलिए, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं जहाँ हम पंडित जी से जानेंगे कि 31 मई 2026 यानी कि दिन रविवार का शुभ पहर कौन सा है।
4: दिनांक 31 मई 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपका नाम और यश बढ़ेगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 31 मई रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
3: तो चलिए अब पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है।
4: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने जीवन की बेहतरी के लिए क्या करेंगे। आज की गुड लक राशि है तुला। जीवन की बेहतरी के लिए इनको माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए और चांदी इनको जीवन में जरूर धारण करना चाहिए।
3: तो चलिए, अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का महा उपाय आखिर क्या है।
4: जी, बहुत सारे लोगों के परिवार में बेवजह की अशांति और बेवजह का कलेश रहता है, क्या उपाय किया जाए? घर के पूजा स्थान को हमेशा साफ रखिए। दोनों समय पूजा स्थान पर धूप बत्ती जलाइए और घर में शाम के समय बोल बोल कर मंत्र जप करें या उच्चारण करके कीर्तन करें, काफी लाभ होगा।
3: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
5: धन्यवाद।
3: तो हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए अब जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: कौन सा राजयोग बड़ी मेहनत के बाद बहुत बड़ी सफलता देता है? शनि का कौन सा राजयोग विवाह के बाद भाग्य चमका देता है? कौन से हैं शनि के राजयोग और क्या है इनका प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
2: To right field, and it will leave.
1: From the first pitch of the season to the stretch run,
2: and that's the ball game.
1: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: आईपीएल का सबसे बड़ा धुरंधर। वैभव के बल्ले ने मचाया बवंडर। उम्र 15 साल बना गेंदबाजों का काल। सिक्सर का बेमिसाल बेबी बॉस। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: कभी कभी जिंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं कि जो इंसान की पहचान ही बदल देते हैं। ऐसा एक अनुभव जो सिर्फ कामयाबी ही नहीं देता बल्कि सोच, व्यवहार और नजरिया भी नया कर देता है। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी आने वाली फिल्म रामायण में भगवान राम का किरदार निभाते हुए उन्होंने खुद के भीतर कई बदलाव महसूस किए हैं। पिता बनने के बाद मिले इस अनुभव ने उनकी जिंदगी को किस तरीके से नई दिशा दी, रिपोर्ट देखिए।

0: बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता रणबीर कपूर इन दिनों अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म रामायण को लेकर सुर्खियों में हैं। इस भव्य प्रोजेक्ट में वो भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन ये सफर केवल एक फिल्म तक सीमित नहीं रहा। इस अनुभव ने उनके व्यक्तित्व, भावनाओं, पारिवारिक जिम्मेदारियों और जीवन को समझने के तरीके पर गहरा प्रभाव डाला है। जब किसी कलाकार को इतिहास, संस्कृति और आस्था से जुड़े सबसे सम्मानित पात्रों में से एक को निभाने का अवसर मिलता है, तब चुनौती भी उतनी ही बड़ी होती है। यही एहसास रणबीर कपूर के मन में भी था। रणबीर कपूर का कहना है कि जब उन्हें इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव मिला, तब उनके मन में सबसे पहला सवाल यही था कि क्या वो इतने प्रतिष्ठित चरित्र को पूरी ईमानदारी के साथ प्रस्तुत कर पाएंगे। शुरुआत में उन्हें खुद पर पूरा भरोसा नहीं था, मन में झिझक थी, जिम्मेदारी का दबाव था और कहीं ना कहीं असफल होने का डर भी मौजूद था।
1: Years back, when Namit casually spoke to me in London, I was filming at that time, and he called me over to his house and he said that, you know, I'm attempting to make the Ramayana and would you be interested in essaying Lord Rama's role? And my first instinct was fear. And I was like, absolutely not, because I don't think I deserve it. I don't think I'm worthy enough. Forget about it.
0: हालांकि समय के साथ ये संकोच धीरे धीरे सम्मान में बदल गया। तैयारी आगे बढ़ी, कहानी को समझने का अवसर मिला और पात्र की गहराई को महसूस करने का मौका मिला। इसके बाद वही आशंका एक मजबूत जुड़ाव में बदल गई।
1: When I came back to India after a couple of weeks, I met Nitesh sir and Amit again, and they narrated the story to me, and I just realized what a fool I am, that apart from being career defining, this was an opportunity of a lifetime to be part of a vision like this, to take a film like Ramayana, which is our truth, our culture, our history, to take it global, to take it to a larger audience, that I was just filled with gratitude.
0: रणबीर कपूर का मानना है कि ये प्रोजेक्ट उनके पेशेवर सफर का केवल एक अध्याय नहीं है, बल्कि निजी जीवन का बेहद महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। उनके अनुसार इस अनुभव ने उन्हें कई मायनों में बेहतर बनाया है। रणबीर कपूर कहते हैं कि शूटिंग के दौरान उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आए। कुछ ऐसी आदतें जिन्हें वो लंबे समय से छोड़ना चाहते थे, उनसे दूरी बनने लगी। सोचने का तरीका बदला, परिस्थितियों को समझने की क्षमता बढ़ी। इस बातचीत में रणबीर कपूर ने अपनी बेटी राहा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिता बनने के बाद उनके जीवन में एक नई जिम्मेदारी आई। राहा के आने से उन्होंने खुद को अधिक संवेदनशील और समझदार महसूस किया। अभिनेता के मुताबिक बेटी ने उन्हें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दी, जबकि रामायण ने उन्हें ये सिखाया कि एक अच्छे पिता की भूमिका किस तरह निभाई जाती है। इन दोनों अनुभवों ने मिलकर उनके व्यक्तित्व को नई दिशा दी। रणबीर कपूर का मानना है कि सही समय पर सही अवसर मिलना किसी सौभाग्य से कम नहीं होता। उन्होंने इस बात पर भी खुशी जताई कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास पर इतने बड़े स्तर की प्रस्तुति तैयार की जा रही है, जिसका हिस्सा बनने का अवसर उन्हें मिला। अगर फिल्म की बात करें तो इस मेगा प्रोजेक्ट का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं। निर्माण की जिम्मेदारी यश और नमित मल्होत्रा संभाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये भारतीय सिनेमा की सबसे बड़े बजट वाली फिल्मों में शामिल होगी।

0: फिल्म में भगवान राम की भूमिका रणबीर कपूर निभाएंगे, जबकि माता सीता के रूप में साई पल्लवी दिखाई देंगी। वहीं यश भी इस महत्वाकांक्षी परियोजना में अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। निर्माताओं ने इस कहानी को दो हिस्सों में दर्शकों के सामने लाने की योजना बनाई है। पहला भाग इस साल दिवाली पर रिलीज होगा, जबकि दूसरा अध्याय 2027 की दिवाली के अवसर पर सिनेमा घरों में रिलीज होगा।
1: और आइए अब देख लेते हैं वायरल वीडियोस, जो कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे और कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
2: जिंदगी में खुश रहने के लिए कोई वजह जरूरी नहीं होती। ये नन्हा बच्चा स्टील के बर्तन की थाप पर मासूमियत से झूमता नजर आ रहा है। उसकी मुस्कान और छोटे छोटे कदम दिल को खुशी से भर देते हैं। सच में बचपन की यही सादगी जिंदगी को खूबसूरत बना देती है। ये महिला नारी शक्ति की सशक्त मिसाल है। एक तरफ भारी कैमरा संभालते हुए वो शादी की फोटोग्राफी कर रही है, तो दूसरी तरफ अपनी छोटी बच्ची का भी ध्यान रख रही है। माँ की ममता से बच्चा परे ना हो, इसलिए ये साहस सिर्फ माँ ही कर सकती है। ये नज़ारा दिखाता है कि महिलाएं जिम्मेदारी के साथ अपने सपनों को भी बखूबी पूरा कर सकती हैं। दोस्ती की ये अनोखी मिसाल दिल को छू लेती है। एक बच्चा अपने खाने को एक तोते के साथ शेयर कर रहा है और दोनों आराम के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। ये मासूम दोस्ती इंसानों और प्रकृति के बीच प्यार और अपनापन दिखाती है। चिड़िया हमारी बचपन की साथी हुआ करती थी, लेकिन आज इन्हें देख पाना दुर्लभ हो गया है। ये नज़ारा बचपन की यादें ताज़ा कर देता है, जब हम चिड़ियों को नहाते हुए देखकर मौसम बदलने की उम्मीद करते थे। आज वही मासूम पल बहुत याद आते हैं। ये छोटी बच्ची अपनी मासूमियत और एनर्जी से दिल जीत रही है। दो चोटियों में सजी ये नन्ही परी मस्ती में झूमते हुए अपने हर स्टेप को बेहद क्यूट अंदाज में कर रही है। उसकी खुशी और नटखटपन देखने वालों का मन खुश कर देती है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है, तभी से गुड न्यूज टुडे भी आपसे लगातार गुजारिश कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजें ताकि हम आपके उन वीडियोस को दिखाएं। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला लेकर चलते हैं, जहां के तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें एक वीडियो भेजा है, जिसमें उन्होंने धर्मशाला समेत कांगड़ा वैली की खास जगहों के बारे में बताया।

आप सभी को भी न्योता देता हूँ कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो देव भूमि है और हिमाचल के ही अंदर बसा हमारा ये सुंदर धर्मशाला, जहाँ एक तरफ धुलाधार की हसीन पहाड़ियाँ, जहाँ आज मई और जून के महीने में भी बर्फबारी धुलाधार की पहाड़ियों पर है। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश के

0: तो त्रिउंड जैसा ट्रैकिंग का हमारे पास स्पॉट जो है धर्मशाला के अंदर है, आप ट्रैकिंग के लिए भी त्रिउंड जा सकते हैं। साथ में धर्मशाला के लगते बाथू की लड़ी यहाँ घूमने के लिए है। मंदिर की बात करूँ तो रॉकट टेम्पल हमारे यहाँ है। धर्मशाला के साथ ही लगता कांगड़ा है, प्रदेश माता शक्तिपीठ धर्मशाला के अंदर लगते कांगड़ा में है। तो आप इन तमाम चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए धर्मशाला आए हिमाचल वासी। तो धर्मशाला अतिथि देवो भव के भाव के साथ आप सभी के स्वागत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपने आना कैसे है ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो बताऊं आपको, धर्मशाला के ही समीप गग्गल एयरपोर्ट, जहां आप हवाई मार्ग से आ सकते हैं। रेलवे से अगर आपने आना है तो पठानकोट जो सबसे नजदीक हमारे पड़ता है उसके माध्यम से आ सकते हैं। जब दिल्ली से आपने आना है तो वोल्वो बसें जो है धर्मशाला तक आती हैं। इन तमाम साधनों से जो आप धर्मशाला आ सकते हैं। हम सभी धर्मशाला वासी आपके स्वागत के लिए और अतिथियों के अतिथि देवो भव के भाव के साथ यहाँ पर।
1: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह आपको नजर आती है तो बस कैमरा उठाइए, व्लॉग बनाइए, फिर हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
4: Thank God I get to wake
3: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
6: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
7: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
8: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: कौन सा राजयोग बड़ी मेहनत के

0: बाद बहुत बड़ी सफलता देता है। शनि का कौन सा राजयोग विवाह के बाद भाग्य चमका देता है? कौन से हैं शनि के राजयोग और क्या है इनका प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: दूत वही श्रेष्ठ है जो स्वामी के नाम को बढ़ाए, और पूत वही श्रेष्ठ है जो पिता के नाम को आगे बढ़ाए। और जितने यहां पर पुत्र बैठे हैं, युवान बच्चे बैठे हैं, युवान बहनें बैठी हैं, हम सभी युवान बच्चों से, युवान बेटियों से और बहनों से और भाइयों से प्रार्थना करेंगे, मेरे पागलों, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाने जाएं, बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession.
5: देशभर में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पवित्र नदियों के किनारे उमड़ी भीड़, प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान, दान पुण्य करके पूजा अर्चना की। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर उज्जैन में बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार, भगवान श्री राम के नाम का लगाया गया पुष्प तिलक, बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन किए। मई महीने में शिमला में पर्यटकों का उमड़ा सैलाब, 7 लाख गाड़ियां पहुंची शिमला, जाम से निपटने के लिए शिमला पुलिस ने बनाया मेगा प्लान। दिल्ली में फिट इंडिया मूवमेंट में संडे ऑन साइकिल का आयोजन, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बड़ी संख्या में जुटे लोग, अच्छी सेहत और फिटनेस का संदेश। यूईएफए चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन ने कायम की बादशाहत, पेनल्टी शूटआउट में आर्सेनल को हराकर जीता खिताब, डेस प्रिंसेस स्टेडियम में प्रशंसकों ने जमकर मनाया जश्न।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।
5: आज है ज्येष्ठ पूर्णिमा की पावन तिथि, पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। अयोध्या में सरयू नदी में पवित्र स्नान के लिए लगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, डुबकी लगाकर पूजा पाठ कर रहे हैं। प्रयागराज में भी संगम पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से होता है विशेष पुण्य। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर हरिद्वार और दूसरी जगहों पर भी लोग कर रहे हैं स्नान दान। इस वर्ष ज्येष्ठ माह में अधिक मास में होने के कारण दो पूर्णिमाएं अधिक धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अधिक मास की पूर्णिमा भी मानी गई है काफी फलदायी। पुरुषोत्तम मास और ज्येष्ठ एक साथ पड़ने से बढ़ गया इस बार पूर्णिमा का महत्व। ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत और स्नान दान से आरोग्य, सौभाग्य और सुख समृद्धि का मिलता है वरदान। इस व्रत की मानी जाती है खास महिमा। ये बात महिलाएं रखती हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत, पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक और शांति का प्रदान होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार किया गया, भस्म आरती की गई, महादेव के अद्भुत श्रृंगार में दर्शन। चारधाम यात्रा में अब तक करीब 27 लाख श्रद्धालुओं ने किया दर्शन, पहुंचे 2,40,000 टूरिस्ट व्हीकल्स। 20 मई को चारधाम यात्रा पर पहुंचे करीब 79,000 श्रद्धालु, हेमकुंड साहिब पहुंचे 26,000 से ज्यादा श्रद्धालु। केदारनाथ में एक दिन में 24,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, कुल आंकड़ा 10 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम में अब तक 7.5 लाख भक्तों ने दर्शन किए, एक दिन में 26,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों के साथ साथ लगातार बढ़ रही है वाहनों की संख्या, सुचारू यातायात को लेकर किए जा रहे हैं व्यापक इंतजाम। यमुनोत्री धाम में शनिवार को पहुंचे 12,500 से ज्यादा श्रद्धालु, भक्तों की कुल संख्या 4,00,000 के पार। यमुनोत्री धाम में भक्तों की कुल संख्या 4,00,000 के पार पहुंच गई। एक दिन में 13,000 के करीब पहुंचे श्रद्धालु। रुद्रप्रयाग में इन दिनों चारधाम यात्रियों के साथ पर्यटकों की आवाजाही, जगह जगह बन रहा है जाम की स्थिति। केदारनाथ धाम समेत द्वितीय केदार मद महेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ और पर्यटक स्थल चोपता में उमड़ रहे हैं लोग। रुद्रप्रयाग में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन सतर्क, भीड़ नियंत्रण करने के लिए व्यापक इंतजाम। हेमकुंड साहिब में मौसम बदलते ही बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी, मौसम की मनमानी के बीच भक्तों का जोश आ रहा है। हेमकुंड साहिब में थमने का नाम नहीं ले रही है बर्फबारी, बर्फबारी के बीच सिखों के इस पवित्र तीर्थ स्थल पर उमड़ रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़। यात्रा मार्ग पर फिसलन बढ़ने से पुलिस सेवादार और SDRF कर रही है यात्रियों की मदद। टिकट पर शनिवार के दिन हेमकुंड साहब पहुंचे 2,616 श्रद्धालु। हेमकुंड साहब में शुक्रवार को तड़के सुबह से ही हो रही है जबरदस्त बर्फबारी, पूरे क्षेत्र में बिछी बर्फ की मोटी चादर। मई के आखिरी दिन भी दिल्ली NCR में मौसम ठंडा बने रहने का आसार, गर्मी का असर काफी हद तक रहेगा कम। दिल्ली NCR में आज 36 से 38 डिग्री के आसपास रह सकता है अधिकतम तापमान, लोगों को भीषण गर्मी और लू से रह सकती है राहत। दिल्ली में न्यूनतम तापमान आज 22 से 24 डिग्री तक रहने का आसार। आज भी दिल्ली NCR में प्री मानसून गतिविधियों को तेज बने रहने की संभावना। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज भी जारी कर दिया येलो अलर्ट, हो सकती है हल्की बारिश, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों में फिर हो सकती है बारिश, बदला रहेगा मौसम का मिजाज। कल से तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी शुरू होने से संकेत, अगले हफ्ते मध्य तक 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा पहुंच जाएगा तापमान। दिल्ली में बारिश के बाद हवा में भी साफ देखने को मिल रही है, 5 साल में पहली बार मई में संतोषजनक स्तर पर AQI। तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद दिल्ली में AQI में हुआ सुधार। दिल्ली में शनिवार को दर्ज किया गया मई में 3 साल में सबसे कम AQI। मुंबई के कई इलाकों में आज सुबह से रिमझिम बारिश, मौसम सुहाना। गर्मी से तपती मुंबई को बारिश के बाद मिली राहत, धरती और पेड़ पौधों सहित सभी प्राणियों में तरा। मुंबई में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहने के आसार, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री। मुंबई समेत महाराष्ट्र के इस बार धीमी है मानसून की रफ्तार, अभी प्री मानसून बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून तक महाराष्ट्र में हो सकती है हल्की बारिश। मई के अंत में भी बर्फ से चमका रोहतांग का दर्रा, 13,000 फीट ऊंचाई पर बर्फीला नजारा बरकरार। स्नो स्कूटर और स्कीइंग का मजा ले रहे हैं पर्यटक, बर्फ में सेल्फी और रील्स का बढ़ा क्रेज। कभी बर्फबारी तो कभी फुहारों का सिलसिला जारी, पर्यटक ले रहे हैं लुत्फ। बर्फीले पहाड़ों ने पर्यटकों को किया मंत्रमुग्ध, बादलों के बीच खुलते नजारे आकर्षण का मुख्य केंद्र। मनाली में होटल्स और होम स्टे बुक, पर्यटन कारोबारों में तेजी। लू से राहत पाने कांगड़ा घाटी की ओर उमड़ी तीर्थयात्रियों की संख्या, धर्मशाला और आसपास के इलाकों में बड़ी सैलानियों की आमद। ज्वालाजी और वज्रेश्वरी मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें, बाणगंगा और झीलों में बोटिंग का आनंद ले रहे पर्यटक। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भारी बुकिंग से पर्यटक कारोबार में तेजी। भीषण गर्मी से राहत पाने पहाड़ों का रुख कर रहे सैलानी, मसूरी का सुहाना मौसम बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। होटल्स और पर्यटन स्थलों पर बड़ी भारी भीड़, भीड़ नियंत्रण करने के लिए वीकेंड पर वन वे सिस्टम लागू। गर्मी से राहत पाने के लिए मनाली में बड़ी सैलानियों की भीड़, जिससे जाम की समस्या हो रही है। वीकेंड पर बन रही है भारी जाम की स्थिति, स्थानीय प्रशासन और पुलिस निपटारे में जुटी। मनाली में पीक सीजन में लगातार बढ़ रही पर्यटकों की आमद, लगभग 80-90% तक पहुंच चुकी है होटल्स में ऑक्यूपेंसी। कोटा दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, अखिल भारतीय साहित्य परिषद कार्यक्रम में शामिल। अलीगढ़ में परिवहन विभाग ने आयोजित किया जॉब फेयर, बड़ी संख्या में महिला कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटर्स हुई शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह तक पहुंचेगी मुजफ्फरपुर की शाही लीची, दिल्ली रवाना हुई 2000 कार्टन। विशेष रेफ्रिजरेटर वैन से भेजी जा रही है प्रीमियम क्वालिटी की लीची। नेशनल पार्क से बड़ी खबर, चीता निर्वा और उसके तीन शावकों को बाड़े से खुले जंगल में छोड़ा गया। कुनू में बड़ा हुआ चीतों का कुनबा, अब कुनू के खुले जंगल में कुल चीतों की संख्या 20। बाड़े से खुले जंगल में छोड़े गए तीन शावकों में दो नर और एक मादा। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 76वें संस्करण का आयोजन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। जुड़े फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल्स के जरिए अच्छी सेहत और फिटनेस का संदेश युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल्स समारोह के दौरान निकाली गई साइकिल रैली, बच्चे भी शामिल। नागपुर में सांसद क्रीड़ा महोत्सव का शुभारंभ हुआ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एक्टर सुनील शेट्टी मौजूद रहे। क्रीड़ा महोत्सव में नागपुर के युवाओं और स्थानीय खिलाड़ियों को मिलेगी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका। तमिलनाडु के डिंडीगुल में भव्य रूप से मनाया गया बैकासी विसागम उत्सव। बैकासी विसागम उत्सव पर डिंडीगुल में मंदिरों में भव्य सजावट, मुख्य रूप से भगवान मुरुगन के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है उत्सव। डिंडीगुल की गलियों से निकाली गई भगवान मुरुगन की शानदार शोभा यात्रा। तमिलनाडु के शिवगंगा में वैकासी विसागम उत्सव पर सभी मुरुगन मंदिर में उमड़ी भारी भीड़। मदुरई में भी भगवान मुरुगन की विशेष पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलने कर 6 दिव्य तीर से हुआ था भगवान मुरुगन का जन्म। फिल्म काला हिरण का पोस्टर रिलीज, सलमान खान लॉरेंस विवाद पर बनी है फिल्म 20 जून को टीजर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होंगे रणबीर कपूर के रामायण के एक्शन सीन, फिल्म को मिला प्लैनेट ऑफ द एप्स और द एवेंजर्स जैसी फिल्मों के एक्शन सीक्वेंस को डिजाइन करने वाले एक्शन आर्टिस्ट टेरी का साथ। फिल्म ये जवानी है दीवानी ने पूरे कर लिए रिलीज के 13 साल। 10 जुलाई को मुंबई के षणमुखानंद हॉल में होगा द ड्रीम गर्ल्स डायमंड जुबली कॉन्सर्ट। वेब सीरीज ब्राउन का ट्रेलर हुआ रिलीज, नए अवतार में नजर आई करिश्मा। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की फाइनल भिड़ंत, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के लिए उतरेगी डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी। दोनों ही टीमें एक बार फिर से आईपीएल ट्रॉफी उठाने के लिए बेकरार, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात दोनों ही एक एक बार जीत चुकी हैं खिताब। विराट कोहली और आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार पर सबकी नजर, 2025 में पाटीदार की कप्तानी में भी आरसीबी ने जीता था पहला आईपीएल। आरसीबी के कप्तान पाटीदार के पास धोनी और रोहित के क्लब में शामिल होने का मौका है। गुजरात की तरफ से शुभमन गिल के बल्ले से टीम और फैंस को उम्मीदें हैं क्वालिफायर में 104 रनों की बदौलत फाइनल्स में पहुंची है। ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा सकते हैं गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल, फिलहाल 722 रन के साथ वैभव सूर्यवंशी से 54 पीछे। पर्पल कैप की दौड़ में गुजरात के कागिसो रबाड़ा 28 विकेट के साथ सबसे आगे। उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए वैभव सूर्यवंशी, मंत्री इरफान अंसारी ने ऐलान किया। सूर्यवंशी के जुड़ने से स्वास्थ्य फिटनेस और खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के अभियान को मिलेगी मजबूती। ट्रैक हाउस के राइडर राहुल फर्नीटीस ने इटालियन ग्रांड प्री में अपनी पहली मोटोजीपी स्प्रिंट जीत हासिल की। यूरो इटालियन के 30वें स्टेज का आयोजन हुआ, ओवरऑल लीडर जोनास विंगोगार्ड मुश्किल आखिरी चढ़ाई के दौरान हमला करके जीता हासिल। गिरो में अपनी पहली ही एंट्री में अपना 4वां ग्रैंड टूर जीतने के कगार पर है डेनमार्क के 29 साल के खिलाड़ी। फ्रेंच ओपन में वर्ल्ड नंबर 1 एरिना सबालेंका का जलवा। अब जापान की नाओमी ओसाका के साथ होगा सबालेंका का मुकाबला। चीन के जिलिन प्रांत में पहला ह्यूमन पैट मैराथन कार्निवल शुरू। 400 से ज्यादा परिवार और उनके पैट्स ने 3.6 किलोमीटर की ऑफ रूट मैराथन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगा क्यूटनेस और जूश का मनमोहक मेल। इसको छोटे डॉग्स और बड़े डॉग्स की श्रेणियों में बांटा गया है। विजेताओं को इनाम के तौर पर दी गई है इसकी टिकट और होटल में ठहरने का पैकेज। हॉलीवुड की क्रिकेट स्टार मार्लिन मोनरो को 100वें जन्मदिन के सिलसिले में किया गया याद। ग्लैमर और स्टाइल की सबसे बड़ी प्रतीक मानी जाती हैं मार्लिन मोनरो, अभिनय सुंदरता और करिश्मे का अनोखा संगम। लिथुआनिया के विलनियस में जमा हुए दुनिया भर से आए सूप के शौकीन अनोखे सूप फेस्टिवल में सरिया। बहुत खास होता है लिथुआनिया का गुलाबी सूप। लिथुआनिया के बहुत पसंद किया जाने वाला एक पारंपरिक ठंडा और मलाईदार चुकंदर का सूप है। ये लगातार 4th साल मनाया जा रहा है गुलाबी सूप का यह सालाना जश्न। इस जश्न में नावों की परेड, वेटर रेस और एक विशाल गुलाबी स्लाइड जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
5: समर ब्रेक में लोग बड़ी तादाद में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, यही वजह है कि सरोवर नगरी नैनीताल में इन दोनों जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। झीलों की खूबसूरती, ठंडी हवाएं, प्राकृतिक नजारे सैलानियों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। साथ ही साथ बड़ी संख्या में पर्यटक कैंची धाम भी पहुंच रहे हैं।
6: नौतपा में सुकून की तलाश लोगों को पहाड़ों की ओर खींच रही है। ठंडी फिजाओं, हरियाली और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर सरोवर नगरी नैनीताल इन दिनों मेहमानों से गुलजार है। हालात ऐसे हैं कि शहर की सड़कें हों या दर्शनीय स्थल, हर तरफ रौनक ही रौनक दिखाई दे रही है। वीकेंड आते ही नैनीताल में चहल पहल कई गुना बढ़ गई। सुबह से लेकर देर शाम तक शहर के प्रमुख आकर्षण केंद्रों पर लोगों का तांता लगा रहा। माल रोड पर कदम रखने तक की जगह मुश्किल से मिल रही है।
7: सुहावना मौसम हो रहा है, नीचे लोग इस समय जहाँ गर्मी से तड़प रहे हैं, नैनीताल में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ तो स्वेटशर्ट पहनी हुई है। जो भी टूरिस्ट इस समय यहाँ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। ईद के बाद यहाँ पर को रश भी बढ़ने की हम काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला जो वीकेंड है वो बहुत अच्छा रहेगा, और हम बाकी सारे लोगों को वेलकम करना चाहेंगे कि नैनीताल आए और यहाँ के मौसम का पूरा आनंद।
6: शहर का सबसे बड़ा आकर्षण नैनी झील भी इन दिनों पूरी तरह आबाद है। नाव में बैठकर लोग प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। ठंडी हवाओं के बीच इस झील पर इन सैलानियों की खुशी देखते ही बनती है। सूर्यास्त के समय यहां का दृश्य और भी मनमोहक दिखाई देता है, जिसे अपने कैमरे में कैद करने के लिए लोग उत्साहित नजर आते हैं।
8: जब से हम यहाँ पे आए हैं बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट हो रही है। आई थिंक जो टीचर्स हैं वो भी हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, देयर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, एंड ओवरऑल रिजॉर्ट एंड सारी अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है। मौसम बहुत अच्छा है, लाइक बारिश का मौसम है और बहुत ठंड है, बट ठीक ही है, अच्छा है, बहुत अच्छा। तो बहुत गर्मी पड़ रही है, सही बहुत गर्मी हो जाती है, अगर घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, हमेशा लाइक एसी में रहने का मन करता है, इधर आके बहुत अच्छा लगता है।
9: तो पंखे की भी जरूरत नहीं पड़ती,
8: वही इधर तो बस आप इधर
9: विंडो खोलना काफी है,
8: बहुत एंजॉय किया।
6: दूसरी ओर विश्वविख्यात बाबा नीम करोली महाराज के कैंची धाम में भी श्रद्धा का सैलाब लगातार बढ़ रहा है। देश के अलग अलग राज्यों के अलावा विदेशी नागरिक भी बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हर कोई आध्यात्मिक शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना लेकर यहाँ पहुँच रहा है। पूरे क्षेत्र में भक्ति और आस्था का अनूठा माहौल बना हुआ है। बढ़ती आवाजाही का सबसे बड़ा फायदा स्थानीय कारोबार को मिल रहा है। होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे सब सैलानियों से गुलजार हैं। टैक्सी सेवाओं की मांग में भी तेजी आई है। लंबे इंतजार के बाद बाजार में लौटी इस रौनक ने व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। हालांकि इस बढ़ते दबाव ने प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। माल रोड, भवाली मार्ग, कालाडूंगी रोड और दूसरे एंट्री पॉइंट्स पर कई बार ट्रैफिक की गति बहुत धीमी पड़ जाती है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासनिक टीमें लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
10: नैनीताल और जो आसपास के शहर हैं वहाँ पार्किंग कैपेसिटी बहुत कम है। सीजन के समय पे गर्मी की छुट्टियां हो चुकी हैं, इस समय काफी संख्या में जब टूरिस्ट आते हैं तो जो अंदर की जब पार्किंग फुल हो जाती है उसके बाद जो आउटर पेरिफेरीज में रूसी वन और रूसी टू दो डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेस है उन जगहों पे टूरिस्ट को रोका जाता है। वहां से जो स्थानीय शटल सेवा है उसके माध्यम से नैनीताल शहर के अंदर प्रवेश किया जाता है। यही सिस्टम कैंची धाम में भी लागू किया गया है। भीमताल विकास भवन पार्किंग और भवाली में सैनिटोरियम पार्किंग में यहाँ से श्रद्धालुओं को आगे कैंची धाम के लिए शटल के माध्यम से ही भेजा जाएगा। ये व्यवस्था पूरे पर्यटक सीजन में रहेगी और सभी पर्यटकों से ये अपील की जाती है कि वो इसमें पुलिस का सहयोग करें।
6: मौसम की सुहानी फिजा, पहाड़ों की ताजगी, झील की खूबसूरती और धार्मिक आस्था का संगम नैनीताल को इन दिनों लोगों की पहली पसंद बना रहा है। गर्मी से राहत पाने की चाहत में यहां लगातार बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: IPL का सबसे बड़ा धुरंधर, वैभव के बल्ले ने मचाया बवंडर, उम्र 15 साल बना गेंदबाजों का काल, सिक्सर का बेमिसाल बेबी बॉस, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
12: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search sailing or tell your device to play sailing on TuneIn.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
14: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: का कौन सा राजयोग बड़ी मेहनत के बाद बहुत बड़ी सफलता देता है? शनि का कौन सा राजयोग विवाह के बाद भाग्य चमका देता है? कौन से हैं शनि के राजयोग और क्या है इनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
5: देश भर में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पवित्र नदियों के किनारे उमड़ी भीड़, प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान, दान पुण्य का पूजा अर्चना। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर उज्जैन में बाबा महाकाल का किया गया भव्य श्रृंगार, भगवान श्री राम के नाम का लगाया गया पुष्प तिलक, बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। मई महीने में शिमला में पर्यटकों का उमड़ा सैलाब, 7 लाख गाड़ियां पहुंची शिमला, जाम से निपटने के लिए शिमला पुलिस ने बनाया मेगा प्लान। दिल्ली में फिट इंडिया मूवमेंट में संडे ऑन साइकिल का आयोजन, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बड़ी संख्या में जुटे लोग, अच्छी सेहत और फिटनेस का संदेश। UEFA चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन ने कायम की बादशाहत, पेनल्टी शूटआउट में आर्सेनल को हराकर जीता खिताब, डेस प्रिंसेस स्टेडियम में प्रशंसकों ने जमकर मनाया जश्न।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जो शख्सियत का विस्फोटक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं वो है तो महज 15 साल का, लेकिन क्रिकेट के मैदान में बल्ले से ऐसे ऐसे कीर्तिमान रच रहा है कि बड़े बड़े सूरमाओं की चमक उसके आगे फीकी पड़ती जा रही है।

0: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बीते 27 मई को आईपीएल के एक मुकाबले में बल्ले से विस्फोट की नई इबारत लिखने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी है। जी हां, 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की जो विस्फोटक पारी खेली उसकी धमक में क्रिकेट के कई दिग्गजों के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स दफन हो गए। वैभव ने एक पारी में इतने रिकॉर्ड्स बना दिए कि ये खुद अपने आप में रिकॉर्ड हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वाली पारी। दरअसल पिछले 2 साल से वैभव मैदान में टिककर जिस तरह से आतिशबाजी कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले वर्षों में बल्लेबाजी का कोई ऐसा रिकॉर्ड होगा ही नहीं जो वैभव के नाम ना हो।
1: क्रिकेट के क्षितिज पर उदित हो चुका है एक ऐसा चमचमाता वैभवशाली सूर्य जिसकी चौंधिया देने वाली चमक में क्रिकेट के आसमान के बड़े बड़े सितारे गुम से हो गए हैं। इस वैभवशाली सूर्य ने आईपीएल की महज एक पारी में इतने कीर्तिमान बना दिए हैं कि रिकॉर्ड बुक के हर सफहे पर एक ही नाम चमक रहा है, वैभव सूर्यवंशी। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को हुए एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की ऐसी विस्फोटक पारी खेली कि आईपीएल के 18 साल के इतिहास में बल्ले से बने करीब करीब सारे रिकॉर्ड्स जमींदोज हो गए।
2: वो बच्चा 15 साल का है, इतनी धमाल मचा रखी है। बुमराह को उसने पहली बॉल पे छक्का मारा, हेजलवुड को, हर एक बॉलर को उन्हें पहली बॉल पे छक्का मारा। ऐसा बल्लेबाज मैंने दुनिया में नहीं देखा। वरिंदर सहवाग भी ऐसी पारी नहीं कभी खेल सका जो वैभव सूर्यवंशी खेलता।
1: वैभव की इस अविस्मरणीय पारी को देखकर ऑल टाइम ग्रेट सचिन तेंदुलकर को कहना पड़ गया अभूतपूर्व। बल्ले से वैभव का अतुल्य धमाका पूरी एकाग्रता से देखने के बाद सचिन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का स्विंग असाधारण था। इससे भी बड़ी बात यह है कि पैरों पर फेंकी गई गेंद पर उन्होंने बेहद कुशलता के साथ फ्रंट फुट क्लियर का रूम बना लिया, जिसकी वजह से उन्होंने जहां चाहा गेंद को वहीं पहुंचा दिया। वैभव की ये पारी चमत्कार से कम कुछ भी नहीं। यूं तो वैभव ने पूरे आईपीएल के दौरान अतुल्य बल्लेबाजी की है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को खेली गई उनकी एक अदद पारी क्रिस गेल, डेविड वार्नर, रिली रूसो, शुभमन गिल और सुरेश रैना जैसे दिग्गजों की कई कई पारियों पर भारी पड़ गई है। वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की धमाकेदार पारी में 12 छक्के लगाए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वैभव ने आईपीएल 2026 सीजन में 65 छक्के पूरे कर लिए हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 सिक्सर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। गेल ने आईपीएल 2012 में कुल 59 छक्के लगाए थे। वैभव के इस रिकॉर्ड के भीतर भी एक रिकॉर्ड छिपा हुआ है। गेल ने 59 सिक्सर के लिए 456 गेंदें खेली थी, जबकि वैभव ने सिर्फ 280 गेंदों पर 65 छक्के अपने नाम कर लिए हैं। 280 गेंदों पर 65 छक्कों का मतलब ये हुआ कि कमोबेश हर चौथी गेंद पर सिक्सर। ये रिकॉर्ड तो गेंदबाजों के लिए डरावने सपने की तरह है।
3: Young man is something else. You know, he can hit the best of fast bowlers, the best of slow bowlers into the crowd. His sixes are generally into the crowd. His sixes are not those that just pop over that boundary arrow. And he just makes it look so ridiculously easy.
1: महज 15 साल के वैभव जिस तरह कीर्तिमान पर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि भविष्य में बल्लेबाजी के सारे रिकॉर्ड्स ब्लैक एंड व्हाइट में इनके नाम ही दर्ज मिलेंगे। 27 मई को एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने एचआरएस के खिलाफ सिर्फ 16 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। आईपीएल के नॉकआउट हिस्ट्री में ये संयुक्त रूप से सबसे तेज 50 है। इससे पहले साल 2014 के क्वालिफायर 2 में सुरेश रैना ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 16 गेंदों पर अर्धशतक बनाया था। इतना ही नहीं, वैभव की इस पारी में शुरू के 10 छक्के सिर्फ 24 गेंदों पर ही आ गए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 10 छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। गेल के 10 छक्के साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 27 गेंदों में आए थे। आईपीएल 2026 के दौरान 27 मई को खेली गई ऐतिहासिक पारी समेत कुल 15 पारियों में वैभव 243 की स्ट्राइक रेट से 680 रन बना चुके हैं। टी20 के किसी भी टूर्नामेंट में 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से 600 से ज्यादा रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले साल 2022 में टी20 ब्लास्ट में रिली रूसो ने 192 के स्ट्राइक रेट से 623 रन बनाए थे। वैभव की इस एक पारी में बने रिकॉर्ड्स की फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव के कुल 12 में से 8 छक्के पावर प्ले में ही आ गए थे। दिलचस्प तो ये है कि इससे पहले पावर प्ले में सबसे ज्यादा 7 छक्कों का कीर्तिमान भी हिंदुस्तान के इस वैभवशाली खिलाड़ी के नाम ही के खिलाफ वैभव के कुल 12 में से 8 छक्के पावर प्ले में ही आ गए थे। दिलचस्प तो ये है कि इससे पहले पावर प्ले में सबसे ज्यादा 7 छक्कों का कीर्तिमान भी हिंदुस्तान के इस वैभवशाली खिलाड़ी के नाम ही दर्ज था। वैभव अब आईपीएल में 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियां खेल चुके हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। पर कमाल यह है कि वैभव की 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियों में से 3 आईपीएल के मौजूदा सीजन में ही आई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की अपनी पारी में वैभव ने एक और अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। आईपीएल के इतिहास में 90 प्लस रनों की सभी पारियों में वैभव की पारी सबसे तेज स्ट्राइक रेट वाली पारी बन गई है। वैभव ने 334.48 की स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए। इससे पहले ये रिकॉर्ड रजत पाटीदार के नाम था, जिन्होंने इसी सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 281.81 की स्ट्राइक रेट से 33 गेंदों पर 93 रन बनाए थे। आपको बता दें कि 27 मई वाली पारी को लेकर वैभव आईपीएल 2026 सीजन में सिर्फ पावर प्ले के दौरान 490 रन बना चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड डेविड वार्नर के नाम था, जिन्होंने साल 2016 में पावर प्ले के दौरान 467 रन बनाए थे। ये सारे रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं 15 साल के एक टीनेजर के नाम। सोचिए, 15 साल का ये बच्चा इसी उम्र में अगर क्रिस गेल, डेविड वार्नर, किरोन पोलार्ड और शुमन गिल जैसे महारथियों के रिकॉर्ड्स की कब्रगाह बना चुका है, तो आगे तो वैभव के नाम से ही कीर्तिमान की एक किताब छापनी पड़ जाएगी।
4: बैट्समैन बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में अगर वो अपनी फिटनेस अच्छी मेंटेन करता है तो फिर आने वाला वो फ्यूचर स्टार है इंडिया का।
5: वैभव सूर्यवंशी, उसकी भी बैटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया खेलता है,
6: बहुत
5: नेक्स्ट लेवल बैटिंग है। हम उसकी बैटिंग को नहीं कह सकते, उसकी अब अपनी अलग क्लास है।
7: गर्दा उड़ा दिया वैभव सूर्यवंशी ने,
1: ऐसा नहीं है कि वैभव का बल्ला सिर्फ आईपीएल में ही चला है। इससे पहले भी बिहार के समस्तीपुर का ये लाल ऐसी ऐसी अद्भुत पारियां खेल चुका है कि क्रिकेट के इतिहास में उसकी कोई सानी देखने को नहीं मिलती। इसी साल 6 फरवरी को जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में वैभव ने जो पारी खेली थी, उसे अंडर 19 वर्ल्ड कप के 38 साल के इतिहास की सबसे महान पारी कहा जा रहा है। सबसे महान पारी क्यों कहा जा रहा है, स्टैट देखने से इसका जवाब मिल जाएगा। वैभव ने महज 80 गेंदों पर 175 रन ठोक दिए। वैभव ने इस पारी में 15 छक्के और 15 चौके लगाए, यानी 150 रन सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए अपने खाते में जोड़ लिए। 55 गेंदों पर शतक पूरा किया, बाद के 75 रन सिर्फ 25 गेंदों पर ठोक दिए। महज 71 गेंदों पर 150 रन पूरे कर लिए, जो यूथ वनडे इतिहास का सबसे तेज 150 है। इतना ही नहीं, वैभव ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में कुल 30 छक्के लगाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस के नाम था, जिन्होंने 2022 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में 18 छक्के लगाए थे। पूरे टूर्नामेंट में वैभव 439 रन के साथ सेकेंड टॉप स्कोरर भी रहे। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहने के साथ वैभव ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप से ठीक पहले अंडर 19 एशिया कप में 12 दिसंबर 2025 को यूएई के खिलाफ वैभव ने 95 गेंदों पर 171 रन कूटकर विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए थे। इस आतिशी पारी में वैभव ने 9 चौके और 14 छक्के लगाए थे। कहने की जरूरत नहीं कि सबसे तेज और सबसे कम उम्र से जुड़े रिकॉर्ड्स के सरताज बन चुके हैं वैभव। 24 दिसंबर 2025 को रांची के जेएससीए ओवल ग्राउंड में वैभव ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि कई विश्व कीर्तिमान ध्वस्त हो गए। विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल के खिलाफ हुए मुकाबले में वैभव ने सिर्फ 84 गेंदों पर 15 छक्कों और 16 चौकों की मदद से 190 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी थी। इस मैच में सिर्फ 59 गेंदों पर 150 रन पूरे कर वैभव ने लिस्ट ए मैच में फास्टेस्ट 150 का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के नाम था, जिन्होंने साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 64 बॉल पर 150 रन बनाए थे। तूफान थोड़ी देर के लिए हो तो राहत, नहीं तो कहर बन जाता है। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के मैदान के टिक कर रहने वाले तूफान नहीं बल्कि बवंडर हैं। इसीलिए विरोधियों के लिए कहर नहीं बल्कि महाकहर बन रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैभव 13 साल की उम्र में एक मैच में ट्रिपल सेंचुरी भी लगा चुके हैं। रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में वैभव ने 332 रनों की नाबाद पारी खेली थी। अभी तो ये यूथ इंडिया की रहनुमाई कर रहे हैं, इंतजार कीजिए इनके टीम इंडिया में शामिल होने का। इसकी पूरी संभावना है कि साल 2027 के वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए ओपनिंग करेंगे और बहुत संभव है कि भारत तब वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक लगाएगा।
0: 15 साल के वैभव की कामयाबी क्रिकेट के बड़े बड़े धुरंधरों को भी हैरान करने लगी है। आईपीएल में अपने से दोगुने ढाई गुने उम्र के घातक गेंदबाजों को भी वो न सिर्फ सहजता से खेल रहे हैं बल्कि कायदे से धुलाई भी कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इतनी छोटी उम्र में ही वैभव इतने दिग्गज बल्लेबाज कैसे बन गए। दरअसल इसके पीछे कहानी है एक अधूरे सपने की, जो कभी वैभव के पिता ने देखा था। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन हालात की दुश्वारियों की वजह से उनका ये सपना अधूरा रह गया। पर अपने उसी अधूरे सपने को संजीव ने अपने बेटे वैभव के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया। वैभव के क्रिकेटर बनने की पूरी कहानी आपके दिल को छू लेगी।
1: सर पर कामयाबी के ताज के साथ मन में विनम्रता का संस्कार हिंदुस्तान की संस्कृति का सनातन हिस्सा है। मैच 15 की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी का बेनजीर परचम लहरा चुके वैभव सूर्यवंशी सनातन संस्कार के युगीन संवाहक हैं। जिस मैच में वैभव ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी, उसके प्री मैच शो के दौरान जब उन्होंने सुनील गावस्कर और संजय बांगर को देखा तो दौड़कर उनके पास गए और पूरी विनम्रता के साथ उनके पैर छू लिए। वैभव के संस्कार के निश्चल सादगी देखिए कि गावस्कर और बांगर के साथ मौजूद प्रेजेंटर जतिन सप्रू के भी पैर छूने की उन्होंने पूरी कोशिश की। ये अलग बात है कि जतिन पीछे हट गए।
3: हमारी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है कि हम अपने जो बुजुर्ग है, सीनियर्स है, एल्डर्स है, उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, और वही उन्होंने किया। सिर्फ मेरे पास ही नहीं आए थे वो, बस मेरे बाजू में संजय बांगर थे और जतिन सप्रू थे, उनके पास भी आए थे और मुझसे थोड़ा सा रुककर मुझसे कुछ अपेक्षा कर रहे थे कि मैं कुछ उनको बोलूं, शायद अपेक्षा कर रहे थे, मैं ये नहीं कहूंगा, शायद अपेक्षा कर रहे थे। तो मैंने उनको सिर्फ यही कहा, लगे रहो, क्योंकि जब वो लगे रहेंगे तो फिर वो बल्ला मतलब बल्ला लगता रहेगा और छक्के भी लगते रहेंगे।
1: उम्र के लिहाज से वैभव की बेनजीर कामयाबी इस बात की मुनादी कर रही है कि आने वाले वक्त में कीर्तिमान की किताब के हर सफहे पर बिहार के इस लाल का नाम दर्ज मिलेगा। पर वैभव नाम के इस प्रदीप्त दिए की रोशनी से सराबोर होने वाले लोगों को उस तेल और बाती के बारे में भी जानना चाहिए जो खुद गुमनाम रहकर अपने दिए को जगमग कर रहा है। वैभव की इस बेनजीर कामयाबी के पीछे हाथ है उनके पिता संजीव सूर्यवंशी का, जो कभी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का ख्वाब सजोए हुए थे, पर खुद की जो हसरत अधूरी रह गई उसे उन्होंने अपने लाल में प्रत्यारोपित कर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक पिता के अनोखे त्याग की खामोश सदाएं समस्तीपुर जिले के जर्रे जर्रे में जज्ब है।
6: वास्तव में एक पिता का जो त्याग था, तपस्या था, जिद था कि हमको किसी भी तरह जो मैं हासिल नहीं कर सका वो मैं अपने बच्चे को उस मुकाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। वो एकाकी भी देखा कि लोगों से मिलना तक लोगों में, क्योंकि जुनून सवार था कि मैं अपने बेटे को उस मुकाम तक पहुंचाऊं, तो लोगों से मिलना भी बंद किया। उस बीच में कई ऐसी मुसीबतें भी आईं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया।
1: पांच साल के बच्चे को पढ़ाई से दूर कर क्रिकेट के मैदान में पसीना बहाने के लिए खड़ा कर देना किसी भी पिता के लिए आसान फैसला नहीं होगा। पर संजीव सूर्यवंशी ने कलेजे पर पत्थर रख कर ये फैसला लिया। समस्तीपुर जिले की ताजपुर पंचायत में जहां क्रिकेट का कोई नाम लेवा नहीं था, वहां पांच साल के बेटे की प्रैक्टिस के लिए सारी व्यवस्था कर दी। यहां तक कि कुछ हम उम्र और बड़े बच्चों को भी चॉकलेट मिठाई का प्रलोभन देकर साथ जोड़ लिया ताकि वे बॉलिंग करें और वैभव लगातार बैटिंग की प्रैक्टिस करता रहे। पांच साल से सात साल यानी दो साल तक गांव में ही वैभव को दिन रात प्रैक्टिस कराने के बाद एक दिन संजीव सूर्यवंशी को इल्हाम हो गया कि अब अगले लेवल की प्रैक्टिस का वक्त आ गया है, लिहाजा बेटे को लेकर निकल गए ताजपुर से 12 किलोमीटर दूर स्थित पटेल मैदान में, जहां ब्रजेश झा क्रिकेट एकेडमी चलाते थे। क्रिकेटर बनाने का जुनून ऐसा था कि संजीव सूर्यवंशी को जब लगा कि रोजी रोटी के लिए चलने वाला बिजनेस व्यवधान बन रहा है तो बगैर देरी के उसे बंद कर दिया।
8: गार्डियनों का उनका सपोर्ट रहा है कि अपने बच्चे को इतना ज्यादा टाइम किल करते थे, अपने साथ लाना ले जाना, बच्चों के साथ अपना बिजनेस छोड़ के बच्चे के प्रति इतना एक फोकस, गार्जियन का भी कहीं ना कहीं टारगेट था कि हमारा बच्चा ऊपर खेले, और भगवान की दुआ से बच्चा वो मुकाम पर हासिल किया।
1: इसमें कोई संदेह नहीं कि 7-8 साल की छोटी उम्र में ही वैभव अपने पिता की उम्मीदों की कसौटी पर लगातार खरे उतर रहे थे। जब तक सूर्य की रोशनी धरा पर मौजूद रहती, वैभव बल्ले को दामन से दूर नहीं होने देते। पिता और माँ को छोड़कर घर के बाकी सदस्यों को वैभव की आदत कई बार नागवार गुजरती थी। दादी ने तो कई मौकों पर ऊब कर वैभव की पिटाई भी कर दी थी, पर बचपन में वैभव की पिटाई के वो वाकये आज दादी के लिए सुनहरी यादें बन चुकी हैं।
9: डांटते थे,
10: अच्छा,
9: कभी कभी उसको मारते थे, दौड़ते थे उस पर, फिर भी कहता था नहीं दादी हमको अच्छा लगता है, हम खेलेंगे। हम कहे ठीक है बाबू तब खेलो। जब धीरे धीरे जब दल सिंह सराय गया, बेनी पट्टी, उसके बाद आपको क्या कहते हैं बेगूसराय, जब हम देखते रहे कि यह अच्छा खेल में उतर रहा, तब से मेरा भी मनोबल और मन ये हुआ कि हाँ यह खेले।
1: बचपन में वैभव की बैटिंग की खटखट से ऊब जाने वाली दादी का हृदय आज इस बात को जानकर गदगद है कि उनका पौत्र क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़कर आईपीएल के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाला खिलाड़ी बन गया है। समझे कौन रहस्य प्रकृत का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि वैभव को पटना के जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में डालने के लिए संजीव सूर्यवंशी को जमीन तक बेचनी पड़ी थी? दरअसल संजीव सूर्यवंशी को जब ये लगने लगा कि उनका बेटा समस्तीपुर स्थित पटेल मैदान के स्टैंडर्ड से आगे निकल चुका है, तो पटना में जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन कराने का फैसला किया। एकेडमी की फीस और उसके बाद समस्तीपुर से हर रोज पटना आना जाना कॉस्टली अफेयर था, इसीलिए संजीव सूर्यवंशी बेटे वैभव को लेकर हर अल्टरनेट डे पर पटना जाने लगे। जेनेक्स एकेडमी चलाने वाले पूर्व रणजी खिलाड़ी मनीष ओझा भी वैभव के पिता के त्याग और तपस्या को याद कर भावुक हो जाते हैं।
10: माँ का रोल रहता था बच्चे को तैयार करने से लेके उसको, और जब इधर से थक के जाता था तो उसको फिर रिकवरी में, चाहे वो खाने के सेंस में हो, उसको प्यार के सेंस में हो, उसको रेस्ट के सेंस में हो, और पिता का त्याग इस सेंस में था कि अर्ली सारे बोझ को वो अपने कंधे पर उठा रहे थे, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और फिर भी वो जो वो अपने हैसियत से ज़्यादा बढ़ के उन्होंने उस बच्चे के लिए किया, और हर एक वो सुविधा उस बच्चे के लिए उन्होंने अरेंज किया खेल के प्रति कि वो आज इस मुकाम को प्राप्त कर सके।
1: पिता ने अपनी हैसियत की हदों को पार कर वैभव के लिए जमीन तैयार की, और वैभव ने भी पिता के इस त्याग की कीमत को शिद्दत से महसूस करते हुए मैदान पर पसीना बहाने में कोई कोताही नहीं की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था और वैभव को पटना ले जाना ले आना संभव नहीं रहा, तो संजीव सूर्यवंशी ने अपने ताजपुर स्थित घर के बाहर ही नेट प्रैक्टिस के लिए पिच बनवा दी ताकि वैभव की प्रैक्टिस खंडित ना हो।
11: लॉकडाउन में एक्चुअली पूरा बिहार बंद था, तो यहाँ पे पिच का जनरेट किया गया भैया के द्वारा, और टर्बिकेट और सीमेंटेड लॉकडाउन में लोग घर से नहीं निकल रहे थे, उस वक्त में भी इसका प्रैक्टिस सेशन लगातार यहाँ पे चलता रहा।
1: बेटे को क्रिकेटर बनाने का ये जुनून अपने आप में अनूठा है, इसका नतीजा सबके सामने है। आज वैभव के बल्ले से बनने वाले विश्व रिकॉर्ड्स संजीव सूर्यवंशी की दुनिया को रंगीन सपनों से भी ज्यादा सुहावन बना रहे हैं। वैभव की विराट बुलंदी का आलम यह है कि पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट पर संजीव सूर्यवंशी और उनकी पत्नी से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। देश का गौरव बन चुके तेजस्वी पुत्र का पिता होने के लिए बधाई देते हैं। पिता ने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए त्याग तपस्या की, तो बेटा भी दो कदम आगे बढ़कर अपनी विराट उपलब्धियों से हक अदायगी कर रहा है। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उसके 14 साल के बेटे को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2025 को वैभव को राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। साफ है कि पिता के संकल्प और बेटे की जीतोड़ मेहनत का पावन संगम क्रिकेट के मैदान पर चमत्कारिक धारा बनकर नमूदार हो रही है।
0: तो बंदे में है दम में आज आपने वैभव सूर्यवंशी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: कौन सा राजयोग बड़ी मेहनत के बाद बहुत बड़ी सफलता देता है? शनि का कौन सा राजयोग विवाह के बाद भाग्य चमका देता है? कौन से हैं शनि के राजयोग और क्या है इनका प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
2: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
3: Jack, you're killing me.
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़।

0: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
1: Gone! Home run!
0: NHL. College basketball.
2: He shoots it immediately.
3: And he makes it in.
0: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
4: One lap to go.
0: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
6: Thank God I get to wait.
5: And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: दूत वही श्रेष्ठ है जो स्वामी के नाम को बढ़ाए और पूत वही श्रेष्ठ है जो पिता के नाम को आगे बढ़ाए. और जितने यहां पर पुत्र बैठे हैं, युवान बच्चे बैठे हैं, युवान बहनें बैठी हैं, हम सभी युवान बच्चों से, युवान बेटियों से और बहनों से और भाइयों से प्रार्थना करेंगे. मेरे पागलों, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाने जाएं. बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें.
10: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
11: Sage University, transforming your passion into profession.
12: आज भी दिल्ली एनसीआर में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज बनी रहने की संभावना. कई इलाकों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने के आसार. आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट. मई महीने में शिमला में पर्यटकों का उमड़ा सैलाब. 7 लाख गाड़ियां पहुंची शिमला. जाम से निपटने के लिए शिमला पुलिस ने बनाया है मेगा प्लान. लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने संभाली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की कमान. गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ग्रहण किया कार्यभार. जनरल अनिल चौहान 30 मई को हुए सेवानिवृत्त. देशभर में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पवित्र नदियों के किनारे उमड़ी भीड़. प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान, दान पुण्य करके पूजा अर्चना. ज्येष्ठ पूर्णिमा पर उज्जैन में बाबा महाकाल का किया गया भव्य श्रृंगार. भगवान श्री राम के नाम का लगाया गया पुष्प तिलक. बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन किया. दिल्ली में फिट इंडिया मूवमेंट में संडे ऑन साइकिल का आयोजन. मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बड़ी संख्या में जुटे लोग. अच्छी सेहत और फिटनेस का संदेश. यूईएफए चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मन ने कायम की बादशाहत. पेनल्टी शूटआउट में आर्सेनल को हराकर जीता खिताब. डेस प्रिंसेस स्टेडियम में प्रशंसकों ने जमकर मनाया जश्न.

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे शनि के शुभ योग कौन से हैं और इनका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 31 मई 2026, दिन रविवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, दोपहर 2 बजे

मिनट तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, शाम के 4:12 तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 31 मई 2026 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है वृषभ राशि में, बुध बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मेष राशि में, और इसी आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम शनि के शुभ योगों की बात करें उसके पहले ये जानते हैं कि शनि का हमारे जीवन में रोल क्या है, शनि की हमारे जिंदगी में भूमिका क्या है। देखिए, शनि को नवग्रहों में सेवक कहा जाता है। सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति, उसी तरह से शनि सेवक है। इसको न्याय का अधिपति भी कहा जाता है, न्याय का देवता भी मानते हैं। और शनि अनुशासन और कठोरता का ग्रह माना जाता है। शनि कानून, नौकरी, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी और संघर्ष से संबंध रखता है। अगर शनि के शुभ योग कुंडली में हैं, तो ये जीवन को प्रगति की तरफ ले जाते हैं, जीवन में उन्नति करवाते हैं और संघर्ष थोड़े कम कर देते हैं। हालांकि शनि के शुभ योगों का प्रभाव थोड़ा विलंब से होता है। चंद्रमा के शुभ योग हों, मंगल के शुभ योग हों, तो उसका प्रभाव जीवन में जल्दी होगा। शनि के शुभ योग अगर कुंडली में हैं, तो इसका प्रभाव थोड़े विलंब से होता है, इसका प्रभाव आने में समय लगता है। शनि के शुभ योगों पर हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष वृषभ मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में समस्या रह सकती है, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, करियर में बड़ा निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
मिथुन राशि, मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताओं से राहत मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शनि का जो पहला शुभ योग है उसका नाम है शश योग। क्या होता है शश योग? जो है वो शनि का सबसे बड़ा राजयोग है और ये शनि का पंच महापुरुष योग है। शनि अगर कुंडली में मकर, कुंभ या तुला राशि में बैठा हो तो शश नामक महायोग बन जाता है, लेकिन इसके लिए शनि लग्न से केंद्र में होना चाहिए। अगर शनि लग्न से केंद्र में हो, तुला, मकर या कुंभ राशि में हो, तो कुंडली में शश योग बन जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपार धन संपत्ति और अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और ऐसे लोग बहुत नीचे स्तर से उठकर जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। ये योग धनवान भी बनाता है, करियर में, जीवन में बड़ा नाम बनाता है, बड़ी सफलता देता है, लेकिन चूंकि शनि का राजयोग है इसीलिए जीवन में संघर्ष के बाद ही व्यक्ति को बड़ी सफलता मिल पाती है। अगर आपकी कुंडली में शश योग है तो अपने से छोटों का हमेशा सम्मान करिए। जो लोग आपसे निर्बल हैं, दुर्बल हैं, पद में, प्रतिष्ठा में, स्टेटस में, उनका ध्यान रखिए और उनका सम्मान करिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। शनि के दूसरे शुभ योग की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम आज टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, संतान की चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं,
मानसिक चिंता समाप्त होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शनि का दूसरा शुभ योग है सप्तमस्थ शनि, यानी सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि। शनि सप्तम भाव में कुंडली में अगर बैठा हो तो ये भी शनि की एक शुभ स्थिति है। शनि सप्तम भाव में दिग्बली हो जाता है और यहां पर बैठा हुआ शनि सामान्यतः व्यक्ति को धनवान बनाता है। सप्तम भाव में शनि बैठा हो तो व्यक्ति धीरे धीरे बहुत सारा पैसा कमाता है। हालांकि सप्तम भाव में शनि बैठा हो तो सामान्यतः विवाह में विलंब होता है। अपने से ज्यादा बड़े उम्र की लड़की या लड़की से विवाह होता है या किसी ऐसे लड़की या लड़के से विवाह होता है जो दिखने में ज्यादा उम्र का दिखाई देता हो। सप्तम भाव में शनि के होने पर व्यक्ति कर्मठ होता है और अपने परिश्रम से आगे बढ़ता है। और ज्यादातर देखा गया है कि जिनके सप्तम में शनि हो ऐसे लोगों का भाग्य विवाह के बाद उदित हो जाता है। सप्तम भाव में जिनके शनि हो लोहे का, मशीनरी का, कंस्ट्रक्शन का, पॉलिटिक्स का ऐसा काम कर सकते हैं या ऐसे क्षेत्रों में जा सकते हैं। सप्तम के शनि की मुश्किल सिर्फ इतनी है कि विवाह में विलंब कराता है और अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति से विवाह कराता है, ऐसा देखा गया है। अगर आपकी कुंडली के सातवें भाव में शनि है तो नियमित रूप से शनि देव की पूजा करिए। आप अपने करियर में और धन के मामले में ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की बाधाएं दूर होंगी, परिवार में कोई शुभ कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, करियर में लाभ के योग हैं, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा।
देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनि का राजयोग बनता है तो आप ये मत समझिए कि जीवन में चीजें आसानी से मिलेंगी। मिलेंगी जरूर, बहुत बढ़िया मिलेंगी और स्थाई मिलेंगी, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। शनि का जितना बड़ा राजयोग होगा, मेहनत उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन राजयोग भी बहुत बड़ा होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली में शनि का राजयोग है, वो आपको फल नहीं दे रहा है, तो आप अपने खान पान को पवित्र करिए, नियमित रूप से शनि देव की पूजा करिए और जितना संभव हो सके लोगों की सहायता करिए, अन्न का, वस्त्र का, भोजन का दान करिए। अगर आप इतना काम रेगुलरली नियमित रूप से करने लगें तो शनि का राजयोग आपको फल अवश्य देगा। तो आज हमने बात की शनि के शुभ योगों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। पति पत्नी को आग्नेय कोण के कमरे में, यानी साउथ ईस्ट के कमरे में रहने से बचना चाहिए। अगर पति पत्नी आग्नेय कोण के कमरे में रहेंगे तो बेवजह के विवाद और बेवजह के झगड़े परेशान करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 31 मई 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल सूर्य देव को रोली मिला हुआ जल अर्पित करें। इसके बाद लोटे के किनारे पर लगी हुई रोली अपने मस्तक पर लगा लें। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake up. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
2: विकास की तस्वीर, खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: अंजना नंदन श्री हनुमान जी महाराज लंका पहुंच गए। लंका में अशोक वाटिका में है, अशोक वाटिका में माता सीता जी अशोक के पेड़ के नीचे शोक में बैठी। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे शोक में बैठी। अब शोक को मिटाएं कैसे, ये बड़ी चिंता। धन्य है हनुमान जी महाराज श्री वीर बजरंग बली, मानो क्या अद्भुत संकेत दिया। अशोक वृक्ष से माता सीता कह रही, हे अशोक तू अपने नाम का कम से कम लिहाज तो रख, हमारे शोक को मिटा, नाम अशोक है, मैं शोक में हूं, कम से कम अपने नाम की इज्जत तो रख। तो हनुमान जी को लगा शोक मिटाने वाला नाम तो एक ही है, वो राम नाम है, और हम राम कहेंगे तो ये पूछेंगी कौन है। तो हनुमान जी ने एक जुगति अपनाई। जुगति क्या अपनाई? जो मुद्रिका लाए थे वो हनुमान जी ने गिराई।

उस मुद्रिका में है राम। और जैसे ही इतना कहा माता सीता जी ने, तुरंत हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई, मुद्रिका में लिखा राम। और जैसे ही सीता माता की नजर मुद्रिका पर अंगूठी पर पड़ी तो अंगूठी को देखते ही मुंह से निकला राम राम राम राम। ऊपर बैठे हनुमान जी बोले बन गया काम। अब बन गया काम, राम राम कहा अब काम बन गया। और हनुमान जी मेरे पागलो एक बात तुम याद रखना, आराम कौन कौन पाना चाहता हाथ उठाओ, आराम कौन कौन पाना चाहता है किसी भी चीज में, रोग में, बाधा में, जिंदगी में, पीड़ा में, समस्याओं में, आराम कौन कौन पाना चाहता हाथ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे उन्हें आराम लगा है क्या भाई, पेट ही खराब हो तो उठाओ। चलो आराम चाहिए, एक हमारे पास मंत्र है, कहो तो दें, दें। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, पूछो क्या, आ राम की शरण में, राम राम कर। आ राम की शरण में, राम राम कर, इससे मिलेगा आराम। तो जैसे ही माता सीता जी ने कहा राम राम राम, हनुमान जी बोले बन गया काम। लेकिन माता जानकी जी ने मुद्रिका तो पहचान ली, चकित चिताओ मुद्री पहचानी, पर ये मुद्री आई कहां से? किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप सामने चले जाओ, हनुमान जी बोले हम जा नहीं सकते सामने, क्यों? राम जी ने रोका है, रोका हां। माता जानकी जी का जब ब्याह हुआ और अयोध्या आई तो अयोध्या में महलों के खंभों में बंदरों की आकृति बनी थी, वो दिखने में सजीवित लगते थे, उनको देखकर माताजी डर गईं पहले ही दिन। तो माता कौशल्या ने अंक में भर के कहा बेटी क्या हुआ? माता सीता बोली ये बंदर हैं, हमें इनको देखकर डर लग रहा। माता जानकी जी बोली, माता कौशल्या बोली ये बंदर तो हैं पर असली नहीं है, नकली है। तो जब वन को जाने लगे तो माँ कौशल्या ने राम जी को यही समझाया बेटा जो आकृति देख करके डर जाती है उसको वन में मत ले जाओ, वहां तो जिंदा बंदर मिलेंगे, क्या हाल होगा। तो हनुमान जी को वही बात समझाई राम जी ने, सुनो जाना तो पर डायरेक्ट मत जाना, जब वो छवि देखकर डर जाती तो तुम्हें तो देखकर और डर जाएंगी, वानरा राम धीसम, आप तो वानरों के राजा हो तो सामने डर जाएंगी, इसलिए सामने मत जाना, डायरेक्ट मत जाना। इसलिए हनुमान जी ने ऊपर से ही एक उपाय किया, वो उपाय क्या था सुनो,

हनुमान जी लंका में पेड़ के ऊपर ही बैठकर कथा सुनाने लगे, क्या करने लगे? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, कथा सुना रहे। तो किसी ने पूछा कि आप पेड़ पे क्यों बैठे? बोले कथावाचक ऊपर ही बैठता है, श्रोता नीचे बैठे, इसलिए हम ऊपर बैठे। अच्छा, बहुत अच्छी बात, पर एक बात और बताओ। हाँ, बोले आप कथावाचक हो? बोले बिल्कुल है। हनुमान जी बोले कथावाचक ऐसे वैसे नहीं, खानदानी। बोले खानदानी? हाँ, खानदानी कथावाचक क्या होता है? बोले हम पहले से ही कथा करते आ रहे। हनुमान जी से किसी ने कहा, तो किसी ने कहा कि कब से कर रहे? हनुमान जी बोले हमारा एक और रूप है। बोले कौन सा? बोले रुद्र रूप। शंकर अवतार में तो जब राम जी जन्म लेते तब हम कथा ही सुनाते, उस रूप में भी हम कथा सुनाते, इस रूप में भी हम कथा सुनाते हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पायसु समय सिवासन भाखा। तो बोले उस रूप में भी हम कथा करते, इस रूप में भी कथावाचक है, तो हम खानदानी कथावाचक है, क्योंकि शंकर जी ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही शंकर सुमन। केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग। तो हम तो खानदानी कथावाचक हैं। तो किसी ने कहा कि लंका में और कथा? बोले हाँ। बोले एक बात बताओ, लंका में यदि कथा कर ही रहे तो पेड़ में छिपे क्यों? छुपे क्यों? हनुमान जी बोले लंका में छुपे ही रह के कथा कर ले, वही बहुत है। आओ, आओ, आओ, लंका में छुप के ही कथा हो जाए वही बहुत है, वरना रावण निपटा देगा। कथा बचाई में मिलती है दक्षिणा, मिलेगी मौत। इसलिए छुपके ही जान, इसलिए हनुमान जी छुप करके बैठे हुए कथा सुना रहे। रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जहां कथा सुनाना प्रारंभ की, माता जानकी जी का दुख भाग गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जहां दुख भागा, माता जानकी जी ने ऊपर देखा, कथा सुंदर है पर कथावाचक नहीं दिख रहा। कथा तो सुंदर है, राम जोर से बोलो। जहां दुख भागा, माता जानकी जी ने ऊपर देखा, कथा सुंदर है पर कथावाचक नहीं दिख रहा। कथा तो सुंदर है भाई, कोई बोल रहा हो पर दिख ना रहा हो, तो मन में आने ही लगता भाई कहां हो, कौन हो, दिखो तो। हनुमान जी की तरफ, हनुमान जी ऊपर छुपे बैठे कथा सुना रहे। माता जानकी जी बीच में ही बोली, भाई कथा तो बड़ी सुंदर है, कथावाचक कौन है, दर्शन दो। हनुमान जी बोले माता कथा ही सुन लो, कथावाचक देखने लायक नहीं। तो माता जानकी जी बोली क्यों? हनुमान जी बोले माँ केवल कथा ही सुंदर है, कहने वाला तो बंदर है। वानराराम भीषम, कहने वाला बंदर। माता जानकी जी ने कहा फिर भी सन्मुख आओ। जैसे ही इतना कहा तो तब हनुमंत निकट चली गया। जैसे ही निकट गए तो हनुमान जी बंदर, और जानकी माता ने जैसे ही देखा तो माता जानकी जी ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी ने माता जानकी जी को देखा। फिर बैठी मन विस्मय भयाऊ, मन में विस्मय हो गया। क्या विस्मय? कहीं रावण की कोई चाल तो नहीं, कोई रावण की करतूत तो नहीं है, चाल तो नहीं, चाल। तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। देखो दूत कैसा होना चाहिए मेरे पागलो, याद रखना, दूत और पूत, पूत मतलब बेटा, याद रखना। दूत वही श्रेष्ठ है जो स्वामी के नाम को बढ़ाए, और पूत वही श्रेष्ठ है जो पिता के नाम को आगे बढ़ाए। और जितने यहां पर पुत्र बैठे हैं, युवान बच्चे बैठे हैं, युवान बहनें बैठी हैं, हम सभी युवान बच्चों से, युवान बेटियों से और बहनों से और भाइयों से प्रार्थना करेंगे, मेरे पागलो, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाने जाए, बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। इसलिए तुम ऐसा नाम कमाना, ऐसी उपलब्धि पाना, ऐसा यश कमाना कि तुम्हारी माँ या तुम्हारा पिता किसी गली से निकले तो तुम्हें देखकर, उनको देखकर के लोग कहें ये फलाने के पिताजी चले जा रहे हैं, माताजी चले जा रहे हैं। ऐसे पूत होना चाहिए। धन्य है हनुमान जी, क्या परिचय देते हैं। हनुमान जी से माता जानकी जी ने पूछा कौन हो?

ब्रह्मा हम राम जी के दूत हैं। अच्छा, राम जी के दूत हो, एक बात बताओ। हाँ, नर बानर हूं संग कहूं कैसे? ये तुम बानर, राम जी नर, दोस्ती कैसे हो? कारण बताओ। हनुमान जी ने पूरा कारण बताया, लेकिन हनुमान जी ने बताया कैसे, ये बड़ा महत्वपूर्ण, इसका अर्थ का बड़ा महत्वपूर्ण होता बोलने का, कि कैसे बोलना चाहिए ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे समझो, किसी लड़की के लिए लड़का देखने जाओ तो यदि कोई पड़ोसी कह दे कि भाई, कोई पूछे कि क्यों अमुक अमुक व्यक्ति का लड़का कैसा है, हमें बेटी का विवाह करना है, यदि वो कह दे खाते पीते घर के हैं, तो समझ जाना अमीर हैं। पर कोई कह दे पीता खाता है देखो, एक शब्द ऊपर नीचे किया, मामला बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया है? तो प्रेजेंटेशन, बोलने से प्रेजेंटेशन का बड़ा फर्क पड़ता है, कि कैसे बोल रहा, कैसे प्रस्तुतिकरण है, इसका बड़ा प्रभाव। यही कथा हम गा रहे, यही कथा कोई और भी गावे, तो सबकी अपनी प्रेजेंटेशन का महत्व होता है भाई, अपने अपने भाव का अर्थ होता है। तो ऐसे ही शब्दों का हनुमान जी ने प्रेजेंटेशन कैसी की, जरा सुनो। हनुमान जी ने नर बानरों का संग कैसे हुआ ये बताया, कैसे बताया,

0: वचन बोले तो प्रेम पूर्वक। और प्रेम, अच्छा प्रेम की पहचान क्या है? जब प्रेम होता ना तब बातें नहीं, जवान नहीं बोलती, आंखें बोलती हैं। और जिससे प्रेम होता है उससे आंखें बोलती हैं। और मेरे पागलो, हनुमान जी जब बोलने लगे तो आंखों से आंसू बहने लगे, नेत्रधार बहने, नेत्रों से आंसू। अच्छा हंसा तो जा सकता पर जबरदस्ती रोया नहीं जा सकता। दो कारण से ही रो सकते, या तो प्रेम में ज्यादा खुशी में या ज्यादा दुखी में। कई लोग ऐसे उन्हें रोना आता ही नहीं, जा सकता पर जबरदस्ती रोया नहीं जा सकता। दो कारण से ही रो सकते, या तो प्रेम में ज्यादा खुशी में या ज्यादा दुखी में। कई लोग ऐसे उन्हें रोना आता ही नहीं, पर जो परमात्मा से प्रेम करते उन्हें रोना पड़ता है। जिन्हें परमात्मा से प्रेम का अर्थ है रोना, भक्ति का अर्थ है रोना, इसका पता तो आंखों से ही लगता। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, आंखों के आंसू को देखकर माता जानकी जी पहचान गई, ये साधारण नहीं है, ये जो कह रहे सच कह रहे। इसलिए माता जानकी जी ने कहा, माता जानकी जी के उपजा मन विश्वास, विश्वास भरोसा जाग गया। अंत में माता जानकी जी ने मान लिया, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास, ये राम जी का दास है। जैसे इतना कहा तो माता जानकी जी ने हनुमान जी से पूछा, एक बात बताओ, जितना हम प्रभु को याद करते हैं, प्रभु तो नहीं करते हो, वो तो व्यस्त रहते, उनको हमारी याद आई? बताओ, हमें इतने दिन हो गया आज तक खबर नहीं ली। इतना प्रेम करते थे राम जी हमसे कि जब एक कौवा का रूप धारण करके जयंत आया तो उसके पीछे तीर लगा दिया, और हम इतने दिन से यहां रावण के पीछे कुछ नहीं लगाया। लगता है भगवान हमें भूल गए, भगवान ने हमें विसार दिया। अच्छा और कोई होता तो यही कहता कि आप ठीक कह रही, हम समझाएंगे, हम उन्हें समझाएंगे, ठीक से समझाएंगे, आप चिंता ना करो। लेकिन धन्य है हनुमान जी, दूत ऐसा होना चाहिए। हनुमान जी बोले, माँ जितना आप प्रभु को याद करती हो, प्रभु भी आपको उससे ज्यादा याद करते हैं। माता जानकी जी ने कहा, पर जयंत आया था तो तब तो तीर पीछे लगा दिया था, अब तो रावण हमें ले गया, आज तक पीछे नहीं लगाया। हनुमान जी खड़े होकर के बोले, माँ हम भी तो राम जी के ही तीर बनकर आए, तीर बन करके ही आए, रावण के पीछे भी तीर लगा दिया। माता जानकी जी बोली, कौन सा तीर? हनुमान जी बोले, आपके पुत्र रूपी दास रूपी तीर को राम जी ने लगा दिया। और बात भी सही है, जिमी अमोग रघुपति कर बाना, यही भांत चलो हनुमाना। जैसे राम जी का बाण ऐसे हनुमान जी चले, तो बात बिल्कुल सही कही। हनुमान जी के पास भक्ति है, क्या है बोलो, अरे जोर से तो बोलो, भक्ति है। भगत जी एक बात बहुत सिद्धांतिक रूप से है, आप भगवान के पास जाएंगे तो भगवान आपको दो चीजें सामने रख देंगे, एक माया एक भक्ति। जब भी आप भगवान के पास जाएंगे भगवान दो चीजें सामने रखेंगे, एक माया एक भक्ति। भगवान आपसे कहेगा आप चुनो, ज्यादातर लोग माया को चुनते हैं, बुरा ना मानना, यहां छत्तीसगढ़ में जितने यहां कोरबा में कथा में बैठे, ज्यादातर लोग भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते। भगवान को नहीं चाहते, ना ना ना, भगवान से चाहते। ये भक्ति नहीं है, जो भी तुम नारियल में अर्जी लगाओ, उतना लड़का की शादी हो जाए, मोड़ी ठीक हो जाए, टुरी टुरामन की बुद्धि ठीक हो जाए, और जो है मकान बन जाए, दुकान हो जाए, ये भगवान को ऊपर कहो कि आज तो हम भक्ति करे आए, ठटरी के मरे हलवा भक्ति करे आए, ये भक्ति नहीं है। दो प्रकार से होता है, या तो तुम भगवान को चाहो या भगवान से चाहो। भगवान से चाहोगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा, और भगवान को चाहोगे तो तुम दुनिया को नचाओगे। तो भगवान के पास जाओगे तो दो वस्तुएं मिलेंगी, एक माया एक भक्ति। भगवान कहेंगे मांगो, तो आप क्या लोगे? बोलो बोलो क्या लोगे? माया के भक्ति दमादो, तुम बताओ। ज्यादा गहरी कथा नहीं हमें सुनानी चाहिए, पता लगे इनकी जिंदगी आज ही शुरू हुई, आज ही वैराग्य जग जाए। फिर भी दमादो, कोई बात नहीं, सुनो सुनो। क्या मांगोगे भगवान से? माया के भक्ति। अरे बोला, हाँ भक्ति, भक्ति कौन कौन मांगना चाहता? हाथ उठा। वाह, सब सबरी मीराबाई, सब छत्तीसगढ़ में आ गए। अच्छी बात, चलो बहुत अच्छी बात, ये तो प्रसन्नता की बात है कि आप लोग समझ पा रहे। हाँ, तो भगवान से मांगोगे माया या भक्ति, तो भगवान से पूछा जाए कि माया में क्या फायदा और भक्ति में क्या फायदा, तो भगवान एक उत्तर देंगे। पूछो क्या? भगवान कहेंगे सुनो बेटे, यदि तुम्हें खुद नाचना है तो माया ले लो, यदि तुम्हें हमें नचाना है तो भक्ति ले लो।
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
6: पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: Good news today.
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी थी,
2: पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ है यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ। अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है, ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स

0: ने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
1: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियाँ चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
2: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
4: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है। और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
6: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
10: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
13: कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है,

0: तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: आत्मनिर्भर भारत की नई ताकत दुर्गम इलाकों में भी अब आसानी से पहुंचाई जा सकेगी। सैन्य रसद पाथू रेल 300 किलो भार ढोने में सक्षम, 16,000 फीट की ऊंचाई पर सफल प्रदर्शन। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने संभाली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की कमान, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ग्रहण किया कार्यभार। जनरल अनिल चौहान 30 मई को हुए सेवानिवृत्त। आज भी दिल्ली एनसीआर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी रहने की संभावना, कई इलाकों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने का आसार। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: में बेस्ट, तकनीक में श्रेष्ठ, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार, हिंदुस्तान बना रहा है स्वदेशी हथियार।
1: जो देश अपने हथियार खुद बनाता है वही देश अपनी तकदीर भी खुद लिखता है।
0: आज भारत तोप की गोली से लेकर मिसाइल तक और फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक सब कुछ खुद ही तैयार कर रहा है। एक वक्त था जब भारत अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे भारत ने अपनी ताकत को समझा, उसे जाना और खुद आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची। आज रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो अपने यहाँ ही बना रहा है। कई देशों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत ही भारत ने अपने यहाँ ही कई रक्षा उपकरणों को बनाना शुरू किया है। नतीजा ये है कि आज की डेट में भारत न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि दूसरे देशों का निर्यातक भी बन रहा है। डिफेंस सेक्टर में दिनों दिन भारत की तेज होती धमक ये बताने के लिए काफी है कि रक्षा क्षेत्र में आने वाला वक्त हमारा होगा।
1: अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
0: हर दिन नए हथियारों की चमक दुश्मनों को भयभीत कर रही है। भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जो दुश्मन की नापाक हरकतों का माकूल जवाब दे सके।
1: आज के युद्धों में स्पीड और प्रिसीजन, सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ड्रोन, ऑटोमेटेड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो सिस्टम्स हैं दुश्मन पर ज्यादा सटीक हमला कर सकते हैं और अपने सैनिकों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। साथियों, इसका एक और लाभ सीमा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वह बहुत ही कठिन है, जटिल है, टफ है। हर जगह सैनिकों की तैनाती करना यह कोई आसान काम नहीं होता, मैं प्रत्यक्ष से महसूस कर रहा हूं। और ऐसे में ऑटोमेटेड निगरानी सिस्टम, रोबोटिक वाहन और सेंसर दिन रात सीमा की निगरानी कर सकते हैं, ऐसा सभी अब स्वीकार करने लगे हैं। इससे सुरक्षा भी बढ़ती है और कठिन परिस्थितियों में जो हमारे सैनिक तैनात होते हैं उन पर दबाव भी कम रहता है।
0: म्यूनिशन और ऑटोमेटेड सिस्टम में भारत अगुआ बनकर उभरे, इसके लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है।
1: भविष्य के युद्धों में सबसे बड़ा अंतर इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपके पास सैनिकों की संख्या कितनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका देश म्यूनिशन और ऑटोमेशन की दृष्टि से कितना एडवांस है और कितना कैपेबल है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सिर्फ युद्ध की आवश्यकता नहीं बल्कि शांति, विकास और आर्थिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। रक्षा क्षेत्र में यदि हम अभी तक दूसरों पर निर्भर रहते तो यकीन मानिए इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारे डिफेंस सेक्टर और हमारे फाइनेंस सेक्टर को होता। लेकिन अब क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची, खास तौर पर रक्षा के क्षेत्र में, तो यही वजह है कि खास तौर पर तकनीक के मामले में और रक्षा तकनीक के मामले में आज भारत अपने पैरों पर खड़ा है। 23 मई को महाराष्ट्र के शिरडी में एक बेहद आधुनिक गोला बारूद निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया जिसमें सालाना 5,00,000 आर्टिलरी शेल्स तैयार किए जाएंगे। साथ ही भारत के पहले 300 किलोमीटर वाले सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम को भी हरी झंडी दिखाई गई। सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दो रेंज वेरिएंट्स में डिजाइन किया गया है। पहला वेरिएंट 150 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों तक हमला कर सकता है और दूसरा लंबी दूरी वाला वेरिएंट 300 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकता है। भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र की खरीद का ऑर्डर भी दे दिया है।
2: सूर्यास्त्र भारत की सेनाओं को एक ऐसा जबरदस्त वेपन और फोर्स मल्टीप्लायर मिलने वाला है जो वाकई में दुश्मन की कमर तोड़ने में कामयाब होगा, क्योंकि इसका पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की क्षमता है कि 5 मीटर के अंदर लिखा हो लेकिन 2 मीटर के रिजल्ट दिए गए 300 किलोमीटर दूर। आप समझिए कि जब वो हमला करने में सक्षम है दुनिया के कमांड सेंटर पर जहाँ पे उनके शीर्ष अधिकारी बैठे होते हैं, प्लानिंग चल रही है, वहाँ पर हमले के पहले हमारा हमला होता है, उनकी सारी प्लानिंग ध्वस्त हो जाती है। कम्युनिकेशन सिस्टम पर जहाँ से बातचीत होती है उसको ख़त्म कर दें, रडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, लॉजिस्टिक बेस जहाँ से उनके हथियारों का भंडारण है, अमिशन का भंडारण है, तेल है, पिन पॉइंट हमला करने में सक्षम है।
0: सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम में प्रिसिजन गाइडेड रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये पारंपरिक हथियारों की तरह इधर उधर नहीं गिरते बल्कि बिल्कुल उसी जगह पर प्रहार करते हैं जहां इन्हें भेजा गया, यानी निशाना एकदम अचूक। सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में 150 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट का सीईपी यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल महज 1.5 मीटर है, वहीं 300 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट का सीईपी 2 मीटर है। इसका मतलब ये है कि रॉकेट अपने टारगेट से औसतन 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर गिरता है, जो युद्ध में बहुत बड़ी ताकत है।
2: सूर्यास्त्र देखा जाए तो एक टेक्नोलॉजी का बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है। इससे 122 mm, 306 mm, 370 mm के रॉकेट फायर किए जा सकते हैं, साथ साथ में कामिकाजी ड्रोन भी फायर किया जा सकता है। 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी और तकरीबन 5 मीटर कहा जाता है, लेकिन इससे बेहतर रिजल्ट्स इसके मिले हैं 2 मीटर का सर्कुलर एरर पे, यानी कि 2 मीटर के अंदर अंदर ये फायर करने में सक्षम है। ये इसका प्रिसीजन है, ये इसकी एक्यूरेसी है। क्या फ़ायदा होगा इसका? यह होगा कि दुश्मन के कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक बेस, उनकी गन पोजीशन, एडी सिस्टम, रडार स्टेशन और जहाँ पे उनकी रॉकेट सिस्टम है, जहाँ सब पर भी उनका जो एक स्ट्रेटजिक टारगेट्स हैं, उनको हम पिन पॉइंट हमला करने में ये सक्षम है।
0: भारतीय सेना को अब लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाले रॉकेट्स मिलेंगे, जिससे दुश्मन के ठिकानों जैसे कि आर्टिलरी पोजीशंस, कमांड सेंटर्स और दूसरे अहम टारगेट्स को सुरक्षित दूरी से तबाह किया जा सकेगा।

सूर्यास्त की सबसे बड़ी ताकत है इसकी मल्टी बैरल क्षमता, जिसमें अलग अलग तकनीक के हथियार एक साथ लगाए जा सकते हैं और दागे भी जा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि निशाना भी सटीक और लॉजिस्टिक का खर्च भी बहुत कम। सूर्यास्त के अलग अलग पॉड्स को मिशन के हिसाब से बदला जा सकता है। 370 mm कैलिबर की प्रेडेटर हॉक गाइडेड रॉकेट सूर्यास्त सिस्टम का सबसे घातक हथियार है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। सूर्यास्त सिस्टम का एक और घातक हथियार है एक्स्ट्रा रॉकेट। 306 mm कैलिबर का ये गाइडेड रॉकेट 150 किलोमीटर तक दुश्मन के बंकरों और कमांड सेंटर्स को तबाह कर सकता है। सूर्यास्त सिस्टम से 122 mm और 160 mm कैलिबर के बेहद किफायती एक्यूलर रॉकेट्स दागे जा सकते हैं, जो 40 से 100 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। सूर्यास्त सिस्टम से स्काई स्ट्राइकर लॉयटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन भी दागे जा सकते हैं, जो हवा में रहकर दुश्मन की खोज करते हैं और सटीक हमला करते हैं। सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से दागी जाने वाली प्रेडेटर हॉक रॉकेट्स में GPS INS सेंसर फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये तकनीक प्रेडेटर हॉक रॉकेट को बिना किसी भारी मदद के बेहद खराब मौसम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के बीच भी सटीक निशाना लगाने की क्षमता देती है।

0: देखा जाए तो प्रेडेटर हॉक सूर्य अस्त्र का सबसे खतरनाक रॉकेट है। 300 किलोमीटर तक जाता है, 370 mm है और 140 से 200 किलोग्राम तक का ये एक्सप्लोसिव ले जा सकता है और छत के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर, बंकर्स के ऊपर बहुत इफेक्टिव है। तोड़ के अंदर तक उनको तहस नहस कर सकता है। सेल्फ गाइडेंस है, गाइडेंस बड़ी अच्छी है और पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है, जैसा कि 5 मीटर का बताया जाता है, लेकिन 2 मीटर की हमको इसमें एक्यूरेसी मिली है। और शूट एंड स्कूट का इसका फैसिलिटी है कि फायर करे उसके बाद जगह बदली कर सकता है।
1: हॉक रॉकेट सुपरसोनिक स्पीड से हमला करने में सक्षम है, जबकि ये 140 किलोग्राम का भारी वॉरहेड लेकर अपने टारगेट से टकराता है तो भारी मात्रा में काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। इस ऊर्जा के कारण बिना विस्फोट हुए भी ये रॉकेट सिर्फ अपनी रफ्तार और वजन के दम पर कंक्रीट की कई फीट मोटी दीवारों को मलबे में तब्दील कर सकता है। सूर्यास्त्र की सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक पारंपरिक क्रूज और एक बैलिस्टिक मिसाइल के 15% खर्चे से भी सस्ता है, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि युद्ध के क्षेत्र में हमें भारी भरकम खर्च उठाने की जरूरत नहीं है। हम मल्टीपल रॉकेट्स दुश्मन पर दाग सकते हैं। आधुनिक युद्ध में आर्टिलरी की भूमिका निर्णायक होती है और सूर्यास्त्र शूट एंड स्कूट क्षमता के साथ दुश्मन के काउंटर अटैक से बचते हुए तेज हमला करने में सक्षम है। इसमें हाई मोबिलिटी व्हीकल भी लगाया गया है, जिससे ये बहुत तेजी से जगह बदल सकता है। सूर्यास्त्र को 6x6 भारी ट्रकों पर माउंट किया गया है। हमला करने के बाद ये सिस्टम फौरन अपना लोकेशन बदलने में सक्षम है, जिससे दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना और निशाना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। जानते हैं कि भारत सरकार ने किस तरह के चेंजेस किए हैं, जिस वजह से 5000 तरह के उपकरण भारत में ही बनाए जा रहे हैं। दरअसल अभी अगर बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट पार्टनरशिप 20-30% है, जिसे बढ़ाकर सरकार 50% तक करना चाह रही है। इसको लेकर विचार हो रहा है। मोदी सरकार ने FDI, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जैसे बड़े सुधार किए हैं। सूर्यास्त्र भारत की आर्टिलरी ताकत में काफी इजाफा करेगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के पास जो पिनाका मौजूद है उसमें और सूर्यास्त्र में क्या अंतर है? तो सबसे पहले दोनों रॉकेट सिस्टम की ताकत और खासियत जान लीजिए। सिस्टम की बात करें तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च है, जो सिर्फ रॉकेट लॉन्चिंग के लिए ही है। सूर्यास्त्र यूनिवर्सल लॉन्चर है, जो रॉकेट और मिसाइल दोनों दाग सकता है। पिनाका में कैलिबर फिक्स है और इसे सिर्फ 214 mm रॉकेट से ही दागा जा सकता है। सूर्यास्त्र मल्टी कैलिबर है, जो 122 mm, 306 mm, 370 mm के वेपन्स दाग सकता है। रेंज की बात की जाए तो पिनाका MK1 40 किलोमीटर और पिनाका एक्सटेंडेड रेंज 75 से 90 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। वहीं सूर्यास्त्र की रेंज 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर है। पॉड रीलोड सिस्टम की बात करें तो पिनाका के रीलोडिंग में करीब 4-5 मिनट का समय लगता है। वहीं सूर्यास्त्र में जो पॉड सिस्टम लगा है उसे रीलोड करने में 10 मिनट का वक्त लगता है।
0: पिनाका और सूर्यास्त्र में फर्क ये है कि पिनाका में एक साथ बहुत सारे रॉकेट फायर होते हैं, 6-6 रॉकेट यानी 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ गिरते हैं एक इलाके में, और वो एक एरिया वेपन के तौर पे, यानी कि 214 mm के रॉकेट हैं, एक ही कैलिबर के होंगे और वो एक जगह जाके पूरे इलाके को सैचुरेट कर देंगे, भस्म कर देंगे। जबकि सूर्य अस्त्र में अलग अलग कैलिबर के रॉकेट फायर हो सकते हैं, 122 mm, 306 mm या 370 mm, 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज होती है। और ये फर्क ये कि पिन पॉइंट अटैक करता ही है, एक रॉकेट जाएगा वहाँ पिन पॉइंट हमला करेगा, तो दोनों के टारगेट अलग हैं।
1: भारतीय सेना सूर्यास्त्र सिस्टम को उसकी 300 किलोमीटर की लंबी रेंज और डीप स्ट्राइक क्षमता के कारण LAC और LOC के अत्यंत संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात कर सकती है। इसका मेन मकसद चीन और पाकिस्तान की सेना के रसद आपूर्ति करने वाले रास्तों, एयरबेस और कमांड सेंटर्स को अपने तोपखाने की जद में लाना है। रॉकेट का ताकतवर होना कई मायनों में सेना की युद्ध क्षमता तो नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा, जो काम फाइटर जेट किया करते थे और जिन कामों में मिसाइल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, उसी काम को अब सूर्यास्त्र जैसा सिस्टम आसानी से कर देगा। पारंपरिक तौर पर अगर देखा जाए तो अगर दुश्मन 300 किलोमीटर दूरी पर बैठा है तो भारत को अपने लड़ाकू विमानों को मैदान में उतारना पड़ता है, लेकिन सूर्यास्त के आने के बाद न तो हम अपने पायलट्स की जान जोखिम में डालेंगे और न ही दुश्मन की सरहद में जाने की जरूरत होगी, बल्कि भारत अपनी सरहद पर ही बैठे दुश्मन का काम तमाम कर सकता है।
2: पहले सीमा से 150 से 300 किलोमीटर दूरी पर मौजूद दुश्मन के कमांड सेंटर, रडार या रसद डिपो को तबाह करने के लिए वायुसेना के सुखोई विमानों को उड़ान भरनी पड़ती थी। वहीं अब इस काम को जमीन पर तैनात आर्मी के सूर्यास्त रेजिमेंट अपने प्रेडेटर हॉक रॉकेट से मिनटों में पूरा कर पाएंगे। इससे महंगे लड़ाकू विमानों और जांबाज पायलटों को दुश्मन के हवाई क्षेत्र में भेजने का जोखिम भी काफी हद तक कम हो जाएगा। अपने प्रेडेटर हॉक रॉकेट से मिनटों में पूरा कर पाएंगे। इससे महंगे लड़ाकू विमानों और जांबाज पायलटों को दुश्मन के हवाई क्षेत्र में भेजने का जोखिम भी काफी हद तक कम हो जाएगा।
1: सूर्यास्त की तैनाती पारंपरिक तौर पर सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस मिसाइल के वर्कलोड को काफी हद तक कम कर देगी। अब वो किस तरीके से, वो भी आपको समझाते हैं। सीधी सी बात है कि 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को अगर निशाने पर लाना हो तो उसके लिए सूर्यास्त ही काफी होगा। यानी अगर देखा जाए तो रण क्षेत्र में सूर्यास्त सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की जगह ले सकता है।
2: सूर्यास्त 300 किलोमीटर की दूरी तक ब्रह्मोस जैसी अचूक सटीकता प्रदान करता है, इसीलिए सामान्य और कम सुरक्षा वाले लक्ष्यों जैसे कि आतंकी कैंप, रसद डिपो के लिए ब्रह्मोस को बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। ये काम सूर्यास्त आसानी से कर देगा। ब्रह्मोस मिसाइल को अब सिर्फ अति संवेदनशील और अत्यधिक बख्तरबंद जैसे दुश्मन के युद्धपोत या परमाणु बंकर जैसे लक्ष्यों के लिए सुरक्षित रखा जा सकेगा। ब्रह्मोस ले जाने वाले सुखोई 30 MKI विमानों का वजन और रखरखाव का दबाव कम होने से वायुसेना इन विमानों का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में कर पाएगी। सूर्यास्त वायुसेना का विकल्प नहीं बल्कि ये थल सेना को आत्मनिर्भर बनाकर वायुसेना की कीमती हथियारों और विमानों को बड़े और अधिक रणनीतिक युद्धों के लिए रीस्टॉक करने का मौका देता है।
0: ब्रह्मोस जैसा महंगा मिसाइल एक स्ट्रेटेजिक टारगेट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि तो थोड़े कम इम्पोर्टेंट टारगेट है, वहाँ पर सूर्यास्त का इस्तेमाल किया जा सकता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है। और तीसरी बात यह है कि सुखोई को भी बचत होगी, एयरफोर्स को जो 300 किलोमीटर दूर टारगेट होते थे उनके लिए हवा में जाके मिसाइल फायर करनी पड़ती थी, वो बच जाएगा। आप जमीन से फायर करोगे उनके टारगेट को बर्बाद कर दोगे, यानी कि हम अपने जो एयरक्राफ्ट हैं सुखोई है इनको एक्सपोज नहीं करेंगे, उनका इस्तेमाल और स्ट्रेटजिक टारगेट के लिए और बड़े टारगेट्स के लिए किया जा सकता है। तो यानी कि फोर्स मल्टीप्लायर है कि वो हथियार बने रहेंगे, वो अपने टारगेट्स करेंगे, बाकी टारगेट्स को सूर्यास्त एंगेज करेगा, अपनी जमीन पर रहते रहते दुश्मन को नेस्ता नाबूद करेगा।
1: आज देश में सिर्फ हथियार ही नहीं बनाए जा रहे बल्कि यहाँ उस भरोसे को भी मजबूत किया जा रहा है जिसके दम पर सेना वीरता का नया इतिहास लिख रही है।

0: अब हम सिर्फ टैंक, तोप, मिसाइल या फाइटर जेट्स ही नहीं बनाते, हम बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत, जिसका सर्वोच्च संकल्प है राष्ट्र रक्षा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहली बार आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना।
1: भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा।
0: रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा और विदेश से हथियार और उपकरण के आयात को कम कर भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड मिशन पर आगे बढ़ रहा है।

0: हिंदुस्तान अब अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं, भारत में ही तरह तरह की मिसाइलें, फाइटर जेट्स और यहाँ तक कि छोटे कलपुर्जे तक बनाए जा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत रक्षा के क्षेत्र में खुद स्टैंड कर चुका है और ये दुनिया भी भारत का लोहा मान रही है।
1: भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में लंबी छलांग लगाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले 5 साल में रक्षा उत्पादन में 90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2023 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 1,50,590 करोड़ को पार कर गया है। यानी कि भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 18% की छलांग लगाई है। साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था। यानी साल 2019-20 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 90% की बढ़त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी शक्ति बनाने के लिए शुरू की गई योजना मेक इन इंडिया ने जिस क्षेत्र में सबसे अधिक छाप छोड़ी है वो है रक्षा।
2: भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा।
1: ये मेक इन इंडिया मिशन की वो तैयारी है जिसमें हर स्क्रू, हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर भारत का है और भारत के लिए है।
0: स्क्रू से लेकर सिस्टम और सॉफ्टवेयर तक भारत आज की तारीख में ये सब कुछ अपने आप बना रहा है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि भारत ये सब कुछ न सिर्फ अपने लिए बना रहा है बल्कि 80 से ज्यादा देशों को दे भी रहा है। और ये तमाम वो देश हैं जो रक्षा के मामले में भारत पर भरोसा करते हैं।
1: सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, जिसके तहत मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू हो गया। लेकिन एक वक्त था जब 65-70% रक्षा सामग्री आयात की जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 35% सामान ही आयात होता है। इसका मुख्य कारण भारत की अपनी रक्षा प्रणालियों को डिजाइन और विकसित करने की बढ़ती क्षमता है।
0: भारत सरकार की तरफ से पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट तैयार की गई है, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि स्वदेशीकरण को ज्यादा बढ़ावा देना। यानी खास तौर पर रक्षा के क्षेत्र में हम किसी दूसरे मुल्क पर निर्भर न रहें, छोटे से कलपुर्जे से लेकर बड़ी से बड़ी मिसाइल तक बनाने में भारत खुद अपनी धरती का और यहाँ के साजो सामान का ही इस्तेमाल करे।
1: अब तक रक्षा मंत्रालय ऐसी 5 लिस्ट जारी कर चुका है और इसमें तकरीबन 5,000 आइटम्स के आयात पर पाबंदी लगाई गई थी। ये सभी डिफेंस, पीएसयू और निजी स्वदेशी कंपनियों से खरीदे जा रहे हैं। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट 4,666 आइटम्स की 5 लिस्ट जारी की गई है, जिन्हें सिर्फ स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा। नेगेटिव लिस्ट, इसमें 310 उपकरणों जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, तोप के आयात पर 2020 से 27 तक रोक लगाई गई है। डैप 2020 यानी कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में खरीद को प्राथमिकता दी गई, यानी कि स्वदेशी डिजाइन और प्रोडक्शन को बढ़ावा। सृजन पोर्टल, इसमें 19,509 पहले आयातित आइटम्स को स्वदेशी बनाने के लिए लिस्ट किया गया। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा, इसमें टाटा, L&T, भारत फोर्स और MSME को बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। FDI में छूट, डिफेंस में 74% तक FDI ऑटोमेटिक रूट से और 100% सरकार की मंजूरी से होगी। अगला है R&D को बढ़ावा, इसमें IDEX और TDF स्कीम्स से स्टार्टअप्स और MSMEs को फंडिंग दी जा रही है। साल 2025 में TDF के लिए 60 करोड़ रुपए और IDEX प्राइम के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए।
3: हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर ना सिर्फ सुरक्षा के मामले में डिफेंस प्रोडक्शन में होना पड़ेगा, तमाम ऐसी विधाएं हैं उसमें हर एक में आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसका कि प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियर कट कॉल दिया हुआ है। जहां तक डिफेंस का सवाल है, देखिए हिंदुस्तान की सुरक्षा में को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। आप ऐसे समय में दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें जब आपको उस इक्विपमेंट की, उस हथियार की, उस गोला बारूद की, उस एमनिशन की जरूरत है। लिहाजा आपको स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा और हिंदुस्तान देखिए धीरे धीरे इसके तरफ अग्रसर हो रहा है।
1: प्राइवेट कंपनियों को भी सरकार की तरफ से सहूलियतें दी गई हैं। सरकार ने भारत की निजी हथियार निर्माता कंपनियों के लिए ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है कि बड़ी तेजी से ये आगे बढ़ने लगे। इस पूरी बढ़ोतरी में हिस्सेदारी की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2024-25 में कुल रक्षा उत्पादन में डीपीएसयू यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान करीब 77% रहा, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 23% रहा। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले बढ़ी है। जो वित्त वर्ष 2023-24 में 21% थी वो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 23% हो गई।
3: सबसे पहले मैं टच करूंगा पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन। इसके तहत वो सारी चीजें हैं जो कि डिफेंस में जिसकी रिक्वायरमेंट है और जिसको हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सकती है, चाहे वो पीएसयूज हो, डीपीएसयूज हो, प्राइवेट सेक्टर हो। अब हम नेगेटिव लिस्ट की बात करते हैं। टाइम टू टाइम ये लिस्ट रिवाइज की जाती है। नेगेटिव लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें कि उन आइटम को बैन किया गया है जिसका हम बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे। ये सारे के सारे आइटम हिंदुस्तान में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। हमारी कैपेबिलिटी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लिहाजा ये नेगेटिव लिस्ट में दिन रात इजाफा हो रहा है और इन आइटम को हम अब बाहर से इंपोर्ट करना डिफेंस सेक्टर में बंद करेंगे। सृजन पोर्टल देखिए एक ऐसा पोर्टल है जिसमें तमाम प्राइवेट प्लेयर और पब्लिक सेक्टर की यूनिट इसमें लॉग इन कर सकते हैं, अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं, जिससे कि तमाम आगे आने वाले दिनों में जो हमारे डिफेंस की प्रोक्योरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, किसका टेंडर निकलने वाला है, क्या उसका क्वालिफिकेशन क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों की उसमें लिस्टिंग होती है।
1: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत अपने डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा तवज्जो दे रहा है और इसी के तहत देश में डिफेंस कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में सिर्फ दो ही कॉरिडोर हैं। रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: No ticket, no line, just Showtime. Qualo Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qualo Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: डिफेंस कॉरिडोर एक ऐसा कॉरिडोर है जहां न सिर्फ रक्षा क्षेत्र के लिए हथियार बनाए जाते हैं बल्कि तमाम रिसर्च भी यहां पर की जाती हैं और ये भारत के लिए बहुत अहम है। यहीं से हमारी सेनाओं को तमाम हथियारों की सप्लाई भी होती है, उनकी जरूरत के हर सामान का ख्याल यहां पर रखा जाता है। डिफेंस कॉरिडोर का मकसद है कि भारत अब हथियार, मिसाइल, लड़ाकू विमान और उनके जरूरी पार्ट्स विदेशों से न मंगाए बल्कि खुद बनाए और दूसरे देशों को भी निर्यात करे। इनमें सबसे खास है टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट, जिसे दुनिया के सबसे बड़े टाइटेनियम रिमेल्टिंग यूनिट में से एक बताया जा रहा है, जो भारत के उत्तर प्रदेश में है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फायदा क्या होगा, तो आपको बता दें कि टाइटेनियम और सुपर एलॉयज का इस्तेमाल लड़ाकू विमानों के इंजन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, ड्रोन और यहां तक कि नेवी के जहाजों और पनडुब्बियों में होता है। ये मटेरियल हल्के होते हैं मगर बेहद मजबूत और हीट रेजिस्टिंग भी होते हैं। इस प्लांट से भारत तेजस, AMCA, नए जेट इंजन प्रोजेक्ट्स, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों और एडवांस ड्रोन्स के लिए जरूरी पार्ट्स खुद ही बनाएगा।
3: प्राइ- प्राइवेट प्लेयर भी इसमें आ सकते हैं, जिसमें जो मेजर प्राइवेट प्लेयर हैं, टाटाज हैं, रिलायंस हैं, महिंद्राज हैं, कल्याणी ग्रुप हैं, एलएनटी हैं, अदानी एरो सिस्टम है, तमाम लोगों को इसमें इन्वाइट किया गया है। जब जिसमें कि जो हमारा जो एडवांस टोट गन सिस्टम है वो भी देखिए प्राइवेट प्लेयर ने बनाया हुआ, तो एक तरीके की खुली छूट है। और साथ में डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ उनको एक इंटरनेशनल मार्केट भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से हम नाउ सर हिंदुस्तान की आर्मी के लिए डिफेंस का प्रोडक्शन ना करके एक उनको मल्टी फेरियस आप मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि इन प्राइवेट प्लेयर्स को जो हिंदुस्तान की नीड को पूरा करने के बाद बाहर के भी मार्केट उनके लिए उपलब्ध है।
1: कॉरिडोर से विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता घटेगी और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही युद्ध जैसे हालात में सेना के लिए हथियार की सप्लाई से लेकर उसकी मरम्मत सब कुछ आसान होगा।
0: सरकार राजस्थान में भी एक नया डिफेंस कॉरिडोर बनाने जा रही है, जिसके बनने से हमारी सेना को बहुत ज्यादा फायदा होगा। दरअसल अभी तक अगर देखा जाए तो दो कॉरिडोर भारत में है, यानी कि दो डिफेंस कॉरिडोर, एक यूपी में है और एक आंध्र प्रदेश में है। कहीं अगर किसी चीज की भी जरूरत पड़ती है, किसी हथियार में कोई भी दिक्कत आती है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से ही टीमें आती हैं, या फिर हम कहें कि वहीं से इसकी मरम्मत होती है। लेकिन राजस्थान में डिफेंस कॉरिडोर बनने के बाद खास तौर पर भारत और चीन के सबसे करीब यह डिफेंस कॉरिडोर होगा, तो भारतीय सेना को सीधे तौर पर इसमें मदद ही मिलेगी।
1: आज भारत दुनिया में अपनी रक्षा क्षमताओं के मामले में कई इलीट ग्रुप्स का सदस्य है। भारत न सिर्फ अपनी सेना को स्वदेशी सैन्य उपकरणों से मजबूत कर रहा है, बल्कि उन्हें दुनिया भर के देशों को बेच भी रहा है। भारत की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि सभी पुराने रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। साल 2004 से 2014 में जहां रक्षा निर्यात सिर्फ 4,312 करोड़ रुपए था, वो साल 2014 से 24 में बढ़कर 88,319 करोड़ रुपए हो गया। साल 2023-24 की ही बात करें तो डिफेंस एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ रुपए था, जो कि साल 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी कि 12.04% की बढ़ोतरी। भारत का लक्ष्य है साल 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाना।
3: डिफेंस कॉरिडोर है वो इनवाइट करता है तमाम डिफेंस का जो प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको एक जमीन मुहैया कराने और वो टेक्नोलॉजी वो अपने साथ लेके आए, एक उनको एक कॉरिडोर, एक जगह मिली हुई प्रोडक्शन के लिए, जिसके तहत वो टाइटेनियम या सुपर अलॉय बना सकते हैं। ये टाइटेनियम देखिए एक ऐसा स्ट्रांग धातु है जिसका वेट कम होता है लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। इसके तमाम फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो एरोनॉटिक्स हो, चाहे वो सबमरीन्स हो, चाहे वो डिफेंस के इक्विपमेंट हो। इसी तरह सुपर अलॉय जब आप बनाते हैं तो वो कई तरीके के होते हैं, जिसमें आपका कोबाल्ट होता है, निकल होता है, आयरन का सुपर अलॉय होता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, क्या वो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए जा रहा है, क्या वो एवियोनिक्स के लिए जा रहा है, क्या वो गन सिस्टम में यूज होना है। इन सारी चीजों का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में करते हैं और हाई क्वालिटी का इस तरीके का अलॉय या टाइटेनियम बनाते हैं, तो डिफेंस के क्षेत्र में इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है।
1: 11 साल की आत्मनिर्भरता की यात्रा में भारत ने रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। अब भारत न सिर्फ अपनी सेना को मजबूत कर रहा है, बल्कि दुनिया को हथियार बेचकर अपनी वैश्विक उपस्थिति भी बढ़ा रहा है।
0: भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि ताकत और तकनीक के मामले में भारत कहां तक पहुंच चुका है। आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत की 100 से ज्यादा कंपनियां हैं जो दूसरे देशों को अपने यहां के हथियार दे रही हैं, यानी छोटे कलपुर्जों से लेकर बड़ी मिसाइल तक के लिए कई देश भारत पर निर्भर हो चुके हैं। भारत के जिन हथियारों और उपकरणों की डिमांड दुनिया भर में बढ़ी है या फिर जिनका निर्यात किया जा रहा है, उनमें शामिल हैं डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट, 155 ATAGS ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार, सिमुलेट्स, बारूदी सुरंगों से बचाने वाली गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर्स, हथियार, थर्मल इमेजर, बॉडी आर्मर, इसके अलावा एवियोनिक्स और कई छोटे मोटे हथियार और उपकरण शामिल हैं।
1: डिफेंस की फील्ड में ये बदलाव की कहानी एक दिन की तैयारी का नतीजा नहीं है। आज भारत 100 से ज्यादा देशों को हथियार और रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। इनमें सबसे ज्यादा 31% हथियार म्यांमार, 19% हथियार श्रीलंका, 12% मॉरिशस, 6% नेपाल, 5.1% अर्मेनिया, 4.3% वियतनाम, 4.2% मालदीव और 2.2% हथियार भारत अफगानिस्तान को निर्यात कर रहा है। कभी भारत की गिनती हथियार मांगने वाले देशों के रूप में भी हुआ करती थी, लेकिन अब भारत डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर जाना जाता है। आज भारत का डिफेंस प्रोटेक्शन 225,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है।
0: भारत को आजाद हुए 78 साल हो चुके हैं और इन 78 सालों में भारत ने कई उतार चढ़ाव देखे, कई जगह भारत ने तरक्की की और कई बार बहुत से मुल्कों ने भारत को नीचा दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन भारत ना रुका और ना ही झुका और आज की तारीख में आत्मनिर्भर बनकर दुनिया को दिखा रहा है कि किस तरीके से भारत की पहचान एक अलग है।
1: किसी भी देश की सुरक्षा के लिए मजबूत सैन्य संरचना के साथ साथ हथियार, गोला बारूद, उपकरण समेत कई जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इन सामग्रियों के लिए किसी दूसरे देश पर आश्रित रहना सामरिक दृष्टिकोण से खतरनाक होता है। इसी को ध्यान में रखकर ज्यादातर देश अपनी शक्तियों के मुताबिक खुद के लिए आयुध फैक्ट्री लगाते हैं और इन्हीं के बदौलत देश की सेना को हथियारों की ताकत मिलती है। आजादी से पहले रक्षा क्षेत्र के निर्माण में भारत दुनिया के कई देशों से आगे था। यहाँ कई आयुध कारखाने और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हुआ करती थी। अंग्रेजों के जमाने में ही देश में 18 ऐसे आयुध कारखाने स्थापित किए गए जिनका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया था। 18 मार्च 1801 कोलकाता के कोसेपुर में पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित हुई। ब्रिटिश काल में ही दो प्रमुख रक्षा इकाइयों की स्थापना की गई थी, गार्डन रीच और मजगांव डॉक्स।
0: भारतीय आयुध कारखाना दरअसल 41 इकाइयों का एक समूह है जहां पर भारतीय सुरक्षा बलों के लिए तमाम तरह के हथियार बनाए जाते हैं और ये सुनिश्चित किया जाता है कि जरूरत के हिसाब से उन्हें तुरंत उन हथियारों को मुहैया करवाया जाए।
1: ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के प्रमुख ग्राहक हैं हमारी तीनों सेनाएं। सेना को हथियारों की आपूर्ति के अलावा आयुध फैक्ट्री केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस बल को भी साजो सामान बेचती है।
0: ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो जगह है जहां पर भारतीय सेना की रिसर्च से लेकर प्रोड्यूसिंग, लॉजिस्टिक, यहां तक कि छोटे से छोटे हथियार और बड़ी से बड़ी मिसाइलों तक को बनाया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि भारतीय सेना की हर जरूरत यहां से पूरी हो।
7: ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज किसी भी राष्ट्र की इंडिजिनस तरीके से हथियारों को प्रोड्यूस करने के कारखाने होते हैं जहां पर मिलिट्री हार्डवेयर और अनेक डिफेंस इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल का उत्पादन किया जाता है, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो। हमारी जो पैरा मिलिट्री और पुलिस फोर्सेस को भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के माध्यम से अनेक तरीके के इक्विपमेंट्स समय समय पर मिलते हैं।
1: आजादी के बाद भारत को रक्षा क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देश में स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का अभाव था, सैन्य उपकरणों के लिए दूसरे देशों से आयात पर बहुत अधिक निर्भर था। हालांकि 1958 में DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना जैसे प्रमुख उपलब्धियों ने तकनीकी प्रगति के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया।
7: DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो 66 वर्ष पूर्व 1958 में की गई थी, और डीआरडीओ ने भारत के रक्षा के क्षेत्र में बड़े अनुसंधान और विकास के कार्य को सफलतापूर्वक किया है। डीआरडीओ ने अपने द्वारा अपने अनुसंधान और विकास के माध्यम से भारत को अनेक स्वदेशी उपकरण, रक्षा के उपकरण प्रोवाइड कराए हैं, और जिसमें कि जो अनेक लंबी दूरी की, मध्यम दूरी की और छोटी दूरी के जो मिसाइल्स हैं, चाहे वो अग्नि हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, नाग हो, जैसी जो मिसाइल्स हैं वो डीआरडीओ ने अपने अनुसंधान और विकास से के माध्यम से विकसित की है।
1: साल 1962 में जब चीन से युद्ध में हमें अच्छे परिणाम नहीं मिले, तब भारत सरकार ने भविष्य की जरूरतों को समझा और कुछ अहम कदम उठाने का फैसला किया।
0: क्या आप जानते हैं कि हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की नींव किसने रखी थी? तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके मेनन ने भारतीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की नींव रखी। इससे पहले 1954 में बीएल और 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हो चुकी थी। हमारे पास 1962 के युद्ध की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली और आधुनिक हथियार, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स तो हैं ही, लेकिन अब हम परमाणु शक्ति संपन्न भी हैं।
1: उन्नीस सौ बासठ के युद्ध ने प्रमुख सैन्य सुधारों के लिए भी देश को प्रेरित किया और भारत के रक्षा उद्योग को फिर से आकार देने और विस्तार देने के लिए बड़े पैमाने पर भूमिका निभाई। 1962 युद्ध के बाद भारत का रक्षा खर्च बड़े पैमाने पर बढ़ गया। 1961 में ये जीडीपी के 2.1% से बढ़कर 1963 में 4% हो गया और शेष शीत युद्ध में जीडीपी के 3% से लगातार ऊपर रहा। ये 1962 के पहले स्तर पर कभी नहीं लौटा। 1970 के बाद भारत का रक्षा क्षेत्र में विकास हुआ। रूस ने हमें लाइसेंस प्रोडक्शन दिया और इसके तहत भारत ने मिग 21 का लाइसेंस प्रोडक्शन शुरू किया। डीआरडीओ ने भी विकास किया। इसके बाद डीआरडीओ बीएल बीडीएल ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया।
7: इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो संकल्पना है वो भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी, और इस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को 1983 में शुरू किया गया था, और इसके माध्यम से भारत ने अनेक तरीके की जो बड़ी मिसाइल्स हैं और मिसाइल की जो पूरी टेक्नोलॉजी है उसको विकसित किया। अनेक लेबोरेटरीज में आपस में कोलाबरेट करना, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलाबरेशन हो, या जो प्राइवेट सेक्टर की जो डिफेंस यूनिट्स हैं, डिफेंस फैक्ट्रीज हैं, उनके साथ कोलाबरेट करके अधिक से अधिक बेहतर रिजल्ट सामने लाना और बेहतर से बेहतर मिसाइलें डेवलप करना।
1: भारत ने आत्मरक्षा को लेकर 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत अमेरिका समेत तमाम ताकतवर मुल्कों की नजर में आ गया। 24 साल बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय विरोधों को नजरअंदाज करते हुए 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षणों को अंजाम देकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया।
0: चौहत्तर से 1998 तक भारत ने कई परमाणु परीक्षण किए, जिसने भारत की ताकत को और ज्यादा मजबूत किया और दुनिया को दिखाया कि भारत किस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। इसने भारत को परमाणु सशस्त्र देशों की लीग में ला खड़ा किया, जिस क्षेत्र में इसकी रणनीतिक स्थिति मजबूत हुई। इसके साथ ही साथ अग्नि सीरीज, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल भारत की स्वदेशी मिसाइल प्रौद्योगिकी विकास ने मिसाइल प्रणालियों में देश की शक्ति को प्रदर्शित किया।
1: साल 1962 में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा। साल 1965 और 1971 में पाकिस्तान से जंग हुई। इन युद्धों में भारत ने ये महसूस किया था कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों की फौरी तौर पर जरूरत है, जिनमें मिसाइलें सबसे अहम है। उस वक्त तक दुनिया भर में सिर्फ चार ही देश ऐसे थे जिनके पास अपने मिसाइल सिस्टम थे, जिनमें चीन के पास डोंगफेंग मिसाइल सिस्टम, अमेरिका के पास लांस मिसाइल सिस्टम, सोवियत संघ के पास स्कड मिसाइल सिस्टम और इजराइल के पास जेरिको मिसाइल सिस्टम था। उसी साल सोवियत सूत्रों ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि चीन 1 मेगाटन तक पेलोड कैपेसिटी हासिल कर चुका है और साथ ही 6000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अगले 5 साल में चीन 80 से 100 मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा था। चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत 70 के दशक से ही मिसाइल बनाने की सीक्रेट कोशिशों में जुट गया। इसरो में रहते हुए डॉक्टर कलाम मिसाइल डेवलपमेंट के 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलियंट। तब यूनियन कैबिनेट ने इन प्रोजेक्ट्स को डिसअप्रूव कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत इसके लिए सीक्रेट फंड अलॉट किए। 1 जून 1982 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने DRDL यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही तरह एक विंग है जो कि मिसाइलों के क्षेत्र में काम करती है। DRDL ज्वाइन करते ही सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल के कामों में तेजी लाने के लिए एक हाई लेवल बॉडी का गठन किया। इसका नाम था मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी। इस कमेटी ने कई दिनों की डिबेट और कई हफ्तों के विचार विमर्श के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया, जिसको नाम दिया गया गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये वो वक्त था जब भारत की पहली मिसाइल कागजों पर आकार लेना शुरू कर चुकी थी। 27 जुलाई 1983 को IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इंटीग्रेटेड प्लान के तहत कई मिसाइलों पर एक साथ काम शुरू हुआ। अलग अलग मिसाइलों के नाम तय किए गए। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया पृथ्वी। टेक्टिकल कोर व्हीकल का नाम रखा गया त्रिशूल। सतह से आकाश पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया आकाश। एक एंटी टैंक मिसाइल भी इसमें शामिल की गई थी जिसका नाम रखा गया था नाग। और APJ अब्दुल कलाम का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रेक्स यानी कि री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम रखा गया अग्नि। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के करीब 2000 कर्मचारियों के साथ लगातार काम करने के बाद साल 1987 के आखिर में पृथ्वी मिसाइल का निर्माण अपने आखिरी चरणों पर पहुंचा। तब सिर्फ लॉन्चिंग करने की तैयारी बची थी। पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद भारत ने मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर लिया था जहां दुनिया के ताकतवर देश खड़े थे।
0: रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
6: new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर। जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: अब बात करेंगे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी एक शानदार खबर की। देखिए दुर्गम और ऊंचाई वाले इलाकों में सेना अब आसानी से रसद पहुंचा सकेगी। जी हां, इस चुनौती का एक स्वदेशी और अत्याधुनिक समाधान तैयार कर लिया गया है, पाथू रेल। पाथू रेल नाम की ये जो है अभिनव मोनोरोल प्रणाली है और पहाड़ों में सैन्य लॉजिस्टिक्स का चेहरा पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। आत्मनिर्भर तकनीक का उन इलाकों के लिए बनाई गई है जहां पर सड़क संपर्क नहीं है। 16,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले कठिन इलाकों में इसका सफल संचालन कर दिया गया है। ये प्रणाली गोला बारूद, राशन, ईंधन और इंजीनियरिंग उपकरणों को सुरक्षित पहुंचाने में सक्षम है पूरी तरीके से। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि आपात स्थिति में घायलों को

0: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: Sage University, transforming your passion into profession.
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 134वें एपिसोड में देश को किया संबोधित। युवाओं की खेल क्षेत्र में बढ़ती उपलब्धि का किया जिक्र। लोगों को गर्मी में संभल कर रहने की दी हिदायत। आत्मनिर्भर भारत की नई ताकत, दुर्गम इलाकों में भी अब आसानी से पहुंचाई जा सकेगी सैन्य रसद। पाथू रेल 300 किलो भार ढोने में सक्षम, 16,000 फीट की ऊंचाई पर सफल प्रदर्शन। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने संभाली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की कमान, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ग्रहण किया कार्यभार। जनरल अनिल चौहान 30 मई को हुए सेवानिवृत्त। आज भी दिल्ली एनसीआर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी रहने की संभावना, कई इलाकों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने के आसार। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। मई महीने में शिमला में पर्यटकों का उमड़ा सैलाब, 7,00,000 गाड़ियां पहुंची शिमला। जाम से निपटने के लिए शिमला पुलिस ने बनाया है मेगा प्लान। देश भर में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पवित्र नदियों के किनारे उमड़ी भीड़, प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान, दान पुण्य कर पूजा पाठ। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर उज्जैन में बाबा महाकाल का किया गया भव्य श्रृंगार, भगवान श्री राम के नाम का लगाया गया पुष्प तिलक, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया दर्शन पूजन। एटमैन मेकर्स का बड़ा धमाका, आयो इंटरैक्टिव और एमेजॉन ने एमजीएम स्टूडियोज के साथ मिलकर जेम्स बॉन्ड का वीडियो गेम 007 फर्स्ट नाइट किया लॉन्च, दिखेगी बॉन्ड की अनकही कहानी।
5: एनईसीसी संडे हो या मंडे, रोज खावंडे।
7: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में जीवन में जो बड़े परिवर्तन होते हैं वो दो ग्रहों पर निर्भर करते हैं, शनि का साथ और बृहस्पति की कृपा। यानी ज्योतिष चलता है दो ग्रहों की ताकत से, बृहस्पति और शनि। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बृहस्पति की राशि बदलने वाली है, बृहस्पति अपनी चाल में परिवर्तन करने वाले हैं और ये परिवर्तन महापरिवर्तन है। इस परिवर्तन का देश दुनिया पर और आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः।

हाँ, वैसे तो देवगुरु बृहस्पति का बड़ा साधारण और बड़ा सरल मंत्र है ये, लेकिन ये मंत्र है बहुत प्रभावशाली। अगर आपके जीवन में बृहस्पति की वजह से कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, या आप बृहस्पति को अनुकूल करना चाहते हो, तो रोज सवेरे 108 बार इस मंत्र का जप करिएगा रुद्राक्ष की माला पर। और अगर आप देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा चाहते हैं, तो इस मंत्र का जप करिएगा हल्दी की माला पर। अगर नित्य प्रातः हल्दी की माला पर ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप किया जाए, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलती है और बृहस्पति से संबंधित पीड़ा समाप्त हो जाती है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति देव के होने वाले परिवर्तन के बारे में। ये परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ये परिवर्तन कैसा होने जा रहा है, इसकी पूरी स्थिति क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, बृहस्पति देव अभी तक मिथुन राशि में विद्यमान हैं, 3 नंबर की राशि में। अब बृहस्पति 2 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि जो है वो मामूली राशि नहीं है, बृहस्पति के लिहाज से ये बृहस्पति की सबसे मजबूत राशि है। तो बृहस्पति कर्क में प्रवेश करके सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और इसीलिए इस परिवर्तन को महापरिवर्तन कहा जा रहा है, क्योंकि अब बृहस्पति अपने सबसे मजबूत स्थिति में रहेंगे। बृहस्पति वैसे तो एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक रहते हैं, लेकिन अतिचारी होने की वजह से बृहस्पति 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में विद्यमान रहेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे और बृहस्पति के इस परिवर्तन का 2 जगह पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। एक, प्रकृति पर, बेमौसम की बारिश, प्रचंड गर्मी, बेवजह की आग लगना, प्रकृति में उपद्रव होना, भूकंप आना, ये सब स्थितियां अब दिखेंगी। और बृहस्पति हैं वित्त के कोष के स्वामी, तो बृहस्पति के इस परिवर्तन का प्रभाव बाजार पर, शेयर मार्केट पर, फाइनेंशियल मार्केट पर ज्यादा पड़ सकता है, ये संभावना भी दिखाई देगी। यानी अगर आप गंभीरता से देखें तो 2 जून से लेकर और 31 अक्टूबर तक का जो समय है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत विशेष समय होगा और इस समय में पूरी दुनिया में भयंकर और बड़े बड़े परिवर्तन और बदलाव होंगे। दुनिया में हलचल होगी, इसके लिए तैयार हो जाइए। आपकी राशियों के लिए बृहस्पति का ये परिवर्तन कैसा रहेगा, किस राशि पर क्या असर दिखाएंगे बृहस्पति, ये आपको आगे हम बताएंगे। लेकिन अभी आपको बताते हैं मोटे तौर पर कि
कि इस परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा असर पड़ने वाला है। देखिए, बृहस्पति की चाल 2 जून से बदल जाएगी। 1 और 2 की दरमियानी रात में, मिडनाइट में, 2 की अर्ली मॉर्निंग में बृहस्पति की चाल बदलेगी। और याद रखिए, बृहस्पति अभी अतिचारी हैं, अभी मार्गी स्थिति में नहीं हैं, उनकी गति सामान्य से ज्यादा है। अब दुनिया भर में अशांति फैलेगी, उपद्रव की स्थिति बनेगी। लोग एक तरफ शांति वार्ता की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ युद्ध भी करेंगे, यानी अशांति और उपद्रव की स्थितियां बढ़ेंगी। अभी शांति आने के संकेत नहीं हैं। सबसे ज्यादा जो जबरदस्त प्रभाव दिखाई देगा वो जलवायु में दिखेगा। कभी तो भयंकर गर्मी पड़ेगी और कभी एकदम भयंकर मूसलाधार बारिश होगी और चीजें बिगड़ेंगी। जलवायु में और मौसम में बड़े परिवर्तन होंगे। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव होंगे, दुनिया भर के बाजार हिलेंगे और अलग अलग देश की सरकारें अपनी नीतियां बदलेंगी ताकि मंदी से और आर्थिक मुश्किलों से छुटकारा मिले। जैसा आपको हम बार बार बता रहे हैं कि बाजार में, फाइनेंशियल मार्केट में बड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं, बड़ी सावधानी की और बड़े ध्यान देने की जरूरत होगी। महंगाई काफी ज्यादा बढ़ सकती है, महंगाई बढ़ने की संभावना इस समय में दिखाई दे रही है। और बृहस्पति हैं धर्म के स्वामी, इसीलिए धार्मिक मामले तेजी पकड़ेंगे, भारत में भी और दुनिया में भी। और धार्मिक मामलों को लेकर के बेवजह के विवाद, बेवजह के झगड़े, लड़ाइयां भी बढ़ेंगे, यानी धर्म को लेकर के विवाद और उपद्रव बढ़ेगा। और जून से अक्टूबर तक इसको संभाल पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। तो देश दुनिया के लिए बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन उतना ताकतवर नहीं दिख रहा है। अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के लोग जून से अक्टूबर के समय में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। सेहत की समस्या आपको काफी परेशान कर सकती है। छाती में दिक्कत, लंग्स में प्रॉब्लम, या महिलाओं को लिम्फ जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। स्वास्थ्य की समस्या का ध्यान रखें और बेवजह के अपयश की नौबत आ सकती है, बेवजह के अपयश की स्थिति बन सकती है। मेष वाले सेहत को लेकर सतर्क रहें। इनके जीवन में ये दिख रहा है कि अगले 4-5 महीनों के अंदर संपत्ति का लाभ हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, ऐसा लग रहा है। और छोटी मोटी विदेश यात्रा की संभावना भी इनके लिए बन सकती है। देखिए, मेष वालों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है।
मेष वाले थोड़ा सतर्क रहें,

कुंभ राशि, कर्क धनु और इसके बाद नंबर है कुंभ का, जिनको ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। स्वास्थ्य की समस्या से बचिएगा। डाइजेशन को लेकर, लीवर को लेकर, खान पान को लेकर आप मुश्किल में आ सकते हैं। स्वास्थ्य की समस्या से बचाव करिएगा। करियर में बिल्कुल शांति से, ईमानदारी से काम करिए, वरना करियर की स्थिति में उतार चढ़ाव हो सकता है। करियर में अप्स एंड डाउन्स की नौबत आ सकती है। इस समय कुंभ वालों को केवल आध्यात्मिक मामले में फायदा हो सकता है। स्पिरिचुअल मैटर में, आध्यात्मिक मामलों में कुंभ वालों को फायदा हो सकता है, लेकिन इस समय जोश में आके करियर में गलत निर्णय ले लें, प्रॉपर्टी बेच दें, चेंज ऑफ प्लेस कर लें, कोई गलत और बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा। इस समय को बीत जाने दीजिए, उसके बाद बुद्धिमानी से निर्णय लीजिएगा। हाँ, लेकिन इस समय में जून से अक्टूबर में अगर आप गहरी पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसमें आपको लाभ होने की संभावना जरूर बनती है। मीन राशि, तो देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, आप खुद कर सकते हैं, और ये परिवर्तन आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा। ध्यान रखिएगा कि जो भी परिवर्तन का निर्णय लें वो 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में लीजिएगा। किसी धर्म स्थान की यात्रा हो सकती है, पूजा पाठ हो सकता है, धार्मिक झुकाव हो सकता है, ये संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। मीन वालों का स्वास्थ्य बेहतर होगा, चिंताएं कम होंगी, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आने लगेंगी, और आपका दिलो दिमाग जो बेचैन और अशांत रह रहा था वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। चीजें आपकी बेहतर रास्ते पे चलेंगी। आर्थिक मामले आपके बेहतर होंगे, परिवार के सपोर्ट से, मित्रों के सपोर्ट से, करियर के डेवलपमेंट से आपको निरंतर पैसे मिलते रहेंगे। पैसों रुपयों के हालात बेहतर होंगे और आपके जीवन में पारिवारिक स्थिरता आएगी, फैमिली लाइफ आपकी बेहतर होगी। मीन वालों ने बहुत काम बीच में लगा रखे हैं जो अब तक नहीं हो पा रहे थे, अब मीन वालों के काम पूरे होंगे और मीन वालों की चिंताएं ठीक होंगी। जो बिगड़े हुए रिश्ते थे वो रास्ते पे आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, अगर हम 12 राशियों में देखें, मिथुन राशि, कन्या राशि, वृश्चिक, तुला और मीन, इनके लिए, मकर के लिए भी अच्छा है, इन लोगों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन अच्छा है। कर्क धनु और कुंभ राशि वालों के लिए और कुछ मात्रा में सिंह राशि वालों के लिए ये परिवर्तन अच्छा नहीं है। तो अगर बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल नहीं है, आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक सुबह और शाम बृहस्पति मंत्र का जप करिए। मंत्र आपको कार्यक्रम के शुरुआत में बताया था, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः।

0: हाँ हाँ, सुबह शाम 108 बार नियमित रूप से किसी धर्म स्थान में जा करके प्रार्थना करिएगा। कोई भी मंदिर हो, किसी भी देवी देवता का हो, जब समय मिले, रविवार को मिले तो रविवार को जाइए, या बृहस्पतिवार को केवल जाके मंदिर में कोने में बैठिए और आंख मूंद करके भगवान से अपने मन की सारी बात कहिए और अपनी प्रार्थना करिए। सात्विकता और पवित्रता बनाए रखिएगा। इस समय नॉनवेज खाना, मांस मदिरा का सेवन करना बहुत नकारात्मक हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति उच्च राशि में जा रहे हैं। नॉनवेज और अल्कोहल से बचिएगा, नहीं तो जीवन में मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अनुकूल है तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत की संभावना नहीं है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति निगेटिव है, खराब स्थिति में है, तो इस समय उच्च के बृहस्पति होने से आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और 2 जून के बाद जिन लोगों को भी अपने स्वास्थ्य में या अपनी मानसिक स्थिति में दिक्कत महसूस हो रही है, ऐसे लोगों को निरंतर मंदिर जाकर प्रार्थना करने से लाभ होगा। तो देव गुरु बृहस्पति की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Step into the heart of the American zeitgeist with me, Billy Bush. My new show, Hot Mics, is now streaming on TuneIn. It's the radio talk show that's going to redefine what it means to be in the know. From sports and politics to entertainment, tech, pop culture, and everything in between. You'll hear from A-list stars, athletes, politicians, and more. No filter, no fluff, just the real talk. Because when the mic is hot, the conversations are even hotter. Live Mondays and Wednesdays at 5 p.m. Eastern, 2 Pacific. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening now.
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Hop on board and settle in for an easy going cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
0: और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है, तभी से गुड न्यूज टुडे भी आपसे लगातार गुजारिश कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजें ताकि हम आपके उन वीडियोस को दिखाएं। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला लेकर चलते हैं, जहां के तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें एक वीडियो भेजा है जिसमें उन्होंने धर्मशाला समेत कांगड़ा वैली की खास जगहों के बारे में बताया।

0: नमस्कार, आप सभी को भी न्योता देता हूँ कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो देव भूमि है और हिमाचल के ही अंदर बसा हमारा ये सुंदर धर्मशाला, जहाँ एक तरफ धुलाधार की हसीन पहाड़ियाँ, जहाँ आज मई और जून के महीने में भी बर्फबारी धुलाधार की पहाड़ियों पर है। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सुंदर हमारा धर्मशाला, जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो विश्व का सबसे सुंदर स्टेडियम है वो धर्मशाला में है, चाहे मैक्लोडगंज जो नगरी है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है, बौद्ध धर्म के धर्म गुरु दलाई लामा जी यहाँ पर हैं। आप सभी आए और धर्म गुरु दलाई लामा जी का आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य आप सभी को मिलेगा। धर्मशाला के अंदर चाय के बगान है, आप उन्हें निहारने के लिए यहाँ आ सकते हैं। धर्मशाला के अंदर कई देवी स्थान, कई मंदिर, जैसे अगंजर महादेव, इंद्रनाथ जी का मंदिर देवी स्थल है, और कई मंदिर हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के शहर के अंदर हैं। बात करूं रोपवे की, तो धर्मशाला में धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए रोपवे की सुविधा है, आप उसका आनंद लेने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर आ सकते हैं। अगर कोई ट्रैकिंग का शौकीन है तो त्रिउंड जैसा एक ट्रैकिंग का हमारे पास स्पॉट जो है धर्मशाला के अंदर है, आप ट्रैकिंग के लिए भी त्रिउंड जा सकते हैं। साथ में धर्मशाला के लगते बाथू की लड़ी यहाँ घूमने के लिए है। मंदिर की बात करूँ तो रॉकट टेम्पल हमारे यहाँ है। धर्मशाला के साथ ही लगता कांगड़ा है, प्रदेशवरी माता शक्तिपीठ धर्मशाला के अंदर लगते कांगड़ा में है। तो आप इन तमाम चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए धर्मशाला आए हिमाचल वासी, तो धर्मशाला अतिथि देवो भव के भाव के साथ आप सभी के स्वागत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपने आना कैसे है ये सबसे बड़ा प्रश्न है, तो बताऊं आपको, धर्मशाला के ही समीप गग्गल एयरपोर्ट, जहां आप हवाई मार्ग से आ सकते हैं। रेलवे से अगर आपने आना है तो पठानकोट जो सबसे नजदीक हमारे पड़ता है उसके माध्यम से आ सकते हैं। जब दिल्ली से आपने आना है तो वोल्वो बसेस जो है धर्मशाला तक आती हैं। इन तमाम साधनों से जो आप धर्मशाला आ सकते हैं। हम सभी धर्मशाला वासी आपके स्वागत के लिए और अतिथियों के अतिथि देवो भव के भाव के साथ यहाँ पर।
1: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह आपको नजर आती है तो बस कैमरा उठाइए, व्लॉग बनाइए, फिर हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप करते हैं, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
4: IPL का सबसे बड़ा धुरंधर वैभव के बल्ले ने मचाया बवंडर, उम्र 15 साल बना गेंदबाजों का काल, सिक्सर का बेमिसाल बेबी बॉस, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, कहीं है खुशियां तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 134वें एपिसोड में देश को किया संबोधित। युवाओं की खेल के क्षेत्र में बढ़ती उपलब्धि का किया जिक्र, लोगों को गर्मी में संभल कर रहने की हिदायत। आत्मनिर्भर भारत की नई तकनीक दुर्गम इलाकों में भी अब आसानी से पहुंचाई जा सकेगी सैन्य रसद। पाथुर रेल 300 किलो भार ढोने में सक्षम, 16,000 फीट की ऊंचाई पर सफल प्रदर्शन। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने संभाली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की कमान, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ग्रहण किया कार्यभार। जनरल अनिल चौहान 30 मई को हुए सेवानिवृत्त। आज भी दिल्ली एनसीआर में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज बनी रहने की संभावना, कई इलाकों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने के आसार। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। मई महीने में शिमला में पर्यटकों को उड़ा सैलाब, 7 लाख गाड़ियां पहुंची शिमला। जाम से निपटने के लिए शिमला पुलिस ने बनाया मेगा प्लान।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: बेहद ऊंचाई वाले दुर्गम पहाड़ी इलाकों में अब सामान पहुंचाने में होगी बहुत आसानी। सेना की 10 इंजीनियरिंग रेजिमेंट सफलतापूर्वक चालू किया गया अनोखा पाथू मोनो रेल सिस्टम। इस मोनो रेल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर बहुत खराब मौसम में भी सामानों की ढुलाई हो सकेगी, जहां पर गाड़ियों की आवाजाही होती है मुश्किल। इस मोनो रेल से एक बार में 300 किलोग्राम तक सामान ढुलाई संभव है, घोड़े खच्चरों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा कारगर है यह सिस्टम। इस मोनो रेल से गोले बारूद, राशन, ईंधन और दूसरे सामान पहुंचाने में मिलेगी मदद, हादसों के दौरान रेस्क्यू में भी मिलेगी मदद। सेना की 10 इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने डिजाइन और तैयार किया है यह सिस्टम, दिन रात और हर मौसम में हो सकेगा सामानों की ढुलाई का काम, रिमोट से होगा संचालित। जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने संभाला देश के नए सीडीएस का कार्यभार, रक्षा मंत्री ने प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर के रूप में भी करेंगे काम। नए सीडीएस जनरल सुब्रमणि ने उनको नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक लॉन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, सीडीएस बनने वाले देश के तीसरे वरिष्ठ सेना अधिकारी। जनरल सुब्रमणि ने नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों को नमन किया। सीडीएस पद पर नियुक्ति से पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी में मिलिट्री एडवाइजर थे जनरल सुब्रमणि, सुरक्षा एजेंसियों के बीच रणनीतिक मूल्यांकन और तालमेल के काम में थे जुड़े। एडमिरल के स्वामीनाथन बने नए नौसेना अध्यक्ष, नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खिली धूप के बीच में मौसम हुआ सुहाना, सैर सपाटे का मजा ले रहे हैं सैलानी। श्रीनगर की डल झील में शिकारी पर सैर करने के लिए पहुंचे सैलानी, खुशगवार मौसम में घूमने का मजा हुआ दोगुना। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पहाड़ों पर बर्फ और बादलों का मनमोहक साया, कुदरत ने किया अनोखा श्रृंगार। मनाली में बारिश के बाद बहुत खुशनुमा हुआ मौसम, दूर दूर से पहुंच रहे हैं सैलानी। पंजाब और राजस्थान से गर्मी की छुट्टियां बिताने लोग पहुंच रहे हैं मनाली, छात्रों और युवाओं की बढ़ी तादाद। मई के आखिरी दिन भी दिल्ली एनसीआर में मौसम ठंडा बने रहने के आसार है, गर्मी के असर काफी हद तक कम होगा। दिल्ली एनसीआर में आज 36 से 38 डिग्री के आसपास रह सकता है अधिकतम तापमान, लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिलेगी। दिल्ली में न्यूनतम तापमान आज 22 से 24 डिग्री के बीच में रहेगा। मौसम बना रहेगा सुहाना। आज भी दिल्ली एनसीआर में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज बने रहने की उम्मीद है। कई इलाकों में बारिश गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने आज भी जारी कर दिया येलो अलर्ट। हो सकती हल्की बारिश, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों में फिर हो सकती है बारिश। बदला रहेगा मौसम का मिजाज। कल से तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी शुरू होने के संकेत। अगले हफ्ते मध्य तक 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुंच सकता है तापमान। दिल्ली में बारिश के बाद भी हवा भी साफ हुई। 5 साल में पहली बार मई की संतोषजनक स्तर पर पहुंचाई की वाय। तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद दिल्ली में AQI में भी सुधार हुआ। मई में राजधानी में औसत AQI 161। दिल्ली में शनिवार को दर्ज किया गया मई में 3 साल में सबसे कम AQI। अगले कुछ दिनों तक हवा की स्थिति मध्यम श्रेणी में रहने के आसार। मुंबई के कई इलाकों में आज सुबह से रिमझिम बारिश, मौसम सुहाना। गर्मी से तपती मुंबई को बारिश के बाद मिली राहत। धरती और पेड़ पौधे सहित सभी प्राणियों को तरावट मिली। मुंबई में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहने के आसार। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री आसपास रहने का अनुमान। मुंबई समेत महाराष्ट्र में इस बार धीमी है मानसून की रफ्तार। अभी प्री मानसून बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून तक महाराष्ट्र में हो सकती है हल्की बारिश। फिलहाल कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गरज के साथ बौछारों की संभावना। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा की पावन तिथि। पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अयोध्या में सरयू नदी में पवित्र स्नान के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। डुबकी लगाकर पूजा पाठ। प्रयागराज में भी संगम पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से विशेष पुण्य मिलता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर हरिद्वार और दूसरी जगहों पर भी लोग कर रहे हैं गंगा स्नान, पूजा पाठ और दान के साथ खुशहाली की कामना। इस वर्ष ज्येष्ठ में अधिक मास होने के कारण दो पूर्णिमाएं हैं। धार्मिक दृष्टि से अधिक मास की पूर्णिमा भी मानी जाती है काफी फलदायी। पुरुषोत्तम मास और ज्येष्ठ एक साथ पड़ने से बढ़ गया इस बार पूर्णिमा का महत्व। इस बार बना है ब्लू मून का दुर्लभ संयोग। ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत और स्नान दान से आरोग्य, सौभाग्य और सुख समृद्धि का मिलता है वरदान। विवाहित महिलाएं रखती हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा का विवाह व्रत। पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि की करती हैं कामना। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक शांति और पारिवारिक सुख शांति मिलती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार भस्म आरती की गई। उत्तराखंड में देवप्रयाग संगम पर गूंजा विष्णु सहस्त्र नाम। अलकनंदा और भागीरथी के पावन संगम पर श्रद्धा और विधि विधान के साथ 108 बार सामूहिक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया गया। देवप्रयाग में भव्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक का समागम का आयोजन किया गया। केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय और पतंजलि गुरुकुलम के छात्र छात्राओं ने मिलकर किया विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। इस अवसर पर देवप्रयाग में की गई गंगा आरती। उमा भारती और आचार्य बालकृष्ण सहित जानी मानी हस्तियां शुमार हुई। मध्य प्रदेश के रायसेन में 40 साल बाद फिर लौटी जेराई फाग की अनोखी परंपरा। 25 गांवों की 15 टोलियां सहित हजारों दर्शक शामिल हुए। जेराई फाग के दौरान 50 फीट ऊंचे चिकने खंबे पर धर्म ध्वजा से बंधी प्रसाद की पोटली तोड़ने के लिए लगती है होड़। तमिलनाडु के डिंडीगुल में भव्य रूप से मनाया गया वैकासी विसागम उत्सव। वैकासी विकासम उत्सव पर डिंडीगुल में मंदिरों में भव्य रौनक। मुख्य रूप से भगवान मुरुगन के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। डिंडीगुल के गलियों से निकली भगवान मुरुगन की शानदार शोभा यात्रा लाखों भक्त शामिल हुए। तमिलनाडु के शिवगंगा में भी वैकासी विसागम उत्सव पर सभी मुर्गन मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, शानदार शोभा यात्रा में आयोजन। मदुरई में भी भगवान मुर्गन की विशेष पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार है। तमिलनाडु के मदुरई में दिव्या धार्मिक उत्सव की धूम, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। मदुरई में कुडाल अजागर मंदिर से निकाली गई देव प्रतिमा की रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। गोविंदा के जयघोष के साथ श्रद्धालुओं ने खींचा रथ, कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई रथ यात्रा। रामनगरी अयोध्या में चलाया गया स्वच्छता अभियान, लता चौक सहित कई इलाकों में सफाई। स्वच्छता अभियान में अयोध्या के मेयर सहित नगर निगम के कर्मी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह तक पहुंचेगी मुजफ्फरपुर की शाही लीची, दिल्ली रवाना हुई 2000 कार्टन। विशेष रेफ्रिजरेटर वैन से भेजी गई प्रीमियम क्वालिटी की लीची। उन्होंने शोपाक से बड़ी खबर, चीता निर्वा और उसके तीन शावकों को बाड़े से बाहर जंगल में छोड़ा गया। कुनू में बड़ा हुआ चीतों का कुनबा, अब कुनू के खुले जंगल में कुल चीतों की संख्या 20। बाड़े से खुले जंगल में छोड़े गए तीन शावकों में दो नर एक मादा। दिल्ली में फिट संडे ऑन साइकिल के 76वें संस्करण का आयोजन किया गया, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जुटे लोग। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल्स के जरिए अच्छी सेहत और फिटनेस का संदेश, युवाओं में दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल समारोह के दौरान निकाली गई साइकिल रैली, बच्चे भी शामिल हुए। नागपुर में सांसद क्रीड़ा महोत्सव का शुभारंभ किया गया, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए। क्रीड़ा महोत्सव में नागपुर के युवाओं और स्थानीय खिलाड़ियों को मिलेगा अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल भिड़ंत, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। लगातार दूसरी बार खिताबी जीत के लिए उतरेगी डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी, पहले प्लेऑफ में गुजरात को 92 रन से हरा चुकी है। दोनों टीमें एक बार फिर से आईपीएल ट्रॉफी उठाने को बेकरार नजर आ रहे हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात दोनों ने ही एक एक बार जीता है खिताब। विराट कोहली और आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार पर सबकी नजर, 2025 में पाटीदार की कप्तानी में भी आरसीबी ने जीता था पहला आईपीएल खिताब। आरसीबी के कप्तान पाटीदार के पास धोनी और रोहित के क्लब में शामिल होने का एक सुनहरा मौका। गुजरात की तरफ से शुभमन गिल के बल्ले से टीम और फैंस को उम्मीद है, क्वालिफायर टू में गिल के 104 रनों की बदौलत फाइनल में पहुंची है टीम। ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा सकते हैं गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल, फिलहाल 722 रनों के साथ वैभव सूर्यवंशी से 54 रन पीछे। पर्पल कैप की दौड़ में गुजरात के रबाड़ा 28 विकेटों के साथ टॉप पर। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए वैभव सूर्यवंशी, मंत्री इरफान अंसारी ने ऐलान किया। सूर्यवंशी के जुड़ने से स्वास्थ्य, फिटनेस और खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के अभियान को मिलेगी मजबूती।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: सास बहू और बेटियां भी एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, कहीं है खुशियां तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
9: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: No ticket, no line, just showtime. Qwello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qwello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
2: उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
14: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है, वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो 2-3 बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्णकंद, यह है सूर्णकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को ताश पर बड़े जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है। पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
15: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
9: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
1: खराब मौसम के चलते रोकी गई केदारनाथ यात्रा, कई जगहों पर भारी बारिश के साथ साथ आंधी तूफान का अलर्ट, श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर रुकने की सलाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 134वें एपिसोड में देश को किया संबोधित। युवाओं की खेल के क्षेत्र में बढ़ती उपलब्धि का किया जिक्र। लोगों को गर्मी में संभल कर रहने की हिदायत। आत्मनिर्भर भारत की नई ताकत, दुर्गम इलाकों में भी अब आसानी से पहुंचाई जा सकेगी सैन्य रसद। पाथू रेल 300 किलो भार ढोने में सक्षम। 16,000 फीट की ऊंचाई पर सफल प्रदर्शन। उत्तराखंड के चंपावत में एसडीआरएफ की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। उफंती नदी में फंसे 50 से ज्यादा श्रद्धालु। बचाव दल ने किया सकुशल रेस्क्यू। मई महीने में शिमला में पर्यटकों का उमड़ा सैलाब। 7,00,000 गाड़ियां पहुंची शिमला। जाम से निपटने के लिए शिमला पुलिस तैनात।
16: वाडीलाल आइसक्रीम, जरा मुस्कुराइए, वाडीलाल खाइए।
2: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
17: संडे मतलब स्लो डे, नो टेंशन नो स्ट्रेस। तो कोई मना रहा है संडे की ये छुट्टी, कर रहा है अपनी फैमिली के साथ ब्रंच, तो कोई इंडल्ज कर रहा है टोटली सेल्फ पैम्परिंग मोड में, और कोई सोच रहा है कि पूरे हफ्ते काम करने के बाद ये तो होगा मेरा पीसफुल ब्रेक। लेकिन क्या कर रहे हैं आपके फेवरेट सितारे इस संडे? वेल, वो भी इंडल्ज कर रहे हैं फैमिली टाइम में, सेल्फ पैम्परिंग में, और कर रहे हैं रीसेट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा ये संडे वाइब वाला स्पेशल एपिसोड ऑफ सास बहू और बेटियां, जहां लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट, यानी एंटरटेनमेंट की सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज। शुरू करते हैं हमारा ये एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
18: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, खतरे में पड़ेगी रूहानी की जान, गुरु और संदीप का होगा बुरा हाल। युवराज रूही और नाहर के बीच देखने को मिलेगी कश्मकश, आखिर कौन होगा असली नाहर?

0: के लिए विक्रांत लेकर पहुंचेगा बारात, धूमधाम से होगी शादी की शुरुआत। राध्या को मिलेगा घर निकाला, घर में होगी पैसों की बारिश। आप सबकी प्यारी राधिका यानी कि अक्षिता दिखाएंगी अपना पेंटिंग टैलेंट। और मुलाकात होगी आशीष शर्मा से। अनुपमा के सेट पर अरविंद वैद्य को मिलेगा जोरदार वेलकम। पद्मश्री अवार्ड मिलने की खुशी में होगा सेलिब्रेशन। ये सब आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: तो किस तरह किशोरी और लाला बना रहे हैं अपनी संडे की ये छुट्टी? वेल, क्या ही होगा, इनके जिंदगी में तो है अनलिमिटेड ड्रामा। क्योंकि देखिए, कुछ ना कुछ कहानी में ऐसा होता ही रहता है जो लेकर आता है इस कहानी में हमारे लिए एंटरटेनमेंट का मसाला। ऊपर से मंजरी जो कभी नहीं लेती हैं चैन की सांस। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको पति अनाड़ी के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ एंटरटेनिंग और एक्साइटिंग हो रहा है इस कहानी में आज।
0: मंजरी और निशांत के काले इरादे।

0: को फंसाया अपने प्यार के जाल में। घर पहुंचे मेंटल असाइलम वाले। टीवी के सीरियल पतिया नाड़ी में भाई आज निशांत को मिली है घर के साफ सफाई करने की सजा। भाई उसे बना दिया गया है घर का नौकर, क्योंकि उसने चोरी जो की थी और इन सब का भांडा फूट चुका है और निशांत का सच सभी घर वालों के सामने आ गया। तभी तो देखिए कैसे वो घर की कर रहा है सफाई और यहाँ लाला उसे परेशान कर रहा है।
1: ओए करेले। वहाँ देख कितनी मिट्टी है, मिट्टी माँ करते चला सा, वहीं वहीं लगा हुआ है।
2: खुद ही कर लो पोछा, इतनी मट्टी दिख रही है तो
1: जो चोर होता है उसको सजा मिलती है। मैं थोड़ी चोर हूँ, तू चोर है, तेरे को सजा मिली, तू साफ कर।
2: अबे चला रहा है मैं, देखो जरा ध्यान से, चाट सकते तुम, चाट सकते
3: अबकी बार अगर किसी ने भी कचरा गिरा है ना, उसे ही साफ करना
1: होगा। और गिराओ कचरा, नहीं गिराओ गिराओ, प्लीज गिरा दो।
3: चलो
1: उसको भी
4: मिलके हमारी एक चाल थी, लेकिन

0: वो उसके पास पहुंच गए एक झूठे गेम का झांसा देकर।
1: पुरानी लाली, ओ देखो लाला कितना बड़ा टेडी बियर लाया तुम्हारे लिए, और तुम इसको एकदम जोर से हवा में फेंकती हो। ये भी तुम्हारे से क्यूट है। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। अरे लाला कैसे हो यार, तुम कहाँ घूम रहे हो सुबह से? अब तो एकदम साउथ फान लग रहे हो गुरु। इस टेडी बियर में क्या रखा है लाला? हमने लेटेस्ट गिफ्ट ढूंढ के लाया, खेलोगे? एक एक एक बात पूछू, बात पूछू।
2: वो
1: बहुत जोर से मन कर रहा है। पूछे पूछे
2: तो पूछो।
3: मेरे सर पे उल्टू भी क्या है?
1: तो बेवकूफ क्यों बना रहा है?
3: तेरे साथ गेम खेलूंगा ना तो तुम एक साथ गेम कर देगा।
1: हाँ स्मार्ट, नहीं खेल रहा।
4: हमें लगा था कि दोनों भाई मिलके बढ़िया गेम खेलेंगे लेटेस्ट वाला, लेकिन हमारे भाई को लगता है कि हम उसको उल्लू बनाएंगे, तो ठीक है हम जा रहे हैं यहाँ से। हाँ नहीं खेलेंगे।
3: टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, लेट मी थिंक।
1: ठीक है मजा आएगा, बता गेम अच्छा होना चाहिए।
4: लाला बहुत मुश्किल गेम है, लेकिन पहले से बता रहा है तुमको।
3: मुश्किल नहीं, सब आसान है। बता बता,
4: पक्का खेलोगे?
3: पक्का
4: करता है सुन।
5: अरे लाला बहादुर है।
4: जोर से मार दो मैया, जोर से, हम छुड़ा के दिखाएंगे।
5: जोर से,
4: हम बहुत ताकतवर है।
1: नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा।
6: एंड माय टाइम स्टार्ट्स नाउ।
3: कर ले कर ले।
1: जीत गए।
4: लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन मम्मा, पहले लाला की बारी है,
1: अब तुम्हारी बारी, तुमसे स्टार्ट करते हैं।
3: ना आसान गेम, लाला तो आराम से जीत जाएगा। बांधे बांधे
5: बांधते
1: हैं लाला के हाथ। डैडी हमको दो।
3: पुरानी लाली का ये तू मत चुप, कड़वा करेला कहीं का, ये भी कड़वा हो जाएगा। दूरे
4: ठीक है, जैसी तुम्हें मैं चलाओ।
3: बांधे बांधे
0: भाई। मंजरी जैसे ही रस्सी लाला के हाथों में बांधती है, देखिए कैसे निशांत अपने काम को अंजाम देता है और उसके बॉडी में डाल देता है खुजली वाला पाउडर, जिसके थोड़े समय बाद लाला बेकाबू हो जाता है और इसी समय पहुंच जाते हैं घर में मेंटल असाइलम वाले, जो बना लेते हैं लाला का वीडियो।
5: आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। और झूठ लगा, लगा तो बहुत ना।

0: पहन ये कैमरा हाथों पे पहन करो
1: इन्हीं सब तमाशों के बीच पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हो जाता है और देखिए कैसे मेंटल असाइलम वालों को देखकर दादी भड़क उठती है। लेकिन भाई इन्होंने तो ठान ली है कि आज वो लाला को मेंटल हॉस्पिटल लेकर ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें घर वालों में से ही किसी से टिप मिली है कि लाला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ऐसे में बेचारा तड़पता हुआ लाला देखिए कैसे अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, साथ ही घर वाले भी।
2: इस पागल घर पे क्या काम है भैया? कुछ भी
3: अरे
2: अराड़ियों के तुम क्या कर रहे हो भैया? कुछ जान दो भैया।
3: अरे
2: क्या कर रही हो?
3: क्या कर रही हो?
2: मैं कुछ नहीं जा रही हूँ। मैं बहुत जोर से चल रही है।
3: अरे क्या बदतमीजी है, छोड़िए हमारे लाला।
4: मैम आप फट जाइए। मैम हम आपकी मदद करने के लिए चिकित्सालय है।
3: क्या मानसिक चिकित्सालय से?
4: मैम कंप्लेन आई थी सनाड़ी के खिलाफ और वो भी इस घर से आई थी।
3: दिमाग खराब हो गया आपका? अरे हमारे लाला को कुछ भी नहीं हुआ है और इस घर से तो कोई शिकायत नहीं निकल सकता। छोड़िए
4: छोड़िए।

0: तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिला इमोशनल ड्रामा, जहां किशोरी अपनी माँ को देखकर आंसू बहा रही है। असल में किशोरी को पता ही नहीं है कि उनके घर में जो नौकरानी बनकर काम कर रही है वो उसी की माँ है, जिन पर लगा था चोरी का इल्जाम। तभी तो देखिए, जैसे ही उसे ये बात पता चलती है, वही वो दूर खड़े होकर रोने लगती है। वही उसकी आंखों से आंसू ही नहीं थमते और वो तो अपनी माँ के पास जाकर बात भी करना चाहती है, लेकिन उसके पिता उसे रोक लेते हैं, क्योंकि अगर लाला के परिवार वालों को पता चल गया कि किशोरी की माँ एक नौकरानी है तो वही घर में बेहद हंगामे खड़े होंगे।
1: मम्मी को देखती हूँ तो मेरा रिएक्शन होता है कि ओ, तो जिस नौकरानी के बारे में ये लोग बात कर रहे थे वो हमारी अम्मा ही थी। तो फिर मेरा एक ब्रेकडाउन भी होता है कि अम्मा को इतने दिनों बाद मैं देख रही हूँ, और मैं हक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती हूँ उतने में पापा आ जाते हैं, बाबू जी, और वो बोलते हैं कि नहीं बेटा नहीं कर, ये हंगामा हो जाएगा अगर तू आके बोल दिया, तूने बोल दिया कि मेरी ही मम्मी है तो हंगामा हो जाएगा, प्लीज़ मत कर ऐसा। वो दूर से इशारा करते हैं, फिर मैं बाबू जी ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं अपना, तो जब पापा एक बेटी के सामने हाथ जोड़ लेते हैं तो फिर वो कुछ नहीं कर पाती, उसके हाथ बन जाते हैं। फिर वो वापस चली जाती है और कोने में जाके बहुत रोती है कि मम्मी से मिल नहीं पाई। और मम्मी एक लॉकेट लेके आती है जो मेरे लिए उन्होंने रखा होता है, वो लॉकेट देती, जब उनको पता चलता है कि मैंने उनको बचाया है चोरी के इल्ज़ाम से, तो वो लॉकेट लाला को देती है और लाला खुशी खुशी ले लेता है कि थैंक यू सो मच करके। और उसमें भी मेरा एक बहुत ही इमोशनल सीन है कि मम्मी ने मेरे लिए, मतलब मम्मी जो डांटती थी मुझे, हमेशा डांटती थी पीटती थी, मम्मी के अंदर भी इतना प्यार भरा है मेरे लिए, उन्होंने मेरे लिए लॉकेट बनवाया, लॉकेट दिया मेरे लिए, जो मेरे लिए उन्होंने छुपा के रखा था वो उस लड़की को दिया, उनको नहीं पता कि मैं हूँ, बट मुझे पता है कि उन्होंने जो लाइन बोली है कि बेटी समझ के मैं उसे दे रही हूँ, तो फिर मुझे एक और ज्यादा मेरा बवंडर आ जाता है मेरे अंदर, फिर मैं रोना शुरू करती हूँ।
0: भाई वैसे आपको बता दे कि निशांत ने ही मेंटल असाइलम वालों को कॉल करके बुलाया है, लेकिन ट्विस्ट की बात तो ये है कि वो फोन किशोरी के फोन से किया गया। अब इसका इल्जाम जब किशोरी पर लगेगा तो घर में क्या कुछ हंगामे होंगे और किस तरीके से किशोरी अपने आप को बेगुनाह साबित करेगी, ये सब कुछ देखना होगा, बेहद दिलचस्प। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: रोहित, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको भी लेना चाहिए आज एक ब्रेक। एक्चुअली देखिए, ये ब्रेक होना चाहिए इमोशनल बॉन्डिंग के लिए, ये ब्रेक होना चाहिए फैमिली के लिए, ये ब्रेक होना चाहिए अपने फैमिली मेंबर्स को ये जताने के लिए कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, और ऑफ कोर्स ये ब्रेक होना चाहिए रीसेट और रिलैक्स करने के लिए। तो कैसा मूड है आज नाहर और रूही की इस कहानी में, चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आप सबको मन सुंदर के सेट पर।
0: नाहर, रूही और युवराज का टशन। रूही के लिए नाहर और युवराज की लड़ाई। आखिर किसका साथ देगी रूही? दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में भाई इन दिनों चल रहा है ढेर सारा कंफ्यूजन, क्योंकि हो गई है फिर एक बार नाहर और रूही की शादी। ऐसे में युवराज बन खड़ा है दूल्हा, क्योंकि वो चाहता है कि वो रूही को अपनी पत्नी बना ले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तभी तो देखिए कैसे नाहर और रूही भागते हुए जंगल पहुंच गए हैं और उनका पीछा करते हुए युवराज भी यहां पहुंच गया है, जिसके बाद इनके बीच देखने को मिली लड़ाई।

भाई देखिए तो कैसे नाहर और युवराज में इतना कंफ्यूजन है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन असली नाहर है और कौन युवराज। तभी तो रूही के गले से इस मंगलसूत्र को भी तोड़ दिया गया। और देखिए कैसे युवराज कर रहा है उन पर अटैक।

0: रूही को भी बचाना है। लेकिन क्यों यू नो जैसे नाहर का कैरेक्टर दिखा गया है तो वो युवराज को भी बचाने की कोशिश कर रहा है। युवराज कम वो यमराज ज्यादा है नाहर और रूही के लिए। सो यहाँ पे हम लोग वो जो क्लाइमेक्स शूट कर रहे हैं युवराज वर्सेस नाहर, नाहर वर्सेस युवराज फाइट सीक्वेंस है, बहुत मजेदार फाइट सीक्वेंस है। और यहाँ पे थ्रिलर भी है, कुएं के साथ, कुएं में जहाँ रूही फंसी हुई है नाहर बचाने आता है और नाहर भी वहाँ फंस जाता है, कैसे माँ काली मदद करती हैं। और फिर फाइट सीक्वेंस भी बहुत मजेदार है। सो टू मच फन, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है धूप में, यू नो टू एग्जॉस्टिंग बट टू मच फन। बहुत धूल मिट्टी, वो इफेक्ट देने के लिए धूल मिट्टी पाउडर डाल रहे हैं, धूल मिट्टी बाल देख रहे हैं, बालों की हालत पूरा गंदा हो रखा हूँ मैं। फाइट सीक्वेंस गया, पूरा लेटना पड़ रहा है मिट्टी में, यू नो कभी कभी चोट भी लग जा रही है फाइट सीक्वेंस के दौरान, मुझे दो जगह चोट भी लगी, तो ये होता है, कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं, बट सेफ्टी के साथ हम लोग ट्राइंग आवर बेस्ट।
1: वही रूही नाहर दौड़ते भागते जंगल तक पहुंच गए जिनका पीछा करते युवराज भी यहाँ आया है, वो भी अपने गुंडों के साथ। और देखिए कैसे युवराज के गुंडों ने नाहर को घेर लिया है, वही वो उसे डरा धमका रहे हैं। और युवराज तो नाहर की जान भी लेना चाहता है, तभी तो उसने इन कागजातों पर साइन करवा लिए है। वही इन कागजातों पर लिखा हुआ है कि युवराज ही असली नाहर है, जिसके बाद वो रूही से शादी करके नाहर के घर में रहने लगेगा।

ऐसे में यहाँ पर ढेर सारे हंगामों के साथ है ढेर सारा कंफ्यूजन, और ढेर सारे कंफ्यूजन के साथ है ढेर सारे ट्विस्ट। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर कौन होगा असली नाहर, और क्या रूही युवराज के चंगुल से अपने आप को बाहर निकाल पाएगी। मुंबई से कैमरामैन राम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

0: संडे का बेस्ट कॉम्बो क्या होता है? फैमिली टाइम, रिलैक्सेशन और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट. लेकिन यहाँ तो है ड्रामा, इमोशंस और धमाका, क्योंकि यहाँ पर हम लेकर हाजिर हैं आपके फेवरेट शोज की सारे हाईलाइट्स और हाई पॉइंट्स, वो भी एक साथ, जिन्हें लेकर हाजिर है सास बहू और बेटिया की एयरलाइन. यहाँ तो खुले हैं एंटरटेनमेंट के सभी द्वार, तो आप भी कर लीजिए हमारी एयरलाइन को बोर्ड और हम लेकर चलेंगे आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर पर.
1: के सीरियल जगधात्री में भाई जगधात्री ने पूरी तैयारी कर ली है मूसा को पकड़ने की. तभी तो उसने हर जगह अपनी टीम को डिप्लॉयड कर दिया है ताकि वो जाकर मूसा पर नजर रख सके.
2: ऐसे डबल प्लानिंग सिर्फ आप ही कर सकती हैं. हेड्स ऑफ में
3: जब बात आ गई तो उसके बाद दोनों को पकड़ने के लिए वैसे प्लानिंग करनी है. मूसा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पूरे अंडरवर्ल्ड को हिलाना बहुत जरूरी है और मेरे इंडिया के अकॉर्डिंग वो ना हो. स्टेशन हुई है जहाँ से मूसा का बच के भागना इम्पॉसिबल है. बस मेरे एक इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे हैं.
2: वाह, एक ही मिशन में इतने सारे लेसन्स. पर माया जी का क्या करना है? मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए मना तो किया है पर मुझे लगता नहीं कि वो रुकेंगे.
3: माना जाए कि हमें सदा मेरी माँ का भरोसा है पर हाँ भूसा और उसके बारातियों का सबक मुझे एक ढोल ढमा की बोली पाती सीखा. सो बी रेडी.
2: यस मैम.
4: He, Maya obviously is not aware. For Maya, she's an investigative journalist, but basically he's an undercover. जो जगधात्री की टीम का है वो obviously बाद में, I don't know, हम मुझे फिलहाल तो पता नहीं, वो ऑडियंस को रिवील हो जाएगा. But that's what makes it very interesting कि जगधात्री की जो टीम है या जिस तरीके से जगधात्री ऑपरेट कर रही है, क्योंकि वो मतलब पूरी कोशिश कर रही है कि वो मूसा गैंग को पकड़ पाए. सो ऑब्वियसली दिस इज हाउ इट हैपन्स इन द कॉप वर्ल्ड. यू नो, जो लोग फ्रंट में है वो तो है ही, बट देर आर लॉट ऑफ अंडरकवर एजेंट्स ऑल्सो, एंड आई थिंक जयदीप इज वन ऑफ देम.
1: तो वहीं दूसरी ओर माया भी निकल पड़ी है जयदीप के घर पहुंचने के लिए, जहां आने से जयदीप ने मना तो किया है लेकिन फिर भी माया यहां पहुंच रही है. भाई उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है जिसका आर्टिकल वो बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं. ऐसे में उसी के बातचीत करने के लिए वो जयदीप के घर पहुंच रही है.
4: एक्चुअली माया के ऑफिस में एक एम्प्लॉय है हुज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उनका नाम है जयदीप. जयदीप और माया ने साथ मिलकर एक बहुत बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा किया है, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक रिपोर्ट तैयार किया है, प्रिंट भी किया है. एंड बिकॉज ऑफ विच अब टारगेट हो गया है वो दोनों, क्योंकि मूसा के बारे में है. ऑब्वियसली हमको नहीं पता ये मूसा के बारे में है, बट हमने तो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा रिपोर्ट तैयार किया, हमने न्यूज़पेपर में प्रिंट भी किया है, लोगों को अवेयर कर दिया है कि भाई ऐसा नया ड्रग आने वाला है मार्केट में, सो जस्ट बी अवेयर. सो उनका प्लान जो है, उनका बिजनेस हमने ठप कर दिया. सो मूसा इज फ्यूरियस एंड वो रुद्र को बोलता है पता करो किसने किया. जब रुद्र को पता चलता है कि ये माया के न्यूज़पेपर की एजेंसी से हुआ है, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं अपनी बहन को तो प्रोटेक्ट करना चाहेगा ही, हेंस डाइवर्ट करने के लिए मूसा को उसने जयदीप का नाम बता दिया. एंड जयदीप इज द टारगेट नाउ. और सब लोग पहुंच रहे हैं जयदीप के घर, वहां पे मूसा रुद्र पहुंचेंगे, यहाँ पे माया और जगन पहुंच रहे हैं, वहां पे जगधात्री और शिवाय पहुंचेंगे. सब अपने अपने एजेंडा से पहुंच रहे हैं. जगधात्री ऑब्वियसली मूसा को पकड़ना चाहती है, मूसा जयदीप को मारना चाहते हैं, माया उनको बचाना चाहती है. सो एवरीबडी इज गोइंग विद देयर ओन एजेंडा. बट जब सब लोग वहाँ पहुंचेंगे इट्स गोइंग टू बी वेरी एंटरटेनिंग इन अ बिग फाइट सीक्वेंस, जो हम नाइट शूट करने वाले आज फुल नाइट. बट इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग बिकॉज इतने सारे लोग हैं, प्लस हिट एंड मिसेस भी होंगे. क्या हम लोग देख लेंगे जगधात्री को पुलिस अवतार में? ये सारे भी होते हैं ना, ट्विस्ट एंड टर्न्स. सो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट एंटरटेनिंग.

0: टीवी के सीरियल महादेव एंड सन्स में मैं आज पहुंच गए हैं बरेली के बच्चन और जरा देखिए तो कैसे आकाश धीरज और आशीष के साथ हो रही है उनकी नोकझोंक। वही नोकझोंक के बाद जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आए भाई देखिए इनकी मजेदार बातें सुनकर आप भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे।
1: अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो हा? अगर तुमको पैसेंजर उठाने नहीं थे तो राइड एक्सेप्ट क्यों करी तुमने?
2: अरे महाराज गलती से कर ली। अरे एक गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं। एक काम करो आप कैंसिल करो दूसरी गाड़ी दे।
3: सुनो ऐसा है गुरु अब हो गई है राइड बुक और ये धूप है बहुत तेज हमारे यहाँ पे खड़े करके पारा ना करो भाई नहीं तो मिलेगा तुम्हें एक स्टार और कंपनी से मिलेगी सीधी फटकार समझे?
1: काट दिया? अरे हम सुलझा बुझा के बुला लेते ना लेकिन हर बात पे तुमको फूट के हीरो बनना होता है।
3: देखा आप हीरो नहीं बन पा रहे हो इसलिए हमें हीरो बनना पड़ा वरना हम तो अच्छे खासे अपने दोस्त को कॉल कर दिए थे वो आ जाता अपनी गाड़ी लेकर के मस्त एसी की ठंडी हवा लेते हुए जाते दोनों भाई। अरे धूप में खड़े सिक रहे हो रोटी की तरह पापड़ हो जाओगे इसलिए करा हमने उसे आए बड़े
4: रोटी की हो तो
3: ए भाई ए छाती पर चढ़ाएगा
4: पैसा कमाने के लिए भी।
1: आप होंगे आशीष जी और आप होंगे वही गुस्सा भाई साहब जो दाना पानी लेके हमारे पीछे पड़ गए थे है नहीं सही पकड़े?
5: अरे बड़ बोला तुम मत करो अरे गुस्सा किसको बोल रहे हो भाई एक तो तुम लेट आए ऊपर से ये पैसेंजर को भी बिठाने आए तुम है
1: पैसेंजर
5: और मुंह चला रहे हो फालतू में।
1: अरे भैया मुंह नहीं चला रहे सही पकड़ ली है एक और चीज पकड़ा एकदम भैया होंगे सगे भी बेहतर है नहीं पकड़ लिए एक नरम एक गरम एक ने मामला गरमा दिया एक ने नरमा दिया आप दोनों को देख के हमें हमारे भैया की याद आ रही है देख रहे हैं अंदर वहाँ पैसेंजर हमारे बड़े भैया हम दोनों की ट्यूनिंग भी एकदम सेम है हमारे भैया ही थे जिसने वो राइड एक्सेप्ट कर लिया हाँ कि करना नहीं था लेकिन कर लिए और फिर वही वाली बात वन स्टार पैसा ईमानदारी अब सर ये बात थी इसीलिए आ गए
3: चलोगे
1: भैया भैया बात ऐसी है कि हम है कृष्णा और वो कृष्णा हाँ दोनों कृष्णा एकदम सेम वो भी सारथी हम भी सारथी और सारथी का काम होता है सवारी को मंजिल तक पहुंचाना मंजिल तक पहुंचाएंगे तो है गुरु लेके जरूर जाएंगे लेकिन हम आपके भैया को हैंडल करेंगे आप दोनों हमारे भैया को हैंडल करेंगे हैं?
5: अरे
3: आपका इंट्रोडक्शन हो गया हो तो चले महाराज
1: महाराज एक बात है महाराज
3: अरे भाई सारे तो कोई नहीं चले
6: अब ऐसा है देखो कृष्ण भगवान और महादेव दोनों एक दूसरे के भक्त हैं ना ऐसा कहते हैं माइथोलॉजी में कि शिव जी विष्णु भगवान के भक्त हैं और विष्णु भगवान शिव जी के भक्त हैं तो कृष्ण को महादेव के सेट पे आना ही था ये तो तय था होना बाकी वी हैव कम फॉर अ प्रमोशन हम लोग का एक इंटीग्रेशन शूट है जहाँ पे हम मैं और मेरे जो बड़े भैया हैं गंगा भैया हम यहाँ पर आए हैं इनके शो में इंटीग्रेट करने के लिए इनके साथ एक आध सीन करेंगे हम लोग एंड ताकि महादेव की ऑडियंस को भी पता चले कि एक शो आ रहा है जिसका नाम है बरेली के बच्चन इट्स ए इंटरेस्टिंग सीन आप देखिएगा आई गेस 4-5 दिन में आ जाएगा इनके एपिसोड में।
7: रिलैक्स संडे हो और उसमें एंटरटेनमेंट का तड़का ना लगे ऐसा कैसे हो सकता है तभी तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए टीवी की दुनिया से ये सेगमेंट जहां हम दिखाते हैं आपको टीवी की दुनिया के अलग अलग रंग जी हाँ सही पहचाना आपने ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज लेट्स चेक इट आउट।
0: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टेलीविजन की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें रॉकिंग और शॉकिंग खबरों में बात करते हैं नागिन 7 की जिसका होने वाला है बहुत जल्द रैप अप और बीती शाम हुई इसकी लास्ट डे शूटिंग जहां सास बहू और बेटियां के कैमरे में कैद हुई प्रियंका चहर चौधरी। अनीता हसनंदानी

और दिव्या अग्रवाल। भाई आपको बता दे कि फाइनल एपिसोड्स के लिए अनीता हसनंदानी और दिव्या अग्रवाल खास मेहमान बनकर आएंगी, जो इस स्टोरी में लेकर आएंगी बेहद ही खतरनाक ट्विस्ट। इसी के साथ नजर आए नामिक पॉल भी।

0: नजर डालते हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 के प्रोमो पर। भाई खतरों के खिलाड़ी का ये सीजन बहुत जल्द शुरू होने वाला है, ऐसे में रोहित शेट्टी ने ली है धमाकेदार एंट्री।
1: शुरू होने जा रहा है डर का नया दौर।
0: इसके अलावा देख लीजिए हर्ष गुजराल का ये वीडियो। भाई केप टाउन में भी इनकी फ्लर्टिंग और मस्ती जारी है।
2: मी लिसन टू साउथ अफ्रीकन म्यूजिक, नो यू लिसन टू इंडियन म्यूजिक। सूरज हुआ मतलब चांद डलने लगा, लुक एट द चांद।

0: शाइनी दोषी और अभिषेक कुमार का शो इश्क दम इडली रसम का रैप अप हो गया है। भाई ऐसे में देखिए, सभी कलाकारों ने एक दूसरे को फेयरवेल दिया।
1: गाइस हमारा लास्ट डे और बट एक्चुअली लास्ट वाले दो तीन दिनों में बहुत मजा आया,
2: बहुत मजा
1: यहाँ वाले
2: एक्चुअली हाँ केरला का सीक्वेंस बहुत ही अच्छा निकल कर आया है।
0: मॉमी टू बी सुरभि ज्योति ने बीती शाम सेलिब्रेट किया अपना जन्मदिन और इसी के साथ रखा गया इनका बेबी शावर। ऐसे में देख लीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली संग किस तरीके से इन्होंने इन डबल खुशियों को सेलिब्रेट किया।

0: यू नो व्हाट, हम जानते हैं कि किस तरह आपके संडे को हम बना दें फंडे, क्योंकि यहां तो है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज, और ये गुड न्यूज जुड़ी है आपके फेवरेट सितारे से, जिनसे की है हमने एक स्पेशल मुलाकात। कौन है ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, सीधा लेकर चलते हैं आपको इनके पास, हमारा इंटरेस्टिंग सेगमेंट और आपका फेवरेट सितारे से मुलाकात।
1: मैंने अभी अभी यवनों के सर्वश्रेष्ठ योद्धा को पराजित कर सबके सामने मारा है।
2: हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी, और आज मेरे पॉडकास्ट में एक ऐसा कलाकार है जिनको मैं पिछले 15 सालों से जानता हूं। आई हैव सीन हिज जर्नी। ही उनकी एंट्री एकदम हीरो की तरह हुई, ढेर सारे उन्होंने शोज किए, बहुत दर्शकों से प्यार इन्होंने पाया। लेकिन एक एक्टर होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ करने की उसमें हमेशा एक लालसा रहती है। तो ये एक्टर हैं, ये प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, इसके अलावा ढेर सारे मल्टी टैलेंट्स हैं, एंड आई लव द वे ही हैज़ transformed himself and he's doing really something different. तो मेरे साथ हैं आशीष शर्मा। जय श्री राम आशीष।
3: जय श्री राम अमित, थैंक यू सो मच।
2: तो आशीष को देखते हैं, सबसे पहले मेरे मुंह से निकलता है जय श्री राम, क्योंकि इन्होंने एक किरदार निभाया था सिया के राम शो में, भगवान राम का। एंड आई थिंक भगवान राम का किरदार कोई निभा ले तो वो अमर हो जाता है।
3: Absolutely.
2: तो अभी भी लोग आपको मिलते हैं वही जय श्री राम बोलते हैं, बिकॉज यू नो प्लेइंग अ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर मेक्स यू इमॉर्टल, और इतना प्यार और रिस्पेक्ट इन yes. किरदारों की वजह से कलाकारों को मिलता है।
3: yes.
2: तो स्टिल पीपल रिमेम्बर यू एज लॉर्ड राम ऑफ सिया के राम।
4: सिया का राम से हुआ ये अद्भुत मिलन।
3: हाँ बिल्कुल, अभी भी उतना ही प्यार और उतना ही, मतलब मैं अमेज रहता हूँ कि अभी भी उतना रेलेवेंट है शो, अभी भी उतना फ्रेश है लोगों की मेमोरी में। एंड एवरी टाइम समथिंग, कुछ भी रामायण के ऊपर बनता है या श्री राम के ऊपर बनता है तो डायरेक्ट कंपैरिजन स्टार्ट होता है सिया के राम से। एंड आई थिंक वो जीत है उस शो की और वो जीत है श्री राम की।
2: तो आपसे ओपिनियन जानना चाहूंगा, रामायण फिर से आया, रणबीर कपूर का चेहरा है, राम वायरल हो रहा है, तो हमारे टीवी के राम, सिया के राम, के राम को ये राम फिल्मी पर्दे के राम कैसे लगे?
3: वेट ही कर रहा था ये क्वेश्चन सब आए।
2: जी
3: आई लाइक देम, मतलब फिल्म जो भी ट्रेलर देखा वो तो अच्छा ही है। मेरा पर्सनल ओपिनियन बस एक ये है कि अगर हम राम को पर्दे पर डिपिक्ट करते हैं, श्री राम को हम पर्दे पर लेकर आते हैं, तो हम टेक्निक से दुनिया बना सकते हैं, भाव नहीं बना सकते हैं। और श्री राम भाव हैं, श्री राम हिंदुस्तान की नब्ज़ हैं, हमारा डीएनए है, वो इस कदर हमारे अंदर बस रचे बसे हैं और हम उनके साथ में रचे बसे हैं। तो आई थिंक जब तक हम श्री राम में विश्वास ना करें, वो उनको उतारना पड़ते पर बहुत मुश्किल है। और श्री राम क्योंकि किरदार नहीं है, वो विचार हैं, और उस विचार को अगर जब तक हम उस विचार में विश्वास नहीं रखते हैं, वो पर्दे पर दिखाई नहीं देता है।
5: तुमसे है अच्छाई, तुमसे ही सच्चाई।
2: तो आपकी एक फिल्म थी हिंदुत्व, उसकी शूटिंग हो रही थी ऋषिकेश में, तो एक किस्सा बताना चाहूंगा। तो दीपिका जी जो हमारी सीता माँ का किरदार उन्होंने बनाया था, वो भी उस फिल्म में थी, और उनके साथ मैं लक्ष्मण झूला पे हम जा रहे थे, तो मैंने एक्चुअली देखा कि भक्त आए और उनके चरणों में लौट गए, एंड वो बड़ा ही एक वो बड़ी एम्बेरस हो गई कि उनसे बड़ी उम्र के लोग उनके चरणों में लौट गए। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि लोग आके हाथ जोड़ रहे हैं, मतलब आपसे बड़े लोग श्री राम जी आप बने, तो लोग क्योंकि जो पर्दे पर दिखाते हैं लोग उसे सच मान लेते हैं?
3: होता है, बिल्कुल होता है, अभी भी होता है काफ़ी समय, और जिस समय शो था उस समय तो बहुत होता था। बड़े बुजुर्ग भी करते हैं ऐसा, पर वो आई अंडरस्टैंड कि वो आशीष के पैर नहीं छू रहे हैं, वो अपने श्री राम के पैर छू रहे हैं, क्योंकि वो उनकी प्रतिमूर्ति आपके अंदर देख रहे हैं, वो उस भाव, जैसे मैंने कहा वो भाव है उनके अंदर में, वो भक्ति का भाव है, और वो उसे पूरा करते हैं, वो उसे आपके अंदर देखते हैं। सो हाँ, एम्बेरसमेंट होती है डेफिनेटली, और आप मैं उन्हीं से क्षमा मांग लेता हूँ, भाई प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए, आप मेरे पैर मत छूइए, और मैं थोड़ा सा उनको सा हंसी मजाक में समझा देता हूँ। पर आई थिंक ये श्री राम का मैजिक है, ये भारत में श्री राम का मैजिक है, और वो कभी नहीं खत्म होगा, कभी भी नहीं।
5: कहाँ ये खेल सीखा नजर से।
2: आशीष से मेरी मुलाकात हुई थी, इनका एक शो आता था गुनाहों को देखता, जो इनका पहला टीवी शो था।
3: yeah.
2: यानी बहुत ही संजीदा कलाकार हमेशा रहे, लेकिन आशीष योर लाइफ took a turn when you got married. तो कहते हैं शादी एक होती है कि बिल्कुल बदल देती है, एंड न्यू डायमेंशन ऑफ योर जर्नी स्टार्टेड वेरी क्रिएटिवली बिकॉज अर्चना एंड आप दोनों ने मिलकर आज प्रोड्यूसर है, राइटर है. तो हाउ डिड योर लाइफ चेंज आफ्टर मैरिज?
3: टोटली कम्प्लीटली. एंड आई थिंक जिंदगी का सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आई थिंक सोच समझ कर खेले जाने वाला गैम्बल इज मैरिज. और वो गलत हो जाता है तो फिर बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है. आई थिंक मेरा पासा सही पड़ गया. एंड अर्चना इज नॉट जस्ट अ स्पाउस, यू नो शी इज वो लोग बोलते हैं ना कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो उसका हाथ नहीं है, मतलब वो शिव पूरी की पूरी खड़ी है. और वो मतलब पीछे भी नहीं खड़ी है, साथ में भी नहीं खड़ी है, शी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी.
2: टेलीविजन की बात करें तो आपने टेलीविजन कुछ ऐसे किरदार निभाए जो बहुत ही मुश्किल से लोगों को मिलते हैं. यू फॉर्चुनेट इनफ कि आप भगवान राम बने, चंद्रगुप्त बने, पृथ्वी वल्लभ, तीन ऐसे कैरेक्टर्स जो हमारे पौराणिक या हमारे इतिहास के कैरेक्टर्स थे. तो ये तीन सीरियल्स में से नाम लिए क्योंकि तीन अलग अलग हिस्ट्री के हमारे कैरेक्टर्स आपने निभाए, भगवान राम माइथोलॉजी, चंद्रगुप्त एंड चाणक्य की जो कहानी थी बहुत अच्छे से, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत शो था, एंड ऑफ कोर्स पृथ्वी वल्लभ. तो इस तरह का जो कंटेंट है हमेशा से इट वर्क्स ऑन टेलीविजन. आजकल यही कंटेंट ज्यादा वर्क करता है कि पौराणिक कथाएं हमारी जो इतिहास का एक हो गया है. तो हाउ वाज एक्सपीरियंस डूइंग थ्री डिफरेंट कैरेक्टर्स वी ऑल नो, एंड कहीं ना कहीं टेलीविजन उनको और अच्छे से बताता है ये कहानी?
3: हाँ, आई थिंक मेरे केस में ऐसा था कि जो आप सोचते हैं वो आप अट्रैक्ट करते हैं, जो आप पढ़ते हैं वो आप अट्रैक्ट करते हैं. सो आई हैव ग्रोन अप रीडिंग अलॉट. तो मेरे घर में किताबें बहुत थी क्योंकि पापा लिखते हैं, राइटर भी थे, एंड ही यूज टू बी आरएएस ऑफिसर, अधिकारी थे पर राइटर थे. तो घर में ना मैं किताबों के साथ बाला बड़ा. मैंने कभी पापा को विदाउट अ बुक सोते हुए नहीं देखा है. ही यूज टू स्लीप विद अ बुक ऑन हिज चेस्ट ऐसे. सो वो शायद क्योंकि आप बड़े हो रहे हैं उस परिवेश में, उस माहौल में, तो आप भी फिर पढ़ना सीखते हैं. तो बहुत छोटे से आई स्टार्टेड रीडिंग अलॉट. तो पापा की बुक्स जो थे मैं पढ़ना शुरू कर दिया. तो उनमें मैंने इतिहास, साइकोलॉजी, कथाएं, पौराणिक कथाएं और स्पिरिचुअल बुक्स, तो ये मैंने बहुत पढ़ी बचपन में. तो पढ़ते पढ़ते मैं बड़ा हुआ, एंड आई थिंक वो सारी चीज़ें मुझे एक्साइट करने लगे कहीं ना कहीं दिमाग में. और जब मैं मुंबई आया तो आई थिंक देन आई स्टार्टेड अट्रैक्टिंग दोज काइंड ऑफ रोल्स. और जो चंद्रगुप्त से शुरू हुए, एंड आई थिंक क्योंकि चंद्रगुप्त एक बहुत ही वेल रिसर्च शो था और बहुत अच्छी तरीके से उसे लिखा गया था, और उसमें इतिहास को बहुत सही तरीके से दिखाया गया था. प्रेजेंटेशन बहुत इंटरेस्टिंग था उस जमाने के लिए.
6: क्या को राखे साईया, साईया, मार सके न कोई.
3: और आपको एक आप ट्रिविया देते हैं, एक ट्रिविया देता हूं मैं आपको.
2: ओके, तो हमारे शो में आशीष से ट्रिविया.
3: तो चंद्रगुप्त इज अ शो जो कि कुरुक्षेत्र में एक गुरुकुल है.
2: ओके.
3: वहां पर टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है, शो को दिखाया जाता है बच्चों को.
2: ओ माय गॉड.
3: टू टीच देम अबाउट चंद्रगुप्त एंड चाणक्य. एंड आई ऑल्सो गॉट टू नो दिस वेरी वेरी रिसेंटली फ्रॉम एन एक्स स्टूडेंट हु ऑल्सो हैपेंस टू बी अ जर्नलिस्ट नाउ, अ वेरी वेरी वेल रिनाउंड जर्नलिस्ट. तो उन्होंने मुझे ये बताया कि वो उसी गुरुकुल से पढ़े हैं, और आई थिंक 6th to 8th के बीच में बच्चों को उस गुरुकुल में चंद्रगुप्त दिखाया जाता है.
2: okay.
3: हमारा वाला शो
1: कि मैंने अभी अभी इन यवनों के सर्वश्रेष्ठ योद्धा को पराजित कर सबके सामने मारा है.
2: आप हमारे शो के भी हिस्सा रहे हैं. हमारे शो में हमने आपके सारे शोज का ऑन लोकेशन बिहाइंड द सीन कवर किया है, लेकिन आज भी फैंस आपके एक शो के दीवाने हैं. जब भी आशीष शर्मा का नाम आते दे स्टिल टैग यू विद दैट शो. एंड वो शो बहुत ही शॉर्ट टर्म रहा, लेकिन उसका इम्पैक्ट आज भी स्ट्रांग है. वो शो था रंग रसिया जहाँ आपकी सनाए रानी के साथ जोड़ी थी. एंड दैट शो, आई डोंट नो, फैंस स्टिल लव यू इन दैट शो. तो व्हाट वाज देयर? और मैंने कहा कि 1.5 साल ही वो शो रहा, लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था. तो हाउ स्पेशल इज रंग रसिया इन टर्म्स ऑफ ग्रेट अ फैंडम, क्रिएटेड अ फैंडम फॉर यू?
4: मोहब्बत की कोई और कहानी.
3: वेरी वेरी स्पेशल. आई थिंक रंगरसिया ने मुझे पिवट किया ऐसे. और रंगरसिया इज़ अ वेरी पर्सनल शो फॉर मी. बहुत करीब है मेरे दिल के, और आई थिंक वो इसीलिए आज भी दुनिया भर में रीरन होता है. इट इज़ स्टिल बार बार रीरन होता है, और उसके इंडिया से ज़्यादा अब्रॉड फैंस हैं, वहाँ बहुत पॉपुलर है शो. आई थिंक उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है क्यों, क्योंकि वो राजस्थान का शो है इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर. यस. और मैंने कहा ना कि कुछ है ऐसा जो यू नो बार बार आपको वहाँ लेकर जाता है. एंड आई थिंक वो इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि उसमें मेरी अपनी ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि मैं वहाँ से हूँ. तो वो मेरे लिए बहुत आसान था क्योंकि मैंने वो जीवन बहुत करीब से देखा है, जिया है, मैं पला बड़ा हूँ वहाँ पे. तो वो रस्टिकनेस, वो रॉनेस, वो पैशन, आई थिंक वो वर्क करता है उस शो के लिए. और उस शो में ना कहीं कुछ बहुत एक ऑनेस्टी है उस शो में. क्योंकि जो बना रहे थे ना हम सब के अंदर एक ऑनेस्टी थी उस समय, क्योंकि हमें एक बहुत ही किकैस गेम चेंजर शो बनाना था. तो सबका ना माइंडसेट एक था बस कि ये बनाना है. एंड उस समय के लिए एक मेल सेंट्रिक शो, एक्शन शो, इतने बड़े लेवल पे माउंट होना, सो इट वॉज ऑल न्यू फॉर टेलीविजन. सो आई थिंक आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ दैट. एंड इसीलिए आई थिंक वो स्टैंड आउट करता है शो भीड़ में से आज भी, और इसीलिए उसका रिकॉल वैल्यू इतना ज़्यादा है. आई थिंक इट्स द रस्टिकनेस और वो उसका जो राजस्थानीपन है, आई थिंक वो उसे स्टैंड आउट करता है. उसका म्यूज़िक स्पेशली उसे स्टैंड आउट करता है क्योंकि उसमें भी वो राजस्थानी टच है. एंड आई थिंक बस वही है उस शो की कहानी.
7: ऐसे कर रही है जैसे 6 साल की बच्ची हो.
8: जितनी भी हूँ आपसे 1 साल बड़ी हूँ.
2: तो मेरे साथ आशीष शर्मा है. वेब एक ऐसा दुनिया है जहाँ पर सब नदियाँ आके मिलती हैं. तो इन्होंने फिल्में भी की, टेलीविजन भी की, लेकिन वेब पे इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो आज सबके ज़बान पर है. प्रधानमंत्री मोदी का किरदार आपने वेब पर निभाया. तो एक पहली बार मतलब मोदी जी को देखने का मौका मिला था. बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि ओरिजिनल मोदी का किरदार सबसे पहले आपने निभाया था.
9: साल के संघर्ष को बेकार कर दिया.
2: तो हाउ वाज प्लेइंग नरेंद्र मोदी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऑन एनी मीडियम ऑन योर वेब सीरीज मोदी, जिसका आई थिंक 2 सीजन आए थे.
9: हाँ, तो लड़ाई भी आपकी अपनी होगी
3: जी. ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस था. आई थिंक मेरे लिए तो एज एन एक्टर कमाल का एक्सपीरियंस था. एक तो डायरेक्टर उसके उमेश शुक्ला, इतने बढ़िया डायरेक्टर
2: जी,
3: और पूरी टीम ही बहुत ही अच्छी थी. रिसर्च बहुत अच्छा था शो का. और किसे मौका मिलता है अपने इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर को प्ले करने का. एंड वो भी उसमें मज़ा ये था कि उनके ऐसे फेज को पोर्ट्रे करना था जिसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं.
2: ओके.
3: उनका यूथ, उनका 25 से 45 वाला जो फेज था, प्री सीएम फेज.
2: ओके.
3: और जब वो स्कूल, जब वो कॉलेज में थे, कॉलेज से कैसे वो जनसंघ का हिस्सा बने, जनसंघ से कैसे वो धीरे धीरे इमरजेंसी का पूरा एरिया एरा, वो समय कैसे उन्होंने किया, वो क्या बहुत कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं है.
2: फिल्में हो गई, वेब हो गया, सीरियल हो गया, लेकिन एक और झंडा आपने गाड़ा था रियलिटी शोज का, यू वर विनर ऑफ झलक दिखला जा ऑल्सो. सो यू आर अ गुड डांसर, दैट प्रूव्स इट. तो रियलिटी शोज हमारे देश में मतलब वो भी बहुत देखे जाते हैं, चाहे झलक दिखला जा हो या बिग बॉस हो. तो रियलिटी शोज से आप तो विनर हैं झलक दिखला जा के. तो रियलिटी शोज से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? वुड यू डू अ शो लाइक अ बिग बॉस?
3: झलक फॉर मी वॉज नॉट अ रियलिटी शो. झलक फॉर मी वॉज अ शो अबाउट डांस. वहाँ पे मुझे एक ऐसी आर्ट फॉर्म थी जो मैं इंजॉय करता हूँ और मुझे सीखने को मिला. सो दैट इज़ वाई आई डिड झलक, नॉट बिकॉज इट वॉज अ रियलिटी शो. आई थिंक रियलिटी शो जो होते हैं उसके लिए एक अलग तरह का माइंड सेट चाहिए, एक अलग इक्विप्ड सोल चाहिए. वो मैं नहीं हूँ शायद. और मैं बहुत क्लियर हूँ मैं यहाँ क्यों आया था सब छोड़ छाड़ के, कि वाई डिड आई कम टू मुंबई. आई केम हियर टू एक्ट. आई एंजॉय माई क्राफ्ट, आई एंजॉय माई आर्ट. लाइक जैसे आपने बोला कि अब ये लिखते भी हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो मेरा सेफ जोन है, वो मुझे मज़ा आता है करने में.
2: सो वॉट नेक्स्ट? केजरीव आ चुकी है, वॉट कीप्स यू बिजी? आपने अभी वर्टिकल शोज भी प्रोड्यूस किए, तो वर्टिकल न्यू एरा इन कॉन्टेंट टेलिंग. तो हाउ वाज एक्सपीरियंस डूइंग अ वर्टिकल शो?
3: मज़ा था, एक नई तरह की टेलिंग है, नए बच्चे देख रहे हैं उसको. आई थिंक वी हैव टू मूव विद द टाइम्स, वी शुड लर्न वट एवर इज हैपनिंग. मुझे तो नई चीज़ें सीखने में बड़ा मज़ा आता है. तो मुझे बहुत मज़ा आया वो बनाने में, कि कैमरा ऐसे से ऐसा हो गया, तो अब ऐसे कैसे देखना है,
2: हम वर्टिकल में शूट कर रहे हैं.
3: सारी दुनिया को ऐसे देखना है आपको
2: जी.
3: जिंदगी भर हमने ऐसे देखा है सिनेमा स्कोप में, अब ऐसे देखना है उसको. बट इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. इट्स अ न्यू थिंग. नए बच्चे ऐसे देख रहे हैं, नए बच्चे ऐसे सीख रहे हैं, नए बच्चे ऐसे बना रहे हैं. सो आई थिंक इट वॉज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी. एक तरह की नई तरह की स्टोरी टेलिंग कहानी है. आप ऐसे कह रहे हैं ऐसे कह रहे हैं, एक तरह की कहानी कहने का तरीका. मुझे बड़ा मजा आया बनाने में. बहुत फास्ट पेसी, वे सर पैर कुछ होता नहीं, आप बस बनाए जाओ तो बन गया कुछ भी. उसमें भी आई ट्राइड फाइंडिंग सम स्टोरी इन इट ऑल्सो. तो मजा आया मुझे तो बहुत करने में.
2: हाँ जी, तो उम्मीद करते हैं कि आशीष, जिस तरह आपने टेलीविजन हो, वेब हो, फिल्में हो, सबका दिल चुराया, तो आपके नए वेंचर के लिए ऑल द बेस्ट. एंड उम्मीद करते हैं कि राजस्थान का नाम आप रोशन करें. ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू. एंड आज हमने लंबी चौड़ी बात की, बातों का सिलसिला हमें रोकना होगा कि वक्त का टिक टिक कर रही है. तो थैंक यू सो मच.
3: थैंक यू.
2: ऑल द बेस्ट. एंड उम्मीद करते हैं कि आपको आशीष मिलता रहे सब लोगों का.
3: थैंक यू सो मच.
2: थैंक यू सो मच.
3: थैंक यू. थैंक यू.
0: सच में संडे का असली मजा तो तब आता है जब अलार्म नहीं, सिर्फ रिलैक्सेशन और रीसेट होता है. तो क्या है आपका संडे प्लान? हमारा संडे प्लान तो सिर्फ एक ही है कि लेकर आए आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट. तभी तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए स्पेशल स्टोरी, जिसे संभाल कर रखा है हमने खास आपके लिए. कैसे? ऐसे.
10: लक्ष्मी निवास की राधिका बनी पेंटर बाबू. भाई लक्ष्मी निवास की इस बेटिया रानी को मिल गया है एक नया प्रोफेशन. देखिए कैसे सेट पर दरवाजे पेंट कर रही है, पसीना बहा रही है. भाई सीरियल में तो आंसू बहाती है, लेकिन यहाँ पर पसीना बहाया जा रहा है, वो भी असली वाला.
11: दावे दावे पांव से आए होले होले
10: सास बहू और बेटिया पहुंचा जी टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास के सेट पर, जहां में मिली राधिका यानी अक्षिता मुद्गल पेंट करते हुए. और पेंट भी देखिए पूरे दिल से कर रही हैं. तो क्या भाई उन्होंने एक्टिंग छोड़ पेंटर बाबू का रोल अपना लिया है?
12: काम करो तो अच्छे से करो ना, ऐसे मतलब छोटे छोटे खड्डे हैं इसमें वो भी तो भरने हैं. सो आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट. कैसा आ रहा है? हुआ अच्छा आ रहा है. तो अभी क्या साहब तनख्वाह नहीं देते तो ये सब करना पड़ता है, एक्स्ट्रा काम भाइयों वाला. ठीक है, अच्छा हो गया ना? पीछे भी करोगे?
13: नहीं.
12: हाय हाय, पीछे नहीं करेंगे. अच्छा आगे
13: भाई वाला करते.
12: कौन सा वाला करोगे? कौन सा ये करोगे पूरा?
13: मैच करेगा ना, ये जाएगा वहां.
12: मतलब मेहनत का है इसके लिए, हाइट भी लगे. देखो दादा फिनिशिंग नहीं है, देखो. नहीं सूट किया सूट किया. अच्छा सूट किया, ये सूटने की बात ऐसा हो जाता है. डर लगी हुई यहाँ पे सच में. मैं तो टाइम पास कहाँ पे, ये छोड़, ये भी कर रहे हो, ये भी करना है.
14: भाई सुन ना, लक्ष्मी में फुटवेयर मांग रही, हील्स मांग रही, जल्दी जाओ. ये किसका है?
12: सुनील भागो वरना तुम्हारी तो शामत है.
14: ये किसका है?
10: भाई भले ही अक्षिता यहाँ पर हाथ बटा रही हो, लेकिन ये पेंटिंग पूरे दिल से कर रही हैं, बिना परवाह किए कि उनका मेकअप धुल जाए, पसीना है. और देखिए इसका नतीजा, उन्हें मिली सबसे वाफाई.
12: Yeah, I am an expensive painter, bro. That's true. I'm just doing it for my satisfaction. But if I would do it as a profession, I need good money if I'm painting anything. No, it's just for fun. I was just getting bored. So I thought I'll do time pass. But yeah, I'm not going to make up all the makeup. I'm thinking about it. I'll take 100 rupees. It's very cheap. Cheap of me to ask. But I need 100 rupees from my producer.
10: तो भाई ये था लक्ष्मी निवास का एक खास पल, जहां पर अक्षिता मुद्गल का ये कैंडिड अंदाज सास बहू और बेटिया के कैमरे ने कैद किया. तो भाई आपके सितारे और उनसे जुड़ी हुई ऐसी छोटी छोटी बातें हम अपने शो में लेकर आते हैं, तो बने रहिए सास बहू और बेटिया संग. मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
0: संडे मतलब सेल्फ केयर और ढेर सारी पॉजिटिविटी. आज ऐसा ही कह रही हैं हमसे हमारी राध्या. वैसे राध्या, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रथम और आपको भी लेना चाहिए एक प्यारा सा संडे ब्रेक, क्योंकि इस ब्रेक को आप दोनों डिजर्व करते हैं. क्योंकि आपकी जिंदगी में भी तो चल रहा है हाल ही में ओ माय गॉड हाई वोल्टेज ड्रामा. लेकर चलते हैं आप सबको मन अति सुंदर के सेट पर.
15: प्रथम ने की राध्या की बेइज्जती. से मिला घर निकाला। कामिनी के षड्यंत्र में फंस गई राध्या। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में भाई राध्या को तो पता ही नहीं है कि वो अपनी जिंदगी में क्या कर रही है। जी हाँ, तभी तो उसने कामिनी की बातें मान ली। और देखिए कैसे, जब उसने प्रथम से 2 करोड़ की डिमांड की, वही उसने उसके कदमों में लाकर इन पैसों को रख दिया। वही जाहिर सी बात है कि राध्या इस तरीके से प्रॉपर्टी और पैसों में हिस्सा मांगेगी तो प्रथम को गुस्सा आएगा ही। तभी तो देखिए कैसे वो पूरे परिवार के सामने कर रहा है राध्या की बेइज्जती।
16: और चाहिए पैसे? और चाहिए? ये भी ना? और चाहिए राधा? चाहिए पैसे? ये भी रखो कम है और ना, आज तो मैं तुम्हारी भू मांगी कीमत मिलेगी राधा। ये कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स भी है तुम्हारे, राधा को अपने हिस्से की प्रॉपर्टी पैसे हैं और मुझे बॉस ने कहना वादा। अब इससे पूछ लीजिए, बोलो ना राधा, अब बोलती क्यों बंद है तुम्हारी? क्या कम पैसे पड़ रहे हैं? बिल्कुल और ठीक तुम्हें नहीं नहीं माँ और ठीक तुम्हें देखा मेरी माँ को अभी भी तुम्हारी पसंद कभी हमारे परिवार को इस घर को किसको अपना नहीं
17: बेचारा प्रथम तो बहुत कंफ्यूज है क्योंकि वो राध्या को प्यार तो करता ही है पर जस्ट उसने उसको एक्सप्रेस नहीं किया है राध्या से, तो वो चाहता है कि राध्या के साथ उसकी अच्छी बनी रहे, लेकिन कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आ जा रही है कि उन दोनों की लड़ाई हो जा रही है। पहले अहम के बर्थडे पे ऐसा हो गया कि राध्या ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे प्रथम को बुरा लग गया, और अब क्योंकि उसे नहीं पता है ना कि रजनी ने कहा है उसे कि ऐसे बिहेव करो और प्रथम से दूर हो जाओ, तो वो बेचारा तो कन्फ्यूजन में है कि यार राध्या ऐसा क्यों कर रही है, क्यों कर रही है। बट इधर कामिनी बहुत एंजॉय कर रही है क्योंकि वो तो चाहती है ना कि जितना जल्दी हो सके राध्या साइडलाइन हो और प्रथम की लाइफ में कामिनी की एंट्री हो जाए।
15: भाई इतना ही नहीं, उसने तो राध्या को प्रॉपर्टी शेयर्स के पेपर्स भी दिए। इतना ही नहीं, उसने डाइवोर्स की अनाउंसमेंट भी कर दी। भैया प्रथम राध्या के साथ कैसे रह सकता है जब वो इतनी सेल्फिश हो चुकी है। हालांकि घर वालों में से किसी को भी ये सारी हरकतों पर विश्वास नहीं हो रहा है, भाई उनका तो सर चकरा रहा है। पर क्या करे, जब उनके घर का बेटा ही ये सब बातें कहेगा तो उन्हें मानना तो पड़ेगा ही। भाई इन सब के बीच अगर कोई मजे ले रहा है तो वो है कामिनी, जो चाहती है कि प्रथम और राध्या जल्द से जल्द अलग हो जाएं।

0: जी नहीं, डिवोर्स की बात अभी जस्ट स्टार्ट हुई है एंड वकील ने कहा है कि 2 दिन लगेंगे डिवोर्स के पेपर तैयार होने में, तो उस बात से थोड़ा ना गुस्सा आ गया है और दिल दुखा है, पर सोचा चलो ठीक है 2 ही दिन की तो बात है, जब इतना टाइम हो गया तो 2 दिन और सही, तो 2 दिन बाद डिवोर्स हो जाएगा, बट वो होगा तो नहीं।
1: ऐसे में अब देखना होगा भाई, जब राध्या को प्रथम ने घर से भी निकाला दे दिया है, देखिए कैसे वो अपने दोनों बैग्स उठाकर यहाँ से बाहर निकल रही है, तो प्रथम का तो दिल दुख ही रहा है, लेकिन उसे गुस्सा भी उतना है कि वो उसे रोक नहीं रहा है। तो ये बैग्स उसने अपने हाथों से थमाए हैं, तो वो कैसे ही राध्या को घर छोड़कर जाने से रोकेगा, ऐसे में अब देखना होगा भाई बुरी फंसी राध्या अपने आप को कैसे बचाएगी। मुंबई से कैमरामैन राम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

0: संडे के इस चिल मूड में भी टीवी की दुनिया देती है हमें सरप्राइजेस। कैसे? क्योंकि देखिए, कभी कभी तो इमोशनल ड्रामा, लेकिन कभी अनएक्सपेक्टेड फन, तो कभी आ जाता है किसी कहानी में कुछ हॉरर। तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपको इंटरेस्टिंग सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको टीवी की दुनिया से अलग अलग खबरें इन फॉर्म ऑफ रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
1: डालते हैं लाफ्टर शेफ के इन प्रोमो पर, जहां रणदीप हुड्डा लेकर आए हैं एक कमाल गिफ्ट, जिसे देखकर कृष्णा हो गए हैं बेहाल।
2: चोर कृष्णा अभिषेक को सजा देने आ रहे हैं इंस्पेक्टर अविनाश।
3: हैप्पी बर्थडे, इसका गिफ्ट लाया है।
4: कील,
5: रुक जा।
1: बॉलीवुड एक्टर आहान पांडे, जिसने सैयारा से सबका दिल जीत लिया, इन दिनों वो यूके में है अपनी सेकंड फिल्म की शूटिंग के लिए, जिसमें उनके साथ नजर आएंगे शर्वरी वाघ। वही वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि यह फिल्म है एक एक्शन रोमांस ड्रामा, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं अली अब्बास जफर।

0: इंडियाज बेस्ट डांसर के सेट पर पहुंचे माधुरी दीक्षित। तृप्ति टिमरी और धरना दुर्गा। इसके अलावा नजर आए करिश्मा कपूर, जावेद जाफरी, गीता कपूर, और टेरेंस लुइस। साथ ही शो के होस्ट हर्ष लिम्बाजिया, देख लीजिए उड़ने की आशा का ये नया प्रोमो। क्या शाइनिंग सुल्तान की गवाही खोल देगी कल्याणी के हर झूठ का राज।
1: सुल्तान जी, यहाँ कोर्ट में बताइए कि आप रोशनी उर्फ कल्याणी के दुबई वाले चाचा जी कैसे बन गए?
2: जज साहब, कसम बकरे की, मेरे को नहीं पता था कि ये फिल्म का ऑडिशन नहीं बल्कि चुटकी का नया नौटंकी है।
3: मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि सुल्तान जी ने यहाँ झूठी गवाही देने के लिए तेजस देशमुख से पैसे लिए थे।

जगह से बर्थडे सेलिब्रेशन तो आदिति गोवित्रीकर का भी था, जिन्होंने अपने बर्थडे को अपने परिवार और अपने दोस्तों संग मनाया।

0: मन्नत, ऑनेस्टली हम तो यही चाहते हैं कि इस संडे आप स्पेंड करें अपनी फैमिली के साथ और आपका संडे हो एकदम पीसफुल, और यहाँ हो ढेर सारी इमोशनल बॉन्डिंग, यहाँ हो रीसेट और आप हो जाएं कंप्लीटली रिचार्ज, क्योंकि आपकी जिंदगी में भी ड्रामा बिल्कुल थमता नहीं है, तो आपको तो जरूरत है ना उस ब्रेक की और अपनी एनर्जी को कंजर्व रखने की। तो क्या कुछ हो रहा है मन्नत की कहानी में आज? क्या संडे है रिलैक्स्ड या फिर से आया है यहाँ पर कोई इमोशनल ड्रामा? लेट्स चेक इट आउट।
1: बरातियों संग झूम कर नाचे दूल्हे राजा,

0: शादी से पहले मन्नत और विक्रांत ने लगाया डांस का तड़का। विक्रांत को आया धैर्य पर गुस्सा और पड़ा मुक्का।
1: मेरी बेटी को ले जाने के बारे में सोचा कैसे?
2: मुझे रोकने वाले तुम होते कौन हो?
0: कलर्स के सीरियल मन्नत में आज सलूजा हाउस में बज रहा है बैंड बाजा, क्योंकि आ गई है विक्रांत की बारात। जरा देखिए कैसे बराती यानी कि विक्रांत के घर वाले झूम झूम कर नाच रहे हैं और दूल्हे राजा विक्रांत भी जमकर खुशी मना रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनका प्यार जो मिलने वाला है। और तो और वो अपने भाई धैर्य के गले भी लग रहे हैं, क्योंकि वो बहुत खुश हैं कि तभी बदल जाता है गाना, क्योंकि आ रही है विक्रांत की होने वाली दुल्हन मन्नत। 16 श्रृंगार कर शादी का जोड़ा पहन लग रही है वो गजब की खूबसूरत। और देखिए कैसे विक्रांत का दिल भी जोरों से धड़क रहा है उसे देख देख कर।

0: उस 7 साल में इतना कुछ इसके साथ हो चुका है विक्रांत के साथ, दैट ही डिड नॉट इवन ड्रीम, ही डिड नॉट इवन फैदम दैट वो कड़वाहट, वो एसिड रेन, वो पेन, वो वर्लविंस, वो साइक्लोन्स, सारा यानी उससे पार कभी होके वो एक ऐसे यू नो एक पैस्चर पे आएगा जहाँ पर सुकून होगा, इट्स गोना बी सनलाइट एंड हिज वाइफ इज गोना बी देयर, हिज लव, द लव ऑफ हिज लाइफ जो मिस मन्नत है वो होगी, एंड साथ साथ शी इज ब्रिंगिंग अ रे ऑफ सनशाइन विद हर जो उसकी बेटी है, एंड वो पैस्चर पे इन दोनों को मिले, उसने कभी सोचा ही नहीं था, मैंने ये एनालॉजी दी है बेसिकली। हाँ तो विक्रांत तो बहुत ज्यादा खुश है
1: भाई। केवल विक्रांत नहीं नहीं बल्कि नीतू ने भी अपनी बहुरानी की नजर उतारी, क्योंकि उनका सपना पूरा जो हो रहा है, दोनों एक हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आज तो दुआ ने भी अपने मम्मी पापा को दिया है प्यारा सा सरप्राइज। जरा देखिए कैसे विक्रांत का हाथ थामे दुआ, अपने दिल की बात सभी के सामने रख रही है और अपने पापा का हाथ अपनी मम्मी के हाथों में दे रही है और बना रही है दोनों की जोड़ी। ये देखकर मन्नत और विक्रांत दोनों बहुत खुश हैं और उस पर प्यार भी जता रहे हैं। इतना ही नहीं, दुआ तो उनके लिए लेकर आई है स्पेशल केक भी। ऐसे में मन्नत और विक्रांत ने पूरे परिवार के साथ मिलकर केक काटा और सबका मुंह मीठा किया। फिर बारी आई असली धमाल की, यानी कि नाच गाने की। ऐसे में मन्नत और विक्रांत ने बच्चों का हाथ थामा और देखिए कैसे डांस के मंच पर चार चांद लगा दिए, क्योंकि सभी ने एक दूसरे के साथ ताल से ताल जो मिलाई है, और तो और परिवार भी इसमें शामिल हो गया है भाई। 7 साल बाद इस घर में वापस खुशियां जो लौटी हैं।

0: अब तो होता ही रहता है हमारे घर में, आए दिन शादियां होती रहती हैं, तो अभी शायद आदत सी पड़ गई है शादी देखने की। बस हम लोग तैयार होते रहते हैं हर शादी में। खुश क्यों होंगी? ऑफ कोर्स खुश नहीं होंगी, क्योंकि मन्नत अब हमारे साथ ही रहने वाली है इसी घर में, और मन्नत भी रहेगी, दुआ भी रहेगी, तो यूवी की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी। और मन्नत को साथ में देख के तो मल्ला को कभी भी खुशी नहीं होती है, बट ऑफ स्क्रीन बहुत होती है। हमेशा ही मेरा लुक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है, और मैं भी एक्साइटेड होती हूँ कि आज ये क्या मेरे लिए इन्होंने डिज़ाइन किया है, सोच के आया है। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा वो अप्सरा, इंटरनेशनल अप्सरा वाली फीलिंग आ रही है, जिसमें एक ये इंडो वेस्टर्न ड्रेस क्रिएट की है। सबने साड़ी पहनी है, बट हमेशा मल्ला के लिए वो कुछ फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इंडियन और वेस्टर्न को मिला के उन्होंने मेरे लिए एक इंडो वेस्टर्न, तो मुझे बाहर की प्रिंसेस वाली भी फीलिंग आ रही है। सो या,
1: यहाँ सब डांस में बिजी है, तो वहाँ धैर्य ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है, और देखिए कैसे वो दुआ को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। दुआ भी डरी हुई है, हालांकि विक्रांत की नजर हर पल दुआ और धैर्य पर ही है। ऐसे में विक्रांत को भी कुछ डाउट होने लगा है। इतना ही नहीं, जैसे ही डांस की महफिल से दुआ नदारद हुई, विक्रांत भी पहुंच गया अपनी बेटी के पीछे पीछे, और उसकी नजर पड़ी दुआ और धैर्य पर, जहां पर धैर्य दुआ को अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश में लगा है, उसका माइंड वॉश कर रहा है। इससे पहले कि दुआ मानती, पहुंच जाता है विक्रांत, और देखिए कैसे प्यार से सिचुएशन संभालता है, लेकिन साथ ही दिखाता है अपना गुस्सा भी।
2: क्या किया तुमने दुआ? तुमने अपने पापा को हरा दिया। हाँ, तुम्हारे पापा और मेरी ना एक्चुअली शर्त लगी थी कि दुआ किसी साथ अफेयर करती है।
3: तो ये कैसी एक्टिंग थी? मुझे रियल लगा।
1: विक्रांत को तो धैर्य का सच अब पता चला है, लेकिन याशिका उसे तो पहले ही डाउट हो गया था, जब धैर्य खुशी खुशी शादी की तैयारियां कर रहा था, वो भी शादी के मंडप के नीचे। ऐसे में याशिका मल्ला से भी सच जानने की कोशिश करती है, लेकिन मल्ला को तो लगता है कि धैर्य ने ही मन्नत और विक्रांत की जोड़ी बनाई है।
0: धैर्य की प्लानिंग के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता है। डाउट हुआ था यशिका के मन में, ये डाउट है कि कुछ तो धैर्य इज अप टू समथिंग, पर मैं बोलती हूँ कि नहीं, जितना मैं धैर्य को जानती हूँ, वो अपनी मॉम के भी अगेंस्ट चला गया था, और वो बहुत ही ईमानदार इंसान है, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। कुछ प्लानिंग थी संगीत के फंक्शन में, जो यशिका और मेरी प्लानिंग थी, कि हम लोग स्टेज को थोड़ा काटेंगे, धैर्य गिरेगा तो यू नो दुआ विक्रांत को डांटेगी और शादी तोड़ देगी, ऐसा तो प्लान था। लेकिन हमारे प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले ही वो हमारे सामने था, और मैं सोचती हूँ कि यशिका ने किया है, यशिका सोचती है मैंने किया है, लेकिन हम दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि अगर हम दोनों ने नहीं किया है तो ये किसने किया है। तो यशिका का दिमाग थोड़ा दौड़ रहा है कि धैर्य इज़ अप टू समथिंग, पर मैं बोल रही हूँ कि नहीं, अभी नहीं, डाउट नहीं करते हैं कि इसने कुछ नहीं किया होगा।
1: फिलहाल तो अभी और भी ट्विस्ट आने बाकी है, क्योंकि धैर्य के सच ने न सिर्फ विक्रांत को हिलाया है, बल्कि पूरा परिवार अब सदमे में जाने वाला है। खबरें आ रही हैं कि धैर्य विक्रांत को मौत के घाट उतार देगा। देखना होगा कि मन्नत अपने सुहाग की रक्षा कर पाएगी या नहीं। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: क्या इस संडे भी है यहाँ पर इश्क का जुनून, या फिर से कहानी में आया है कोई नया ड्रामा? क्या यहाँ पर इमोशंस हैं हाई, या फिर कॉमेडी चल रही है, या आया है कोई नया कंफ्यूजन? वेल, देखिए कहानी में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है जो लेकर आता है हमारे लिए एंटरटेनमेंट। फिलहाल तो इस कहानी में भी आया है एक नया ट्विस्ट, जिसे हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। लेकर चलते हैं आप सबको इस जुनूनी

0: के सेट पर।
1: प्रवाह पावित स्थले गले वलम्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां
2: खतरे में रूहानी की जान

पंचकार चंड तांडव। संदीप और गुरु की चिंता। बचती बचाती भक्ति रूहानी। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में भाई आज मुश्किलों में फंस गई है रूहानी, क्योंकि उसके पीछे पड़ गए हैं गुंडे। और देखिए तो कैसे अपनी जान को बचाकर वो इन गुंडों से पीछा छुड़ा रही है, भाई यहाँ वहाँ मदद की गुहार लगा रही है और अपनी जान को बचाते हुए देखिए कैसे भाग रही है। भाई इस गाड़ी से निकलकर उसने गुंडों से अपना पीछा तो छुड़ा लिया, लेकिन फिर भी गुंडे उसके पीछे पड़े हैं। देखिए तो कैसे बहुत ही मुश्किलों से रूहानी छुप रही है, लेकिन गुंडे इतने शातिर हैं कि वो रूहानी को ढूंढ ही लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ संदीप और गुरु को ये पता चल गया है कि भाई उनके घर में जो नर्स बनकर रह रही थी वो और कोई नहीं बल्कि रूहानी थी। ऐसे में अब वो जब गायब हो गई है तो देखिए कैसे दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं।

0: हुआ ये है कि रूहानी गायब थी, कहाँ थी नहीं पता था। संदीप भी ढूंढ रहा था, हम सब ढूंढ रहे थे, गुरु भी ढूंढ रहा था। फिर बाद में पता चलता है निक्की के थ्रू कि रूहानी गुरु के घर पे है, नर्स बन के उनका ख्याल रख रही है। सुबह गायब हो जाती है अचानक से, वो फ़ोन नहीं उठा रही है, कहाँ नहीं है। फिर गुरु मिलता है, गुरु को मैं पूछता हूँ कहाँ है वो, उसको भी नहीं पता। हम दोनों साथ में ढूंढते हैं, तो मुझे शक है कि कोई घर पे ही है जो खेल खेल रहा है, जो रूहानी के साथ कुछ गड़बड़ हुई है, तो घर वालों का ही कुछ खेल है। बट अब देखते हैं आगे क्या होता है।
1: ऐसे में इसी भगदड़ में गुरु और संदीप को एक नर्स के आउटफिट में लड़की मिलती है, जो हूबहू रूहानी की तरह दिख रही है। लेकिन जैसे ही वो पलटती है, भाई वो कोई और लड़की होती है। ये देखकर तो गुरु और संदीप और भी टेंशन में आ जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर एक बाइक वाले की मदद लेकर रूहानी भी यहाँ से निकल पड़ी है। लेकिन अब ये बाइक वाला उसका मददगार निकलेगा या फिर खतरा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
0: रेस्क्यू क्या, संदीप तो स्टार्टिंग से ही नहीं था इस मतलब शादी से खुश, तो वो तो उसको तो पता ही था कि रूहानी की ज़िंदगी बर्बाद ही होगी। बट वो धीरे धीरे देख रहा था कि गुरु के साथ वो खुश है, गुरु भी उसकी केयर करता है, तो वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था कि ठीक है रूहानी खुश है तो ठीक। बट अब उसके घर पे जो हो रहा है, रूहानी के खिलाफ जो साजिशें रच रहे हैं, उससे थोड़ा वो दुखी है। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है।
1: तो वहीं दूसरी ओर घर पर डाइनिंग टेबल पर हो रही है तेजू और गुरु के शादी की बातें।
2: तेजू बेटा, अब तो तुम हमारे गुरु के साथ काफी वक्त बिता चुकी हो, उसे समझ चुकी हो, तो ये बताओ हमारा गुरु तुम्हें कैसा लगा?
3: दादी, मुझे आपका पोता पसंद है, पर एक प्रॉब्लम है, वो अभी पूरी तरीके से।
2: हम तेजू और गुरु के रिश्ते की बात कर लेते हैं।
3: वेट वेट वेट, मैं हूं ना, मैं उसे पूरी तरीके से बाहुबली बना दू।
4: सो मच इज गोइंग ऑन। घर में रूहानी के रहते हुए हम दूसरी लड़की के साथ हम चाहते हैं, क्योंकि तेजू आई है अभी, और तेजू के जो भाई हैं वो नागेश्वर जी के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो दादी, नागेश्वर, समवेयर, पुष्पी और हम दोनों भी, हम चाहते हैं कि शादी हो जाए उन दोनों की। लेकिन जो सबसे बड़ा कांटा है हमारे रास्ते का और उन दोनों के रिश्ते को पूरा होने के लिए, वो है हमारी जो कंपाउंडर है, वो जो अभी नर्स बनी हुई थी। लेकिन उस कांटे को कैसे हटाया है उस पर अभी ज़्यादा जोर है, क्योंकि पूरी तरीके से गुरु अभी वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो ये मुद्दा ज़रा अभी ज़्यादा नोटिस में हमारे लिए।
1: भाई जब गुरु भी घर पर होता है, वो घर वालों से पूछताछ करता है कि आगे नर्स कहाँ पर गई है, लेकिन घर वालों को तो उसकी पड़ी ही नहीं है। तभी तो वो उसे कोई भी जवाब नहीं देते हैं, और तभी ही गुरु को फोन आता है कि रूहानी गायब हो गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर कैसे गुरु रूहानी की जान को बचा पाएगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: सच में संडे का असली मजा तो तब आता है जब अलार्म नहीं, सिर्फ रिलैक्सेशन और रीसेट होता है। तो क्या है आपका संडे प्लान? हमारा संडे प्लान तो सिर्फ एक ही है कि लेकर आए आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। तभी तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए स्पेशल स्टोरी, जिसे संभाल कर रखा है हमने खास आपके लिए। कैसे? ऐसे।

अरविंद वैद्य जी का जोरदार स्वागत। '26 में पद्मश्री अवार्ड मिलने पर अनुपमा के सेट पर मनाई खुशी।

साथ नजर आया अनुपमा के सेट पर अरविंद वैद्य का परिवार। हाल ही में पद्मश्री अवार्ड 2026 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और यहाँ पर इस खास अवार्ड से नवाजा गया आप सबके प्यारे बापूजी यानी कि अरविंद वैद्य जी को। ऐसे में जब इस सेलिब्रेशन के बाद वो अनुपमा के सेट पर लौट कर आए तो भाई देखिए माहौल कुछ इस तरीके के सेलिब्रेशन का था। तो भाई इस सेलिब्रेशन के मौके पर उनकी बेटी वंदना भी यहाँ पहुँची, वो भी अपने दोनों बच्चों संग। इसके अलावा यहाँ पर उनकी वाइफ जयश्री भी पहुँची और भाई सेट पर ये मौका बेहद ही खास रहा। ऐसे में पूरी टीम अनुपमा एक साथ नजर आई जिन्होंने अरविंद वैद्य की इस खुशी को एक साथ मिलकर मनाया। भाई देखिए कैसे उन्हें यहाँ पर एक ग्रैंड और वार्म वेलकम मिला और साथ ही हुई केक कटिंग भी।

0: ऐसे में आइए करते हैं अरविंद वैद्य और उनके पूरे परिवार से एक खास मुलाकात। साथ ही इस मौके पर राजन शाही भी खास मेहमान बनकर पहुँचे, तो करते हैं उनसे भी बातचीत।
1: राजन जी, जब मेरी जिंदगी का पहला नाटक, पहला शो मैंने किया था और उस वक्त पर्दा हट गया और ऑडियंस को मैंने देखा पहली बार, आई वॉज अबाउट 25, तब जो एक रोमांच हुआ था प्रेक्षकों को देख के, वही रोमांच फील हुआ जब मुझे वहाँ से पता चला कि मुझे ये अवार्ड दे रहे हैं। उसके बाद वैसा ही रोमांच मैंने फील किया था जब मेरी बेटी की बेटी ने इसे जन्म दिया था। मैं एक नाटक का रिहर्सल कर रहा था और मुझे पता चला कि मैं दादा बन गया हूँ, तो मोटरसाइकिल पे मैं जा रहा था। जनरली मैं कभी सिग्नल तोड़ता नहीं आज तक, लेकिन उस दिन मैंने सिग्नल तोड़ा तो मुझे बिल्कुल याद है, एक पुलिस वाला यूं मेरे पीछे कर रहा है। मैंने कहा चल हट, आज मैं दादा बन गया हूँ। और मैं तो वो जो रोमांस था पहले प्रेक्षक को देखना, तो वो और कोई कह नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। दैट वाज दी ब्यूटीफुल थिंग। वैसे तो हर रोज़ मैं यहाँ आता हूँ, पहला शॉट देता हूँ तो थोड़ा नर्वस होता हूँ लेकिन बाद में अभय बोल देता है बाबू बराबर से, बाबू बराबर है तला।
2: एक बहुत अच्छी बात है या वंदना जी, एंड प्लीज सम फ्यू वर्ड्स।
3: हाँ हाँ, ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन नहीं, पर एक्चुअली कितनी बार होता है, बाबा मुझे बंडिया कहते हैं, मेरा पेट नेम बंडिया है, ओनली बाबा कॉल्स मी बंडिया। तो कितनी बार हुआ है कि ये बंडिया यहाँ की है और मैं बंडिया घर की हूँ। सो अभी आते आते मैंने रूपाली को, जब भी यहाँ आई तब मैंने यही बोला कि दो बेटियाँ अभी एक साथ है यहाँ नहीं, बट आई रियली एम ब्लेस्ड टू हैव बाबा एंड आई इन माय लाइफ इफ आई से, एंड थैंक यू राजन जी। इतना ये 80s में बाबा को जो खुशियाँ आपने दी है ये शो देके और इतना प्यार देके, रूपाली आई नो हर सिंस एजेस आई कैन से, एंड
4: मोनिशा वाज ऑन योर सेट ऑफ खिचड़ी
3: खिचड़ी आई वाज देयर, ओके, सो आई नो हर सिंस देन, बट द काइंड ऑफ केयर दैट शी टेक्स, बाबा का ध्यान रखना, ऑन द कंट्री इफ आई से कि भाई सेट पे कहीं भी हो ये तुरंत पूछना, अगर उनको ठीक नहीं हो तो तुरंत कॉल करना, राजन जी का फर्स्ट कॉल आना, तो ये एक फैमिली ही कर सकता है। एंड जितना ज़्यादा हम बोलते हैं कि हम अपनी घर की फैमिली होती है, लेकिन दिस बिकम्स योर फर्स्ट फैमिली, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर बाबा, आई एम सो हैप्पी फॉर आई, दैट बोथ ऑफ देम आर यू नो ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड लाइक बीइंग हियर। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर एंड फॉर बींग फॉर माई डैड।
5: ये मेरे बच्चे का पद्मश्री है, तो ही इज द बेबी ऑफ द यूनिट, मतलब हम लोग बोल रहे हैं 85 रबिश, ही इज नॉट 85, आई थिंक ही इज जस्ट लाइक शी सेड 30+55 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नो ही इज 16, ही इज द मोस्ट नॉटीएस्ट पर्सन ऑन द सेट, आई थिंक सबसे ज्यादा इनको मैं ही डांटती हूँ सेट पे, एंड ही कीप्स कंप्लेनिंग टू हर। सो कभी अगर आगे समझो लेट हो गए ट्रैफिक में लेट हो, मुझे कहे जरा फोन करना, जयश्री ला फोन कर,
2: लेकिन सर डांटता है वो रूपाली है।
1: सेट पे आने के बाद अगर रोमेश जी हो या सुनन जी हो या भीम हो या अभय हो डायरेक्टर, तो सबसे पहला मेरा पूछना यही होता है कि मैं और श्रुति कहाँ खड़े हैं मैं और किंजू कहाँ खड़े हैं, मैं और अनु कहाँ खड़े हैं, तो फिर वो उनका आता है, हाँ नहीं है आप यहाँ बैठे हुए हैं,
5: खूब फ्लर्ट करता है बापूजी।
2: तो इट्स सो नाइस, अजय इज देयर एंड राधिका इज देयर, उनके ग्रैंडचिल्ड्रन भी आज हैं साथ में, सो वेरी प्राउड that you guys are there. You want to say something?
6: No. I
2: okay, okay. ठीक है सचिन जी.
7: Oh. ऐसे पास में आ जाऊँ फिर? भाई ऐसे थोड़ा जोर से बोल देते हैं. भाई ऐसे मौकों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको जो भी बताना है किसी के बारे में शब्दों में बताना है. अब ऐसे पर्सनालिटी के लिए शब्द कहाँ से लाए जाएं? आप ये कैसे बता दें कि कोई कितना जिंदा दिल है? हम सब, और ये कहने की बात नहीं है, हम सब उम्र में, एनर्जी में और जिंदगी में उनसे बहुत पीछे हैं. वो हमसे बहुत आगे हैं. अगर उम्र होती है जिंदगी जीने की तो इन्होंने सचमुच 85 साल की जिंदगी जी है, जो कि एक 40-42 साल के बाद तो हम पे लाइफ इतनी भारी पड़ जाती है कि हम सब बस अपनी बोझ में मर जाते हैं. हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया. अगर किसी को जीना सीखना है तो यहाँ पे आइए या इनके घर जाइए और ये देखिए कि जिंदा दिली क्या चीज़ होती है. पूरे दिल से खुश कैसे हुआ जाता है, आसपास वालों का मूड कैसे अच्छा किया जाता है, रोते को हंसाया कैसे जाता है. उसके लिए भले ही आप कभी कभी ऐसा करना पड़े कि आप कोई उदास है, आप उससे बात कर रहे हैं और शायद वो आपको अच्छी तरह रेसिप्रोकेट नहीं करेगा, लेकिन वो फिर भी इतना रिस्क लेते हैं कि अगर ये मुझे थोड़ा सा ऐसे कह भी देगा कि अभी मूड नहीं है तो हार नहीं मानते हैं. वो फिर से कोशिश करते हैं और तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि हंसा नहीं दें.
0: भाई हम तो यही चाहेंगे कि ये कलाकार आपको यूं ही एंटरटेन करते रहे और सास बहू और बेटिया की तरफ से अरविंद वैद्य जी को इस बड़े अवार्ड के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
8: तो ये था आज का संडे स्पेशल एपिसोड, जहां था रिलैक्सेशन, फैमिली बॉन्डिंग, सेल्फ केयर और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन. अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए टीवी की दुनिया से फ्रेश खबरें. तब तक आप अपने संडे को एंजॉय कीजिए, रिलैक्स कीजिए, रीसेट कीजिए और हमेशा रखिए अपने चेहरे पर ये प्यारी सी मुस्कुराहट. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. सी यू टुमारो. बाय बाय.
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल.
10: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
13: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
11: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
17: चार धाम यात्रा मार्ग में कई जगहों पर भारी बारिश के साथ आंधी तूफान का अलर्ट, सुरक्षित जगहों पर रोके गए केदारनाथ के तीर्थयात्री, कंट्रोल रूम से यात्रा मार्गों पर कड़ी नजर। उत्तराखंड के चंपावत में एसडीआरएफ की सतर्कता से टला बड़ा हादसा, उफंती नदी में फंसे 50 से अधिक श्रद्धालु, बचाव दल ने किया सकुशल रेस्क्यू। आत्मनिर्भर भारत की नई ताकत, दुर्गम इलाकों में भी अब आसानी से पहुंचाई जा सकेगी सैन्य रसद, पाथू रेल 300 किलो भार ढोने में सक्षम, 16,000 फीट की ऊंचाई पर सफल प्रदर्शन। लद्दाख के लेह की मस्जिद गली अब धुरंधर गली के नाम से हुई मशहूर, यहीं पर हुई थी फिल्म धुरंधर की शूटिंग, लोग टी स्टॉल पर खिंचा रहे तस्वीरें। भारत दौरे पर जैसलमेर पहुंची अमेरिका के राष्ट्रपति की छोटी बेटी टिफनी ट्रंप, ऐतिहासिक धरोहरों की करेंगी दीदार, सुरक्षा के कड़े इंतजाम।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
1: फिल्म धुरंधर की शूटिंग से चर्चा में आई लेह की मस्जिद गली, अब धुरंधर गली के नाम से मशहूर, बढ़ गई है यहां की रौनक। लेह में धुरंधर गली देखने दूर दूर से पहुंच रहे सैलानी, यहां के माहौल का उठा रहे हैं लुत्फ। लेह की धुरंधर गली में टी स्टॉल पर लोग खिंचवा रहे हैं तस्वीर, यहीं पर हुई थी फिल्म धुरंधर की शूटिंग। अब जैसलमेर दौरे पर पहुंच रही अमेरिका की राष्ट्रपति ट्रंप की छोटी बेटी टिफनी ट्रंप, पति माइकल भी हैं साथ। जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में ठहरी हैं टिफनी ट्रंप, ऐतिहासिक धरोहर का करेंगे दीदार, कड़े सुरक्षा के इंतजाम। उत्तराखंड के चंपावत में एसडीआरएफ की सतर्कता की एक्शन, और सियोफंती नदी में फंसे 50 से अधिक श्रद्धालुओं को किया गया रेस्क्यू, टला बड़ा हादसा। चंपावत के श्री रीठा साहिब गुरुद्वारा में प्रसिद्ध जोड़ मेले में जा रहे थे श्रद्धालु, बारिश के बाद नदी में जलस्तर बढ़ने से फंस गए थे लोग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और चमोली में बारिश, केदारनाथ धाम की ओर जाने वाले यात्रियों को अस्थायी तौर पर आगे बढ़ने से रोका गया। उत्तराखंड के श्रीनगर में श्रद्धालुओं को होल्डिंग क्षेत्रों में सुरक्षित स्थानों पर ठहराने की व्यवस्था, खाने पीने के भी किए जा रहे हैं इंतजाम। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए किए गए ट्रैफिक के खास इंतजाम, रास्ते जाम ना हो इसके लिए रखा जा रहा विशेष ध्यान। बेहद ऊंचाई वाले दुर्गम पहाड़ी इलाकों में अब सामान पहुंचाने में होगी बेहद आसानी, सेना की 10 इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने सफलतापूर्वक चालू किया अनोखा पातू मोनोरेल सिस्टम। इस मोनोरेल से 16,000 फीट ऊंचाई पर बेहद खराब मौसम में भी हो सकेगी सामानों की ढुलाई, जहां गाड़ियों की आवाजाही होती है मुश्किल। इस मोनोरेल से एक बार में 300 किलोग्राम तक सामान ढुलाई संभव, घोड़े खच्चरों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा कारगर है यह सिस्टम। इस मोनोरेल से गोले बारूद, राशन, ईंधन और दूसरे सामान पहुंचाने में मिलेगी मदद, हादसों के दौरान रेस्क्यू में भी होगी मददगार। सेना की 10 इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने डिजाइन और तैयार किया है यह सिस्टम, दिन रात और हर मौसम में हो सकेगा सामानों की ढुलाई का काम, रिमोट से होगा संचालित। जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने संभाला देश के नए सीडीएस का कार्यभार, रक्षा मंत्री के प्रिंसिपल मिलिट्री ऑर्गेनाइजर के रूप में करेंगे काम। नए सीडीएस जनरल सुब्रमण्यम को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक लॉन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, सीडीएस बनने के वाले देश के तीसरे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी बने। जनरल सुब्रमण्यम ने नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि, देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों को किया नमन। सीडीएस पद पर नियुक्ति से पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी में मिलिट्री एडवाइजर थे जनरल सुब्रमण्यम, सुरक्षा एजेंसियों के बीच राजनीतिक मूल्यांकन और तालमेल के काम से जुड़े थे। एडमिरल के स्वामीनाथन बने नए नौसेना अध्यक्ष, नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खिली धूप के बीच मौसम सुहावना, सैर सपाटे का मजा ले रहे सैलानी। श्रीनगर के डल झील में शिकारी पर सैर करने पहुंच रहे सैलानी, खुशगवार मौसम में घूमने का मजा हुआ दोगुना। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पहाड़ों पर बर्फ और बादलों का मनमोहक साया, कुदरत ने किया अनोखा श्रृंगार। मनाली में बारिश के बाद बेहद खुशनुमा हुआ मौसम, दूर दूर से पहुंच रहे सैलानी। पंजाब और राजस्थान से गर्मी की छुट्टियां बिताने लोग पहुंच रहे हैं मनाली, छात्रों और युवाओं की बड़ी तादाद। मई के आखिरी दिन भी दिल्ली एनसीआर में मौसम ठंडा बने रहने के आसार, गर्मी का असर काफी हद तक रहेगा कम। दिल्ली एनसीआर में आज 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है अधिकतम तापमान, लोगों को भीषण गर्मी और लू से रह सकती है राहत। दिल्ली में न्यूनतम तापमान आज 22 से 24 डिग्री तक रहने के आसार, मौसम बना रहेगा सुहावना। आज भी दिल्ली एनसीआर में प्री मानसून गतिविधियां बनी रहेंगी तेज, कई इलाकों में बारिश, गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने आज भी जारी किया येलो अलर्ट, हो सकती है हल्की बारिश और 60 किलोमीटर तक रफ्तार चल सकती हैं हवाएं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों में फिर हो सकती है बारिश, बदला रहेगा मौसम का मिजाज। कल से तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी शुरू होने के संकेत, अगले हफ्ते मध्य तक 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुंच सकता है पारा। दिल्ली में बारिश के बाद हवा भी हुई साफ, 5 साल में पहली बार मई में संतोषजनक स्तर पहुंचा एक्यूआई। तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद दिल्ली में एक्यूआई में हुआ सुधार, मई में राजधानी में औसत एक्यूआई रहा 161। दिल्ली में शनिवार को दर्ज किया गया मई में 3 साल में सबसे कम एक्यूआई, अगले कुछ दिनों तक हवा की स्थिति मध्यम श्रेणी में रहने के आसार। मुंबई के कई इलाकों में आज सुबह से रिमझिम बारिश, मौसम हुआ सुहावना। गर्मी से तपती मुंबई को बारिश के बाद मिली राहत, धरती और पेड़ पौधों सहित सभी प्राणियों को तरावट। मुंबई में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहने के आसार, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान। मुंबई समेत महाराष्ट्र में इस बार धीमी है मानसून की रफ्तार, अभी प्री मानसून बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून तक महाराष्ट्र में हो सकती है हल्की बारिश, फिलहाल कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गरज के साथ बौछारों की संभावना। आज है ज्येष्ठ पूर्णिमा की पावन तिथि, पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। अयोध्या में सरयू नदी में पवित्र स्नान के लिए लगी श्रद्धालुओं की भीड़, डुबकी लगाकर पूजा पाठ कर रहे लोग। प्रयागराज में भी संगम पर स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु, मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से होता है विशेष पुण्य। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर हरिद्वार और दूसरी जगहों पर भी लोग कर रहे गंगा स्नान, पूजा पाठ और दान के साथ खुशहाली की कामना। इस साल ज्येष्ठ में अधिक मास होने के कारण दो पूर्णिमाएं, धार्मिक दृष्टि से अधिक मास की पूर्णिमा भी मानी गई है काफी फलदायी। पुरुषोत्तम मास और ज्येष्ठ एक साथ पड़ने से बढ़ गया इस बार पूर्णिमा का महत्व, इस बार बना है ब्लू मून का दुर्लभ संयोग। ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत और स्नान दान से आरोग्य, सौभाग्य और सुख समृद्धि का मिलता है वरदान, इस व्रत की मानी जाती है खास महिमा। विवाहित महिलाएं रखती है ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत, पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और दंपत्य जीवन की सुख समृद्धि की करती है कामना। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं चंद्रमा, चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक शांति और पारिवारिक सुख शांति की मान्यता। ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की दिव्य भस्मारती, महादेव के अद्भुत श्रृंगार के हुए दर्शन। उत्तराखंड में देवप्रयाग संगम पर गूंजा विष्णु सहस्रनाम, अलकनंदा और भागीरथी के पावन संगम पर श्रद्धा और विधि विधान के साथ 108 बार सामूहिक विष्णु सहस्रनाम का पाठ। देवप्रयाग में भव्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आगमन समागम का आयोजन, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और पतंजलि गुरुकुलम के छात्राओं ने मिलकर किया विष्णु सहस्रनाम का पाठ। इस अवसर पर देवप्रयाग में की गई गंगा आरती, उमा भारती और आचार्य बालकृष्ण सहित कई जानी मानी हस्तियां हुई शामिल। मध्य प्रदेश के रायसेन में 40 साल बाद फिर लौटी झिराई फाग की अनोखी परंपरा, 25 गांवों की 15 टोलियों सहित हजारों दर्शक हुए शामिल। झिराई फाग के दौरान 50 फीट ऊंचे चिकने खंबे पर धमध्वजा से बंधी प्रसाद की पोटली तोड़ने के लिए लगती है होड़, महिलाओं की लाठियों से बचकर करनी पड़ती है चढ़ाई, तब मिलता है इनाम। तमिलनाडु के मदुरै में दिव्य धार्मिक उत्सव की धूम, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
5: खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे Good News Today पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाइयों और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है, जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, या मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: सूर्य देव का कौन सा शुभ योग अच्छी वाणी देता है? सूर्य देव का कौन सा शुभ योग घर से दूर ले जाकर सफलता देता है? सूर्य देव का कौन सा शुभ योग राजनीति में ऊंचाई पर पहुंचा देता है? कौन से हैं सूर्य के शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
9: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
10: Jack, come home. It's supper time.
9: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
11: Hey Jack, could you play that one song with the words?
9: Jack FM, playing what we want.
12: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
5: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: आईपीएल का सबसे बड़ा धुरंधर। वैभव के बल्ले ने मचाया बवंडर। उम्र 15 साल, बना गेंदबाजों का काल। सिक्सर का बेमिसाल बेबी बॉस। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
4: चारधाम यात्रा मार्ग में कई जगहों पर भारी बारिश के साथ आंधी तूफान का अलर्ट, सुरक्षित जगहों पर रोके गए केदारनाथ के तीर्थयात्री। उत्तराखंड के चंपावत में SDRF की सावधानी से टला बड़ा हादसा, उफनती नदी में फंसे 50 से अधिक श्रद्धालु, बचाव दल ने किया सकुशल रेस्क्यू। आत्मनिर्भर भारत की नई ताकत, दुर्गम इलाकों में भी अब आसानी से पहुंचाई जा सकेगी सैन्य।

उन्हें कमलाकांत और भक्त वत्सल कहा जाता है। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु अपने भक्तों पर हर रूप हर स्वरूप में कृपा बरसाते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि श्री हरि ने ही अलग अलग स्वरूपों में धरती पर अवतार लिया है। भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है। जैसे हम भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में करते हैं, उसी तरह श्री हरि की पूजा उनके दिव्य स्वरूप शालिग्राम जी के स्वरूप में की जाती है। कहते हैं श्री हरि या शालिग्राम की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं शालिग्राम की पूजा से क्या है लाभ।

0: शालिग्राम, जिसे नारायण का सबसे कल्याणकारी रूप माना गया है। बड़ा दिव्य और चमत्कारी है श्री हरि का नाम, और श्री हरि का दिव्य रूप है शालिग्राम। ज्योतिषी कहते हैं कि शालिग्राम की पूजा से जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है।
1: शालिग्राम से जुड़े हुए संपन्नता और समृद्धि के उपाय, जो भगवान का पूजन करेगा, जो भगवान को अपने घर में रखेगा, जो भगवान का नित्य दिन पूजन करेगा, उसके घर में ऐश्वर्य, संपन्नता और समृद्धि बनी रहेगी। और खास तौर पर कहा गया है कि औरतों को निषेध है छूना, शालिग्राम को छूना निषेध है, उनको नहीं छूना चाहिए। घर के पुरुष ही उनका पूजन करें, उनकी स्थापना करें, उनके उनके पूजन से हमेशा आपको धन ऐश्वर्य की समृद्धि प्राप्त होती रहेगी, दीर्घायु आपके घर में बच्चे होते रहेंगे, कभी किसी को सब कष्ट नहीं होगा, हर प्रकार के दुख का निवारण भगवान स्वयं करते हैं, इसलिए यही इनकी स्थापना करने से प्राप्त होता है।
0: शालिग्राम जो शापित होकर भी सबसे कल्याणकारी माने गए हैं, एक सती के श्राप से जो स्वरूप उन्हें मिला, उसने भक्तों की मुक्ति का मार्ग तय कर दिया। माना जाता है कि जिस घर में भी श्री हरि के प्रतीक के रूप में शालिग्राम की पूजा होती है, उस घर में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं रहती। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की आराधना आपको दुनिया का हर ऐश्वर्य प्रदान कर सकती है। चलिए आपको श्री हरि से जुड़ा एक छोटा सा महाप्रयोग बताते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के लिए ये प्रयोग रामबाण है। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप या स्वर्ण या रजत की मूर्ति स्थापित करें, हर बृहस्पतिवार को पंचामृत बनाएं और शंख में भरकर भगवान का अभिषेक करें, उस पंचामृत का सेवन करें और घर के सभी लोगों में इसका वितरण करें।
1: गीता के 10वें अध्याय में 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं मासों में मास मार्गशीर्ष हूँ। भगवान को मार्गशीर्ष मास बहुत ही प्रिय है और इसमें शालिग्राम का पूजन करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इसकी उत्तम महिमा ये है कि जो भी भगवान शालिग्राम का पूजन करता है, वह धन ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति करता है। भगवान विष्णु का शालिग्राम का जो स्वरूप है, वो जो कोई पूजन करे उसका कहते हैं उसका जो स्नान किया हुआ जल है उसको पीने से सभी रोगों का निवारण होता है।
0: ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की पूजा से हर तरह की व्याधियों का अंत हो जाता है। कहते हैं कि शालिग्राम के दर्शन मात्र से ही मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। आखिर वो कौन सी कथा है जिसने शालिग्राम को चमत्कारी बना दिया? कथा मिलती है कि शंखचूड़ नाम का एक दैत्य महाबलशाली था। उसका आतंक से पूरी सृष्टि कांप रही थी, कोई भी उसे परास्त नहीं कर पा रहा था। चंद्रचूड़ की हार तभी हो सकती थी जब कोई उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग कर दे, क्योंकि वृंदा तपस्विनी थी। उसके तपोबल से ही शंखचूड़ किसी भी देव से परास्त नहीं हो रहा था। कहते हैं कि सभी देवों ने श्रीहरि से शंखचूड़ दानों से बचाने की गुहार लगाई, तब श्रीहरि ने छल से रूप बदलकर वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। तब जाकर शिव ने शंखचूड़ का वध किया। वृंदा को जब पता चला तो उसने छल के लिए श्रीहरि को शिला रूप में परिवर्तित होने का शाप दिया। श्रीहरि तब से शिला रूप में भी रहते हैं और उन्हें शालिग्राम कहा जाता है। वृंदा ने भी अगले जन्म में तुलसी के रूप में पुनः जन्म लिया। श्रीहरि ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि

0: बिना तुलसी दल के उनकी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। तब से श्रीहरि के पूजन में जो तुलसी अर्पित की जाती है, दरअसल वो देवी वृंदा ही है।
1: भगवान हरि और श्रीहरि से जुड़ी जो कथा है, वो शंखचूड़ एक राजा थे जो बहुत नास्तिक थे, और उनको मार करके भगवान विष्णु ने उनको शालिग्राम पूजन करने का वरदान दिया था, और उनकी पत्नी वृंदा के माध्यम से उनको श्राप भी मिला था भगवान को कि शालिग्राम के रूप में आप हो जाएंगे। श्राप के माध्यम से भगवान शालिग्राम हुए थे, जो कि गंडकी नदी में पाए जाते हैं शालिग्राम पत्थर, और वही वरदान उनको दिए थे भगवान श्री हरि कि आप इनका पूजन करिए शालिग्राम का, और आप सदैव हमारे साथ रहेंगे। और वृंदा के श्राप से ही भगवान हरि पत्थर रूप में शालिग्राम में विराजमान हुए।
0: ज्योतिषी कहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु की पूजा से हर तरह की व्याधियों का अंत हो जाता है। कहते हैं कि शालिग्राम के दर्शन मात्र से ही मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। कहते हैं कि जिस पत्थर से शालिग्राम की शिला बनाई जाती है, वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही स्थान पर मिलता है, वह है नेपाल की गंडकी नदी। चलिए आपको बताते हैं शालिग्राम की महिमा।
1: जो भी कंकड़ या जो भी पत्थर वहां से हम लेकर के आते हैं, वो जीवित होता है, मतलब उसमें जीवित आत्मा उसमें प्रवेश पहले से ही रहती है। बस उसको केवल हम घर में ला करके गंध अक्षत पुष्प गंगा जल तुलसी चंदन ये सब चढ़ाए, और वो अपने आप ही प्राण प्रदायिनी हो जाती है। वो पत्थर, वो शिला जिसको कहते हैं शालिग्राम, वो हमेशा हमको हमेशा फल देने वाली हो जाती है। भगवान का ऐसा कहना है कि हमारा जो नित्य दिन पूजन करता है, मैं उसे अपने ही शरण में ले लेता हूँ बिना मंत्र का। अगर आपको मंत्र भी जपना है उत्तम विधि के अनुसार, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही मंत्र है भगवान का, और इससे उत्तम विधि क्या हो सकती है।
0: जिस प्रकार भगवान शिव के विग्रह के रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है। शालिग्राम एक गोल सा काले रंग का पत्थर है, जो नेपाल के गंडकी नदी में पाया जाता है। इसमें एक छिद्र होता है और पत्थर के अंदर शंख, चक्र, गदा या पद्म खुद होते हैं। कुछ पत्थरों पर सफेद रंग की गोल धारियां चक्र के समान होती हैं। इस पत्थर को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। शालिग्राम पत्थर जितना काला होगा और उस पर जितनी आकृतियां पाई जाएंगी, वो उतना ही श्रेष्ठ और प्रभावशाली होगा। पुराणों में कहा गया है कि शालिग्राम के दर्शन मात्र से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। नित्य शालिग्राम का पूजन भाग्य और जीवन बदल देता है। शालिग्राम का विधि पूर्वक पूजन करने से किसी भी प्रकार की व्याधि और ग्रह बाधा परेशान नहीं करती। तो नारायण के इस सबसे दिव्य रूप का पूजन आपको कैसे करना है, शालिग्राम की पूजन विधि क्या होगी, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: श्री हरि की कृपा पाने के लिए उनके शालिग्राम स्वरूप की पूजा कितनी फलदायी है, ये तो आपने जान लिया। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जिस घर में शालिग्राम की स्थापना की जाती है, उस घर में सत्य का वास हो जाता है, अर्थात स्वयं श्री हरि की छाया उस पर सदैव बनी रहती है। लेकिन शालिग्राम के प्रयोग में कुछ सावधानियों का पालन भी जरूरी है।

0: भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में ही शालिग्राम की पूजा की जाती है। अब यह सवाल है कि भगवान शालिग्राम का पूजन कैसे किया जाए, तो चलिए आपको शालिग्राम की पूजन विधि भी बता देते हैं। प्रतिदिन जल और पंचामृत से शालिग्राम जी का अभिषेक करें, चंदन अर्पित करें, 5 फल या ऋतु फल अर्पित करें, तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। बिना तुलसी दल के इनकी पूजा हो ही नहीं सकती। अगर घर में शालिग्राम है तो बिना दोनों वेला इनकी पूजा के आहार ग्रहण ना करें।
1: शालिग्राम की स्थापना करने से पहले हमने आपको बताया कि शालिग्राम बिना प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति आप अपने घर में ला करके रख सकते हैं, क्योंकि उसमें पहले से ही जीवात्मा भगवान स्वरूप विराजमान रहते हैं। तो घर में लावे, उनका गंगा जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद उपासना जो व्रत है भगवान का, सबसे बड़ा महत्व कहा गया है कि 24 एकादशी मानी गई है, और 24 एकादशी में से ये सारी एकादशी को भगवान अपने ही स्वरूप में पूजन करने के लिए, भगवान का जिस प्रकार से शंकर भगवान का पिंड स्वरूप और में पूजन होता है, उसी प्रकार से विष्णु भगवान का शालिग्राम स्वरूप में पूजन होता है। और इनकी विशेष बात यह है कि हमको सब सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य और हमारे परिवार से उन्नति सभी समस्याओं को दूर करते हैं भगवान श्री हरि, और शालिग्राम स्वरूप एक ही है।
0: भगवान नारायण की कृपा से ही ब्रह्मांड में जीवन का संचार है। कमल नयन भगवान की जिस भक्त पर कृपा हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। भगवान शालिग्राम को तुलसी भी अर्पित की जाती है। इसकी कथा भी हम आपको बता ही चुके हैं कि आखिर क्यों भगवान शालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग तुलसी के साथ साथ शालिग्राम की भी रोजाना पूजा करते हैं, उसके घर से दरिद्रता कोसों दूर रहती है।
1: आपको स्वयं सुबह में जल्दी उठना होगा, भगवान की स्थापना करनी होगी और उन पर तुलसी अर्पित करके उनका आवाहन करना होगा। अगर स्थापना करते हैं तो घर में पहले तो एक मंदिर बनवाएं कि जहां भगवान की हम स्थापना कर सकें, जहां पर हम जाकर के एकत्रित मन से भगवान का स्मरण कर सकें। स्थापना अपने घर में करिए, क्योंकि ये शालिग्राम भगवान घर घर पूज्यमान होते हैं, हर प्रकार के फल प्रदान करते हैं। स्थापना करने से सुख धन ऐश्वर्य और बुद्धि और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है।
0: मान्यता है कि घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की शिला होनी चाहिए। शालिग्राम की पूजा हमेशा स्नान कर साफ वस्त्रों में करें, विचारों को शुद्ध रखें, मांस मदिरा का सेवन न करें। घर में शालिग्राम भगवान हैं तो उन्हें रोज पंचामृत से स्नान कराएं, शालिग्राम को नियमित रूप से भोग अर्पित करें। घर में शालिग्राम है और आप इनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाते तो बेहतर होगा कि किसी नदी में प्रवाहित कर दें।
1: सात्विक आचमन करें, आचमन करके प्राणायाम करके उनका पूजन करें, गंगा जल से स्नान कराएं, मस्तक पर उनके चंदन लगावें और तुलसी पत्र अवश्य ही उनके मस्तक पर रखें, क्योंकि ये आशीर्वाद के रूप में भगवान ने दिया है उनको कि आप हमेशा हमें छाया देंगी। वृंदा को भगवान ने ऐसा ही आशीर्वाद दिया था, तो उस प्रकार से शालिग्राम के मस्तक पर तुलसी हमेशा विराजमान रहती है और उनका पूजन गंगा जल से धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके आप सभी रोगों से भी मुक्ति पा सकते हैं और अंत समय में वैकुंठ को भी प्राप्त कर सकते हैं।
0: सनातन संस्कृति में शुभ कार्यों का आरंभ तो गणपति की पूजा से करने का विधान रहा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में शुभता और तालमेल के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण की साधना अमोघ मानी गई है। अब हम आपको वो महाप्रयोग बताने जा रहे हैं जो आप सबके जीवन से जुड़ा है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा संयुक्त रूप से करें, दोनों को संयुक्त रूप से एक ही माला अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, एकादशी का उपवास जरूर रखें। श्री हरि को जगत का पालन हर कहा गया है। हमारे जीवन में सब कुछ हो, धन संपदा वैभव की कोई कमी ना हो, लेकिन घर में बच्चों की धमा चौकड़ी ना हो। यूं कहें कि अगर आपके घर में बच्चों की किलकारी न गूंजी हो तो घर सूना सा लगता है। तो कैसे श्री हरि की उपासना से इस कमी को दूर कर सकते हैं, देखिए ज्योतिष में इसके लिए कौन सा उपाय बताया गया है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण की एक चांदी की छोटी सी मूर्ति ले आएं, इसको पूजा स्थान पर एकदम अलग स्थापित करें। नित्य प्रातः इसको पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का कम से कम 3 माला जाप करें, पंचामृत का प्रसाद ग्रहण करें। ज्योतिष में बताए गए ये सारे महा उपाय आपके खुशहाल जिंदगी के लिए हैं, इसलिए नारायण को प्रसन्न करने के लिए एक बार आप ये उपाय करके तो देखिए, हो सकता है कि आपके जीवन में भी ईश्वर की कृपा से बाहर आ जाए, आपको वो सब कुछ हासिल हो जाए जिसकी आपने तमन्ना की है।
2: और चलिए अब बात करते हैं पूजा में चरणामृत की महिमा की। मंदिर में या फिर घर पर जब भी कोई पूजन होता है तो पंचामृत की तरह ही चरणामृत दिया जाता है, मगर हम में से कई ऐसे लोग होंगे जो चरणामृत की महिमा नहीं जानते होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं क्यों इतना महत्वपूर्ण है चरणामृत।
3: विष्णु पुराण में चरणामृत को श्री हरि के चरणों का फल माना गया है। इसे अमृत के समान गुणों वाला बताया गया है। एक श्लोक के माध्यम से चरणामृत की महिमा को जाना जा सकता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पदोदकम पीत्वा पुनर्जनम न विगते। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल सभी तरह के पापों का नाश करने वाला है। आइए अब जानते हैं चरणामृत बनाने की सही विधि। तांबे के बर्तन में चरणामृत रूपी जल रखने से उसमें तांबे के औषधीय गुण आ जाते हैं। चरणामृत में तुलसी पत्ता, तिल और दूसरे औषधीय तत्व मिले होते हैं। मंदिर या घर में हमेशा तांबे के लोटे में तुलसी मिलाकर जल रखना चाहिए। माना जाता है कि तुलसी मिले जल वाला चरणामृत लेने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। जब भी आप मंदिर या तीर्थ स्थल जाएंगे, सबसे पहले पुजारी आपको प्रभु का चरणामृत देते हैं। भक्तों को विश्वास है कि प्रभु के चरण का जल सभी सांसारिक दुखों का विनाश करता है। चरणामृत से कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं। कथा कहती है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था, उन्होंने राजा बलि से दान में 3 पग भूमि में तीनों लोक मांग लिए। पहले पग में उन्होंने नीचे के लोक नाप लिए, दूसरे पग में उन्होंने ऊपर के सभी लोक नाप लिए। ब्रह्मलोक में गया तब ब्रह्मा जी ने वामन रूपी भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को वापस अपने कमंडल में रख लिया। भगवान ब्रह्मा जी ने जल को चरणामृत नाम दिया। रामायण में भी केवट प्रसंग में चरणामृत की महिमा बताई गई है। जब केवट भगवान श्री राम के चरणों को धोकर उस जल को चरणामृत रूप में ग्रहण करता है और परिवार, कुल और पितरों को भव पार करवा देता है। यही वजह है कि श्रद्धालु चरणामृत को बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि चरणामृत का सेवन करने से शरीर की कई व्याधियां दूर हो जाती हैं।
2: तो श्री हरि की कृपा से होगा आपका कल्याण। इसी प्रार्थना के साथ हम लेते हैं इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।

0: का कौन सा शुभ योग अच्छी वाणी देता है? सूर्य देव का कौन सा शुभ योग घर से दूर ले जाकर सफलता देता है? सूर्य देव का कौन सा शुभ योग राजनीति में ऊंचाई पर पहुंचा देता है? कौन से हैं सूर्य के शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: और अब बात करेंगे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी एक शानदार खबर की। दुर्गम और ऊंचाई वाले इलाकों में सेना आसानी से रसद सामग्री पहुंचा सकेगी। इस चुनौती का एक स्वदेशी और अत्याधुनिक समाधान तैयार किया गया है। पातू रेल नाम की अभिनव मोनोरेल प्रणाली अब पहाड़ों में सैन्य लॉजिस्टिक्स का चेहरा बदल देगी। यह आत्मनिर्भर तकनीक उन इलाकों के लिए बनाई गई है जहां सड़क संपर्क नहीं है। 16,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले कठिन इलाकों में इसका सफल संचालन किया गया। यह प्रणाली गोला, बारूद, ईंधन, राशन और इंजीनियरिंग उपकरणों को सुरक्षित पहुंचाने में सक्षम है। इतना ही नहीं, आपात स्थिति में घायलों को निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पाथू रेल की सबसे बड़ी खासियत इसकी वाहन क्षमता और दक्षता है। यह 60 डिग्री तक की खड़ी ढलानों पर 300 किलोग्राम तक का भार ले जा सकती है। ये नई तकनीक सेना की ताकत बढ़ाने के साथ ही ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के लिए भी वरदान साबित होगी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
4: Hi, I'm Kingston Bagpuse. Some people say Talk Sports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बनाइए ब्लॉग, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems, from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
12: It's your boy,
5: just
12: Jay-Z.
5: Search classic hip-hop, or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
13: So thank God I get to wake
5: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
14: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
15: Good news today.
16: IPL का सबसे बड़ा धुरंधर वैभव के बल्ले ने मचाया बवंडर, उम्र 15 साल बना गेंदबाजों का काल, सिक्सर का बेमिसाल बेबी बॉस, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: 4 धाम यात्रा मार्ग में कई जगहों पर भारी बारिश के साथ आंधी तूफान का अलर्ट, सुरक्षित जगहों पर रोके गए केदारनाथ के तीर्थयात्री। उत्तराखंड के चंपावत में एसडीआरएफ की सतर्कता से टला बड़ा हादसा, अवंती नदी में फंसे 50 से अधिक श्रद्धालु, बचाव दल ने किया सकुशल रेस्क्यू। आत्मनिर्भर भारत की नई ताकत, दुर्गम इलाकों में भी अब आसानी से पहुंचाई जा सकेगी सैन्य रसद, पाथू रेल 300 किलो भार ढोने में सक्षम, 16,000 फीट की ऊंचाई पर सफल प्रदर्शन। लद्दाख के लेह की मस्जिद गली और धुरंधर गली के नाम से हुई मशहूर, यहीं पर हुई थी फिल्म धुरंधर की शूटिंग, लोग टी स्टॉल पर खिंचा रहे तस्वीरें। गुलाबी सूप के रंग में रंगी लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस, हजारों लोगों ने मनाया पिंक सूप फेस्टिवल, दुनिया भर से पहुंचे सैलानी।
12: उनसे कह दो कि फिर जाग उठा हूं मैं और फिर सामने चल जाने को।

0: नमस्कार, जोश रंधावा स्वागत है आपका। फिल्म इंडस्ट्री में एक नया विवाद सामने आया जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे और देश में सुर्खियां भी बन रहा है ये पूरा विवाद। मामला दरअसल रणवीर सिंह के बॉयकॉट से जुड़ा हुआ है। फिल्म है डॉन 3 जिसको लेकर लगातार विवाद चल रहा है। अभिनेता रणवीर सिंह के बैन तक की नौबत आ गई है। डॉन 3 कंट्रोवर्सी को लेकर रणवीर के फिल्म से बाहर होने के बाद फरहान ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामले को फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के सामने उठाया है। ऐसे में फेडरेशन ने रणवीर के बायकॉट करने को कहा है। फरहान अपने नुकसान के एवज में रणवीर सिंह से 45 करोड़ का हर्जाना मांग रहे हैं, लेकिन क्या ये क्रिएटिव अनबन है या फिर ये ईगो का खेल है? डॉन की लड़ाई कौन करेगा भरपाई, इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ फिल्मी जगत की बड़ी हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। तो रणवीर सिंह और फरहान अख्तर का मामला सुर्खियों में है, लेकिन आइए हम आपको आसानी से समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, नौबत यहां तक आखिर क्यों आई। दरअसल फिल्म डॉन 3 को लेकर ये पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। फिल्म के लिए रणवीर सिंह ने ऑलरेडी साइन कर दिया था। इस फिल्म के डायरेक्टर फरहान अख्तर है। अगस्त 2023 में फिल्म का ऐलान हुआ था, फिर अप्रैल 2026 में फरहान ने रणवीर की शिकायत की। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने मामला उठाया और इसमें फरहान ने रणवीर से 45 करोड़ का हर्जाना भी मांगा था। रणवीर पर फिल्म डॉन 3 छोड़ने का आरोप लगा। अब फेडरेशन ने रणवीर का बायकॉट करने का कह दिया है। फेडरेशन ने अपने सदस्यों से बायकॉट की अपील भी की है। फेडरेशन के इन सदस्यों में कैमरा, अभिनेता और निर्देशकों के साथ साथ असिस्टेंट स्पॉट बॉयज तमाम लोग शामिल होते हैं। तो ऐसे में रणवीर के फेडरेशन के सदस्य काम करेंगे, रणवीर के साथ फेडरेशन के सदस्य काम नहीं करेंगे, ऐसा कहा गया है। और फेडरेशन का दावा यह है कि रणवीर से 3 बार रुख जानने की कोशिश की गई है, उनको अप्रोच किया गया। हाल ही में रणवीर की फिल्म धुरंधर काफी सफल भी रही है, लेकिन फिर रणवीर ने फिल्म डॉन 3 की शूटिंग शुरू ही नहीं की। तो ऐसे में रणवीर और फरहान के बीच की दूरियां लगातार बढ़ती चली गई। मामला रणवीर के बैन तक पहुंच गया है।
1: तो हमने अपील भी किया साथ साथ नॉन कॉपरेशन के साथ साथ कि एक जॉइंट मीटिंग होके इस चीज़ को का सलूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम वेरी स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि अगर ये किस्सा, ये इशू नॉन सोल्यूबल रहा और ये आगे बढ़ा तो हमारी इंडस्ट्री डूम करेगी। ये शुरुआत है इंडस्ट्री को बर्बाद होने का। कल को कोई भी लास्ट मोमेंट पर निकलेगा और फिल्म जो बंद हो जाएगी और जिसने इन्वेस्ट किया पैसे वो बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे यकीन है, हम फेडरेशन को यकीन है कि हम इसका सलूशन मिलेगा, सब बैठेंगे, क्योंकि मैटर बहुत सीरियस हो गया है। और मुझे इस बात की उम्मीद यकीन है कि रणवीर जो कि बहुत बड़ा स्टार है हमारी इंडस्ट्री का, जिसके हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके वजह से लोग थिएटरों में आए, इज एन आइकन ऑफ द इंडस्ट्री। सो कोई पर्सनल एनिमिटी किसी के साथ नहीं है, ये इशू बहुत बड़ा है।
0: वैसे आपको ये भी बताते चले कि पूरे मामले पर रणवीर सीधे तौर पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन हाँ, प्रवक्ता के जरिए बयान जरूर आया है उनका। इसमें उन्होंने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री और डॉन 3 फ्रेंचाइजी से जुड़े लोगों का रणवीर सम्मान करते हैं। रणवीर ने सोच समझ कर ही चुप रहना सही समझा। साथ ही रणवीर की ओर से दलील ये भी दी गई कि काम से जुड़ी बातें, आपसी रिश्ते हमेशा आपसी सम्मान के साथ संभाले जाने चाहिए। रणवीर ने कभी सरेआम अटकलों को बढ़ावा देने की जरूरत नहीं समझी और ये बात भी उन्होंने अपनी इस सफाई में कही। और ये भी बताया है कि रणवीर का पूरा ध्यान काम और प्रोजेक्ट्स पर ही है और रणवीर ऐसे मुश्किल मौकों पर संयमशालीनता बनाए रखना चाहते हैं। साथ ही साथ प्रवक्ता ने कहा कि रणवीर फिल्म से जुड़े सभी लोगों का दिल से सम्मान करते हैं। इसके अलावा रणवीर ने फिल्म फ्रेंचाइजी को शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि आगे भी वो खूब कामयाब हों। वहीं रणवीर के प्रवक्ता ने यह भी साफ कर दिया है कि रणवीर का संयम रखने का रुख आगे भी कायम रहेगा। यानी सीधे तौर पर कहें तो रणवीर फिलहाल अभी इस मामले पर बहुत ज्यादा खुलकर कुछ कहना नहीं चाहते हैं। बात असल में बिगड़ी कहां, इसी विवाद के बीच रणवीर सिंह मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर भी पहुंचे हैं पूजा अर्चना करने के लिए, वो वहां पर पहुंचे हैं। रणवीर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगे थे। कांतारा फिल्म में काफी विवादास्पद मिमिक्री पर कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए रणवीर मैसूर पहुंचे और कांतारा से जुड़े विवाद का अंत हो गया, लेकिन अभी डॉन 3 का मामला बाकी है। अभी ये मामला यकीनन उनके लिए काफी मुश्किल भरा है।

0: तो चलिए इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी सना फरजीन जुड़ चुकी है मुंबई से। सना, जल्दी से एक बार मामला समझा दीजिए। रणवीर कुछ नहीं बोले, उनके प्रवक्ता की तरफ से यह आया कि वो संयम बरतना चाहते हैं। उससे पहले तमाम खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, एक बार उनका परिचय करवाती चलो, फिर सना आप जवाब रखिएगा। बी एन तिवारी जी, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज से हमारे साथ मौजूद है। शोएब चौधरी, फिल्म प्रोड्यूसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुजात खान, एक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ मेरे स्टूडियो में है प्रदीप सरदाना जी, फिल्म क्रिटिक हैं। सना, आपके पास आते हुए।
1: जी बिल्कुल, उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने यही क्लियरली कहा है कि रणवीर ने पूरे इस सिचुएशन पे एक चुप्पी रखी है और वो आगे भी यही रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि डॉन 3 के मेकर्स के लिए उनके दिल में काफी रिस्पेक्ट है और वो चाहते हैं कि ये फिल्म अच्छे से बने। उन्होंने शुभकामनाएं दी है उस फिल्म को कि वो आगे जाकर एक सक्सेसफुल फिल्म बने, बट उन्होंने ये भी डिसीजन लिया है कि वो इस मैटर पे कोई कॉमेंट नहीं करना चाहते और ये जो भी इसका जो डिसीजन होगा वो पर्सनली वो हैंडल करना चाहते हैं, ना कि आके पब्लिक फोरम में कुछ कहेंगे। सो अभी फिलहाल रणवीर सिंह के स्पोक्सपर्सन ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि कोई मीडिया स्टेटमेंट नहीं आएगी, वो आकर पब्लिकली इस बारे में बात नहीं करेंगे, बट ये मैटर किस तरीके से वो जाकर FWIC से मिलते हैं या फरहान अख्तर से डायरेक्टली मिलते हैं वो हमें आगे के समय में जानने को मिलेगा। बट फिलहाल स्पोक्सपर्सन का यही कहना है कि रणवीर ने पूरे मैटर पे एक चुप्पी बनाई रखी है, रिस्पेक्टफुली उन्होंने ये सिचुएशन को हैंडल किया।
0: सना, ये सारी बातें एक तरफ है लेकिन बैन को लेकर भी उन्होंने अभी तक कुछ बात नहीं कही है।
1: जी हाँ, बिल्कुल नहीं कही, और जैसे कि FWIC की कल मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे तिवारी जी ने इन्फॉर्म किया था कि 3 बार उन्हें नोटिस भेजा गया था बट उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो फिलहाल शायद ये वेट कर रहे थे सही समय का, बट कल के डिसीजन के बाद डेफिनेटली अब आगे जाकर उन्हें इस फेडरेशन से या प्रोड्यूसर से तो मिलना ही पड़ेगा ये सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए।
0: बट अशोक पंडित जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। रुख क्या है रणवीर की तरफ से? और बड़ा सवाल सना जरा इसको, क्योंकि आप बहुत अच्छे से फिल्म इंडस्ट्री को जानती हैं, क्या ये ईगो का मामला है या फिर महज एक फिल्म का मामला है?
1: जी एक्चुअली ये दोनों ही मामले हो सकते हैं, क्योंकि एक सुपरस्टार अभी वो धुरंधर इतनी बड़ी एक सुपरहिट फिल्म देकर आए हैं और कहीं ना कहीं वो चाह रहे होंगे कि उस तरीके की फिल्म आए, जो एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है एक प्रोड्यूसर और एक्टर के बीच में वो कहीं नहीं बनी है। बट जैसे कि कल की मीटिंग में हमें पता चला कि वो मिलना ही नहीं चाहते, तो ये कहीं ना कहीं तब आप ईगो कह सकते हैं, क्योंकि आप चाहेंगे कि आप एक ही फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट है, तो अगर किसी एक पार्टी को कोई मुश्किल आपकी वजह से हो रही है तो आप बैठ कर उससे सुलझाए, उससे इस मैटर को सॉर्ट आउट करें, ना कि एक चुप्पी बनाए रखें। अगर फेडरेशन आपको बुला रहा है तो आप आकर एक बार मिल सकते हैं, और क्योंकि उन्होंने क्लियरली फेडरेशन ने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पे आए दोनों पार्टीज, और जो 45 करोड़ की डिमांड है वो शायद कम भी हो सकती है, बट आप आकर हमसे बात तो करें, आप अपना पक्ष तो रखें। पर जब आप वो नहीं रखते हैं तब डेफिनेटली एक कहीं ना कहीं ईगो क्लैश आता है, तब प्रोड्यूसर भी वहां गुस्सा होता है कि आप हमारी बात नहीं सुन रहे, फेडरेशन को भी ये लगता है कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो जो एक कोऑपरेशन की जो एक बात है वो डेफिनेटली इसका अंडरलाइन है। इसका रेजोल्यूशन जो है वो तभी निकलेगा जब तीनों पार्टी साथ में आकर बैठेगी, अपना पक्ष रखेगी और एक जो म्यूचुअल डिसीजन लेगी कि इस मैटर को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, ताकि ये बैन भी ना रहे और डेफिनेटली डॉन 3 पे काम भी चल पाए और एक्सेल एंटरटेनमेंट को फाइनेंशियल कोई लॉस ना हो।
0: आखिरी सवाल आपसे, देखिए जिस तरीके से अगर हम रणवीर सिंह की बात करें तो धुरंधर 1-2 दोनों सुपरहिट रही हैं यकीनन, और ये बात पूरी फिल्म इंडस्ट्री भी जानती है कि किस तरीके से फिल्म वापस से लोगों ने थिएटर्स का रुख किया इसके बाद, लेकिन ये जो मामला है क्या ये रणवीर के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, या फिर हम कहें कि क्योंकि 45 करोड़ का जुर्माना है रणवीर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कितना लंबा खिंच सकता है ये पूरा मामला?
1: जी फिलहाल क्योंकि
0: फेडरेशन की बात भी आ गई है।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि 34 एसोसिएशन जो है वो FWIC के अंदर आती है, तो आप मुंबई में किस तरीके से काम करेंगे, और उन्होंने क्लियरली कहा है कि ना कि सिर्फ फिल्म बल्कि एड शूट भी आप नहीं कर सकते हैं हमारे मेंबर्स के साथ, तो रणवीर अकेले ये एक फिल्म जो इंडस्ट्री है वो अकेले तो बिल्कुल काम नहीं हो सकता, आपको लोग चाहिए होते हैं, टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं, और जब तक वो नहीं आपके साथ होंगे आपका सारा काम रुक जाएगा। रणवीर ने एक बड़ी फिल्म प्रलय डेफिनेटली स्टार्ट की है, जो वो को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, जय मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं, उसका काम भी अगस्त में स्टार्ट होने वाला था, बट जब तक ये नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव हटेगा नहीं, काम नहीं हो पाएगा। सो अभी फिलहाल काफी लीगैलिटीज है और ये सब कुछ तभी सॉल्व हो सकता है अगर रणवीर सिंह आकर फेडरेशन से मिले और फरहान अख्तर के साथ बैठ के एक म्यूचुअल डिसीजन पे आए कि इसको किस तरीके से सॉल्व करें फाइनेंशियली और इवन एथिकली, क्योंकि अभी बात सिर्फ फाइनेंस की नहीं है, एथिक्स की भी है कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे, जो कि सबसे बड़ा एक मुद्दा बन चुका है अभी।
0: बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया सनाफर जीन, इस पूरी जानकारी के लिए बीएन तिवारी जी आपके पास आते हैं। मामला किस तरीके से, क्या समझ में आता है, ये पूरा मामला आखिर है क्या? रणवीर का कोऑपरेट नहीं करना, बैन लग जाना, 45 करोड़ के जुर्माने की बात यहाँ पर हो रही है, दोनों के बीच में क्लैशेस हैं।
2: देखिए मैडम, ऐसा है कि पैसे की बात तो बाद में आती है, अभी जो जरूरी है कि उनको आकर के मिलकर के बात करना चाहिए। हमने 3-3 लेटर दिए, हर बार रिक्वेस्ट किया कि एक बार आप आइए, बैठ करके हम लोग बात करते हैं। वो भी प्रोड्यूसर आपके दोस्त हैं, फरहान अख्तर के साथ आपके रिश्ते रहे हैं, तो मिलकर के बात करने में, क्योंकि ये रास्ता आप अपनी जगह रुक जाएंगे, वो अपनी जगह रुक जाएंगे, तो रास्ता तो निकलता नहीं है। फेडरेशन मदर बॉडी है और हमारी ड्यूटी है कि हमारे, चाहे डायरेक्टर के प्रॉब्लम हो, प्रोड्यूसर के प्रॉब्लम हो, या हमारे एक्टर की तरफ से हो, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इतना ही हमारा काम है। बैन लगाना ये बिल्कुल हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमने नॉन कोऑपरेशन किया है कि जब आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं, आप प्रोड्यूसर की भी बात नहीं सुन रहे हैं, अपने डायरेक्टर की बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप सारी संस्था से बड़े तो नहीं हो सकते हैं।
0: बिल्कुल,
2: आप बड़े स्टार हैं, हम सब लोग आपके फैन हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आपके बारे में अच्छी दुआएं मांगते हैं, मगर ये नहीं है कि आप किसी के नहीं सुनेंगे, क्या रीजन है? तो हमने उनको लेटर यही लिखा है, और हम कल जो नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव इशू किया गया उसमें यही है कि भाई आप किसी भी दिन कभी भी अपनी सुविधा से आइए और बैठ करके बात कीजिए, अमाउंट अपनी जगह पर है। उनका कहना है प्रोड्यूसर का कि फरहान अख्तर का कि हमने इसको सारे कुछ पेपर रखे हुए हैं, वो चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं, ऑडिट किया हुआ है,
0: ठीक है,
2: हिसाब किताब आगे पीछे हो सकता है, मैं किसी
0: नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने सुना अशोक पंडित जी भी यही कह रहे थे कि कम से कम वो आकर बात तो करें, क्योंकि यहाँ पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री की बात है, बैन कर देना कोई सॉल्यूशन होगा भी नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छे और बड़े स्टार भी हैं। एक बार शोएब चौधरी जी आपके पास आऊंगी, सर थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि खबरें देखिए ये भी आई कि डॉन 3 में जो रणवीर का रोल है उसको वो थोड़ा और थोड़ा बदलना चाहते थे, और जिस पर फरहान तैयार नहीं थे, इसको लेकर दोनों के बीच में थोड़ी अनबन हुई, क्योंकि हाल फिलहाल में अगर हम रणवीर सिंह की छवि देखें, जिस तरीके की फिल्में उन्होंने की हैं, चाहे हम धुरंधर की बात कर लें या फिर इससे पीछे भी कई फिल्मों की बात करें, वो बिल्कुल उस तरह की छवि को कंटिन्यू करना चाहते थे, जबकि डॉन 3 में फरहान चाह रहे थे कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, क्योंकि दोनों ने डॉन 1-2 की है, तो उसके बाद अगर कोई फिल्म 3 भी बनती है तो उसमें उसी तरह का किरदार हो, ज्यादा छेड़छाड़ ना हो।
3: देखिए जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये जब इन्होंने फिल्म साइन की होगी रणबीर सिंह ने, तो पहले ही उनके साथ सारे क्रिएटिव्स, स्क्रिप्ट, प्रोडक्शन प्लानिंग शेयर की गई होगी, उसके बाद ही उन्होंने हाँ किया होगा। तो अब अगर कोई क्रिएटिव डिफरेंसेस पे उन्होंने बैकआउट किया है, तो मुझे इस बात पर शक है कि ऐसा हुआ होगा, कोई और वजह है इसके पीछे। जहां तक फेडरेशन की बात है, देखिए हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में, मैं तकरीबन 20 साल से काम कर रहा हूँ, ये फेडरेशन जो, हम फिल्म इंडस्ट्री एक फैमिली की तरह काम करते हैं, जहां एक फिल्म प्रोड्यूसर अपने एक किसी भी ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट 150 से 200 लोगों की यूनिट को लेकर काम करता है, उसमें एक स्टारी टैंट्रम तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, जिसके अलावा नुकसान उठाना पड़ता है। अगर कोई एक स्पॉट बॉय, चाहे पानी पिलाने वाला या कोई सेटिंग वर्कर भी, अगर अनप्रोफेशनल निकल आता है, तो उसकी वजह से प्रोड्यूसर हैज टू फेस द ब्रंट, लाखों करोड़ों नुकसान रुपए का नुकसान उस प्रोड्यूसर को होता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट इज हैंडलिंग। और उस सिचुएशन में, जैसे बाकी सिचुएशन में दारुल कजा और पंचायतें एक्टिवेट हो जाती हैं, लोग अपने घर के बड़े बूढ़े बैठ करके फैसला लेते हैं, दो लोगों के बीच के झगड़े निपटाते हैं, उसी तरह फेडरेशन का काम होता है। देर आया दुरुस्त आया, पिछले 20 सालों में कम से कम मेरी नजर से ऐसा नहीं गुजरा कि ये फेडरेशन कभी प्रोड्यूसर के साथ खड़ी हुई हो। पहली मर्तबा ये देख रहा, और ये मुझे लगता है इसकी तारीफ होनी चाहिए कि पहली मर्तबा ये मेरी नजरों में एक प्रोड्यूसर के साथ खड़ी हुई है, एक स्टारी टैंट्रम के खिलाफ आवाज उठाते हुए। लेकिन इस बात को ये बहुत देर कर चुके हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस फेडरेशन के बाद कोई स्टैट्यूटरी लीगल अथॉरिटी नहीं है। ये आम तौर पर दिखाई देता है कि क्योंकि लीगल अथॉरिटी नहीं है, इसलिए ये किसी बैन को, बड़ा भारी शब्द है बैन, उसको एनफोर्स नहीं कर सकते। अब वो दोनों में से कोई एक पार्टी नहीं माने तो इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि ये एक उसकी उस सिचुएशन में उनको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। अब ये क्यों कोई इनकी बात नहीं मान रहा है, ये तिवारी जी यहाँ मौजूद हैं, बाकी लोग हैं, इनको ये समझने की देर है कि ये फैमिली में बड़े बूढ़ों की बात आजकल क्यों नहीं मानी जा रही। वो इसलिए क्योंकि ये अपनी एक जो रेपुटेशन है उस पर दाग लगा चुके हैं। वो कैसे है वो भी मैं समझा देता हूँ। हम हर बात प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स और हर कोई इंडस्ट्री के लोग इनकी बात मानते हैं, लेकिन तिवारी जी आज यहाँ है, कुछ वक्त पहले मैंने एक और डिबेट में जब इनके साथ था तो मैंने देखा ये अब इंडस्ट्री की कब्र खोदने में सबसे बड़ा हाथ इस फेडरेशन के अथॉरिटीज का है। वो क्यों है कि कुछ साल पहले तिवारी जी वो जो एक पंजाबी फिल्म थी दैट एक्टर जस्ट मिस दैट नेम दैट सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ की फिल्म के खिलाफ इन्होंने पॉलिटिकल अपने आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए ये तिवारी जी मिलके अशोक पंडित सब लोगों ने मिलकर उस फिल्म को नुकसान पहुंचाया। वो एक फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल आदमी, उसने उसको फिल्म को प्रोड्यूस किया था, सिर्फ एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के होने की वजह से इन्होंने कितना करोड़ों का नुकसान दिलजीत दोसांझ को पहुंचाया। ये कंप्लीटली इलॉजिकल बात थी उस दौर में। और उसके बाद एक मिनट, जब उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का हॉकी मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, उस वक्त तिवारी जी अशोक पंडित सब अपना मूक दर्शक बने होकर देख रहे, तब इनको याद नहीं आया जो फर्जी देशभक्ति के लिए झंडा उठा रहे थे। तो इसलिए जब इन लोगों ने अपनी रेपुटेशन खुद ही बर्बाद कर ली है तो कोई इंडस्ट्री का लोग इनकी कोई बात क्यों सुनेगा।
0: ठीक है,
3: और कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी इन लोगों के पास नहीं है।
0: ठीक है, आपने कहा अथॉरिटी नहीं है, कोर्ट ही फाइनल जाना होगा। शहजाद जी, जब आप कोई फिल्म साइन करते हैं उसके तमाम क्रिएटिव जाहिर सी बात है पढ़ के आपको समझाया जाता है तभी साइन होती, क्या उसके बाद एक्टर कुछ डिमांड कर सकता है, और कर सकता है तो क्या उसको मानी जाती है वो डिमांड, और अगर नहीं मानी जाती तो क्या वो क्विट कर सकता है इस तरीके से? क्या आपको लग रहा है कि यही विवाद या यही मामला रहा होगा या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है?
4: बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। देखिए, ये जो विवाद है, फरहान अख्तर साहब का एक तो मैं रेपुटेशन बता दूं, बहुत ही क्लीन साफ सुथरा रेपुटेशन है, वो कभी किसी विवाद में या कभी किसी चीज में आते नहीं। और जब इन्होंने रणवीर सिंह को वो स्टोरीज नरेट की होगी तो रणवीर के हाँ कहने पर ही उनको साइनिंग अमाउंट दिया गया होगा, शॉर्टलिस्ट किया होगा, पूरी पूरे उसके ऊपर वर्किंग की गई होगी। मैं अपने हमारे पैनलिस्ट जो है जो अभी कुछ कह रहे थे उनको एक सबको एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब, मेरे फादर साहब अजीत साहब, उनकी एक फिल्म थी चरस जिसमें हेमा मालिनी जी थी, धर्मजीत है, उसमें मेरे फादर साहब मेन विलन थे। और मैं इसके लिए ये कह रहा हूँ क्योंकि ये सब जितने भी एक्टर्स हैं, जो स्टार्स हैं, जो एक्टर्स हैं, इन सब के लिए सबक है। उसमें अमजद खान साहब भी थे, अमजद खान साहब ने शोले से पहले उसमें शूटिंग की थी, उसके बाद शोले रिलीज हुई, शोले रिलीज हुई और शोले सुपर डुपर हिट हो गई, तो अमजद खान साहब जो है वो एक पार आ गए मेरे फादर साहब के साथ, ठीक है। लेकिन उन्होंने वो रोल किया जबकि चरस में अमजद खान साहब का रोल रॉबर्ट का था और पूरी फिल्म में उनकी एक ही लाइन थी, यस बॉस, ऐसा कुछ उनके वो था, लेकिन उस शख्स ने निभाया। इसको कहते जुबान, इसको कहते वादा रखना, इसको कहते निभाना। जो दो एक्टर्स होते हैं
0: जी,
4: वो इस किस्म के होते हैं। ये जो भी एक जो नहीं जब और जो हमारी इंडस्ट्री को जो बर्बाद कर रही है, जो नेस्तो नाबूद कर रही है, वो है कॉरपोरेट कल्चर। ये कॉरपोरेट कल्चर जो है ये हमारे इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही है। ये हर उनके एक तो वो सब लोग बैठे हैं उस सीट्स पर जिनको कुछ सिनेमा का ABC नहीं आता, ठीक है, ऊपर से वो अपनी दो दो कौड़ी की एडवाइस देते हैं जो उनको कुछ आता नहीं है। और इन लोगों ने तो अपनी चमचागिरी करने में अंडर द टेबल पैसे लेते हैं लोग, क्या नहीं करते हैं।
0: लेकिन सर ये तो अब देखिए, आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, ये तो एक इंडिविजुअल चॉइस होते हैं ना, ये तो आपकी अपनी ईमानदारी, आपकी अपनी कमिटमेंट है।
4: तो मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ, रणवीर सिंह ने जब कमिट कर लिया था डॉन के लिए तो ही शुड हैव केप्ट अप टू द कमिटमेंट।
0: एग्जैक्टली,
4: एक आदमी की कमिटमेंट। अब आप हमारे सलमान खान साहब को देखिए, उनका वो डायलॉग क्यों इतना फेमस हुआ, एक बार वो जब कमिटमेंट कर लेते हैं वो अपनी नहीं सुनते। तो वैसे ही रणवीर सिंह ने जब कमिटमेंट किया, और फरहान और एक्सेल एंटरटेनमेंट पिछले कई सालों से कितना नुकसान उठा रही है, कितने लॉस में चल रही है, और पहले पे उन्होंने काम किया, ऐसी बात नहीं कि पहली पिक्चर कर रहे हो एक्सेल एंटरटेनमेंट की, तो एज अ फ्रेंड एज अ वेल विशर ही शुड हैव अबाइडेड बाय द रूल्स।
0: बिल्कुल, चलिए लौटती हूँ सर आपके पास। अब प्रदीप जी, अपने तमाम पैनलिस्ट की बातचीत आपने सुन ली, पूरा मामला क्या समझ में आता है? क्या ये फिल्म के को लेकर है कि अब उन्हें किरदार पसंद नहीं आ रहा, या कोई दोनों के बीच में ईगो क्लैश है?
5: देखिए, जो रणवीर सिंह है पहले भी फरहान अख्तर के साथ काम कर चुके हैं, दो फिल्में कर चुके हैं, दिल धड़कने दो और एक गली बॉय, यानी इनके रिश्ते पुराने हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की आदतों को जानते हैं, कैसे डील होती है वो भी जानते हैं, कैसी फिल्में बनाते हैं वो भी जानते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि रणवीर सिंह जो है इस धुरंधर के बाद इस समय टॉप स्टार बन गए हैं। और ये जो फिल्म है डॉन 3, ये करीब 3 साल पहले अनाउंस हुई थी। अब मुझे नहीं पता कि इसकी डेट्स रणवीर सिंह ने वो कब दी, 3 साल बाद की दी थी या बीच में दी और फिल्म आगे नहीं बढ़ सकी, इस बारे में जब तक पूरा खुलासा नहीं होगा नहीं कह सकते। हो सकता है इन्होंने पहले की डेट्स दी हों और उसके बाद ये फिल्म शुरू ना हुई हो तो उन्होंने डेट्स और किसी को दे दी हों, और अब ये वाली डेट्स, क्योंकि रणवीर सिंह पढ़ले फिल्म कर रहे हैं, शक्तिमान कर रहे हैं और बहुत सारी फिल्में उनके पास ऑफर हो गई हैं जल्दी जल्दी करने के लिए, सीवा 2 है वो कर रहे हैं, तो पढ़ले तो भी जल्दी शुरू होने वाली है। तो या तो ये वजह हो सकती है कि उनकी डेट्स की दिक्कत थी और ये सब प्रॉब्लम आई।
0: पर सर, अगर ऐसी दिक्कत होती, ये तो एक नॉर्मल सी दिक्कत है, आई एम श्योर आपका तो बहुत बड़ा एक वास्ट रिकॉर्ड रहा, आपने तमाम फिल्में देखी हैं, एक्टर्स को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर कहीं डेट्स क्लैश होती हैं तो वो मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर के साथ बैठ के इजीली मामला सॉर्ट आउट हो जाता है।
5: एक दिक्कत ये हो सकती है, दूसरी दिक्कत पेमेंट की हो सकती है कि जो पेमेंट है, क्योंकि जाहिर है इसका रेट बढ़ गया है और जो 3 साल पहले जो एग्रीमेंट हुआ होगा वो और रेट होगा, स्टार की जितनी भी जो आगे आगे बढ़ते रहते हैं उनके रेट्स बढ़ते रहते हैं।
0: लेकिन वो चेंज हो सकता है जब आपने पहले से साइन कर दिया, कमिट कर दिया।
5: रणवीर सिंह ने कुछ कहा नहीं, इनकी कोई क्या
0: बात, हम सारी पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं ना।
5: आज ही रणवीर सिंह अभी दूसरे मामले से मुक्त हुए, जो उनको अभी मंदिर में अपनी सजा भुगत कर आए हैं, हो सकता है इसके बाद वो इस बारे में कुछ बात करें, अभी उनकी अगली फिल्म की शूटिंग भी नहीं हुई। लेकिन जहां तक फेडरेशन की बात है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी टीम वर्क होती है और टीम के अंदर कहीं भी एक लिंक टूट जाता है तो पूरी फिल्म रुक जाती है, बहुत समस्या आ जाती है। तो आर्टिस्ट हो या डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर हो, जो भी लोग हैं, सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन बात यह भी है कि जब इस तरह की समस्या आती है, अगर मिल बैठ के नहीं बैठते तो एसोसिएशन में जाते हैं। देखिए एसोसिएशन के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है, वो एक ट्रेड यूनियन है, वो आपको बैठ के बात कर सकती हैं। अब ये जो है इसमें कोई, ये जो फेडरेशन है, ये सारी मदर्स जो 24 यूनियन है फिल्म की, उन सबकी मदर्स एसोसिएशन है, लेकिन कानून अधिकार इसके पास कुछ नहीं है। और ये वेस्टर्न सिने एम्प्लॉय की एसोसिएशन है, तो अगर ये फिल्म यहाँ पर नहीं होगी तो ये साउथ में जाके शूटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आर्ट, ये एम्प्लॉय है जिसके अंदर मेकअप मैन है, स्टंट मैन है और आर्टिस्ट हैं, डांसर्स हैं। अगर ये कॉपरेट नहीं करेंगे, पहली फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं है, अगर ये लोग कॉपरेट नहीं करेंगे, ये शूटिंग इसकी बम्बई ना करके अगर साउथ में कर लें, कहीं विदेशों में कर लें, कोई विदेशों से आर्टिस्ट बुला के कर लें जो उनको चाहिए, तब भी फिल्म की शूटिंग हो सकती है। मतलब आप पूरी तरह उनको ये नहीं कर सकते कि आप उसको बायकॉट कर ही देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास पूरे अधिकार, उनके पास भी आर्टिस्ट के पास भी है, आर्टिस्ट की अपनी अलग एसोसिएशन है, प्रोड्यूसर्स की अलग है, डायरेक्टर्स की अलग है, राइटर्स की अलग है, इतनी सारी एसोसिएशन है, इम्पा इतनी पुरानी एसोसिएशन है, तो ये इतनी सारी एसोसिएशन है। लेकिन हमने जब भी देखा है तो मामला बातचीत में सुलझ जाता है, अगर पूरी तरह अड़ जाए, जैसा अभी बात कर रहे थे, इस फेडरेशन ने ही जो है दिलजीत दोसांझ और मीका को बैन कर दिया था पाकिस्तान वाले मामले में, तो बड़ी मुश्किल से जाके वो मामला हुआ। तो कई बार आर्टिस्ट जो इस तरह के होते हैं वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो मामला बाहर जाके उन्होंने किया उसके बाद, लेकिन इस तरह के जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं, बड़े स्टार जब बन जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किलें कब होती हैं, वो प्रोड्यूसर जो इतना बड़ा बड़ा बजट होता है, अब हालांकि समझ में नहीं आ रहा, हम तो 45 करोड़ का उन्होंने दावा किया है, अभी फिल्म की शूटिंग भी नहीं हुई है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता उन्होंने कैसे किया।
0: बस एक छोटा सा सवाल 10 सेकंड में, क्योंकि रणवीर सिंह जिस तरह के एक्टर है, जाहिर सी बात है कि उनसे एक प्रोफेशनलिज्म की उम्मीद की जाती है, और मेरे ख्याल से फेडरेशन ने जो नोटिस दिया है उसमें यही बात उन्होंने रखी भी है कि एक नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड यहाँ पर दिखा रहे हैं वो।
5: नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए, मैं तो खुद कह रहा हूँ किसी भी आर्टिस्ट को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स में टीम वर्क है, कहीं भी लिंक टूटेगा इनको करना चाहिए। लेकिन अब ये क्यों नहीं कर पा रहे, इसके पास क्यों नहीं आए, हो सकता है कि आपस में बात चल रही हो।
0: हाँ।
5: और फरहान अख्तर जो है इस एसोसिएशन के पास क्यों नहीं गए, उनकी प्रोड्यूसर गिल्ड भी है, डायरेक्टर्स की भी है, और भी एसोसिएशन है, वो वहां जाते, वहां से भी उनको दबाव बना सकते थे, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि बहुत सारे प्रोड्यूसर एक साथ, जैसे प्रोड्यूसर गिल्ड है, वो सारे जितने भी मामले हैं, इस तरह के बड़े मामले हैं, बाहर से विदेशों से लोग आते हैं, सरकार के साथ कोई टेस्ट को लेकर बात करनी पड़ती है, कोई नीति को लेकर बात करनी है, प्रोड्यूसर गिल्ड करती है। उसके बाद इम्पायर जो सबसे बड़ी सबसे पुरानी एसोसिएशन है फिल्म इंडस्ट्री की, वो सबको देखती है, उसके अंदर प्रोड्यूसर्स है, वो इन पर बैन लगा सकती है। अगर चारों तरफ से दबाव बनाया जाए तो रणबीर सिंह घिर सकते हैं, लेकिन खाली एक फेडरेशन ये करेगी तो उससे वो जरूर नहीं घिरे घिरे।
0: ठीक है, बीएन तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे सर आप?
2: मैं ये कहना चाहता था कि प्रदीप जी और चौधरी साहब की बातें हमने सुनी है, सिक्स फेडरेशन है पूरे ऑल इंडिया में, और उसका सबका जो हेड ऑफिस है वो बॉम्बे में है, हमारे पास है, तो ऑल इंडिया कहीं भी शूटिंग नहीं हो सकती। आप जो चैलेंज कर रहे थे, प्रदीप जी बोल रहे थे कि वो कहीं और शूटिंग कर लेगा, इंडिया में कहीं भी शूटिंग हमारे लोग हैं, यहाँ पर जो आईफेक है उसका प्रेसिडेंट अशोक दुबे जी है, जो यहाँ पर हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारी 70 साल पुरानी एसोसिएशन है, हमने जो भी निर्णय लिया है, ये गिल्ड से होने के बाद लौटने के बाद इफ्टडा में गए, इफ्टडा से हमारे पास आया है, इसमें प्रोड्यूसर बॉडी भी इन्वॉल्व है, सब लोग इन्वॉल्व है, सबकी इच्छा है, कोई किसी पर दबाव और पावर बताने के लिए यहाँ पर नहीं है। हम चाहते हैं कि सुलह हो जाए, समझौता हो जाए, बात खत्म हो जाए। रही बात आरोप लगाने की मिक्का सिंह का, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन्होंने जो बोला चौधरी साहब के, हमने दलजीत दोसांझ पर आरोप अपना बैन लगाया। देखिए नेशन फर्स्ट होता है, आपको मोहब्बत हो सकती पाकिस्तान से, हमें नहीं थी, हमारी भी ड्यूटी बनती है, हम अपने आप में
0: तरह की बातें हम नहीं करें, किसको किससे मोहब्बत, हम इस पर नहीं जाते हैं, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अलग अलग चश्मे से आप लोग उसको देखते हैं, उन्होंने ये बात सीधे तौर पर कही है, क्योंकि फिर उसके बाद उन्होंने एक हॉकी मैच का भी एग्जांपल दिया है।
2: मैडम हमने अपना परिवार समझा है, परिवार के नाते सिंटा हमारे फेडरेशन के अंदर आती है, वो सिंटा के मेंबर है, इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप
3: इसको ऑडियो ठीक करा सकते हैं।
0: सर एक सेकंड, शोएब जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, हम कोशिश कर रहे हैं सर आप तक की आवाज पहुंचे। तिवारी जी अपनी बात खत्म कीजिए, फिर उसके बाद सर जवाब रखिएगा इसका भी, क्योंकि आप कह रहे थे कि ये कहीं भी जाके शूटिंग कर सकते हैं। जी
2: नहीं नहीं, वो कहीं नहीं शूटिंग कर सकते चौधरी साहब, अरे अपना सरदाना साहब, वो ऑल इंडिया हमारे पास है और हमारे लोग हैं, उनका प्रॉब्लम होता है, हम वहां जाते हैं, कलकत्ता का प्रॉब्लम, बंगाल का प्रॉब्लम हो, साउथ का प्रॉब्लम हो, हमारी एक बॉडी है
0: सर। लेकिन क्या ये,
2: उसको बोलते हैं,
0: एक और चीज है, क्या ये पूरी तरह से, आपने जब बैन शब्द का इस्तेमाल किया, यहाँ पर हमारे दोनों पैनलिस्ट ने इसको लेकर आपत्ति जताई कि बैन नहीं कर सकते क्योंकि लीगल राइट्स वैसे नहीं, अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे सर।
2: हमने नॉन कोऑपरेशन किया है, हमने नॉन कोऑपरेशन किया है, हमने बैन नहीं किया।
5: हाँ नहीं, वो नॉन कोऑपरेशन किया, नॉन कोऑपरेशन में यही हो गया ना कि आप उनके साथ काम नहीं करेंगे, वो पहले फिल्म की वाले शूटिंग करते हैं, तो कोई भी जो एम्प्लॉई है, जो भी चाहे वो स्टंटमैन है, चाहे वो डांसर है, चाहे कोई वो मेकअप आर्टिस्ट है, वो उनके साथ काम नहीं करेंगे आप, यही है ना?
0: ठीक,
5: तो वो ठीक है, लेकिन कानूनी अधिकार कोई नहीं आपके पास, आपके कोई भी आर्टिस्ट को, नए आर्टिस्ट को बुला लें, बाहर विदेशों से बुला लें, मेकअप मैन को, स्टंट डायरेक्टर्स को, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते
0: खुले में, बिल्कुल। लेकिन इसका हल क्या है, इसका रास्ता क्या निकल सकता है? और मैं लौटूंगी शोएब जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत उसके बाद आप ही के पास लौटते हैं, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
6: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
0: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं।

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: IPL का सबसे बड़ा धुरंधर वैभव के बल्ले ने मचाया बवंडर, उम्र 15 साल बना गेंदबाजों का काल, सिक्सर का बेमिसाल बेबी बॉस, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: डॉन की लड़ाई कौन करेगा भरपाई, इसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले बातचीत बीएन तिवारी जी से हो रही थी, जिन्होंने कहा कि वो बैन की बात नहीं उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, यानी कि रणवीर सिंह कोऑपरेट नहीं कर रहे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शोएब जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इसी को लेकर।
4: देखिए, मुझे तिवारी जी ने क्या कहा उसका मुझे ऑडियो बिल्कुल नहीं आया, लेकिन हाँ, आपका जो सवाल है कि इसका हल कैसे निकलेगा, आइडियली निकलना तो ऐसे ही चाहिए था कि फेडरेशन और बाकी सब लोग बैठ करके कोई फैसला कराते, लेकिन उसका कोई रास्ता नजर नहीं आता। सिर्फ कोर्ट ही एक रास्ता है, या फिर फरहान अख्तर और रणवीर सिंह बैठ करके आपस में बात करें। जहां तक फेडरेशन की बात है, हाँ, प्रदीप जी ने जो कहा कि हाँ इंडस्ट्री में काम नहीं है, तो ये सच है कि इंडस्ट्री में काम नहीं है। और फेडरेशन का रोल भी ऐसे ही रहा है कि ये चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाए, जिस तरह के प्रेशर ये प्रोड्यूसर्स और बाकी सब पे दबाने की कोशिश करते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अपने रिलीजियस और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को पुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इनको वापस अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी होगी, जहां ये लोग बैठ करके अपने दफ्तरों में चाय पानी के खर्चे निकालने के अलावा, मैं बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दे रहा हूं और इसके मैं एग्जांपल प्रूफ कर चुका हूं, दे आर कंप्लीटली अ सेट ऑफ नॉन सीरियस पीपल, इनको कोई सीरियसली नहीं लेता, एक स्पॉट बॉय भी इनकी बात आजकल सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए ये लोग अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री से जितनी जल्दी हो दूर कर लें, क्योंकि सबको समझ में आ चुका है कि ये फर्सी राजवाद का झंडा बुलंद करके एक पॉलिटिकल पार्टी को ही सपोर्ट करने के लिए निकले हुए हैं।
3: ठीक है,
4: इसके अलावा इनका दूसरा कोई दूसरा कोई वो नहीं है।
3: आपसी लड़ाई की बात यहाँ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर विवाद जो अटका हुआ है, देखिए सर, फिल्म की भी बात हो रही है, प्रोफेशनलिज्म की भी बात इसमें हो रही है।
4: मैं इन लोगों के काम करने का एक तरीका बता देता हूँ।
3: ठीक है सर, लेकिन उसको लेकर देखिए, सरदाना जी ने भी अपनी बात रखी ना, कि आप सिर्फ कह ही सकते हैं।
4: एक्सपीरियंस आप क्या पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ विद अथॉरिटी, जल्दी में 30 सेकंड्स।
3: शहजाद जी, सर मैं लौट रहा हूँ, एक सेकंड,
4: एक 20 की किताब मुझे दे दीजिए, उसके बाद आप बताइएगा मेरे पास। 20 साल पहले एक बहुत बड़े नेशनल अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर के ओर रिप्रेजेंट कर रहा था मैं, एक एक्टर वर्सेस प्रोड्यूसर के झगड़े में, जिसमें एक सिने की बॉडी को रिप्रेजेंट करते हुए 10 लाख रुपए का बिल उनके पेंडिंग थे, वो प्रोड्यूसर पूरा पे नहीं करना चाह रहे थे, और उस ये फेडरेशन की ही एक बॉडी ने, के जो ऑफिस बेयरर्स थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मुझसे कहा कि सर वो 2.5 लाख में सेटल करा देते, कुछ हमारा भी फायदा कर दीजिएगा, कुछ हमें कोई रोल वोल दे दीजिएगा। ये इस तरह के काम करने वाले लोग हैं, नोबडी टेक्स देम सीरियसली, कोई लीगल अथॉरिटी इन लोगों के पास है भी नहीं।
3: वापस इसी मुद्दे पर आते हैं, शहजाद जी, ठीक है शहजाद जी, क्या लगता है मामले का हल कैसे निकल सकता है?
5: देखिए, बड़े से बड़े मामले का हल बातचीत से ही निकल सकता है, जितने लोग जुड़ेंगे उतना मामला उलझेगा, और जब मामला ईगो पे आ जाएगा तो फिर ईगो से बढ़कर कुछ नहीं होता है, फिर आर पार की लड़ाई होती है। तो बेटर है कि बंद कमरे में बैठ के फरहान और रणवीर खुद ही सॉर्ट कर ले, नहीं होता है तो कुछ लोग कंसल्टेंट्स को बुला ले जो न्यूट्रल हो, और उनसे बैठ उनको इन्वॉल्व करके कुछ ना कुछ रास्ता

0: रास्ता निकाले, और आई थिंक दैट इज द ओनली वे आउट। कोर्ट जाएंगे, ये जाएंगे, उनके पैसे खर्च होंगे, इनके पैसे जाएंगे, और एक कुछ भी हो, आफ्टर ऑल प्रोड्यूसर जो होता है वो हमारा माए बाप जैसा होता है, कि वो उनसे हमारा उनके हम काम करते हैं, वो हम पैसे देते हमको और उससे हमारा घर चलता है। तो दिस अप्लाइज फॉर ऑल एक्टर्स, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो शहजाद खान हो, या चाहे वो तीस बार खान, कोई भी हो। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि बेस्ट को बैठ के एमिकेबली सॉल्व करें, नहीं होता है तो जो सीनियर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके, जावेद अख्तर साहब हैं और भी है, तिवारी जी हैं, जो भी है, इनको जो ठीक लगे उनसे बैठ के सॉल्व करके, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दो फिल्में की है उस बैनर की। ऐसा नहीं कि कोई कल का उभरा हुआ बैनर, कल का बना हुआ बैनर है और वो अब ये सब चीजें कर रहे हैं। और ऑलरेडी रणवीर के साथ कुछ उन्होंने साउथ में ऐसा किया था कि 9-10-11 वैन्स मंगा ली थी और दूसरे दिन ही उनका पैकअप कर दिया गया। तो ये सब चीजें, यू नो, इट्स नॉट राइट। प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा, एक्टर जिंदा रहेंगे, और टेक्नीशियंस के बारे में सोचने से उनके घर के चूल्हे जलेंगे। तो ये सब इंटर रिलेटेड है, और झगड़े फसाद से या बैनिंग से या उनसे नॉन कोऑपरेशन से कुछ होना नहीं है, कुछ ज्यादा कुछ होना नहीं है। तो बेटर है कि बातचीत, बड़े से बड़ी चीजों की हल जो है वो बातचीत से ही निकलती है, और किसी और, मुझे तो कोई और रास्ता नजर नहीं आता।
1: ठीक है,
0: बाकी विद्वान लोग बैठे हैं।
1: अब इसमें जो 45 करोड़ की बात हो रही है, वो मामला कैसे सेटल होगा?
2: देखिए, 45 करोड़ का मैं तो, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि एक प्लानिंग की है उन्होंने आगे के लिए, या उनकी 3 हफ्ते बाद शूटिंग थी, तो उसमें 45 करोड़ का तो बस एक पहाड़ क्यों खड़ा किया गया है? अगर 45 करोड़ फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले इतना बड़ा हो गया, तो फिल्म का बजट क्या 600-700 करोड़ है? तो बड़े सीधी सी बात है। अब हालांकि इस बारे में कुछ दावे के साथ कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो ये पता लगा इन्होंने प्रोमो शूट किया था, एक जहां तक मेरी जानकारी है, तो उसमें एक दिन की शूटिंग हुई थी ऐसा मुझे पता है, वो भी दावे के साथ नहीं कहता, मेरे सूत्रों ने बताया कि प्रोमो इनका शूट हुआ था और वही एक दिन की शूटिंग हुई थी।
1: उसमें
2: कितना खर्चा हुआ वो कह नहीं सकते।
1: एक चीज बताइए, प्रोमो शूट किया, फिल्म साइन कर दी, ऐसे में जब कोई एक्टर रणवीर सिंह जैसा, फरहान अख्तर जैसे प्रोड्यूसर की फिल्म छोड़ता है, तो इसमें इमेज किसकी ज्यादा खराब होती है, एक्टर की या प्रोड्यूसर?
2: देखिए, इमेज तो दोनों की खराब होती है जब भी बात होती है, लेकिन बात ये जिसका पलड़ा भारी होता है उसकी जीत हो जाती है। क्योंकि जिस समय जिसका चल, मैंने आपको बताया पहले दो फिल्में की हैं, यानी एक में ये पहली बार जब इन्होंने दिल धड़कने दो की तो अच्छा रहा, तभी आगे इन्होंने दोबारा गली बॉय में इनको साइन किया, दो फिल्म इन्होंने की, एक फिल्म अच्छी लगी तभी दूसरी की, तो अभी तभी तीसरी इन्होंने इसके साथ की उसी टीम ने। तो ये है कि मतलब आप में वैसे कोई संबंध खराब नहीं है, कोई सर्कमस्टांसेस जैसे आए हैं, चाहे वो पेमेंट की बात है, चाहे वो डेट्स की बात है, या रोल को कुछ बदलाव की बात है, ये तीनों बात इसके अंदर हो सकती हैं, लेकिन ये बात बैठ के हो सकती है और शायद हो भी जाए, ऐसा नहीं कि ना हो, क्योंकि इन्होंने अगर डेट्स दी हुई हैं तो उनके पास डेट्स खाली होंगी, वो उनको जाहिर है इस समय रणवीर की एक एक डेट की बहुत कीमत है, तो उसको वो करेंगे। और अगर बिल्कुल ही अगर, लेकिन बात होगी बैठ के, आप ये देख लीजिए इतने समय से हम और ना जाए विश्व रूप में देखें कि यूक्रेन और रूस का कितने टाइम से युद्ध चल रहा है, ईरान अमरीका का चल रहा है, यूएनओ इतनी बड़ी संस्था है पूरे वर्ल्ड की, लेकिन क्या कर पा रही है? कुछ नहीं कर पा रही। इसलिए जब तक आपके पास कानूनी अधिकार नहीं है, आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट से जो फैसला होगा, जैसे अभी कोर्ट में रणवीर सिंह के खिलाफ हुआ, वो जो भी सजा दी कि आप जाइए मंदिर में जाके आम लोगों की तरह दर्शन कीजिए, वो एक और चीज है, लेकिन जो फेडरेशन है उनका एक काम यह है, ठीक है भाई आप बैठिए, बैठ के बातचीत कर लीजिए, कोर्ट में ना जाना पड़े और जाके काम हो जाए दोनों का, दोनों तरफ से, तो फेडरेशन इतना ही काम कर सकती है।
1: मामला सर क्या फेडरेशन तक सुलझ जाएगा जिस तरीके से बातचीत हो रही है, और जैसे फेडरेशन ने भी इंटरफेयर किया?
2: देखिए, बात यह है, कोर्ट में अगर मामला जाता है तो कोर्ट में 2 दिन में तो फैसला होगा नहीं, उसमें तो महीने लग जाएंगे, और आप महीनों आप रणवीर सिंह को काम करने से नहीं रोक सकते, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप कितनी भी फेडरेशन आ जाएं, चाहे वो विदेशों में जाके शूटिंग करें, चाहे वो और किसी एरिया में जाके करें, अब ये कह रहे हैं कि हम ऑल इंडिया में रोक सकते हैं, हालांकि इनकी जो वैसी वेस्टर्न एम्प्लॉयज एसोसिएशन है जो वेस्टर्न इंडिया की है, अब वैसे ऑल इंडिया सीनियर एम्प्लॉयज की अलग है, सीनियर आर्टिस्ट की, तो इतनी आर्टिस्ट की अलग है, सिंटा है आर्टिस्ट के बारे में, वो एक अलग एसोसिएशन, वो इनके फेवर में खड़ी हो सकती है, तो ये जब यूनियन की लड़ाई चलती रहेगी, एसोसिएशन की लड़ाई चलती रहेगी, तो कुछ नहीं होगा। बात दो लोगों के बीच में है, फरहान और जो मेन है रणबीर, तो ये बैठ के बात करें तो हो जाए, नहीं हो तो अपना आप अलग कीजिए, फिर अलग कीजिए, वो भी
1: अपने डॉग को जो रोके थोड़े
2: रखेंगे, फरहान भी ये थोड़े इसको रोके रखेंगे, जैसे रणबीर ने और भी लोग हैं, पहले शाहरुख ने की है, उससे पहले अमिताभ ने की, फिल्में बनती रही ना, और भी बहुत से आर्टिस्ट है किसी को लेकर सकते हैं।
1: ठीक है, आपकी बात पर शोएब जी कुछ ऐड करना।
3: प्रदीप जी जो कह रहे हैं 45 करोड़ रुपए का खर्चा, मैं मानता हूँ क्या होगा 40-45 करोड़, इतनी बड़ी प्रोजेक्ट की फिल्म है और जो ये सिर्फ प्रोड्यूसर ही समझ सकते हैं। आप एक फिल्म क्रिटिक है, आप शायद प्रोडक्शन की वो शायद उसकी वो ना जानते हो। प्री प्रोडक्शन में इतना खर्चा होता है, एडवांसेस देना, सेट्स बनाना, ट्रैवलिंग का, हो गया होगा इतना बड़े प्रोजेक्ट की फिल्म है। दूसरी बात यह है कि ये फिल्म फेडरेशन जो है अपनी अथॉरिटीज को ओवरस्टेप कर रही है। इसमें दो लोगों के बीच में बैठ के आप सिर्फ एक बात कर लें, बातचीत से हल निकल जाए, सारे सीनियर्स कह रहे हैं वो बात सच है, बातचीत से हल निकलना चाहिए, लेकिन जहां ये लव्स बैन और नॉन कोऑपरेशन के लेकर आते हैं वहां मुझे इन लोगों से शिकायत है। मैं बिल्कुल मानता हूं अगर मुझे भी कल कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तिवारी जी या फेडरेशन के पास ही जाऊंगा, लेकिन अगर ये मेरे ऊपर या किसी पर, किसी आर्टिस्ट पर, किसी वर्कर पर बैन लगाने की बात करेंगे तो बहुत ही
1: जब आप तक आवाज नहीं आ रही थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तिवारी जी, शायद आपने ही ये बात बोली कि बैन नहीं, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, हमने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, आपने आपने चेंज कर दिया। हालांकि आपने जो वो नोटिस निकाला उसमें बैन शब्द लिखा हुआ है,
3: बैन ये नॉन कोऑपरेशन का शब्द इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनकी अथॉरिटी सिर्फ इतनी है कि इनके पास लोग जाए, ये दोनों को बात करें, ये वर्ड जो हैवी ड्यूटी लीगल वर्ड यूज करते हैं, नॉन कोऑपरेशन, बैन और नोटिसेस, यार क्या मतलब है इनका नोटिस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना? वांट अथॉरिटी टू हैव टू सेंड अ नोटिस टू एनीवन, नोटिस का क्या मतलब है? मतलब ये जिस तरह की लैंग्वेज ये लूज कर रहे हैं, कोई भी आदमी अपनी ईगो पर ले जाएगा। इन लोगों को तो सॉफ्टली प्यार से बात करनी चाहिए हर किसी से, क्या भाई ठीक है हम लोग इंडस्ट्री के मेडल मैन है, हम लोग आपको सीनियर से बैठ करके बात करा के मसला सॉल्व कराने जाते, नोटिस और बैन और नॉन कोऑपरेशन, क्या इनके पास अथॉरिटी?
1: अब तिवारी जी को इंक्लूड कर लेते हैं, बीएन तिवारी जी।
4: हमारी अथॉरिटी पे हम न जाए, 50 साल मुझे भी फिल्म इंडस्ट्री में हो गया है, आपने क्या क्या किया है शोएब चौधरी साहब,
1: यहाँ पर प्लीज अपनी पर्सनल ईगो नहीं रखिएगा सर, प्लीज हम ऑलरेडी एक ईगो को लेकर शो कर रहे हैं, बीच में आप दोनों की बात नहीं रखिए, सीधा ये मामला सुलझेगा कैसे तिवारी जी, मामला सुलझेगा कैसे?
4: सीधा इसी पर हम उनको बुला रहे हैं, मेरी बात सुनिए, हम उनको बुला रहे हैं, मामला साल भी हो जाएगा, वो भी हमारी बात सुनते हैं, समझते हैं, प्रोड्यूसर भी हमारी बात सुनता है, हम प्रोड्यूसर की लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि एक्टर को अपने, एक्टर हमारा है, सिंटा हमारी है, हम फेडरेशन के साथ सारे जुड़े हुए हैं, तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब
3: ये खत्म हो जाएगा। कई जगहों पे कर चुके हैं जो मैंने देखा है, 4 लोग गाड़ियां लेकर जाते शाम को, बहुत सीरियसली मैं बात कह रहा हूँ, 2-4 हजार रुपए और
4: गाड़ी
3: करने के सिवा कोई काम नहीं है। लेट मी पुट इट वेरी सिंपली, बात है इन लोगों को कोई सीरियसली नहीं, स्टॉप कॉलिंग देम टू दिस डिबेट्स प्लीज।
4: अभी
1: अब आप दोनों की ना, दोनों की टसल यहाँ पर क्लियर आ रही है, हम यहाँ डॉन 3 की बात करने के लिए बैठे हैं सर, शोएब जी हम डॉन 3 की बात करने के लिए बैठे हैं, हम उस पर आते हैं सीधा, उस पर सीधा आते हैं। शहजाद खान आपको इंक्लूड करना चाहूंगी क्योंकि आपने अभी बहुत अच्छा एक अमजद खान जी का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर आपने दिया था कि कैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया था कि अगर आप कमिटमेंट आपने कर दी है तो उसके बाद आप कितने बड़े स्टार क्यों ना बन जाएं, आपका रोल चाहे छोटा सा हो उस फिल्म में आप उसको करते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इंडस्ट्री में ऐसे कितने और एग्जांपल है और क्या हम ऐसे और एग्जांपल की उम्मीद आज की तारीख में कर सकते हैं? शहजाद जी
0: सर, आज की तारीख में मुश्किल है, बिकॉज इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, आप समझ गए, क्योंकि आजकल पहले क्या होता था, एक एक्टर होता था, एक उसका सेक्रेटरी होता था और डायरेक्ट प्रोड्यूसर से उसका टच होता था, अब क्या हो गया, अब सेलिब्रिटी मैनेजमेंट टीम हो गई है, पूरा एक एंटूराज हो गया है, तो क्या होता है अगर एक्टर करना भी चाहता है तो 10 सलाहकार उसके पाल रखे हैं, सलाहकार अपनी अपनी सलाहें देते हैं, फिर वो इवेल्युएट करना करने लगता है, तो इट्स बिकम अ वेरी टफ थिंग नाउ स्पेशली फॉर द स्टार्स, बट इफ दे, मैं ये जरूर कहूंगा और एक नहीं 10 बार कहूंगा कि अगर आपने कमिटमेंट किया है, आपने सुन के किया होगा, सोच समझ के किया होगा, धुरंधर आज अगर फ्लॉप हो जाती तो उसको डॉन की बहुत जरूरत पड़ती, आज चल गई तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आई थिंक यू शुड गो विद फरहान, क्योंकि फरहान इज अ वेरी गुड बॉय, वेरी नाइस मेकर, वेरी गुड प्रोडक्शन हाउस, रेस्ट इज अप टू रणवीर सिंह एंड फरहान, व्हाट दे फील लाइक टू डू।
1: बिल्कुल प्रदीप जी, अब आखिरी में आपके पास आना चाहूंगी सर, क्या कुछ ऐसा भी क्लॉज लगता है कि आप फिल्म साइन करने के बाद अगर आप खुद बैकआउट कर रहे हैं तो उस पर कोई फाइन, कोई जुर्माना भी उसमें लगाया जा सकता है?
2: देखिए जुर्माना तो कुछ भी लगाया जाए लेकिन वो आप जब तक सेटलमेंट नहीं होगा, होगा नहीं,
1: जब फिल्म साइन की जाती है
2: नहीं, उसमें क्लॉज में अगर है कि भी अगर आप फिल्म छोड़ते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा।
1: ऐसा कितनी फिल्मों के साथ होता है या फिर प्रोड्यूसर और एक्टर की आपसी बॉन्डिंग ठीक ठाक रहती है?
2: देखिए अमिताभ बच्चन जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे तो उन्होंने बहुत सारी फिल्में छोड़नी पड़ी उनको, कई फिल्मों में ऐसे रोल थे उनके जो वो नहीं कर सकते, जो पहले कर रहे थे सांसद होने के नाते नहीं कर सकते थे, तो इसलिए कई फिल्में छोड़ गई। सुभाष गई की एक फिल्म थी वो उनको बंद करनी पड़ी और बहुत सारी फिल्में बंद करनी पड़ी, तो उसमें कई बार आपसी सहमति से भी हो जाता है, वो भी समझते हैं कि ये आर्टिस्ट अच्छा है, व्यक्ति अच्छा है, इसकी ये मजबूरी है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो वो हो जाता है। तो लेकिन क्लोज में अगर है कि आप इसको छोड़ेंगे और आपको ये करना पड़ेगा तो आपको देना पड़ेगा वो सब, उसमें भी अगर ये आप ना दें तो फिर वो कोर्ट ही है उसका, मतलब संस्था नहीं कर सकती, कोर्ट में ही जाना पड़ेगा वो, ठीक है फिर जो बाद में जो फैसला होगा वो होगा। इसलिए ये चाहते हैं कि बैठ के ही बात की जाए, वो सबसे अच्छा सोल्यूशन है। और क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री बड़े दिन बाद जाके अपनी दोबारा खड़ी हो रही है, कोविड के दौर में जिस तरह बैठ गई उससे पहले बैठ गई, अब दोबारा से ये दौर आया जो कुछ फिल्में चली हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छी लहर है और वो बनी रहनी चाहिए। तो अच्छी लहर बनी है वो पूरे एटमॉस्फेयर को अच्छा करती है, पॉजिटिव बनाती है। हाँ। तो पॉजिटिव बातें बनी रहनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा।
1: चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ उम्मीद यही करते हैं कि मामला जल्दी सुलझे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहे हमारे साथ।
5: सूर्य देव का कौन सा शुभ योग अच्छी वाणी देता है? सूर्य देव का कौन सा शुभ योग घर से दूर ले जाकर सफलता देता है? सूर्य देव का कौन सा शुभ योग राजनीति में ऊंचाई पर पहुंचा देता है? कौन से हैं सूर्य के शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: You've always believed in students, their potential, and what they can become. At WGU School of Education, we help current and aspiring educators become great teachers with bachelor's and master's degree programs that are flexible, accredited, and built for real life. With personal support and your pathway to the classroom in any of the 50 states, WGU is where your love for education meets a path to impact. Because teaching isn't just a career, it's a calling. Learn more at wgu.edu.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake up. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
5: पीएम मोदी ने जब से देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है, तभी से जीएनटी भी आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजिए ताकि हम आपके उन वीडियोस को दिखाएं। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला लेकर चलते हैं, जहां के तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें एक वीडियो भेजा है जिसमें उन्होंने धर्मशाला समेत कांगड़ा वैली की खास जगहों के बारे में बताया है।

0: आप सभी को भी न्योता देता हूँ कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो देव भूमि है और हिमाचल के ही अंदर बसा हमारा ये सुंदर धर्मशाला, जहाँ एक तरफ धुलाधार की हसीन पहाड़ियाँ, जहाँ आज मई और जून के महीने में भी बर्फबारी धुलाधार की पहाड़ियों पर है। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सुंदर हमारा धर्मशाला, जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो विश्व का सबसे सुंदर स्टेडियम है वो धर्मशाला में है, चाहे मैक्लोडगंज जो नगरी है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है, बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा जी यहाँ पर हैं। आप सभी आए और धर्मगुरु दलाई लामा जी का आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य आप सभी को मिलेगा। धर्मशाला के अंदर चाय के बगान है, आप उन्हें निहारने के लिए यहाँ आ सकते हैं। धर्मशाला के अंदर कई दिव्य स्थान, कई मंदिर, जैसे अगंजर महादेव, इंद्रनाग जी का मंदिर दिव्य स्थल है, और कई मंदिर हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के शहर के अंदर है। बात करूं रोपवे की, तो धर्मशाला में धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए रोपवे की सुविधा है, आप उसका आनंद लेने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर आ सकते हैं। अगर कोई ट्रैकिंग का शौकीन है तो त्रिउंड जैसा एक ट्रैकिंग का हमारे पास स्पॉट जो है धर्मशाला के अंदर है, आप ट्रैकिंग के लिए भी त्रिउंड जा सकते हैं। साथ में धर्मशाला के लगते बाथू की लड़ी यहाँ घूमने के लिए है। मंदिर की बात करूँ तो रॉकट टेम्पल हमारे यहाँ है। धर्मशाला के साथ ही लगता कांगड़ा है, प्रदेश्वरी माता शक्तिपीठ धर्मशाला के अंदर लगते कांगड़ा में है, तो आप इन तमाम चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए धर्मशाला आए हिमाचल वासी, तो धर्मशाला अतिथि देवो भव के भाव के साथ आप सभी के स्वागत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपने आना कैसे है ये सबसे बड़ा प्रश्न है, तो बताऊं आपको, धर्मशाला के ही समीप गग्गल एयरपोर्ट, जहां आप हवाई मार्ग से आ सकते हैं। रेलवे से अगर आपने आना है तो पठानकोट जो सबसे नजदीक हमारे पड़ता है उसके माध्यम से आ सकते हैं। जब दिल्ली से आपने आना है तो वोल्वो बसेस जो है धर्मशाला तक आती हैं। इन तमाम साधनों से जो आप धर्मशाला आ सकते हैं। हम सभी धर्मशाला वासी आपके स्वागत के लिए और अतिथियों के अतिथि देवो भव के भाव के साथ यहाँ पर।
1: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बनाइए व्लॉग, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम उसे गुड न्यूज़ टुडे पर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
5: Good news today.
6: सूर्य देव का कौन सा शुभ योग अच्छी वाणी देता है? सूर्य देव का कौन सा शुभ योग घर से दूर ले जाकर सफलता देता है? सूर्य देव का कौन सा शुभ योग राजनीति में ऊंचाई पर पहुंचा देता है? कौन से हैं सूर्य के शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
1: मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम, मौसम खराब होने पर यात्रा पर लगा था अल्प विराम। उत्तराखंड के चंपावत में एसडीआरएफ की सतर्कता से टला बड़ा हादसा, अवंती नदी में फंसे 50 से अधिक श्रद्धालु, बचाव दल ने किया सकुशल रेस्क्यू। आत्मनिर्भर भारत की नई ताकत, दुर्गम इलाकों में भी अब आसानी से पहुंचाई जा सकेगी सैन्य रसद, पाथू रेल 300 किलो भार ढोने में सक्षम, 16,000 फीट की ऊंचाई पर सफल प्रदर्शन। लद्दाख के लेह की मस्जिद गली या धुरंधर गली के नाम से हुई मशहूर, यहीं पर हुई थी फिल्म में धुरंधर की शूटिंग, लोग टी स्टॉल पर खिंचा रहे तस्वीरें। गुलाबी सूप के रंग में रंगी लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस, हजारों लोगों ने मनाया पिंक सूप फेस्टिवल, दुनिया भर से पहुंचे सैलानी।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का विस्फोटक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं वो है तो महज 15 साल का, लेकिन क्रिकेट के मैदान में बल्ले से ऐसे ऐसे कीर्तिमान रच रहा है कि बड़े बड़े सूरमाओं की चमक उसके आगे फीकी पड़ती जा रही है।

0: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बीते 27 मई को आईपीएल के एक मुकाबले में बल्ले से विस्फोट की नई इबारत लिखने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी है। जी हां, 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की जो विस्फोटक पारी खेली उसकी धमक में क्रिकेट के कई दिग्गजों के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स दफन हो गए। वैभव ने एक पारी में इतने रिकॉर्ड्स बना दिए कि ये खुद अपने आप में रिकॉर्ड हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वाली पारी। दरअसल पिछले 2 साल से वैभव मैदान में टिककर जिस तरह से आतिशबाजी कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले वर्षों में बल्लेबाजी का कोई ऐसा रिकॉर्ड होगा ही नहीं जो वैभव के नाम ना हो।
1: क्रिकेट के क्षितिज पर उदित हो चुका है एक ऐसा चमचमाता वैभवशाली सूर्य जिसकी चौंधिया देने वाली चमक में क्रिकेट के आसमान के बड़े बड़े सितारे गुम से हो गए हैं। इस वैभवशाली सूर्य ने आईपीएल की महज एक पारी में इतने कीर्तिमान बना दिए हैं कि रिकॉर्ड बुक के हर सफहे पर एक ही नाम चमक रहा है, वैभव सूर्यवंशी। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को हुए एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की ऐसी विस्फोटक पारी खेली कि आईपीएल के 18 साल के इतिहास में बल्ले से बने करीब करीब सारे रिकॉर्ड्स जमींदोज हो गए।
2: वो बच्चा 15 साल का है, इतनी धमाल मचा रखी है। बुमराह को उसने पहली बॉल पे छक्का मारा, हेजलवुड को, हर एक बॉलर को उसने पहली बॉल पे छक्का मारा। ऐसा बल्लेबाज मैंने दुनिया में नहीं देखा। वरिंदर सहवाग भी ऐसी पारी नहीं कभी खेल सका जो वैभव सूर्यवंशी खेलता।
1: वैभव की इस अविस्मरणीय पारी को देखकर ऑल टाइम ग्रेट सचिन तेंदुलकर को कहना पड़ गया अभूतपूर्व। बल्ले से वैभव का अतुल्य धमाका पूरी एकाग्रता से देखने के बाद सचिन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का स्विंग असाधारण था। इससे भी बड़ी बात यह है कि पैरों पर फेंकी गई गेंद पर उन्होंने बेहद कुशलता के साथ फ्रंट फुट क्लियर का रूम बना लिया, जिसकी वजह से उन्होंने जहां चाहा गेंद को वहीं पहुंचा दिया। वैभव की ये पारी चमत्कार से कम कुछ भी नहीं। यूं तो वैभव ने पूरे आईपीएल के दौरान अतुल्य बल्लेबाजी की है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को खेली गई उनकी एक अदद पारी क्रिस गेल, डेविड वार्नर, रिली रूसो, शुभमन गिल और सुरेश रैना जैसे दिग्गजों की कई कई पारियों पर भारी पड़ गई है। वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की धमाकेदार पारी में 12 छक्के लगाए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वैभव ने आईपीएल 2026 सीजन में 65 छक्के पूरे कर लिए हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 सिक्सर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। गेल ने आईपीएल 2012 में कुल 59 छक्के लगाए थे। वैभव के इस रिकॉर्ड के भीतर भी एक रिकॉर्ड छिपा हुआ है। गेल ने 59 सिक्सर के लिए 456 गेंदे खेली थी, जबकि वैभव ने सिर्फ 280 गेंदों पर 65 छक्के अपने नाम कर लिए हैं। 280 गेंदों पर 65 छक्कों का मतलब ये हुआ कि कमोबेश हर चौथी गेंद पर सिक्सर। ये रिकॉर्ड तो गेंदबाजों के लिए डरावने सपने की तरह है।
3: Young man is something else. He can hit the best of fast bowlers, the best of slow bowlers into the crowd. His sixes are generally into the crowd. His sixes are not those that just pop over that boundary arrow. And he just makes it look so ridiculously easy.
1: महज 15 साल के वैभव जिस तरह कीर्तिमान पर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि भविष्य में बल्लेबाजी के सारे रिकॉर्ड्स ब्लैक एंड व्हाइट में इनके नाम ही दर्ज मिलेंगे। 27 मई को एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने एचआरएस के खिलाफ सिर्फ 16 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। आईपीएल के नॉकआउट हिस्ट्री में ये संयुक्त रूप से सबसे तेज 50 है। इससे पहले साल 2014 के क्वालिफायर 2 में सुरेश रैना ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 16 गेंदों पर अर्धशतक बनाया था। इतना ही नहीं, वैभव की इस पारी में शुरू के 10 छक्के सिर्फ 24 गेंदों पर ही आ गए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 10 छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। गेल के 10 छक्के साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 27 गेंदों में आए थे। आईपीएल 2026 के दौरान 27 मई को खेली गई ऐतिहासिक पारी समेत कुल 15 पारियों में वैभव 243 की स्ट्राइक रेट से 680 रन बना चुके हैं। टी20 के किसी भी टूर्नामेंट में 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से 600 से ज्यादा रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले साल 2022 में टी20 ब्लास्ट में रिली रूसो ने 192 के स्ट्राइक रेट से 623 रन बनाए थे। वैभव की इस एक पारी में बने रिकॉर्ड्स की फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव के कुल 12 में से 8 छक्के पावर प्ले में ही आ गए थे। दिलचस्प तो ये है कि इससे पहले पावर प्ले में सबसे ज्यादा 7 छक्कों का कीर्तिमान भी हिंदुस्तान के इस वैभवशाली खिलाड़ी के नाम ही दर्ज था। वैभव अब आईपीएल में 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियां खेल चुके हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। पर कमाल यह है कि वैभव की 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियों में से 3 आईपीएल के मौजूदा सीजन में ही आई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की अपनी पारी में वैभव ने एक और अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। आईपीएल के इतिहास में 90 प्लस रनों की सभी पारियों में वैभव की पारी सबसे तेज स्ट्राइक रेट वाली पारी बन गई है। वैभव ने 334.48 की स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए। इससे पहले ये रिकॉर्ड रजत पाटीदार के नाम था, जिन्होंने इसी सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 281.81 की स्ट्राइक रेट से 33 गेंदों पर 93 रन बनाए थे। आपको बता दें कि 27 मई वाली पारी को लेकर वैभव आईपीएल 2026 सीजन में सिर्फ पावर प्ले के दौरान 490 रन बना चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड डेविड वार्नर के नाम था, जिन्होंने साल 2016 में पावर प्ले के दौरान 467 रन बनाए थे। ये सारे रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं 15 साल के एक टीनेजर के नाम। सोचिए, 15 साल का ये बच्चा इसी उम्र में अगर क्रिस गेल, डेविड वार्नर, किरोन पोलार्ड और शुमन गिल जैसे महारथियों के रिकॉर्ड्स की कब्रगाह बना चुका है, तो आगे तो वैभव के नाम से ही कीर्तिमान की एक किताब छापनी पड़ जाएगी।
4: बैट्समैन बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में अगर वो अपनी फिटनेस अच्छी मेंटेन करता है तो फिर आने वाला वो फ्यूचर स्टार है इंडिया का।
5: वैभव सूर्यवंशी, उसकी भी बैटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया खेलता है,
6: बहुत
5: नेक्स्ट लेवल बैटिंग है। हम उसकी बैटिंग को नहीं कह सकते, उसकी अब अपनी अलग क्लास है।
7: गर्दा उड़ा दिया वैभव सूर्यवंशी ने,
1: ऐसा नहीं है कि वैभव का बल्ला सिर्फ आईपीएल में ही चला है। इससे पहले भी बिहार के समस्तीपुर का ये लाल ऐसी ऐसी अद्भुत पारियां खेल चुका है कि क्रिकेट के इतिहास में उसकी कोई सानी देखने को नहीं मिलती। इसी साल 6 फरवरी को जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में वैभव ने जो पारी खेली थी, उसे अंडर 19 वर्ल्ड कप के 38 साल के इतिहास की सबसे महान पारी कहा जा रहा है। सबसे महान पारी क्यों कहा जा रहा है, स्टैट देखने से इसका जवाब मिल जाएगा। वैभव ने महज 80 गेंदों पर 175 रन ठोक दिए। वैभव ने इस पारी में 15 छक्के और 15 चौके लगाए, यानी 150 रन सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए अपने खाते में जोड़ लिए। 55 गेंदों पर शतक पूरा किया, बाद के 75 रन सिर्फ 25 गेंदों पर ठोक दिए। महज 71 गेंदों पर 150 रन पूरे कर लिए, जो यूथ वनडे इतिहास का सबसे तेज 150 है। इतना ही नहीं, वैभव ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में कुल 30 छक्के लगाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस के नाम था, जिन्होंने 2022 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में 18 छक्के लगाए थे। पूरे टूर्नामेंट में वैभव 439 रन के साथ सेकेंड टॉप स्कोरर भी रहे। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहने के साथ वैभव ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप से ठीक पहले अंडर 19 एशिया कप में 12 दिसंबर 2025 को यूएई के खिलाफ वैभव ने 95 गेंदों पर 171 रन कूटकर विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए थे। इस आतिशी पारी में वैभव ने 9 चौके और 14 छक्के लगाए थे। कहने की जरूरत नहीं कि सबसे तेज और सबसे कम उम्र से जुड़े रिकॉर्ड्स के सरताज बन चुके हैं वैभव। 24 दिसंबर 2025 को रांची के जेएससीए ओवल ग्राउंड में वैभव ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि कई विश्व कीर्तिमान ध्वस्त हो गए। विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल के खिलाफ हुए मुकाबले में वैभव ने सिर्फ 84 गेंदों पर 15 छक्कों और 16 चौकों की मदद से 190 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी थी। इस मैच में सिर्फ 59 गेंदों पर 150 रन पूरे कर वैभव ने लिस्ट ए मैच में फास्टेस्ट 150 का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के नाम था, जिन्होंने साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 64 बॉल पर 150 रन बनाए थे। तूफान थोड़ी देर के लिए हो तो राहत, नहीं तो कहर बन जाता है। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के मैदान के टिक कर रहने वाले तूफान नहीं बल्कि बवंडर हैं। इसीलिए विरोधियों के लिए कहर नहीं बल्कि महाकहर बन रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैभव 13 साल की उम्र में एक मैच में ट्रिपल सेंचुरी भी लगा चुके हैं। रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में वैभव ने 332 रनों की नाबाद पारी खेली थी। अभी तो ये यूथ इंडिया की रहनुमाई कर रहे हैं, इंतजार कीजिए इनके टीम इंडिया में शामिल होने का। इसकी पूरी संभावना है कि साल 2027 के वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए ओपनिंग करेंगे और बहुत संभव है कि भारत तब वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक लगाएगा।
0: 15 साल के वैभव की कामयाबी क्रिकेट के बड़े बड़े धुरंधरों को भी हैरान करने लगी है। आईपीएल में अपने से दोगुने ढाई गुने उम्र के घातक गेंदबाजों को भी वो न सिर्फ सहजता से खेल रहे हैं बल्कि कायदे से धुलाई भी कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इतनी छोटी उम्र में ही वैभव इतने दिग्गज बल्लेबाज कैसे बन गए। दरअसल इसके पीछे कहानी है एक अधूरे सपने की, जो कभी वैभव के पिता ने देखा था। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन हालात की दुश्वारियों की वजह से उनका ये सपना अधूरा रह गया। पर अपने उसी अधूरे सपने को संजीव ने अपने बेटे वैभव के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया। वैभव के क्रिकेटर बनने की पूरी कहानी आपके दिल को छू लेगी।
1: सर पर कामयाबी के ताज के साथ मन में विनम्रता का संस्कार हिंदुस्तान की संस्कृति का सनातन हिस्सा है। मैच 15 की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी का बेनजीर परचम लहरा चुके वैभव सूर्यवंशी सनातन संस्कार के युगीन संवाहक हैं। जिस मैच में वैभव ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी, उसके प्री मैच शो के दौरान जब उन्होंने सुनील गावस्कर और संजय बांगर को देखा तो दौड़कर उनके पास गए और पूरी विनम्रता के साथ उनके पैर छू लिए। वैभव के संस्कार की निश्चल सादगी देखिए कि गावस्कर और बांगर के साथ मौजूद प्रेजेंटर जतिन सप्रू के भी पैर छूने की उन्होंने पूरी कोशिश की। यह अलग बात है कि जतिन पीछे हट गए।
3: हमारी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है कि हम अपने जो बुजुर्ग है, सीनियर्स है, एल्डर्स है, उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, और वही उन्होंने किया। सिर्फ मेरे पास ही नहीं आए थे वो, बस मेरे बाजू में संजय बांगर थे और जतिन सप्रू थे, उनके पास भी आए थे और मुझसे थोड़ा सा रुककर मुझसे कुछ अपेक्षा कर रहे थे कि मैं कुछ उनको बोलूं, शायद अपेक्षा कर रहे थे, मैं ये नहीं कहूंगा, शायद अपेक्षा कर रहे थे। तो मैंने उनको सिर्फ यही कहा, लगे रहो, क्योंकि जब वो लगे रहेंगे तो फिर वो बल्ला मतलब बल्ला लगता रहेगा और छक्के भी लगते रहेंगे।
1: उम्र के लिहाज से वैभव की बेनजीर कामयाबी इस बात की मुनादी कर रही है कि आने वाले वक्त में कीर्तिमान की किताब के हर सफहे पर बिहार के इस लाल का नाम दर्ज मिलेगा। पर वैभव नाम के इस प्रदीप्त दिए की रोशनी से सराबोर होने वाले लोगों को उस तेल और बाती के बारे में भी जानना चाहिए जो खुद गुमनाम रहकर अपने दिए को जगमग कर रहा है। वैभव की इस बेनजीर कामयाबी के पीछे हाथ है उनके पिता संजीव सूर्यवंशी का, जो कभी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का ख्वाब सजोए हुए थे, पर खुद की जो हसरत अधूरी रह गई उसे उन्होंने अपने लाल में प्रत्यारोपित कर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक पिता के अनोखे त्याग की खामोश सदाएं समस्तीपुर जिले के जर्रे जर्रे में जज्ब है।
6: वास्तव में एक पिता का जो त्याग था, तपस्या था, जिद था कि हमको किसी भी तरह जो मैं हासिल नहीं कर सका वो मैं अपने बच्चे को उस मुकाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। वो एकाकी भी देखा कि लोगों से मिलना तक लोगों में, क्योंकि जुनून सवार था कि मैं अपने बेटे को उस मुकाम तक पहुंचाऊं, तो लोगों से मिलना भी बंद किया। उस बीच में कई ऐसी मुसीबतें भी आईं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया।
1: पांच साल के बच्चे को पढ़ाई से दूर कर क्रिकेट के मैदान में पसीना बहाने के लिए खड़ा कर देना किसी भी पिता के लिए आसान फैसला नहीं होगा। पर संजीव सूर्यवंशी ने कलेजे पर पत्थर रख कर ये फैसला लिया। समस्तीपुर जिले की ताजपुर पंचायत में जहां क्रिकेट का कोई नाम लेवा नहीं था, वहां पांच साल के बेटे की प्रैक्टिस के लिए सारी व्यवस्था कर दी। यहां तक कि कुछ हम उम्र और बड़े बच्चों को भी चॉकलेट मिठाई का प्रलोभन देकर साथ जोड़ लिया ताकि वे बॉलिंग करें और वैभव लगातार बैटिंग की प्रैक्टिस करता रहे। पांच साल से सात साल यानी दो साल तक गांव में ही वैभव को दिन रात प्रैक्टिस कराने के बाद एक दिन संजीव सूर्यवंशी को इल्हाम हो गया कि अब अगले लेवल की प्रैक्टिस का वक्त आ गया है, लिहाजा बेटे को लेकर निकल गए ताजपुर से 12 किलोमीटर दूर स्थित पटेल मैदान में, जहां ब्रजेश झा क्रिकेट एकेडमी चलाते थे। क्रिकेटर बनाने का जुनून ऐसा था कि संजीव सूर्यवंशी को जब लगा कि रोजी रोटी के लिए चलने वाला बिजनेस व्यवधान बन रहा है तो बगैर देरी के उसे बंद कर दिया।
8: गार्डियनों का उनका सपोर्ट रहा है कि अपने बच्चे को इतना ज्यादा टाइम किल करते थे, अपने साथ लाना ले जाना, बच्चों के साथ अपना बिजनेस छोड़ के बच्चे के प्रति इतना एक फोकस, गार्जियन का भी कहीं ना कहीं टारगेट था कि हमारा बच्चा ऊपर खेले, और भगवान की दुआ से बच्चा वो मुकाम पर हासिल किया।
1: इसमें कोई संदेह नहीं कि 7-8 साल की छोटी उम्र में ही वैभव अपने पिता की उम्मीदों की कसौटी पर लगातार खरे उतर रहे थे। जब तक सूर्य की रोशनी धरा पर मौजूद रहती, वैभव बल्ले को दामन से दूर नहीं होने देते। पिता और माँ को छोड़कर घर के बाकी सदस्यों को वैभव की आदत कई बार नागवार गुजरती थी। दादी ने तो कई मौकों पर ऊब कर वैभव की पिटाई भी कर दी थी, पर बचपन में वैभव की पिटाई के वो वाकये आज दादी के लिए सुनहरी यादें बन चुकी हैं।
9: डांटते थे,
10: अच्छा,
9: कभी कभी उसको मारते थे, दौड़ते थे उस पर, फिर भी कहता था नहीं दादी हमको अच्छा लगता है, हम खेलेंगे। ठीक है बाबू तब खेलो। जब धीरे धीरे जब दल सिंह सराय गया, बेनी पट्टी, उसके बाद आपको क्या कहते हैं बेगूसराय, जब हम देखते रहे कि यह अच्छा खेल में उतर रहा, तब से मेरा भी मनोबल और मन ये हुआ कि हाँ यह खेले।
1: बचपन में वैभव की बैटिंग की खटखट से ऊब जाने वाली दादी का हृदय आज इस बात को जानकर गदगद है कि उनका पौत्र क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़कर आईपीएल के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाला खिलाड़ी बन गया है। समझे कौन रहस्य प्रकृत का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि वैभव को पटना के जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में डालने के लिए संजीव सूर्यवंशी को जमीन तक बेचनी पड़ी थी? दरअसल संजीव सूर्यवंशी को जब ये लगने लगा कि उनका बेटा समस्तीपुर स्थित पटेल मैदान के स्टैंडर्ड से आगे निकल चुका है, तो पटना में जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन कराने का फैसला किया। एकेडमी की फीस और उसके बाद समस्तीपुर से हर रोज पटना आना जाना कॉस्टली अफेयर था, इसीलिए संजीव सूर्यवंशी बेटे वैभव को लेकर हर अल्टरनेट डे पर पटना जाने लगे। जेनेक्स एकेडमी चलाने वाले पूर्व रणजी खिलाड़ी मनीष ओझा भी वैभव के पिता के त्याग और तपस्या को याद कर भावुक हो जाते हैं।
10: माँ का रोल रहता था बच्चे को तैयार करने से लेके उसको, और जब इधर से थक के जाता था तो उसको फिर रिकवरी में, चाहे वो खाने के सेंस में हो, उसको प्यार के सेंस में हो, उसको रेस्ट के सेंस में हो, और पिता का त्याग इस सेंस में था कि अर्ली सारे बोझ को वो अपने कंधे पर उठा रहे थे, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और फिर भी वो जो वो अपने हैसियत से ज़्यादा बढ़ के उन्होंने उस बच्चे के लिए किया, और हर एक वो सुविधा उस बच्चे के लिए उन्होंने अरेंज किया खेल के प्रति कि वो आज इस मुकाम को प्राप्त कर सके।
1: पिता ने अपनी हैसियत की हदों को पार कर वैभव के लिए जमीन तैयार की, और वैभव ने भी पिता के इस त्याग की कीमत को शिद्दत से महसूस करते हुए मैदान पर पसीना बहाने में कोई कोताही नहीं की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था और वैभव को पटना ले जाना ले आना संभव नहीं रहा, तो संजीव सूर्यवंशी ने अपने ताजपुर स्थित घर के बाहर ही नेट प्रैक्टिस के लिए पिच बनवा दी ताकि वैभव की प्रैक्टिस खंडित ना हो।
11: लॉकडाउन में एक्चुअली पूरा बिहार बंद था, तो यहाँ पे पिच का जनरेट किया गया भैया के द्वारा, और टर्बिकेट और सीमेंटेड लॉकडाउन में लोग घर से नहीं निकल रहे थे, उस वक्त में भी इसका प्रैक्टिस सेशन लगातार यहाँ पे चलता रहा।
1: बेटे को क्रिकेटर बनाने का ये जुनून अपने आप में अनूठा है, इसका नतीजा सबके सामने है। आज वैभव के बल्ले से बनने वाले विश्व रिकॉर्ड्स संजीव सूर्यवंशी की दुनिया को रंगीन सपनों से भी ज्यादा सुहावन बना रहे हैं। वैभव की विराट बुलंदी का आलम यह है कि पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट पर संजीव सूर्यवंशी और उनकी पत्नी से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। देश का गौरव बन चुके तेजस्वी पुत्र का पिता होने के लिए बधाई देते हैं। पिता ने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए त्याग तपस्या की, तो बेटा भी दो कदम आगे बढ़कर अपनी विराट उपलब्धियों से हक अदायगी कर रहा है। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उसके 14 साल के बेटे को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2025 को वैभव को राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। साफ है कि पिता के संकल्प और बेटे की जीतोड़ मेहनत का पावन संगम क्रिकेट के मैदान पर चमत्कारिक धारा बनकर नमूदार हो रही है।
0: तो बंदे मेहदम में आज आपने वैभव सूर्यवंशी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
12: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
13: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
14: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
15: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: सूर्य देव का कौन सा शुभ योग अच्छी वाणी देता है? सूर्य देव का कौन सा शुभ योग घर से दूर ले जाकर सफलता देता है? सूर्य देव का कौन सा शुभ योग राजनीति में ऊंचाई पर पहुंचा देता है? कौन से हैं सूर्य के शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
5: मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम, मौसम खराब होने पर यात्रा पर लगा था अल्प विराम। बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक 7.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन, चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई, बर्फबारी के बीच हेमकुंड साहिब में भी आस्था भारी। उत्तराखंड के चंपावत में SDRF की सतर्कता से चला बड़ा हादसा, अफंती नदी फंसे 50 से अधिक श्रद्धालु, बचाव दल ने किया सकुशल रेस्क्यू। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में लगा भक्तों का तांता, पूजा अर्चना के साथ हर रविवार को होते हैं धार्मिक अनुष्ठान, दान पुण्य के साथ भक्तों के लिए भंडारे का इंतजाम। लद्दाख के लेह की मस्जिद गली अब धुरंधर गली के नाम से हुई मशहूर, यहीं पर हुई थी फिल्म में धुरंधर की शूटिंग, लोग थी स्टॉल पर खींचा रहे तस्वीरें। गुलाबी सूप के रंग में रंगी लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस, हजारों लोगों ने मनाया पिंक सूप फेस्टिवल, दुनिया भर से पहुंचे सैलानी।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: 23 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे हैं रिकॉर्ड श्रद्धालु, अब तक 7,51,000 से अधिक भक्त भगवान बद्री विशाल की कर चुके हैं दर्शन। मई महीने में रोजाना 25,000 से 30,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ धाम, यात्रा में देखने को मिल रहा है भारी उत्साह। बद्रीनाथ धाम में धूप, बारिश और चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी, खराब मौसम के बावजूद लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या। यात्रा मार्गों पर कई जगह घंटों जाम की बन रही स्थिति, इसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह और आस्था में कोई कमी नहीं। हेमकुंड साहिब में बर्फ हटाकर यात्रा मार्गों को सुगम बनाया जा रहा है, SDRF पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधन की टीमें व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटी। उत्तराखंड के चंपावत में SDRF की सतर्कता और एक्शन से उफंती नदी में फंसे 50 से अधिक श्रद्धालुओं को किया गया रेस्क्यू, डाला बड़ा हादसा। चंपावत के श्री रीठा साहिब गुरुद्वारा में प्रसिद्ध जोड़ मेले में जा रहे थे श्रद्धालु, बारिश के बाद नदी में जलस्तर बढ़ने से फंस गए थे लोग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और चमोली में बारिश, केदारनाथ धाम की ओर जाने वाले यात्रियों को अस्थायी तौर पर आगे बढ़ने से रोका गया। उत्तराखंड के श्रीनगर में श्रद्धालुओं को होल्डिंग क्षेत्रों और सुरक्षित स्थानों पर ठहराने की व्यवस्था, खाने पीने के भी किए जा रहे हैं इंतजाम। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए किए गए ट्रैफिक के खास इंतजाम, रास्ते जाम ना हो इसके लिए रखा जा रहा ध्यान। दिल्ली के भक्त ने शिरडी के साईं बाबा को चढ़ाया 15 लाख के हीरो जड़ा ब्रोच, मन्नत पूरी होने पर भक्त ने मोरपंख आकार का सोने का ब्रोच शिरडी साईं बाबा को मंदिर को किया भेंट। दिल्ली के श्रद्धालुओं ने 15 लाख के ब्रोच के साथ 9 लाख रुपए का नगद चढ़ावा भी अर्पित किया, बाबा के इस भक्त ने नाम ना बताने की रखी शर्त। हीरो से जड़ा ये नक्काशीदार ब्रोच साईं बाबा

आशीषदार ब्रॉज साईं बाबा की मूर्ति पर उड़ाए जाने वाले दुपट्टे पर लगाया जाता है। शिरडी में बढ़ रहा है सोने चांदी का चढ़ावा। मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा सोने चांदी और कीमती रत्नों के दान में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। दिल्ली के ब्रॉज दान से पहले लखनऊ के गोपाल गोयल ने साईं बाबा को 1 करोड़ रुपए का स्वर्ण मुकुट अर्पित किया। भक्तों की बाबा पर आस्था अपार। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा का पावन तिथि, पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। अयोध्या में सरयू नदी में पवित्र स्नान के लगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, डुबकी लगाकर पूजा पाठ कर रहे लोग। प्रयागराज में भी संगम पर स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से होता है विशेष पुण्य। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर हरिद्वार और दूसरी जगहों पर भी लोग कर रहे गंगा स्नान, पूजा पाठ और दान के साथ खुशहाली की कामना। इस वर्ष ज्येष्ठ में अधिक मास होने के कारण 2 पूर्णिमाएं धार्मिक दृष्टि से अधिक मास की पूर्णिमा मानी जाती है काफी फलदायी। पुरुषोत्तम मास और ज्येष्ठ एक साथ पड़ने से बढ़ गया है इस बार पूर्णिमा का महत्व। इस बार बना है ब्लू मून का दुर्लभ संयोग। ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत और स्नान दान से आरोग्य, सौभाग्य और सुख समृद्धि का मिलता है वरदान। इस व्रत की मानी जाती है खास महिमा। विवाहित महिलाएं रखती हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत। पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि की करती हैं कामना। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक शांति और पारिवारिक सुख शांति की मान्यता। ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर व महाकाल की दिव्य भस्म आरती, महादेव के अद्भुत श्रृंगार के हुए दर्शन। फिल्म धुरंधर की शूटिंग चर्चा में आई लेह की मस्जिद गली, अब धुरंधर गली के नाम से मशहूर, बढ़ गई है यहां की रौनक। लेह में धुरंधर गली देखने दूर दूर से पहुंच रहे सैलानी यहां के माहौल का उठा रहे हैं लुत्फ। लेह के धुरंधर गली में टी स्टॉल पर लोग खिंचवा रहे तस्वीरें, यहीं पर हुई थी फिल्म धुरंधर की शूटिंग। अब जैसलमेर दौरे पर पहुंची अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की छोटी बेटी टिफनी ट्रंप, पति माइकल भी हैं साथ। जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में ठहरी है टिफनी ट्रंप, ऐतिहासिक धरोहरों का करेंगी दीदार, कड़े सुरक्षा के इंतजाम। बेहद ऊंचाई वाले दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सामान पहुंचाने में होगी बेहद आसानी, सेना की 10 इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने सफलतापूर्वक चालू किया अनोखा पाथू मोनोरेल सिस्टम। इस मोनोरेल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर बेहद खराब मौसम में हो सकेगी सामानों की ढुलाई, जहां गाड़ियों की आवाजाही होती है मुश्किल। इस मोनोरेल से एक बार में 300 किलोग्राम तक सामान ढुलाई संभव, घोड़े खच्चरों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा कारगर है सिस्टम। इस मोनोरेल से गोले बारूद, राशन, ईंधन और दूसरे सामान पहुंचाने मिलेगी मदद, हादसों के दौरान रेस्क्यू में भी होगी मददगार। सेना की 10 इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने डिजाइन और तैयार किया है यह सिस्टम, दिन रात और हर मौसम में हो सकेगा सामानों की ढुलाई का काम, रिमोट से होगा संचालित। जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने संभाला देश के नए सीडीएस का कार्यभार, रक्षा मंत्री के प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर के रूप में भी करेंगे काम। नए सीडीएस जनरल सुब्रमण्य को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक लॉन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, सीडीएस बनने वाले देश के तीसरे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी। जनरल सुब्रमण्य ने नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि, देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों को किया नमन। सीडीएस पद पर नियुक्ति से पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कमेटी मिलिट्री एडवाइजर थे जनरल सुब्रमण्य, सुरक्षा एजेंसियों के बीच रणनीतिक मूल्यांकन और तालमेल के काम से जुड़े थे। एडमिरल के स्वामीनाथन बनाए गए नए नौसेना अध्यक्ष, नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खिली धूप के बीच मौसम सुहावना, सैर सपाटे का मजा ले रहे सैलानी। श्रीनगर के डल झील में शिकारे पर सैर करने पहुंच रहे सैलानी, खुशगवार मौसम में घूमने का मजा हुआ दोगुना। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पहाड़ों पर बर्फ और बादलों का मनमोहक साया, कुदरत ने किया अनोखा श्रृंगार।

0: मनाली में बारिश के बाद बेहद खुशनुमा हुआ मौसम, दूर दूर से पहुंच रहे सैलानी। पंजाब और राजस्थान से गर्मी की छुट्टियां बिताने लोग पहुंच रहे मनाली, छात्रों की और युवाओं की बड़ी तादाद। गुजरात के नवसारी बदला मौसम, लोगों को मिली गर्मी से निजात। सुबह से ही यहां कई इलाकों में बारिश, तापमान में आई गिरावट। गुजरात के अंबाजी और आसपास के इलाकों में गरज और बिजली कड़कने के साथ हुई बारिश, तेज हवाओं के साथ चली धूल भरी आंधी। अंबाजी और आसपास के कई जगह गिरे होर्डिंग, वहीं अंबाजी मंदिर के चाचर चौक पर लगा मंडप भी खुल गया। बारिश की वजह से तापमान में आई कमी, लोगों को मिली गर्मी से राहत। मई के आखिरी दिन भी दिल्ली एनसीआर में मौसम ठंडा बने रहने के आसार, गर्मी का असर काफी हद तक रहेगा कम। दिल्ली एनसीआर में आज 36 से 38 डिग्री के आसपास रह सकता है अधिकतम तापमान, लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिल सकती है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान आज 22 से 24 डिग्री तक रहने के आसार, मौसम रहना रहेगा सुहावना। आज भी दिल्ली एनसीआर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी रहने की संभावना, कई इलाकों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने के आसार। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने आज भी जारी किया येलो अलर्ट, हो सकती है हल्की बारिश और 60 किलोमीटर तक रफ्तार से चल सकती है हवाएं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों में फिर हो सकती है बारिश, बदला रहेगा मौसम का मिजाज। कल से तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी शुरू होने के संकेत, अगले हफ्ते मध्य तक 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुंच सकता है पारा। दिल्ली में बारिश के बाद हवा भी हुई साफ, 5 साल में पहली बार मई में संतोषजनक स्तर पर पहुंचा AQI। तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद दिल्ली में AQI में हुआ सुधार, मई में राजधानी में औसत AQI रहा 161। दिल्ली में शनिवार को दर्ज किया गया मई में 3 साल में सबसे कम AQI, अगले कुछ दिनों तक हवा की स्थिति मध्यम श्रेणी में रहने के आसार। मुंबई के कई इलाकों में आज सुबह से रिमझिम बारिश, मौसम हुआ सुहावना। गर्मी से तपती हुई मुंबई को बारिश के बाद मिली राहत, धरती और पेड़ पौधों सहित सभी प्राणियों को तरावट। मुंबई में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहने के आसार, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान। मुंबई समेत महाराष्ट्र में इस बार धीमी है मानसून की रफ्तार, अभी प्री मानसून बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून तक महाराष्ट्र में हो सकती है हल्की बारिश, फिलहाल कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गरज के साथ बौछारों की संभावना। उत्तराखंड में देवप्रयाग संगम पर गूंजा विष्णु सहस्त्रनाम, अलकनंदा और भागीरथी के पावन संगम पर श्रद्धा और विधि विधान के साथ 108 बार सामूहिक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। देवप्रयाग में भव्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम का आयोजन, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और पतंजलि गुरुकुलम के छात्र छात्राओं ने मिलकर किया विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। इस अवसर पर देवप्रयाग में की गई गंगा आरती, उमा भारती और आचार्य बालकृष्ण सहित कई जाने मानी हस्तियां नहीं शामिल। मध्य प्रदेश के रायसेन में 40 साल बाद फिर लौटी झिरियाई फाक की अनोखी परंपरा, 25 गांवों की 15 टोलियों सहित हजारों दर्शक हुए शामिल। झिरियाई फाक के दौरान 50 फीट ऊंचे चिकने खंभे पर धनुजा से बंधी प्रसाद की पोटली तोड़ने के लिए लगती है होड़, महिलाओं की लाठियों से बचकर करनी पड़ती है चढ़ाई, तब मिलता है नाम। तमिलनाडु के मदुरे में दिव्य धार्मिक उत्सव की धूम, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। मदुरे में कुडाल अजागर मंदिर से निकाली गई देव प्रतिमा की रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में देखा उत्साह। गोविंदा के जय घोष के साथ श्रद्धालुओं ने खींचा रथ, कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई रथ यात्रा। रामनगरी अयोध्या में चलाए गए स्वच्छता अभियान, लता चौक सहित कई इलाकों में की गई सफाई। स्वच्छता अभियान में अयोध्या के मेयर सहित नगर निगम के कर्मी और सामाजिक कार्यकर्ता हुए शामिल, आम लोगों ने भी लिया था भाग। IPL में आज गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की फाइनल में भिड़ंत, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के लिए उतरेगी डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी, पहले प्लेऑफ में गुजरात को 92 रन से दे चुकी है मात। दोनों ही टीमें एक बार फिर आईपीएल ट्रॉफी उठाने को लेकर बेकरार, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात दोनों ने ही एक एक बार जीता है खिताब। विराट कोहली और आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार पर सबकी नजर, 2025 में पाटीदार की कप्तानी में भी आरसीबी ने जीता था पहला आईपीएल खिताब। आरसीबी के कप्तान पाटीदार के पास धोनी और रोहित के क्लब में शामिल होने का मौका, जीत के साथ आईपीएल इतिहास में लगातार दो खिताब जीतने वाले सिर्फ तीसरे कप्तान बन जाएंगे पाटीदार। गुजरात की तरफ से शुभमन गिल के बल्ले से टीम और फैंस को उम्मीद, क्वालिफायर 2 में गिल के 104 रनों की बदौलत फाइनल पहुंची है टीम इंडिया। ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा सकते हैं गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल, फिलहाल 722 रन के साथ वेब शुभमनसी से 54 रन पीछे। पर्पल कैप की दौड़ में गुजरात के काकिसो रबाडा 28 विकेट के साथ सबसे आगे, 26 विकेट झटक कर दूसरे नंबर पर बेंगलुरु के भुवनेश्वर कुमार। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए वैभव सूर्यवंशी, मंत्री इरफान अंसारी ने किया ऐलान। सूर्यवंशी के जुड़ने से स्वास्थ्य, फिटनेस और खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में अभियान को मिलेगी मजबूती, देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के क्षेत्र संस्करण का आयोजन, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जुटे लोग। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल्स के जरिए अच्छी सेहत और फिटनेस का संदेश, युवाओं में दिखा खास उत्साह। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल समारोह के दौरान निकाली गई साइकिल रैली, बच्चे भी हुए शामिल। नागपुर में सांसद क्रीड़ा महोत्सव का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एक्टर सुनील शेट्टी रहे मौजूद। क्रीड़ा महोत्सव में नागपुर के युवाओं और स्थानीय खिलाड़ियों को मिलेगा प्रतिभा दिखाने का मौका, हजारों खिलाड़ी लेंगे भाग। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में वेसाक फेस्टिवल, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग मना रहे त्योहार। कोलंबो में वेसाक फेस्टिवल के सिलसिले में सजाए गए शानदार पंडाल, अनूठी लाइटिंग के जरिए भगवान बुद्ध की जीवन गाथा को किया गया प्रस्तुत। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर मनाया जाता है वेसाक फेस्टिवल, लोग करते हैं अमन चयन और खुशहाली की प्रार्थना। ताइवान में भगवान के शरण में बीटीएस फैंस कॉन्सर्ट के लिए टिकट के लिए हाथ जोड़कर भगवान से कर रहे प्रार्थना। चैंपियंस लीग में लगातार दूसरे साल पीएसजी की जीत के बाद एफिल टॉवर पर शानदार लाइटिंग, जोरदार आतिशबाजी के बीच फैंस ने मनाया जश्न। चीन के जुलिन प्रांत में पहला ह्यूमन पेट मैराथन कार्निवल शुरू, 400 से अधिक परिवार उनके पेट्स ने 3.6 किलोमीटर के ऑफ रोड मैराथन में लिया हिस्सा। इस कार्यक्रम में देखने को मिला क्यूटनेस और जोश का एक मनमोहक मेल, नीले आसमान के नीचे घास के मैदानों पर एक साथ दौड़े धावक और उनके प्यारे पेट्स। रेस को छोटे डॉग्स और बड़े डॉग्स के श्रेणियों में बांटा गया, विजेताओं को इनाम के तौर पर दी गई इसकी टिकट और होटल में ठहरने के पैकेज। हॉलीवुड के दिग्गज स्टार मैरिलिन मॉनरे को 100वें जन्मदिन के सिलसिले में याद किया गया, 1 जून 1926 को लॉस एंजल्स में हुई थी पैदाइश। ग्लैमर और स्टाइल की सबसे बड़ी प्रतीक मानी जाती है मैरिलिन मुनरो, अभिनय सुंदरता और करिश्मे का अनोखा संगम थी मुनरो।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: Hi, I'm Kingston Bagpuse. Some people say Talk Sports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
6: और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good News Today, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे Good News Today पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
0: पीएम मोदी ने जब से देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है, तभी से जीएनटी भी आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजिए ताकि हम आपके उन वीडियोस को दिखाएं। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला लेकर चलते हैं, जहां के तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें एक वीडियो भेजा है जिसमें उन्होंने धर्मशाला समेत कांगड़ा वैली की खास जगहों के बारे में बताया है।

0: नमस्कार, आप सभी को भी न्योता देता हूँ कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो देव भूमि है और हिमाचल के ही अंदर बसा हमारा ये सुंदर धर्मशाला, जहाँ एक तरफ धुलाधार की हसीन पहाड़ियाँ, जहाँ आज मई और जून के महीने में भी बर्फबारी धुलाधार की पहाड़ियों पर है। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सुंदर हमारा धर्मशाला, जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो विश्व का सबसे सुंदर स्टेडियम है वो धर्मशाला में है, चाहे मैक्लोडगंज जो नगरी है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है, बौद्ध धर्म के धर्म गुरु दलाई लामा जी यहाँ पर हैं। आप सभी आए और धर्म गुरु दलाई लामा जी का आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य आप सभी को मिलेगा। धर्मशाला के अंदर चाय के बगान है, आप उन्हें निहारने के लिए यहाँ आ सकते हैं। धर्मशाला के अंदर कई देवी स्थान, कई मंदिर, जैसे अगंजर महादेव, इंद्रनाथ जी का मंदिर देवी स्थल है, और कई मंदिर हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के शहर के अंदर है। बात करूं रोपवे की, तो धर्मशाला में धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए रोपवे की सुविधा है, आप उसका आनंद लेने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर आ सकते हैं। अगर कोई ट्रैकिंग का शौकीन है तो त्रिउंड जैसा एक ट्रैकिंग का हमारे पास स्पॉट जो है धर्मशाला के अंदर है, आप ट्रैकिंग के लिए भी त्रिउंड जा सकते हैं। साथ में धर्मशाला के लगते बाथू की लड़ी यहाँ घूमने के लिए है। मंदिर की बात करूँ तो रॉकट टेम्पल हमारे यहाँ है। धर्मशाला के साथ ही लगता कांगड़ा है, प्रदेश्वरी माता शक्तिपीठ धर्मशाला के अंदर लगते कांगड़ा में है। तो आप इन तमाम चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए धर्मशाला आए हिमाचल वासी, तो धर्मशाला अतिथि देवो भव के भाव के साथ आप सभी के स्वागत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपने आना कैसे है ये सबसे बड़ा प्रश्न है, तो बताऊं आपको, धर्मशाला के ही समीप गग्गल एयरपोर्ट, जहां आप हवाई मार्ग से आ सकते हैं। रेलवे से अगर आपने आना है तो पठानकोट जो सबसे नजदीक हमारे पड़ता है उसके माध्यम से आ सकते हैं। जब दिल्ली से आपने आना है तो वोल्वो बसें जो है धर्मशाला तक आती हैं। इन तमाम साधनों से जो आप धर्मशाला आ सकते हैं। हम सभी धर्मशाला वासी आपके स्वागत के लिए और अतिथियों के अतिथि देवो भव के भाव के साथ यहाँ पर।
1: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बनाइए ब्लॉग, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम उसे गुड न्यूज़ टुडे पर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: सूर्य देव का कौन सा शुभ योग अच्छी वाणी देता है? सूर्य देव का कौन सा शुभ योग घर से दूर ले जाकर सफलता देता है? सूर्य देव का कौन सा शुभ योग राजनीति में ऊंचाई पर पहुंचा देता है? कौन से हैं सूर्य के शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
6: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
7: It's your boy,
6: just
7: Jay-Z.
6: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: Sage University, transforming your passion into profession.
1: मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम। खराब मौसम होने पर यात्रा पर लगा था अल्प विराम। बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक 7.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई। बर्फबारी के बीच श्री हेमकुंड साहिब में भी आस्था भारी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में लगा भक्तों का तांता। पूजा अर्चना के साथ हर रविवार को होते हैं धार्मिक अनुष्ठान। दान पुण्य के साथ भक्तों के लिए भंडारे का इंतजाम। यूपी की राजधानी लखनऊ में हुई झमाझम बारिश। भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को मिली राहत। आसमानी फुहारों से गिरा पारा। उत्तराखंड के चमोली में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का भव्य आगाज। 28 राज्यों के 900 प्रतिभागी कर रहे शिरकत। भारत चीन सीमा के पास लगा रोमांच का मजमा। गुलाबी सूप के रंग में रंगी लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस। हजारों लोगों ने मनाया पिंक सूप फेस्टिवल। दुनिया भर से पहुंचे सैलानी।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबर।

0: आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे, मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। 40-45 पार पौरा पहुंचते ही जब भरी दोपहरिया आप अपने अपने घरों में या एसी वाले दफ्तरों में दुबके होते हैं, गर्मी की तपिश से बचने के लिए जब सरकार एडवाइजरी और चेतावनी जारी कर रही होती है, देश भर में झुलसा और तपा देने वाली गर्मी न जाने कितने ही लोगों की जान ले डालती है। आग के उसी जलते गोले के नीचे ये तब भी अपनी ड्यूटी बजा रहे होते हैं। जब आप अपनी ठंडी ठंडी कूल कूल एसी वाली गाड़ी से गुजर रहे होते हैं तब सड़क किनारे ये आपको अक्सर नजर आ जाएंगे। बॉर्डर पर जंग लड़ने वाले जवानों से कम मुश्किल नहीं होता है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ये ड्यूटी, लेकिन एक छोटी और खूबसूरत सी कोशिश ने इनको एक ठंडी भरी राहत जरूर दी है।
1: जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आंखों का धोखा है। दूर से देखो तो पानी, करीब जाओ तो छलावा। बस इन तस्वीरों को देखकर सोचिए कि जो धधकती उबलती गर्मी सड़कों को यूं छलावा बना दे तो इन्हीं सड़कों पर आते जाते हार्ड मास के इंसानों का वो क्या हाल करती होगी। गाड़ियों का एसी काम करना बंद कर देता है, आधे घंटे कार धूप में खड़ी कर दे तो कार के अंदर का तापमान 50 डिग्री पार कर जाता है। अब जरा सोचें, उसी चिलचिलाती धूप और गर्मी में घंटों खुले आसमान के नीचे अपनी ड्यूटी बजाने वाले इन लोगों पर क्या गुजरती होगी। जब सर पर पारा हद से ज्यादा होना तो किसी भी इंसान का पारा बढ़ जाता है, पर वो इंसान अगर कानून का मुहाफिज हो तो फिर जरूरी हो जाता है कि उसके पारे को ठंडा रखा जाए, और ऊपर से वो पुलिस या ट्रैफिक पुलिस वाला हो तब तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अमूमन इन्हें खुले आसमान और तपते झुलसाते खौलते सूरज के नीचे खड़े रहकर सीधे आम लोगों से डील करना होता है, और बस इसीलिए कानून के इन्हीं मुहाफिजों को गर्मी में ठंडी का एहसास कराने के लिए एक खास और यूनिक हेलमेट पहनाया जा रहा है। दफ्तर जाने वालों का ये रास्ता ही इनका दफ्तर है, यही इनकी मंजिल है, क्योंकि ये ट्रैफिक पुलिस है। प्रचंड गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, ये आपको यही नजर आएंगे खुले आसमान के नीचे। ऐसा नहीं है कि इन्हें गर्मी नहीं लगती, ऐसा नहीं है कि इनका दो पल सुकून से आराम करने का मन नहीं करता, लेकिन गर्मी सर्दी दरकिनार कर ये हमारे आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा सड़कों पर नजर आते हैं। हम सब अपने अपने घर और दफ्तर आसानी से पहुंच सके इसके लिए ये हर मौसम की मार झेलते हैं, और यही ट्रैफिक पुलिस का सच है। लेकिन अभी अपने सिर पर आग उगलता सूरज लिए नहीं बल्कि ठंडक पहुंचाते हेलमेट पहनकर अपनी ड्यूटी करेंगे। सालों से ट्रैफिक पुलिस को हमने सड़कों पर यूं ही जूझते देखा है, लेकिन अब इन पुलिस वालों के बारे में सोचा गया और ये तस्वीरें उसी का नतीजा है। ये तस्वीर चाणक्यपुरी इलाके की है, ये VVIP इलाका है, तमाम देशों के दूतावास है, तो थोड़ी दूर पर प्रधानमंत्री का घर भी है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में गर्मी कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी, नौ तपा चल रहा था, यानी बस तपा देने वाली गर्मी। लेकिन इस आलम में भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ये जवान इस वक्त खुद को ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस कर रहे हैं। यकीन ना हो तो खुद इन्हीं से पूछ लीजिए।
2: मैडम अच्छी रात है और ये सबको मिलना चाहिए, अब सीनियर अफसरों ने अच्छी पहल करी है, रिलैक्स फील कर रहे हैं अब हम, लेकिन VIP मूवमेंट ज़्यादा है तो खड़ा रहना ही पड़ता है, हर 15-10 मिनट में कोई ना कोई VIP आ ही जाता है। नई दिल्ली है तो अलर्ट रहना पड़ता है, पेड़ के नीचे नहीं जा सकते।
3: अंतर तो काफ़ी है, बहुत राहत मिली है इससे।
1: हालांकि ट्रायल के तौर पर अभी कुछ पुलिस कर्मियों को ही ये हेलमेट इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है, ये बात तो हम सब जानते हैं कि इन ट्रैफिक पुलिस वालों की ड्यूटी में रियायत की कोई गुंजाइश नहीं होती। जब बारिश हो रही होती है तब भी वो खड़े रहते हैं, जब आंधी चल रही होती है तब भी वो डटे रहते हैं, जब तूफान आता है तब भी उनके कदम डगमगाते नहीं। कड़ाके की ठंड में जब हम और आप गर्म और मुलायम रजाई में दुबके होते हैं तब भी वो खुले आसमान के नीचे ही मिलेंगे। तेज गर्मी में जब सब एसी की ठंडी हवा खा रहे होते हैं या किसी पेड़ की छांव तलाश रहे होते हैं तब भी आग उगलते सूरज को सर पर लिए वो अपनी ड्यूटी बजा रहे होते हैं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की एक छोटी सी कोशिश ने हजारों ट्रैफिक पुलिस वालों को एक ऐसी ठंडक पहुंचाई है जो सचमुच दिल को राहत देती है।
4: इस बार हम लोगों ने ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स और पुलिस हेडक्वार्टर्स की गाइडेंस में इनके लिए एक समर प्लान बनाया है, जिसमें हम लोगों ने इनको ट्रायल बेसिस पे कुछ एसी हेलमेट्स दिए हुए हैं, जो उनका जो है नेक और जो हेड वाला पोर्शन है उसको स्वेट फ्री रखता है।
1: ट्रैफिक पुलिस वालों की ड्यूटी बेहद लंबी होती है, पूरे दिन उन्हें इन्हीं सड़कों पर अपनी ड्यूटी निभानी होती है। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए ये एसी वाले हेलमेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये हेलमेट काम कैसे करता है, कितनी देर तक उन्हें ठंडा रख पाता है, ये सवाल सबके मन में है। इन पुलिस कर्मियों को दिए इन हेलमेट का वजन करीब 200 से 250 ग्राम है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ज्यादा देर पहनने पर इसका भार ज्यादा ना लगे और आसानी से इसे पहना जा सके। इसमें एक शील्ड भी लगी है जो आंखों को धूप से बचाने का काम करती है। ये खास हेलमेट सिर के तापमान को सामान्य से 10 से 15 डिग्री तक कम कर देता है। हेलमेट के भीतर छोटा सा फैन लगा है जो सिर के चारों ओर हवा को घुमाता है। इसमें एक कूलिंग पैड भी है जो पसीने को सोखती है और ठंडी नमी छोड़ती है। हेलमेट के बाहरी शेल में यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रेजिस्टेंट कोटिंग है, जिससे सूरज की गर्मी अंदर कम पहुंचती है।
4: इसमें होता यह है कि एक छोटा डिवाइस है ये, जिससे जो है हवा वो आपके चेहरे की तरफ फेंकता है, तो जो पसीना आता है आपको वो पसीना उससे चला जाता है और आपको ठंडक महसूस होती है। ये अभी तक इसका ट्रायल्स में पॉजिटिव फीडबैक दिया है स्टाफ ने। एक बार चार्ज होने पे करीब 2 से 3 घंटे चलता है, विच इज़ गुड, क्योंकि स्टाफ जो है जैसे हैवी ट्रैफिक का टाइम है सवेरे शाम का या दोपहर का टाइम है, तो उस समय कोई स्टाफ है जो 2-3 घंटे ड्यूटी करता है उसके बाद उसको चार्ज कर सकता है।
1: यानी एक बार इसकी बैटरी चार्ज हो गई तो पूरी ड्यूटी थोड़ी ठंडक में निकाली जा सकती है। सवाल ये है कि जिस सोच के साथ इस हेलमेट को बनाया गया है, क्या वाकई वो वैसा ही रिजल्ट दे पा रही है? क्या ग्राउंड पर काम कर रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को इससे राहत मिल पाई है? इसका इस्तेमाल कितना आसान या मुश्किल है, आइए खुद इन्हीं से जानते हैं।
2: यहाँ से ऑन ऑफ, इसका यहाँ से ऑन कर लो अपना पहन के और फिर ऑफ कर दो, जितना जरूरत हो उतना चला लो।
5: टेम्परेचर लिखा
2: हुआ है? हाँ, हाँ इसमें टेम्परेचर सेट है। कितना चलाना है आपको? 25, 50, 75, 100 लो और हाई। हाँ 100% कूलिंग होगा। मैडम इसके अंदर से वो लगे हैं, अंदर से आती है हवा इसके। हाँ हाँ ये हवा आती है, हवा आती है। हाँ
1: घर में जिस तरह एसी का तापमान कम ज्यादा करने का विकल्प होता है, ठीक उसी तरह इसमें भी टेम्परेचर कम या ज्यादा किया जा सकता है और यकीनन इससे तपती गर्मी में काम कर रहे पुलिस वालों को राहत पहुंचती है।
2: और ये मेरा मानना है कि अभी ट्रायल पे है तो आगे भी सभी को मिलना चाहिए, आदमी आराम से ड्यूटी कर सके, नहीं तो ड्यूटी वैसे भी करनी है, इससे थोड़ा रिलैक्स रहेगा तो आदमी ज्यादा टाइम दे सकेगा।
1: हेलमेट के फायदे को देखते हुए ये तय किया गया या बाकी ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी इसका इस्तेमाल कर सके, इस पर काम किया जा रहा है। और इन पुलिस कर्मियों के लिए न सिर्फ हेलमेट बल्कि गर्मी और इनकी परेशानियों को देखते हुए वो सभी जरूरी सामान इन तक पहुंचाया जा रहा है जो इन्हें इनकी ड्यूटी को आसानी से करने में मदद कर सके।
6: और ये जो कूलिंग हेलमेट वाला जो कंसेप्ट था इसको देखा तो इसमें हम लोगों ने पाया कि इससे थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर जो है ज़्यादा हीट नहीं होता है और ये एक ज़्यादा कंफर्ट देता है जो सड़क पे खड़े हुए धूप में, तो इसके लिए भी हमने ट्रायल प्रोजेक्ट पे ये स्टार्ट किया है और इसका रिस्पॉन्स अच्छा है और इसको हम लोग आगे भी बढ़ा के और सर्किल्स में भी और स्टाफ के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको इस तरीके से अन्य स्टाफों को भी हम सुविधाएं प्रदान कर सकें।
1: गर्मी में सड़कों पर ड्यूटी बजाते इन ट्रैफिक पुलिस वालों को हेलमेट के साथ ही छाता, पानी की बोतल और पंखे, सेफ्टी गॉगल्स और आराम करने के लिए बूथ के इंतजाम भी है। इससे ड्यूटी कर रहे यातायात कर्मी न सिर्फ गर्मी से बचेंगे बल्कि बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी कर पाएंगे।
4: तो जो भी इसको चाहता है कि पानी, ठंडा पानी पी ले, तो वो जो है उसको कॉल कर सकता है तो वो वैन उसके पास चली जाती है। सिमिलरली छोटे फैंस हैं, रिचार्जेबल फैंस, क्योंकि ड्यूटी जहाँ होती है वहाँ कई बार पॉइंट नहीं होते हैं चार्ज कर, मतलब कंटिन्यूसली प्लग इन करके रखने के लिए, तो रिचार्जेबल फैंस हम लोगों ने स्टाफ को प्रोवाइड करें। इसी के साथ कुछ कॉरपोरेट्स हैं जैसे L&T है, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्टर्स है, इनके साथ हम लोगों ने CSR में कुछ बूथ्स बनवाए हैं, जैसे जो हमारे बिजी चौराहे हैं, जैसे तीन मूर्ति हो गया, इसके अलावा संसद मार्ग हो गया, कर्तव्य पथ हो गया, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ बूथ्स लगवाए हैं। तो हमारी जो लेडी स्टाफ है, या जब खाने का टाइम होता है तो स्टाफ को कहीं 10 मिनट बैठना है तो वो इन बूथ्स में बैठ सकते हैं। तो ये हमारी कुछ वो हैं इनिशिएटिव्स जो हमने समर टाइम में लिए हुए हैं। हाँ, इसमें एक छोटा अम्ब्रेला है जो अभी हमें रिसेंटली ट्रैफिक हेडक्वार्टर से मिला है, जो कि पर्सनल, जो हमारे ट्रैफिक पर्सनल हैं वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और जब धूप बढ़ जाती है तो अम्ब्रेला अपना खोल सकते हैं।
3: हम थोड़ी बहुत जब बिल्कुल हवा बंद हो जाती है, ऐसा क्लाइमेट हो जाता है बिल्कुल, तो फिर इसको हम चला के खड़े हो जाते हैं, थोड़ा हवा लग जाती है, काफ़ी अच्छा महसूस होता है। मैडम जब भी रोड पर खड़े होते हैं तो गर्मी तो होती है, सर्दियों में तो ज़रूरत नहीं है, गर्मियों में विशेषकर ज़रूरत है, तो इसको रखना ही पड़ता है, हवा लगती रहती है। बहुत अच्छी पहल है जी, अच्छी बात है, और ज़्यादा इसको विस्तार से करना चाहिए, ज़्यादा पंखे हेलमेट वगैरह अभी तो लिमिटेड है, धीरे धीरे इनका बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे अभी ट्रायल है।
1: ये दिल्ली पुलिस की एक खास वैन है और पहल बेहद खूबसूरत। तेज गर्मी के बीच खुले आसमान के नीचे ड्यूटी देते इन पुलिस वालों को प्यास भी ज्यादा लगती है। ऐसा नहीं है कि पानी का इंतजाम नहीं होता, ये अपने अपने हिस्से का पानी भी साथ रखते हैं, लेकिन चिलचिलाती गर्मी कुछ ही देर में पीने के उस पानी को भी खौला देती है। इनकी इसी परेशानी को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक खास गाड़ी चलाने की शुरुआत की। ये वो गाड़ी है जो दिल्ली की सड़कों पर घूम घूम कर प्यासे पुलिस वालों को ठंडा पानी पिलाती है।
4: इसके अलावा हम लोगों ने एक रिफ्रेशमेंट वैन भी चलाई है इनके लिए, जो रेफ्रिजरेटेड वैन है। इसमें हम लोगों ने ठंडा पानी और नींबू पानी और ORS की फैसिलिटीज़ दी हैं। तो ये जो वैन है, ये जहाँ जहाँ इनके पॉइंट्स लगते हैं, खासकर जब हमारे VIP अरेंजमेंट्स होते हैं जो नई दिल्ली रेंज में बहुत ज़्यादा हैं, तो ये पॉइंट वाइज जाता है। और इसका जो नंबर है, जो इसका इंचार्ज है वैन का, इसका नंबर दिन में कंट्रोल रूम सर्कुलेट कर देती है।
0: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की मोबाइल फूड वैन ये है, ये वो वैन है जो पूरी नई दिल्ली में घूमकर अलग अलग जगहों पर जाकर जहां ट्रैफिक पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे होते हैं उनके पास पहुंचती है। उन्हें पानी पीना है, ORS पीना है, लिक्विड कुछ भी चाहिए और थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट अगर चाहिए तो ये वैन उन्हें प्रोवाइड कराती है। इस वैन में क्या क्या है, ये वैन अंदर से कैसे दिखती है आपको दिखाते हैं। यही वो मोबाइल फूड वैन है जिसमें दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए ये पानी पीने की सुविधा, उनको ये वैन पूरी नई दिल्ली में घूम घूम कर पानी डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि जिस तरीके से नौ तपा है, 45-50 डिग्री के आसपास पारा है, बाहर निकलना लोगों का दुभर हो रहा है, लेकिन इस बीच ट्रैफिक पुलिसकर्मी इस भीषण गर्मी में सड़कों पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन पानी की उनकी ज़रूरत को पूरा करती है ट्रैफिक पुलिस की ये मोबाइल वैन, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी रखा हुआ है। सर, ये जो मोबाइल वैन है ये ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को पानी प्रोवाइड करते हैं, क्या आप लोगों की ड्यूटी रहती है, कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं?
7: हाँ, जैसे भी कोई VIP का कोई अरेंजमेंट होता है, जहाँ कोई VIP रूट होता है, तो उसके लिए हम जहाँ जहाँ भी ट्रैफिक पुलिस जितनी भी डिप्लॉय होती है सबके लिए पानी का बंदोबस्त और साथ में ORS का घोल।
0: और क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये भी पानी भी गर्म हो जाता है, तो इस पानी को ठंडा करने के लिए ये फ्रिज लगा हुआ है और यहाँ पर ठंडी पानी की बोतलें हैं जो सहारा है इस भीषण गर्मी में उन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए जो रोड पर खड़े हैं इस प्रचंड गर्मी में सिर्फ आपके लिए, ताकि आप सुरक्षित अपने घर तक पहुंच सकें।
1: गर्मी की वजह से हद से ज्यादा पसीना निकलता है, जिसके चलते कई बार तो पुलिस वाले गश्त तक खा जाते हैं, लिहाजा पानी के साथ साथ सड़कों पर मौजूद इन पुलिस वालों को ORS का घोल भी दिया जाता है।
3: पानी तो लाइफ के लिए वैसे भी हमेशा जरूरी है, और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जो इतना टेम्परेचर 50 के आसपास हो रहा है उसमें ये व्यवस्था करी, बहुत अच्छा कारगर साबित हो रहा है।
0: पानी उसके साथ और क्या मिलता है?
3: ORS का ये पॉकेट दे रहे, इससे अच्छा फायदा मिल रहा है हम लोगों
0: को। जो दिल्ली के ट्रैफिक को मैनेज करना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती होती है, आप लोग ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं उसके लिए ये क्या एनर्जी आपका बूस्टअप कर देता है?
3: जी मैम, जी मैम, बिल्कुल।
0: अच्छा, ये वैन कितनी देर में चक्कर लगाती है और कितनी फ्रिक्वेंट रहती है, कब कब पानी दे के जाती है, कब से शुरू हुई?
3: मैम ये रोज आती है, लास्ट शायद 10-15 दिन से आती है।
0: अच्छा।
3: और रोज एक राउंड ही आता है।
8: तो ये पूरी दिल्ली में घूम करके ट्रैफिक पुलिस का ये काम।
9: जी मैम, गर्मी में तो ठंडा पानी मिल जाए तो एक अमृत के समान हो जाता है मैम। वैसे ही तो अब मतलब मरते हुए को एक पानी दो बूंद पानी डाल दे तो जीवन तो मिलता ही है। इतनी गर्मी में ठंडा पानी, वो भी अब गर्म मिल जाए वही सफिशियंट है, लेकिन अब ठंडा मिल रहा है तो और सोने पे सुहागा है मैम। ORS मिल रहा है मैम। वेलफेयर चाहते हैं, अच्छा ही चाहते हैं। उनको पता है कि नीचे वाला स्टाफ गर्मी में धूप पे रोड पे खड़ा होकर परेशान हो रहा है, तो हमारे सीनियर अफसर की अच्छी फैल है।
1: राजधानी में देश के अलावा दुनिया भर से लोग आते हैं। कामकाजी लोगों के अलावा बड़ी संख्या में लोग यहाँ घूमने आते हैं। इन सबको एक साथ मैनेज करना ट्रैफिक पुलिस वालों का ही काम है। 2.5 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में 4800 ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं। इन्हीं लोगों के कंधों पर 2.5 करोड़ दिल्ली वासियों की सुरक्षा का जिम्मा है।
6: देखिए हमारी स्ट्रेंथ करीब 4800 के लगभग है। तो अभी हम लोग इसमें हम लोगों के पास होमगार्ड्स भी हम लोगों को मिले हुए हैं, तो होमगार्ड्स को भी हमने सब्स्टिट्यूट करके करते हैं। और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जो स्ट्रेंथ है उससे करें, और हम लोगों ने अभी अपनी डिमांड्स भी वगैरह भी भेज रखी है, तो शायद हम लोग कुछ स्ट्रेंथ भी हम लोग शायद बढ़ जाए, पर जो हमारे पास स्ट्रेंथ है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं।
1: काम दुरुस्त तरीके से हो सके इसके लिए एक व्यवस्था के तहत पूरी दिल्ली के ट्रैफिक को स्ट्रक्चर किया गया है। दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को दो हिस्सों में बांटा गया है, Zone 1 और Zone 2। दोनों के हिस्से उनके उनके जिले दे दिए गए। ऐसा करने से काम को बांटने और उसे लागू करने में आसानी हुई है।
6: हाँ, ये मैम हम लोग का जो है जो पूरे दिल्ली को दो जोन में बांटा हुआ है, Zone 1 Zone 2। हमारे 6 रेंजेस हैं, उन 6 रेंजेस में हमारे जो हैं 50 TIs हैं, तो सब अपने जुरिक्शन में अपना अपने जो जो भी कंजेशन पॉइंट्स हैं, जो डार्क स्पॉट्स हैं, जहाँ पे हमारे एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं, उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। उनके पॉइंट्स होते हैं ड्यूटी इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शंस पे हमारे स्टाफ रहते हैं, और सिग्नल्स का भी हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, सिग्नल्स की टाइमिंग ठीक रहे जिससे कि लोगों को कम से कम जो है असुविधा हो। रोड इंजीनियरिंग की बात मैंने जैसे आपको बताया कि रोड इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग कंसल्टेंसी एजेंसी से लाइसेंस रखते हैं, और अपने अपनी तरफ से जो रेगुलेशन और प्रोसिक्यूशन ये हमारा जो है इसको हम लोग लगातार कंट्रोल करते रहते हैं।
1: जो काम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधीन आता है वो फौरन करती है, और जहाँ किसी और एजेंसी की जरूरत होती है वहाँ उनके सहयोग से काम कराया जाता है।
6: और दूसरा, हमारा कहीं भी ट्रैफिक की जो समस्या है रोड इंजीनियरिंग के तहत, कहीं पे हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे रोड इंजीनियरिंग, चूँकि हमारे ट्रैफिक से हमको सिविक एजेंसी से जो कोऑपरेशन चाहिए, हम लोग कंसर्न एजेंसी से कोऑर्डिनेट करते हैं। वहाँ पे जैसे सबवेज बनने हैं या कोई सेंट्रल वर्च पे कुछ मॉडिफिकेशंस होना है, तो CPWT, MCT, NDMC, मेट्रो, NHAI, ये सब जो एजेंसीज हमारी काउंटर एजेंसीज हैं उनसे हम लोग रेगुलर मीटिंग्स करते रहते हैं, और हाई लेवल से भी मीटिंग्स होती रहती है, और हम लोग मॉनिटर करते हैं कि ट्रैफिक को कैसे सुधारा जाए।
1: इन जिम्मेदार कंधों के लिए सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, किसी भी मौसम के कोई मायने नहीं। इन्हें हर हाल में काम करना होता है। ट्रैफिक पुलिस वालों को जूझना पड़ता है, मौसम का एहसास दरकिनार करना होता है, सर्दियों से दोस्ती करनी होती है, गर्मी से बगावत करनी होती है, तब जाकर हम और आप समय पर दफ्तर और घर की दूरी तय कर पाते हैं।
6: देखिए मौसम तो हमेशा चेंज होता रहता है, पर हमारे ट्रैफिक वालों के जो पॉइंट्स हैं, जो रेगुलेशन के पॉइंट्स हैं, वो फिक्स रहते हैं, तो हमको उस मौसम के एडवर्सिटीज में भी काम करना होता है। और हम लोग का ये काम है कि जो भी हमको जगह और समय जो दिया गया है ड्यूटी का, उसको हम निर्वाह करें, और मौसम से जितना भी उनकी बचाव हम लोग कर सकते हैं अपनी तरफ से करें। और पर हमको अपना काम करने में तो बहादुरी से, निर्धरता से, और एडवर्स कंडीशंस में भी हमको काम करना पड़ता है।
1: ट्रैफिक और सड़क हादसों को लेकर NCRB के डाटा वाकई चौंकाने वाले हैं, इसीलिए सभी से गुजारिश है कि जब भी आप सड़कों पर चले तो ट्रैफिक के नियमों का पालन जरूर करें। पूरे देश के सड़क हादसे और इनमें मरने वाले लोगों का आंकड़ा बेहद डराने वाला है। दुनिया में हर साल 19 लाख लोगों की जान सड़क हादसों में जाती है, जबकि 2 से 5 करोड़ लोग इन हादसों में घायल हो जाते हैं या बस बाल बाल बच जाते हैं। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में भारत में 4,81,000 हादसे हुए, जिनमें 1,75,491 लोगों की मौत हुई, जबकि 4,43,366 लोग घायल हुए। वहीं भारत में सड़क हादसों में हर महीने 14,408 लोगों की मौत होती है, हर दिन 480 मौत और हर घंटे 20 लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवाते हैं। इतनी ज्यादा संख्या में जान गंवाने के पीछे ओवर स्पीडिंग, नियमों का पालन ना करना, हेलमेट सीट बेल्ट ना लगाना, गाड़ी चलाते वक्त फोन का इस्तेमाल करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना शामिल है। लेकिन ये गलतियां आपकी जिंदगी खत्म कर सकती है, चंद सेकंड की भूल और सब खत्म। आपको समझना सिर्फ इतना होगा कि आपके घर या दफ्तर पहुंचने में चंद पलों की देरी आपके परिवार की खुशियां बरसों के लिए सहेज सकती है। जल्दबाजी नियमों को तोड़ने का सबब आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है।
6: देखिए, दिल्ली कम्यूटर्स के बारे में मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी कम्यूटर्स हैं, ट्रैफिक डिसिप्लिन जरूर रखें, लेन ड्राइविंग करें। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, विदाउट हेलमेट ना करें, ड्रंकन ड्राइविंग ना करें, रैश या नेगलिजेंट ड्राइविंग ना करें, रॉन्ग कैरेज वे पे ना आए, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत खतरनाक जगह है, क्योंकि उनकी जान को भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई चोट लगती है या और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो वो भी एक परिवार के सदस्य हैं, तो उनकी जान को भी अपने सुरक्षित के और जो बाकी कम्यूटर्स हैं उनको भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए उनसे मेरा ये निवेदन है कि अपने ट्रैफिक डिसिप्लिन से में रहे और सेफली ड्राइव करें और जो भी ट्रैफिक के नियमों का पालन करें।
1: तो खास तौर पर गर्मी में अगर कभी आप दिल्ली की सड़कों पर अपनी एसी कार से गुजर रहे हों और उसी गर्मी में पसीना बहाते सड़क पर ये पुलिस वाले आपको दिख जाए, तो कम से कम मुस्कुराते हुए पानी की एक ठंडी बोतल देकर इनका शुक्रिया तो आप अदा कर ही सकते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ आज के इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: Traditional universities weren't made for everyone. WGU breaks with tradition. With programs designed for busy working adults, you can get classroom ready on your schedule. Start your journey today. Learn more at wgu.edu.
1: Today's jazz brings the movement forward. Modern voices, contemporary sound, and players shaping what jazz sounds like now. From Herbie Hancock to Pat Metheny, Esperanza Spalding, and more. Feel the jazzy energy with Deep Roots. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Jazz to start listening now.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है, इसमें एक युवा अपनी छलांग से चांद के अधूरे हिस्से को पूरा करता नजर आ रहा है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे किसी बड़े ब्रांड कैंपेन का हिस्सा बताया जा रहा है, पर यह किसी को अंदाजा नहीं है कि ये किस ब्रांड का कैंपेन है। पर एक बात तो तय है कि जिस किसी ने भी इसे बनाया है वो अपने मकसद में कामयाब है। इन दिनों सोशल मीडिया पर इस तस्वीर की चर्चा हो रही है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits.
10: But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
11: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
12: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
13: Surya Dev ka kaun sa shubh yog achhi vaani deta hai? Surya Dev ka kaun sa shubh yog घर से दूर ले जाकर सफलता देता है? सूर्य देव का कौन सा शुभ योग राजनीति में ऊंचाई पर पहुंचा देता है? कौन से हैं सूर्य के शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
15: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
9: मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम। खराब मौसम होने पर लगा था यात्रा पर अल्पविराम।

0: बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक 7.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई। बर्फबारी के बीच श्री हेमकुंड साहिब में भी आस्था भारी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में लगा भक्तों का तांता। पूजा अर्चना के साथ हर रविवार को होते हैं धार्मिक अनुष्ठान। दान पुण्य के साथ भक्तों के लिए भंडारे का इंतजाम। यूपी की राजधानी लखनऊ में हुई झमाझम बारिश। भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को मिली राहत। आसमानी फुहारों से गिरा पारा। उत्तराखंड के चमोली में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का भव्य आगाज। 28 राज्यों के 933 प्रतिभागी कर रहे शिरकत। भारत चीन सीमा के पास लगा रोमांच का मजमा। गुलाबी सूप के रंग में रंगी लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस। हजारों लोगों ने मनाया पिंक सूप फेस्टिवल। दुनिया भर से पहुंचे सैलानी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद पहुंच रहे हैं रिकॉर्ड श्रद्धालु। अब तक 7,51,000 से अधिक भक्त भगवान बद्री विशाल के कर चुके हैं दर्शन। मई महीने में रोजाना 25 से 30,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ धाम। यात्रा में देखने को मिल रहा है भारी उत्साह। बद्रीनाथ धाम में धूप बारिश और चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। खराब मौसम के बावजूद लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। यात्रा मार्गों पर कई जगह घंटों जाम की बन रही स्थिति, इसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह और आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही। हेमकुंड साहिब में बर्फ हटाकर यात्रा मार्गों को बनाया जा रहा सुगम। SDRF पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधन की टीमें व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटी। उत्तराखंड के चंपावत में SDRF की सतर्कता और एक्शन से उफनती नदी में फंसे 50 से अधिक श्रद्धालुओं को किया गया रेस्क्यू। उटाला बड़ा हादसा। चंपावत के श्री रीठा साहिब गुरुद्वारा में प्रसिद्ध जोड़ मेले में जा रहे थे श्रद्धालु। बारिश के बाद नदी में जलस्तर बढ़ने से फंस गए थे लोग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और चमोली में बारिश। केदारनाथ धाम की ओर जाने वाले यात्रियों को अस्थायी तौर पर आगे बढ़ने से रोका गया। उत्तराखंड के श्रीनगर में श्रद्धालुओं को होल्डिंग क्षेत्रों और सुरक्षित स्थानों पर ठहराने की व्यवस्था। खाने पीने के भी किए जा रहे इंतजाम। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए किए गए ट्रैफिक के खास इंतजाम। रास्ते जाम ना हो इसके लिए रखा जा रहा खास ध्यान। दिल्ली के भक्त ने शिरडी के साईं बाबा को चढ़ाया 15 लाख के हीरो जड़ा ब्रोच। मन्नत पूरी होने पर भक्त ने मोरपंख आकार का सोने का ब्रोच शिरडी साईं बाबा को मंदिर को किया भेंट। दिल्ली के श्रद्धालुओं ने 15 लाख के

दार ब्रॉज साईं बाबा की मूर्ति पर उड़ाए जाने वाले दुपट्टे पर लगाया जाता है। शिरडी में बढ़ रहा है सोने चांदी का चढ़ावा। मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा सोने चांदी और कीमती रत्नों के दान में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। दिल्ली के ब्रॉज दान से पहले लखनऊ के गोपाल गोयल ने साईं बाबा को 1 करोड़ रुपए का स्वर्ण मुकुट अर्पित किया। भक्तों की बाबा पर आस्था अपार। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा का पावन तिथि, पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। अयोध्या में सरयू नदी में पवित्र स्नान के लगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, डुबकी लगाकर पूजा पाठ कर रहे लोग। प्रयागराज में भी संगम पर स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से होता है विशेष पुण्य। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर हरिद्वार और दूसरी जगहों पर भी लोग कर रहे गंगा स्नान, पूजा पाठ और दान के साथ खुशहाली की कामना। इस वर्ष ज्येष्ठ में अधिक मास होने के कारण 2 पूर्णिमाएं धार्मिक दृष्टि से अधिक मास की पूर्णिमा मानी जाती है काफी फलदायी। पुरुषोत्तम मास और ज्येष्ठ एक साथ पड़ने से बढ़ गया है इस बार पूर्णिमा का महत्व। इस बार बना है ब्लू मून का दुर्लभ संयोग। ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत और स्नान दान से आरोग्य, सौभाग्य और सुख समृद्धि का मिलता है वरदान। इस व्रत की मानी जाती है खास महिमा। विवाहित महिलाएं रखती हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत। पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि की करती है कामना। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक शांति और पारिवारिक सुख शांति की मान्यता। ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर व महाकाल की दिव्य भस्म आरती, महादेव के अद्भुत श्रृंगार के हुए दर्शन। फिल्म धुरंधर की शूटिंग चर्चा में आई लेह की मस्जिद गली, अब धुरंधर गली के नाम से मशहूर, बढ़ गई है यहां की रौनक। लेह में धुरंधर गली देखने दूर दूर से पहुंच रहे सैलानी यहां के माहौल का उठा रहे हैं लुत्फ। लेह के धुरंधर गली में टी स्टॉल पर लोग खिंचवा रहे तस्वीरें, यहीं पर हुई थी फिल्म धुरंधर की शूटिंग। अब जैसलमेर दौरे पर पहुंची अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की छोटी बेटी टिफनी ट्रंप, पति माइकल भी हैं साथ। जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में ठहरी है टिफनी ट्रंप, ऐतिहासिक धरोहरों का करेंगी दीदार, कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। बेहद ऊंचाई वाले दुर्गम पहाड़ी इलाकों में अब सामान पहुंचाने में होगी बेहद आसानी, सेना की 10 इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने सफलतापूर्वक चालू किया अनोखा पाथू मोनोरेल सिस्टम। इस मोनोरेल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर बेहद खराब मौसम में हो सकेगी सामानों की ढुलाई, जहां गाड़ियों की आवाजाही होती है मुश्किल। इस मोनोरेल से एक बार में 300 किलोग्राम तक सामान ढुलाई संभव, घोड़े खच्चरों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा कारगर है सिस्टम। इस मोनोरेल से गोले बारूद, राशन, ईंधन और दूसरे सामान पहुंचाने मिलेगी मदद, हादसों के दौरान रेस्क्यू में भी होगी मददगार। सेना की 10 इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने डिजाइन और तैयार किया है यह सिस्टम, दिन रात और हर मौसम में हो सकेगा सामानों की ढुलाई का काम, रिमोट से होगा संचालित। जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने संभाला देश के नए सीडीएस का कार्यभार, रक्षा मंत्री के प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर के रूप में भी करेंगे काम। नए सीडीएस जनरल सुब्रमण्यम को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक लॉन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, सीडीएस बनने वाले देश के तीसरे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी। जनरल सुब्रमण्यम ने नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि, देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों को किया नमन। सीडीएस पद पर नियुक्ति से पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कमेटी मिलिट्री एडवाइजर थे जनरल सुब्रमण्यम, सुरक्षा एजेंसियों के बीच रणनीतिक मूल्यांकन और तालमेल के काम से जुड़े थे। एडमिरल के स्वामीनाथन बनाए गए नए नौसेना अध्यक्ष, नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खिली धूप के बीच मौसम सुहावना, सैर सपाटे का मजा ले रहे सैलानी। श्रीनगर के डल झील में शिकारे पर सैर करने पहुंच रहे सैलानी, खुशगवार मौसम में घूमने का मजा हुआ दोगुना। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पहाड़ों पर बर्फ और बादलों का मनमोहक साया, कुदरत ने किया अनोखा श्रृंगार।
मनाली में बारिश के बाद बेहद खुशनुमा हुआ मौसम, दूर दूर से

0: मैं आप सभी को भी न्योता देता हूँ कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो देव भूमि है और हिमाचल के ही अंदर बसा हमारा ये सुंदर धर्मशाला, जहाँ एक तरफ धुलाधार की हसीन पहाड़ियाँ, जहाँ आज मई और जून के महीने में भी बर्फबारी धुलाधार की पहाड़ियों पर है। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सुंदर हमारा धर्मशाला, जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो विश्व का सबसे सुंदर स्टेडियम है वो धर्मशाला में है, चाहे मैक्लोडगंज जो नगरी है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है, बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा जी यहाँ पर हैं। आप सभी आए और धर्मगुरु दलाई लामा जी का आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य आप सभी को मिलेगा। धर्मशाला के अंदर चाय के बगान है, आप उन्हें निहारने के लिए यहाँ आ सकते हैं। धर्मशाला के अंदर कई देवी स्थान, कई मंदिर, जैसे अगंजर महादेव, इंद्रनाल जी का मंदिर देवी स्थल है, और कई मंदिर हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के शहर के अंदर है। बात करूं रोपवे की, तो धर्मशाला में धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए रोपवे की सुविधा है, आप उसका आनंद लेने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर आ सकते हैं। अगर कोई ट्रैकिंग का शौकीन है तो त्रिउंड जैसा एक ट्रैकिंग का हमारे पास स्पॉट जो है धर्मशाला के अंदर है, आप ट्रैकिंग के लिए भी त्रिउंड जा सकते हैं। साथ में धर्मशाला के लगते बाथू की लड़ी यहाँ घूमने के लिए है। मंदिर की बात करूँ तो रॉकट टेम्पल हमारे यहाँ है। धर्मशाला के साथ ही लगता कांगड़ा है, प्रदेश माता शक्तिपीठ धर्मशाला के अंदर लगते कांगड़ा में है। तो आप इन तमाम चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए धर्मशाला आए हिमाचल वासी, तो धर्मशाला अतिथि देवो भव के भाव के साथ आप सभी के स्वागत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपने आना कैसे है ये सबसे बड़ा प्रश्न है, तो बताऊँ आपको, धर्मशाला के ही समीप गग्गल एयरपोर्ट, जहाँ आप हवाई मार्ग से आ सकते हैं। रेलवे से अगर आपने आना है तो पठानकोट जो सबसे नजदीक हमारे पड़ता है उसके माध्यम से आ सकते हैं। जब दिल्ली से आपने आना है तो वोल्वो बसें जो है धर्मशाला तक आती हैं। इन तमाम साधनों से जो आप धर्मशाला आ सकते हैं। हम सभी धर्मशाला वासी आपके स्वागत के लिए और अतिथियों के अतिथि देवो भव के भाव के साथ यहाँ पर।
1: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बनाइए ब्लॉग, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Summer hits, blends old school jams with fresh favorites, so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack, made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
2: Good news today is really अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
1: मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम, खराब मौसम होने पर यात्रा पर लगा था अल्प विराम। बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक 7.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन, चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई, बर्फबारी के बीच श्री हेमकुंड साहिब में भी आस्था भारी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में लगा भक्तों का तांता। पूजा अर्चना के साथ हर रविवार को होते हैं धार्मिक अनुष्ठान। दान पुण्य के साथ भक्तों के लिए भंडारे का इंतजाम। यूपी की राजधानी लखनऊ में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को मिली राहत, आसमानी फुहारों से गिरा पारा। उत्तराखंड के चमोली में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का भव्य आगाज, 28 राज्यों के 940 प्रतिभागी कर रहे शिरकत, भारत चीन सीमा के पास लगा रोमांच का मजमा। गुलाबी सूप के रंग में रंगी लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस, हजारों लोगों ने मनाया पिंक सूप फेस्टिवल, दुनिया भर से पहुंचे सैलानी।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
4: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत और फैक्ट चेक में आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो को कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल कर दिया जाता है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच के धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। जी हां, तो फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि तीनों वीडियो मध्य प्रदेश के भोपाल के हैं, जहां लव जिहाद के आरोप में एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले शख्स को पीटने के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, ये आगे आपको बताएंगे। तो हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि भारत में सरकारी स्कूल में पढ़ते बच्चों पर पंखा गिरने से हड़कंप मच गया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, ये भी आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
4: सोशल मीडिया पर तीन वीडियो खूब वायरल किए जा रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि हाल ही में भोपाल में एक धर्म विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले शख्स पर हुए हमले से इन तीनों वीडियो का संबंध है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: 10 मई को मध्य प्रदेश के भोपाल में एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले शख्स पर होटल के अंदर हमला किया गया। कुछ लोग होटल में घुस आए और उस पर लव जिहाद का आरोप लगाकर पीटा। हालांकि उस वक्त व्यक्ति के साथ मौजूद महिला ने पुलिस को बताया कि वो लिव इन रिलेशनशिप में थी। हमले का वीडियो वायरल होने के बाद 12 मई को पुराने भोपाल में व्यापक विरोध प्रदर्शन भी हुआ। प्रदर्शनकारी पीर गेट और पुलिस कमिश्नर कार्यालय के पास जमा हुए और हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसी मामले से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये 3 वीडियो खूब वायरल किए जा रहे हैं। वायरल हो रहे पहले वीडियो में एक शख्स को कुछ लोग घेर कर खड़े हैं। वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि ये लोग शख्स के बाल पकड़कर सड़क पर खींच कर ले जा रहे हैं। वहीं दूसरे वीडियो में एक इमारत में भयानक आग लगी हुई दिख रही है। वहीं तीसरे वायरल वीडियो में कुछ लोगों को प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है।
1: दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले शख्स पर होटल के अंदर हमला किया गया। कुछ लोग होटल में घुस आए और उस पर लव जिहाद का आरोप लगाकर उसको खूब पीटा। हालांकि उस व्यक्ति के साथ मौजूद महिला ने पुलिस को बताया कि वो लिव इन रिलेशनशिप में थी। हमले का वीडियो वायरल होने के बाद 12 मई को पुराने भोपाल में व्यापक विरोध प्रदर्शन भी हुआ। अब इसी से इस घटना को जोड़ते हुए तीनों वीडियो को खूब वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना बेहद जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो को बारी बारी से जांच किया। टीम ने तीनों वीडियो को गौर से देखा। पहले वीडियो में जिस शख्स को घेर कर भीड़ खड़ी है, जब हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की तो सामने आया कि 10 मई को भोपाल में जिस शख्स को लव जिहाद के आरोप में पीटा गया था वो ये शख्स नहीं है। दूसरे वीडियो में एक इमारत में भयानक आग दिख रही है, इसका भी हालिया भोपाल कांड से कोई संबंध नहीं मिला। वहीं तीसरा वीडियो ताज उल मस्जिद का है जो पुराने भोपाल में स्थित है। जी हां, इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच के लिए इंटरनेट और भोपाल के मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन इस दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। साथ ही भोपाल में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 45 लोग मारे गए, इसके बारे में भी कोई आधिकारिक रिपोर्ट देखने को नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। और सबसे पहला सवाल ये कि वायरल हो रहे तीनों वीडियो के पीछे की आखिर असली कहानी क्या है, और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच अफवाह फैलाने की साजिश तो नहीं की जा रही। तो आइए देखते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है।
0: जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें भोपाल में सामूहिक हत्याओं या मस्जिदों में आगजनी की कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली। इसके अलावा भोपाल की अतिरिक्त डीसीपी शालिनी दीक्षित ने गुड न्यूज टुडे के फैक्ट चेक को बताया कि पुलिस ने किसी भी प्रदर्शनकारी पर गोली नहीं चलाई और न ही किसी मस्जिद में आग लगाई गई। यहां से इतना तो साफ हो जाता है कि वायरल हो रहे वीडियो के जरिए गलत जानकारी फैलाई जा रही है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने आग वाले दूसरे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 13 मई की फेसबुक पोस्ट मिली। पोस्ट में बताया गया था कि भोपाल में पीपुल्स हॉस्पिटल के सामने एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। 13 मई को छपी एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक 13 मई को भोपाल के करोंद इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम के जनरेटर से आग निकली और देखते ही देखते आसपास के एयर कंडीशनर और फर्नीचर में फैल गई। इस घटना में किसी की जान नहीं गई। इसके बाद हमने तीसरे यानी प्रदर्शन के वीडियो के बारे में पता लगाया। सर्च के दौरान हमें 13 मई को एक रिपोर्ट में एक वीडियो मिला जिसमें कहा गया था कि आरिफ खान पर हमले के बाद भोपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों का है। रिपोर्ट के अनुसार विरोध प्रदर्शन काजियात परिसर में शुरू हुआ था। सर्च के दौरान हमें 13 मई को एक इंस्टाग्राम यूजर का पोस्ट किया गया दूसरा विरोध प्रदर्शन वाला वीडियो मिला। इसका कैप्शन था ताजुल मस्जिद। बता दें 12 मई को पुराने भोपाल में इसी मस्जिद के पास प्रदर्शनकारी जमा हुए थे। हालांकि हम वीडियो के शूट होने की तारीख का पता नहीं लगा सके। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में बच्चे कक्षा में पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखता है कि अचानक छत पर लगा पंखा टूटकर बच्चों के ऊपर गिर जाता है। इस वीडियो को शेयर करके भारत का इसे बताया जा रहा है। वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
0: सरकारी स्कूल में पढ़ते बच्चों का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हैं, तभी उनके ऊपर एक पंखा टूटकर गिर जाता है। इस वीडियो को भारत के स्कूल में हुई घटना का बताते हुए शेयर किया जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, सिर्फ पंखा गिरा है वरना तो हवाई जहाज गिर जाता। देश हित में क्या गरीब के 3 बच्चे एक पंखे से चोट भी नहीं खा सकते। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार वायरल किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हैं, तभी उनके ऊपर एक पंखा टूटकर गिर जाता है। इस वीडियो को भारत के स्कूल में हुई घटना का बताते हुए शेयर किया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना बेहद जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे की जांच की और टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान ग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये काफी हद तक नेपाली जैसा लगा। आप भी सुनिए इन आवाजों को। तो सुना आपने। इसके बाद टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच के लिए इंटरनेट और मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन यहां पर हाल फिलहाल में ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट हमें नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा और सबसे पहला सवाल जो निकल कर आया वो ये कि अगर दावा सही है तो वायरल वीडियो कब का है और कहां का है, और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच भ्रम फैलाने की साजिश तो नहीं की जा रही, लोगों के बीच अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। तो आइए देखते हैं इसके पीछे का सच और झूठ क्या है।
0: फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल वीडियो से जुड़ी एक रिपोर्ट एक फेसबुक पेज पर मिली। इस पोस्ट को 21 मई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूद जानकारी के अनुसार ये वीडियो नेपाल के एक स्कूल में हुई घटना का है। इस जानकारी के आधार पर हमने पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो से जुड़ी न्यूज रिपोर्ट्स नेपाली वेबसाइट पर प्रकाशित मिली। इन रिपोर्ट्स को 7 मई 2026 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार वीडियो नेपाल के बीरगंज के एक स्कूल का है। दरअसल सिद्धार्थ स्कूल में जब बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे उसी दौरान उनके ऊपर पंखा टूटकर गिर गया था और 7 बच्चे घायल हो गए थे। घायल बच्चों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया था। साफ है वायरल दावा गलत है। असल में वायरल वीडियो का भारत से कोई संबंध नहीं है। ये वीडियो नेपाल में हुई एक घटना का है जिसे अब गलत दावे के साथ भारत का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि सासाराम से पटना जा रही ट्रेन में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक ट्रेन में आग लगी हुई है और एक महिला गोद में बच्चे को लिए हुए है। वे खुद को और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि सासाराम रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए।
0: आग का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन में आग लगी हुई है और महिला गोद में बच्चे को लिए हुए है। वो खुद को और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये सासाराम रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, सासाराम से चलने वाली ट्रेन में आग लगी है, बहुत ही भयानक, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। वायरल वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर यूजर्स इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसे लगातार वायरल किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि ट्रेन में आग लगी हुई है और महिला गोद में बच्चे को लिए हुए है। ये खुद को और अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर ये दावा भी किया जा रहा है कि सासाराम रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का ये वीडियो है, जहां एक ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की और जांच पड़ताल के दौरान दावे की सच्चाई जानने के लिए टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें ऐसी कई चीजें देखने को मिली जिससे हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। वीडियो में एक शख्स ने कैमरा पकड़ा हुआ है और उसके पीछे एक शख्स ने माइक पकड़ा हुआ है। ऐसे में हमें ये किसी शूटिंग के दौरान का वीडियो होने का इस पर संदेह हुआ। 18 मई 2026 को बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन के कोच में आग लग गई थी। जब आग लगी थी उस दौरान ट्रेन खाली थी और कोई यात्री उसमें मौजूद नहीं था, जबकि वायरल वीडियो में यात्री नजर आ रहे हैं। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो के सवालों को कसौटी पर कसा और इस वीडियो को देखते हुए ये सवाल निकला कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने अब तक क्यों नहीं आई, और दूसरा सवाल यह कि कहीं शूटिंग के वीडियो को नया एंगल देकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। तो आइए देखते हैं हमारी टीम ने क्या सच खंगाल कर निकाला है।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। वीडियो को 9 अप्रैल 2026 को शेयर किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक वीडियो गोधरा फिल्म की शूटिंग के बिहाइंड द सीन्स का है। प्राप्त जानकारी के आधार पर हमने YouTube पर फिल्म के ट्रेलर को सर्च किया। हमें ट्रेलर एक आधिकारिक YouTube चैनल पर मिला। ट्रेलर 25 जून 2024 को शेयर किया गया था। वीडियो में 19 सेकंड पर वायरल वीडियो वाली महिला को देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें ये जानकारी मिली कि 18 मई 2026 को बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन के कोच में आग लग गई थी। हादसे का पता चलते ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई थी। जब आग लगी उस दौरान ट्रेन खाली थी और कोई यात्री उसमें मौजूद नहीं था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये स्पष्ट हो गया कि सासाराम ट्रेन हादसे के नाम पर वायरल वीडियो किसी असली घटना का नहीं है। असल में वायरल वीडियो साल 2024 में रिलीज हुई गोधरा फिल्म का है। उस फिल्म के एक सीन को गलत दावे के साथ सासाराम स्टेशन पर हुए ट्रेन हादसे का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ चल रहा है। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
5: Gone! Home run!
4: NHL.
5: He scores!
4: College basketball.
6: He shoots it immediately.
7: He makes it in!
4: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
8: One lap to go.
4: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
1: और वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का, जब हम पेश करने वाले हैं कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
9: दीदी, हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं।
5: सोशल मीडिया पर बच्चों से जुड़े वीडियो लोगों के बीच आए दिन वायरल होते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों लोगों के बीच सामने आया है जिसने हर किसी का ध्यान खींचा है। इसमें एक छोटी सी बच्ची बेहद मासूम अंदाज में पीएम मोदी से अपने मम्मी पापा की शिकायत करती नजर आ रही है। उसकी प्यारी आवाज, भोले चेहरे के एक्सप्रेशन और बात करने का तरीका लोगों को इतना पसंद आया कि ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। शिकायत के साथ बच्चे के चेहरे पर है मुस्कान। उसकी ये मासूम शिकायत लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आई। वीडियो में बच्ची जिस तरह से हाथ जोड़कर और प्यारे एक्सप्रेशन के साथ अपनी बात कहती है वो हर किसी को बेहद क्यूट लगा। एक तरफ जहां लोग जिम जाने के लिए समय और पैसे दोनों खर्च करते हैं, वहीं एक शख्स ने फिट रहने के लिए अपने ही घर की छत पर बहुत ही आसान और सस्ता सा समाधान ढूंढ लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी छत पर टहल रहा है। उसने अपने छत पर कुछ ऐसे वॉक किया कि उस पर आठ के आकार का एक निशान बन गया जो कि पूरे छत से अलग ही हाईलाइट हो रहा है। इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि शख्स ने छत पर ही वॉकिंग ट्रैक बना लिया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि व्यक्ति लगातार इसी आठ के आकार पर चलते हुए वॉक कर रहा है। वीडियो को ऊपर से शूट किया गया जिससे पूरा पैटर्न साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शख्स के इस वीडियो को देख ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने घर की छत को ही छोटा सा पार्क बना दिया हो। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये प्रैंक वीडियो लोगों के बीच तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स अपने ऑफिस के साथियों के साथ ऐसा मजाक करता है जिसे देखकर इंटरनेट यूजर्स भी खूब मनोरंजन कर रहे हैं। क्लिप की शुरुआत में एक व्यक्ति बेहद नॉर्मल तरीके से अपने साथ काम करने वाले लोगों के पास जाता है और उन्हें प्रसाद देने के लिए कहता है। ऑफिस का माहौल भी बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, इसीलिए किसी को उस पर शक नहीं होता। लोग भी बिना ज्यादा सोचे समझे प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब लोगों को पता चलता है कि वो कोई मिठाई या धार्मिक प्रसाद नहीं बल्कि खट्टा नींबू का रस है। जैसे ही लोग उसका स्वाद चखते हैं उनके चेहरे अचानक बदल जाते हैं। किसी की आंखें सिकुड़ जाती हैं तो कोई तुरंत मुंह बना लेता है, तो कोई अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता नजर आता है। कुछ लोग तो ऐसे रिएक्शन देते हैं जैसे उन्हें भरोसा ही न हो कि उनके साथ ऐसा मजाक हुआ है। वीडियो की सबसे मजेदार बात यह है कि हर व्यक्ति का रिएक्शन अलग अलग है। कोई धीरे धीरे समझ पाता है कि स्वाद इतना अजीब क्यों है, जबकि कुछ लोग तुरंत झटका महसूस करते हैं। एक दो कर्मचारी तो ऐसे भी दिखते हैं जो खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके चेहरे साफ बता देते हैं कि नींबू की खटास ने उन्हें पूरी तरह चौंका दिया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा है। ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह से सब्जी मंडी में बदल गई, जहां महिलाएं बैठकर ताजी सब्जियां बेच रही थी और यात्री उनसे खरीदारी करते नजर आ रहे थे। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि ट्रेन तेज रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही है। इसी दौरान बोगी के फर्श पर कुछ महिलाएं अलग अलग तरह की सब्जियां सजा कर बैठी हुई हैं। किसी के सामने आलू और प्याज रखे हैं, तो कहीं टमाटर, गोभी, बैंगन और हरी सब्जियों का ढेर नजर आ रहा है। महिलाएं बेहद सहज तरीके से ग्राहकों से बात करती दिख रही हैं। यात्री भी बिना किसी झिझक के उनसे सब्जियां खरीद रहे हैं। कोई दाम पूछ रहा है तो कोई थैली में सब्जियां भरवा रहा है। कुछ महिलाएं पैसे गिनती नजर आती हैं, तो कुछ ग्राहकों को सामान पकड़ा रही हैं। पूरा माहौल बिल्कुल किसी छोटे बाजार जैसा लग रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि ये मंडी सड़क पर नहीं बल्कि ट्रेन के अंदर लगी हुई थी। घर की दीवारों पर लगी हाथ से बनाई गई पेंटिंग्स अक्सर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। जब कोई मेहमान उन्हें देखकर तारीफ करता है तो कलाकार को अलग ही खुशी मिलती है, लेकिन कई बार कुछ तारीफें इसलिए भी खास बन जाती हैं क्योंकि वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लोगों की तरफ से आती हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला आर्टिस्ट की पेंटिंग्स की तारीफ करने वाले लोग कोई आर्ट एक्सपर्ट नहीं बल्कि एसी ठीक करने आए टेक्नीशियन थे। यही बात इस वीडियो को बेहद दिलचस्प और भावुक बना देती है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टेक्नीशियन कमरे में लगी हर पेंटिंग को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। वो किसी जल्दी में नहीं दिखते बल्कि हर तस्वीर के सामने रुककर उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। उनके चेहरे के हाव भाव ये बता रहे थे कि वो सचमुच उन कलाकृतियों से प्रभावित थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी आर्ट गैलरी में खड़े होकर लोग कलाकार की मेहनत को महसूस कर रहे हों। सबसे खास बात ये रही कि उन लोगों की प्रतिक्रियाएं बनावटी नहीं लग रही थी। सोशल मीडिया पर फौजी का ये शानदार डांस इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जवान पूरे जोश और मस्ती के साथ डांस करता नजर आ रहा है, जिसे देखकर आसपास बैठे लोग भी तालियां बजाने लगते हैं। फौजी का देसी अंदाज और चेहरे की खुशी इंटरनेट यूजर्स को खूब पसंद आ रही है।

गांव के एक खास समारोह में उस समय माहौल पूरी तरह बदल गया जब एक लड़की ने एक पॉपुलर गाने पर शानदार डांस किया। रंग बिरंगा लहंगा पहनकर जब वो मंच पर उतरी तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की नजर उसी पर टिक गई। उसकी जबरदस्त एनर्जी, आत्मविश्वास और बेहतरीन डांस स्टेप्स ने लोगों को इतना इम्प्रेस किया कि पूरा कार्यक्रम तालियों और उत्साह से गूंज उठा। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इंटरनेट यूजर्स इसे खूब पसंद

0: वायरल हो रहे इस वीडियो में एक हाथी और एक छोटे से डॉगी की जबरदस्त बॉन्डिंग और मस्ती साफ नजर आती है। वीडियो में दिखता है कि एक बड़ा हाथी तालाब के किनारे खड़ा है और अपनी लंबी सूंड से पानी उछालकर उसे नन्हे डॉगी पर गिरा रहा था। हाथी का अंदाज ऐसा लगता है जैसे वो डॉगी को बारिश या झरने जैसा मजा दिला रहा हो। हाथी की इस हरकत से डॉगी भी काफी खुश दिखता है। पानी की बौछारों के बीच वो उछल कूद करता रहता है जैसे उसे कोई नेचुरल शावर मिल गया हो। वीडियो में उसकी पूंछ लगातार हिलती रहती है जिससे साफ पता चलता है कि वो इस मस्ती को दिल से एंजॉय कर रहा है। साथ ही वो कई बार हाथी को फिर से पानी डालने का इशारा भी करता नजर आता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: सूर्य देव का कौन सा शुभ योग अच्छी वाणी देता है? सूर्य देव का कौन सा शुभ योग घर से दूर ले जाकर सफलता देता है? सूर्य देव का कौन सा शुभ योग राजनीति में ऊंचाई पर पहुंचा देता है? कौन से हैं सूर्य के शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
5: Jack, come home. It's supper time.
4: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
6: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
4: Jack FM, playing what we want.
7: Good news today.
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम, मौसम खराब होने पर यात्रा पर लगा था अल्प विराम। बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक 7.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन, चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई, बर्फबारी के बीच श्री हेमकुंड साहिब में भी आस्था भारी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में लगा भक्तों का तांता, पूजा अर्चना के साथ हर रविवार को होते हैं धार्मिक अनुष्ठान, दान पुण्य के साथ भक्तों के लिए भंडारे का इंतजाम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह, जीएनटी स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। आज आपको लेकर चलेंगे केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर। उत्तराखंड के चार धामों में सर्वोपरि बाबा केदारनाथ का धाम एक ऐसी तपभूमि है जहां इतिहास, पुराण और विज्ञान का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। पांडवों के पश्चाताप से लेकर आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि तक और 400 साल तक बर्फ में दबे रहने से लेकर प्राचीन इंटरलॉकिंग तकनीक के चमत्कारों तक केदारनाथ अपने भीतर रहस्यों का समंदर समेटे हुए है। केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं है बल्कि आस्था, तप, विज्ञान, इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम है।

0: उत्तराखंड के चार धामों में से एक केदारनाथ धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सनातन संस्कृति, अद्भुत वास्तुकला और अटूट आस्था का जीवन चमत्कार है। हिमालय की गोद में बसा यह पवित्र धाम अपने भीतर अनगिनत रहस्य, चमत्कारी कथाएं और दिव्य अनुभूतियां समेटे हुए है।
1: सकते हैं यहाँ की अनुभूति ही अलग है, यहाँ की दिव्यता ही अलग है। अंदर देखिए, आप जरा साइड होंगे, देखिए यहाँ पे ये मुख्य द्वार है मंदिर का, ये मुख्य कपाट है और अंदर जाने की आप देखिए लोगों में लालसा कितनी है। हर कोई चाहता है कि अंदर जल्द से जल्द वो जाए और बाबा के वो दर्शन कर पाए।
0: रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित बाबा केदारनाथ का धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा है। समुद्र तल से करीब 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर अपने निर्माण, इतिहास और अस्तित्व से जुड़ी अद्भुत कहानियों के कारण सदियों से श्रद्धा और आश्चर्य का केंद्र बना हुआ है।
2: अभी हमें केदारेश्वर मंदिर जो देख रहे हैं, पहले बहुत ज्योतिर्लिंग है, पुराने हैं, कालगत में थोड़ा जीर्ण होने के बाद आदि शंकर भगवत पाद जी 2500 वर्ष की पहले संपूर्ण भारत देश में संचार करते हुए चार दिशाओं में चार मठ स्थापित करते हुए अनेक सारे मंदिर जीर्णोद्धार किया, उसमें जगन्नाथ मंदिर जीर्णोद्धार किया और द्वारकाधीश मंदिर जीर्णोद्धार किया, बद्रीनाथ मंदिर जीर्णोद्धार करके नारद कुंड से भगवान को प्रतिष्ठित किया। ऐसे ही यहाँ भी अभी वर्तमान में जो देख रहे हैं आदिशंकर भगवतपाद जी की द्वारा जीर्णोद्धार किया गया है, BKTC वेबसाइट में भी उल्लेख किया, सब लोग जानते हैं। दूसरा बात, यहाँ से कैलाश के लिए क्या मार्ग है, आदिशंकर भगवतपाद जी चारों मठ स्थापित करने के बाद यहाँ आकर केदारेश्वर से प्रार्थना करके अभी जो हम देख रहे हैं ना शंकराचार्य के निर्वाण स्थल, यही से कैलाश सशरीर जाकर कैलाश से चंद्रमौलेश्वर लिंग लेके आकर अपने शिष्यों को देकर फिर कैलाश चले गया। ये जो अभी अभी केवल आप पुराण की बात कर रहे हैं ना, ये लाखों वर्षों का नहीं है, 2533 वर्ष हुआ आदिशंकर भगवतपाद जी यहाँ से कैलाश गया। उसका मतलब समझ रहे हैं ना, अभी भी सूक्ष्म रूप में हिमालय से देवी देवता लोग यहाँ आता है, भगवान को पूजा पाठन करेंगे, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है।
0: भूवैज्ञानिकों के मुताबिक केदारनाथ मंदिर करीब 400 सालों तक बर्फ और ग्लेशियर के नीचे दबा रहा, लेकिन इसके बावजूद इसकी संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। माना जाता है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच आए लिटिल आइस एज यानी छोटे हिमयुग के दौरान पूरा इलाका बर्फ से ढक गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि मंदिर की दीवारों पर आज भी ग्लेशियर की रगड़ और बर्फीले पत्थरों के टकराने के निशान मौजूद है, जो इस बात का प्रमाण है कि इस मंदिर ने प्रकृति के भीषण प्रकोप को सदियों तक सहन किया है। कत्यूरी शैली में निर्मित ये मंदिर प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। मंदिर के निर्माण में विशाल भूरे पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिन्हें जोड़ने के लिए न सीमेंट का इस्तेमाल हुआ, न चूने का और न ही गारे का। पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीक से इस प्रकार एक दूसरे

0: की बहुत ज्यादा मान्यता है। 11,500 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है।
1: पुराणों के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि कठोर तपस्या किया करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ सदैव वास करने का वरदान दिया। तभी से इस धाम को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है।
2: अद्भुत, फर्स्ट टाइम आए हम यहाँ पे, लेकिन ऐसा पहले जब निकले हम गौरीकुंड से तो ऐसा लग रहा था कहाँ जा रहे हम, बहुत थकान महसूस ये वो, लेकिन यहाँ पे आने के बाद थकान ये वो सब मतलब ऐसा न्यूट्रल हो गया आदमी, और फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि एकदम स्वर्ग में आ गए हम। जय श्री केदार।
1: केदारनाथ धाम के क्षेत्रपाल बाबा भैरव हैं, जिन्हें काल भैरव भी कहा जाता है। इन्हें पूरी केदार घाटी का रक्षक माना जाता है। मान्यता है कि जब शीतकाल में 6 महीनों के लिए केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, तब बाबा भैरवनाथ ही संपूर्ण घाटी और मंदिर की रक्षा करते हैं। भैरव मंदिर मुख्य केदारनाथ मंदिर के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। कहा जाता है कि केदारनाथ की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक श्रद्धालु बाबा भैरवनाथ के दर्शन न कर लें। मंदिर के कपाट खुलने से पहले और बंद होने के बाद सबसे पहले बाबा भैरवनाथ की ही पूजा की जाती है।
3: ये 11वां ज्योतिर्लिंग है अपने केदार बाबा का, तो इसलिए ये 11वां ज्योतिर्लिंग है, इसलिए इसका महत्व है। यहाँ आने से हर सभी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बाबा का साक्षात चमत्कार है, और लोगों ने देखा भी है, 2013 में भी देखा, साक्षात चमत्कार है बाबा का जी। ओम भूर भूर सव तसवितु वरेणम भार्गो देवस्य धीमहि धियो योम नम पचोदया। त्रिगाम्बम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमी वंदना मृत्यु मोक्षर ममतम।
1: केदारनाथ वह तपोभूमि है जहाँ पांडवों ने पश्चाताप किया, आदि गुरु शंकराचार्य ने समाधि ली, और न जाने कितने ऋषि मुनियों और साधु संतों ने वर्षों तक कठिन तपस्या की। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु कहते हैं कि केदारनाथ की धरती पर कदम रखते ही मन अपने आप शांत हो जाता है।
0: यहाँ पर मंदिर में दर्शन कर पाएंगे, बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन यहाँ आप जैसे ही पहुँचते हैं एक ऐसी अनुभूति होती है, आपको लगता है कि ऐसे लोक में आप आ गए हैं जहां पर परम ब्रह्म जो है उनका एहसास होता है। खुद पुराणों में इस बात को कहा गया है, आपको बता दें खुद पुराणों में इस बात का जिक्र है, स्कंद पुराण में इस बात का जिक्र है कि खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती को ये कथा सुनाई थी जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि ये यानी कि ये जो धाम है, ये जो स्थली है, वो उतना पुराना है जितना कि खुद मैं हूं। यानी शिव खुद अपने बारे में कह रहे हैं कि ये प्राचीन है, इसीलिए कोई नहीं जानता कि आखिर ये जो मंदिर है, केदारनाथ मंदिर है, वो कब बना था।
1: भक्तों का अनुभव है कि यहाँ की हवा, मिट्टी और वातावरण में एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा और चुंबकीय आकर्षण महसूस होता है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही मानो सारी थकान, चिंता और मानसिक तनाव समाप्त हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिमालय की गोद में स्वयं भगवान शिव का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हो रहा हो। केदारनाथ धाम से श्वेता झा, गुड न्यूज टुडे।
4: हिमालय की दिव्य वादियों में जहां बर्फ से ढकी चोटियां आकाश को छूती हैं, जहां अलकनंदा की कल कल ध्वनि वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती हैं, वहीं विराजमान है भगवान बद्री विशाल का पावन धाम बद्रीनाथ। एक ऐसा धाम जिसे सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा जाता है, जहां भगवान विष्णु 6 महीने योग निद्रा में रहते हैं और 6 महीने जागृत अवस्था में भक्तों को दर्शन देते हैं।

0: छह महीने जागते हैं। चमोली जिले में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नाम के दो पर्वत श्रेणियों के बीच भगवान बद्री विशाल का धाम है। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है। भगवान की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी हुई चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यहाँ नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है जो ज्ञान ज्योति का प्रतीक है।
1: भगवान नारायण का क्षेत्र आपको दिखाऊं, सामने पहाड़ दिख रहा है ऊपर, इसे शेषनाग बोलते हैं। यूं कवर्ट किया मंदिर को, ये कभी नीचे ग्लेशियर नहीं आने देता है। आज तक हमने सुना नहीं कि ग्लेशियर ने नीचे नुकसान किया हो। वहाँ बिल्कुल शेषनाग की तरह छाया की है और नीचे भगवान का श्री मंदिर है और मंदिर के पास ही पांच शिलाएं हैं। सामने बराह शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, गरुड़ शिला और नरसिंह शिला। एतत् पंचशिला मध्येषु द्वौ बद्रिकाश्रम पहचान है। निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम अलकनंदा श्री हरि कह के निकल रही है, बह रही है। यहाँ की विशेषता ही विशेषता है। यहाँ के रज रज में जाकर कण कण में भगवान समाये हुए हैं।
0: बद्रीनाथ से नजर आने वाला बर्फ से ढका ऊंचा शिखर नीलकंठ है, जिसे गढ़वाल क्वीन यानी गढ़वाल की रानी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक और यहाँ की लोक कथाओं के मुताबिक नीलकंठ पर्वत के पास भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण किया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु जी अपने ध्यान योग और विश्राम के लिए सही जगह खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा नदी के पास ये स्थान बहुत पसंद आ गया। उस समय ये स्थान भगवान शंकर और पार्वती का निवास स्थान था। ऐसे में भगवान विष्णु जी ने एक उपाय निकाला। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए बाहर निकले। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने द्वार पर एक नन्हे शिशु को रोते हुए देखा। ऐसे में माता पार्वती की ममता जाग उठी। माता पार्वती बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले आई, उसे चुप कराया और खाना खिलाया। फिर बच्चे को घर में सुलाकर शिव के साथ पास के एक गर्म झरने में स्नान करने चली गयी। जब दोनों वापस लौटे तो देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। ऐसे में भगवान शिव ने कहा, अच्छा होगा कि हम कोई नया ठिकाना ढूंढ ले, क्योंकि अब दरवाजा नहीं खुलने वाला और बलपूर्वक दरवाजे को नहीं खोलूंगा। कहते हैं कि शिव और पार्वती घर छोड़कर केदारनाथ चले गए और बालक जो भगवान विष्णु थे वहीं जमे रहे। कहा जाता है इस तरह भगवान विष्णु ने जबरन बद्रीनाथ को अपना विश्राम स्थान बना लिया। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ध्यान योग में लीन थे तो बहुत ज्यादा हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु और उनका घर बर्फ से ढकने लगा। ये देख माता लक्ष्मी परेशान हो उठी। ऐसे में माँ लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु के पास खड़े होकर बेर के वृक्ष का रूप ले लिया और हिमपात को अपने ऊपर सहने लगी। इस तरह माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने के लिए कठोर तपस्या में जुट गयी। कई सालों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूरा किया तो देखा कि माता लक्ष्मी हिम से ढकी पड़ी है। माता लक्ष्मी के तप को देखकर उन्होंने कहा कि तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, इसलिए आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, इसलिए आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा।
2: लक्ष्मी पते नमः। यहाँ पर माता लक्ष्मी का नाम है, जाहिर सी बात है विष्णु जी इस जगह से जुड़ी जो कहानी है वो ये कि लंबे समय तक भगवान विष्णु यहाँ तप कर रहे थे और ठंड इतनी पड़ी, बर्फबारी इतनी हुई कि वो पूरी तरह से बर्फ से ढक गए, जिसके बाद माता लक्ष्मी ने उन्हें देखा, उनसे रहा नहीं गया, बेर के पेड़ के रूप में वो आई और उसके बाद सारा बर्फ अपने ऊपर, उसके बाद जितना भी बर्फ पड़ा वो माता लक्ष्मी के ऊपर पड़ा। इसीलिए बद्री, जो बेर का दूसरा नाम भी है, बद्री के नाथ के रूप में इस पूरे स्थान का नाम बद्री नाथ के रूप में जाना गया। साथ ही साथ आप दूसरी तरफ मंदिर के दूसरे हिस्से में देखेंगे, लिखा है ओम वैकुंठाय नमः, यानी कि वैकुंठ का धाम यही है, यही वो रास्ता है, यही वो जगह है जो सीधे आपको वैकुंठ तक लेकर के जाता है। तमाम प्राणी, जितने भी मनुष्य में इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, सबकी यही कामना होती है, सबकी यही इच्छा होती है कि वैकुंठ धाम वो जाए, मोक्ष की उनको प्राप्ति हो, जितने भी दुख दर्द कष्ट बाधाएं हैं वो दूर हो।
0: बद्रीनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो ना आए औदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे दोबारा उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। शास्त्रों के मुताबिक मनुष्य को जीवन में कम से कम दो बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। बद्रीनाथ धाम से श्वेता झा, गुड न्यूज टुडे।
3: देवभूमि उत्तराखंड इन दिनों शिव और विष्णु भक्ति के रंग में पूरी तरह रंगी हुई है। एक और हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बाबा केदार के जय घोष से गूंज रही है केदार घाटी, तो दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम में जय बद्री विशाल के जयकारे लग रहे हैं। भगवान के इन दोनों धामों में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा है। आइए देखते हैं।

केदारनाथ को भगवान शिव के आराम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का आठवां वैकुंठ कहा गया है। यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने निद्रा में रहते हैं और

0: हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच हर हर महादेव के जय घोष से गूंज रही है पूरी केदार घाटी। बाबा केदार के दरबार में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि हर रास्ता श्रद्धालुओं से भरा नजर आ रहा है। कड़ी चढ़ाई, बदलता मौसम, लंबा सफर और तमाम चुनौतियां, लेकिन महादेव के भक्तों का उत्साह हर मुश्किल पर भारी पड़ रहा है। इस साल केदारनाथ यात्रा ने श्रद्धालुओं की संख्या के मामले में नए रिकॉर्ड बना दिए हैं।
1: 22 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से अब तक करीब 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है।
0: श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए प्रशासन यात्रा को व्यवस्थित रखने में जुटा हुआ है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक पूरे ट्रैक पर पुलिस, SDRF, मेडिकल टीम और आपदा राहत बल तैनात किए गए हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड में यात्रियों के लिए विशेष निगरानी और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लागू किया गया है। श्रद्धालुओं को बाबा केदार के सुगम दर्शन हो, इसका इंतजाम किया गया है।
2: देखिए, पहले जो हम देखते थे कि 1,000-2,000 लोग वहां पर यात्रा में जाते थे, आज हजारों की संख्या में वहां पर लोग जा रहे हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से उन सभी तीर्थ यात्रियों से मेरी प्रार्थना है, विनती है कि वे लोग लाइन में लग करके ही यात्रा करें। जब आप इतने दूर किलोमीटर, हजारों हजार किलोमीटर दूर से आप आ रहे हैं, और इस बार एक नई पहल भी की है कि आप स्पर्श करके, वहां पर जिस प्रकार पहले होता था, स्पर्श करके आप सबके दर्शन हो।
0: यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, टोकन सिस्टम और दैनिक श्रद्धालु सीमा जैसे व्यवस्थाएं भी लागू की गई हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सेवाओं और मौसम निगरानी पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
3: श्री केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो पिछले वर्ष की तुलना में जल्दी खुले थे और 22 अप्रैल को खुले थे, तो इस कारण से इस बार की यात्रा अवधि भी लंबी है और गर्मी की छुट्टियाँ हो चुकी हैं और देश से विदेश से लोग भारी संख्या में आ रहे हैं। और
0: भारी भीड़ के चलते कई जगह लंबी कतार और जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। सोनप्रयाग, गौरीकुंड और ट्रैक मार्ग पर श्रद्धालुओं को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन बाबा के दर्शन की आस में भक्त पूरे धैर्य और उत्साह के साथ अपनी यात्रा जारी रखे हुए है।
4: पहाड़ों में इन दिनों वाहनों का अत्यधिक दबाव है, खासकर चार धाम यात्रा चरम पर चलने से बद्रीनाथ एवं केदारनाथ हाईवे पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। इस समय हम रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये बद्रीनाथ हाईवे की स्थिति है। बद्रीनाथ हाईवे पर इन दिनों सुबह से लेकर शाम तक जाम ही जाम लग रहा है। एक और जहां धूप है, वही जो यात्री हैं उन्हें धूप में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप कहां से आ रहे हैं?
5: महाराष्ट्र,
6: नागपुर से।
4: अभी कहां से दर्शन करके आए?
5: हम बद्रीनाथ से।
4: जाम कहां कहां लग रहा है?
6: सब जगह जाम, हर जगह जाम है। केदारनाथ में 4 घंटे तक अटके हुए थे एक ही जगह पे।
4: तो आप हाईवे पे हैं, बद्रीनाथ हाईवे, कब से जाम में फंसे हुए?
6: यहाँ पे 3-4 घंटे हो चुके हमको।
0: श्रद्धालुओं का कहना है कि केदारनाथ पहुंचते ही सारी थकान और परेशानियां दूर हो जाती हैं। मंदिर परिसर में गूंजता हर हर महादेव का जयघोष, बर्फ से ढकी चोटियां और शिव शक्ति में डूबा वातावरण हर किसी को एक अलग अलग आध्यात्मिक अनुभूति कराता है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो भगवान बद्री विशाल का ये धाम श्रद्धालुओं से गुलजार है। हर साल की तरह इस साल भी बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। कपाट खुलने के बाद से अब तक लाखों श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। हर दिन यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है।
7: अंतर्गत जो आती है, जहाँ पे बैठ के भगवान ने तप किया, माता लक्ष्मी ने बेर का वृक्ष बनके उनके ऊपर छाया की। संस्कृत में बेर को ही बद्री कहते हैं, इसलिए धाम का नाम बद्रीनारायण पड़ा। और यात्री यहाँ पर खूब उत्साह से तप्त कुंड में स्नान और भगवान के सुलभ और सहज दर्शन कर रहे हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम लोग उनके सुख और स्मृति की मंगल कामना भगवान बद्री विशाल बाबा केदार जी से करते हैं। जय बद्री।
0: इस साल 23 अप्रैल को सुबह 6:15 पर पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए धाम के कपाट खोले गए थे। तब से लेकर अब तक यहां तीर्थ यात्रियों का लगातार तांता लगा हुआ है। इस साल अब तक करीब 7,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद ले चुके हैं। पूरा धाम जय बद्री विशाल के जय घोष से गूंज रहा है। भक्ति के इस पावन धारा में देश दुनिया से आए श्रद्धालु डूबे हुए हैं। धाम पहुंचते ही भक्तों की सारी थकान खत्म हो जाती है। यहां आकर ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान अपने भक्तों को बुलाकर आशीर्वाद दे रहे हों। यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। मेडिकल कैंप, हेल्थ चेकअप टेस्ट, एम्बुलेंस सेवा और कंट्रोल रूम लगातार एक्टिव है। यात्रियों को ठहरने, खाने और पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। मौसम और ट्रैफिक को लेकर लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उससे भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जिस पर बद्री विशाल की कृपा हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है और जिसे बद्रीनाथ धाम के दर्शन हो जाए उसका हर कष्ट दूर हो जाता है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: चार धाम यात्रा पर हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता। नमस्कार।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
12: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
13: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
12: Smartless.
14: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
12: Marketplace.
15: Big three on the program today, or, you know, the big three of
12: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
16: की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
17: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
19: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
19: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
21: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज टुडे।

0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, come home. It's supper time.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
0: Jack FM, playing what we want.
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
4: It's your boy,
3: just
4: Jay-Z.
3: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: Sage University, transforming your passion into profession.
9: मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम। मौसम खराब होने पर यात्रा पर लगा था अल्प विराम।

बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक 7.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई। बर्फबारी के बीच श्री हेमकुंड साहिब में भी आस्था भरी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में लगा भक्तों का तांता। पूजा अर्चना के साथ हर रविवार को होते हैं धार्मिक अनुष्ठान। दान पुण्य के साथ भक्तों के लिए भंडारे का इंतजाम।

उत्तराखंड के चमोली में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का भव्य आगाज। 28 राज्यों के 923 प्रतिभागी कर रहे शिरकत। भारत चीन सीमा के पास लगा रोमांच का मजमा। राजस्थान में आज फिर उठा रेतीला तूफान। तेज हवाओं के साथ जैसलमेर के आसमान पर छाया बवंडर। दिन में हुआ अंधेरा।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में, आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद में चल रहे आईपीएल फाइनल मुकाबले की। अपडेट यह है कि इस महामुकाबले में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और ये फैसला सही भी साबित हो रहा है। गुजरात के दोनों ओपनर सस्ते में आउट हो गए हैं, शुभमन गिल 10 और साई सुदर्शन 12 रन बनाकर आउट हो गए हैं। जाहिर है कि मुकाबला खड़ा होगा और दोनों टीमों का आज अहमदाबाद में विराट इम्तिहान है। सीजन 19 का चैंपियन कौन बनेगा, क्या टीम आरसीबी खिताब बचाने में कामयाब रहेगी या गुजरात टाइटंस सीजन 19 की ट्रॉफी उठाएगी, हर क्रिकेट फैन की इस एक्शन मैच पर नजर है। बहरहाल गुड न्यूज ये भी है कि आज आसमान में चांद भी नई चमक के साथ उतरा है। ज्येष्ठ माह के दूसरी पूर्णिमा पर आज आसमान ब्लू मून की रोशनी से जगमग है। आइए तस्वीरें आपको दिखाते हैं।

0: इस वक्त आसमान में चांद कैसा निकला है, पहले उसका दीदार कर लीजिए। आज चांद नीला नहीं, नारंगी नजर आ रहा है। ये चांद की लाइव तस्वीरें हैं, इसे ब्लू मून कहा जाता है। और ज्येष्ठ माह की दूसरी पूर्णिमा पर यह अद्भुत खगोलीय घटना घट रही है। आपको बता दें, चंद्रदेव के इस अद्भुत रूप के दर्शन आप खुली आंखों से कर सकते हैं। इसके लिए किसी टेलीस्कोप या किसी दूसरे डिवाइस की आवश्यकता नहीं है। तो आज आप ब्लू मून का दीदार कर सकते हैं। आज चांद नीला नहीं बल्कि नारंगी दिख रहा है। आज आप ब्लू माइक्रोमून के दीदार कर सकते हैं। आज चंद्रमा रोज की स्थिति में एकदम अलग नजर आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक ही महीने में पड़ने वाली दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। आज अधिक मास की ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर यह दुर्लभ संयोग बन रहा है। लिहाजा आज की शाम कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि 2-3 साल में एक बार ही ऐसा अवसर आता है जब चंद्रदेव ये रूप धारण करते हैं।
1: आज की शाम चंद्रदेव नए रूप में निकले हैं। आज चांदनी नारंगी रंग ओढ़कर शीतलता आप तक पहुंचा रही है। ज्योतिष और खगोलीय दोनों नजरियों से ये बेहद शुभ घड़ी है, क्योंकि आज की शाम एक खास दैवीय और सकारात्मक ऊर्जा की चमक लेकर आई है। इस वक्त एक बेहद दुर्लभ खगोलीय घटना घट रही है। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज चांद का रंग नीला नहीं हल्का नारंगी है। खास बात यह है कि आज चंद्रमा सामान्य की तुलना में थोड़ा छोटा आकार धारण किए है। विज्ञान की भाषा में इसे ब्लू मून या माइक्रो मून भी कहा जाता है। सवाल ये है कि आज चांद अलग क्यों नजर आ रहा है। वैज्ञानिक नजरिए से समझें तो जब चांद क्षितिज यानी होराइजन के पास होता है, तो उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल की एक मोटी परत को पार करना पड़ता है। इस सफर में नीले रंग की छोटी तरंगे बिखर जाती हैं और केवल लाल और नारंगी रंग की लंबी तरंगे ही हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। खगोलीय दुनिया को करीब से जानने वालों का मानना है कि नारंगी चांदनी वाला चांद आज सामान्य आकार की तुलना में 5-6% छोटा और थोड़ा कम चमकदार दिखाई देगा। खास बात ये है कि चंद्रमा के इस विशेष रूप के दर्शन के लिए महंगे टेलीस्कोप या किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं है। आप इसे खुली आँखों से अपने घर की छत या खुले स्थान से देख सकते हैं। अधिक मास के ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर ब्लू मून की घटना को ज्योतिष और खगोल विज्ञान दोनों के नजरिए से एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है। जब किसी एक ही महीने में दो पूर्णिमा पड़ती हैं, तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में पूर्णिमा के दिन का खास महत्व बताया गया है। ये सकारात्मक ऊर्जा से भरा प्रकाश है और इस बार चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है, इसलिए इसे स्कॉर्पियो ब्लू मून कहा जा रहा है। इस खास घड़ी में दैवीय कृपा बनाने का भी अद्भुत योग बन रहा है। ज्योतिष जानकारों का मानना है कि इस अवसर पर शांति और समृद्धि के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ देना और ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। मन की शांति के लिए ध्यान दान लाभकारी माना गया है। सुख समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें खीर का भोग लगाना शुभ फलदायी है। यानी आज सुख शांति समृद्धि पाने का भी शुभ संयोग बन रहा है। स्नान दान ध्यान से चंद्रदेव के दर्शन से आध्यात्मिक ऊर्जा और दैवीय कृपा पाने का अवसर बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा और दूसरी नदियों में स्नान ध्यान किया। इस मौके पर हरिद्वार में अच्छी खासी भीड़ उमड़ी, साथ ही सरयू से लेकर संगम तट तक भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला।

0: ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर तमाम घाटों पर भक्तों ने आज पुण्य की डुबकी लगाई। सनातन संस्कृति में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान ध्यान की परंपरा रही है। लिहाजा आज सुबह से ही गंगा घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि को जल और आसपास के वातावरण में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इसीलिए इस दिन पवित्र नदियों के जल से स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। खासकर गंगा स्नान करने से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है।
1: अयोध्या में सभी भवन में भागवत सुन रही हूँ और यहाँ आके डुबकी लगा के सर शंकर जी को जल चढ़ाई हूँ और सर जी में स्नान की हूँ। सौराष्ट्र सोमनाथ श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियाम महाकालम ओंकारम अमरेश्वरम केदारम हिमतपुष्य डांगियाम भीमशंकरम वाराणस्याम विश्वसिंह त्रयम्बकम गौतमी तेरे वैद्यनाथम सीताभूमो नागे समारुका बने सेत बंदी तू रामेशम घुसमेशम तुलसी वाले।
2: सर हम लोग यहाँ पे आके सरजू जी में स्नान किया है और आज अमावस्या के पावन अवसर पे हम लोगों का सौभाग्य है कि आज जो है कि भगवान राम की नगरी में जो हम लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े हम लोग खुश नसीब हैं कि इस अच्छे दिव्य अवसर पे हम लोगों को यहाँ पे जो है कि आके हम लोगों को स्नान करने का भगवान राम का जो है दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
0: अयोध्या हो, हरिद्वार, प्रयागराज या वाराणसी, तमाम जगहों पर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ दिखी। इस साल ज्येष्ठ में अधिक मास होने की वजह से दो पूर्णिमाएं पड़ी। धार्मिक दृष्टि से अधिक मास की पूर्णिमा काफी फलदायी भी मानी जाती है, लिहाजा बड़ी संख्या में लोगों ने इस अवसर पर आध्यात्मिक लाभ उठाया। सरयू तट से लेकर संगम नगरी तक श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिखा।
3: आज ज्येष्ठ मास की पुरुषोत्तम मास की पूर्णमासी है। आज के दिन नहाने से दान पुण्य करने से बहुत फल प्राप्त होता है। और प्रयागराज है, मोक्ष की नगरी है।
4: तो आप लोगों ने क्या किया
3: आज? हम लोगों ने नहाया, दान पुण्य किया और गंगा मैया का आशीर्वाद लिया।
5: जो हमारा धार्मिक चीज़ें हैं वो आप समझिए, तो हम उसी के माता जी के साथ आए, बहुत अच्छा लगा। ये है प्रयागराज संगम, ये सबसे बड़ा मेला जहाँ लगता है माघ मेला, हम वहाँ पे हैं इस टाइम। सबसे अच्छी बात ये है,
6: ये जो है जेठ का महीना चल रहा है और उसमें पुरुषोत्तम मास भी लगा हुआ है। पुरुषोत्तम मास और जेठ जल्दी पड़ता नहीं, ये दोनों एक साथ हुए हैं इसलिए। और उसी में आज पूर्णिमा भी है और जेठ की पूर्णिमा। जेठ की पूर्णिमा में यहाँ नहाने से शरीर के रोग कष्ट व्याधा परिवार की तकलीफें दूर होती है और गंगा नहाने से वैसे ही परिवारों की तकलीफ दूर होती है। गंगा स्नान दान पुण्य करने से घर परिवार में सुख समृद्धि होती है और आपके जीवन सुंदर होते हैं। ये प्रयाग तीर्थ में नहाने से सभी तीर्थों के राजा है प्रयागराज। यहाँ पे स्नान कर ले या दर्शन कर ले, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है।
0: पुरुषोत्तम मास और ज्येष्ठ एक साथ पड़ने से भी इस बार पूर्णिमा का महत्व काफी बढ़ गया है और साथ ही आज ब्लू मून का भी दुर्लभ संयोग बना है। मान्यता है कि आज के दिन चंद्रमा सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं और मानसिक शांति और सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। इस अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती हुई और भक्तों को महादेव के अद्भुत श्रृंगार के दर्शन हुए। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर श्री हरि और माता लक्ष्मी के पूजन का विधान है। मान्यता है कि इस अवसर पर पूजा अर्चना करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व क्या है? पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होता है, सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं। इस तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है। चंद्रमा इस तिथि के स्वामी होते हैं, इसलिए इस दिन हर तरह की मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन स्नान दान और ध्यान करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन की पूजा और अनुष्ठानों से व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। ज्येष्ठ की ये पूर्णिमा वैवाहिक जीवन के लिए भी बेहद शुभ फलदायी मानी जाती है। इस दिन चंद्रदेव के दर्शन पूजन से भी विशेष लाभ और दैवीय कृपा प्राप्त होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने देश के नए सीडीएस का पदभार संभाल लिया है। वो पाकिस्तान चीन मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं। दिसंबर 2019 में यह पद बनाया गया था। जनरल विपिन रावत और जनरल अनिल चौहान के बाद ये जिम्मेदारी संभालने वाले जनरल सुब्रमण्य तीसरे अधिकारी हैं। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के साथ ही थिएटर कमांड मॉडल लागू करने की जिम्मेदारी नए सीडीएस के कंधों पर होगी।
7: जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने तीसरे सीडीएस के तौर पर कमान संभालने जा रहे हैं और यहाँ साउथ ब्लॉक के इस लॉन में उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लिया है। ट्राई सर्जिकल गार्ड ऑफ ऑनर यानी तीनों सेनाओं की जो टुकड़ियां हैं उनके सामने उनका गार्ड ऑफ ऑनर हुआ है और अब आज आधिकारिक तौर पर 31 मई को वो देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर कमान संभालने जा रहे हैं। 30 मई को जो सीडी अनिल चौहान है उनका कार्यकाल खत्म हुआ है और अभी तक जनरल राजा सुब्रमण्य एनएससीएस जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद है उस पर मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे थे और अब यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद आप देख सकते हैं उनकी जो परिजन है जो सैन्य अधिकारी हैं वरिष्ठ उनसे जो मिल रहे हैं।
8: ये वो पल है जब जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का पदभार संभाला। इस मौके पर उन्हें दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन्स में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य देश के तीसरे सीडीएस हैं और उन्होंने जनरल अनिल चौहान की जगह ली। पदभार संभालने के बाद नए सीडीएस ने कहा कि सेना के तीनों अंग देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एकजुट है।
9: I am honored to assume charge as the Chief of Defence Staff. We are grateful to the nation for the trust reposed in the armed forces. We, the Indian Army, Navy, Air Force, Ministry of Defence, strategic institutions and all stakeholders stand united as part of the whole of nation approach.
8: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडियन डिफेंस सिस्टम में बेहद अहम पद है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जल थल और वायु तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता है। ये 4-स्टार रैंक का ओहदा है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी चेयरमैन होने के साथ ही सीडीएस रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी डीएमए का भी प्रमुख होता है। भारतीय सेना लगातार खुद को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में प्रयासरत है। तीनों सेनाओं के समन्वय के लिहाज से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका बेहद अहम होने वाली है। नए सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य के सामने पहली चुनौती सेना में थिएटर कमांड मॉडल को लागू करने की होगी। ये प्रक्रिया बेहद अहम मोड़ पर है। इसे लेकर अलग अलग स्तर पर आकलन हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 साल में ये व्यवस्था हकीकत का रूप ले लेगी। मौजूदा व्यवस्था में भारत में तीनों सेनाओं की अलग अलग 17 कमांड हैं। किसी सैन्य अभियान के दौरान तीनों सेनाएं यूं तो मिलकर काम करती हैं, लेकिन उनकी कमान अलग अलग रहती है। थिएटर कमांड व्यवस्था के तहत किसी क्षेत्र या मिशन के लिए एक ही कमांडर होगा। इसके तहत सेना की तीनों यूनिट्स एक साथ काम कर सकेंगी। सीडीएस की भारतीय सैन्य तंत्र में बेहद अहम और निर्णायक भूमिका होती है। सरकार और डिफेंस मिनिस्ट्री को अहम जानकारी देने के अलावा सैन्य खरीद, लॉजिस्टिक और दूसरे मामलों में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका बेहद अहम होती है। जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य के पदभार संभालने के साथ ही वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने भारतीय नौसेना के नए प्रमुख का पदभार संभाला। उन्होंने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह ली है। इससे पहले कृष्णा स्वामीनाथन पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख का पदभार संभाल रहे थे। पदभार संभालने के बाद नई सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय नौसेना किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने में सक्षम है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य भारतीय सेना में 40 साल का सफर तय कर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इस नए सीडीएस का पदभार संभालने के पहले जनरल एनएस सुब्रमणी की अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। वो ये कि 2025 में वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में डिफेंस एडवाइजर थे। जुलाई 2024 से जुलाई 2025 के बीच वो सेना उप प्रमुख रहे। इसके बाद उन्हें जम्मू कश्मीर में काम करने का अच्छा खासा उन्हें अनुभव है। उन्होंने सांबा में 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली थी। और साथ ही आपको बता दें कि एनएस राजा सुब्रमणी ने 1985 में गढ़वाल राइफल से सेना में कमीशन लिया था। उन्होंने एनडीए से भी सैन्य प्रशिक्षण हासिल किया है। जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज से पढ़ाई की है। साथ ही उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज से मास्टर ऑफ आर्ट्स और मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज में एमफिल की डिग्री हासिल की है। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेना मेडल जैसे सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। भारतीय सेना तेजी से स्वदेशी तकनीक विकसित करने में जुटी है। पाथू मोनोरेल सिस्टम इसकी ताजा मिसाल है, जिसे 10 इंजीनियर रेजिमेंट ने तैयार किया है। ये सिस्टम दुर्गम हालात में लॉजिस्टिक्स मूवमेंट का स्वदेशी समाधान है, जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर किसी भी मौसम में सामान लाने ले जाने में सक्षम है।
10: ऊंचे पहाड़ हो, घने जंगल हो, बर्फीली चोटियां हो या रेगिस्तान का रेतीला जंगल, भारतीय सेना हर हालात में, हर स्थिति में आगे बढ़ना, अपनी जिम्मेदारी निभाना बखूबी जानती है। ये मिशन भारतीय सेना के उसी जज्बे की एक नजीर है। ये पाथू मोनोरेल सिस्टम है, जिसे सेना की 10 इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने सफलतापूर्वक चालू किया है। खास बात यह है कि इन जगहों पर गाड़ियों की आवाजाही संभव नहीं, वहाँ ये मोनोरेल सिस्टम बेहद कारगर साबित हो सकता है। इस मोनोरेल के जरिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर बेहद खराब मौसम में भी सहजता और सुगमता के साथ सामान की ढुलाई हो सकेगी। इस मोनोरेल के जरिए एक बार में 300 किलो तक सामान की ढुलाई संभव है। दावा किया जा रहा है कि ये 60 डिग्री के ढलान पर भी आसानी से सामान मंजिल तक पहुंचाने में सक्षम है। लिहाजा घोड़े, खच्चरों के मुकाबले ये सिस्टम 10 गुना ज्यादा कारगर है। इसके जरिए गोले बारूद, राशन, ईंधन और दूसरे जरूरी सामान पहुंचाने में मदद मिलेगी। खास बात यह है कि सिस्टम रात हो या दिन, हर मौसम में सामान की ढुलाई का काम कर सकता है। जीपीएस ट्रैकिंग सेंसर से लैस ये सिस्टम रिमोट से ऑपरेट होता है, लिहाजा भारतीय सेना का ये मिशन खोज मुश्किल हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मौसम बेहद सुहाना हो गया है। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में पारा गिरने की वजह से सैलानी खुश हैं, तो वहीं केदारनाथ बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में मौसम की बाधा के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है।

खुशनुमा मौसम के बीच चार धाम यात्रा भी चरम पर है। केदार घाटी में भक्तों का जोश हाई है। बद्रीनाथ धाम में भी अब तक करीब 7.5 लाख भक्त दर्शन पूजन कर चुके हैं।

0: लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। आने वाला जून का महीना है, ऐसे में लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बद्रीनाथ धाम का रुख कर रही है। ऐसे में बद्री विशाल के दर पर इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होते दिखाई दे रहे हैं। जहां मई के महीने में इस बार 7.5 लाख का आंकड़ा पार हो रहा है, वहीं आने वाला जो जून का महीना है जब सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं, जब अमूमन मुख्य सीजन ही जून का माना जाता है, ऐसे में अब जून के महीने में और भी अधिक जो यात्रियों की भीड़ है वो बद्रीनाथ धाम में बढ़ेगी और एक नए रिकॉर्ड इस बार, क्योंकि पिछले वर्षों के जो सारे रिकॉर्ड है इस बार जून पे सबसे मुख्य नज़र होगी कि किस तरह से जो यात्रा है वो रिकॉर्ड तोड़ती है, कैसी स्थिति होती है, ये सब देखना होगा। वहीं उत्साह जो है श्रद्धालुओं का वो लगातार बना हुआ है, हर कोई बद्री विशाल के दर्शनों के लिए बद्रीनाथ धाम पहुँच रहा है।
1: वहीं बर्फबारी के बीच श्री हेमकुंड साहिब में भी आस्था मौसम की बाधा पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस दौरान सैलानियों की सहूलियत पर भी ध्यान रखा जा रहा है।

0: तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि अचानक से मौसम में बदलाव हुआ है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में लगातार बारिश जारी है, जिस बारिश की वजह से तापमान लगातार गिरता चला जा रहा है। हालांकि जो भारत देश के और साथ में विदेश से जो विभिन्न स्थानों से जो यहां पर तीर्थयात्री रुक किए हुए हैं, चूंकि वो मैदानी इलाकों में है, पारा काफी वहां पर चढ़ा हुआ है, उसके चलते यहां पर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, ये उन यात्रियों के लिए सुकून भरी बात हो सकती है।
1: जाहिर है चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। चमोली जनपद में बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली, नीतिमाना घाटी समेत तमाम पर्यटन स्थल पर इस समय भारी भीड़ उमड़ रही है। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: मैदानों पर तपिश से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और तमाम हिल स्टेशन इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। इस हॉलीडे सीजन खूबसूरत वादियों में टूरिस्ट की अच्छी खासी चहल पहल देखी जा रही है।
1: मनाली की इन खूबसूरत वादियों में, इन नजारों में हर नजर मानो गुम हो जाना चाहती है। हर चिंता रंजोगम भूलकर सैलानी इन मनमोहक वादियों की सैर कर रहे हैं। बारिश के बाद यहाँ का मौसम बेहद खुशनुमा हो गया है और दूर दूर से सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं।
3: दिल्ली के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है यहाँ का वेदर। अभी जो हम आए हैं, अभी रूम लिया, चेक इन कर रहे हैं, उसके बाद और एक्सप्लोर करेंगे। ये मेरा सेकंड टाइम विजिट है।
4: मनाली का वेदर काफी माइंड ब्लोइंग है, इतना मस्त है, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जैसा है। रियली बता रहा हूँ, जरूर आना। जिसको भी अगर एक बार घूमना है, अगर स्वर्ग लाइक देखना है, तो मनाली आना जरूरी।
1: अब पहाड़ों की रानी शिमला में सैलानियों की बाहर देखिए। यहाँ हर तरफ खूबसूरत मौसम का उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ का नजारा देख ये लोग मैदानों की तपिश भूल गए हैं।
5: अंदर से सुकून मिलता है इधर आके, क्योंकि 45 डिग्री में गुजरात की गर्मी से आके इधर हिल स्टेशन में बादलों के बीच में जैकेट के साथ डायरेक्ट एक बड़ा चेंज है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है।
6: यहाँ शिमला हम हमारे फ्रेंड्स के साथ घूमने आए, बहुत प्रीटी वेदर है यहाँ का और काफी ठंडी भी है। गुजरात में जो ज्यादा वेदर अभी समर का है 45 डिग्रीज, स्पेशली जूनागढ़ में भी बहुत ज्यादा गर्मी है, तो गर्मी से बचने के लिए हम सारे फ्रेंड्स इधर आए और हम ट्रैकिंग में जाने वाले हैं।
1: शिमला में सैलानियों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। अकेले मई के महीने में 7,80,000 के करीब वाहन शिमला पहुंचे। बाहर से आ रहे सैलानियों की भारी संख्या को देखते हुए इस बार पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर मेगा प्लान तैयार किया है और शहर को 5 सेक्टर में बांटा है। साथ ही जगह जगह जवान तैनात किए गए हैं। वहीं श्रीनगर की डल झील पर सैलानियों की बहार है। दूर दूर से सैलानी यहां पहुंच रहे हैं और शिकारा पर डल झील की सैर का आनंद ले रहे हैं। यहां के खूबसूरत नजारों ने इन सैलानियों का दिल जीत लिया है।
7: इधर का मौसम बहुत अच्छा है, मतलब इधर बर्फ भी मिला हम लोगों को। इधर श्रीनगर में आए तो बहुत अच्छा मौसम था, शिकारा राइड भी किए और हाउस बोट में भी स्टे किए। हाउस बोट जो था वो बहुत, मतलब 4-स्टार कैटेगरी में था, बहुत अच्छा था। इधर का वेदर बहुत अच्छा है, सोनमार्ग, गुलमर्ग, जीरो पॉइंट, पहलगाम, ये सब बहुत अच्छे जगह हैं।
1: चाहे होटल व्यवसायी हो या दूसरे स्थानीय कारोबारी, इन हिल स्टेशंस पर सैलानियों की बढ़ती तादाद से इनके चेहरे खिल उठे हैं। इन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सैलानियों की बहार बरकरार रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति माइकल बोलोस के साथ राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जैसलमेर पहुंचे। इस दौरान दंपति ने विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर फोर्ट को देखा, जिसे सुनार किला के नाम से भी जाना जाता है, इसका भ्रमण किया। सुनहरे पत्थरों से निर्मित इस भव्य किले की वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत ने उनका ध्यान आकर्षित किया। टिफनी ट्रंप को स्टेट ऑफ गेस्ट का दर्जा दिया गया है। उनके ठहरने के लिए शहर के प्रसिद्ध और भव्य होटल सूर्यगढ़ में विशेष इंतजाम किए गए हैं। होटल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियां कड़ी नजर रख रही हैं और इस हाई प्रोफाइल दौरे को देखते हुए जैसलमेर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता। नमस्कार।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
9: सूर्य देव का कौन सा शुभ योग अच्छी वाणी देता है? सूर्य देव का कौन सा शुभ योग घर से दूर ले जाकर सफलता देता है? सूर्य देव का कौन सा शुभ योग राजनीति में ऊंचाई पर पहुंचा देता है? कौन से हैं सूर्य के शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
10: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing or tell your device to play Sailing on TuneIn.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य से मुख्यतः कौन से शुभ योग बनते हैं और इन शुभ योगों का जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 जून 2026 दिन सोमवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 4:37 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, शाम के 7:08 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:08 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 1 जून 2026 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान है वृषभ राशि में, बुध बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम सूर्य के शुभ योगों की बात कर रहे हैं। सूर्य का पहला शुभ योग कौन सा है और इसके लाभ क्या हैं? देखिए, कुंडली में जिस खाने में सूर्य बैठा है, जिस घर में सूर्य बैठे हैं, उसके अगले घर में किसी ग्रह के स्थित होने पर वेशी योग बनता है। सूर्य जहां बैठे हैं उसके बाद वाले खाने में कोई भी ग्रह बैठा हो, चंद्रमा राहु या केतु नहीं होना चाहिए।

यश अर्जित करते हैं। जिनकी कुंडलियों में वेशी योग हो ऐसे लोगों को अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए, मांस मदिरा इत्यादि के प्रयोग से बचना चाहिए। सूर्य के दूसरे राजयोग की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता के योग हैं, धन लाभ की स्थिति बन रही है, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं सूर्य का दूसरा शुभ योग कौन सा है और इसके लाभ क्या हैं। कुंडली में सूर्य जिस खाने में बैठे हैं उसके पिछले खाने में अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो वाशी योग बन जाता है, लेकिन ये ग्रह चंद्रमा, राहु या केतु नहीं होना चाहिए। और सूर्य अगर पापक्रांत नहीं होगा, सूर्य पर अगर पाप प्रभाव नहीं होगा तो वाशी योग बहुत अच्छा होगा और ये ज्यादा शुभ फल आपको दे पाएगा। अगर किसी कुंडली में वाशी योग है तो ये व्यक्ति को बुद्धिमान, ज्ञानी और धनवान बनाता है। और वाशी योग होने पर व्यक्ति बहुत शानो शौकत से रहता है, बहुत कंफर्ट में, बहुत लग्जीरियस लाइफ में रहता है। इस योग के कारण व्यक्ति जीवन में बहुत सारी विदेश यात्राएं या बहुत सारी यात्राएं करता है। और जिनकी कुंडली में वाशी योग होता है ऐसे लोग घर से दूर जा करके जीवन में ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। इस योग के होने पर अगर आप इसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। सूर्य के तीसरे राजयोग की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान

लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रिश्तों में समस्या आ सकती है। धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। छोटी यात्रा हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी। संपत्ति का लाभ होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर एक लोटा जल चढ़ा दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो हमने आपको सूर्य के दो बड़े शुभ योगों के बारे में बताया, वेशी वाशी। अब तीसरा शुभ योग कौन सा है? सूर्य जिस खाने में बैठे हैं उसके पहले खाने में भी ग्रह हो और सूर्य के बाद वाले खाने में भी ग्रह हो तो योग बनता है उभयचारी। लेकिन सूर्य के पहले या बाद वाले खाने में चंद्रमा, राहु या केतु होंगे तब ये योग नहीं बनेगा। अगर सूर्य के पहले खाने में और बाद के खाने में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि में से कोई ग्रह बैठा होगा तो उभयचारी योग बनेगा। इस योग के होने पर व्यक्ति बहुत छोटी जगह से बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाता है और जिनकी कुंडलियों में उभयचारी योग होता है ऐसे लोग अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इस योग के कारण व्यक्ति हर समस्या से बाहर निकल आता है, हर समस्या उसकी दूर हो जाती है। किस्मत का साथ और भगवान की कृपा दोनों मिल जाती है। उभयचारी योग अगर कुंडली में है तो व्यक्ति को राजनीति और प्रशासन में बड़ा पद मिलता है। अगर आपकी कुंडली में उभयचारी योग है और आप उसका लाभ लेना चाहते हैं तो इस योग के होने पर रविवार का उपवास जरूर रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो उभयचारी योग का पूरा फायदा आपको जीवन में प्राप्त होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे।

अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन का लाभ होगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, सूर्य के वैसे बहुत सारे राजयोग हैं, लेकिन ये तीन प्रमुख राजयोग हैं जो व्यक्ति को जीवन में ऊंचाइयां देते हैं। इसके अलावा सूर्य के दो कामन शुभ योग भी हैं। एक ये है कि अगर कुंडली में सूर्य आपके दशम स्थान में बैठ जाए तो सूर्य दिग्बली हो जाता है, जीवन में शक्ति, साहस और मान सम्मान प्रदान करता है। दूसरा एक और शुभ योग है कि अगर कुंडली में सूर्य बुध के साथ बैठा हो तो बुधादित्य नामक राजयोग बनता है, और बुधादित्य नामक राजयोग से व्यक्ति करियर में सफल होता है, जीवन में मान सम्मान पाता है, अपने परिवार के लिए बड़ा परिश्रम करता है और परिवार के लोगों को हमेशा अपने साथ में लेकर चलता है। तो आज हमने सूर्य के शुभ योगों की बात करी, अब हम जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपकी सूर्य देव की अशुभ दशा चल रही हो तो हर रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ या आटे का दान करें या गेहूं की रोटी बनाएं, उसमें गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। ऐसा निरंतर करेंगे तो सूर्य के अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 1 जून 2026, दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाइएगा, इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: पीएम मोदी ने जब से देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है, तभी से जीएनटी भी आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजिए ताकि हम आपके उन वीडियोस को दिखाएं। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला लेकर चलते हैं, जहां के तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें एक वीडियो भेजा है जिसमें उन्होंने धर्मशाला समेत कांगड़ा वैली की खास जगहों के बारे में बताया है।

0: आप सभी को भी न्योता देता हूँ कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो देव भूमि है और हिमाचल के ही अंदर बसा हमारा ये सुंदर धर्मशाला, जहाँ एक तरफ धुलाधार की हसीन पहाड़ियाँ, जहाँ आज मई और जून के महीने में भी बर्फबारी धुलाधार की पहाड़ियों पर है। को कहना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सुंदर हमारा धर्मशाला, जहां इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो विश्व का सबसे सुंदर स्टेडियम है वो धर्मशाला में है, चाहे मैक्लोडगंज जो नगरी है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है, वो धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा जी यहां पर हैं। आप सभी आए और धर्मगुरु दलाई लामा जी का आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य आप सभी को मिलेगा। धर्मशाला के अंदर चाय के बगान है, आप उन्हें निहारने के लिए यहाँ आ सकते हैं। धर्मशाला के अंदर कई देवी स्थान, कई मंदिर, जैसे अगंजर महादेव, इंद्रनाग जी का मंदिर देवी स्थल है, और कई मंदिर हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के शहर के अंदर है। बात करूँ रोपवे की, तो धर्मशाला में, धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए रोपवे की सुविधा है, आप उसका आनंद लेने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर आ सकते हैं। अगर कोई ट्रैकिंग का शौकीन है तो त्रिउंड जैसा एक ट्रैकिंग का हमारे पास स्पॉट जो है धर्मशाला के अंदर है, आप ट्रैकिंग के लिए भी त्रिउंड जा सकते हैं। साथ में धर्मशाला के लगते बाथू की लड़ी यहाँ घूमने के लिए है। मंदिर की बात करूँ तो रॉकट टेम्पल हमारे यहाँ है। धर्मशाला के साथ ही लगता कांगड़ा है, प्रदेश माता शक्तिपीठ धर्मशाला के अंदर लगते कांगड़ा में है। तो आप इन तमाम चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए धर्मशाला आए हिमाचल वासी, तो धर्मशाला अतिथि देवो भव के भाव के साथ आप सभी के स्वागत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपने आना कैसे है ये सबसे बड़ा प्रश्न है, तो बताऊँ आपको, धर्मशाला के ही समीप गग्गल एयरपोर्ट, जहाँ आप हवाई मार्ग से आ सकते हैं। रेलवे से अगर आपने आना है तो पठानकोट जो सबसे नजदीक हमारे पड़ता है उसके माध्यम से आ सकते हैं। जब दिल्ली से आपने आना है तो वोल्वो बसें जो है धर्मशाला तक आती हैं। इन तमाम साधनों से जो आप धर्मशाला आ सकते हैं। हम सभी धर्मशाला वासी आपके स्वागत के लिए और अतिथियों के, अतिथि देवो भव के भाव के साथ यहाँ पर।
1: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बनाइए ब्लॉग, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: सूर्य की राशि की विशेषताएं क्या हैं और इसके प्रभाव क्या हैं? चंद्रमा की राशि की कमजोरी क्या है और इसे कैसे सुधारा जाए? क्या है सूर्य और चंद्रमा की राशियों की विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
1: मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम, मौसम खराब होने पर यात्रा पर लगा था अल्प विराम। बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक 7.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन, चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई, बर्फबारी के बीच श्री हेमकुंड साहिब में भी आस्था भारी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में लगा भक्तों का तांता। पूजा अर्चना के साथ हर रविवार को होते हैं धार्मिक अनुष्ठान। दान पुण्य के साथ भक्तों के लिए भंडारे का इंतजाम। यूपी की राजधानी लखनऊ में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को मिली राहत। आसमानी फुहारों से गिरा पारा। उत्तराखंड के चमोली में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का भव्य आगाज। 28 राज्यों के 900 नृत्य प्रतिभागी कर रहे शिरकत। भारत चीन सीमा के पास लगा रोमांच का मजमा। राजस्थान में आज फिर उठा रेतीला तूफान, तेज हवाओं के साथ जैसलमेर के आसमान पर छाया बवंडर, दिन में हुआ अंधेरा। पूर्णिमा के मौके पर आसमान में दिखा ब्लू मून का दुर्लभ नजारा, नीला नहीं बल्कि नारंगी नजर आया चांद। टेलीस्कोप से अनोखी खगोलीय घटना का दीदार करते दिखे लोग।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आपके साथ मैं शुभम सिंह। आज हम बात कर रहे हैं देश के पहाड़ी इलाकों के जंगलों में लगी आग को बुझाने में जुटे जवानों की। जंगलों में आग धधक रही है तो एयरफोर्स, फायर ब्रिगेड और वन विभाग के जवान आग को बुझाने और जंगलों को बचाने में जुट गए हैं। कश्मीर से हिमाचल तक और उत्तराखंड तक जगह जगह ये देवदूत बने जवान जंगलों की रक्षा करने में दिन रात तत्पर हैं। जंगलों की आग इस वक्त उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमाचल के कई इलाकों में लगी है और कश्मीर के भी कई हिस्सों में फैली है। तमाम जगहों पर आग लगने की घटनाएं हो चुकी है जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि ये आग बुझ सकती है क्योंकि पहाड़ों पर बारिश का दौर शुरू हो गया है। आज आपको विस्तार से बताएंगे कि पहाड़ी इलाकों के जंगल में आग क्यों लगती है और इसे रोकने का उपाय क्या है। जंगल में लगी आग ना सिर्फ आर्थिक तौर पर चोट देती है बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। जो स्थानीय लोग जंगल से जुड़े हैं उन्हें भी बड़ा घाटा होता है। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे उत्तराखंड में महिलाओं की टीम ने आग से दो दो हाथ किए और उसे बढ़ने से रोक दिया। आपको इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन दिखाएंगे। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने किस तरह हिमाचल में आग पर काबू पाया ये भी आपको आज दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा देते हैं कि कश्मीर के राजौरी और रामबन में किस तरह जंगलों में आग लगी है। राजौरी इलाके में अभी तक 12 जगहों से आग लगने की घटनाओं की खबर है। खास तौर से नौशेरा, सुंदरबनी और डूंगी इलाकों में जंगलों का बड़ा हिस्सा धुंधुकर जलने लगा जिसकी सूचना मिलने पर वन विभाग और फायर डिपार्टमेंट ने मोर्चा संभाला है। वन विभाग और फायर डिपार्टमेंट की टीमें तमाम संवेदनशील इलाकों में दिन रात तैनात हैं, दिन रात आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोगों से प्रशासन ने अलर्ट रहने की अपील की है और कहीं भी आग लगने की भनक मिले तो तत्काल जानकारी देने को कहा है ताकि आग पर समय रहते काबू पाया जा सके। लोगों से अपील की गई है कि वे जलती हुई सिगरेट, बीड़ी ना फेंकें और ना ही जंगली इलाकों में आग लगाएं क्योंकि शुष्क मौसम और तेज हवाओं के कारण आग लगने का खतरा बढ़ रहा है। प्रशासन ने समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में लगी आग चिंता बढ़ाने वाली है। कसौली के जंगलों में लगी आग है जिसके पास ही भारतीय वायुसेना का स्टेशन भी है और इसीलिए आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी और बेम्बी बकेट का इस्तेमाल करते हुए जंगलों पर बरसात कर दी। हालांकि हिमाचल में आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं है लेकिन प्रशासन के साथ इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन के लिए मुस्तैद है और एयरफोर्स के जवानों ने किस तरह से देवदूत के समान मोर्चा संभाला ये जाने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।

0: अगर मिशन पर एयरफोर्स के धुरंधर हो तो कामयाबी की गारंटी है। देखिए कैसे हेलीकॉप्टर ने सुखना लेक से बाम्बी बकेट में पानी निकाला और लेकर उड़ चला कसोली के जंगलों की ओर, जहां भीषण आग लगी है। ठीक जलते हुए जंगल की तरफ एक साथ हजारों लीटर पानी ऐसे गिरा जैसे बारिश हुई हो। ये तस्वीर है हिमाचल के कसौली की, जहां जंगल में लगी आग बुझाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने मिशन शुरू किया। झील से करीब 15 फेरों में 40,000 लीटर से ज्यादा पानी निकाला गया और उसे आग पर बरसाया गया, और इस तरह आग पर काबू पाने में एयरफोर्स कामयाब हुई। हालांकि गर्मी की वजह से जंगल में लगी ये आग फिर सुलग उठी और फैलने लगी है, पर एयरफोर्स के साथ प्रशासन इसे बुझाने के लिए मुस्तैद है। कोशिश की जा रही है कि आग का दायरा न फैले। सोलन के क्यारी घाट गांव में कंडा घाट के जंगल भयानक आग से जल रहे हैं और धुएं का गुबार सैकड़ों फीट ऊंचाई तक नजर आ रहा है। इस साल राज्य के 11 आरक्षित वन क्षेत्रों में इस वर्ष अब तक 248 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें से 241 घटनाएं 15 अप्रैल से 27 मई के बीच यानी गर्मी में दर्ज की गई हैं। मंडी वन क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां पिछले दो महीनों में ही 81 जंगल में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। धर्मशाला वन क्षेत्र में 59 घटनाओं के साथ दूसरा सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। सोलन का इलाका जिसमें कसौली के जंगल शामिल है, वहां आग लगने की 9 बड़ी घटनाएं हुई हैं। यह आग इतनी भयानक है कि आग बुझाने के अभियान में वायुसेना को उतरना पड़ा। आपको बता दें कि कसौली के जंगलों की सीमा वहां मौजूद वायुसेना स्टेशन से लगती है। हिमाचल के जंगलों में आग की चुनौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक करीब 3,000 हेक्टेयर जंगल जल चुका है, जिससे लगभग 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और अगर बात पिछले 10 साल की करें तो आग लगने की करीब 15,000 घटनाओं में 23,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल प्रभावित हुए हैं। ऐसे हालात में सरकार और स्थानीय लोग मिलकर आग की घटनाओं को रोकने में जुटे हैं। संवेदनशील इलाकों में स्टाफ अलर्ट है। मंडी और सुरमौर जैसे इलाकों में फ्रांस की मदद से एक परियोजना की तैयारी है, जिसके तहत आग बुझाने में मदद मिलेगी। साथ ही शक्तिशाली कैमरों से लैस ड्रोन खरीदा जा रहा है, जो जंगल पर नजर भी रखेंगे और आग लगाने वालों की पहचान भी करेंगे। फिलहाल उम्मीदें बारिश से हैं। हिमाचल में बारिश का अलर्ट है और माना जा रहा है कि भरपूर बारिश हुई तो ये आग जल्दी बुझ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बड़ा सवाल यह है कि पहाड़ी इलाकों में जंगलों में आखिर आग क्यों लगती है, क्योंकि जब हम आग लगने के कारणों को समझ लेंगे तभी इस बात पर भी विचार किया जा सकता है कि इस आग को कैसे रोका जाए, जंगलों को कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि जंगलों का होना बहुत जरूरी है, तभी तो पर्यावरण सुरक्षित रह सकेगा। तो आपको बता देते हैं कि आखिर जंगलों में आग लगती क्यों है और कैसे लगती है। माना जाता है कि तेज हवाओं के कारण पेड़ों की टहनियों के आपस में रगड़ खाने से चिंगारी निकलती है, जो तेज लपटों में बदल सकती है। इसके अलावा ज्यादातर ऐसा भी होता है कि मानवीय लापरवाही के कारण जंगलों में आग लग जाती है, जो फैलती है तो उस पर काबू पाना मुश्किल होता जाता है। मानवीय लापरवाही का मतलब ये कि लोग अक्सर जलती सिगरेट, बीड़ी, माचिस की तीली जंगली इलाकों में फेंक देते हैं, जो आग लगने का कारण बन जाती है। इसके अलावा जंगली इलाकों में बसे लोग अपने खेतों में पराली, कूड़े और खेती के अवशेष जलाते हैं, उससे भी कई बार आग लग जाती है। वहीं जंगली इलाकों से गुजरते बिजली के हाईटेंशन तारों के टकराने से भी चिंगारी पैदा होती है, जो भीषण आग में बदल सकती है। कई बार शिकारियों और असामाजिक तत्वों की ओर से भी जानवरों को घेरने के लिए जंगलों में आग लगा दी जाती है। वहीं पेड़ों पर आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी अक्सर जंगलों में आग लगने की वजह बनती है। जंगल में लगी आग पर काबू पाना आसान नहीं होता। सूखी पत्तियों और झाड़ियों के जरिए आग तेजी से फैलती चली जाती है। बेशक प्रशासन और विभाग की टीम आग को बढ़ने से रोकने में जुटी है, इसके लिए नई तकनीक और रणनीति का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन आग को रोकने में सबसे अहम भूमिका स्थानीय लोगों की होती है। टिहरी गढ़वाल के इलाके में जब जंगल में आग फैलनी शुरू होती तो महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया। अपने महिला प्रधान की अगुवाई में उन्होंने पेड़ की डालियों से ही आग पर काबू पा लिया। देखिए हिम्मत और जज्बे की है शानदार तस्वीरें।
0: जंगल में आग की लपटें चारों तरफ धुआं। लेकिन इसी बीच कुछ महिलाएं उम्मीद बनकर सामने आई। हाथों में आग बुझाने का कोई आधुनिक तरीका नहीं है। धधकती आग को बुझाने के लिए कुछ है तो पेड़ की डालियां हैं। लेकिन महिलाओं के मन में विश्वास है कि ये आग थम जाएगी, बुझ जाएगी। अपने जंगलों को बचाने की इसी जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ महिलाएं आग बुझाने में जुटी रही। उत्तराखंड में सिर्फ सरकार और प्रशासन ही आग बुझाने में नहीं जुटे हैं, बल्कि स्थानीय लोग भी इस चुनौती से लड़ रहे हैं, क्योंकि इन जंगलों से इन्हें लगाव है, रोजी रोटी का नाता है।

उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में गजा और पोखाल रेंज के सियूरी गांव के आसपास जंगलों में आग लग गई। तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैलने लगी। गांव के लोगों ने स्थिति की गंभीरता को समझा और तुरंत जंगल बचाने के प्रयास शुरू कर दिए।

0: ग्राम प्रधान जमुना राणा गांव की महिलाओं के साथ खुद जंगलों में पहुंची। सभी महिलाओं ने मिलकर आग बुझाने का मोर्चा संभाला। किसी ने पेड़ों की टहनियों से आग रोकी, किसी ने मिट्टी डाली तो किसी ने पानी पहुंचाया। कई घंटों तक लगातार कोशिशें चलती रहीं। इन महिलाओं की हिम्मत ने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी किया जा सकता है। नई टिहरी और आसपास के कई इलाकों में भी जंगलों में आग की घटनाएं सामने आई, लेकिन राहत की बात ये रही कि स्थानीय लोग वन विभाग और प्रशासन लगातार मिलकर स्थिति को संभालने में जुटे रहे। आग की चुनौती से निपटने के लिए सरकार और वन विभाग कई स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रदेश भर में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, हजारों फायर वॉचर तैनात किए गए हैं, फायर लाइन तैयार की गई है और आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। वन विभाग स्थानीय लोगों को भी वन सुरक्षा अभियान से जोड़ रहा है। गांव-गांव में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि लोग जंगलों की अहमियत को समझें और उनकी रक्षा में भागीदारी निभाएं। इसके साथ ही वन विभाग के मुख्यालय स्तर पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है। राज्य में 1438 क्रू स्टेशन, 40 मास्टर कंट्रोल रूम और 174 फायर वॉचर टावर बनाए गए हैं। संचार व्यवस्था के लिए 35 वायरलेस रिपीटर, 248 मोबाइल सेट और 1507 GPS सेट उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही राज्य में कुल 13,000 किलोमीटर फायर लाइन तैयार की गई है। इसके साथ ही चीड़ की सूखी पत्तियां यानी पिरुल इकट्ठा करने की योजना भी चलाई जा रही है। इससे एक तरफ जंगलों में आग का खतरा कम होगा तो दूसरी तरफ ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
1: ये सब कुछ जाकर की जो हमारे वनों में आग लगती है तो तो भारत सरकार के अथॉरिटी ने जो 2025 को इससे गाइडलाइंस लिखा है उसके हिसाब से अगर वना की घटना एक दिन के लिए होती है तो उसका स्मॉल इंसिडेंट माना जाएगा और वो वन विभाग और स्थानीय समुदाय तो अगर 2 से 3 दिन तक चलती है और जिसका प्रभाव क्षेत्र 21 से 22 सेक्टर तक है वो लार्ज फॉरेस्ट फायर की श्रेणी आएगा, जिसमें वन विभाग अपने अतिरिक्त संसाधन एडिशनल रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। स्थानीय समुदाय अन्य विभाग और विश्व डीएसएस माइग्रेट अथॉरिटी इससे सम्मिलित होंगे। लार्ज फॉरेस्ट फायर की 4 से 6 दिन चलाएंगे जिसमें कि इतनी से 80 हेक्टेयर तक क्षेत्र प्रभावित होगा, उसमें एससीएफ का इंगेजमेंट हो सकता है, यूएसडी का इंगेजमेंट हो सकता है और जो 6 दिन से अधिक होगा वहां पर एडीआरएफ राज्य सरकार की रिकमेंडेशन की आवश्यकता है।
0: लेकिन सबसे अहम बात है लोगों की भागीदारी, जो न सिर्फ आग रोकने में बल्कि आग बुझाने के लिए अहम है।
2: विभाग काफी परेशान है आग की वजह से और जनता परेशान हो गई है ये धुआं से, और विभाग जो है इतना परेशान है, हर व्यक्ति को नजर रखना चाहिए, हर व्यक्ति और विभाग तो नजर रख ही रहा लेकिन हर व्यक्ति को नजर रखना चाहिए कि जंगल में आग न लगाए, कितने नुकसान हो रहा है, कितने क्षति वो हो रही है। देखो पशु पक्षी हर जीव देख ये जो है, अरे हम लोग कितना वो है प्रदूषण की बीमार हो रहे हैं, ये धूप बारिश हो नहीं रही है, हर व्यक्ति परेशान है भाई। देखो
0: ये तो जाहिर है कि जंगल की आग उत्तराखंड के पर्यावरण के लिए खतरा है। इसके साथ ही आग का असर कारोबार पर भी पड़ता है। विकास नगर के देवधार रेंज में जंगल की आग की चपेट में सेब के बगीचे आ गए जो धू धू करके जल उठे, जल्द ही पूरा बगीचा राख हो गया। एक तरफ चुनौती वाली तस्वीरें हैं तो दूसरी ओर इससे एकजुट होकर लड़ने वाली मिसाल भी है। जब गांव के लोग मोर्चे पर डट जाएं, तो नतीजा क्या हो सकता है ये इन तस्वीरों से जाहिर है। उत्तराखंड में आग बुझाने की तस्वीर साहस एकता और जागरूकता की है। जहां एक तरफ जंगलों को बचाने की मुहिम चल रही है वहीं दूसरी तरफ महिलाएं ग्रामीण और वन विभाग मिलकर नई मिसाल पेश कर रहे हैं। टिहरी गढ़वाल से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो आपने देखा लोग किस तरह जंगलों में आग बुझाने में जुटे हुए हैं, वहीं ये भी जानना जरूरी है कि जंगलों को आग से कैसे बचाया जा सकता है, जंगलों में आग की रोकथाम कैसे हो सकती है। सबसे अहम बात है कि जंगलों के आसपास रहने वाले या वहां से गुजरने वाले लोग लापरवाही से बचें और जंगलों में जलती हुई चीजें जैसे बीड़ी सिगरेट माचिस की तीली वगैरह ना फेंकें। साथ ही जंगलों के पास खेतों में पराली कूड़ा वगैरह जलाने पर सख्त रोक लगानी चाहिए। इसके अलावा जंगलों में सैलानियों के कैंप फायर लगाने पर भी रोक लगनी चाहिए। जंगलों को आग से बचाने के लिए गर्मी का सीजन आने से पहले उनकी सफाई जरूरी है। जंगलों से सूखी पत्तियां, लकड़ियां, सूखी घास हटा देनी चाहिए। जंगलों के बीच चौड़े रास्ते होने चाहिए ताकि आग ना फैले, और जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों को भी आग बुझाने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि ऐसी कोई घटना हो तो तत्काल एक्शन लिया जा सके। और अब आपको बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अरसे से जंगल सुलग रहे हैं। इस साल गर्मी में आग लगने की सैकड़ों घटनाएं हो चुकी है और जंगल का भारी नुकसान हुआ है। जानकार मान रहे हैं कि आग लगने की वजह गर्मी और सूखा मौसम है। हालांकि इसकी वजह लापरवाही भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल बड़ी चुनौती इस समय आग पर काबू पाना है, जिसके लिए प्रशासन और सरकार दोनों मुस्तैदी से जुटे हैं। अच्छी बात यह है कि पहाड़ी इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि इसकी वजह से जंगल की आग बुझ जाएगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: अंधेरे में दूर से चमकती दमकती गहरे लाल रंग की ये रेखा कोई कलाकृति नहीं बल्कि जंगल में लगी आग है जो दरख्तों को राख किए जा रही है, जो भी चपेट में है उसे खाक किए जा रही है। उत्तराखंड के जंगलों में दावानल की ये तस्वीर नई बात नहीं, लेकिन ये भी सच है कि भारी नुकसान के बावजूद इस साल भी इसका अभी तक समाधान नहीं। हालांकि सरकार, प्रशासन और स्थानीय लोग अपनी अपनी तरह से इसे बुझाने में लगे हैं, लेकिन आग है कि थमती नजर नहीं आ रही। पहाड़ों की शिखर पर इस आग का धुआं फैल रहा है और पूरी वादी इस धुएं के आगोश में है। सबसे ज्यादा प्रभावित चमोली है। चमोली में कर्णप्रयाग से नारायण बगड़, आदि बद्री और गोपेश्वर के जंगलों में भीषण आग से हर तरफ धुआं धुआं है।
1: चमोली जनपद में इस समय भीषण जंगलों में आग लगी है। चाहे नारायण बगड़ की बात करें, कर्णप्रयाग इलाके की बात करें या फिर चमोली के गोपेश्वर के इलाके की बात करें, हर तरफ इस समय आग लगी हुई है। जो पहाड़ी चोटियां हैं वो अब यहां से साफ भी नहीं दिखाई दे रही। हालांकि जोशीमठ क्षेत्र में आग जंगलों में नहीं है, लेकिन यहां पूरा धुआं, जो जोशीमठ शहर है वहां तक इस समय धुआं दिखाई दे रहा है। पहाड़ी चोटियां साफ नहीं दिखाई दे रही हैं। आसमान भी इस समय जो नीला दिखाई देता था, जहां बादल दिखाई देते थे, वो नहीं दिखाई दे रहे। सब कुछ इस समय धुएं की आगोश में इस समय पूरे जनपद में दिखाई दे रहा है। वहीं लोगों की जो सांसों में है, धुएं की जो खुशबू है, वो साफ साफ यहाँ पे पता चल रही है। इस तरह से जो चमोली जनपद का इस समय वातावरण है, धुआं ही धुआं हर तरफ, इस समय जो माहौल है, हर तरफ आग लगी हुई है। जंगलों की आग का धुआं पूरे जनपद में जगह जगह फैला हुआ है।
0: यकीनन चारधाम यात्रा और सैलानियों की भीड़ देखते हुए जंगल की आग हर रोज चिंता बढ़ा रही है, लेकिन इसके कई और पहलू हैं। उत्तराखंड के जंगल सिर्फ पहाड़ों की हरियाली का हिस्सा नहीं, बल्कि उत्तर भारत की नदियों, स्वच्छ हवा और करोड़ों वन्य जीवों के लिए जीवन रेखा माने जाते हैं। ऐसे में यहाँ जंगलों में लगातार बढ़ रही आग पर्यावरण और जैव विविधता के लिए खतरा बनती जा रही है। वन विभाग के मुताबिक प्रदेश में चल रहे फायर सीजन के दौरान अब तक जंगल में आग लगने की 394 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। इन घटनाओं में 331 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जल चुका है। आग की चपेट में आने से जान माल का भी नुकसान हुआ है। आग की वजह भीषण गर्मी और सूखे जंगल को माना जा रहा है, लेकिन इसके पीछे इंसानी लापरवाही से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लगातार लग रही आग की वजह से कई इलाकों में आग की लपटें दूर तक नजर आ रही हैं। किसी के पास इसे बुझाने का तरीका नहीं और आग पर काबू नहीं पाया गया तो तय है कि ग्रामीण इलाकों के लिए चुनौती बढ़ेगी। ये है कि कई पहाड़ी कस्बों में दोपहर के समय भी धुएं और धुंध जैसे हालात बन रहे हैं। सांस लेने में दिक्कत है, आंखों में जलन है। सवाल है कि उत्तराखंड के जंगलों में आग फैलने की वजह क्या है। राज्य में करीब 25,138 वर्ग किलोमीटर सुरक्षित वन क्षेत्र है, जिसमें करीब 3,890 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीड़ के जंगलों का है। चीड़ के पेड़ों से गिरने वाली सूखी पत्तियां बेहद ज्वलनशील होती हैं और आग को तेजी से फैलाने का काम करती हैं। गर्मियों में थोड़ी सी चिंगारी भी दावानल का रूप ले लेती है। गर्मी के दिनों में प्रशासन ऐसे हालात के लिए तैयार भी रहता है। इन दिनों भी आग से प्रभावित इलाकों की निगरानी बढ़ा दी गई है। किसी भी घटना की सूचना तुरंत प्रशासन को देने की अपील की गई है और जंगलों की सुरक्षा के लिए ज्यादा टीमें तैनात कर दी गई है। सरकार जो नया प्लान लाई है उसमें बेहतर काम करने वाली टीमों और लोगों के लिए 1,00,000 रुपए के अलावा 75,000 और 51,000 रुपए के पुरस्कार भी तय किए गए हैं, ताकि लोग आग बुझाने में प्रशासन की मदद करें। अच्छी खबर ये है कि उत्तराखंड में बादल मेहरबान है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं और मौसम विभाग ने सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून और टिहरी समेत राज्य के दूसरे इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों तक राज्य में हल्की या ज्यादा बारिश की उम्मीद है। और जब बारिश होगी तो जंगलों में लगी आग थम सकती है। वादी में फैल रहा ये धुआं भी गायब हो सकता है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: हमारे इस खास शो में अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।

0: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम, मौसम खराब होने पर यात्रा पर लगा था अल्प विराम। बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक 7.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन, चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई, बर्फबारी के बीच श्री हेमकुंड साहिब में भी आस्था भारी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में लगा भक्तों का तांता, पूजा अर्चना के साथ हर रविवार को होते हैं धार्मिक अनुष्ठान, दान पुण्य के साथ भक्तों के लिए भंडारे का इंतजाम।

देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का विस्फोटक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं वो है तो महज 15 साल का, लेकिन क्रिकेट के मैदान में बल्ले से ऐसे ऐसे कीर्तिमान रच रहा है कि बड़े बड़े सूरमाओं की चमक उसके आगे फीकी पड़ती जा रही है।

0: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बीते 27 मई को आईपीएल के एक मुकाबले में बल्ले से विस्फोट की नई इबारत लिखने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी है। जी हाँ, 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की जो विस्फोटक पारी खेली उसकी धमक में क्रिकेट के कई दिग्गजों के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स दफन हो गए। वैभव ने एक पारी में इतने रिकॉर्ड्स बना दिए कि ये खुद अपने आप में रिकॉर्ड हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वाली पारी। दरअसल पिछले 2 साल से वैभव मैदान में टिककर जिस तरह से आतिशबाजी कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले वर्षों में बल्लेबाजी का कोई ऐसा रिकॉर्ड होगा ही नहीं जो वैभव के नाम ना हो।
1: क्रिकेट के क्षितिज पर उदित हो चुका है एक ऐसा चमचमाता वैभवशाली सूर्य जिसकी चौंधिया देने वाली चमक में क्रिकेट के आसमान के बड़े बड़े सितारे गुम से हो गए हैं। इस वैभवशाली सूर्य ने आईपीएल की महज एक पारी में इतने कीर्तिमान बना दिए हैं कि रिकॉर्ड बुक के हर सफहे पर एक ही नाम चमक रहा है, वैभव सूर्यवंशी। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को हुए एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की ऐसी विस्फोटक पारी खेली कि आईपीएल के 18 साल के इतिहास में बल्ले से बने करीब करीब सारे रिकॉर्ड्स जमींदोज हो गए।
2: वो बच्चा 15 साल का है, इतनी धमाल मचा रखी है। बुमराह को उसने पहली बॉल पे छक्का मारा, हेजलवुड को, हर एक बॉलर को उसने पहली बॉल पे छक्का मारा। ऐसा बल्लेबाज मैंने दुनिया में नहीं देखा। वरिंदर सहवाग भी ऐसी पारी नहीं कभी खेल सका जो वैभव सूर्यवंशी खेलता।
1: वैभव की इस अविस्मरणीय पारी को देखकर ऑल टाइम ग्रेट सचिन तेंदुलकर को कहना पड़ गया अभूतपूर्व। बल्ले से वैभव का अतुल्य धमाका पूरी एकाग्रता से देखने के बाद सचिन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का स्विंग असाधारण था। इससे भी बड़ी बात यह है कि पैरों पर फेंकी गई गेंद पर उन्होंने बेहद कुशलता के साथ फ्रंट फुट क्लियर कर रूम बना लिया, जिसकी वजह से उन्होंने जहां चाहा गेंद को वहीं पहुंचा दिया। वैभव की ये पारी चमत्कार से कम कुछ भी नहीं। यूं तो वैभव ने पूरे आईपीएल के दौरान अतुल्य बल्लेबाजी की है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को खेली गई उनकी एक अदद पारी क्रिस गेल, डेविड वार्नर, रिली रूसो, शुभमन गिल और सुरेश रैना जैसे दिग्गजों की कई कई पारियों पर भारी पड़ गई है। वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की धमाकेदार पारी में 12 छक्के लगाए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वैभव ने आईपीएल 2026 सीजन में 65 छक्के पूरे कर लिए हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 सिक्सर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। गेल ने आईपीएल 2012 में कुल 59 छक्के लगाए थे। वैभव के इस रिकॉर्ड के भीतर भी एक रिकॉर्ड छिपा हुआ है। गेल ने 59 सिक्सर के लिए 456 गेंदें खेली थी, जबकि वैभव ने सिर्फ 280 गेंदों पर 65 छक्के अपने नाम कर लिए हैं। 280 गेंदों पर 65 छक्कों का मतलब ये हुआ कि कमोबेश हर चौथी गेंद पर सिक्सर। ये रिकॉर्ड तो गेंदबाजों के लिए डरावने सपने की तरह है।
3: Young man is something else. He can hit the best of fast bowlers, the best of slow bowlers into the crowd. His sixes are generally into the crowd. His sixes are not those that just pop over that boundary rope. And he just makes it look so ridiculously easy.
1: महज 15 साल के वैभव जिस तरह कीर्तिमान पर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि भविष्य में बल्लेबाजी के सारे रिकॉर्ड्स ब्लैक एंड व्हाइट में इनके नाम ही दर्ज मिलेंगे। 27 मई को एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने एचआरएस के खिलाफ सिर्फ 16 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। आईपीएल के नौ

0: इससे पहले साल 2022 में T20 ब्लास्ट में रिली रूसो ने 192 के स्ट्राइक रेट से 623 रन बनाए थे। वैभव की इस एक पारी में बने रिकॉर्ड्स की फेहरिस्त यही खत्म नहीं होती। 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव के कुल 12 में से 8 छक्के पावर प्ले में ही आ गए थे। दिलचस्प तो ये है कि इससे पहले पावर प्ले में सबसे ज्यादा 7 छक्कों का कीर्तिमान भी हिंदुस्तान के इस वैभवशाली खिलाड़ी के नाम ही दर्ज था। वैभव अब IPL में 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियां खेल चुके हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। पर कमाल यह है कि वैभव की 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियों में से 3 IPL के मौजूदा सीजन में ही आई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की अपनी पारी में वैभव ने एक और अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। IPL के इतिहास में 90 प्लस रनों की सभी पारियों में वैभव की पारी सबसे तेज स्ट्राइक रेट वाली पारी बन गई है। वैभव ने 334.48 की स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए। इससे पहले ये रिकॉर्ड रजत पाटीदार के नाम था, जिन्होंने इसी सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 281.81 की स्ट्राइक रेट से 33 गेंदों पर 93 रन बनाए थे। आपको बता दें कि 27 मई वाली पारी को लेकर वैभव IPL 2026 सीजन में सिर्फ पावर प्ले के दौरान 490 रन बना चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड डेविड वार्नर के नाम था, जिन्होंने साल 2016 में पावर प्ले के दौरान 467 रन बनाए थे। ये सारे रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं 15 साल के एक टीनेजर के नाम। सोचिए, 15 साल का ये बच्चा इसी उम्र में अगर क्रिस गेल, डेविड वार्नर, किरोन पोलार्ड और शुमन गिल जैसे महारथियों के रिकॉर्ड्स की कब्रगाह बना चुका है, तो आगे तो वैभव के नाम से ही कीर्तिमान की एक किताब छापनी पड़ जाएगी।
1: बैट्समैन बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में अगर वो अपनी फिटनेस अच्छी मेंटेन करता है तो फिर आने वाला वो फ्यूचर स्टार है इंडिया का।
2: वैभव सूर्यवंशी, उसकी भी बैटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया खेलता है,
3: बहुत बढ़िया,
2: बहुत नेक्स्ट लेवल बैटिंग है। हम उसकी बैटिंग को नहीं कह सकते, उसकी अब अपनी अलग क्लास है।
4: करदा उड़ा दिया वैभव सूर्यवंशी ने,
5: लटकाड़ दिया।
0: ऐसा नहीं है कि वैभव का बल्ला सिर्फ IPL में ही चला है। इससे पहले भी बिहार के समस्तीपुर का ये लाल ऐसी ऐसी अद्भुत पारियां खेल चुका है कि क्रिकेट के इतिहास में उसकी कोई सानी देखने को नहीं मिलती। इसी साल 6 फरवरी को जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में वैभव ने जो पारी खेली थी, उसे अंडर-19 वर्ल्ड कप के 38 साल के इतिहास की सबसे महान पारी कहा जा रहा है। सबसे महान पारी क्यों कहा जा रहा है, स्टैट देखने से इसका जवाब मिल जाएगा। वैभव ने महज 80 गेंदों पर 175 रन ठोक दिए। वैभव ने इस पारी में 15 छक्के और 15 चौके लगाए, यानी 150 रन सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए अपने खाते में जोड़ लिए। 55 गेंदों पर शतक पूरा किया, बाद के 75 रन सिर्फ 25 गेंदों पर ठोक दिए। महज 71 गेंदों पर 150 रन पूरे कर लिए, जो यूथ वनडे इतिहास का सबसे तेज 150 है। इतना ही नहीं, वैभव ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में कुल 30 छक्के लगाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस के नाम था, जिन्होंने 2022 के अंडर-19 वर्ल्ड कप में 18 छक्के लगाए थे। पूरे टूर्नामेंट में वैभव 439 रन के साथ सेकेंड टॉप स्कोरर भी रहे। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहने के साथ वैभव ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। अंडर-19 वर्ल्ड कप से ठीक पहले अंडर-19 एशिया कप में 12 दिसंबर 2025 को UAE के खिलाफ वैभव ने 95 गेंदों पर 171 रन कूटकर विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए थे। इस आतिशी पारी में वैभव ने 9 चौके और 14 छक्के लगाए थे। कहने की जरूरत नहीं कि सबसे तेज और सबसे कम उम्र से जुड़े रिकॉर्ड्स के सरताज बन चुके हैं वैभव। 24 दिसंबर 2025 को रांची के JSCA ओवल ग्राउंड में वैभव ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि कई विश्व कीर्तिमान ध्वस्त हो गए। विजय

0: जा रहे ट्रॉफी में अरुणाचल के खिलाफ हुए मुकाबले में वैभव ने सिर्फ 84 गेंदों पर 15 छक्कों और 16 चौकों की मदद से 190 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी थी। इस मैच में सिर्फ 59 गेंदों पर 150 रन पूरे कर वैभव ने लिस्ट ए मैच में फास्टेस्ट 150 का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के नाम था, जिन्होंने साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 64 बॉल पर 150 रन बनाए थे। तूफान थोड़ी देर के लिए हो तो राहत, नहीं तो कहर बन जाता है। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के मैदान के टिक कर रहने वाले तूफान नहीं बल्कि बवंडर हैं, इसीलिए विरोधियों के लिए कहर नहीं बल्कि महाकहर बन रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैभव 13 साल की उम्र में एक मैच में ट्रिपल सेंचुरी भी लगा चुके हैं। रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में वैभव ने 332 रनों की नाबाद पारी खेली थी। अभी तो ये यूथ इंडिया की रहनुमाई कर रहे हैं, इंतजार कीजिए इनके टीम इंडिया में शामिल होने का। इसकी पूरी संभावना है कि साल 2027 के वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए ओपनिंग करेंगे और बहुत संभव है कि भारत तब वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक लगाएगा।
1: 15 साल के वैभव की कामयाबी क्रिकेट के बड़े बड़े धुरंधरों को भी हैरान करने लगी है। आईपीएल में अपने से दोगुने ढाई गुने उम्र के घातक गेंदबाजों को भी वो न सिर्फ सहजता से खेल रहे हैं बल्कि कायदे से धुलाई भी कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इतनी छोटी उम्र में ही वैभव इतने दिग्गज बल्लेबाज कैसे बन गए। दरअसल इसके पीछे कहानी है एक अधूरे सपने की, जो कभी वैभव के पिता ने देखा था। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन हालात की दुश्वारियों की वजह से उनका ये सपना अधूरा रह गया। पर अपने उसी अधूरे सपने को संजीव ने अपने बेटे वैभव के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया। वैभव के क्रिकेटर बनने की पूरी कहानी आपके दिल को छू लेगी।
0: सर पर कामयाबी के ताज के साथ मन में विनम्रता का संस्कार हिंदुस्तान की संस्कृति का सनातन हिस्सा है। मैच 15 की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी का बेनजीर परचम लहरा चुके वैभव सूर्यवंशी सनातन संस्कार के युगीन संवाहक हैं। जिस मैच में वैभव ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी, उसके प्री मैच शो के दौरान जब उन्होंने सुनील गावस्कर और संजय बांगर को देखा तो दौड़कर उनके पास गए और पूरी विनम्रता के साथ उनके पैर छू लिए। वैभव के संस्कार की निश्चल सादगी देखिए कि गावस्कर और बांगर के साथ मौजूद प्रेजेंटर जतिन सप्रू के भी पैर छूने की उन्होंने पूरी कोशिश की। ये अलग बात है कि जतिन पीछे हट गए।
2: हमारी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है कि हम अपने जो बुजुर्ग है, सीनियर्स है, एल्डर्स है, उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, और वही उन्होंने किया। सिर्फ मेरे पास ही नहीं आए थे वो, बस मेरे बाजू में संजय बांगर थे और जतिन सप्रू थे, उनके पास भी आए थे और मुझसे थोड़ा सा रुक कर मुझसे कुछ अपेक्षा कर रहे थे कि मैं कुछ उनको बोलूं, शायद अपेक्षा कर रहे थे, मैं ये नहीं कहूंगा, तो शायद अपेक्षा कर रहे थे। तो मैंने उनको सिर्फ यही कहा, लगे रहो, क्योंकि जब वो लगे रहेंगे तो फिर वो बल्ला, मतलब बल्ला लगता रहेगा और छक्के भी लगते रहेंगे।
0: उम्र के लिहाज से वैभव की बेनजीर कामयाबी इस बात की मुनादी कर रही है कि आने वाले वक्त में कीर्तिमान की किताब के हर सफहे पर बिहार के इस लाल का नाम दर्ज मिलेगा। पर वैभव नाम के इस प्रदीप्त दिए की रोशनी से सराबोर होने वाले लोगों को उस तेल और बाती के बारे में भी जानना चाहिए जो खुद गुमनाम रहकर अपने दिए को जगमग कर रहा है। वैभव की इस बेनजीर कामयाबी के पीछे हाथ है उनके पिता संजीव सूर्यवंशी का, जो कभी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का ख्वाब सजोए हुए थे, पर खुद की जो हसरत अधूरी रह गई उसे उन्होंने अपने लाल में प्रत्यारोपित कर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक पिता के अनोखे त्याग की खामोश सदाएं समस्तीपुर जिले के जर्रे जर्रे में जज्ब है।
3: वास्तव में एक पिता का जो त्याग था, तपस्या था, जिद था कि हमको किसी भी तरह जो मैं हासिल नहीं कर सका वो मैं अपने बच्चे को उस मुकाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। वो एकाकी भी देखा कि लोगों से मिलना तक लोगों में, क्योंकि जुनून सवार था कि मैं अपने बेटे को उस मुकाम तक पहुंचाऊं, तो लोगों से मिलना भी बंद किया। उस बीच में कई ऐसी मुसीबतें भी आईं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया।
4: पांच साल के बच्चे को पढ़ाई से दूर कर क्रिकेट के मैदान में पसीना बहाने के लिए खड़ा कर देना किसी भी पिता के लिए आसान फैसला नहीं होगा। पर संजीव सूर्यवंशी ने कलेजे पर पत्थर रख कर ये फैसला लिया। समस्तीपुर जिले की ताजपुर पंचायत में जहां क्रिकेट का कोई नामलेवा नहीं था, वहां पांच साल के बेटे की प्रैक्टिस के लिए सारी व्यवस्था कर दी। यहां तक कि कुछ हम उम्र और बड़े बच्चों को भी चॉकलेट मिठाई का प्रलोभन देकर साथ जोड़ लिया ताकि वे बॉलिंग करें और वैभव लगातार बैटिंग की प्रैक्टिस करता रहे। पांच साल से सात साल यानी दो साल तक गांव में ही वैभव को दिन रात प्रैक्टिस कराने के बाद एक दिन संजीव सूर्यवंशी को इल्हाम हो गया कि अब अगले लेवल की प्रैक्टिस का वक्त आ गया है, लिहाजा बेटे को लेकर निकल गए ताजपुर से 12 किलोमीटर दूर स्थित पटेल मैदान में, जहां ब्रजेश झा क्रिकेट एकेडमी चलाते थे। क्रिकेटर बनाने का जुनून ऐसा था कि संजीव सूर्यवंशी को जब लगा कि रोजी रोटी के लिए चलने वाला बिजनेस व्यवधान बन रहा है तो बगैर देरी के उसे बंद कर दिया।
5: गार्डियनों का उनका सपोर्ट रहा है कि अपने बच्चे को इतना ज्यादा टाइम किल करते थे, अपने साथ लाना ले जाना, बच्चों के साथ अपना बिजनेस छोड़ के बच्चे के प्रति इतना एक फोकस, गार्जियन का भी कहीं ना कहीं टारगेट था कि हमारा बच्चा ऊपर खेले, और भगवान की दुआ से बच्चा वो मुकाम पर हासिल किया।
4: इसमें कोई संदेह नहीं कि 7-8 साल की छोटी उम्र में ही वैभव अपने पिता की उम्मीदों की कसौटी पर लगातार खरे उतर रहे थे। जब तक सूर्य की रोशनी धरा पर मौजूद रहती, वैभव बल्ले को दामन से दूर नहीं होने देते। पिता और माँ को छोड़कर घर के बाकी सदस्यों को वैभव की आदत कई बार नागवार गुजरती थी। दादी ने तो कई मौकों पर ऊब कर वैभव की पिटाई भी कर दी थी, पर बचपन में वैभव की पिटाई के वो वाकये आज दादी के लिए सुनहरी यादें बन चुकी हैं।
6: डांटते थे,
7: अच्छा,
6: अभी कभी उसको मारते थे, दौड़ते थे उस पर, फिर भी कहता था नहीं दादी हमको अच्छा लगता है, हम खेलेंगे। हम कहे ठीक है बाबू तब खेलो। धीरे धीरे जब दल सिंह सराय गया, बेनी पट्टी, उसके बाद आपको क्या कहते हैं बेगूसराय, जब हम देखते गए कि यह अच्छा खेल में उतर रहा, तब से मेरा भी मनोबल और मन ये हुआ कि हाँ यह खेले।
4: बचपन में वैभव की बैटिंग की खटखट से ऊब जाने वाली दादी का हृदय आज इस बात को जानकर गदगद है कि उनका पौत्र क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़कर आईपीएल के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाला खिलाड़ी बन गया है। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि वैभव को पटना के जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में डालने के लिए संजीव सूर्यवंशी को जमीन तक बेचनी पड़ी थी? दरअसल संजीव सूर्यवंशी को जब ये लगने लगा कि उनका बेटा समस्तीपुर स्थित पटेल मैदान के स्टैंडर्ड से आगे निकल चुका है, तो पटना में जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन कराने का फैसला किया। एकेडमी की फीस और उसके बाद समस्तीपुर से हर रोज पटना आना जाना कॉस्टली अफेयर था, इसीलिए संजीव सूर्यवंशी बेटे वैभव को लेकर हर अल्टरनेट डे पर पटना जाने लगे। जेनेक्स एकेडमी चलाने वाले पूर्व रणजी खिलाड़ी मनीष ओझा भी वैभव के पिता के त्याग और तपस्या को याद कर भावुक हो जाते हैं।
8: माँ का रोल रहता था बच्चे को तैयार करने से लेके उसको, और जब इधर से थक के जाता था तो उसको फिर रिकवरी में, चाहे वो खाने के सेंस में हो, उसको प्यार के सेंस में हो, उसको रेस्ट के सेंस में हो, और पिता का त्याग इस सेंस में था कि अर्ली सारे बोझ को वो अपने कंधे पर उठा रहे थे, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और फिर भी वो जो वो अपने हैसियत से ज़्यादा बढ़ के उन्होंने उस बच्चे के लिए किया और हर एक वो सुविधा उस बच्चे के लिए उन्होंने अरेंज किया खेल के प्रति कि वो आज इस मुकाम को प्राप्त कर सके।
4: पिता ने अपनी हैसियत की हदों को पार कर वैभव के लिए जमीन तैयार की और वैभव ने भी पिता के इस त्याग की कीमत को शिद्दत से महसूस करते हुए मैदान पर पसीना बहाने में कोई कोताही नहीं की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था और वैभव को पटना ले जाना ले आना संभव नहीं रहा तो संजीव सूर्यवंशी ने अपने ताजपुर स्थित घर के बाहर ही नेट प्रैक्टिस के लिए पिच बनवा दी ताकि वैभव की प्रैक्टिस खंडित ना हो।
5: लॉकडाउन में एक्चुअली पूरा बिहार बंद था तो यहाँ पे पिच का जनरेट किया गया भैया के द्वारा और टर्बिकेट और सीमेंटेड लॉकडाउन में लोग घर से नहीं निकल रहे थे, उस वक्त में भी इसका प्रैक्टिस सेशन लगातार यहाँ पे चलता रहा।
4: बेटे को क्रिकेटर बनाने का ये जुनून अपने आप में अनूठा है, इसका नतीजा सबके सामने है। आज वैभव के बल्ले से बनने वाले विश्व रिकॉर्ड्स संजीव सूर्यवंशी की दुनिया को रंगीन सपनों से भी ज्यादा सुहावन बना रहे हैं। वैभव की विराट बुलंदी का आलम यह है कि पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट पर संजीव सूर्यवंशी और उनकी पत्नी से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। देश का गौरव बन चुके तेजस्वी पुत्र का पिता होने के लिए बधाई देते हैं। पिता ने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए त्याग तपस्या की तो बेटा भी दो कदम आगे बढ़कर अपनी विराट उपलब्धियों से हक अदायगी कर रहा है। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उसके 14 साल के बेटे को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2025 को वैभव को राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। साफ है कि पिता के संकल्प और बेटे की जीतोड़ मेहनत का पावन संगम क्रिकेट के मैदान पर चमत्कारिक धारा बनकर नमूदार हो रही है।
1: तो बंदे में है दम में आज आपने वैभव सूर्यवंशी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
10: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: कुछ दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
13: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य
1: कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम। मौसम खराब होने पर यात्रा पर लगा था अल्पविराम। बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक 7.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई। बर्फबारी के बीच श्री हेमकुंड साहिब में भी आस्था भारी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में लगा भक्तों का तांता। पूजा अर्चना के साथ हर रविवार को होते हैं धार्मिक अनुष्ठान। दान पुण्य के साथ भक्तों के लिए भंडारे का इंतजाम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी

0: हकीकत में बेस्ट, तकनीक में श्रेष्ठ, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार, हिंदुस्तान बना रहा है स्वदेशी हथियार।
1: जो देश अपने हथियार खुद बनाता है वही देश अपनी तकदीर भी खुद लिखता है।
0: आज भारत तोप की गोली से लेकर मिसाइल तक और फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक सब कुछ खुद ही तैयार कर रहा है। एक वक्त था जब भारत अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे भारत ने अपनी ताकत को समझा, उसे जाना और खुद आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची। आज रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो अपने यहाँ ही बना रहा है। कई देशों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत ही भारत ने अपने यहाँ ही कई रक्षा उपकरणों को बनाना शुरू किया है। नतीजा ये है कि आज की डेट में भारत न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि दूसरे देशों का निर्यातक भी बन रहा है। डिफेंस सेक्टर में दिनों दिन भारत की तेज होती धमक ये बताने के लिए काफी है कि रक्षा क्षेत्र में आने वाला वक्त हमारा होगा।
1: अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
0: हर दिन नए हथियारों की चमक दुश्मनों को भयभीत कर रही है। भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जो दुश्मन की नापाक हरकतों का माकूल जवाब दे सके।
1: आज के युद्धों में स्पीड और प्रिसीजन, सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ड्रोन, ऑटोमेटेड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो सिस्टम्स हैं दुश्मन पर ज्यादा सटीक हमला कर सकते हैं और अपने सैनिकों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। साथियों, इसका एक और लाभ सीमा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वह बहुत ही कठिन है, जटिल है, टफ है। हर जगह सैनिकों की तैनाती करना यह कोई आसान काम नहीं होता, मैं प्रत्यक्ष से महसूस कर रहा हूं। और ऐसे में ऑटोमेटेड निगरानी सिस्टम, रोबोटिक वाहन और सेंसर दिन रात सीमा की निगरानी कर सकते हैं, ऐसा सभी अब स्वीकार करने लगे हैं। इससे सुरक्षा भी बढ़ती है और कठिन परिस्थितियों में जो हमारे सैनिक तैनात होते हैं उन पर दबाव भी कम रहता है।
0: म्यूनिशन और ऑटोमेटेड सिस्टम में भारत अगुआ बनकर उभरे, इसके लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है।
1: भविष्य के युद्धों में सबसे बड़ा अंतर इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपके पास सैनिकों की संख्या कितनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका देश म्यूनिशन और ऑटोमेशन की दृष्टि से कितना एडवांस है और कितना कैपेबल है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सिर्फ युद्ध की आवश्यकता नहीं बल्कि शांति, विकास और आर्थिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। रक्षा क्षेत्र में यदि हम अभी तक दूसरों पर निर्भर रहते तो यकीन मानिए इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारे डिफेंस सेक्टर और हमारे फाइनेंस सेक्टर को होता। लेकिन अब क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची, खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में, तो यही वजह है कि खासतौर पर तकनीक के मामले में और रक्षा तकनीक के मामले में आज भारत अपने पैरों पर खड़ा है। 23 मई को महाराष्ट्र के शिरडी में एक बेहद आधुनिक गोला बारूद निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया जिसमें सालाना 5,00,000 आर्टिलरी शेल्स तैयार किए जाएंगे। साथ ही भारत के पहले 300 किलोमीटर वाले सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम को भी हरी झंडी दिखाई गई। सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दो रेंज वेरिएंट्स में डिजाइन किया गया है। पहला वेरिएंट 150 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों तक हमला कर सकता है और दूसरा लंबी दूरी वाला वेरिएंट 300 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकता है। भारतीय सेना ने सूर्यास्त की खरीद का ऑर्डर भी दे दिया है।
2: सूर्यास्त भारत की सेनाओं को एक ऐसा जबरदस्त वेपन और फोर्स मल्टीप्लायर मिलने वाला है जो वाकई में दुश्मन की कमर तोड़ने में एक कामयाब होगा, क्योंकि इसका पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की क्षमता है कि 5 मीटर के अंदर लिखा हो लेकिन 2 मीटर के रिजल्ट दिए गए 300 किलोमीटर दूर। आप समझिए कि जब वो हमला करने में सक्षम है दुनिया के कमांड सेंटर पर जहाँ पर उनके शीर्ष अधिकारी बैठे होते हैं, प्लानिंग चल रही है, वहाँ पर हमले के पहले हमारा हमला होता है, उनकी सारी प्लानिंग ध्वस्त हो जाती है। कम्युनिकेशन सिस्टम पर जहाँ से बातचीत होती है उसको ख़त्म कर दें, रडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, लॉजिस्टिक बेस जहाँ से उनके हथियारों का भंडारण है, अम्यूनिशन का भंडारण है, तेल है, पिन पॉइंट हमला करने में सक्षम है।
0: सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम में प्रिसिजन गाइडेड रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये पारंपरिक हथियारों की तरह इधर उधर नहीं गिरते बल्कि बिल्कुल उसी जगह पर प्रहार करते हैं जहां इन्हें भेजा गया, यानी निशाना एकदम अचूक। सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में 150 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट का सीईपी यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल महज 1.5 मीटर है, वहीं 300 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट का सीईपी 2 मीटर है। इसका मतलब ये है कि रॉकेट अपने टारगेट से औसतन 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर गिरता है, जो युद्ध में बहुत बड़ी ताकत है।
2: सूर्यास्त्र देखा जाए तो एक टेक्नोलॉजी का बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है। इससे 122 mm, 306 mm, 370 mm के रॉकेट फायर किए जा सकते हैं, साथ साथ में कामिकाजी ड्रोन भी फायर किया जा सकता है। 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी और तकरीबन 5 मीटर कहा जाता है, लेकिन इससे बेहतर रिजल्ट्स इसके मिले हैं 2 मीटर का सर्कुलर एरर पे, यानी कि 2 मीटर के अंदर अंदर ये फायर करने में सक्षम है। ये इसका प्रिसीजन है, ये इसकी एक्यूरेसी है। क्या फ़ायदा होगा इसका? यह होगा कि दुश्मन के कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक बेस, उनकी गन पोजीशन, एडी सिस्टम, रडार स्टेशन और जहाँ पे उनकी रॉकेट सिस्टम है, जहाँ सब पर भी उनका जो एक स्ट्रेटजिक टारगेट्स हैं उनको हम पिन पॉइंट हमला करने में ये सक्षम है।
0: भारतीय सेना को अब लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाले रॉकेट्स मिलेंगे, जिससे दुश्मन के ठिकानों जैसे कि आर्टिलरी पोजीशंस, कमांड सेंटर्स और दूसरे अहम टारगेट्स को सुरक्षित दूरी से तबाह किया जा सकेगा।

सूर्यास्त की सबसे बड़ी ताकत है इसकी मल्टी बैरल क्षमता, जिसमें अलग अलग तकनीक के हथियार एक साथ लगाए जा सकते हैं और दागे भी जा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि निशाना भी सटीक और लॉजिस्टिक का खर्च भी बहुत कम। सूर्यास्त के अलग अलग पॉड्स को मिशन के हिसाब से बदला जा सकता है। 370 mm कैलिबर की प्रेडेटर हॉक गाइडेड रॉकेट सूर्यास्त सिस्टम का सबसे घातक हथियार है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। सूर्यास्त सिस्टम का एक और घातक हथियार है एक्स्ट्रा रॉकेट। 306 mm कैलिबर का ये गाइडेड रॉकेट 150 किलोमीटर तक दुश्मन के बंकरों और कमांड सेंटर्स को तबाह कर सकता है। सूर्यास्त सिस्टम से 122 mm और 160 mm कैलिबर के बेहद किफायती एक्यूलर रॉकेट्स दागे जा सकते हैं, जो 40 से 100 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। सूर्यास्त सिस्टम से स्काई स्ट्राइकर लॉयटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन भी दागे जा सकते हैं, जो हवा में रहकर दुश्मन की खोज करते हैं और सटीक हमला करते हैं। सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से दागी जाने वाली प्रेडेटर हॉक रॉकेट्स में GPS INS सेंसर फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये तकनीक प्रेडेटर हॉक रॉकेट को बिना किसी भारी मदद के बेहद खराब मौसम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के बीच भी सटीक निशाना लगाने की क्षमता देती है।

0: देखा जाए तो प्रेडेटर हॉक सूर्य अस्त्र का सबसे खतरनाक रॉकेट है। 300 किलोमीटर तक जाता है, 370 mm है और 140 से 200 किलोग्राम तक का ये एक्सप्लोसिव ले जा सकता है और छत के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर, बंकर्स के ऊपर बहुत इफेक्टिव है। तोड़ के अंदर तक उनको तहस नहस कर सकता है। सेल्फ गाइडेंस है, गाइडेंस बड़ी अच्छी है और पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है, जैसा कि 5 मीटर का बताया जाता है, लेकिन 2 मीटर की हमको इसमें एक्यूरेसी मिली है। और शूट एंड स्कूट का इसका फैसिलिटी है कि फायर करे उसके बाद जगह बदली कर सकता है।
1: हॉक रॉकेट सुपरसोनिक स्पीड से हमला करने में सक्षम है, जबकि ये 140 किलोग्राम का भारी वॉरहेड लेकर अपने टारगेट से टकराता है तो भारी मात्रा में काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। इस ऊर्जा के कारण बिना विस्फोट हुए भी ये रॉकेट सिर्फ अपनी रफ्तार और वजन के दम पर कंक्रीट की कई फीट मोटी दीवारों को मलबे में तब्दील कर सकता है। सूर्यास्त्र की सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक पारंपरिक क्रूज और एक बैलिस्टिक मिसाइल के 15% खर्चे से भी सस्ता है, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि युद्ध के क्षेत्र में हमें भारी भरकम खर्च उठाने की जरूरत नहीं है। हम मल्टीपल रॉकेट्स दुश्मन पर दाग सकते हैं। आधुनिक युद्ध में आर्टिलरी की भूमिका निर्णायक होती है और सूर्यास्त्र शूट एंड स्कूट क्षमता के साथ दुश्मन के काउंटर अटैक से बचते हुए तेज हमला करने में सक्षम है। इसमें हाई मोबिलिटी व्हीकल भी लगाया गया है, जिससे ये बहुत तेजी से जगह बदल सकता है। सूर्यास्त्र को 6x6 भारी ट्रकों पर माउंट किया गया है। हमला करने के बाद ये सिस्टम फौरन अपना लोकेशन बदलने में सक्षम है, जिससे दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना और निशाना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। जानते हैं कि भारत सरकार ने किस तरह के चेंजेस किए हैं, जिस वजह से 5000 तरह के उपकरण भारत में ही बनाए जा रहे हैं। दरअसल अभी अगर बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट पार्टनरशिप 20-30% है, जिसे बढ़ाकर सरकार 50% तक करना चाह रही है। इसको लेकर विचार हो रहा है। मोदी सरकार ने FDI, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जैसे बड़े सुधार किए हैं। सूर्यास्त्र भारत की आर्टिलरी ताकत में काफी इजाफा करेगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के पास जो पिनाका मौजूद है उसमें और सूर्यास्त्र में क्या अंतर है? तो सबसे पहले दोनों रॉकेट सिस्टम की ताकत और खासियत जान लीजिए। सिस्टम की बात करें तो पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्च है, जो सिर्फ रॉकेट लॉन्चिंग के लिए ही है। सूर्यास्त्र यूनिवर्सल लॉन्चर है, जो रॉकेट और मिसाइल दोनों दाग सकता है। पिनाका में कैलिबर फिक्स है और इसे सिर्फ 214 mm रॉकेट से ही दागा जा सकता है। सूर्यास्त्र मल्टी कैलिबर है, जो 122 mm, 306 mm, 370 mm के वेपन्स दाग सकता है। रेंज की बात की जाए तो पिनाका MK1 40 किलोमीटर और पिनाका एक्सटेंडेड रेंज 75 से 90 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। वहीं सूर्यास्त्र की रेंज 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर है। पॉड रीलोड सिस्टम की बात करें तो पिनाका के रीलोडिंग में करीब 4-5 मिनट का समय लगता है। वहीं सूर्यास्त्र में जो पॉड सिस्टम लगा है उसे रीलोड करने में 10 मिनट का वक्त लगता है।
0: पिनाका और सूर्यास्त्र में फर्क ये है कि पिनाका में एक साथ बहुत सारे रॉकेट फायर होते हैं, 6-6 रॉकेट यानी 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ गिरते हैं एक इलाके में, और वो एक एरिया वेपन के तौर पे, यानी कि 214 mm के रॉकेट हैं, एक ही कैलिबर के होंगे और वो एक जगह जाके पूरे इलाके को सैचुरेट कर देंगे, भस्म कर देंगे। जबकि सूर्यास्त्र में अलग अलग कैलिबर के रॉकेट फायर हो सकते हैं, 122 mm, 306 mm या 370 mm, 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज होती है। और ये फर्क ये कि पिन पॉइंट अटैक करता ही है, एक रॉकेट जाएगा वहाँ पिन पॉइंट हमला करेगा, तो दोनों के टारगेट अलग हैं।
1: भारतीय सेना सूर्यास्त्र सिस्टम को उसकी 300 किलोमीटर की लंबी रेंज और डीप स्ट्राइक क्षमता के कारण LAC और LOC के अत्यंत संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात कर सकती है। इसका मेन मकसद चीन और पाकिस्तान की सेना के रसद आपूर्ति करने वाले रास्तों, एयरबेस और कमांड सेंटर्स को अपने तोपखाने की जद में लाना है। रॉकेट का ताकतवर होना कई मायनों में सेना की युद्ध क्षमता तो नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा, जो काम फाइटर जेट किया करते थे और जिन कामों में मिसाइल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, उसी काम को अब सूर्यास्त्र जैसा सिस्टम आसानी से कर देगा। पारंपरिक तौर पर अगर देखा जाए तो अगर दुश्मन 300 किलोमीटर दूरी पर बैठा है तो भारत को अपने लड़ाकू विमानों को मैदान में उतारना पड़ता है, लेकिन सूर्यास्त के आने के बाद न तो हम अपने पायलट्स की जान जोखिम में डालेंगे और न ही दुश्मन की सरहद में जाने की जरूरत होगी, बल्कि भारत अपनी सरहद पर ही बैठे दुश्मन का काम तमाम कर सकता है।
2: पहले सीमा से 150 से 300 किलोमीटर दूरी पर मौजूद दुश्मन के कमांड सेंटर, रडार या रसद डिपो को तबाह करने के लिए वायुसेना के सुखोई विमानों को उड़ान भरनी पड़ती थी। वहीं अब इस काम को जमीन पर तैनात आर्मी के सूर्यास्त रेजिमेंट अपने प्रेडेटर हॉक रॉकेट से मिनटों में पूरा कर पाएंगे। इससे महंगे लड़ाकू विमानों और जांबाज पायलटों को दुश्मन के हवाई क्षेत्र में भेजने का जोखिम भी काफी हद तक कम हो जाएगा।
1: सूर्यास्त की तैनाती पारंपरिक तौर पर सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस मिसाइल के वर्कलोड को काफी हद तक कम कर देगी। अब वो किस तरीके से, वो भी आपको समझाते हैं। सीधी सी बात है कि 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को अगर निशाने पर लाना हो तो उसके लिए सूर्यास्त ही काफी होगा। यानी अगर देखा जाए तो रण क्षेत्र में सूर्यास्त सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की जगह ले सकता है।
2: सूर्यास्त 300 किलोमीटर की दूरी तक ब्रह्मोस जैसी अचूक सटीकता प्रदान करता है, इसीलिए सामान्य और कम सुरक्षा वाले लक्ष्यों जैसे कि आतंकी कैंप, रसद डिपो के लिए ब्रह्मोस को बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। ये काम सूर्यास्त आसानी से कर देगा। ब्रह्मोस मिसाइल को अब सिर्फ अति संवेदनशील और अत्यधिक बख्तरबंद जैसे दुश्मन के युद्धपोत या परमाणु बंकर जैसे लक्ष्यों के लिए सुरक्षित रखा जा सकेगा। ब्रह्मोस ले जाने वाले सुखोई 30 MKI विमानों का वजन और रखरखाव का दबाव कम होने से वायुसेना इन विमानों का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में कर पाएगी। सूर्यास्त वायुसेना का विकल्प नहीं बल्कि ये थल सेना को आत्मनिर्भर बनाकर वायुसेना की कीमती हथियारों और विमानों को बड़े और अधिक रणनीतिक युद्धों के लिए रीस्टॉक करने का मौका देता है।
0: ब्रह्मोस जैसा महंगा मिसाइल एक स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि तो थोड़े कम इम्पोर्टेंट टारगेट है, वहाँ पर सूर्यास्त का इस्तेमाल किया जा सकता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है। और तीसरी बात यह कि सुखोई को भी बचत होगी, एयरफोर्स को जो 300 किलोमीटर दूर टारगेट होते थे उनके लिए हवा में जाके मिसाइल फायर करनी पड़ती थी, वो बच जाएगा। आप जमीन से फायर करोगे उनके टारगेट को बर्बाद कर दोगे, यानी कि हम अपने जो एयरक्राफ्ट हैं सुखोई है इनको एक्सपोज नहीं करेंगे, उनका इस्तेमाल और स्ट्रेटजिक टारगेट के लिए और बड़े टारगेट्स के लिए किया जा सकता है। तो यानी कि फोर्स मल्टीप्लायर है कि वो हथियार बने रहेंगे, वो अपने टारगेट्स करेंगे, बाकी टारगेट्स को सूर्यास्त एंगेज करेगा, अपनी जमीन पर रहते रहते दुश्मन को नेस्ता नाबूद करेगा।
1: आज देश में सिर्फ हथियार ही नहीं बनाए जा रहे बल्कि यहाँ उस भरोसे को भी मजबूत किया जा रहा है जिसके दम पर सेना वीरता का नया इतिहास लिख रही है।

0: अब हम सिर्फ टैंक, तोप, मिसाइल या फाइटर जेट्स ही नहीं बनाते, हम बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत, जिसका सर्वोच्च संकल्प है राष्ट्र रक्षा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहली बार आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना।
1: भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा।
0: रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा और विदेश से हथियार और उपकरण के आयात को कम कर भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड मिशन पर आगे बढ़ रहा है।

0: हिंदुस्तान अब अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं, भारत में ही तरह तरह की मिसाइलें, फाइटर जेट्स और यहाँ तक कि छोटे कलपुर्जे तक बनाए जा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत रक्षा के क्षेत्र में खुद स्टैंड कर चुका है और ये दुनिया भी भारत का लोहा मान रही है। भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में लंबी छलांग लगाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले 5 साल में रक्षा उत्पादन में 90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2023 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 1,50,590 करोड़ को पार कर गया है। यानी कि भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 18% की छलांग लगाई है। साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था। यानी साल 2019-20 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 90% की बढ़त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी शक्ति बनाने के लिए शुरू की गई योजना मेक इन इंडिया ने जिस क्षेत्र में सबसे अधिक छाप छोड़ी है वो है रक्षा।
1: भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा।
0: ये मेक इन इंडिया मिशन की वो तैयारी है जिसमें हर स्क्रू, हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर भारत का है और भारत के लिए है। स्क्रू से लेकर सिस्टम और सॉफ्टवेयर तक भारत आज की तारीख में ये सब कुछ अपने आप बना रहा है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि भारत ये सब कुछ न सिर्फ अपने लिए बना रहा है बल्कि 80 से ज्यादा देशों को दे भी रहा है। और ये तमाम वो देश हैं जो रक्षा के मामले में भारत पर भरोसा करते हैं। सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, जिसके तहत मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू हो गया। लेकिन एक वक्त था जब 65-70% रक्षा सामग्री आयात की जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 35% सामान ही आयात होता है। इसका मुख्य कारण भारत की अपनी रक्षा प्रणालियों को डिजाइन और विकसित करने की बढ़ती क्षमता है। भारत सरकार की तरफ से पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट तैयार की गई है, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि स्वदेशीकरण को ज्यादा बढ़ावा देना। यानी खास तौर पर रक्षा के क्षेत्र में हम किसी दूसरे मुल्क पर निर्भर न रहें, छोटे से कलपुर्जे से लेकर बड़ी से बड़ी मिसाइल तक बनाने में भारत खुद अपनी धरती का और यहाँ के साजो सामान का ही इस्तेमाल करे। अब तक रक्षा मंत्रालय ऐसी 5 लिस्ट जारी कर चुका है और इसमें तकरीबन 5,000 आइटम्स के आयात पर पाबंदी लगाई गई थी। ये सभी डिफेंस, पीएसयू और निजी स्वदेशी कंपनियों से खरीदे जा रहे हैं। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट 4,666 आइटम्स की 5 लिस्ट जारी की गई है, जिन्हें सिर्फ स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा। नेगेटिव लिस्ट, इसमें 310 उपकरणों जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, तोप के आयात पर 2020 से 27 तक रोक लगाई गई है। डैप 2020 यानी कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में खरीद को प्राथमिकता दी गई, यानी कि स्वदेशी डिजाइन और प्रोडक्शन को बढ़ावा। सृजन पोर्टल, इसमें 19,509 पहले आयातित आइटम्स को स्वदेशी बनाने के लिए लिस्ट किया गया। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा, इसमें टाटा, L&T, भारत फोर्स और MSME को बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। FDI में छूट, डिफेंस में 74% तक FDI ऑटोमेटिक रूट से और 100% सरकार की मंजूरी से होगी। अगला है R&D को बढ़ावा, इसमें IDEX और TDF स्कीम्स से स्टार्टअप्स और MSMEs को फंडिंग दी जा रही है। साल 2025 में TDF के लिए 60 करोड़ रुपए और IDEX प्राइम के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए।
2: हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर ना सिर्फ सुरक्षा के मामले में डिफेंस प्रोडक्शन में होना पड़ेगा, तमाम ऐसी विधाएं हैं उसमें हर एक में आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसका कि प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियर कट कॉल दिया हुआ है। जहां तक डिफेंस का सवाल है, देखिए हिंदुस्तान की सुरक्षा में को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। आप ऐसे समय में दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें जब आपको उस इक्विपमेंट की, उस हथियार की, उस गोला बारूद की, उस एमिनिशन की जरूरत है। लिहाजा आपको स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा और हिंदुस्तान देखिए धीरे धीरे इसके तरफ अग्रसर हो रहा है।
0: प्राइवेट कंपनियों को भी सरकार की तरफ से सहूलियतें दी गई हैं। सरकार ने भारत की निजी हथियार निर्माता कंपनियों के लिए ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है कि बड़ी तेजी से ये आगे बढ़ने लगे। इस पूरी बढ़ोतरी में हिस्सेदारी की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2024-25 में कुल रक्षा उत्पादन में DPSU यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान करीब 77% रहा, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 23% रहा। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले बढ़ी है। जो वित्त वर्ष 2023-24 में 21% थी वो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 23% हो गई।
2: सबसे पहले मैं टच करूंगा पॉजिटिव इंडियनाइजेशन। इसके तहत वो सारी चीजें हैं जो कि डिफेंस में जिसकी रिक्वायरमेंट है और जिसको हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सकती है, चाहे वो PSUs हो, DPSUs हो, प्राइवेट सेक्टर हो। अब हम नेगेटिव लिस्ट की बात करते हैं। टाइम टू टाइम ये लिस्ट रिवाइज की जाती है। नेगेटिव लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें कि उन आइटम को बैन किया गया है जिसका हम बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे। ये सारे के सारे आइटम हिंदुस्तान में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। हमारी कैपेबिलिटी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लिहाजा ये नेगेटिव लिस्ट में दिन रात इजाफा हो रहा है और इन आइटम को हम अब बाहर से इंपोर्ट करना डिफेंस सेक्टर में बंद करेंगे। सृजन पोर्टल देखिए एक ऐसा पोर्टल है जिसमें तमाम प्राइवेट प्लेयर और पब्लिक सेक्टर की यूनिट इसमें लॉग इन कर सकते हैं, अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं, जिससे कि तमाम आगे आने वाले दिनों में जो हमारे डिफेंस की प्रोक्योरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, किसका टेंडर निकलने वाला है, क्या उसका क्वालिफिकेशन क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों की उसमें लिस्टिंग होती है।
0: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत अपने डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा तवज्जो दे रहा है और इसी के तहत देश में डिफेंस कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में सिर्फ दो ही कॉरिडोर हैं। रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.

0: something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
1: It's your boy,
0: just
1: Jay-Z.
0: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
3: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
2: Big 12 Radio.
4: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
2: and
4: down.
2: Talk sports.
5: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
2: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
6: Bhagya kehta hai
7: ki bhagya कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
12: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
13: मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम, मौसम खराब होने पर यात्रा पर लगा था अल्प विराम। बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक 7.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन, चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई, बर्फबारी के बीच श्री हेमकुंड साहिब में भी आस्था भारी। पुरुषोत्तम मास के दौरान इंद्रनाथ के मार्तंड सूर्य मंदिर में लगा भक्तों का तांता, पूजा अर्चना के साथ हर रविवार को होते हैं धार्मिक अनुष्ठान, दान पुण्य के साथ भक्तों के लिए भंडारे का इंतजाम। यूपी की राजधानी लखनऊ में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को मिली राहत, आसमानी फुहारों से गिरा पारा। उत्तराखंड के चमोली में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का भव्य आगाज, 28 राज्यों के 933 प्रतिभागी कर रहे शिरकत, भारत चीन सीमा के पास लगा रोमांच का मजमा। राजस्थान में आज फिर उठा रेतीला तूफान, तेज हवाओं के साथ जैसलमेर के आसमान पर छाया बवंडर, दिन में हुआ अंधेरा। पूर्णिमा के मौके पर आसमान में दिखा ब्लू मून का दुर्लभ नजारा, नीला नहीं बल्कि नारंगी नजर आया चांद। टेलीस्कोप से अनोखी खगोलीय घटना का दीदार करते दिखे लोग।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
13: 23 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे रिकॉर्ड श्रद्धालु, अब तक 7,51,000 से अधिक भक्त भगवान बद्री विशाल के कर चुके हैं दर्शन। मई महीने में रोजाना 25,000 से 30,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ धाम, यात्रा में देखने को मिल रहा है भारी उत्साह। बद्रीनाथ धाम में धूप बारिश और चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी, खराब मौसम के बावजूद लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या। यात्रा मार्गों पर कई जगह घंटों जाम की बन रही स्थिति, इसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह और आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही। हेमकुंड साहिब में बर्फ हटाकर यात्रा मार्गों को सुगम बनाया जा रहा है, एसडीआरएफ पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधन की टीमें व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटी। बद्रीनाथ धाम में बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सत्यनारायण कथा का हुआ समापन, कथा के अंतिम दिन बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। 21 दिनों की एकांत साधना और 5 दिनों की कथा के बाद धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ धाम से रवाना, समापन के बाद बागेश्वर धाम के लिए किया प्रस्थान। कथा के अंतिम दिन बद्रीनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, श्रद्धालु बाबा के अंतिम दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री ने श्रद्धालुओं को तीर्थों की महिमा बनाए रखने का दिया संदेश, तीर्थ को बताया हमारी संस्कृति, धरोहर और पूर्वजों की अमूल्य विरासत। बद्रीनाथ धाम से बाबा ने संस्कृति संरक्षण का किया आह्वान, लोगों से तीर्थ स्थलों को संजोकर रखने और सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाने की अपील की। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने में सिर्फ 42 दिनों में 9,00,000 से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन, इससे यात्रा के प्रति लोगों की गहरी आस्था और उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के कारण मैदानी इलाकों को गर्मी से मिली राहत, वहीं यमुनोत्री गंगोत्री में तापमान गिरने से फिर बढ़ गई ठंड। बारिश और ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु धामों की ओर पहुंच रहे हैं, छाता रेनकोट और गर्म कपड़ों के सहारे यात्रा जारी। यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए किए जा रहे खास इंतजाम, प्रशासन लगातार

के कारण रात को दिखाई दिया ब्लू मून। अयोध्या के राम की पैड़ी से आई ब्लू मून की तस्वीरें, नारंगी और हल्का लाल दिखाई दिया चांद। ज्योतिष और लोक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा का दिन ऊर्जा से भरपूर माना जाता है, इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। इससे पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा की पावन तिथि पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए उमड़े श्रद्धालु, अयोध्या में सरयू नदी में पवित्र स्नान के लिए लगी श्रद्धालुओं की भीड़। प्रयागराज में भी संगम पर स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालु, मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से होता है विशेष पुण्य। अनंतनाग के मट्टन स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर में पुरुषोत्तम मास के अवसर पर हजार श्रद्धालु एकत्र हुए, मंदिर परिसर पूरे दिन धार्मिक गतिविधियों और पूजा अर्चना से गुलजार रहा। कश्मीरी पंडितों सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने मार्तंड सूर्य मंदिर में पिंडदान और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए। पुरुषोत्तम मास महोत्सव के दौरान रविवार को मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिली, श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में दर्शन कर धार्मिक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। श्रद्धालुओं ने भीड़ को के बावजूद सुचारू व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन और मार्तंड तीर्थ ट्रस्ट का आभार व्यक्त किया, सुरक्षा पेयजल और अन्य सुविधाओं को लेकर जताया गया संतोष। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर मार्तंड सूर्य मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना, हजारों भक्तों ने यहां पहुंचकर की पूजा अर्चना। दिल्ली के एक भक्त ने शिरडी के साईं बाबा मंदिर को चढ़ाया 15 लाख का हीरो जड़ा ब्रोच, मन्नत पूरी होने पर भक्त ने मोरपंख आकार का सोने का ब्रोच शिरडी के साईं बाबा मंदिर को भेंट किया। दिल्ली के भक्त ने 15 लाख के ब्रोच के साथ 9 लाख रुपए का नकद चढ़ावा भी अर्पित किया, बाबा के इस भक्त ने नाम ना बताने की शर्त रखी। हीरो से जड़ा ये नक्काशीदार ब्रोच साईं बाबा की मूर्ति पर ओढ़ाए जाने वाले दुपट्टे पर लगाया जाता है। शिरडी में बढ़ रहा सोना चांदी का चढ़ावा, मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा सोना चांदी और कीमती रत्नों के दान में लगातार देखा जा रहा है इजाफा। दिल्ली के ब्रोच दान से पहले लखनऊ के गोपाल गोयल ने साईं बाबा को 1 करोड़ रुपए का स्वर्ण मुकुट अर्पित किया, भक्तों की बाबा पर आस्था अपार। चमोली के सीमांत नीति घाटी में आज से नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का हुआ शुभारंभ, देश के 28 राज्यों के 933 से अधिक धावक इस हाई एल्टीट्यूड रेस में ले रहे हिस्सा। भारत चीन सीमा से सटी नीति घाटी में 75 और 42 किलोमीटर अल्ट्रा रन का आयोजन हुआ, सीमांत क्षेत्र में पर्यटन और फिटनेस को बढ़ावा देने का अनूठा प्रयास। मंत्री भरत सिंह चौधरी नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन को दिखाई हरी झंडी, किया रवाना, आयोजन में भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान भी कर रहे सहयोग। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत नीति घाटी पर्यटन गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, अल्ट्रा रन के चलते घाटी में देश भर के पर्यटक और खिलाड़ियों की आई हुई आमद। मलारी गांव में सांस्कृतिक संध्या के साथ नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन की शुरुआत हुई, लोकगायक किशन महिपाल के प्रस्तुति ने प्रतिभागियों और स्थानीय लोगों का बढ़ाया उत्साह। राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जैसलमेर पहुंचे सोनार किला का किया भ्रमण, इस हाई प्रोफाइल दौरे को देखते हुए जैसलमेर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए, टिफनी ट्रम्प को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। जैसलमेर में आज फिर उठा रेत का बवंडर, पूरे क्षेत्र में आई काली पीली आंधी। रेतीले तूफान के कारण दिन में छाया अंधेरा, आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। आंधी के साथ ही बिजली हुई गुल, लोगों ने बनाए रेतीले तूफान की वीडियो। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खिली धूप के बीच मौसम सुहावना, सैर सपाटे का मजा ले रहे सैलानी। श्रीनगर के डल झील में शिकारे पर सैर करने पहुंच रहे सैलानी, खुशगवार मौसम में घूमने का मजा हुआ दोगुना। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पहाड़ों पर बर्फ और बादलों का मनमोहक साया, कुदरत ने किया अनोखा श्रृंगार। मनाली में बारिश के बाद बेहद खुशनुमा हुआ मौसम, दूर दूर दूर से पहुंच रहे सैलानी। पंजाब और राजस्थान से गर्मी की छुट्टियां बिताने लोग पहुंच रहे मनाली, छात्रों युवाओं की बड़ी तादाद। गुजरात के नवसारी बदला मौसम, लोगों को मिली गर्मी से निजात। सुबह से ही यहां के कई इलाकों में बारिश, तापमान में आई गिरावट। गुजरात के अंबाजी और आसपास के इलाकों में गरज और बिजली कड़कने के साथ हुई बारिश, तेज हवाओं के साथ चली धूल भरी आंधी। अंबाजी और आसपास में कई जगह गिरे होर्डिंग, वहीं अंबाजी मंदिर के चाचर चौक में लगा मंडप भी खुल गया। बारिश की वजह से तापमान में आई कमी, लोगों को मिली गर्मी से राहत। मई के आखिरी दिन भी दिल्ली एनसीआर में मौसम ठंडा रहने बने रहने के आसार, गर्मी का असर काफी हद तक कम रहेगा। दिल्ली एनसीआर में आज 31 डिग्री तक रहा अधिकतम तापमान, लोगों को भीषण गर्मी और लू से रह सकती है राहत।

0: दिल्ली में न्यूनतम तापमान आज 23 डिग्री तक रहने के आसार, मौसम रहा सुहावना। आज भी दिल्ली एनसीआर में प्री मानसून गतिविधियां तेजी से बनी रहीं, कई इलाकों में बारिश होने की दिखी संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, कल हो सकती है हल्की बारिश। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों में हो सकती है बारिश, बदला रहेगा मौसम का मिजाज। तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी शुरू होने के संकेत, अगले हफ्ते मध्य तक 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुंच सकता है पारा। दिल्ली में बारिश के बाद हवा भी हुई साफ, 5 साल में पहली बार मई में संतोषजनक स्तर पर पहुंचा AQI। तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद दिल्ली में AQI ने हुआ सुधार, मई में राजधानी में औसत AQI रहा 161। दिल्ली में शनिवार को दर्ज किया गया मई में 3 साल में सबसे कम AQI, अगले कुछ दिनों तक हवा की स्थिति मध्यम श्रेणी में रहने के आसार। मुंबई के कई इलाकों में आज सुबह से रिमझिम बारिश, मौसम हुआ सुहावना। गर्मी से तपती मुंबई को बारिश के बाद मिली राहत, धरती और पेड़ पौधों सहित सभी प्राणियों को तरावट। मुंबई में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहने के आसार, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान। मुंबई समेत महाराष्ट्र में इस बार धीमी है मानसून की रफ्तार, अभी प्री मानसून बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून तक महाराष्ट्र में हो सकती है हल्की बारिश, फिलहाल कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गरज के साथ बौछारों की संभावना। बेहद ऊंचाई वाले दुर्गम पहाड़ी इलाकों में अब सामान पहुंचाने में होगी बेहद आसानी, सेना की 10 इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने सफलतापूर्वक चालू किया अनोखा पाथू मोनोरेल सिस्टम। इस मोनोरेल से 16,000 फीट ऊंचाई पर बेहद खराब मौसम में हो सकेगी सामानों की ढुलाई, जहां गाड़ियों की आवाजाही होती है मुश्किल। इस मोनोरेल से एक बार में 300 किलोग्राम तक सामान ढुलाई संभव, घोड़े खच्चरों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा कारगर है यह सिस्टम। इस मोनोरेल से गोले, बारूद, राशन, ईंधन और दूसरे स्थान पहुंचाने में मिलेगी मदद, हादसों के दौरान रेस्क्यू में भी होगी मददगार। सेना के 10 इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने डिजाइन किया, तैयार किया यह सिस्टम, दिन रात हर मौसम में हो सकेगा सामान को ढुलाई का काम, रिमोट से होगा संचालित। जनरल NS राजा सुब्रमण्यन ने संभाला देश के नए CDS का कार्यभार, रक्षा मंत्री के प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर के रूप में करेंगे काम। नए CDS जनरल सुमरणी को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक लॉन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, CDS बनने वाले देश के तीसरे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी। जनरल सुमरणी ने नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीद को श्रद्धांजलि दी, देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों को किया नमन। CDS पद पर नियुक्ति से पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कमेटी में मिलिट्री एडवाइजर थे जनरल सुमरणी, सुरक्षा एजेंसियों के बीच रणनीतिक मूल्यांकन और तालमेल के काम से जुड़े थे। एडमिरल के स्वामीनाथन बने नए नौसेना अध्यक्ष, नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। उत्तराखंड में देवप्रयाग संगम पर गूंजा विष्णु सहस्त्रनाम, अलकनंदा और भागीरथी के पावन संगम पर श्रद्धा और विधि विधान के साथ 108 बार सामूहिक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हुआ। देवप्रयाग में भव्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम का आयोजन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और पतंजलि गुरुकुलम के छात्र छात्राओं ने मिलकर किया विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। इस अवसर पर देवप्रयाग में की गई गंगा आरती, उमा भारती और आचार्य बालकृष्ण सहित कई जानी मानी हस्तियां हुई शामिल। मध्य प्रदेश के रायसेन में 40 साल बाद फिर लौटी जुराई फाग की अनोखी परंपरा, 25 गांवों की 15 टोलियों सहित हजारों दर्शक हुए शामिल। जिराई फाग के दौरान 50 फीट ऊंचे चिकने खंबे पर धनजल से बंधी प्रसाद की पोटली तोड़ने के लिए लगती है होड़, महिलाओं की लाठियों से बचकर करनी पड़ती है चढ़ाई। तमिलनाडु के मदुरै में दिव्य धार्मिक उत्सव की धूम, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। मदुरै में कुडाल अजागार मंदिर से निकाली गई देव प्रतिमा की रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में देखा उत्साह। गोविंदा के जय घोष के साथ श्रद्धालुओं ने खींचा रथ, कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई रथ यात्रा। रामनगरी अयोध्या में चलाया गया स्वच्छता अभियान, जलता चौक सहित कई इलाकों में की गई सफाई। स्वच्छता अभियान में अयोध्या के मेयर सहित नगर निगम के कर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ता हुए शामिल, आम लोगों ने भी लिया भाग। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 76वें संस्करण का आयोजन, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जुटे लोग। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल्स के जरिए अच्छी सेहत और फिटनेस का संदेश, युवाओं में दिखा खास उत्साह। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल समारोह के दौरान निकाली गई साइकिल रैली, बच्चे भी हुए शामिल। नागपुर में सांसद क्रीड़ा महोत्सव का शुभारंभ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एक्टर सुनील शेट्टी हुए शामिल। क्रीड़ा महोत्सव में नागपुर के युवाओं और स्थानीय खिलाड़ियों को मिलेगा अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में वैसाख फेस्टिवल, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग मना रहे त्योहार। कोलंबो में वैसाख फेस्टिवल के सिलसिले में सजाए गए शानदार पंडाल, अनूठी लाइटिंग के जरिए भगवान बुद्ध की जीवन गाथा को प्रस्तुत किया गया। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर मनाया जाता है फेस्टिवल वैसाख, लोग करते हैं अमन चयन और खुशहाली की प्रार्थना। ताइवान में भगवान की शरण में बीटीएस फैंस कॉन्सर्ट के टिकट के लिए हाथ जोड़कर भगवान से कर रहे प्रार्थना। चैंपियन लीग में लगातार दूसरे साल पीएसजी की जीत के बाद एफिल टॉवर पर शानदार लाइटिंग, जोरदार आतिशबाजी के बीच फैंस ने मनाया जश्न।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Tunein's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
4: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
0: भारतीय सेना तेजी से स्वदेशी तकनीक विकसित करने में जुटी है, पाथू मोनोरेल सिस्टम इसकी ताजा मिसाल है, जिसे 10 इंजीनियर रेजिमेंट ने तैयार किया है। यह सिस्टम दुर्गम हालात में लॉजिस्टिक्स मूवमेंट का स्वदेशी समाधान है, जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर किसी भी मौसम में सामान लाने ले जाने में सक्षम है।
10: ऊंचे पहाड़ हो, घने जंगल हो, बर्फीली चोटियां हो, या रेगिस्तान का रेतीला जंगल, भारतीय सेना हर हालात में हर स्थिति में आगे बढ़ना, अपनी जिम्मेदारी निभाना बखूबी जानती है। ये मिशन भारतीय सेना के उसी जज्बे की एक नजीर है। ये पाथु मोनोरेल सिस्टम है जिसे सेना की 10 इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने सफलतापूर्वक चालू किया है। खास बात यह है कि इन जगहों पर गाड़ियों की आवाजाही संभव नहीं, वहाँ ये मोनोरेल सिस्टम बेहद कारगर साबित हो सकता है। इस मोनोरेल के जरिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर बेहद खराब मौसम में भी सहजता और सुगमता के साथ सामान की ढुलाई हो सकेगी। इस मोनोरेल के जरिए एक बार में 300 किलो तक सामान की ढुलाई संभव है। दावा किया जा रहा है कि ये 60 डिग्री के ढलान पर भी आसानी से सामान मंजिल तक पहुंचाने में सक्षम है, लिहाजा घोड़े खच्चरों के मुकाबले ये सिस्टम 10 गुना ज्यादा कारगर है। इसके जरिए गोले बारूद, राशन, ईंधन और दूसरे जरूरी सामान पहुंचाने में मदद मिलेगी। खास बात यह है कि सिस्टम रात हो या दिन हर मौसम में सामान की ढुलाई का काम कर सकता है। जीपीएस ट्रैकिंग सेंसर से लैस ये सिस्टम रिमोट से ऑपरेट होता है, लिहाजा भारतीय सेना का ये मिशन खोज मुश्किल हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: सूर्य की राशि की विशेषताएं क्या हैं और इसके प्रभाव क्या हैं, चंद्रमा की राशि की कमजोरी क्या है और इसे कैसे सुधारा जाए, क्या है सूर्य और चंद्रमा की राशियों की विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम, मौसम खराब होने पर यात्रा पर लगा था अल्प विराम। बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक 7.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन, चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई, बर्फबारी के बीच श्री हेमकुंड साहिब में भी आस्था भारी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में लगा भक्तों का तांता, पूजा अर्चना के साथ हर रविवार को होते हैं धार्मिक अनुष्ठान, दान पुण्य के साथ भक्तों के लिए भंडारे का इंतजाम।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सूर्य और चंद्रमा की राशियों के बारे में। सूर्य और चंद्रमा की कौन सी राशियां हैं, इस पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा, और साथ ही हम जानेंगे सूर्य और चंद्रमा की विशेषताओं के बारे में। तो पंडित जी से विस्तार से हम इसके बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर आप जीवन में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, अगर जीवन में ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, तो हर रविवार को सुंदर कांड का पाठ करिएगा। रविवार को सुबह के समय या शाम के समय स्नान करके पवित्र मन से, पवित्र भाव से अगर आप सुंदर कांड का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
0: और आइए अब जान लेते हैं 1 जून 2026 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 1 जून 2026 दिन सोमवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 4:37 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, शाम के 7:08 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:08 तक। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और आइए अब जानते हैं कि सूर्य की राशि की विशेषता क्या क्या है।
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य और चंद्रमा की राशियों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य की राशि की विशेषता क्या है। देखिए, सूर्य पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से अग्नि तत्व का ग्रह है, और सूर्य के पास केवल एक ही राशि है, एक ही राशि से इनका संबंध है, वो है सिंह राशि। सिंह राशि पूरी तरीके से अग्नि की राशि है और इसके स्वामी हैं सूर्य। सिंह राशि मंगल को काफी प्रिय मानी जाती है। मंगल सिंह राशि में जाने पर बहुत बेहतर और बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अगर आपकी कुंडली में सिंह राशि का प्रभाव है, सिंह राशि मजबूत स्थिति में है, तो ये आपके जीवन में सूर्य की शक्तियां बढ़ा देता है। आपकी राशि सिंह हो या आपका लग्न सिंह हो, यानी सिंह राशि का अगर प्रभाव जीवन में होगा तो आपके अंदर सूर्य के समान गुण अवश्य ही आ जाएंगे।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: मेष राशि, व्यर्थ का तनाव आपके साथ हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और आइए अब जानते हैं कि सूर्य की जो राशि है सिंह राशि, इसका क्या प्रभाव है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इन्हें किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए।
1: अब ये जानते हैं कि सिंह राशि कितनी महत्वपूर्ण है और सिंह राशि की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, सिंह राशि को अग्नि तत्व की, फायर एलिमेंट की प्रमुख राशि माना जाता है और इस राशि के स्वामी हैं सूर्य। सिंह राशि को नेतृत्व, साहस, संघर्ष और राजनीति की राशि माना जाता है। सिंह राशि से जो लोग प्रभावित होते हैं वो अक्सर समाज को दिशा दिखाते हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं। शरीर की हड्डियों के मामले में, हृदय के मामले में और विद्या के मामले में ये राशि महत्वपूर्ण होती है। आपके शरीर में एनर्जी कितनी होगी, आपका हृदय कितना स्वस्थ होगा, आप जीवन में कितने मजबूत होंगे, वो सिंह राशि से निर्धारित होता है। इस राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है अति विश्वास। ये अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं, दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, डोमिनेशन इनके अंदर ज्यादा होता है। अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो सलाह लेकर एक मूंगा आपको धारण करना चाहिए। मूंगा धारण करना आपके लिए उत्तम होगा। और सिंह राशि वालों को नियमित रूप से प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और सुबह के समय कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, वो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा।
0: और आइए अब जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: कर्क राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, धन लाभ की स्थितियां बन रही हैं, काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रिश्तों में समस्या आ सकती है, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, छोटी यात्रा हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और गुडलक में वक्त हो गया आज के सवालों का और पंडित जी द्वारा उनके दिए जाने वाले जवाबों का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न गौरव अरोरा ने हमें लिखा है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 27 अप्रैल 1978, जन्म का समय दोपहर के 3 बजे, जन्म का स्थान है देहरादून। ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है और मेरा व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मुझे कर्ज से मुक्ति मिले और मेरा भविष्य बेहतर हो सके। गौरव, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में आप सहारनपुर से निकलकर कहीं और जाएं, इस तरह की संभावना साल 2026 के अंत में दिखाई दे रही है। कर्ज से मुक्ति पाने में लगभग साल भर का समय लगेगा। जून 2027 के बाद तक आते आते आप कर्ज से मुक्ति पा सकेंगे और जून 27 के बाद आपका जीवन बेहतर दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
0: और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना, तो आप हमें अपने सवाल इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब जानते हैं पंडित जी से ही आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी अगला प्रश्न देवकी जी ने हमें लिखा है और देवकी जी हमें मेल बिहार पटना से लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 16 मई 1994। जन्म का समय सुबह के 7:20। जन्म स्थान है पटना बिहार। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरी बेटी का विवाह कब तक होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए देवकी जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय चल रहा है और प्रबल संभावना है कि साल 2026 के अंत तक इनका विवाह हो जाना चाहिए और वैवाहिक जीवन भी इनका कुल मिला जुला कर अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत चिंता करने की या बहुत तनाव पालने की जरूरत नहीं है। एक इनको ओपल बनवा करके पहना दीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको ओपल पहनाइए और इनको बोलिए कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए अब जानते हैं कि चंद्रमा की राशि की विशेषता क्या है और इन राशि वालों को खास तौर पर किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए।
1: अब जानते हैं कि चंद्रमा की राशि कौन सी है और चंद्रमा की राशि की विशेषता क्या है। देखिए चंद्रमा मुख्य रूप से जल तत्व का ग्रह माना जाता है। चंद्रमा एक ही राशि के स्वामी हैं, एक ही राशि से इनका पूरा संबंध है और वो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि 100% जल की राशि है। ये जो कर्क राशि है ये बृहस्पति को अत्यंत प्रिय है। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। इस राशि का मजबूत प्रभाव अगर कुंडली में है, कर्क राशि अगर प्रबल है, तो ये चंद्रमा और बृहस्पति को मजबूत कर देता है। कर्क राशि का मतलब आपका हृदय है, आपकी भावनाएं हैं, आपकी सोच है और आपकी कल्पना है। कर्क राशि आपकी सोच को, आपकी भावना को सीधे तौर से प्रभावित कर सकती है।
0: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल को जानने का।
1: तुला राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संपत्ति का लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: और चलिए अब जान लेते हैं चंद्रमा की राशि जो है वो कर्क है, तो इन्हें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और क्या चीजें ऐसी हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए, पंडित जी से जानेंगे।
1: अब ये जानते हैं कि कर्क राशि की विशेषताएं क्या हैं, किन बातों का इनको ध्यान बनाए रखना चाहिए। देखिए, कर्क राशि जो है ये बड़ी सुंदर और बड़ी चंचल राशि है। इस राशि के स्वामी हैं चंद्रदेव, यानी चंद्रमा का पूरा अधिकार कर्क राशि के ऊपर होता है। कर्क राशि में कल्पना की, सौंदर्य की, दया की और ज्ञान की क्वालिटी होती है। कर्क वाले ग्लैमरस भी होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं, दूसरों के ऊपर दया और करुणा जल्दी करते हैं। कर्क राशि जो है ये आपके हृदय की, आपके सोच समझ की और आपके भावनाओं की सबसे बड़ी राशि है। यानी आपके सोच समझ को, आपकी भावनाओं को, आपके दुख और आनंद को कंट्रोल करती है। कर्क राशि के लोग ज्यादातर दूसरों को परेशान नहीं करते, लेकिन इनकी समस्या ये है कि ये दूसरों के चक्कर में खुद बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़े भावुक हैं, बड़े इमोशनल हैं। इस राशि वालों का ऐसा देखा गया है कि इनका वैवाहिक जीवन और प्रेम का जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। अक्सर इमोशनल मामले में, विवाह और प्रेम के मामले में मुश्किलें आती हैं। इनके लिए सलाह लेकर एक ओपल या एक मोती धारण करना अच्छा होता है। अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए, अपने मन पर काबू रखने के लिए आप एक ओपल या एक मोती पहन सकते हैं। कर्क वाले जितना भगवान शिव की पूजा करें उतना ज्यादा इनके लिए अच्छा होगा। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा जप करें तो इनके लिए बेहतर रहेगा।
0: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: मकर राशि, कार्य क्षेत्र में आपके व्यस्तता बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन का लाभ होगा, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा सवाल, उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
1: जी, अगला प्रश्न ऋषभ ने हमें लिखा है और ऋषभ हमें मेल लिखते हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 1 नवंबर सन 2000। जन्म का समय है सुबह के 7:45। जन्म स्थान है कोलकाता। ऋषभ कह रहे हैं कि काफी समय से मैं नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूं लेकिन मुझे उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो मुझे नौकरी कब तक मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। ऋषभ, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं जाना चाहिए, आप मैनेजमेंट की या फाइनेंस की पढ़ाई करके उस क्षेत्र में ज्यादा सफलता पा सकते हैं और आपका करियर मैनेजमेंट, फाइनेंस, सेल्स या मार्केटिंग जैसा दिखाई दे रहा है। साल 2027 के अगस्त के बाद आपके करियर के बेहतर होने की संभावना बन रही है। फिलहाल एक मूंगा बनवा के पहने, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः मूंगा धारण करें, सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: और गुड लक में हम पहुंच गए आज के चौथे सवाल पर, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का चौथा और अंतिम सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
1: जी आज का अंतिम प्रश्न वैजयंती जी ने हमें लिखा है और वैजयंती जी हमें मेल लिखती हैं बेंगलोर कर्नाटक से। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 1980, जन्म का समय रात में 10:25, जन्म स्थान है बेल्लारी कर्नाटक। वैजयंती जी कह रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलता है और उसमें लगातार दिक्कतें और विवाद होते रहते हैं, मैं शादी तोड़ना नहीं चाहती हूं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए। वैजयंती जी, आपकी कुंडली के हिसाब से वैवाहिक जीवन देखिए एवरेज ही रहेगा, इससे ज्यादा एक्सीलेंट होने की संभावना नहीं है, लेकिन आने वाले समय में थोड़ा सा सुधार अवश्य हो जाएगा। दो उपाय करिए, एक ओपल बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और रोज सुबह 108 बार बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः।
0: पंडित जी एक सवाल था, जैसा कि आपने बताया कि चंद्रमा की राशि कर्क है, तो क्या कर्क का किसी और राशि से भी कोई संबंध है?
1: जी देखिए, कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा, और जो चंद्रमा के गुण हैं, जो चंद्रमा का नेचर है, वो कर्क वालों के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चंद्र ग्रह के अलावा कर्क राशि का दो और ग्रहों से संबंध होता है। एक ग्रह है बृहस्पति। जब बृहस्पति कर्क राशि से संबंध बनाता है तो सामान्यतः वो बहुत ताकतवर होता है और जीवन में बृहस्पति की शुभता बहुत ज्यादा आने लगती है। मंगल कर्क राशि में बेहद कमजोर होता है, तो मंगल जब कर्क राशि से संबंध बनाता है तो मंगल की जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, वो जीवन में दिखाई देती हैं। हालांकि मंगल का कर्क में बैठना आदमी को बहुत अच्छा डॉक्टर और खास तौर से बहुत अच्छा सर्जन बना सकता है। तो मोटे तौर पे देखिए, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा जरूर हैं, लेकिन इस राशि का संबंध बृहस्पति और मंगल के साथ भी अवश्य होता है।
0: जिनका जन्मदिन 1 जून को आता है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।

0: जन्मदिन 1 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, करियर में बदलाव भी होगा और सुधार भी होगा। धन की स्थितियां कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेंगी और अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा ये है कि क्या अलग अलग रंग के आसन पर पूजा करने के प्रभाव अलग होते हैं? देखिए, आसन का जो रंग है, जिस आसन पर बैठकर आप पूजा करते हैं, लाल रंग का, काले रंग का, पीले रंग का, आसन का रंग एकाग्रता में बड़ी सहायता करता है और अपनी समस्याओं के हिसाब से आसन का चुनाव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि साधना करने के लिए या पूजा करने के लिए लाल रंग का आसन सबसे ज्यादा उत्तम होता है।
1: और आइए अब जान लेते हैं 1 जून 2026 यानी कि सोमवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 1 जून 2026 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव के सामने घी का एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य के मामलों में सुधार होगा।
1: गुडलक में वक्त हो गया आज की गुडलक राशि के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय करेंगे। आज की गुडलक राशि है वृश्चिक। जीवन को बेहतर बनाने के लिए इनको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, साथ ही साथ रोज सुबह नियमित रूप से अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो और भी बेहतर होगा।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, अगर आपका कोई मुकदमा बड़े लंबे समय से चल रहा हो और हल नहीं हो पा रहा हो तो क्या करेंगे? अधिक से अधिक हनुमान जी की पूजा करें, जितना कर सकें उतना अच्छा होगा। रोज सुबह और शाम 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ये मंत्र सुबह शाम पढ़िएगा और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जा करके, या मंदिर में जहां भी हनुमान जी हों जा करके उनको लाल फूल चढ़ाइएगा। लंबे समय से चला आ रहा मुकदमा समाप्त होगा।
1: पंडित जी, महा उपाय के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीज

0: ताकत में बेस्ट, तकनीक में श्रेष्ठ, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार, हिंदुस्तान बना रहा है स्वदेशी हथियार।
1: जो देश अपने हथियार खुद बनाता है, वही देश अपनी तकदीर भी खुद लिखता है।
0: आज भारत तोप की गोली से लेकर मिसाइल तक और फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक सब कुछ खुद ही तैयार कर रहा है। एक वक्त था जब भारत अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे भारत ने अपनी ताकत को समझा, उसे जाना और खुद आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची। आज रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो अपने यहाँ ही बना रहा है। कई देशों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत ही भारत ने अपने यहाँ ही कई रक्षा उपकरणों को बनाना शुरू किया है। नतीजा ये है कि आज की डेट में भारत न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि दूसरे देशों का निर्यातक भी बन रहा है। डिफेंस सेक्टर में दिनों दिन भारत की तेज होती धमक ये बताने के लिए काफी है कि रक्षा क्षेत्र में आने वाला वक्त हमारा होगा।
1: अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
0: हर दिन नए हथियारों की चमक दुश्मनों को भयभीत कर रही है। भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जो दुश्मन की नापाक हरकतों का माकूल जवाब दे सके।
1: आज के युद्धों में स्पीड और प्रिसीजन, सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ड्रोन, ऑटोमेटेड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो सिस्टम्स हैं, दुश्मन पर ज्यादा सटीक हमला कर सकते हैं और अपने सैनिकों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। साथियों, इसका एक और लाभ सीमा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो बहुत ही कठिन है, जटिल है, टफ है। हर जगह सैनिकों की तैनाती करना या कोई आसान काम नहीं होता, मैं प्रत्यक्ष से महसूस कर रहा हूं। और ऐसे में ऑटोमेटेड निगरानी सिस्टम, रोबोटिक वाहन और सेंसर दिन रात सीमा की निगरानी कर सकते हैं, ऐसा सभी अब स्वीकार करने लगे हैं। इससे सुरक्षा भी बढ़ती है और कठिन परिस्थितियों में जो हमारे सैनिक तैनात होते हैं उन पर दबाव भी कम रहता है।
0: म्यूनिशन और ऑटोमेटेड सिस्टम में भारत अगुआ बनकर उभरे, इसके लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है।
1: भविष्य के युद्धों में सबसे बड़ा अंतर इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपके पास सैनिकों की संख्या कितनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका देश म्यूनिशन और ऑटोमेशन की दृष्टि से कितना एडवांस है और कितना कैपेबल है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सिर्फ युद्ध की आवश्यकता नहीं, बल्कि शांति, विकास और आर्थिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। रक्षा क्षेत्र में यदि हम अभी तक दूसरों पर निर्भर रहे थे तो यकीन मानिए इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारे डिफेंस सेक्टर और हमारे फाइनेंस सेक्टर को होता। लेकिन अब क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची, खास तौर पर रक्षा के क्षेत्र में, तो यही वजह है कि खास तौर पर तकनीक के मामले में और रक्षा तकनीक के मामले में आज भारत अपने पैरों पर खड़ा है। 23 मई को महाराष्ट्र के शिरडी में एक बेहद आधुनिक गोला बारूद निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया, जिसमें सालाना 5,00,000 आर्टिलरी शेल्स तैयार किए जाएंगे। साथ ही भारत के पहले 300 किलोमीटर वाले सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम को भी हरी झंडी दिखाई गई। सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दो रेंज वेरिएंट्स में डिजाइन किया गया है। पहला वेरिएंट 150 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों तक हमला कर सकता है और दूसरा लंबी दूरी वाला वेरिएंट 300 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकता है। भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र की खरीद का ऑर्डर भी दे दिया है।
2: सूर्यास्त्र भारत की सेनाओं को एक ऐसा जबरदस्त वेपन और फोर्स मल्टीप्लायर मिलने वाला है जो वाकई में दुश्मन की कमर तोड़ने में कामयाब होगा, क्योंकि इसका पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की क्षमता है कि 5 मीटर के अंदर लिखा हो लेकिन 2 मीटर के रिजल्ट दिए गए 300 किलोमीटर दूर। आप समझिए कि जब वो हमला करने में सक्षम है दुनिया के कमांड सेंटर पर, जहाँ पे उनके शीर्ष अधिकारी बैठे होते हैं, प्लानिंग चल रही, वहाँ पर हमले के पहले हमारा हमला होता है, उनकी सारी प्लानिंग ध्वस्त हो जाती है। कम्युनिकेशन सिस्टम पर जहाँ से बातचीत होती है उसको ख़त्म कर दें, रडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, लॉजिस्टिक बेस, जहाँ से उनके हथियारों का भंडारण है, अम्यूनिशन का भंडारण है, तेल है, पिन पॉइंट हमला करने में सक्षम है।
0: सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम में प्रिसिजन गाइडेड रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये पारंपरिक हथियारों की तरह इधर उधर नहीं गिरते बल्कि बिल्कुल उसी जगह पर प्रहार करते हैं जहां इन्हें भेजा गया, यानी निशाना एकदम अचूक। सूर्यास रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में 150 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट का सीईपी यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल महज 1.5 मीटर है, वहीं 300 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट का सीईपी 2 मीटर है। इसका मतलब ये है कि रॉकेट अपने टारगेट से औसतन 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर गिरता है, जो युद्ध में बहुत बड़ी ताकत है।
2: सूर्यास्त्र देखा जाए तो एक टेक्नोलॉजी का बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है। इससे 122 mm, 306 mm, 370 mm के रॉकेट फायर किए जा सकते हैं, साथ साथ में कामिकाजी ड्रोन भी फायर किया जा सकता है। 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी और तकरीबन 5 मीटर कहा जाता है, लेकिन इससे बेहतर रिजल्ट्स इसके मिले 2 मीटर का सर्कुलर एरर पे, यानी कि 2 मीटर के अंदर अंदर ये फायर करने में सक्षम है। ये इसका प्रिसीजन है, ये इसकी एक्यूरेसी है। क्या फ़ायदा होगा इसका? यह होगा कि दुश्मन के कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक बेस, उनकी गन पोजीशन, एडी सिस्टम, रडार स्टेशन और जहाँ पे उनकी रॉकेट सिस्टम है, जहाँ सब पर भी उनका जो एक स्ट्रेटजिक टारगेट्स हैं उनको हम पिन पॉइंट हमला करने में ये सक्षम है।
0: भारतीय सेना को अब लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाले रॉकेट्स मिलेंगे, जिससे दुश्मन के ठिकानों जैसे कि आर्टिलरी पोजीशंस, कमांड सेंटर्स और दूसरे अहम टारगेट्स को सुरक्षित दूरी से तबाह किया जा सकेगा।

सूर्यास्त की सबसे बड़ी ताकत है इसकी मल्टी बैरल क्षमता, जिसमें अलग अलग तकनीक के हथियार एक साथ लगाए जा सकते हैं और दागे भी जा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि निशाना भी सटीक और लॉजिस्टिक का खर्च भी बहुत कम। सूर्यास्त के अलग अलग पॉड्स को मिशन के हिसाब से बदला जा सकता है। 370 mm कैलिबर की प्रेडेटर हॉक गाइडेड रॉकेट सूर्यास्त सिस्टम का सबसे घातक हथियार है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। सूर्यास्त सिस्टम का एक और घातक हथियार है एक्स्ट्रा रॉकेट। 306 mm कैलिबर का ये गाइडेड रॉकेट 150 किलोमीटर तक दुश्मन के बंकरों और कमांड सेंटर्स को तबाह कर सकता है। सूर्यास्त के अलग अलग पॉड्स को मिशन के हिसाब से बदला जा सकता है। 370 mm कैलिबर की प्रेडेटर हॉक गाइडेड रॉकेट सूर्यास्त सिस्टम का सबसे घातक हथियार है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। सूर्यास्त सिस्टम का एक और घातक हथियार है एक्स्ट्रा रॉकेट। 306 mm कैलिबर का ये गाइडेड रॉकेट 150 किलोमीटर तक दुश्मन के बंकरों और कमांड सेंटर्स को तबाह कर सकता है। सूर्यास्त सिस्टम से 122 mm और 160 mm कैलिबर के बेहद किफायती एक्यूलर रॉकेट्स दागे जा सकते हैं, जो 40 से 100 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। सूर्यास्त सिस्टम से स्काई स्ट्राइकर लॉयटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन भी दागे जा सकते हैं, जो हवा में रहकर दुश्मन की खोज करते हैं और सटीक हमला करते हैं। सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से दागी जाने वाली प्रेडेटर हॉक रॉकेट्स में GPS INS सेंसर फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये तकनीक प्रेडेटर हॉक रॉकेट को बिना किसी भारी मदद के बेहद खराब मौसम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के बीच भी सटीक निशाना लगाने की क्षमता देती है।

0: देखा जाए तो प्रेडेटर हॉक सूर्य अस्त्र का सबसे खतरनाक रॉकेट है। 300 किलोमीटर तक जाता है, 370 mm है और 140 से 200 किलोग्राम तक का ये एक्सप्लोसिव ले जा सकता है और छत के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर, बंकर्स के ऊपर बहुत इफेक्टिव है। तोड़ के अंदर तक उनको तहस नहस कर सकता है। सेल्फ गाइडेंस है, गाइडेंस बड़ी अच्छी है और पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है, जैसा कि 5 मीटर का बताया जाता है, लेकिन 2 मीटर की हमको इसमें एक्यूरेसी मिली है। और शूट एंड स्कूट का इसका फैसिलिटी है कि फायर करे उसके बाद जगह बदली कर सकता है।
1: प्रेडेटर हॉक रॉकेट सुपरसोनिक स्पीड से हम

0: भी ये रॉकेट सिर्फ अपनी रफ्तार और वजन के दम पर कंक्रीट की कई फीट मोटी दीवारों को मलबे में तब्दील कर सकता है। सूर्यास्त की सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक पारंपरिक क्रूज और एक बैलिस्टिक मिसाइल के 15% खर्चे से भी सस्ता है, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि युद्ध के क्षेत्र में हमें भारी भरकम खर्च उठाने की जरूरत नहीं है। हम मल्टीपल रॉकेट्स दुश्मन पर दाग सकते हैं। आधुनिक युद्ध में आर्टिलरी की भूमिका निर्णायक होती है और सूर्यास्त शूट एंड स्कूट क्षमता के साथ दुश्मन के काउंटर अटैक से बचते हुए तेज हमला करने में सक्षम है। इसमें हाई मोबिलिटी व्हीकल भी लगाया गया है, जिससे ये बहुत तेजी से जगह बदल सकता है। सूर्यास्त को 6x6 भारी ट्रकों पर माउंट किया गया है। हमला करने के बाद ये सिस्टम फौरन अपना लोकेशन बदलने में सक्षम है, जिससे दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना और निशाना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। जानते हैं कि भारत सरकार ने किस तरह के चेंजेस किए हैं, जिस वजह से 5000 तरह के उपकरण भारत में ही बनाए जा रहे हैं। दरअसल अभी अगर बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट पार्टनरशिप 20-30% है, जिसे बढ़ाकर सरकार 50% तक करना चाह रही है। इसको लेकर विचार हो रहा है। मोदी सरकार ने FDI, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जैसे बड़े सुधार किए हैं। सूर्यास्त भारत की आर्टिलरी ताकत में काफी इजाफा करेगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के पास जो पिनाका मौजूद है उसमें और सूर्यास्त में क्या अंतर है? तो सबसे पहले दोनों रॉकेट सिस्टम की ताकत और खासियत जान लीजिए। सिस्टम की बात करें तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च है, जो सिर्फ रॉकेट लॉन्चिंग के लिए ही है। सूर्यास्त यूनिवर्सल लॉन्चर है, जो रॉकेट और मिसाइल दोनों दाग सकता है। पिनाका में कैलिबर फिक्स है और इसे सिर्फ 214 mm रॉकेट से ही दागा जा सकता है। सूर्यास्त मल्टी कैलिबर है, जो 122 mm, 306 mm, 370 mm के वेपन्स दाग सकता है। रेंज की बात की जाए तो पिनाका MK1 40 किलोमीटर और पिनाका एक्सटेंडेड रेंज 75 से 90 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। वहीं सूर्यास्त की रेंज 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर है। पॉड रीलोड सिस्टम की बात करें तो पिनाका के रीलोडिंग में करीब 4-5 मिनट का समय लगता है। वहीं सूर्यास्त में जो पॉड सिस्टम लगा है उसे रीलोड करने में 10 मिनट का वक्त लगता है।
1: पिनाका और सूर्यास्त में फर्क ये है कि पिनाका में एक साथ बहुत सारे रॉकेट फायर होते हैं, 6-6 रॉकेट यानी 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ गिरते हैं एक इलाके में, और वो एक एरिया वेपन के तौर पे, यानी कि 214 mm के रॉकेट हैं, एक ही कैलिबर के होंगे और वो एक जगह जाके पूरे इलाके को सैचुरेट कर देंगे, भस्म कर देंगे। जबकि सूर्यास्त में अलग अलग कैलिबर के रॉकेट फायर हो सकते हैं, 122 mm, 306 mm या 370 mm, 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज होती है। और ये फर्क ये कि पिन पॉइंट अटैक करता है, एक रॉकेट जाएगा वहाँ पिन पॉइंट हमला करेगा, तो दोनों के टारगेट अलग हैं।
0: भारतीय सेना सूर्यास्त सिस्टम को उसकी 300 किलोमीटर की लंबी रेंज और डीप स्ट्राइक क्षमता के कारण LAC और LOC के अत्यंत संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात कर सकती है। इसका मेन मकसद चीन और पाकिस्तान की सेना के रसद आपूर्ति करने वाले रास्तों, एयरबेस और कमांड सेंटर्स को अपने तोपखाने की जद में लाना है। रॉकेट का ताकतवर होना कई मायनों में सेना की युद्ध क्षमता तो नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा, जो काम फाइटर जेट किया करते थे और जिन कामों में मिसाइल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, उसी काम को अब सूर्यास्त जैसा सिस्टम आसानी से कर देगा। पारंपरिक तौर पर अगर देखा जाए तो अगर दुश्मन 300 किलोमीटर दूरी पर बैठा है तो भारत को अपने लड़ाकू विमानों को मैदान में उतारना पड़ता है, लेकिन सूर्यास्त के आने के बाद न तो हम अपने पायलट्स की जान जोखिम में डालेंगे और न ही दुश्मन की सरहद में जाने की जरूरत होगी, बल्कि भारत अपनी सरहद पर ही बैठे दुश्मन का काम तमाम कर सकता है। पहले सीमा से 150 से 300 किलोमीटर दूरी पर मौजूद दुश्मन के कमांड सेंटर, रडार या रसद डिपो को तबाह करने के लिए वायुसेना के सुखोई विमानों को उड़ान भरनी पड़ती थी। वहीं अब इस काम को जमीन पर तैनात आर्मी के सूर्यास्त रेजिमेंट अपने प्रेडेटर हॉक रॉकेट से मिनटों में पूरा कर पाएंगे। इससे महंगे लड़ाकू विमानों और जांबाज पायलटों को दुश्मन के हवाई क्षेत्र में भेजने का जोखिम भी काफी हद तक कम हो जाएगा। सूर्यास्त की तैनाती पारंपरिक तौर पर सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस मिसाइल के वर्कलोड को काफी हद तक कम कर देगी। अब वो किस तरीके से, वो भी

0: को समझाते हैं। सीधी सी बात है कि 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को अगर निशाने पर लाना हो तो उसके लिए सूर्यास्त ही काफी होगा। यानी अगर देखा जाए तो रण क्षेत्र में सूर्यास्त सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की जगह ले सकता है।
1: सूर्यास्त 300 किलोमीटर की दूरी तक ब्रह्मोस जैसी अचूक सटीकता प्रदान करता है, इसीलिए सामान्य और कम सुरक्षा वाले लक्ष्यों जैसे कि आतंकी कैंप, रसद द्वीपों के लिए ब्रह्मोस को बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। ये काम सूर्यास्त आसानी से कर देगा। ब्रह्मोस मिसाइल को अब सिर्फ अति संवेदनशील और अत्यधिक बख्तरबंद जैसे दुश्मन के युद्धपोत या परमाणु बंकर जैसे लक्ष्यों के लिए सुरक्षित रखा जा सकेगा। ब्रह्मोस ले जाने वाले सुखोई 30 MKI विमानों का वजन और रखरखाव का दबाव कम होने से वायुसेना इन विमानों का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में कर पाएगी। सूर्यास्त वायुसेना का विकल्प नहीं बल्कि ये थल सेना को आत्मनिर्भर बनाकर वायुसेना की कीमती हथियारों और विमानों को बड़े और अधिक रणनीतिक युद्धों के लिए रीस्टॉक करने का मौका देता है।
2: ब्रह्मोस जैसा महंगा मिसाइल एक स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि तो थोड़े कम इम्पोर्टेंट टारगेट है, वहाँ पर सूर्यास्त का इस्तेमाल किया जा सकता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है। और तीसरी बात ये कि सुखोई को भी बचत होगी, एयरफोर्स को जो 300 किलोमीटर दूर टारगेट होते थे उनके लिए हवा में जाके मिजाइल फायर करनी पड़ती थी, वो बच जाएगा। आप जमीन से फायर करोगे उनके टारगेट को बर्बाद कर दोगे, यानी कि हम अपने जो एयरक्राफ्ट हैं सुखोई है इनको एक्सपोज नहीं करेंगे, उनका इस्तेमाल और स्ट्रेटजिक टारगेट के लिए और बड़े टारगेट्स के लिए किया जा सकता है। तो यानी कि फोर्स मल्टीप्लायर है कि वो हथियार बने रहेंगे, वो अपने टारगेट्स करेंगे, बाकी टारगेट्स को सूर्यास्त एंगेज करेगा, अपनी जमीन पर रहते रहते दुश्मन को नेस्ता नाबूद करेगा।
0: आज देश में सिर्फ हथियार ही नहीं बनाए जा रहे बल्कि यहाँ उस भरोसे को भी मजबूत किया जा रहा है जिसके दम पर सेना वीरता का नया इतिहास लिख रही है।

0: अब हम सिर्फ टैंक, तोप, मिसाइल या फाइटर जेट्स ही नहीं बनाते, हम बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत, जिसका सर्वोच्च संकल्प है राष्ट्र रक्षा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहली बार आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना।
1: भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा।
0: रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा और विदेश से हथियार और उपकरण के आयात को कम कर भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड मिशन पर आगे बढ़ रहा है।

0: हिंदुस्तान अब अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं, भारत में ही तरह तरह की मिसाइलें, फाइटर जेट्स और यहाँ तक कि छोटे कलपुर्जे तक बनाए जा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत रक्षा के क्षेत्र में खुद स्टैंड कर चुका है और ये दुनिया भी भारत का लोहा मान रही है। भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में लंबी छलांग लगाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले 5 साल में रक्षा उत्पादन में 90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2023 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 1,50,590 करोड़ को पार कर गया है। यानी कि भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 18% की छलांग लगाई है। साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था। यानी साल 2019-20 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 90% की बढ़त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी शक्ति बनाने के लिए शुरू की गई योजना मेक इन इंडिया ने जिस क्षेत्र में सबसे अधिक छाप छोड़ी है वो है रक्षा।
1: भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा।
0: ये मेक इन इंडिया मिशन की वो तैयारी है जिसमें हर स्क्रू, हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर भारत का है और भारत के लिए है। स्क्रू से लेकर सिस्टम और सॉफ्टवेयर तक भारत आज की तारीख में ये सब कुछ अपने आप बना रहा है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि भारत ये सब कुछ न सिर्फ अपने लिए बना रहा है बल्कि 80 से ज्यादा देशों को दे भी रहा है। और ये तमाम वो देश हैं जो रक्षा के मामले में भारत पर भरोसा करते हैं।
2: सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, जिसके तहत मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू हो गया। लेकिन एक वक्त था जब 65-70% रक्षा सामग्री आयात की जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 35% सामान ही आयात होता है। इसका मुख्य कारण भारत की अपनी रक्षा प्रणालियों को डिजाइन और विकसित करने की बढ़ती क्षमता है।
0: भारत सरकार की तरफ से पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट तैयार की गई है, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि स्वदेशीकरण को ज्यादा बढ़ावा देना। यानी खास तौर पर रक्षा के क्षेत्र में हम किसी दूसरे मुल्क पर निर्भर न रहें, छोटे से कलपुर्जे से लेकर बड़ी से बड़ी मिसाइल तक बनाने में भारत खुद अपनी धरती का और यहाँ के साजो सामान का ही इस्तेमाल करे।
2: अब तक रक्षा मंत्रालय ऐसी 5 लिस्ट जारी कर चुका है और इसमें तकरीबन 5,000 आइटम्स के आयात पर पाबंदी लगाई गई थी। ये सभी डिफेंस, पीएसयू और निजी स्वदेशी कंपनियों से खरीदे जा रहे हैं। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट 4,666 आइटम्स की 5 लिस्ट जारी की गई है, जिन्हें सिर्फ स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा। नेगेटिव लिस्ट, इसमें 310 उपकरणों जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, तोप के आयात पर 2020 से 27 तक रोक लगाई गई है। डैप 2020 यानी कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में खरीद को प्राथमिकता दी गई, यानी कि स्वदेशी डिजाइन और प्रोडक्शन को बढ़ावा। सृजन पोर्टल, इसमें 19,509 पहले आयातित आइटम्स को स्वदेशी बनाने के लिए लिस्ट किया गया। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा, इसमें टाटा, L&T, भारत फोर्स और MSME को बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। FDI में छूट, डिफेंस में 74% तक FDI ऑटोमेटिक रूट से और 100% सरकार की मंजूरी से होगी। अगला है R&D को बढ़ावा, इसमें IDEX और TDF स्कीम्स से स्टार्टअप्स और MSMEs को फंडिंग दी जा रही है। साल 2025 में TDF के लिए 60 करोड़ रुपए और IDEX प्राइम के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए।
3: हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर ना सिर्फ सुरक्षा के मामले में डिफेंस प्रोडक्शन में होना पड़ेगा, तमाम ऐसी विधाएं हैं उसमें हर एक में आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसका कि प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियर कट कॉल दिया हुआ है। जहां तक डिफेंस का सवाल है, देखिए हिंदुस्तान की सुरक्षा में को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। आप ऐसे समय में दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें जब आपको उस इक्विपमेंट की, उस हथियार की, उस गोला बारूद की, उस एमनिशन की जरूरत है, लिहाजा आपको स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा। और हिंदुस्तान देखिए धीरे धीरे इसके तरफ अग्रसर हो रहा है।
2: प्राइवेट कंपनियों को भी सरकार की तरफ से सहूलियतें दी गई हैं। सरकार ने भारत की निजी हथियार निर्माता कंपनियों के लिए ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है कि बड़ी तेजी से ये आगे बढ़ने लगे। इस पूरी बढ़ोतरी में हिस्सेदारी की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2024-25 में कुल रक्षा उत्पादन में DPSU यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान करीब 77% रहा, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 23% रहा। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले बढ़ी है। जो वित्त वर्ष 2023-24 में 21% थी वो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 23% हो गई।
3: सबसे पहले मैं टच करूंगा पॉजिटिव इंडियनाइजेशन। इसके तहत वो सारी चीजें हैं जो कि डिफेंस में जिसकी रिक्वायरमेंट है और जिसको हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सकती है, चाहे वो PSUs हो, DPSUs हो, प्राइवेट सेक्टर हो। अब हम नेगेटिव लिस्ट की बात करते हैं। टाइम टू टाइम ये लिस्ट रिवाइज की जाती है। नेगेटिव लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें कि उन आइटम को बैन किया गया है जिसका हम बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे। ये सारे के सारे आइटम हिंदुस्तान में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। हमारी कैपेबिलिटी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लिहाजा ये नेगेटिव लिस्ट में दिन रात इजाफा हो रहा है और इन आइटम को हम अब बाहर से इंपोर्ट करना डिफेंस सेक्टर में बंद करेंगे। सृजन पोर्टल देखिए एक ऐसा पोर्टल है जिसमें तमाम प्राइवेट प्लेयर और पब्लिक सेक्टर की यूनिट इसमें लॉग इन कर सकते हैं, अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं, जिससे कि तमाम आगे आने वाले दिनों में जो हमारे डिफेंस की प्रोक्योरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, किसका टेंडर निकलने वाला है, क्या उसका क्वालिफिकेशन क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों की उसमें लिस्टिंग होती है।
2: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत अपने डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा तवज्जो दे रहा है और इसी के तहत देश में डिफेंस कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में सिर्फ दो ही कॉरिडोर हैं। रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
6: Thank God I get to wake
5: and everything else. Hear it all here, commercial free on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति माइकल बोलोस के साथ राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जैसलमेर पहुंची। इस दौरान दंपति ने विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर फोर्ट को देखा, जिसे सुनारकला के नाम से भी जाना जाता है, इसका भ्रमण किया। सुनहरे पत्थरों से निर्मित इस भव्य किले की वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत ने उनका ध्यान आकर्षित किया। टिफनी ट्रंप को स्टेट ऑफ गेस्ट का दर्जा दिया गया है। उनके ठहरने के लिए शहर के प्रसिद्ध और भव्य होटल सूर्यगढ़ में विशेष इंतजाम किए गए हैं। होटल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियां कड़ी नजर रख रही हैं और इस हाई प्रोफाइल दौरे को देखते हुए जैसलमेर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम। मौसम खराब होने पर यात्रा पर लगा था अल्प विराम। बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक 7.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई। बर्फबारी के बीच श्री हेमकुंड साहिब में भी आस्था भारी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में लगा भक्तों का तांता। पूजा अर्चना के साथ हर रविवार को होते हैं धार्मिक अनुष्ठान। दान पुण्य के साथ भक्तों के लिए भंडारे का इंतजाम। यूपी की राजधानी लखनऊ में हुई झमाझम बारिश। भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को मिली राहत। आसमानी फुहारों से गिरा पारा। उत्तराखंड के चमोली में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का भव्य आगाज। 28 राज्यों के 933 प्रतिभागी कर रहे शिरकत। भारत चीन सीमा के पास लगा रोमांच का मजमा। राजस्थान में फिर उठा रेतीला तूफान। तेज हवाओं के साथ जैसलमेर के आसमान पर छाया बवंडर। दिन में हुआ अंधेरा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर आसमान में दिखा ब्लू मून का दुर्लभ नजारा। नीला नहीं बल्कि नारंगी नजर आया चांद। टेलीस्कोप से अनोखी खगोलीय घटना का दीदार करते दिखे लोग।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का विस्फोटक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो है तो महज 15 साल का, लेकिन क्रिकेट के मैदान में बल्ले से ऐसे ऐसे कीर्तिमान रच रहा है कि बड़े बड़े सूरमाओं की चमक उसके आगे फीकी पड़ती जा रही है।

0: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बीते 27 मई को आईपीएल के एक मुकाबले में बल्ले से विस्फोट की नई इबारत लिखने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी है। जी हां, 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की जो विस्फोटक पारी खेली उसकी धमक में क्रिकेट के कई दिग्गजों के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स दफन हो गए। वैभव ने एक पारी में इतने रिकॉर्ड्स बना दिए कि ये खुद अपने आप में रिकॉर्ड हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वाली पारी। दरअसल पिछले 2 साल से वैभव मैदान में टिककर जिस तरह से आतिशबाजी कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले वर्षों में बल्लेबाजी का कोई ऐसा रिकॉर्ड होगा ही नहीं जो वैभव के नाम ना हो।
1: क्रिकेट के क्षितिज पर उदित हो चुका है एक ऐसा चमचमाता वैभवशाली सूर्य जिसकी चौंधिया देने वाली चमक में क्रिकेट के आसमान के बड़े बड़े सितारे गुम से हो गए हैं। इस वैभवशाली सूर्य ने आईपीएल की महज एक पारी में इतने कीर्तिमान बना दिए हैं कि रिकॉर्ड बुक के हर सफहे पर एक ही नाम चमक रहा है, वैभव सूर्यवंशी। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को हुए एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की ऐसी विस्फोटक पारी खेली कि आईपीएल के 18 साल के इतिहास में बल्ले से बने करीब करीब सारे रिकॉर्ड्स जमींदोज हो गए।
2: वो बच्चा 15 साल का है, इतनी धमाल मचा रखी है। बुमराह को उसने पहली बॉल पे छक्का मारा, हेजलवुड को, हर एक बॉलर को उन्हें पहली बॉल पे छक्का मारा। ऐसा बल्लेबाज मैंने दुनिया में नहीं देखा। वरिंदर सहवाग भी ऐसी पारी नहीं कभी खेल सका जो वैभव सूर्यवंशी खेलता।
1: वैभव की इस अविस्मरणीय पारी को देखकर ऑल टाइम ग्रेट सचिन तेंदुलकर को कहना पड़ गया अभूतपूर्व। बल्ले से वैभव का अतुल्य धमाका पूरी एकाग्रता से देखने के बाद सचिन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का स्विंग असाधारण था। इससे भी बड़ी बात यह है कि पैरों पर फेंकी गई गेंद पर उन्होंने बेहद कुशलता के साथ फ्रंट फुट क्लियर का रूम बना लिया, जिसकी वजह से उन्होंने जहां चाहा गेंद को वहीं पहुंचा दिया। वैभव की ये पारी चमत्कार से कम कुछ भी नहीं। यूं तो वैभव ने पूरे आईपीएल के दौरान अतुल्य बल्लेबाजी की है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को खेली गई उनकी एक अदद पारी क्रिस गेल, डेविड वार्नर, रिली रूसो, शुभमन गिल और सुरेश रैना जैसे दिग्गजों की कई कई पारियों पर भारी पड़ गई है। वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की धमाकेदार पारी में 12 छक्के लगाए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वैभव ने आईपीएल 2026 सीजन में 65 छक्के पूरे कर लिए हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 सिक्सर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। गेल ने आईपीएल 2012 में कुल 59 छक्के लगाए थे। वैभव के इस रिकॉर्ड के भीतर भी एक रिकॉर्ड छिपा हुआ है। गेल ने 59 सिक्सर के लिए 456 गेंदें खेली थी, जबकि वैभव ने सिर्फ 280 गेंदों पर 65 छक्के अपने नाम कर लिए हैं। 280 गेंदों पर 65 छक्कों का मतलब ये हुआ कि कमोबेश हर चौथी गेंद पर सिक्सर। ये रिकॉर्ड तो गेंदबाजों के लिए डरावने सपने की तरह है।
3: Young man is something else. You know, he can hit the best of fast bowlers, the best of slow bowlers into the crowd. His sixes are generally into the crowd. His sixes are not those that just pop over that boundary rope. And he just makes it look so ridiculously easy.
1: महज 15 साल के वैभव जिस तरह कीर्तिमान पर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि भविष्य में बल्लेबाजी के सारे रिकॉर्ड्स ब्लैक एंड व्हाइट में इनके नाम ही दर्ज मिलेंगे। 27 मई को एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने एचआरएस के खिलाफ सिर्फ 16 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। आईपीएल के नॉकआउट हिस्ट्री में ये संयुक्त रूप से सबसे तेज 50 है। इससे पहले साल 2014 के क्वालिफायर 2 में सुरेश रैना ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 16 गेंदों पर अर्धशतक बनाया था। इतना ही नहीं, वैभव की इस पारी में शुरू के 10 छक्के सिर्फ 24 गेंदों पर ही आ गए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 10 छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। गेल के 10 छक्के साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 27 गेंदों में आए थे। आईपीएल 2026 के दौरान 27 मई को खेली गई ऐतिहासिक पारी समेत कुल 15 पारियों में वैभव 243 की स्ट्राइक रेट से 680 रन बना चुके हैं। टी20 के किसी भी टूर्नामेंट में 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से 600 से ज्यादा रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले साल 2022 में टी20 ब्लास्ट में रिली रूसो ने 192 के स्ट्राइक रेट से 623 रन बनाए थे। वैभव की इस एक पारी में बने रिकॉर्ड्स की फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव के कुल 12 में से 8 छक्के पावर प्ले में ही आ गए थे। दिलचस्प तो ये है कि इससे पहले पावर प्ले में सबसे ज्यादा 7 छक्कों का कीर्तिमान भी हिंदुस्तान के इस वैभवशाली खिलाड़ी के नाम ही दर्ज था। वैभव अब आईपीएल में 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियां खेल चुके हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। पर कमाल यह है कि वैभव की 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियों में से 3 आईपीएल के मौजूदा सीजन में ही आई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की अपनी पारी में वैभव ने एक और अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। आईपीएल के इतिहास में 90 प्लस रनों की सभी पारियों में वैभव की पारी सबसे तेज स्ट्राइक रेट वाली पारी बन गई है। वैभव ने 334.48 की स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए। इससे पहले ये रिकॉर्ड रजत पाटीदार के नाम था, जिन्होंने इसी सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 281.81 की स्ट्राइक रेट से 33 गेंदों पर 93 रन बनाए थे। आपको बता दें कि 27 मई वाली पारी को लेकर वैभव आईपीएल 2026 सीजन में सिर्फ पावर प्ले के दौरान 490 रन बना चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड डेविड वार्नर के नाम था, जिन्होंने साल 2016 में पावर प्ले के दौरान 467 रन बनाए थे। ये सारे रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं 15 साल के एक टीनेजर के नाम। सोचिए, 15 साल का ये बच्चा इसी उम्र में अगर क्रिस गेल, डेविड वार्नर, किरोन पोलार्ड और शुभमन गिल जैसे महारथियों के रिकॉर्ड्स की कब्रगाह बना चुका है, तो आगे तो वैभव के नाम से ही कीर्तिमान की एक किताब छापनी पड़ जाएगी।
4: बैट्समैन बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में अगर वो अपनी फिटनेस अच्छी मेंटेन करता है तो फिर आने वाला वो फ्यूचर स्टार है इंडिया का।
5: वैभव सूर्यवंशी, उसकी भी बैटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेलता है,
6: बहुत बढ़िया,
5: बहुत नेक्स्ट लेवल बैटिंग है। हम उसकी बैटिंग को नहीं कह सकते, उसकी अब अपनी अलग क्लास है।
7: करदा उड़ा दिया वैभव सूर्यवंशी ने,
1: ऐसा नहीं है कि वैभव का बल्ला सिर्फ आईपीएल में ही चला है। इससे पहले भी बिहार के समस्तीपुर का ये लाल ऐसी ऐसी अद्भुत पारियां खेल चुका है कि क्रिकेट के इतिहास में उसकी कोई सानी देखने को नहीं मिलती। इसी साल 6 फरवरी को जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में वैभव ने जो पारी खेली थी, उसे अंडर 19 वर्ल्ड कप के 38 साल के इतिहास की सबसे महान पारी कहा जा रहा है। सबसे महान पारी क्यों कहा जा रहा है, स्टैट देखने से इसका जवाब मिल जाएगा। वैभव ने महज 80 गेंदों पर 175 रन ठोक दिए। वैभव ने इस पारी में 15 छक्के और 15 चौके लगाए, यानी 150 रन सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए अपने खाते में जोड़ लिए। 55 गेंदों पर शतक पूरा किया, बाद के 75 रन सिर्फ 25 गेंदों पर ठोक दिए। महज 71 गेंदों पर 150 रन पूरे कर लिए, जो यूथ वनडे इतिहास का सबसे तेज 150 है। इतना ही नहीं, वैभव ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में कुल 30 छक्के लगाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस के नाम था, जिन्होंने 2022 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में 18 छक्के लगाए थे। पूरे टूर्नामेंट में वैभव 439 रन के साथ सेकेंड टॉप स्कोरर भी रहे। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहने के साथ वैभव ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप से ठीक पहले अंडर 19 एशिया कप में 12 दिसंबर 2025 को यूएई के खिलाफ वैभव ने 95 गेंदों पर 171 रन कूटकर विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए थे। इस आतिशी पारी में वैभव ने 9 चौके और 14 छक्के लगाए थे। कहने की जरूरत नहीं कि सबसे तेज और सबसे कम उम्र से जुड़े रिकॉर्ड्स के सरताज बन चुके हैं वैभव। 24 दिसंबर 2025 को रांची के जेएससीए ओवल ग्राउंड में वैभव ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि कई विश्व कीर्तिमान ध्वस्त हो गए। विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल के खिलाफ हुए मुकाबले में वैभव ने सिर्फ 84 गेंदों पर 15 छक्कों और 16 चौकों की मदद से 190 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी थी। इस मैच में सिर्फ 59 गेंदों पर 150 रन पूरे कर वैभव ने लिस्ट ए मैच में फास्टेस्ट 150 का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के नाम था, जिन्होंने साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 64 बॉल पर 150 रन बनाए थे। तूफान थोड़ी देर के लिए हो तो राहत, नहीं तो कहर बन जाता है। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के मैदान के टिक कर रहने वाले तूफान नहीं बल्कि बवंडर हैं। इसीलिए विरोधियों के लिए कहर नहीं बल्कि महाकहर बन रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैभव 13 साल की उम्र में एक मैच में ट्रिपल सेंचुरी भी लगा चुके हैं। रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में वैभव ने 332 रनों की नाबाद पारी खेली थी। अभी तो ये यूथ इंडिया की रहनुमाई कर रहे हैं, इंतजार कीजिए इनके टीम इंडिया में शामिल होने का। इसकी पूरी संभावना है कि साल 2027 के वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए ओपनिंग करेंगे और बहुत संभव है कि भारत तब वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक लगाएगा।
0: 15 साल के वैभव की कामयाबी क्रिकेट के बड़े बड़े धुरंधरों को भी हैरान करने लगी है। आईपीएल में अपने से दोगुने ढाई गुने उम्र के घातक गेंदबाजों को भी वो न सिर्फ सहजता से खेल रहे हैं बल्कि कायदे से धुलाई भी कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इतनी छोटी उम्र में ही वैभव इतने दिग्गज बल्लेबाज कैसे बन गए। दरअसल इसके पीछे कहानी है एक अधूरे सपने की, जो कभी वैभव के पिता ने देखा था। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन हालात की दुश्वारियों की वजह से उनका ये सपना अधूरा रह गया। पर अपने उसी अधूरे सपने को संजीव ने अपने बेटे वैभव के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया। वैभव के क्रिकेटर बनने की पूरी कहानी आपके दिल को छू लेगी।
1: सर पर कामयाबी के ताज के साथ मन में विनम्रता का संस्कार हिंदुस्तान की संस्कृति का सनातन हिस्सा है। मैच 15 की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी का बेनजीर परचम लहरा चुके वैभव सूर्यवंशी सनातन संस्कार के युगीन संवाहक हैं। जिस मैच में वैभव ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी, उसके प्री मैच शो के दौरान जब उन्होंने सुनील गावस्कर और संजय बांगर को देखा तो दौड़कर उनके पास गए और पूरी विनम्रता के साथ उनके पैर छू लिए। वैभव के संस्कार की निश्चल सादगी देखिए कि गावस्कर और बांगर के साथ मौजूद प्रेजेंटर जतिन सप्रू के भी पैर छूने की उन्होंने पूरी कोशिश की। ये अलग बात है कि जतिन पीछे हट गए।
3: हमारी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है कि हम अपने जो बुजुर्ग है, सीनियर्स है, एल्डर्स है, उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, और वही उन्होंने किया। सिर्फ मेरे पास ही नहीं आए थे वो, बस मेरे बाजू में संजय बांगर थे और जतिन सप्रू थे, उनके पास भी आए थे और मुझसे थोड़ा सा रुक कर मुझसे कुछ अपेक्षा कर रहे थे कि मैं कुछ उनको बोलूं। शायद अपेक्षा कर रहे थे, मैं ये नहीं कहूंगा, तो शायद अपेक्षा कर रहे थे। तो मैंने उनको सिर्फ यही कहा, लगे रहो, क्योंकि जब वो लगे रहेंगे तो फिर वो बल्ला मतलब बल्ला लगता रहेगा और छक्के भी लगते रहेंगे।
1: उम्र के लिहाज से वैभव की बेनजीर कामयाबी इस बात की मुनादी कर रही है कि आने वाले वक्त में कीर्तिमान की किताब के हर सफहे पर बिहार के इस लाल का नाम दर्ज मिलेगा। पर वैभव नाम के इस प्रदीप्त दिए की रोशनी से सराबोर होने वाले लोगों को उस तेल और बाती के बारे में भी जानना चाहिए जो खुद गुमनाम रहकर अपने दिए को जगमग कर रहा है। वैभव की इस बेनजीर कामयाबी के पीछे हाथ है उनके पिता संजीव सूर्यवंशी का, जो कभी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का ख्वाब सजोए हुए थे, पर खुद की जो हसरत अधूरी रह गई उसे उन्होंने अपने लाल में प्रत्यारोपित कर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक पिता के अनोखे त्याग की खामोश सदाएं समस्तीपुर जिले के जर्रे जर्रे में जज्ब है।
6: वास्तव में एक पिता का जो त्याग था, तपस्या था, जिद था कि हमको किसी भी तरह जो मैं हासिल नहीं कर सका वो मैं अपने बच्चे को उस मुकाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। वो एकाकी भी देखा कि लोगों से मिलना तक लोगों में, क्योंकि जुनून सवार था कि मैं अपने बेटे को उस मुकाम तक पहुंचाऊं, तो लोगों से मिलना भी बंद किया। उस बीच में कई ऐसी मुसीबतें भी आईं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया।
1: पांच साल के बच्चे को पढ़ाई से दूर कर क्रिकेट के मैदान में पसीना बहाने के लिए खड़ा कर देना किसी भी पिता के लिए आसान फैसला नहीं होगा। पर संजीव सूर्यवंशी ने कलेजे पर पत्थर रख कर ये फैसला लिया। समस्तीपुर जिले की ताजपुर पंचायत में जहां क्रिकेट का कोई नाम लेवा नहीं था, वहां पांच साल के बेटे की प्रैक्टिस के लिए सारी व्यवस्था कर दी। यहां तक कि कुछ हम उम्र और बड़े बच्चों को भी चॉकलेट मिठाई का प्रलोभन देकर साथ जोड़ लिया ताकि वे बॉलिंग करें और वैभव लगातार बैटिंग की प्रैक्टिस करता रहे। पांच साल से सात साल यानी दो साल तक गांव में ही वैभव को दिन रात प्रैक्टिस कराने के बाद एक दिन संजीव सूर्यवंशी को इल्हाम हो गया कि अब अगले लेवल की प्रैक्टिस का वक्त आ गया है, लिहाजा बेटे को लेकर निकल गए ताजपुर से 12 किलोमीटर दूर स्थित पटेल मैदान में, जहां ब्रजेश झा क्रिकेट एकेडमी चलाते थे। क्रिकेटर बनाने का जुनून ऐसा था कि संजीव सूर्यवंशी को जब लगा कि रोजी रोटी के लिए चलने वाला बिजनेस व्यवधान बन रहा है तो बगैर देरी के उसे बंद कर दिया।
8: गार्डियनों का उनका सपोर्ट रहा है कि अपने बच्चे को इतना ज्यादा टाइम किल करते थे, अपने साथ लाना ले जाना, बच्चों के साथ अपना बिजनेस छोड़ के बच्चे के प्रति इतना एक फोकस, गार्जियन का भी कहीं ना कहीं टारगेट था कि हमारा बच्चा ऊपर खेले, और भगवान की दुआ से बच्चा वो मुकाम पर हासिल किया।
1: इसमें कोई संदेह नहीं कि 7-8 साल की छोटी उम्र में ही वैभव अपने पिता की उम्मीदों की कसौटी पर लगातार खरे उतर रहे थे। जब तक सूर्य की रोशनी धरा पर मौजूद रहती, वैभव बल्ले को दामन से दूर नहीं होने देते। पिता और माँ को छोड़कर घर के बाकी सदस्यों को वैभव की आदत कई बार नागवार गुजरती थी। दादी ने तो कई मौकों पर ऊब कर वैभव की पिटाई भी कर दी थी, पर बचपन में वैभव की पिटाई के वो वाकये आज दादी के लिए सुनहरी यादें बन चुकी हैं।
9: डांटते थे,
10: अच्छा,
9: कभी कभी उसको मारते थे, दौड़ते थे उस पर, फिर भी कहता था नहीं दादी हमको अच्छा लगता है, हम खेलेंगे। हम कहे ठीक है बाबू तब खेलो। जब धीरे धीरे जब दल सिंह सराय गया, बेनी पट्टी, उसके बाद आपको क्या कहते हैं बेगूसराय, जब हम देखते रहे कि यह अच्छा खेल में उतर रहा, तब से मेरा भी मनोबल और मन ये हुआ कि हाँ यह खेले।
1: बचपन में वैभव की बैटिंग की खटखट से ऊब जाने वाली दादी का हृदय आज इस बात को जानकर गदगद है कि उनका पौत्र क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़कर आईपीएल के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाला खिलाड़ी बन गया है। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि वैभव को पटना के जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में डालने के लिए संजीव सूर्यवंशी को जमीन तक बेचनी पड़ी थी? दरअसल संजीव सूर्यवंशी को जब ये लगने लगा कि उनका बेटा समस्तीपुर स्थित पटेल मैदान के स्टैंडर्ड से आगे निकल चुका है, तो पटना में जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन कराने का फैसला किया। एकेडमी की फीस और उसके बाद समस्तीपुर से हर रोज पटना आना जाना कॉस्टली अफेयर था, इसीलिए संजीव सूर्यवंशी बेटे वैभव को लेकर हर अल्टरनेट डे पर पटना जाने लगे। जेनेक्स एकेडमी चलाने वाले पूर्व रणजी खिलाड़ी मनीष ओझा भी वैभव के पिता के त्याग और तपस्या को याद कर भावुक हो जाते हैं।
10: माँ का रोल रहता था बच्चे को तैयार करने से लेके उसको, और जब इधर से थक के जाता था तो उसको फिर रिकवरी में, चाहे वो खाने के सेंस में हो, उसको प्यार के सेंस में हो, उसको रेस्ट के सेंस में हो, और पिता का त्याग इस सेंस में था कि अर्ली सारे बोझ को वो अपने कंधे पर उठा रहे थे, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और फिर भी वो जो उनके वो अपने हैसियत से ज़्यादा बढ़ के उन्होंने उस बच्चे के लिए किया, और हर एक वो सुविधा उस बच्चे के लिए उन्होंने अरेंज किया खेल के प्रति कि वो आज इस मुकाम को प्राप्त कर सके।
1: पिता ने अपनी हैसियत की हदों को पार कर वैभव के लिए जमीन तैयार की, और वैभव ने भी पिता के इस त्याग की कीमत को शिद्दत से महसूस करते हुए मैदान पर पसीना बहाने में कोई कोताही नहीं की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था और वैभव को पटना ले जाना ले आना संभव नहीं रहा, तो संजीव सूर्यवंशी ने अपने ताजपुर स्थित घर के बाहर ही नेट प्रैक्टिस के लिए पिच बनवा दी ताकि वैभव की प्रैक्टिस खंडित ना हो।
11: लॉकडाउन में एक्चुअली पूरा बिहार बंद था, तो यहाँ पे पिच का जनरेट किया गया भैया के द्वारा, और टर्बिकेट और सीमेंटेड लॉकडाउन में लोग घर से नहीं निकल रहे थे, उस वक्त में भी इसका प्रैक्टिस सेशन लगातार यहाँ पे चलता रहा।
1: बेटे को क्रिकेटर बनाने का ये जुनून अपने आप में अनूठा है, इसका नतीजा सबके सामने है। आज वैभव के बल्ले से बनने वाले विश्व रिकॉर्ड्स संजीव सूर्यवंशी की दुनिया को रंगीन सपनों से भी ज्यादा सुहावन बना रहे हैं। वैभव की विराट बुलंदी का आलम यह है कि पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट पर संजीव सूर्यवंशी और उनकी पत्नी से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। देश का गौरव बन चुके तेजस्वी पुत्र का पिता होने के लिए बधाई देते हैं। पिता ने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए त्याग तपस्या की, तो बेटा भी दो कदम आगे बढ़कर अपनी विराट उपलब्धियों से हक अदायगी कर रहा है। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उसके 14 साल के बेटे को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2025 को वैभव को राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। साफ है कि पिता के संकल्प और बेटे की जीतोड़ मेहनत का पावन संगम क्रिकेट के मैदान पर चमत्कारिक धारा बनकर नमूदार हो रही है।
0: तो बंदे मेहदम में आज आपने वैभव सूर्यवंशी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
12: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
14: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति माइकल बोलोस के साथ राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जैसलमेर पहुंची। इस दौरान दंपति ने विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर फोर्ट को देखा। ऋषेश नारकला के नाम से भी जाना जाता है, इसका भ्रमण किया। सुनहरे पत्थरों से निर्मित इस भव्य किले की वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत ने उनका ध्यान आकर्षित किया। टिफनी ट्रंप को स्टेट ऑफ गेस्ट का दर्जा दिया गया है। उनके ठहरने के लिए शहर के प्रसिद्ध और भव्य होटल सूर्यगढ़ में विशेष इंतजाम किए गए हैं। होटल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियां कड़ी नजर रख रही हैं और इस हाई प्रोफाइल दौरे को देखते हुए जैसलमेर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
15: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
16: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
17: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
18: जी खबर। सूर्य की राशि की विशेषताएं क्या हैं और इसके प्रभाव क्या हैं? चंद्रमा की राशि की कमजोरी क्या है और इसे कैसे सुधारा जाए? क्या है सूर्य और चंद्रमा की राशियों की विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
14: मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम। मौसम खराब होने पर यात्रा पर लगा था अल्प विराम। बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक 7.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई। बर्फबारी के बीच श्री हेमकुंड साहिब में भी आस्था भारी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में लगा भक्तों का तांता। पूजा अर्चना के साथ हर रविवार को होते हैं धार्मिक अनुष्ठान। दान पुण्य के साथ भक्तों के लिए भंडारे का इंतजाम। यूपी की राजधानी लखनऊ में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को मिली राहत। आसमानी फुहारों से गिरा पारा। उत्तराखंड के चमोली में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का भव्य आगाज। 28 राज्यों के 933 प्रतिभागी कर रहे शिरकत। भारत चीन सीमा के पास लगा रोमांच का मजमा। राजस्थान में फिर उठा रेतीला तूफान, तेज हवाओं के साथ जैसलमेर के आसमान पर छाया बवंडर। दिन में हुआ अंधेरा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर आसमान में दिखा ब्लू मून का दुर्लभ नजारा। नीला नहीं बल्कि नारंगी नजर आया चांद। टेलीस्कोप से अनोखी खगोलीय घटना का दीदार करते दिखे लोग।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: विरासत में बेस्ट, तकनीक में श्रेष्ठ, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार, हिंदुस्तान बना रहा है स्वदेशी हथियार।
1: जो देश अपने हथियार खुद बनाता है, वही देश अपनी तकदीर भी खुद लिखता है।
0: आज भारत तोप की गोली से लेकर मिसाइल तक और फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक सब कुछ खुद ही तैयार कर रहा है। एक वक्त था जब भारत अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे भारत ने अपनी ताकत को समझा, उसे जाना और खुद आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची। आज रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो अपने यहाँ ही बना रहा है। कई देशों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत ही भारत ने अपने यहाँ ही कई रक्षा उपकरणों को बनाना शुरू किया है। नतीजा ये है कि आज की डेट में भारत न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि दूसरे देशों का निर्यातक भी बन रहा है। डिफेंस सेक्टर में दिनों दिन भारत की तेज होती धमक ये बताने के लिए काफी है कि रक्षा क्षेत्र में आने वाला वक्त हमारा होगा।
1: अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है।
0: हर दिन नए हथियारों की चमक दुश्मनों को भयभीत कर रही है। भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जो दुश्मन की नापाक हरकतों का माकूल जवाब दे सके।
1: आज के युद्धों में स्पीड और प्रिसीजन, सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ड्रोन, ऑटोमेटेड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो सिस्टम्स हैं, दुश्मन पर ज्यादा सटीक हमला कर सकते हैं और अपने सैनिकों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। साथियों, इसका एक और लाभ सीमा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो बहुत ही कठिन है, जटिल है, टफ है। हर जगह सैनिकों की तैनाती करना या कोई आसान काम नहीं होता, मैं प्रत्यक्ष से महसूस कर रहा हूं। और ऐसे में ऑटोमेटेड निगरानी सिस्टम, रोबोटिक वाहन और सेंसर दिन रात सीमा की निगरानी कर सकते हैं, ऐसा सभी अब स्वीकार करने लगे हैं। इससे सुरक्षा भी बढ़ती है और कठिन परिस्थितियों में जो हमारे सैनिक तैनात होते हैं उन पर दबाव भी कम रहता है।
0: म्यूनिशन और ऑटोमेटेड सिस्टम में भारत अगुआ बनकर उभरे, इसके लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है।
1: भविष्य के युद्धों में सबसे बड़ा अंतर इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपके पास सैनिकों की संख्या कितनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका देश म्यूनिशन और ऑटोमेशन की दृष्टि से कितना एडवांस है और कितना कैपेबल है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सिर्फ युद्ध की आवश्यकता नहीं, बल्कि शांति, विकास और आर्थिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। रक्षा क्षेत्र में यदि हम अभी तक दूसरों पर निर्भर रहे थे तो यकीन मानिए इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारे डिफेंस सेक्टर और हमारे फाइनेंस सेक्टर को होता। लेकिन अब क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची, खास तौर पर रक्षा के क्षेत्र में, तो यही वजह है कि खास तौर पर तकनीक के मामले में और रक्षा तकनीक के मामले में आज भारत अपने पैरों पर खड़ा है। 23 मई को महाराष्ट्र के शिरडी में एक बेहद आधुनिक गोला बारूद निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया, जिसमें सालाना 5,00,000 आर्टिलरी शेल्स तैयार किए जाएंगे। साथ ही भारत के पहले 300 किलोमीटर वाले सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम को भी हरी झंडी दिखाई गई। सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दो रेंज वेरिएंट्स में डिजाइन किया गया है। पहला वेरिएंट 150 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों तक हमला कर सकता है और दूसरा लंबी दूरी वाला वेरिएंट 300 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकता है। भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र की खरीद का ऑर्डर भी दे दिया है।
2: सूर्यास्त्र भारत की सेनाओं को एक ऐसा जबरदस्त वेपन और फोर्स मल्टीप्लायर मिलने वाला है जो वाकई में दुश्मन की कमर तोड़ने में कामयाब होगा, क्योंकि इसका पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की क्षमता है कि 5 मीटर के अंदर लिखा हो लेकिन 2 मीटर के रिजल्ट दिए गए 300 किलोमीटर दूर। आप समझिए कि जब वो हमला करने में सक्षम है दुनिया के कमांड सेंटर पर, जहाँ पे उनके शीर्ष अधिकारी बैठे होते हैं, प्लानिंग चल रही है, वहाँ पर हमले के पहले हमारा हमला होता है, उनकी सारी प्लानिंग ध्वस्त हो जाती है। कम्युनिकेशन सिस्टम पर जहाँ से बातचीत होती है उसको ख़त्म कर दें, रडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, लॉजिस्टिक बेस, जहाँ से उनके हथियारों का भंडारण है, अम्यूनिशन का भंडारण है, तेल है, पिन पॉइंट हमला करने में सक्षम है।
0: सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम में प्रिसिजन गाइडेड रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये पारंपरिक हथियारों की तरह इधर उधर नहीं गिरते बल्कि बिल्कुल उसी जगह पर प्रहार करते हैं जहां इन्हें भेजा गया, यानी निशाना एकदम अचूक। सूर्यास रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में 150 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट का सीईपी यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल महज 1.5 मीटर है, वहीं 300 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट का सीईपी 2 मीटर है। इसका मतलब ये है कि रॉकेट अपने टारगेट से औसतन 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर गिरता है, जो युद्ध में बहुत बड़ी ताकत है।
2: सूर्यास्त्र देखा जाए तो एक टेक्नोलॉजी का बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है। इससे 122 mm, 306 mm, 370 mm के रॉकेट फायर किए जा सकते हैं, साथ साथ में कामिकाजी ड्रोन भी फायर किया जा सकता है। 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी और तकरीबन 5 मीटर कहा जाता है, लेकिन इससे बेहतर रिजल्ट्स इसके मिले 2 मीटर का सर्कुलर एरर पे, यानी कि 2 मीटर के अंदर अंदर ये फायर करने में सक्षम है। ये इसका प्रिसीजन है, ये इसकी एक्यूरेसी है। क्या फ़ायदा होगा इसका? यह होगा कि दुश्मन के कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक बेस, उनकी गन पोजीशन, एडी सिस्टम, रडार स्टेशन और जहाँ पे उनकी रॉकेट सिस्टम है, जहाँ सब पर भी उनका जो एक स्ट्रेटजिक टारगेट्स हैं उनको हम पिन पॉइंट हमला करने में ये सक्षम है।
0: भारतीय सेना को अब लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाले रॉकेट्स मिलेंगे, जिससे दुश्मन के ठिकानों जैसे कि आर्टिलरी पोजीशंस, कमांड सेंटर्स और दूसरे अहम टारगेट्स को सुरक्षित दूरी से तबाह किया जा सकेगा।

सूर्यास की सबसे बड़ी ताकत है इसकी मल्टी बैरल क्षमता, जिसमें अलग अलग तकनीक के हथियार एक साथ लगाए जा सकते हैं और दागे भी जा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि निशाना भी सटीक और लॉजिस्टिक का खर्च भी बहुत कम। सूर्यास के अलग अलग पॉड्स को मिशन के हिसाब से बदला जा सकता है। 370 mm कैलिबर की प्रेडेटर हॉक गाइडेड रॉकेट सूर्यास सिस्टम का सबसे घातक हथियार है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। सूर्यास सिस्टम का एक और घातक हथियार है एक्स्ट्रा रॉकेट। 306 mm कैलिबर का ये गाइडेड रॉकेट 150 किलोमीटर तक दुश्मन के बंकरों और कमांड सेंटर्स को तबाह कर सकता है। सूर्यास सिस्टम से 122 mm और 160 mm कैलिबर के बेहद किफायती एक्यूलर रॉकेट्स दागे जा सकते हैं, जो 40 से 100 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। सूर्यास सिस्टम से स्काई स्ट्राइकर लॉयटरिंग मिनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन भी दागे जा सकते हैं, जो हवा में रहकर दुश्मन की खोज करते हैं और सटीक हमला करते हैं। सूर्यास रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से दागी जाने वाली प्रेडेटर हॉक रॉकेट्स में GPS INS सेंसर फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये तकनीक प्रेडेटर हॉक रॉकेट को बिना किसी भारी मदद के बेहद खराब मौसम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के बीच भी सटीक निशाना लगाने की क्षमता देती है।

0: देखा जाए तो प्रेडेटर हॉक सूर्य अस्त्र का सबसे खतरनाक रॉकेट है। 300 किलोमीटर तक जाता है, 370 mm है और 140 से 200 किलोग्राम तक का ये एक्सप्लोसिव ले जा सकता है और छत के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर, बंकर्स के ऊपर बहुत इफेक्टिव है। तोड़ के अंदर तक उनको तहस नहस कर सकता है। सेल्फ गाइडेंस है, गाइडेंस बड़ी अच्छी है और पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है, जैसा कि 5 मीटर का बताया जाता है, लेकिन 2 मीटर की हमको इसमें एक्यूरेसी मिली है। और शूट एंड स्कूट का इसका फैसिलिटी है कि फायर करे, उसके बाद जगह बदली कर सकता है।
1: हॉक रॉकेट सुपरसोनिक स्पीड से हमला करने में सक्षम है, जबकि ये 140 किलोग्राम का भारी वॉरहेड लेकर अपने टारगेट से टकराता है तो भारी मात्रा में काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। इस ऊर्जा के कारण बिना विस्फोट हुए भी ये रॉकेट सिर्फ अपनी रफ्तार और वजन के दम पर कंक्रीट की कई फीट मोटी दीवारों को मलबे में तब्दील कर सकता है। सूर्यास्त्र की सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक पारंपरिक क्रूज और एक बैलिस्टिक मिसाइल के 15% खर्चे से भी सस्ता है, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि युद्ध के क्षेत्र में हमें भारी भरकम खर्च उठाने की जरूरत नहीं है। हम मल्टीपल रॉकेट्स दुश्मन पर दाग सकते हैं।

0: तेजी से जगह बदल सकता है। सूर्यास्त को 6x6 भारी ट्रकों पर माउंट किया गया है। हमला करने के बाद ये सिस्टम फौरन अपना लोकेशन बदलने में सक्षम है, जिससे दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना और निशाना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है।
1: जानते हैं कि भारत सरकार ने किस तरह के चेंजेस किए हैं, जिस वजह से 5000 तरह के उपकरण भारत में ही बनाए जा रहे हैं। दरअसल अभी अगर बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट पार्टनरशिप 20-30% है, जिसे बढ़ाकर सरकार 50% तक करना चाह रही है। इसको लेकर विचार हो रहा है। मोदी सरकार ने FDI, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जैसे बड़े सुधार किए हैं।
0: सूर्यास्त भारत की आर्टिलरी ताकत में काफी इजाफा करेगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के पास जो पिनाका मौजूद है उसमें और सूर्यास्त में क्या अंतर है? तो सबसे पहले दोनों रॉकेट सिस्टम की ताकत और खासियत जान लीजिए। सिस्टम की बात करें तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च है, जो सिर्फ रॉकेट लॉन्चिंग के लिए ही है। सूर्यास्त यूनिवर्सल लॉन्चर है, जो रॉकेट और मिसाइल दोनों दाग सकता है। पिनाका में कैलिबर फिक्स है और इसे सिर्फ 214 mm रॉकेट से ही दागा जा सकता है। सूर्यास्त मल्टी कैलिबर है, जो 122 mm, 306 mm, 370 mm के वेपन्स दाग सकता है। रेंज की बात की जाए तो पिनाका MK1 40 किलोमीटर और पिनाका एक्सटेंडेड रेंज 75 से 90 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। वहीं सूर्यास्त की रेंज 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर है। पॉड रीलोड सिस्टम की बात करें तो पिनाका के रीलोडिंग में करीब 4-5 मिनट का समय लगता है। वहीं सूर्यास्त में जो पॉड सिस्टम लगा है उसे रीलोड करने में 10 मिनट का वक्त लगता है।
2: पिनाका और सूर्यास्त में फर्क ये है कि पिनाका में एक साथ बहुत सारे रॉकेट फायर होते हैं, 6-6 रॉकेट यानी 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ गिरते हैं एक इलाके में, और वो एक एरिया वेपन के तौर पर, यानी कि 214 mm के रॉकेट हैं, एक ही कैलिबर के होंगे और वो एक जगह जाके पूरे इलाके को सैचुरेट कर देंगे, भस्म कर देंगे। जबकि सूर्य अस्त्र में अलग अलग कैलिबर के रॉकेट फायर हो सकते हैं, 122 mm, 306 mm या 370 mm, 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज होती है। और ये फर्क ये कि पिन पॉइंट अटैक करता ही है, एक रॉकेट जाएगा वहाँ पिन पॉइंट हमला करेगा, तो दोनों के टारगेट अलग हैं।
0: भारतीय सेना सूर्यास्त सिस्टम को उसकी 300 किलोमीटर की लंबी रेंज और डीप स्ट्राइक क्षमता के कारण LAC और LOC के अत्यंत संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात कर सकती है। इसका मेन मकसद चीन और पाकिस्तान की सेना के रसद आपूर्ति करने वाले रास्तों, एयरबेस और कमांड सेंटर्स को अपने तोपखाने की जद में लाना है। रॉकेट का ताकतवर होना कई मायनों में सेना की युद्ध क्षमता तो नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा, जो काम फाइटर जेट किया करते थे और जिन कामों में मिसाइल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, उसी काम को अब सूर्यास्त जैसा सिस्टम आसानी से कर देगा।
1: पारंपरिक तौर पर अगर देखा जाए तो अगर दुश्मन 300 किलोमीटर दूरी पर बैठा है तो भारत को अपने लड़ाकू विमानों को मैदान में उतारना पड़ता है, लेकिन सूर्यास्त के आने के बाद न तो हम अपने पायलट्स की जान जोखिम में डालेंगे और न ही दुश्मन की सरहद में जाने की जरूरत होगी, बल्कि भारत अपनी सरहद पर ही बैठे दुश्मन का काम तमाम कर सकता है।
0: पहले सीमा से 150 से 300 किलोमीटर दूरी पर मौजूद दुश्मन के कमांड सेंटर, रडार या रसद डिपो को तबाह करने के लिए वायुसेना के सुखोई विमानों को उड़ान भरनी पड़ती थी। वहीं अब इस काम को जमीन पर तैनात आर्मी के सूर्यास्त रेजिमेंट अपने प्रेडेटर हॉक रॉकेट से मिनटों में पूरा कर पाएंगे। इससे महंगे लड़ाकू विमानों और जांबाज पायलटों को दुश्मन के हवाई क्षेत्र में भेजने का जोखिम भी काफी हद तक कम हो जाएगा।
1: सूर्यास्त की तैनाती पारंपरिक तौर पर सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस मिसाइल के वर्कलोड को काफी हद तक कम कर देगी। अब वो किस तरीके से, वो भी आपको समझाते हैं। सीधी सी बात है कि 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को अगर निशाने पर लाना हो तो उसके लिए सूर्यास्त ही काफी होगा। यानी अगर देखा जाए तो रण क्षेत्र में सूर्यास्त सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की जगह ले सकता है।
0: सूर्यास्त 300 किलोमीटर की दूरी तक ब्रह्मोस जैसी अचूक सटीकता प्रदान करता है, इसीलिए सामान्य और कम सुरक्षा वाले लक्ष्यों जैसे कि आतंकी कैंप, रसद डिपो के लिए ब्रह्मोस को बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। ये काम सूर्यास्त आसानी से कर देगा। ब्रह्मोस मिसाइल को अब सिर्फ अति संवेदनशील और अत्यधिक बख्तरबंद जैसे दुश्मन के युद्धपोत या परमाणु बंकर जैसे लक्ष्यों के लिए सुरक्षित रखा।

0: जा सकेगा। ब्रह्मोस ले जाने वाले सुखोई 30 के विमानों का वजन और रखरखाव का दबाव कम होने से वायुसेना इन विमानों का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में कर पाएगी। सूर्यास्त वायुसेना का विकल्प नहीं बल्कि ये थल सेना को आत्मनिर्भर बनाकर वायुसेना की कीमती हथियारों और विमानों को बड़े और अधिक रणनीतिक युद्धों के लिए रीस्टॉक करने का मौका देता है।
1: ब्रह्मोस जैसा महंगा मिसाइल एक स्ट्रेटेजिक टारगेट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि तो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट टारगेट है, वहाँ पर सूर्यास्त का इस्तेमाल किया जा सकता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है। और तीसरी बात यह है कि सुखोई को भी बचत होगी, एयरफोर्स को जो 300 किलोमीटर दूर टारगेट होते थे उनके लिए हवा में जाके मिजाइल फायर करनी पड़ती थी, वो बच जाएगा। आप ज़मीन से फायर करोगे उनके टारगेट को बर्बाद कर दोगे, यानी कि हम अपने जो एयरक्राफ्ट हैं सुखोई है इनको एक्सपोज नहीं करेंगे, उनका इस्तेमाल और स्ट्रेटजिक टारगेट के लिए और बड़े टारगेट्स के लिए किया जा सकता है। तो यानी कि फोर्स मल्टीप्लायर है कि वो हथियार बने रहेंगे, वो अपने टारगेट्स करेंगे, बाकी टारगेट्स को सूर्यास्त एंगेज करेगा, अपनी जमीन पर रहते रहते दुश्मन को नेस्ता नाबूद करेगा।
0: आज देश में सिर्फ हथियार ही नहीं बनाए जा रहे बल्कि यहाँ उस भरोसे को भी मजबूत किया जा रहा है जिसके दम पर सेना वीरता का नया इतिहास लिख रही है।

0: अब हम सिर्फ टैंक, तोप, मिसाइल या फाइटर जेट्स ही नहीं बनाते, हम बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत, जिसका सर्वोच्च संकल्प है राष्ट्र रक्षा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहली बार आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना।
1: भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा।
0: रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा और विदेश से हथियार और उपकरण के आयात को कम कर भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड मिशन पर आगे बढ़ रहा है।

0: हिंदुस्तान अब अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं, भारत में ही तरह तरह की मिसाइलें, फाइटर जेट्स और यहाँ तक कि छोटे कलपुर्जे तक बनाए जा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत रक्षा के क्षेत्र में खुद स्टैंड कर चुका है और ये दुनिया भी भारत का लोहा मान रही है।
1: भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में लंबी छलांग लगाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले 5 साल में रक्षा उत्पादन में 90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2023 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 1,50,590 करोड़ को पार कर गया है। यानी कि भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 18% की छलांग लगाई है। साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था। यानी साल 2019-20 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 90% की बढ़त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी शक्ति बनाने के लिए शुरू की गई योजना मेक इन इंडिया ने जिस क्षेत्र में सबसे अधिक छाप छोड़ी है वो है रक्षा।
2: भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा।
1: ये मेक इन इंडिया मिशन की वो तैयारी है जिसमें हर स्क्रू, हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर भारत का है और भारत के लिए है।
0: स्क्रू से लेकर सिस्टम और सॉफ्टवेयर तक भारत आज की तारीख में ये सब कुछ अपने आप बना रहा है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि भारत ये सब कुछ न सिर्फ अपने लिए बना रहा है बल्कि 80 से ज्यादा देशों को दे भी रहा है। और ये तमाम वो देश हैं जो रक्षा के मामले में भारत पर भरोसा करते हैं।
1: सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, जिसके तहत मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू हो गया। लेकिन एक वक्त था जब 65% से 70% रक्षा सामग्री आयात की जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 35% सामान ही आयात होता है। इसका मुख्य कारण भारत की अपनी रक्षा प्रणालियों को डिजाइन और विकसित करने की बढ़ती क्षमता है।
0: भारत सरकार की तरफ से पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट तैयार की गई है, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि स्वदेशीकरण को ज्यादा बढ़ावा देना। यानी खास तौर पर रक्षा के क्षेत्र में हम किसी दूसरे मुल्क पर निर्भर न रहें, छोटे से कलपुर्जे से लेकर बड़ी से बड़ी मिसाइल तक बनाने में भारत खुद अपनी धरती का और यहाँ के साजो सामान का ही इस्तेमाल करे।
1: अब तक रक्षा मंत्रालय ऐसी 5 लिस्ट जारी कर चुका है और इसमें तकरीबन 5,000 आइटम्स के आयात पर पाबंदी लगाई गई थी। ये सभी डिफेंस, पीएसयू और निजी स्वदेशी कंपनियों से खरीदे जा रहे हैं। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट 4,666 आइटम्स की 5 लिस्ट जारी की गई है, जिन्हें सिर्फ स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा। नेगेटिव लिस्ट, इसमें 310 उपकरणों जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, तोप के आयात पर 2020 से 2027 तक रोक लगाई गई है। डैप 2020 यानी कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में खरीद को प्राथमिकता दी गई, यानी कि स्वदेशी डिजाइन और प्रोडक्शन को बढ़ावा। सृजन पोर्टल, इसमें 19,509 पहले आयातित आइटम्स को स्वदेशी बनाने के लिए लिस्ट किया गया। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा, इसमें टाटा, L&T, भारत फोर्स और MSME को बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। FDI में छूट, डिफेंस में 74% तक FDI ऑटोमेटिक रूट से और 100% सरकार की मंजूरी से होगी। अगला है R&D को बढ़ावा, इसमें IDEX और TDF स्कीम्स से स्टार्टअप्स और MSMEs को फंडिंग दी जा रही है। साल 2025 में TDF के लिए 60 करोड़ रुपए और IDEX प्राइम के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए।
3: हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर ना सिर्फ सुरक्षा के मामले में डिफेंस प्रोटेक्शन में होना पड़ेगा, तमाम ऐसी विधाएं हैं उसमें हर एक में आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसका कि प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियर कट कॉल दिया हुआ है। जहां तक डिफेंस का सवाल है, देखिए हिंदुस्तान की सुरक्षा में को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। आप ऐसे समय में दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें जब आपको उस इक्विपमेंट की, उस हथियार की, उस गोला बारूद की, उस एमिनिशन की जरूरत है, लिहाजा आपको स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा। और हिंदुस्तान देखिए धीरे धीरे इसके तरफ अग्रसर हो रहा है।
1: कंपनियों को भी सरकार की तरफ से सहूलियतें दी गई हैं। सरकार ने भारत की निजी हथियार निर्माता कंपनियों के लिए ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है कि बड़ी तेजी से ये आगे बढ़ने लगे। इस पूरी बढ़ोतरी में हिस्सेदारी की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2024-25 में कुल रक्षा उत्पादन में DPSU यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान करीब 77% रहा, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 23% रहा। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले बढ़ी है। जो वित्त वर्ष 2023-24 में 21% थी, वो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 23% हो गई।
3: सबसे पहले मैं टच करूंगा पॉजिटिव इंडियनाइजेशन। इसके तहत वो सारी चीजें हैं जो कि डिफेंस में जिसकी रिक्वायरमेंट है और जिसको हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सकती है, चाहे वो PSUs हो, DPSUs हो, प्राइवेट सेक्टर हो। अब हम नेगेटिव लिस्ट की बात करते हैं। टाइम टू टाइम ये लिस्ट रिवाइज की जाती है। नेगेटिव लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें कि उन आइटम को बैन किया गया है जिसका हम बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे। ये सारे के सारे आइटम हिंदुस्तान में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। हमारी कैपेबिलिटी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लिहाजा ये नेगेटिव लिस्ट में दिन रात इजाफा हो रहा है और इन आइटम को हम अब बाहर से इंपोर्ट करना डिफेंस सेक्टर में बंद करेंगे। सृजन पोर्टल देखिए एक ऐसा पोर्टल है जिसमें तमाम प्राइवेट प्लेयर और पब्लिक सेक्टर की यूनिट इसमें लॉग इन कर सकते हैं, अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं, जिससे कि तमाम आगे आने वाले दिनों में जो हमारे डिफेंस की प्रोक्योरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, किसका टेंडर निकलने वाला है, क्या उसका क्वालिफिकेशन क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों की उसमें लिस्टिंग होती है।
1: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत अपने डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा तवज्जो दे रहा है और इसी के तहत देश में डिफेंस कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में सिर्फ दो ही कॉरिडोर हैं। रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति माइकल बोलोस के साथ राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जैसलमेर पहुंची। इस दौरान दंपति ने विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर फोर्ट को देखा, जिसे सुनार किला के नाम से भी जाना जाता है, इसका भ्रमण किया। सुनहरे पत्थरों से निर्मित इस भव्य किले की वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत ने उनका ध्यान आकर्षित किया। टिफनी ट्रंप को स्टेट ऑफ गेस्ट का दर्जा दिया गया है। उनके ठहरने के लिए शहर के प्रसिद्ध और भव्य होटल सूर्यगढ़ में विशेष इंतजाम किए गए हैं। होटल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियां कड़ी नजर रख रही हैं और इस हाई प्रोफाइल दौरे को देखते हुए जैसलमेर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम। मौसम खराब होने पर यात्रा पर लगा था अल्प विराम। बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक 7.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई। बर्फबारी के बीच श्री हेमकुंड साहिब में भी आस्था भारी।
7: पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में लगा भक्तों का तांता। पूजा अर्चना के साथ हर रविवार को होते हैं धार्मिक अनुष्ठान। दान पुण्य के साथ भक्तों के लिए भंडारे का इंतजाम। यूपी की राजधानी लखनऊ में हुई झमाझम बारिश। भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को मिली राहत। आसमानी फुहारों से गिरा पारा। उत्तराखंड के चमोली में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का भव्य आगाज। 28 राज्यों के 933 प्रतिभागी कर रहे शिरकत। भारत चीन सीमा के पास लगा रोमांच का मजमा। राजस्थान में फिर उठा रेतीला तूफान। तेज हवाओं के साथ जैसलमेर के आसमान पर छाया बवंडर। दिन में हुआ अंधेरा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर आसमान में दिखा ब्लू मून का दुर्लभ नजारा। नीला नहीं बल्कि नारंगी नजर आया चांद। टेलीस्कोप से अनोखी खगोलीय घटना का दीदार करते दिखे लोग।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का विस्फोटक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो है तो महज 15 साल का, लेकिन क्रिकेट के मैदान में बल्ले से ऐसे ऐसे कीर्तिमान रच रहा है कि बड़े बड़े सूरमाओं की चमक उसके आगे फीकी पड़ती जा रही है।

0: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बीते 27 मई को आईपीएल के एक मुकाबले में बल्ले से विस्फोट की नई इबारत लिखने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी है। जी हां, 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की जो विस्फोटक पारी खेली उसकी धमक में क्रिकेट के कई दिग्गजों के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स दफन हो गए। वैभव ने एक पारी में इतने रिकॉर्ड्स बना दिए कि ये खुद अपने आप में रिकॉर्ड हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वाली पारी। दरअसल पिछले 2 साल से वैभव मैदान में टिककर जिस तरह से आतिशबाजी कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले वर्षों में बल्लेबाजी का कोई ऐसा रिकॉर्ड होगा ही नहीं जो वैभव के नाम ना हो।
1: क्रिकेट के क्षितिज पर उदित हो चुका है एक ऐसा चमचमाता वैभवशाली सूर्य जिसकी चौंधिया देने वाली चमक में क्रिकेट के आसमान के बड़े बड़े सितारे गुम से हो गए हैं। इस वैभवशाली सूर्य ने आईपीएल की महज एक पारी में इतने कीर्तिमान बना दिए हैं कि रिकॉर्ड बुक के हर सफहे पर एक ही नाम चमक रहा है, वैभव सूर्यवंशी। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को हुए एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की ऐसी विस्फोटक पारी खेली कि आईपीएल के 18 साल के इतिहास में बल्ले से बने करीब करीब सारे रिकॉर्ड्स जमींदोज हो गए।
2: वो बच्चा 15 साल का है, इतनी धमाल मचा रखी है। बुमराह को उसने पहली बॉल पे छक्का मारा, हेजलवुड को, हर एक बॉलर को उसने पहली बॉल पे छक्का मारा। ऐसा बल्लेबाज मैंने दुनिया में नहीं देखा। वरिंदर सहवाग भी ऐसी पारी नहीं कभी खेल सका जो वैभव सूर्यवंशी खेलता।
1: वैभव की इस अविस्मरणीय पारी को देखकर ऑल टाइम ग्रेट सचिन तेंदुलकर को कहना पड़ गया अभूतपूर्व। बल्ले से वैभव का अतुल्य धमाका पूरी एकाग्रता से देखने के बाद सचिन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का स्विंग असाधारण था। इससे भी बड़ी बात यह है कि पैरों पर फेंकी गई गेंद पर उन्होंने बेहद कुशलता के साथ फ्रंट फुट क्लियर का रूम बना लिया, जिसकी वजह से उन्होंने जहां चाहा गेंद को वहीं पहुंचा दिया। वैभव की ये पारी चमत्कार से कम कुछ भी नहीं। यूं तो वैभव ने पूरे आईपीएल के दौरान अतुल्य बल्लेबाजी की है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को खेली गई उनकी एक अदद पारी क्रिस गेल, डेविड वार्नर, रिली रूसो, शुभमन गिल और सुरेश रैना जैसे दिग्गजों की कई कई पारियों पर भारी पड़ गई है। वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की धमाकेदार पारी में 12 छक्के लगाए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वैभव ने आईपीएल 2026 सीजन में 65 छक्के पूरे कर लिए हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 सिक्सर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। गेल ने आईपीएल 2012 में कुल 59 छक्के लगाए थे। वैभव के इस रिकॉर्ड के भीतर भी एक रिकॉर्ड छिपा हुआ है। गेल ने 59 सिक्सर के लिए 456 गेंदे खेली थी, जबकि वैभव ने सिर्फ 280 गेंदों पर 65 छक्के अपने नाम कर लिए हैं। 280 गेंदों पर 65 छक्कों का मतलब ये हुआ कि कमोबेश हर चौथी गेंद पर सिक्सर। ये रिकॉर्ड तो गेंदबाजों के लिए डरावने सपने की तरह है।
3: This young man is something else, he can hit the best of fast bowlers, the best of slow bowlers into the crowd. His sixes are generally into the crowd. His sixes are not those that just pop over that boundary arrow, and he just makes it look so ridiculously easy.
1: महज 15 साल के वैभव जिस तरह कीर्तिमान पर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि भविष्य में बल्लेबाजी के सारे रिकॉर्ड्स ब्लैक एंड व्हाइट में इनके नाम ही दर्ज मिलेंगे। 27 मई को एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने एचआरएस के खिलाफ सिर्फ 16 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। आईपीएल के नॉकआउट हिस्ट्री में ये संयुक्त रूप से सबसे तेज 50 है। इससे पहले साल 2014 के क्वालिफायर 2 में सुरेश रैना ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 16 गेंदों पर अर्धशतक बनाया था। इतना ही नहीं, वैभव की इस पारी में शुरू के 10 छक्के सिर्फ 24 गेंदों पर ही आ गए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 10 छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। गेल के 10 छक्के साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 27 गेंदों में आए थे। आईपीएल 2026 के दौरान 27 मई को खेली गई ऐतिहासिक पारी समेत कुल 15 पारियों में वैभव 243 की स्ट्राइक रेट से 680 रन बना चुके हैं। टी20 के किसी भी टूर्नामेंट में 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से 600 से ज्यादा रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले साल 2022 में टी20 ब्लास्ट में रिली रूसो ने 192 के स्ट्राइक रेट से 623 रन बनाए थे। वैभव की इस एक पारी में बने रिकॉर्ड्स की फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव के कुल 12 में से 8 छक्के पावर प्ले में ही आ गए थे। दिलचस्प तो ये है कि इससे पहले पावर प्ले में सबसे ज्यादा 7 छक्कों का कीर्तिमान भी हिंदुस्तान के इस वैभवशाली खिलाड़ी के नाम ही दर्ज था। वैभव अब आईपीएल में 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियां खेल चुके हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। पर कमाल यह है कि वैभव की 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियों में से 3 आईपीएल के मौजूदा सीजन में ही आई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की अपनी पारी में वैभव ने एक और अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। आईपीएल के इतिहास में 90 प्लस रनों की सभी पारियों में वैभव की पारी सबसे तेज स्ट्राइक रेट वाली पारी बन गई है। वैभव ने 334.48 की स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए। इससे पहले ये रिकॉर्ड रजत पाटीदार के नाम था, जिन्होंने इसी सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 281.81 की स्ट्राइक रेट से 33 गेंदों पर 93 रन बनाए थे। आपको बता दें कि 27 मई वाली पारी को लेकर वैभव आईपीएल 2026 सीजन में सिर्फ पावर प्ले के दौरान 490 रन बना चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड डेविड वार्नर के नाम था, जिन्होंने साल 2016 में पावर प्ले के दौरान 467 रन बनाए थे। ये सारे रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं 15 साल के एक टीनेजर के नाम। सोचिए, 15 साल का ये बच्चा इसी उम्र में अगर क्रिस गेल, डेविड वार्नर, किरोन पोलार्ड और शुमन गिल जैसे महारथियों के रिकॉर्ड्स की कब्रगाह बना चुका है, तो आगे तो वैभव के नाम से ही कीर्तिमान की एक किताब छापनी पड़ जाएगी।
4: बैट्समैन बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में अगर वो अपनी फिटनेस अच्छी मेंटेन करता है तो फिर आने वाला वो फ्यूचर स्टार है इंडिया का।
5: वैभव सूर्यवंशी, उसकी भी बैटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया खेलता है,
6: बहुत
5: नेक्स्ट लेवल बैटिंग है। हम उसकी बैटिंग को नहीं कह सकते, उसकी अब अपनी अलग क्लास है।
7: गर्दा उड़ा दिया वैभव सूर्यवंशी ने,
1: ऐसा नहीं है कि वैभव का बल्ला सिर्फ आईपीएल में ही चला है। इससे पहले भी बिहार के समस्तीपुर का ये लाल ऐसी ऐसी अद्भुत पारियां खेल चुका है कि क्रिकेट के इतिहास में उसकी कोई सानी देखने को नहीं मिलती। इसी साल 6 फरवरी को जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में वैभव ने जो पारी खेली थी, उसे अंडर 19 वर्ल्ड कप के 38 साल के इतिहास की सबसे महान पारी कहा जा रहा है। सबसे महान पारी क्यों कहा जा रहा है, स्टैट देखने से इसका जवाब मिल जाएगा। वैभव ने महज 80 गेंदों पर 175 रन ठोक दिए। वैभव ने इस पारी में 15 छक्के और 15 चौके लगाए, यानी 150 रन सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए अपने खाते में जोड़ लिए। 55 गेंदों पर शतक पूरा किया, बाद के 75 रन सिर्फ 25 गेंदों पर ठोक दिए। महज 71 गेंदों पर 150 रन पूरे कर लिए, जो यूथ वनडे इतिहास का सबसे तेज 150 है। इतना ही नहीं, वैभव ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में कुल 30 छक्के लगाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस के नाम था, जिन्होंने 2022 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में 18 छक्के लगाए थे। पूरे टूर्नामेंट में वैभव 439 रन के साथ सेकेंड टॉप स्कोरर भी रहे। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहने के साथ वैभव ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप से ठीक पहले अंडर 19 एशिया कप में 12 दिसंबर 2025 को यूएई के खिलाफ वैभव ने 95 गेंदों पर 171 रन कूटकर विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए थे। इस आतिशी पारी में वैभव ने 9 चौके और 14 छक्के लगाए थे। कहने की जरूरत नहीं कि सबसे तेज और सबसे कम उम्र से जुड़े रिकॉर्ड्स के सरताज बन चुके हैं वैभव। 24 दिसंबर 2025 को रांची के जेएससीए ओवल ग्राउंड में वैभव ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि कई विश्व कीर्तिमान ध्वस्त हो गए। विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल के खिलाफ हुए मुकाबले में वैभव ने सिर्फ 84 गेंदों पर 15 छक्कों और 16 चौकों की मदद से 190 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी थी। इस मैच में सिर्फ 59 गेंदों पर 150 रन पूरे कर वैभव ने लिस्ट ए मैच में फास्टेस्ट 150 का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के नाम था, जिन्होंने साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 64 बॉल पर 150 रन बनाए थे। तूफान थोड़ी देर के लिए हो तो राहत, नहीं तो कहर बन जाता है। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के मैदान के टिक कर रहने वाले तूफान नहीं बल्कि बवंडर हैं। इसीलिए विरोधियों के लिए कहर नहीं बल्कि महाकहर बन रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैभव 13 साल की उम्र में एक मैच में ट्रिपल सेंचुरी भी लगा चुके हैं। रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में वैभव ने 332 रनों की नाबाद पारी खेली थी। अभी तो ये यूथ इंडिया की रहनुमाई कर रहे हैं, इंतजार कीजिए इनके टीम इंडिया में शामिल होने का। इसकी पूरी संभावना है कि साल 2027 के वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए ओपनिंग करेंगे और बहुत संभव है कि भारत तब वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक लगाएगा।
0: 15 साल के वैभव की कामयाबी क्रिकेट के बड़े बड़े धुरंधरों को भी हैरान करने लगी है। आईपीएल में अपने से दो गुने ढाई गुने उम्र के घातक गेंदबाजों को भी वो न सिर्फ सहजता से खेल रहे हैं बल्कि कायदे से धुलाई भी कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इतनी छोटी उम्र में ही वैभव इतने दिग्गज बल्लेबाज कैसे बन गए। दरअसल इसके पीछे कहानी है एक अधूरे सपने की, जो कभी वैभव के पिता ने देखा था। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन हालात की दुश्वारियों की वजह से उनका ये सपना अधूरा रह गया। पर अपने उसी अधूरे सपने को संजीव ने अपने बेटे वैभव के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया। वैभव के क्रिकेटर बनने की पूरी कहानी आपके दिल को छू लेगी।
1: सर पर कामयाबी के ताज के साथ मन में विनम्रता का संस्कार हिंदुस्तान की संस्कृति का सनातन हिस्सा है। मैच 15 की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी का बेनजीर परचम लहरा चुके वैभव सूर्यवंशी सनातन संस्कार के युगीन संवाहक हैं। जिस मैच में वैभव ने रिकॉर्ड्स की छड़ी लगा दी, उसके प्री मैच शो के दौरान जब उन्होंने सुनील गावस्कर और संजय बांगर को देखा तो दौड़कर उनके पास गए और पूरी विनम्रता के साथ उनके पैर छू लिए। वैभव के संस्कार की निश्चल सादगी देखिए कि गावस्कर और बांगर के साथ मौजूद प्रेजेंटर जतिन सप्रू के भी पैर छूने की उन्होंने पूरी कोशिश की। यह अलग बात है कि जतिन पीछे हट गए।
3: हमारी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है कि हम अपने जो बुजुर्ग है, सीनियर्स है, एल्डर्स है, उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, और वही उन्होंने किया। सिर्फ मेरे पास ही नहीं आए थे वो, बस मेरे बाजू में संजय बांगर थे और जतिन सप्रू थे, उनके पास भी आए थे और मुझसे थोड़ा सा रुककर मुझसे कुछ अपेक्षा कर रहे थे कि मैं कुछ उनको बोलूं, शायद अपेक्षा कर रहे थे, मैं ये नहीं कहूंगा, शायद अपेक्षा कर रहे थे। तो मैंने उनको सिर्फ यही कहा, लगे रहो, क्योंकि जब वो लगे रहेंगे तो फिर वो बल्ला मतलब बल्ला लगता रहेगा और छक्के भी लगते रहेंगे।
1: उम्र के लिहाज से वैभव की बेनजीर कामयाबी इस बात की मुनादी कर रही है कि आने वाले वक्त में कीर्तिमान की किताब के हर सफहे पर बिहार के इस लाल का नाम दर्ज मिलेगा। पर वैभव नाम के इस प्रदीप्त दिए की रोशनी से सराबोर होने वाले लोगों को उस तेल और बाती के बारे में भी जानना चाहिए जो खुद गुमनाम रहकर अपने दिए को जगमग कर रहा है। वैभव की इस बेनजीर कामयाबी के पीछे हाथ है उनके पिता संजीव सूर्यवंशी का, जो कभी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का ख्वाब सजोए हुए थे, पर खुद की जो हसरत अधूरी रह गई उसे उन्होंने अपने लाल में प्रत्यारोपित कर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक पिता के अनोखे त्याग की खामोश सदाएं समस्तीपुर जिले के जर्रे जर्रे में जज्ब है।
6: वास्तव में एक पिता का जो त्याग था, तपस्या था, जिद था कि हमको किसी भी तरह जो मैं हासिल नहीं कर सका वो मैं अपने बच्चे को उस मुकाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। वो एकाकी भी देखा कि लोगों से मिलना तक लोगों में, क्योंकि जुनून सवार था कि मैं अपने बेटे को उस मुकाम तक पहुंचाऊं, तो लोगों से मिलना भी बंद किया। उस बीच में कई ऐसी मुसीबतें भी आई, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया।
1: पांच साल के बच्चे को पढ़ाई से दूर कर क्रिकेट के मैदान में पसीना बहाने के लिए खड़ा कर देना किसी भी पिता के लिए आसान फैसला नहीं होगा। पर संजीव सूर्यवंशी ने कलेजे पर पत्थर रख कर ये फैसला लिया। समस्तीपुर जिले की ताजपुर पंचायत में जहां क्रिकेट का कोई नाम लेवा नहीं था, वहां पांच साल के बेटे की प्रैक्टिस के लिए सारी व्यवस्था कर दी। यहां तक कि कुछ हम उम्र और बड़े बच्चों को भी चॉकलेट मिठाई का प्रलोभन देकर साथ जोड़ लिया ताकि वे बॉलिंग करें और वैभव लगातार बैटिंग की प्रैक्टिस करता रहे। पांच साल से सात साल यानी दो साल तक गांव में ही वैभव को दिन रात प्रैक्टिस कराने के बाद एक दिन संजीव सूर्यवंशी को इल्हाम हो गया कि अब अगले लेवल की प्रैक्टिस का वक्त आ गया है, लिहाजा बेटे को लेकर निकल गए ताजपुर से 12 किलोमीटर दूर स्थित पटेल मैदान में, जहां ब्रजेश झा क्रिकेट एकेडमी चलाते थे। क्रिकेटर बनाने का जुनून ऐसा था कि संजीव सूर्यवंशी को जब लगा कि रोजी रोटी के लिए चलने वाला बिजनेस व्यवधान बन रहा है तो बगैर देरी के उसे बंद कर दिया।
8: गार्डियनों का उनका सपोर्ट रहा है कि अपने बच्चे को इतना ज्यादा टाइम किल करते थे, अपने साथ लाना ले जाना, बच्चों के साथ अपना बिजनेस छोड़ के बच्चे के प्रति इतना एक फोकस, गार्जियन का भी कहीं ना कहीं टारगेट था कि हमारा बच्चा ऊपर खेले, और भगवान की दुआ से बच्चा वो मुकाम पर हासिल किया।
1: इसमें कोई संदेह नहीं कि 7-8 साल की छोटी उम्र में ही वैभव अपने पिता की उम्मीदों की कसौटी पर लगातार खरे उतर रहे थे। जब तक सूर्य की रोशनी धरा पर मौजूद रहती, वैभव बल्ले को दामन से दूर नहीं होने देते। पिता और माँ को छोड़कर घर के बाकी सदस्यों को वैभव की आदत कई बार नागवार गुजरती थी। दादी ने तो कई मौकों पर ऊब कर वैभव की पिटाई भी कर दी थी, पर बचपन में वैभव की पिटाई के वो वाकये आज दादी के लिए सुनहरी यादें बन चुकी हैं।
9: डांटते थे,
10: अच्छा,
9: कभी कभी उसको मारते थे, दौड़ते थे उस पर, फिर भी कहता था नहीं दादी हमको अच्छा लगता है, हम खेलेंगे। ठीक है बाबू तब खेलो। जब धीरे धीरे जब दल सिंह सराय गया, बेनी पट्टी, उसके बाद आपको क्या कहते हैं बेगूसराय, जब हम देखते रहे कि यह अच्छा खेल में उतर रहा, तब से मेरा भी मनोबल और मन ये हुआ कि हाँ यह खेले।
1: बचपन में वैभव की बैटिंग की खटखट से ऊब जाने वाली दादी का हृदय आज इस बात को जानकर गदगद है कि उनका पौत्र क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़कर आईपीएल के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाला खिलाड़ी बन गया है। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि वैभव को पटना के जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में डालने के लिए संजीव सूर्यवंशी को जमीन तक बेचनी पड़ी थी? दरअसल संजीव सूर्यवंशी को जब ये लगने लगा कि उनका बेटा समस्तीपुर स्थित पटेल मैदान के स्टैंडर्ड से आगे निकल चुका है, तो पटना में जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन कराने का फैसला किया। एकेडमी की फीस और उसके बाद समस्तीपुर से हर रोज पटना आना जाना कॉस्टली अफेयर था, इसीलिए संजीव सूर्यवंशी बेटे वैभव को लेकर हर अल्टरनेट डे पर पटना जाने लगे। जेनेक्स एकेडमी चलाने वाले पूर्व रणजी खिलाड़ी मनीष ओझा भी वैभव के पिता के त्याग और तपस्या को याद कर भावुक हो जाते हैं।
10: माँ का रोल रहता था बच्चे को तैयार करने से लेके उसको, और जब इधर से थक के जाता था तो उसको फिर रिकवरी में, चाहे वो खाने के सेंस में हो, उसको प्यार के सेंस में हो, उसको रेस्ट के सेंस में हो, और पिता का त्याग इस सेंस में था कि अर्ली सारे बोझ को वो अपने कंधे पर उठा रहे थे, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और फिर भी वो जो वो अपने हैसियत से ज़्यादा बढ़ के उन्होंने उस बच्चे के लिए किया, और हर एक वो सुविधा उस बच्चे के लिए उन्होंने अरेंज किया खेल के प्रति कि वो आज इस मुकाम को प्राप्त कर सके।
1: पिता ने अपनी हैसियत की हदों को पार कर वैभव के लिए जमीन तैयार की, और वैभव ने भी पिता के इस त्याग की कीमत को शिद्दत से महसूस करते हुए मैदान पर पसीना बहाने में कोई कोताही नहीं की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था और वैभव को पटना ले जाना ले आना संभव नहीं रहा, तो संजीव सूर्यवंशी ने अपने ताजपुर स्थित घर के बाहर ही नेट प्रैक्टिस के लिए पिच बनवा दी ताकि वैभव की प्रैक्टिस खंडित ना हो।
11: लॉकडाउन में एक्चुअली पूरा बिहार बंद था, तो यहाँ पे पिच का जनरेट किया गया भैया के द्वारा, और टर्बिकेट और सीमेंटेड लॉकडाउन में लोग घर से नहीं निकल रहे थे, उस वक्त में भी इसका प्रैक्टिस सेशन लगातार यहाँ पे चलता रहा।
1: बेटे को क्रिकेटर बनाने का ये जुनून अपने आप में अनूठा है, इसका नतीजा सबके सामने है। आज वैभव के बल्ले से बनने वाले विश्व रिकॉर्ड्स संजीव सूर्यवंशी की दुनिया को रंगीन सपनों से भी ज्यादा सुहावन बना रहे हैं। वैभव की विराट बुलंदी का आलम यह है कि पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट पर संजीव सूर्यवंशी और उनकी पत्नी से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। देश का गौरव बन चुके तेजस्वी पुत्र का पिता होने के लिए बधाई देते हैं। पिता ने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए त्याग तपस्या की, तो बेटा भी दो कदम आगे बढ़कर अपनी विराट उपलब्धियों से हक अदायगी कर रहा है। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उसके 14 साल के बेटे को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2025 को वैभव को राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। साफ है कि पिता के संकल्प और बेटे की जीतोड़ मेहनत का पावन संगम क्रिकेट के मैदान पर चमत्कारिक धारा बनकर नमूदार हो रही है।
0: तो बंदे में है दम में आज आपने वैभव सूर्यवंशी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
12: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
14: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति माइकल बोलोस के साथ राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जैसलमेर पहुंची। इस दौरान दंपति ने विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर फोर्ट को देखा। ऋषेश नारकला के नाम से भी जाना जाता है, इसका भ्रमण किया। सुनहरे पत्थरों से निर्मित इस भव्य किले की वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत ने उनका ध्यान आकर्षित किया। टिफनी ट्रंप को स्टेट ऑफ गेस्ट का दर्जा दिया गया है। उनके ठहरने के लिए शहर के प्रसिद्ध और भव्य होटल सूर्यगढ़ में विशेष इंतजाम किए गए हैं। होटल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियां कड़ी नजर रख रही हैं और इस हाई प्रोफाइल दौरे को देखते हुए जैसलमेर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
15: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
16: सूर्य की राशि की विशेषताएं क्या हैं और इसके प्रभाव क्या हैं, चंद्रमा की राशि की के प्रभाव क्या हैं, चंद्रमा की राशि सुधारा जाए, बात सिर्फ गुड लक टुडे में।
15: TuneIn has the music.
12: Take a vacation with poolside hits on TuneIn. TuneIn Poolside has the music I love. Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii, Bloom, and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs and get your pool party started. Just search Poolside or ask your device to play Poolside on TuneIn.
0: Good news today.
13: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
14: मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम। मौसम खराब होने पर यात्रा पर लगा था अल्प विराम। बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक 7.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई। बर्फबारी के बीच श्री हेमकुंड साहिब में भी आस्था भारी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में लगा भक्तों का तांता। पूजा अर्चना के साथ हर रविवार को होते हैं धार्मिक अनुष्ठान। दान पुण्य के साथ भक्तों के लिए भंडारे का इंतजाम। यूपी की राजधानी लखनऊ में हुई झमाझम बारिश। भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को मिली राहत। आसमानी फुहारों से गिरा पारा। उत्तराखंड के चमोली में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का भव्य आगाज। 28 राज्यों के 933 प्रतिभागी कर रहे शिरकत। भारत चीन सीमा के पास लगा रोमांच का मजमा। राजस्थान में फिर उठा रेतीला तूफान। तेज हवाओं के साथ जैसलमेर के आसमान पर छाया बवंडर। दिन में हुआ अंधेरा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर आसमान में दिखा ब्लू मून का दुर्लभ नजारा। नीला नहीं बल्कि नारंगी नजर आया चांद। टेलीस्कोप से अनोखी खगोलीय घटना का दीदार करते दिखे लोग।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: लागत में बेस्ट, तकनीक में श्रेष्ठ, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार, हिंदुस्तान बना रहा है स्वदेशी हथियार।
1: जो देश अपने हथियार खुद बनाता है वही देश अपनी तकदीर भी खुद लिखता है।
0: आज भारत तोप की गोली से लेकर मिसाइल तक और फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक सब कुछ खुद ही तैयार कर रहा है। एक वक्त था जब भारत अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे भारत ने अपनी ताकत को समझा, उसे जाना और खुद आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची। आज रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत सारे ऐसे उपकरण है जो अपने यहाँ ही बना रहा है। कई देशों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत ही भारत ने अपने यहाँ ही कई रक्षा उपकरणों को बनाना शुरू किया है। नतीजा ये है कि आज की डेट में भारत न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि दूसरे देशों का निर्यातक भी बन रहा है। डिफेंस सेक्टर में दिनों दिन भारत की तेज होती धमक ये बताने के लिए काफी है कि रक्षा क्षेत्र में आने वाला वक्त हमारा होगा।
1: अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
0: हर दिन नए हथियारों की चमक दुश्मनों को भयभीत कर रही है। भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जो दुश्मन की नापाक हरकतों का माकूल जवाब दे सके।
1: आज के युद्धों में स्पीड और प्रिसीजन, सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ड्रोन, ऑटोमेटेड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो सिस्टम्स हैं दुश्मन पर ज्यादा सटीक हमला कर सकते हैं और अपने सैनिकों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। साथियों, इसका एक और लाभ सीमा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वह बहुत ही कठिन है, जटिल है, टफ है। हर जगह सैनिकों की तैनाती करना या कोई आसान काम नहीं होता, मैं प्रत्यक्ष से महसूस कर रहा हूं। और ऐसे में ऑटोमेटेड निगरानी सिस्टम, रोबोटिक वाहन और सेंसर दिन रात सीमा की निगरानी कर सकते हैं, ऐसा सभी अब स्वीकार करने लगे हैं। इससे सुरक्षा भी बढ़ती है और कठिन परिस्थितियों में जो हमारे सैनिक तैनात होते हैं उन पर दबाव भी कम रहता है।
0: म्यूनिशन और ऑटोमेटेड सिस्टम में भारत अगुआ बनकर उभरे, इसके लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है।
1: भविष्य के युद्धों में सबसे बड़ा अंतर इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपके पास सैनिकों की संख्या कितनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका देश म्यूनिशन और ऑटोमेशन की दृष्टि से कितना एडवांस है और कितना कैपेबल है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सिर्फ युद्ध की आवश्यकता नहीं बल्कि शांति, विकास और आर्थिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। रक्षा क्षेत्र में यदि हम अभी तक दूसरों पर निर्भर रहे थे तो यकीन मानिए इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारे डिफेंस सेक्टर और हमारे फाइनेंस सेक्टर को होता। लेकिन अब क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची, खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में, तो यही वजह है कि खासतौर पर तकनीक के मामले में और रक्षा तकनीक के मामले में आज भारत अपने पैरों पर खड़ा है। 23 मई को महाराष्ट्र के शिरडी में एक बेहद आधुनिक गोला बारूद निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया जिसमें सालाना 5,00,000 आर्टिलरी शेल्स तैयार किए जाएंगे। साथ ही भारत के पहले 300 किलोमीटर वाले सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम को भी हरी झंडी दिखाई गई। सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दो रेंज वेरिएंट्स में डिजाइन किया गया है। पहला वेरिएंट 150 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों तक हमला कर सकता है और दूसरा लंबी दूरी वाला वेरिएंट 300 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकता है। भारतीय सेना ने सूर्यास्त की खरीद का ऑर्डर भी दे दिया है।
2: सूर्यास्त भारत की सेनाओं को एक ऐसा जबरदस्त वेपन और फोर्स मल्टीप्लायर मिलने वाला है जो वाकई में दुश्मन की कमर तोड़ने में एक कामयाब होगा, क्योंकि इसका पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की क्षमता है कि 5 मीटर के अंदर लिखा हो लेकिन 2 मीटर के रिजल्ट दिए गए 300 किलोमीटर दूर। आज समझिए कि जब वो हमला करने में सक्षम है दुनिया के कमांड सेंटर पर जहाँ पे उनके शीर्ष अधिकारी बैठे होते हैं, प्लानिंग चल रही है, वहाँ पर हमले के पहले हमारा हमला होता है उनकी सारी प्लानिंग ध्वस्त हो जाती है। कम्युनिकेशन सिस्टम पर जहाँ से बातचीत होती है उसको ख़त्म कर दें, रडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, लॉजिस्टिक बेस जहाँ से उनके हथियारों का भंडारण है, मिशन का भंडारण है, तेल है, पिन पॉइंट हमला करने में सक्षम है।
0: सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम में प्रिसिजन गाइडेड रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये पारंपरिक हथियारों की तरह इधर उधर नहीं गिरते बल्कि बिल्कुल उसी जगह पर प्रहार करते हैं जहां इन्हें भेजा गया, यानी निशाना एकदम अचूक। सूर्यास रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में 150 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट का सीईपी यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल महज 1.5 मीटर है, वहीं 300 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट का सीईपी 2 मीटर है। इसका मतलब ये है कि रॉकेट अपने टारगेट से औसतन 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर गिरता है, जो युद्ध में बहुत बड़ी ताकत है।
2: सूर्यास्त्र देखा जाए तो एक टेक्नोलॉजी का बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है। इससे 122 mm, 306 mm, 370 mm के रॉकेट फायर किए जा सकते हैं, साथ साथ में कामिकाजी ड्रोन भी फायर किया जा सकता है। 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी और तकरीबन 5 मीटर कहा जाता है, लेकिन इससे बेहतर रिजल्ट्स इसके मिले 2 मीटर का सर्कुलर एरर पे, यानी कि 2 मीटर के अंदर अंदर ये फायर करने में सक्षम है। ये इसका प्रिसीजन है, ये इसकी एक्यूरेसी है। क्या फ़ायदा होगा इसका? यह होगा कि दुश्मन के कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक बेस, उनकी गन पोजीशन, एडी सिस्टम, रडार स्टेशन और जहाँ पे उनकी रॉकेट सिस्टम है, जहाँ सब पर भी उनका जो एक स्ट्रेटजिक टारगेट्स हैं उनको हम पिन पॉइंट हमला करने में ये सक्षम है।
0: भारतीय सेना को अब लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाले रॉकेट्स मिलेंगे, जिससे दुश्मन के ठिकानों जैसे कि आर्टिलरी पोजीशंस, कमांड सेंटर्स और दूसरे अहम टारगेट्स को सुरक्षित दूरी से तबाह किया जा सकेगा।

सूर्यास्त की सबसे बड़ी ताकत है इसकी मल्टी बैरल क्षमता, जिसमें अलग अलग तकनीक के हथियार एक साथ लगाए जा सकते हैं और दागे भी जा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि निशाना भी सटीक और लॉजिस्टिक का खर्च भी बहुत कम। सूर्यास्त के अलग अलग पॉड्स को मिशन के हिसाब से बदला जा सकता है। 370 mm कैलिबर की प्रेडेटर हॉक गाइडेड रॉकेट सूर्यास्त सिस्टम का सबसे घातक हथियार है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। सूर्यास्त सिस्टम का एक और घातक हथियार है एक्स्ट्रा रॉकेट। 306 mm कैलिबर का ये गाइडेड रॉकेट 150 किलोमीटर तक दुश्मन के बंकरों और कमांड सेंटर्स को तबाह कर सकता है। सूर्यास्त सिस्टम से 122 mm और 160 mm कैलिबर के बेहद किफायती एक्यूलर रॉकेट्स दागे जा सकते हैं, जो 40 से 100 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। सूर्यास्त सिस्टम से स्काई स्ट्राइकर लॉयटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन भी दागे जा सकते हैं, जो हवा में रहकर दुश्मन की खोज करते हैं और सटीक हमला करते हैं। सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से दागी जाने वाली प्रेडेटर हॉक रॉकेट्स में GPS INS सेंसर फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये तकनीक प्रेडेटर हॉक रॉकेट को बिना किसी भारी मदद के बेहद खराब मौसम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के बीच भी सटीक निशाना लगाने की क्षमता देती है।

0: देखा जाए तो प्रेडेटर हॉक सूर्य अस्त्र का सबसे खतरनाक रॉकेट है। 300 किलोमीटर तक जाता है, 370 mm है और 140 से 200 किलोग्राम तक का ये एक्सप्लोसिव ले जा सकता है और छत के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर, बंकर्स के ऊपर बहुत इफेक्टिव है। तोड़ के अंदर तक उनको तहस नहस कर सकता है। सेल्फ गाइडेंस है, गाइडेंस बड़ी अच्छी है और पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है, जैसा कि 5 मीटर का बताया जाता है, लेकिन 2 मीटर की हमको इसमें एक्यूरेसी मिली है और शूट एंड स्कूट का इसका फैसिलिटी है कि फायर करे उसके बाद जगह बदली कर सकता है।
1: हॉक रॉकेट सुपरसोनिक स्पीड से हमला करने में सक्षम है, जबकि ये 140 किलोग्राम का भारी वॉरहेड लेकर अपने टारगेट से टकराता है तो भारी मात्रा में काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। इस ऊर्जा के कारण बिना विस्फोट हुए भी ये रॉकेट सिर्फ अपनी रफ्तार और वजन के दम पर कंक्रीट की कई फीट मोटी दीवारों को मलबे में तब्दील कर सकता है। सूर्यास्त्र की सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक पारंपरिक क्रूज और एक बैलिस्टिक मिसाइल के 15% खर्चे से भी सस्ता है, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि युद्ध के क्षेत्र में हमें भारी भरकम खर्च उठाने की जरूरत नहीं है, हम मल्टीपल रॉकेट्स दुश्मन पर दाग सकते हैं। आधुनिक युद्ध में आर्टिलरी की भूमिका निर्णायक होती है और सूर्यास्त्र शूट एंड स्कूट क्षमता के साथ दुश्मन के काउंटर अटैक से बचते हुए तेज हमला करने में सक्षम है। इसमें हाई मोबिलिटी व्हीकल भी लगाया गया है, जिससे ये बहुत तेजी से जगह बदल सकता है। सूर्यास्त्र को 6x6 भारी ट्रकों पर माउंट किया गया है। हमला करने के बाद ये सिस्टम फौरन अपना लोकेशन बदलने में सक्षम है, जिससे दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना और निशाना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। जानते हैं कि भारत सरकार ने किस तरह के चेंजेस किए हैं जिस वजह से 5000 तरह के उपकरण भारत में ही बनाए जा रहे हैं। दरअसल अभी अगर बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में

0: की बात करें तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च है जो सिर्फ रॉकेट लॉन्चिंग के लिए ही है। सूर्यास्त यूनिवर्सल लॉन्चर है जो रॉकेट और मिसाइल दोनों दाग सकता है। पिनाका में कैलिबर फिक्स है और इसे सिर्फ 214 mm रॉकेट से ही दागा जा सकता है। सूर्यास्त मल्टी कैलिबर है जो 122 mm, 306 mm, 370 mm के वेपन्स दाग सकता है। रेंज की बात की जाए तो पिनाका MK1 40 किलोमीटर और पिनाका एक्सटेंडेड रेंज 75 से 90 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। वहीं सूर्यास्त की रेंज 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर है। पॉड रीलोड सिस्टम की बात करें तो पिनाका के रीलोडिंग में करीब 4 से 5 मिनट का समय लगता है। वहीं सूर्यास्त में जो पॉड सिस्टम लगा है उसे रीलोड करने में 10 मिनट का वक्त लगता है।
1: पिनाका और सूर्यास्त में फर्क ये है कि पिनाका में एक साथ बहुत सारे रॉकेट फायर होते हैं, 6-6 रॉकेट यानी 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ गिरते हैं एक इलाके में, और वो एक एरिया वेपन के तौर पे, यानी कि 214 mm के रॉकेट हैं, एक ही कैलिबर के होंगे और वो एक जगह जाके पूरे इलाके को सैचुरेट कर देंगे, भस्म कर देंगे। जबकि सूर्य अस्त्र में अलग अलग कैलिबर के रॉकेट फायर हो सकते हैं, 122 mm, 306 mm या 370 mm, 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज होती है। और ये फर्क ये कि पिन पॉइंट अटैक करता है, एक रॉकेट जाएगा वहाँ पिन पॉइंट हमला करेगा, तो दोनों के टारगेट अलग हैं।
0: भारतीय सेना सूर्यास्त सिस्टम को उसकी 300 किलोमीटर की लंबी रेंज और डीप स्ट्राइक क्षमता के कारण LAC और LOC के अत्यंत संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात कर सकती है। इसका मेन मकसद चीन और पाकिस्तान की सेना के रसद आपूर्ति करने वाले रास्तों, एयरबेस और कमांड सेंटर्स को अपने तोपखाने की जद में लाना है। रॉकेट का ताकतवर होना कई मायनों में सेना की युद्ध क्षमता तो नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा, जो काम फाइटर जेट किया करते थे और जिन कामों में मिसाइल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, उसी काम को अब सूर्यास्त जैसा सिस्टम आसानी से कर देगा।
2: पारंपरिक तौर पर अगर देखा जाए तो अगर दुश्मन 300 किलोमीटर दूरी पर बैठा है तो भारत को अपने लड़ाकू विमानों को मैदान में उतारना पड़ता है, लेकिन सूर्यास्त के आने के बाद न तो हम अपने पायलट्स की जान जोखिम में डालेंगे और न ही दुश्मन की सरहद में जाने की जरूरत होगी, बल्कि भारत अपनी सरहद पर ही बैठे दुश्मन का काम तमाम कर सकता है।
0: पहले सीमा से 150 से 300 किलोमीटर दूरी पर मौजूद दुश्मन के कमांड सेंटर, रडार या रसद डिपो को तबाह करने के लिए वायुसेना के सुखोई विमानों को उड़ान भरनी पड़ती थी। वहीं अब इस काम को जमीन पर तैनात आर्मी के सूर्यास्त रेजिमेंट अपने प्रेडेटर हॉक रॉकेट से मिनटों में पूरा कर पाएंगे। इससे महंगे लड़ाकू विमानों और जांबाज पायलटों को दुश्मन के हवाई क्षेत्र में भेजने का जोखिम भी काफी हद तक कम हो जाएगा।
2: सूर्यास्त की तैनाती पारंपरिक तौर पर सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस मिसाइल के वर्कलोड को काफी हद तक कम कर देगी। अब वो किस तरीके से, वो भी आपको समझाते हैं। सीधी सी बात है कि 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को अगर निशाने पर लाना हो तो उसके लिए सूर्यास्त ही काफी होगा। यानी अगर देखा जाए तो रण क्षेत्र में सूर्यास्त सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की जगह ले सकता है।
0: सूर्यास्त 300 किलोमीटर की दूरी तक ब्रह्मोस जैसी अचूक सटीकता प्रदान करता है, इसीलिए सामान्य और कम सुरक्षा वाले लक्ष्यों जैसे कि आतंकी कैंप, रसद डिपो के लिए ब्रह्मोस को बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। ये काम सूर्यास्त आसानी से कर देगा। ब्रह्मोस मिसाइल को अब सिर्फ अति संवेदनशील और अत्यधिक बख्तरबंद जैसे दुश्मन के युद्धपोत या परमाणु बंकर जैसे लक्ष्यों के लिए सुरक्षित रखा जा सकेगा। ब्रह्मोस ले जाने वाले सुखोई 30 MKI विमानों का वजन और रखरखाव का दबाव कम होने से वायुसेना इन विमानों का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में कर पाएगी। सूर्यास्त वायुसेना का विकल्प नहीं बल्कि ये थल सेना को आत्मनिर्भर बनाकर वायुसेना की कीमती हथियारों और विमानों को बड़े और अधिक रणनीतिक युद्धों के लिए रीस्टॉक करने का मौका देता है।
1: ब्रह्मोस जैसा महंगा मिसाइल एक स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के इस्तेमाल किया जा सके, हालांकि तो थोड़े कम इम्पोर्टेंट टारगेट है, वहाँ पर सूर्यास्त का इस्तेमाल किया जा सकता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है। और तीसरी बात ये कि सुखोई को भी बचत होगी, एयरफोर्स को जो 300 किलोमीटर दूर टारगेट होते थे उनके लिए हवा में जाके मिसाइल फायर करनी पड़ती थी, वो बच जाएगा। आप जमीन से फायर करोगे उनके टारगेट को बर्बाद कर दोगे, यानी कि हम अपने जो एयरक्राफ्ट हैं सुखोई है इनको एक्सपोज नहीं करेंगे, उनका इस्तेमाल और स्ट्रेटजिक टारगेट के

0: लिए और बड़े टारगेट्स के लिए किया जा सकता है। तो यानी कि फोर्स मल्टीप्लायर है कि वो हथियार बने रहेंगे, वो अपने टारगेट्स करेंगे, बाकी टारगेट्स को सूर्यास्त एंगेज करेगा, अपनी जमीन पर रहते रहते दुश्मन को नेस्ता नाबूद करेगा।
1: आज देश में सिर्फ हथियार ही नहीं बनाए जा रहे, बल्कि यहाँ उस भरोसे को भी मजबूत किया जा रहा है जिसके दम पर सेना वीरता का नया इतिहास लिख रही है।

0: अब हम सिर्फ टैंक, तोप, मिसाइल या फाइटर जेट्स ही नहीं बनाते, हम बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत, जिसका सर्वोच्च संकल्प है राष्ट्र रक्षा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहली बार आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना।
1: भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा।
0: रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा और विदेश से हथियार और उपकरण के आयात को कम कर भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड मिशन पर आगे बढ़ रहा है।

0: हिंदुस्तान अब अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं, भारत में ही तरह तरह की मिसाइलें, फाइटर जेट्स और यहाँ तक कि छोटे कलपुर्जे तक बनाए जा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत रक्षा के क्षेत्र में खुद स्टैंड कर चुका है और ये दुनिया भी भारत का लोहा मान रही है।
1: भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में लंबी छलांग लगाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले 5 साल में रक्षा उत्पादन में 90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2023 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 1,50,590 करोड़ को पार कर गया है। यानी कि भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 18% की छलांग लगाई है। साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था। यानी साल 2019-20 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 90% की बढ़त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी शक्ति बनाने के लिए शुरू की गई योजना मेक इन इंडिया ने जिस क्षेत्र में सबसे अधिक छाप छोड़ी है वो है रक्षा।
2: भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा।
1: ये मेक इन इंडिया मिशन की वो तैयारी है जिसमें हर स्क्रू, हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर भारत का है और भारत के लिए है।
0: स्क्रू से लेकर सिस्टम और सॉफ्टवेयर तक भारत आज की तारीख में ये सब कुछ अपने यहाँ बना रहा है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि भारत ये सब कुछ न सिर्फ अपने लिए बना रहा है बल्कि 80 से ज्यादा देशों को दे भी रहा है। और ये तमाम वो देश हैं जो रक्षा के मामले में भारत पर भरोसा करते हैं।
1: सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, जिसके तहत मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू हो गया। लेकिन एक वक्त था जब 65-70% रक्षा सामग्री आयात की जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 35% सामान ही आयात होता है। इसका मुख्य कारण भारत की अपनी रक्षा प्रणालियों को डिजाइन और विकसित करने की बढ़ती क्षमता है।
0: भारत सरकार की तरफ से पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट तैयार की गई है, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि स्वदेशीकरण को ज्यादा बढ़ावा देना, यानी खास तौर पर रक्षा के क्षेत्र में हम किसी दूसरे मुल्क पर निर्भर न रहें। छोटे से कलपुर्जे से लेकर बड़ी से बड़ी मिसाइल तक बनाने में भारत खुद अपनी धरती का और यहाँ के साजो सामान का ही इस्तेमाल करे।
1: अब तक रक्षा मंत्रालय ऐसी 5 लिस्ट जारी कर चुका है और इसमें तकरीबन 5,000 आइटम्स के आयात पर पाबंदी लगाई गई थी। ये सभी डिफेंस, पीएसयू और निजी स्वदेशी कंपनियों से खरीदे जा रहे हैं। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट 4,666 आइटम्स की 5 लिस्ट जारी की गई है, जिन्हें सिर्फ स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा। नेगेटिव लिस्ट, इसमें 310 उपकरणों जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, तोप के आयात पर 2020 से 27 तक रोक लगाई गई है। डैप 2020 यानी कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में खरीद को प्राथमिकता दी गई, यानी कि स्वदेशी डिजाइन और प्रोडक्शन को बढ़ावा। सृजन पोर्टल, इसमें 19,509 पहले आयातित आइटम्स को स्वदेशी बनाने के लिए लिस्ट किया गया। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा, इसमें टाटा, L&T, भारत फोर्स और MSME को बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। FDI में छूट, डिफेंस में 74% तक FDI ऑटोमेटिक रूट से और 100% सरकार की मंजूरी से होगी। अगला है R&D को बढ़ावा, इसमें IDEX और TDF स्कीम्स से स्टार्टअप्स और MSMEs को फंडिंग दी जा रही है। साल 2025 में TDF के लिए 60 करोड़ रुपए और IDEX प्राइम के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए।
3: हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर ना सिर्फ सुरक्षा के मामले में डिफेंस प्रोडक्शन में होना पड़ेगा, तमाम ऐसी विधाएं हैं उसमें हर एक में आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसका कि प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियर कट कॉल दिया हुआ है। जहां तक डिफेंस का सवाल है, देखिए हिंदुस्तान की सुरक्षा में को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। आप ऐसे समय में दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें जब आपको उस इक्विपमेंट की, उस हथियार की, उस गोला बारूद की, उस एमनिशन की जरूरत है। लिहाजा आपको स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा और हिंदुस्तान देखिए धीरे धीरे इसके तरफ अग्रसर हो रहा है।
1: प्राइवेट कंपनियों को भी सरकार की तरफ से सहूलियतें दी गई हैं। सरकार ने भारत की निजी हथियार निर्माता कंपनियों के लिए ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है कि बड़ी तेजी से ये आगे बढ़ने लगे। इस पूरी बढ़ोतरी में हिस्सेदारी की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2024-25 में कुल रक्षा उत्पादन में DPSU यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान करीब 77% रहा, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 23% रहा। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले बढ़ी है। जो वित्त वर्ष 2023-24 में 21% थी, वो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 23% हो गई।
3: सबसे पहले मैं टच करूंगा पॉजिटिव इंडियनाइजेशन। इसके तहत वो सारी चीजें हैं जो कि डिफेंस में जिसकी रिक्वायरमेंट है और जिसको हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सकती है, चाहे वो PSUs हो, DPSUs हो, प्राइवेट सेक्टर हो। अब हम नेगेटिव लिस्ट की बात करते हैं। टाइम टू टाइम ये लिस्ट रिवाइज की जाती है। नेगेटिव लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें कि उन आइटम को बैन किया गया है जिसका हम बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे। ये सारे के सारे आइटम हिंदुस्तान में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। हमारी कैपेबिलिटी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लिहाजा ये नेगेटिव लिस्ट में दिन रात इजाफा हो रहा है और इन आइटम को हम अब बाहर से इंपोर्ट करना डिफेंस सेक्टर में बंद करेंगे। सृजन पोर्टल देखिए एक ऐसा पोर्टल है जिसमें तमाम प्राइवेट प्लेयर और पब्लिक सेक्टर की यूनिट इसमें लॉगिन कर सकते हैं, अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं, जिससे कि तमाम आगे आने वाले दिनों में जो हमारे डिफेंस की प्रोक्योरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, किसका टेंडर निकलने वाला है, क्या उसका क्वालिफिकेशन क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों की उसमें लिस्टिंग होती है।
1: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत अपने डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा तवज्जो दे रहा है और इसी के तहत देश में डिफेंस कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में सिर्फ दो ही कॉरिडोर हैं।
0: रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: Whatever you're in the mood for, tune in has the music to match, from today's hits
6: somebody save me
5: to timeless favorites
6: life is like a song
5: and new discoveries.
6: So much more than a history. Wake up.
5: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति माइकल बोलोस के साथ राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जैसलमेर पहुंची। इस दौरान दंपति ने विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर फोर्ट को देखा, जिसे सुनार किला के नाम से भी जाना जाता है, इसका भ्रमण किया। सुनहरे पत्थरों से निर्मित इस भव्य किले की वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत ने उनका ध्यान आकर्षित किया। टिफनी ट्रंप को स्टेट ऑफ गेस्ट का दर्जा दिया गया है। उनके ठहरने के लिए शहर के प्रसिद्ध और भव्य होटल सूर्यगढ़ में विशेष इंतजाम किए गए हैं। होटल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियां कड़ी नजर रख रही हैं और इस हाई प्रोफाइल दौरे को देखते हुए जैसलमेर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम। मौसम खराब होने पर यात्रा पर लगा था अल्प विराम। बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक 7.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई। बर्फबारी के बीच श्री हेमकुंड साहिब में भी आस्था भारी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में लगा भक्तों का तांता। पूजा अर्चना के साथ हर रविवार को होते हैं धार्मिक अनुष्ठान। दान पुण्य के साथ भक्तों के लिए भंडारे का इंतजाम। यूपी की राजधानी लखनऊ में हुई झमाझम बारिश। भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को मिली राहत। आसमानी फुहारों से गिरा पारा। उत्तराखंड के चमोली में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का भव्य आगाज। 28 राज्यों के 933 प्रतिभागी कर रहे शिरकत। भारत चीन सीमा के पास लगा रोमांच का मजमा। राजस्थान में फिर उठा रेतीला तूफान। तेज हवाओं के साथ जैसलमेर के आसमान पर छाया बवंडर। दिन में हुआ अंधेरा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर आसमान में दिखा ब्लू मून का दुर्लभ नजारा। नीला नहीं बल्कि नारंगी नजर आया चांद। टेलीस्कोप से अनोखी खगोलीय घटना का दीदार करते दिखे लोग।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का विस्फोटक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो है तो महज 15 साल का, लेकिन क्रिकेट के मैदान में बल्ले से ऐसे ऐसे कीर्तिमान रच रहा है कि बड़े बड़े सूरमाओं की चमक उसके आगे फीकी पड़ती जा रही है।

0: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बीते 27 मई को आईपीएल के एक मुकाबले में बल्ले से विस्फोट की नई इबारत लिखने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी है। जी हां, 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की जो विस्फोटक पारी खेली उसकी धमक में क्रिकेट के कई दिग्गजों के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स दफन हो गए। वैभव ने एक पारी में इतने रिकॉर्ड्स बना दिए कि ये खुद अपने आप में रिकॉर्ड हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वाली पारी। दरअसल पिछले 2 साल से वैभव मैदान में टिककर जिस तरह से आतिशबाजी कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले वर्षों में बल्लेबाजी का कोई ऐसा रिकॉर्ड होगा ही नहीं जो वैभव के नाम ना हो।
1: क्रिकेट के क्षितिज पर उदित हो चुका है एक ऐसा चमचमाता वैभवशाली सूर्य जिसकी चौंधिया देने वाली चमक में क्रिकेट के आसमान के बड़े बड़े सितारे गुम से हो गए हैं। इस वैभवशाली सूर्य ने आईपीएल की महज एक पारी में इतने कीर्तिमान बना दिए हैं कि रिकॉर्ड बुक के हर सफहे पर एक ही नाम चमक रहा है, वैभव सूर्यवंशी। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को हुए एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की ऐसी विस्फोटक पारी खेली कि आईपीएल के 18 साल के इतिहास में बल्ले से बने करीब करीब सारे रिकॉर्ड्स जमींदोज हो गए।
2: वो बच्चा 15 साल का है, इतनी धमाल मचा रखी है। बुमराह को उसने पहली बॉल पे छक्का मारा, हेजलवुड को, हर एक बॉलर को उन्हें पहली बॉल पे छक्का मारा। ऐसा बल्लेबाज मैंने दुनिया में नहीं देखा। वरिंदर सहवाग भी ऐसी पारी नहीं कभी खेल सका जो वैभव सूर्यवंशी खेलता।
1: वैभव की इस अविस्मरणीय पारी को देखकर ऑल टाइम ग्रेट सचिन तेंदुलकर को कहना पड़ गया अभूतपूर्व। बल्ले से वैभव का अतुल्य धमाका पूरी एकाग्रता से देखने के बाद सचिन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का स्विंग असाधारण था। इससे भी बड़ी बात यह है कि पैरों पर फेंकी गई गेंद पर उन्होंने बेहद कुशलता के साथ फ्रंट फुट क्लियर का रूम बना लिया, जिसकी वजह से उन्होंने जहां चाहा गेंद को वहीं पहुंचा दिया। वैभव की ये पारी चमत्कार से कम कुछ भी नहीं। यूं तो वैभव ने पूरे आईपीएल के दौरान अतुल्य बल्लेबाजी की है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को खेली गई उनकी एक अदद पारी क्रिस गेल, डेविड वार्नर, रिली रूसो, शुभमन गिल और सुरेश रैना जैसे दिग्गजों की कई कई पारियों पर भारी पड़ गई है। वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की धमाकेदार पारी में 12 छक्के लगाए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वैभव ने आईपीएल 2026 सीजन में 65 छक्के पूरे कर लिए हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 सिक्सर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। गेल ने आईपीएल 2012 में कुल 59 छक्के लगाए थे। वैभव के इस रिकॉर्ड के भीतर भी एक रिकॉर्ड छिपा हुआ है। गेल ने 59 सिक्सर के लिए 456 गेंदें खेली थी, जबकि वैभव ने सिर्फ 280 गेंदों पर 65 छक्के अपने नाम कर लिए हैं। 280 गेंदों पर 65 छक्कों का मतलब ये हुआ कि कमोबेश हर चौथी गेंद पर सिक्सर। ये रिकॉर्ड तो गेंदबाजों के लिए डरावने सपने की तरह है।
3: Young man is something else. He can hit the best of fast bowlers, the best of slow bowlers into the crowd. His sixes are generally into the crowd. His sixes are not those that just pop over that boundary rope. And he just makes it look so ridiculously easy.
1: महज 15 साल के वैभव जिस तरह कीर्तिमान पर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि भविष्य में बल्लेबाजी के सारे रिकॉर्ड्स ब्लैक एंड व्हाइट में इनके नाम ही दर्ज मिलेंगे। 27 मई को एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने एचआरएस के खिलाफ सिर्फ 16 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। आईपीएल के नॉकआउट हिस्ट्री में ये संयुक्त रूप से सबसे तेज 50 है। इससे पहले साल 2014 के क्वालिफायर 2 में सुरेश रैना ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 16 गेंदों पर अर्धशतक बनाया था। इतना ही नहीं, वैभव की इस पारी में शुरू के 10 छक्के सिर्फ 24 गेंदों पर ही आ गए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 10 छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। गेल के 10 छक्के साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 27 गेंदों में आए थे। आईपीएल 2026 के दौरान 27 मई को खेली गई ऐतिहासिक पारी समेत कुल 15 पारियों में वैभव 243 की स्ट्राइक रेट से 680 रन बना चुके हैं। टी20 के किसी भी टूर्नामेंट में 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से 600 से ज्यादा रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले साल 2022 में टी20 ब्लास्ट में रिली रूसो ने 192 की स्ट्राइक रेट से 623 रन बनाए थे। वैभव की इस एक पारी में बने रिकॉर्ड्स की फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव के कुल 12 में से 8 छक्के पावर प्ले में ही आ गए थे। दिलचस्प तो ये है कि इससे पहले पावर प्ले में सबसे ज्यादा 7 छक्कों का कीर्तिमान भी हिंदुस्तान के इस वैभवशाली खिलाड़ी के नाम ही दर्ज था। वैभव अब आईपीएल में 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियां खेल चुके हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। पर कमाल यह है कि वैभव की 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियों में से 3 आईपीएल के मौजूदा सीजन में ही आई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की अपनी पारी में वैभव ने एक और अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। आईपीएल के इतिहास में 90 प्लस रनों की सभी पारियों में वैभव की पारी सबसे तेज स्ट्राइक रेट वाली पारी बन गई है। वैभव ने 334.48 की स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए। इससे पहले ये रिकॉर्ड रजत पाटीदार के नाम था, जिन्होंने इसी सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 281.81 की स्ट्राइक रेट से 33 गेंदों पर 93 रन बनाए थे। आपको बता दें कि 27 मई वाली पारी को लेकर वैभव आईपीएल 2026 सीजन में सिर्फ पावर प्ले के दौरान 490 रन बना चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड डेविड वार्नर के नाम था, जिन्होंने साल 2016 में पावर प्ले के दौरान 467 रन बनाए थे। ये सारे रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं 15 साल के एक टीनेजर के नाम। सोचिए, 15 साल का ये बच्चा इसी उम्र में अगर क्रिस गेल, डेविड वार्नर, किरोन पोलार्ड और शुमन गिल जैसे महारथियों के रिकॉर्ड्स की कब्रगाह बना चुका है, तो आगे तो वैभव के नाम से ही कीर्तिमान की एक किताब छापनी पड़ जाएगी।
4: बैट्समैन बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में अगर वो अपनी फिटनेस अच्छी मेंटेन करता है तो फिर आने वाला वो फ्यूचर स्टार है इंडिया का।
5: वैभव सूर्यवंशी, उसकी भी बैटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया खेलता है,
6: बहुत बढ़िया,
5: बहुत नेक्स्ट लेवल बैटिंग है। हम उसकी बैटिंग को नहीं कह सकते, उसकी अपनी अलग क्लास है।
7: करदा उड़ा दिया वैभव सूर्यवंशी ने,
8: लटकाड़ दिया।
1: ऐसा नहीं है कि वैभव का बल्ला सिर्फ आईपीएल में ही चला है। इससे पहले भी बिहार के समस्तीपुर का ये लाल ऐसी ऐसी अद्भुत पारियां खेल चुका है कि क्रिकेट के इतिहास में उसकी कोई सानी देखने को नहीं मिलती। इसी साल 6 फरवरी को जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में वैभव ने जो पारी खेली थी, उसे अंडर 19 वर्ल्ड कप के 38 साल के इतिहास की सबसे महान पारी कहा जा रहा है। सबसे महान पारी क्यों कहा जा रहा है, स्टैट देखने से इसका जवाब मिल जाएगा। वैभव ने महज 80 गेंदों पर 175 रन ठोक दिए। वैभव ने इस पारी में 15 छक्के और 15 चौके लगाए, यानी 150 रन सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए अपने खाते में जोड़ लिए। 55 गेंदों पर शतक पूरा किया, बाद के 75 रन सिर्फ 25 गेंदों पर ठोक दिए। महज 71 गेंदों पर 150 रन पूरे कर लिए, जो यूथ वनडे इतिहास का सबसे तेज 150 है। इतना ही नहीं, वैभव ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में कुल 30 छक्के लगाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस के नाम था, जिन्होंने 2022 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में 18 छक्के लगाए थे। पूरे टूर्नामेंट में वैभव 439 रन के साथ सेकेंड टॉप स्कोरर भी रहे। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहने के साथ वैभव ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप से ठीक पहले अंडर 19 एशिया कप में 12 दिसंबर 2025 को यूएई के खिलाफ वैभव ने 95 गेंदों पर 171 रन कूटकर विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए थे। इस आतिशी पारी में वैभव ने 9 चौके और 14 छक्के लगाए थे। कहने की जरूरत नहीं कि सबसे तेज और सबसे कम उम्र से जुड़े रिकॉर्ड्स के सरताज बन चुके हैं वैभव। 24 दिसंबर 2025 को रांची के JSCA ओवल ग्राउंड में वैभव ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि कई विश्व कीर्तिमान ध्वस्त हो गए। विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल के खिलाफ हुए मुकाबले में वैभव ने सिर्फ 84 गेंदों पर 15 छक्कों और 16 चौकों की मदद से 190 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी थी। इस मैच में सिर्फ 59 गेंदों पर 150 रन पूरे कर वैभव ने लिस्ट ए मैच में फास्टेस्ट 150 का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के नाम था, जिन्होंने साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 64 बॉल पर 150 रन बनाए थे। तूफान थोड़ी देर के लिए हो तो राहत, नहीं तो कहर बन जाता है। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के मैदान के टिक कर रहने वाले तूफान नहीं बल्कि बवंडर हैं, इसीलिए विरोधियों के लिए कहर नहीं बल्कि महाकहर बन रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैभव 13 साल की उम्र में एक मैच में ट्रिपल सेंचुरी भी लगा चुके हैं। रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में वैभव ने 332 रनों की नाबाद पारी खेली थी। अभी तो ये यूथ इंडिया की रहनुमाई कर रहे हैं, इंतजार कीजिए इनके टीम इंडिया में शामिल होने का। इसकी पूरी संभावना है कि साल 2027 के वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए ओपनिंग करेंगे और बहुत संभव है कि भारत तब वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक लगाएगा।
0: 15 साल के वैभव की कामयाबी क्रिकेट के बड़े बड़े धुरंधरों को भी हैरान करने लगी है। आईपीएल में अपने से दोगुने ढाई गुने उम्र के घातक गेंदबाजों को भी वो न सिर्फ सहजता से खेल रहे हैं बल्कि कायदे से धुलाई भी कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इतनी छोटी उम्र में ही वैभव इतने दिग्गज बल्लेबाज कैसे बन गए। दरअसल इसके पीछे कहानी है एक अधूरे सपने की, जो कभी वैभव के पिता ने देखा था। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन हालात की दुश्वारियों की वजह से उनका ये सपना अधूरा रह गया। पर अपने उसी अधूरे सपने को संजीव ने अपने बेटे वैभव के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया। वैभव के क्रिकेटर बनने की पूरी कहानी आपके दिल को छू लेगी।
1: सर पर कामयाबी के ताज के साथ मन में विनम्रता का संस्कार हिंदुस्तान की संस्कृति का सनातन हिस्सा है। मैच 15 की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी का बेनजीर परचम लहरा चुके वैभव सूर्यवंशी सनातन संस्कार के युगीन संवाहक हैं। जिस मैच में वैभव ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी, उसके प्री मैच शो के दौरान जब उन्होंने सुनील गावस्कर और संजय बांगर को देखा तो दौड़कर उनके पास गए और पूरी विनम्रता के साथ उनके पैर छू लिए। वैभव के संस्कार की निश्चल सादगी देखिए कि गावस्कर और बांगर के साथ मौजूद प्रेजेंटर जतिन सप्रू के भी पैर छूने की उन्होंने पूरी कोशिश की। यह अलग बात है कि जतिन पीछे हट गए।
3: हमारी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है कि हम अपने जो बुजुर्ग है, सीनियर्स है, एल्डर्स है, उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, और वही उन्होंने किया। सिर्फ मेरे पास ही नहीं आए थे वो, मेरे बाजू में संजय बांगर थे और जतिन सप्रू थे, उनके पास भी आए थे और मुझसे थोड़ा सा रुक कर मुझसे कुछ अपेक्षा कर रहे थे कि मैं कुछ उनको बोलूं। शायद अपेक्षा कर रहे थे, मैं ये नहीं कहूंगा, शायद अपेक्षा कर रहे थे। तो मैंने उनको सिर्फ यही कहा, लगे रहो, क्योंकि जब वो लगे रहेंगे तो फिर वो बल्ला मतलब बल्ला लगता रहेगा और छक्के भी लगते रहेंगे।
1: उम्र के लिहाज से वैभव की बेनजीर कामयाबी इस बात की मुनादी कर रही है कि आने वाले वक्त में कीर्तिमान की किताब के हर सफहे पर बिहार के इस लाल का नाम दर्ज मिलेगा। पर वैभव नाम के इस प्रदीप्त दिए की रोशनी से सराबोर होने वाले लोगों को उस तेल और बाती के बारे में भी जानना चाहिए जो खुद गुमनाम रहकर अपने दिए को जगमग कर रहा है। वैभव की इस बेनजीर कामयाबी के पीछे हाथ है उनके पिता संजीव सूर्यवंशी का, जो कभी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का ख्वाब सजोए हुए थे, पर खुद की जो हसरत अधूरी रह गई उसे उन्होंने अपने लाल में प्रत्यारोपित कर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक पिता के अनोखे त्याग की खामोश सदाएं समस्तीपुर जिले के जर्रे जर्रे में जज्ब है।
6: वास्तव में एक पिता का जो त्याग था, तपस्या था, जिद था कि हमको किसी भी तरह जो मैं हासिल नहीं कर सका वो मैं अपने बच्चे को उस मुकाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। वो एकाकी भी देखा कि लोगों से मिलना तक लोगों में, क्योंकि जुनून सवार था कि मैं अपने बेटे को उस मुकाम तक पहुंचाऊं, तो लोगों से मिलना भी बंद किया। उस बीच में कई ऐसी मुसीबतें भी आईं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया।
1: पांच साल के बच्चे को पढ़ाई से दूर कर क्रिकेट के मैदान में पसीना बहाने के लिए खड़ा कर देना किसी भी पिता के लिए आसान फैसला नहीं होगा। पर संजीव सूर्यवंशी ने कलेजे पर पत्थर रख कर ये फैसला लिया। समस्तीपुर जिले की ताजपुर पंचायत में जहां क्रिकेट का कोई नाम लेवा नहीं था, वहां पांच साल के बेटे की प्रैक्टिस के लिए सारी व्यवस्था कर दी। यहां तक कि कुछ हम उम्र और बड़े बच्चों को भी चॉकलेट मिठाई का प्रलोभन देकर साथ जोड़ लिया ताकि वे बॉलिंग करें और वैभव लगातार बैटिंग की प्रैक्टिस करता रहे। पांच साल से सात साल यानी दो साल तक गांव में ही वैभव को दिन रात प्रैक्टिस कराने के बाद एक दिन संजीव सूर्यवंशी को इल्हाम हो गया कि अब अगले लेवल की प्रैक्टिस का वक्त आ गया है, लिहाजा बेटे को लेकर निकल गए ताजपुर से 12 किलोमीटर दूर स्थित पटेल मैदान में, जहां ब्रजेश झा क्रिकेट एकेडमी चलाते थे। क्रिकेटर बनाने का जुनून ऐसा था कि संजीव सूर्यवंशी को जब लगा कि रोजी रोटी के लिए चलने वाला बिजनेस व्यवधान बन रहा है तो बगैर देरी के उसे बंद कर दिया।
9: गार्डियनों का उनका सपोर्ट रहा है कि अपने बच्चे को इतना ज्यादा टाइम किल करते थे, अपने साथ लाना ले जाना, बच्चों के साथ अपना बिजनेस छोड़ के बच्चे के प्रति इतना एक फोकस, गार्जियन का भी कहीं ना कहीं टारगेट था कि हमारा बच्चा ऊपर खेले, और भगवान की दुआ से बच्चा वो मुकाम पर हासिल किया।
1: इसमें कोई संदेह नहीं कि 7-8 साल की छोटी उम्र में ही वैभव अपने पिता की उम्मीदों की कसौटी पर लगातार खरे उतर रहे थे। जब तक सूर्य की रोशनी धरा पर मौजूद रहती, वैभव बल्ले को दामन से दूर नहीं होने देते। पिता और माँ को छोड़कर घर के बाकी सदस्यों को वैभव की आदत कई बार नागवार गुजरती थी। दादी ने तो कई मौकों पर ऊब कर वैभव की पिटाई भी कर दी थी, पर बचपन में वैभव की पिटाई के वो वाकये आज दादी के लिए सुनहरी यादें बन चुकी हैं।
10: डांटते तो थे,
11: अच्छा,
10: कभी कभी उसको मारते थे, दौड़ते थे उस पर, फिर भी कहता था नहीं दादी हमको अच्छा लगता है, हम खेलेंगे। हम कहे ठीक है बाबू तब खेलो। धीरे धीरे जब दलसिंह सराय गया, बेनी पट्टी, उसके बाद आपको क्या कहते हैं बेगूसराय, जब हम देखते रहे कि यह अच्छा खेल में उतर रहा, तब से मेरा भी मनोबल और मन ये हुआ कि हाँ यह खेले।
1: बचपन में वैभव की बैटिंग की खटखट से ऊब जाने वाली दादी का हृदय आज इस बात को जानकर गदगद है कि उनका पौत्र क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़कर आईपीएल के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाला खिलाड़ी बन गया है। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि वैभव को पटना के जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में डालने के लिए संजीव सूर्यवंशी को जमीन तक बेचनी पड़ी थी? दरअसल संजीव सूर्यवंशी को जब ये लगने लगा कि उनका बेटा समस्तीपुर स्थित पटेल मैदान के स्टैंडर्ड से आगे निकल चुका है, तो पटना में जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन कराने का फैसला किया। एकेडमी की फीस और उसके बाद समस्तीपुर से हर रोज पटना आना जाना कॉस्टली अफेयर था, इसीलिए संजीव सूर्यवंशी बेटे वैभव को लेकर हर अल्टरनेट डे पर पटना जाने लगे। जेनेक्स एकेडमी चलाने वाले पूर्व रणजी खिलाड़ी मनीष ओझा भी वैभव के पिता के त्याग और तपस्या को याद कर भावुक हो जाते हैं।
11: माँ का रोल रहता था बच्चे को तैयार करने से लेके उसको, और जब इधर से थक के जाता था तो उसको फिर रिकवरी में, चाहे वो खाने के सेंस में हो, उसको प्यार के सेंस में हो, उसको रेस्ट के सेंस में हो, और पिता का त्याग इस सेंस में था कि अर्ली सारे बोझ को वो अपने कंधे पर उठा रहे थे, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और फिर भी वो जो वो अपने हैसियत से ज़्यादा बढ़ के उन्होंने उस बच्चे के लिए किया, और हर एक वो सुविधा उस बच्चे के लिए उन्होंने अरेंज किया खेल के प्रति कि वो आज इस मुकाम को प्राप्त कर सके।
1: पिता ने अपनी हैसियत की हदों को पार कर वैभव के लिए जमीन तैयार की, और वैभव ने भी पिता के इस त्याग की कीमत को शिद्दत से महसूस करते हुए मैदान पर पसीना बहाने में कोई कोताही नहीं की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था और वैभव को पटना ले जाना ले आना संभव नहीं रहा, तो संजीव सूर्यवंशी ने अपने ताजपुर स्थित घर के बाहर ही नेट प्रैक्टिस के लिए पिच बनवा दी ताकि वैभव की प्रैक्टिस खंडित ना हो।
9: लॉकडाउन में एक्चुअली पूरा बिहार बंद था, तो यहाँ पे पिच का जनरेट किया गया भैया के द्वारा, और टर्बिकेट और सीमेंटेड लॉकडाउन में लोग घर से नहीं निकल रहे थे, उस वक्त में भी इसका प्रैक्टिस सेशन लगातार यहाँ पे चलता रहा।
1: बेटे को क्रिकेटर बनाने का ये जुनून अपने आप में अनूठा है, इसका नतीजा सबके सामने है। आज वैभव के बल्ले से बनने वाले विश्व रिकॉर्ड्स संजीव सूर्यवंशी की दुनिया को रंगीन सपनों से भी ज्यादा सुहावन बना रहे हैं। वैभव की विराट बुलंदी का आलम यह है कि पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट पर संजीव सूर्यवंशी और उनकी पत्नी से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। देश का गौरव बन चुके तेजस्वी पुत्र का पिता होने के लिए बधाई देते हैं। पिता ने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए त्याग तपस्या की, तो बेटा भी दो कदम आगे बढ़कर अपनी विराट उपलब्धियों से हक अदायगी कर रहा है। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उसके 14 साल के बेटे को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2025 को वैभव को राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। साफ है कि पिता के संकल्प और बेटे की जीतोड़ मेहनत का पावन संगम क्रिकेट के मैदान पर चमत्कारिक धारा बनकर नमूदार हो रही है।
0: तो बंदे में है दम में आज आपने वैभव सूर्यवंशी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
12: सूर्य की राशि की विशेषताएं क्या हैं और इसके प्रभाव क्या हैं? चंद्रमा की राशि की कमजोरी क्या है और इसे कैसे सुधारा जाए? क्या है सूर्य और चंद्रमा की राशियों की विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
13: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. Yeah, I try to. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
14: Thank God I get to wake
13: and everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
15: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
16: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति माइकल बोलोस के साथ राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जैसलमेर पहुंची। इस दौरान दंपति ने विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर फोर्ट को देखा, जिसे सुनार किला के नाम से भी जाना जाता है, इसका भ्रमण किया। सुनहरे पत्थरों से निर्मित इस भव्य किले की वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत ने उनका ध्यान आकर्षित किया। टिफनी ट्रंप को स्टेट ऑफ गेस्ट का दर्जा दिया गया है। उनके ठहरने के लिए शहर के प्रसिद्ध और भव्य होटल सूर्यगढ़ में विशेष इंतजाम किए गए हैं। होटल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियां कड़ी नजर रख रही हैं और इस हाई प्रोफाइल दौरे को देखते हुए जैसलमेर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं।
15: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
17: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Levitard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
12: सूर्य की राशि की विशेषताएं क्या हैं और इसके प्रभाव क्या हैं, चंद्रमा की राशि की कमजोरी क्या है और इसे कैसे सुधारा जाए, क्या है सूर्य और चंद्रमा की राशियों की विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
18: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी
15: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
16: मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम। मौसम खराब होने पर यात्रा पर लगा था अल्प विराम। बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक 7.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन, चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई। बर्फबारी के बीच श्री हेमकुंड साहिब में भी आस्था भारी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में लगा भक्तों का तांता, पूजा अर्चना के साथ हर रविवार को होते हैं धार्मिक अनुष्ठान, दान पुण्य के साथ भक्तों के लिए भंडारे का इंतजाम। यूपी की राजधानी लखनऊ में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को मिली राहत, आसमानी फुहारों से गिरा पारा। उत्तराखंड के चमोली में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रारन का भव्य आगाज, 28 राज्यों के 933 प्रतिभागी कर रहे शिरकत, भारत चीन सीमा के पास लगा रोमांच का मजमा। राजस्थान में फिर उठा रेतीला तूफान, तेज हवाओं के साथ जैसलमेर के आसमान पर छाया बवंडर, दिन में हुआ अंधेरा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर आसमान में देखा ब्लू मून का दुर्लभ नजारा, नीला नहीं बल्कि नारंगी नजर आया चांद, टेलीस्कोप से अनोखी खगोलीय घटना का दीदार करते देखे लोग।
15: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: ताकत में बेस्ट, तकनीक में श्रेष्ठ, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार, हिंदुस्तान बना रहा है स्वदेशी हथियार।
1: जो देश अपने हथियार खुद बनाता है, वही देश अपनी तकदीर भी खुद लिखता है।
0: आज भारत तोप की गोली से लेकर मिसाइल तक और फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक सब कुछ खुद ही तैयार कर रहा है।
2: एक वक्त था जब भारत अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे भारत ने अपनी ताकत को समझा, उसे जाना और खुद आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची। आज रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो अपने यहाँ ही बना रहा है। कई देशों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत ही भारत ने अपने यहाँ ही कई रक्षा उपकरणों को बनाना शुरू किया है। नतीजा ये है कि आज की डेट में भारत न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि दूसरे देशों का निर्यातक भी बन रहा है। डिफेंस सेक्टर में दिनों दिन भारत की तेज होती धमक ये बताने के लिए काफी है कि रक्षा क्षेत्र में आने वाला वक्त हमारा होगा।
1: अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
0: हर दिन नए हथियारों की चमक दुश्मनों को भयभीत कर रही है। भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जो दुश्मन की नापाक हरकतों का माकूल जवाब दे सके।
1: आज के युद्धों में स्पीड और प्रिसीजन, सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ड्रोन, ऑटोमेटेड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो सिस्टम्स हैं, दुश्मन पर ज्यादा सटीक हमला कर सकते हैं और अपने सैनिकों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। साथियों, इसका एक और लाभ सीमा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वह बहुत ही कठिन है, जटिल है, टफ है। हर जगह सैनिकों की तैनाती करना यह कोई आसान काम नहीं होता। मैं प्रत्यक्ष से महसूस कर रहा हूं। और ऐसे में ऑटोमेटेड निगरानी सिस्टम, रोबोटिक वाहन और सेंसर दिन रात सीमा की निगरानी कर सकते हैं, ऐसा सभी अब स्वीकार करने लगे हैं। इससे सुरक्षा भी बढ़ती है और कठिन परिस्थितियों में जो हमारे सैनिक तैनात होते हैं उन पर दबाव भी कम रहता है।
0: म्यूनिशन और ऑटोमेटेड सिस्टम में भारत अगुआ बनकर उभरे, इसके लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है।
1: भविष्य के युद्धों में सबसे बड़ा अंतर इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपके पास सैनिकों की संख्या कितनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका देश म्यूनिशन और ऑटोमेशन की दृष्टि से कितना एडवांस है और कितना कैपेबल है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सिर्फ युद्ध की आवश्यकता नहीं, बल्कि शांति, विकास और आर्थिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है।
2: रक्षा क्षेत्र में यदि हम अभी तक दूसरों पर निर्भर रहे थे तो यकीन मानिए इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारे डिफेंस सेक्टर और हमारे फाइनेंस सेक्टर को होता। लेकिन अब क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची, खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में, तो यही वजह है कि खासतौर पर तकनीक के मामले में और रक्षा तकनीक के मामले में आज भारत अपने पैरों पर खड़ा है।
0: 23 मई को महाराष्ट्र के शिरडी में एक बेहद आधुनिक गोला बारूद निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया, जिसमें सालाना 5,00,000 आर्टिलरी शेल्स तैयार किए जाएंगे। साथ ही भारत के पहले 300 किलोमीटर वाले सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम को भी हरी झंडी दिखाई गई। सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दो रेंज वेरिएंट्स में डिजाइन किया गया है। पहला वेरिएंट 150 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों तक हमला कर सकता है और दूसरा लंबी दूरी वाला वेरिएंट 300 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकता है। भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र की खरीद का ऑर्डर भी दे दिया है।
3: सूर्यास्त्र भारत की सेनाओं को एक ऐसा जबरदस्त वेपन और फोर्स मल्टीप्लायर मिलने वाला है जो वाकई में दुश्मन की कमर तोड़ने में कामयाब होगा, क्योंकि इसका पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की क्षमता है कि 5 मीटर के अंदर लिखा हो लेकिन 2 मीटर के रिजल्ट दिए गए 300 किलोमीटर दूर। आप समझिए कि जब वो हमला करने में सक्षम है दुनिया के कमांड सेंटर पर, जहाँ पे उनके शीर्ष अधिकारी बैठे होते हैं, प्लानिंग चल रही है, वहाँ पर हमले के पहले हमारा हमला होता है, उनकी सारी प्लानिंग ध्वस्त हो जाती है। कम्युनिकेशन सिस्टम पर जहाँ से बातचीत होती है उसको ख़त्म कर दें, रडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, लॉजिस्टिक बेस जहाँ से उनके हथियारों का भंडारण है, अम्यूनिशन का भंडारण है, तेल है, पिन पॉइंट हमला करने में सक्षम है।
0: सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम में प्रिसिजन गाइडेड रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये पारंपरिक हथियारों की तरह इधर उधर नहीं गिरते बल्कि बिल्कुल उसी जगह पर प्रहार करते हैं जहां इन्हें भेजा गया, यानी निशाना एकदम अचूक। सूर्यास रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में 150 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट का सीईपी यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल महज 1.5 मीटर है, वहीं 300 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट का सीईपी 2 मीटर है। इसका मतलब ये है कि रॉकेट अपने टारगेट से औसतन 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर गिरता है, जो युद्ध में बहुत बड़ी ताकत है।
3: सूर्यास्त्र देखा जाए तो एक टेक्नोलॉजी का बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है। इससे 122 mm, 306 mm, 370 mm के रॉकेट फायर किए जा सकते हैं, साथ साथ में कामिकाजी ड्रोन भी फायर किया जा सकता है। 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी और तकरीबन 5 मीटर कहा जाता है, लेकिन इससे बेहतर रिजल्ट्स इसके मिले 2 मीटर का सर्कुलर एरर पे, यानी कि 2 मीटर के अंदर अंदर ये फायर करने में सक्षम है। ये इसका प्रिसीजन है, ये इसकी एक्यूरेसी है। क्या फ़ायदा होगा इसका? यह होगा कि दुश्मन के कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक बेस, उनकी गन पोजीशन, एडी सिस्टम, रडार स्टेशन और जहाँ पे उनकी रॉकेट सिस्टम है, जहाँ सब पर भी उनका जो एक स्ट्रेटजिक टारगेट्स हैं उनको हम पिन पॉइंट हमला करने में ये सक्षम है।
0: भारतीय सेना को अब लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाले रॉकेट्स मिलेंगे, जिससे दुश्मन के ठिकानों जैसे कि आर्टिलरी पोजीशंस, कमांड सेंटर्स और दूसरे अहम टारगेट्स को सुरक्षित दूरी से तबाह किया जा सकेगा।

सूर्यास्त्र की सबसे बड़ी ताकत है इसकी मल्टी बैरल क्षमता, जिसमें अलग अलग तकनीक के हथियार एक साथ लगाए जा सकते हैं और दागे भी जा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि निशाना भी सटीक और लॉजिस्टिक का खर्च भी बहुत कम। सूर्यास्त्र के अलग अलग पॉड्स को मिशन के हिसाब से बदला जा सकता है। 370 mm कैलिबर की प्रेडेटर हॉक गाइडेड रॉकेट सूर्यास्त्र सिस्टम का सबसे घातक हथियार है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। सूर्यास्त्र सिस्टम का एक और घातक हथियार है एक्स्ट्रा रॉकेट। 306 mm कैलिबर का ये गाइडेड रॉकेट 150 किलोमीटर तक दुश्मन के बंकरों और कमांड सेंटर्स को तबाह कर सकता है। सूर्यास्त्र सिस्टम से 122 mm और 160 mm कैलिबर के बेहद किफायती एक्यूलर रॉकेट्स दागे जा सकते हैं, जो 40 से 100 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। सूर्यास्त्र सिस्टम से स्काई स्ट्राइकर लॉयटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन भी दागे जा सकते हैं, जो हवा में रहकर दुश्मन की खोज करते हैं और सटीक हमला करते हैं। सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से दागी जाने वाली प्रेडेटर हॉक रॉकेट्स में GPS INS सेंसर फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये तकनीक प्रेडेटर हॉक रॉकेट को बिना किसी भारी मदद के बेहद खराब मौसम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के बीच भी सटीक निशाना लगाने की क्षमता देती है।

0: देखा जाए तो प्रेडेटर हॉक सूर्य अस्त्र का सबसे खतरनाक रॉकेट है। 300 किलोमीटर तक जाता है, 370 mm है और 140 से 200 किलोग्राम तक का ये एक्सप्लोसिव ले जा सकता है और छत के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर, बंकर्स के ऊपर बहुत इफेक्टिव है। तोड़ के अंदर तक उनको तहस नहस कर सकता है। सेल्फ गाइडेंस है, गाइडेंस बड़ी अच्छी है और पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है, जैसा कि 5 मीटर का बताया जाता है, लेकिन 2 मीटर की हमको इसमें एक्यूरेसी मिली है। और शूट एंड स्कूट का इसका फैसिलिटी है कि फायर करे, उसके बाद जगह बदली कर सकता है।
1: हॉक रॉकेट सुपरसोनिक स्पीड से हमला करने में सक्षम है, जबकि ये 140 किलोग्राम का भारी वॉरहेड लेकर अपने टारगेट से टकराता है तो भारी मात्रा में काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। इस ऊर्जा के कारण बिना विस्फोट हुए भी ये रॉकेट सिर्फ अपनी रफ्तार और वजन के दम पर कंक्रीट की कई फीट मोटी दीवारों को मलबे में तब्दील कर सकता है। सूर्यास्त्र की सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक पारंपरिक क्रूज और एक बैलिस्टिक मिसाइल के 15% खर्चे से भी सस्ता है, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि युद्ध के क्षेत्र में हमें भारी भरकम खर्च उठाने की जरूरत नहीं है। हम मल्टीपल रॉकेट्स दुश्मन पर दाग सकते हैं। आधुनिक युद्ध में आर्टिलरी की भूमिका निर्णायक होती है और सूर्यास्त्र शूट एंड स्कूट क्षमता के साथ दुश्मन के काउंटर अटैक से बचते हुए तेज हमला करने में सक्षम है। इसमें हाई मोबिलिटी व्हीकल भी लगाया गया है, जिससे ये बहुत तेजी से जगह बदल सकता है। सूर्यास्त्र को 6x6 भारी ट्रकों पर माउंट किया गया है। हमला करने के बाद ये सिस्टम फौरन अपना लोकेशन बदलने में सक्षम है, जिससे दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना और निशाना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। जानते हैं कि भारत सरकार ने किस तरह के चेंजेस किए हैं, जिस वजह से 5000 तरह के उपकरण भारत में ही बनाए जा रहे हैं। दरअसल अभी अगर बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट पार्टनरशिप 20-30% है, जिसे बढ़ाकर सरकार 50% तक करना चाह रही है। इसको लेकर विचार हो रहा है। मोदी सरकार ने FDI, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जैसे बड़े सुधार किए हैं। सूर्यास्त्र भारत की आर्टिलरी ताकत में काफी इजाफा करेगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के पास जो पिनाका मौजूद है उसमें और सूर्यास्त्र में क्या अंतर है? तो सबसे पहले दोनों रॉकेट सिस्टम की ताकत और खासियत जान लीजिए। सिस्टम की बात करें तो पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्च है, जो सिर्फ रॉकेट लॉन्चिंग के लिए ही है। सूर्यास्त्र यूनिवर्सल लॉन्चर है, जो रॉकेट और मिसाइल दोनों दाग सकता है। पिनाका में कैलिबर फिक्स है और इसे सिर्फ 214 mm रॉकेट से ही दागा जा सकता है। सूर्यास्त्र मल्टी कैलिबर है, जो 122 mm, 306 mm, 370 mm के वेपन्स दाग सकता है। रेंज की बात की जाए तो

0: किलोमीटर और पना का एक्सटेंडेड रेंज 75 से 90 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। वहीं सूर्यास्त की रेंज 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर है।
1: पॉड रीलोड सिस्टम की बात करें तो पिनाका के रीलोडिंग में करीब 4 से 5 मिनट का समय लगता है। वहीं सूर्यास्त में जो पॉड सिस्टम लगा है उसे रीलोड करने में 10 मिनट का वक्त लगता है।
2: पिनाका और सूर्यास्त में फर्क ये है कि पिनाका में एक साथ बहुत सारे रॉकेट फायर होते हैं, 6-6 रॉकेट यानी 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ गिरते हैं एक इलाके में, और वो एक एरिया वेपन के तौर पर यानी कि 214 mm के रॉकेट हैं, एक ही कैलिबर के होंगे और वो एक जगह जाके पूरे इलाके को सैचुरेट कर देंगे, भस्म कर देंगे। जबकि सूर्य अस्त में अलग अलग कैलिबर के रॉकेट फायर हो सकते हैं, 122 mm, 306 mm या 370 mm, 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज होती है। और ये फर्क ये कि पिन पॉइंट अटैक करता है, एक रॉकेट जाएगा वहाँ पिन पॉइंट हमला करेगा, तो दोनों के टारगेट अलग हैं।
0: भारतीय सेना सूर्यास्त सिस्टम को उसकी 300 किलोमीटर की लंबी रेंज और डीप स्ट्राइक क्षमता के कारण LAC और LOC के अत्यंत संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात कर सकती है। इसका मेन मकसद चीन और पाकिस्तान की सेना के रसद आपूर्ति करने वाले रास्तों, एयरबेस और कमांड सेंटर्स को अपने तोपखाने की जद में लाना है। रॉकेट का ताकतवर होना कई मायनों में सेना की युद्ध क्षमता तो नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा, जो काम फाइटर जेट किया करते थे और जिन कामों में मिसाइल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, उसी काम को अब सूर्यास्त जैसा सिस्टम आसानी से कर देगा।
1: पारंपरिक तौर पर अगर देखा जाए तो अगर दुश्मन 300 किलोमीटर दूरी पर बैठा है तो भारत को अपने लड़ाकू विमानों को मैदान में उतारना पड़ता है, लेकिन सूर्यास्त के आने के बाद न तो हम अपने पायलट्स की जान जोखिम में डालेंगे और न ही दुश्मन की सरहद में जाने की जरूरत होगी, बल्कि भारत अपनी सरहद पर ही बैठे दुश्मन का काम तमाम कर सकता है।
0: पहले सीमा से 150 से 300 किलोमीटर दूरी पर मौजूद दुश्मन के कमांड सेंटर, रडार या रसद डिपो को तबाह करने के लिए वायुसेना के सुखोई विमानों को उड़ान भरनी पड़ती थी। वहीं अब इस काम को जमीन पर तैनात आर्मी के सूर्यास्त रेजिमेंट अपने प्रेडेटर हॉक रॉकेट से मिनटों में पूरा कर पाएंगे। इससे महंगे लड़ाकू विमानों और जांबाज पायलटों को दुश्मन के हवाई क्षेत्र में भेजने का जोखिम भी काफी हद तक कम हो जाएगा।
1: सूर्यास्त की तैनाती पारंपरिक तौर पर सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस मिसाइल के वर्कलोड को काफी हद तक कम कर देगी। अब वो किस तरीके से, वो भी आपको समझाते हैं। सीधी सी बात है कि 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को अगर निशाने पर लाना हो तो उसके लिए सूर्यास्त ही काफी होगा। यानी अगर देखा जाए तो रण क्षेत्र में सूर्यास्त सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की जगह ले सकता है।
0: सूर्यास्त 300 किलोमीटर की दूरी तक ब्रह्मोस जैसी अचूक सटीकता प्रदान करता है, इसीलिए सामान्य और कम सुरक्षा वाले लक्ष्यों जैसे कि आतंकी कैंप, रसद डिपो के लिए ब्रह्मोस को बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। ये काम सूर्यास्त आसानी से कर देगा। ब्रह्मोस मिसाइल को अब सिर्फ अति संवेदनशील और अत्यधिक बख्तरबंद जैसे दुश्मन के युद्धपोत या परमाणु बंकर जैसे लक्ष्यों के लिए सुरक्षित रखा जा सकेगा। ब्रह्मोस ले जाने वाले सुखोई 30 MKI विमानों का वजन और रखरखाव का दबाव कम होने से वायुसेना इन विमानों का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में कर पाएगी। सूर्यास्त वायुसेना का विकल्प नहीं बल्कि ये थल सेना को आत्मनिर्भर बनाकर वायुसेना की कीमती हथियारों और विमानों को बड़े और अधिक रणनीतिक युद्धों के लिए रीस्टॉक करने का मौका देता है।
2: ब्रह्मोस जैसा महंगा मिसाइल एक स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि तो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट टारगेट है, वहाँ पर सूर्यास्त का इस्तेमाल किया जा सकता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है। और तीसरी बात यह कि सुखोई को भी बचत होगी, एयरफोर्स को जो 300 किलोमीटर दूर टारगेट होते थे उनके लिए हवा में जाके मिसाइल फायर करनी पड़ती थी, वो बच जाएगा। आप जमीन से फायर करोगे उनके टारगेट को बर्बाद कर दोगे, यानी कि हम अपने जो एयरक्राफ्ट हैं सुखोई है इनको एक्सपोज नहीं करेंगे, उनका इस्तेमाल और स्ट्रेटजिक टारगेट के लिए और बड़े टारगेट्स के लिए किया जा सकता है। तो यानी कि फोर्स मल्टीप्लायर है कि वो हथियार बने रहेंगे, वो अपने टारगेट्स करेंगे, बाकी टारगेट्स को सूर्यास्त एंगेज करेगा, अपनी जमीन पर रहते रहते दुश्मन को नेस्ता नाबूद करेगा।
1: आज देश में सिर्फ हथियार ही नहीं बनाए जा रहे
0: बल्कि यहाँ उस भरोसे को भी मजबूत किया जा रहा है जिसके दम पर सेना

0: अब हम सिर्फ टैंक, तोप, मिसाइल या फाइटर जेट्स ही नहीं बनाते, हम बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत, जिसका सर्वोच्च संकल्प है राष्ट्र रक्षा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहली बार आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना।
1: भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा।
0: रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा और विदेश से हथियार और उपकरण के आयात को कम कर भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड मिशन पर आगे बढ़ रहा है।

0: हिंदुस्तान अब अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं, भारत में ही तरह तरह की मिसाइलें, फाइटर जेट्स और यहाँ तक कि छोटे कलपुर्जे तक बनाए जा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत रक्षा के क्षेत्र में खुद स्टैंड कर चुका है और ये दुनिया भी भारत का लोहा मान रही है।
1: भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में लंबी छलांग लगाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले 5 साल में रक्षा उत्पादन में 90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2023 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 1,50,590 करोड़ को पार कर गया है। यानी कि भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 18% की छलांग लगाई है। साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था। यानी साल 2019-20 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 90% की बढ़त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी शक्ति बनाने के लिए शुरू की गई योजना मेक इन इंडिया ने जिस क्षेत्र में सबसे अधिक छाप छोड़ी है वो है रक्षा।
2: भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा।
1: ये मेक इन इंडिया मिशन की वो तैयारी है जिसमें हर स्क्रू, हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर भारत का है और भारत के लिए है।
0: स्क्रू से लेकर सिस्टम और सॉफ्टवेयर तक भारत आज की तारीख में ये सब कुछ अपने यहाँ बना रहा है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि भारत ये सब कुछ न सिर्फ अपने लिए बना रहा है बल्कि 80 से ज्यादा देशों को दे भी रहा है। और ये तमाम वो देश हैं जो रक्षा के मामले में भारत पर भरोसा करते हैं।
1: सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, जिसके तहत मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू हो गया। लेकिन एक वक्त था जब 65% से 70% रक्षा सामग्री आयात की जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 35% सामान ही आयात होता है। इसका मुख्य कारण भारत की अपनी रक्षा प्रणालियों को डिजाइन और विकसित करने की बढ़ती क्षमता है।
0: भारत सरकार की तरफ से पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट तैयार की गई है, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि स्वदेशीकरण को ज्यादा बढ़ावा देना। यानी खास तौर पर रक्षा के क्षेत्र में हम किसी दूसरे मुल्क पर निर्भर ना रहें, छोटे से कलपुर्जे से लेकर बड़ी से बड़ी मिसाइल तक बनाने में भारत खुद अपनी धरती का और यहाँ के साजो सामान का ही इस्तेमाल करे।
1: अब तक रक्षा मंत्रालय ऐसी 5 लिस्ट जारी कर चुका है और इसमें तकरीबन 5,000 आइटम्स के आयात पर पाबंदी लगाई गई थी। ये सभी डिफेंस, पीएसयू और निजी स्वदेशी कंपनियों से खरीदे जा रहे हैं। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट 4,666 आइटम्स की 5 लिस्ट जारी की गई है, जिन्हें सिर्फ स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा। नेगेटिव लिस्ट, इसमें 310 उपकरणों जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, तोप के आयात पर 2020 से 27 तक रोक लगाई गई है। डैप 2020 यानी कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में खरीद को प्राथमिकता दी गई, यानी कि स्वदेशी डिजाइन और प्रोडक्शन को बढ़ावा। सृजन पोर्टल, इसमें 19,509 पहले आयातित आइटम्स को स्वदेशी बनाने के लिए लिस्ट किया गया। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा, इसमें टाटा, L&T, भारत फोर्स और MSME को बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। FDI में छूट, डिफेंस में 74% तक FDI ऑटोमेटिक रूट से और 100% सरकार की मंजूरी से होगी। अगला है R&D को बढ़ावा, इसमें IDEX और TDF स्कीम्स से स्टार्टअप्स और MSMEs को फंडिंग दी जा रही है। साल 2025 में TDF के लिए 60 करोड़ रुपए और IDEX प्राइम के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए।
3: हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर ना सिर्फ सुरक्षा के मामले में डिफेंस प्रोटेक्शन में होना पड़ेगा, तमाम ऐसी विधाएं हैं उसमें हर एक में आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसका कि प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियर कट कॉल दिया हुआ है। जहां तक डिफेंस का सवाल है, देखिए हिंदुस्तान की सुरक्षा में को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। आप ऐसे समय में दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें जब आपको उस इक्विपमेंट की, उस हथियार की, उस गोला बारूद की, उस एमिनिशन की जरूरत है, लिहाजा आपको स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा। और हिंदुस्तान देखिए धीरे धीरे इसके तरफ अग्रसर हो रहा है।
1: प्राइवेट कंपनियों को भी सरकार की तरफ से सहूलियतें दी गई हैं। सरकार ने भारत की निजी हथियार निर्माता कंपनियों के लिए ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है कि बड़ी तेजी से ये आगे बढ़ने लगे। इस पूरी बढ़ोतरी में हिस्सेदारी की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2024-25 में कुल रक्षा उत्पादन में DPSU यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान करीब 77% रहा, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 23% रहा। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले बढ़ी है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 21% थी, वो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 23% हो गई।
3: सबसे पहले मैं टच करूंगा पॉजिटिव इंडियनाइजेशन। इसके तहत वो सारी चीजें हैं जो कि डिफेंस में जिसकी रिक्वायरमेंट है और जिसको हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सकती है, चाहे वो PSUs हो, DPSUs हो, प्राइवेट सेक्टर हो। अब हम नेगेटिव लिस्ट की बात करते हैं। टाइम टू टाइम ये लिस्ट रिवाइज की जाती है। नेगेटिव लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें कि उन आइटम को बैन किया गया है जिसका हम बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे। ये सारे के सारे आइटम हिंदुस्तान में प्रोड्यूस किए।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: Hey, it's Billy Bush. Tune in to my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
4: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति माइकल बोलोस के साथ राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जैसलमेर पहुंची। इस दौरान दंपति ने विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर फोर्ट को देखा, जिसे सुनार किला के नाम से भी जाना जाता है, इसका भ्रमण किया। सुनहरे पत्थरों से निर्मित इस भव्य किले की वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत ने उनका ध्यान आकर्षित किया। टिफनी ट्रंप को स्टेट ऑफ गेस्ट का दर्जा दिया गया है। उनके ठहरने के लिए शहर के प्रसिद्ध और भव्य होटल सूर्यगढ़ में विशेष इंतजाम किए गए हैं। होटल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियां कड़ी नजर रख रही हैं और इस हाई प्रोफाइल दौरे को देखते हुए जैसलमेर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
8: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more. Tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
4: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम। मौसम खराब होने पर यात्रा पर लगा था अल्प विराम। बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक 7.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई। बर्फबारी के बीच श्री हेमकुंड साहिब में भी आस्था भारी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में लगा भक्तों का तांता। पूजा अर्चना के साथ हर रविवार को होते हैं धार्मिक अनुष्ठान। दान पुण्य के साथ भक्तों के लिए भंडारे का इंतजाम। यूपी की राजधानी लखनऊ में हुई झमाझम बारिश। भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को मिली राहत। आसमानी फुहारों से गिरा पारा। उत्तराखंड के चमोली में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रारन का भव्य आगाज। 28 राज्यों के 933 प्रतिभागी कर रहे शिरकत। भारत चीन सीमा के पास लगा रोमांच का मजमा। राजस्थान में फिर उठा रेतीला तूफान। तेज हवाओं के साथ जैसलमेर के आसमान पर छाया बवंडर। दिन में हुआ अंधेरा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर आसमान में देखा ब्लू मून का दुर्लभ नजारा, नीला नहीं बल्कि नारंगी नजर आया चांद। टेलीस्कोप से अनोखी खगोलीय घटना का दीदार करते देखे लोग।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का विस्फोटक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो है तो महज 15 साल का, लेकिन क्रिकेट के मैदान में बल्ले से ऐसे ऐसे कीर्तिमान रच रहा है कि बड़े बड़े सूरमाओं की चमक उसके आगे फीकी पड़ती जा रही है।

आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बीते 27 मई को आईपीएल के एक मुकाबले में बल्ले से विस्फोट की नई इबारत लिखने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी है। जी हां, 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की जो विस्फोटक पारी खेली उसकी धमक में क्रिकेट के कई दिग्गजों के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स दफन हो गए। वैभव ने एक पारी में इतने रिकॉर्ड्स बना दिए कि ये खुद अपने आप में रिकॉर्ड हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वाली पारी। दरअसल पिछले 2 साल से वैभव मैदान में टिककर जिस तरह से आतिशबाजी कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले वर्षों में बल्लेबाजी का कोई ऐसा रिकॉर्ड होगा ही नहीं जो वैभव

0: क्रिकेट के क्षितिज पर उदित हो चुका है एक ऐसा चमचमाता वैभवशाली सूर्य जिसकी चौंधिया देने वाली चमक में क्रिकेट के आसमान के बड़े बड़े सितारे गुम से हो गए हैं। इस वैभवशाली सूर्य ने आईपीएल की महज एक पारी में इतने कीर्तिमान बना दिए हैं कि रिकॉर्ड बुक के हर सफहे पर एक ही नाम चमक रहा है, वैभव सूर्यवंशी। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को हुए एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की ऐसी विस्फोटक पारी खेली कि आईपीएल के 18 साल के इतिहास में बल्ले से बने करीब करीब सारे रिकॉर्ड्स जमींदोज हो गए।
1: वो बच्चा 15 साल का है, इतनी धमाल मचा रखी है। बुमराह को उसने पहली बॉल पे छक्का मारा, हेजलवुड को, हर एक बॉलर को उन्हें पहली बॉल पे छक्का मारा। ऐसा बल्लेबाज मैंने दुनिया में नहीं देखा। वरिंदर सहवाग भी ऐसी पारी नहीं कभी खेल सका जो वैभव सूर्यवंशी खेलता।
0: वैभव की इस अविस्मरणीय पारी को देखकर ऑल टाइम ग्रेट सचिन तेंदुलकर को कहना पड़ गया अभूतपूर्व। बल्ले से वैभव का अतुल्य धमाका पूरी एकाग्रता से देखने के बाद सचिन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का स्विंग असाधारण था। इससे भी बड़ी बात यह है कि पैरों पर फेंकी गई गेंद पर उन्होंने बेहद कुशलता के साथ फ्रंट फुट क्लियर का रूम बना लिया, जिसकी वजह से उन्होंने जहां चाहा गेंद को वहीं पहुंचा दिया। वैभव की ये पारी चमत्कार से कम कुछ भी नहीं। यूं तो वैभव ने पूरे आईपीएल के दौरान अतुल्य बल्लेबाजी की है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को खेली गई उनकी एक अदद पारी क्रिस गेल, डेविड वार्नर, रिली रूसो, शुभमन गिल और सुरेश रैना जैसे दिग्गजों की कई कई पारियों पर भारी पड़ गई है। वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की धमाकेदार पारी में 12 छक्के लगाए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वैभव ने आईपीएल 2026 सीजन में 65 छक्के पूरे कर लिए हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 सिक्सर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। गेल ने आईपीएल 2012 में कुल 59 छक्के लगाए थे। वैभव के इस रिकॉर्ड के भीतर भी एक रिकॉर्ड छिपा हुआ है। गेल ने 59 सिक्सर के लिए 456 गेंदें खेली थी, जबकि वैभव ने सिर्फ 280 गेंदों पर 65 छक्के अपने नाम कर लिए हैं। 280 गेंदों पर 65 छक्कों का मतलब ये हुआ कि कमोबेश हर चौथी गेंद पर सिक्सर। ये रिकॉर्ड तो गेंदबाजों के लिए डरावने सपने की तरह है।
2: Young man is something else. You know, he can hit the best of fast bowlers, the best of slow bowlers into the crowd. His sixes are generally into the crowd. His sixes are not those that just pop over that boundary arrow, and he just makes it look so ridiculously easy.
0: महज 15 साल के वैभव जिस तरह कीर्तिमान पर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि भविष्य में बल्लेबाजी के सारे रिकॉर्ड्स ब्लैक एंड व्हाइट में इनके नाम ही दर्ज मिलेंगे। 27 मई को एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने एचआरएस के खिलाफ सिर्फ 16 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। आईपीएल के नॉकआउट हिस्ट्री में ये संयुक्त रूप से सबसे तेज 50 है। इससे पहले साल 2014 के क्वालिफायर 2 में सुरेश रैना ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 16 गेंदों पर अर्धशतक बनाया था। इतना ही नहीं, वैभव की इस पारी में शुरू के 10 छक्के सिर्फ 24 गेंदों पर ही आ गए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 10 छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। गेल के 10 छक्के साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 27 गेंदों में आए थे। आईपीएल 2026 के दौरान 27 मई को खेली गई ऐतिहासिक पारी समेत कुल 15 पारियों में वैभव 243 की स्ट्राइक रेट से 680 रन बना चुके हैं। टी20 के किसी भी टूर्नामेंट में 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से 600 से ज्यादा रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले साल 2022 में T20 ब्लास्ट में रिली रूसो ने 192 के स्ट्राइक रेट से 623 रन बनाए थे। वैभव की इस एक पारी में बने रिकॉर्ड्स की फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव के कुल 12 में से 8 छक्के पावर प्ले में ही आ गए थे। दिलचस्प तो ये है कि इससे पहले पावर प्ले में सबसे ज्यादा 7 छक्कों का कीर्तिमान भी हिंदुस्तान के इस वैभवशाली खिलाड़ी के नाम ही दर्ज था। वैभव अब IPL में 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियां खेल चुके हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। पर कमाल यह है कि वैभव की 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियों में से 3 IPL के मौजूदा सीजन में ही आई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की अपनी पारी में वैभव ने एक और अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। IPL के इतिहास में 90 प्लस रनों की सभी पारियों में वैभव की पारी सबसे तेज स्ट्राइक रेट वाली पारी बन गई है। वैभव ने 334.48 की स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए। इससे पहले ये रिकॉर्ड रजत पाटीदार के नाम था, जिन्होंने इसी सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 281.81 की स्ट्राइक रेट से 33 गेंदों पर 93 रन बनाए थे। आपको बता दें कि 27 मई वाली पारी को लेकर वैभव IPL 2026 सीजन में सिर्फ पावर प्ले के दौरान 490 रन बना चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड डेविड वार्नर के नाम था, जिन्होंने साल 2016 में पावर प्ले के दौरान 467 रन बनाए थे। ये सारे रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं 15 साल के एक टीनेजर के नाम। सोचिए, 15 साल का ये बच्चा इसी उम्र में अगर क्रिस गेल, डेविड वार्नर, किरोन पोलार्ड और शुभमन गिल जैसे महारथियों के रिकॉर्ड्स की कब्रगाह बना चुका है, तो आगे तो वैभव के नाम से ही कीर्तिमान की एक किताब छापनी पड़ जाएगी।
3: बैट्समैन बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में अगर वो अपनी फिटनेस अच्छी मेंटेन करता है तो फिर आने वाला वो फ्यूचर स्टार है इंडिया का।
4: वैभव सूर्यवंशी, उसकी भी बैटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया खेलता है,
5: बहुत
4: नेक्स्ट लेवल बैटिंग है। हम उसकी बैटिंग को नहीं कह सकते, उसकी अपनी अलग क्लास है।
6: करदा उड़ा दिया वैभव सूर्यवंशी ने,
0: ऐसा नहीं है कि वैभव का बल्ला सिर्फ IPL में ही चला है। इससे पहले भी बिहार के समस्तीपुर का ये लाल ऐसी ऐसी अद्भुत पारियां खेल चुका है कि क्रिकेट के इतिहास में उसकी कोई सानी देखने को नहीं मिलती। इसी साल 6 फरवरी को जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में वैभव ने जो पारी खेली थी, उसे अंडर 19 वर्ल्ड कप के 38 साल के इतिहास की सबसे महान पारी कहा जा रहा है। सबसे महान पारी क्यों कहा जा रहा है, स्टैट देखने से इसका जवाब मिल जाएगा। वैभव ने महज 80 गेंदों पर 175 रन ठोक दिए। वैभव ने इस पारी में 15 छक्के और 15 चौके लगाए, यानी 150 रन सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए अपने खाते में जोड़ लिए। 55 गेंदों पर शतक पूरा किया, बाद के 75 रन सिर्फ 25 गेंदों पर ठोक दिए। महज 71 गेंदों पर 150 रन पूरे कर लिए, जो यूथ वनडे इतिहास का सबसे तेज 150 है। इतना ही नहीं, वैभव ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में कुल 30 छक्के लगाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस के नाम था, जिन्होंने 2022 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में 18 छक्के लगाए थे। पूरे टूर्नामेंट में वैभव 439 रन के साथ सेकेंड टॉप स्कोरर भी रहे। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहने के साथ वैभव ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप से ठीक पहले अंडर 19 एशिया कप में 12 दिसंबर 2025 को UAE के खिलाफ वैभव ने 95 गेंदों पर 171 रन कूटकर विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए थे। इस आतिशी पारी में वैभव ने 9 चौके और 14 छक्के लगाए थे। कहने की जरूरत नहीं कि सबसे तेज और सबसे कम उम्र से जुड़े रिकॉर्ड्स के सरताज बन चुके हैं वैभव। 24 दिसंबर 2025 को रांची के जेसीए ओवल ग्राउंड में वैभव ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि कई विश्व कीर्तिमान ध्वस्त हो गए। विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल के खिलाफ हुए मुकाबले में वैभव ने सिर्फ 84 गेंदों पर 15 छक्कों और 16 चौकों की मदद से 190 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी थी। इस मैच में सिर्फ 59 गेंदों पर 150 रन पूरे कर वैभव ने लिस्ट ए मैच में फास्टेस्ट 150 का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के नाम था, जिन्होंने साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 64 बॉल पर 150 रन बनाए थे। तूफान थोड़ी देर के लिए हो तो राहत, नहीं तो कहर बन जाता है। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के मैदान के टिक कर रहने वाले तूफान नहीं बल्कि बवंडर हैं, इसीलिए विरोधियों के लिए कहर नहीं बल्कि महाकहर बन रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैभव 13 साल की उम्र में एक मैच में ट्रिपल सेंचुरी भी लगा चुके हैं। रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में वैभव ने 332 रनों की नाबाद पारी खेली थी। अभी तो ये यूथ इंडिया की रहनुमाई कर रहे हैं, इंतजार कीजिए इनके टीम इंडिया में शामिल होने का। इसकी पूरी संभावना है कि साल 2027 के वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए ओपनिंग करेंगे और बहुत संभव है कि भारत तब वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक लगाएगा।
5: 15 साल के वैभव की कामयाबी क्रिकेट के बड़े बड़े धुरंधरों को भी हैरान करने लगी है। आईपीएल में अपने से दोगुने ढाई गुने उम्र के घातक गेंदबाजों को भी वो न सिर्फ सहजता से खेल रहे हैं बल्कि कायदे से धुलाई भी कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इतनी छोटी उम्र में ही वैभव इतने दिग्गज बल्लेबाज कैसे बन गए। दरअसल इसके पीछे कहानी है एक अधूरे सपने की, जो कभी वैभव के पिता ने देखा था। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन हालात की दुश्वारियों की वजह से उनका ये सपना अधूरा रह गया। पर अपने उसी अधूरे सपने को संजीव ने अपने बेटे वैभव के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया। वैभव के क्रिकेटर बनने की पूरी कहानी आपके दिल को छू लेगी।
0: सर पर कामयाबी के ताज के साथ मन में विनम्रता का संस्कार हिंदुस्तान की संस्कृति का सनातन हिस्सा है। मैच 15 की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी का बेनजीर परचम लहरा चुके वैभव सूर्यवंशी सनातन संस्कार के युगीन संवाहक हैं। जिस मैच में वैभव ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी, उसके प्री मैच शो के दौरान जब उन्होंने सुनील गावस्कर और संजय बांगर को देखा तो दौड़कर उनके पास गए और पूरी विनम्रता के साथ उनके पैर छू लिए। वैभव के संस्कार की निश्चल सादगी देखिए कि गावस्कर और बांगर के साथ मौजूद प्रेजेंटर जतिन सप्रू के भी पैर छूने की उन्होंने पूरी कोशिश की। ये अलग बात है कि जतिन पीछे हट गए।
2: हमारी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है कि हम अपने जो बुजुर्ग है, सीनियर्स है, एल्डर्स है, उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, और वही उन्होंने किया। सिर्फ मेरे पास ही नहीं आए थे वो, बस मेरे बाजू में संजय बांगर थे और जतिन सप्रू थे, उनके पास भी आए थे और मुझसे थोड़ा सा रुक कर मुझसे कुछ अपेक्षा कर रहे थे कि मैं कुछ उनको बोलूं, शायद अपेक्षा कर रहे थे, मैं ये नहीं कहूंगा, तो शायद अपेक्षा कर रहे थे। तो मैंने उनको सिर्फ यही कहा, लगे रहो, क्योंकि जब वो लगे रहेंगे तो फिर वो बल्ला लगता रहेगा और छक्के भी लगते रहेंगे।
0: उम्र के लिहाज से वैभव की बेनजीर कामयाबी इस बात की मुनादी कर रही है कि आने वाले वक्त में कीर्तिमान की किताब के हर सफहे पर बिहार के इस लाल का नाम दर्ज मिलेगा। पर वैभव नाम के इस प्रदीप्त दिए की रोशनी से सराबोर होने वाले लोगों को उस तेल और बाती के बारे में भी जानना चाहिए जो खुद गुमनाम रहकर अपने दिए को जगमग कर रहा है। वैभव की इस बेनजीर कामयाबी के पीछे हाथ है उनके पिता संजीव सूर्यवंशी का, जो कभी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का ख्वाब सजोए हुए थे, पर खुद की जो हसरत अधूरी रह गई उसे उन्होंने अपने लाल में प्रत्यारोपित कर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक पिता के अनोखे त्याग की खामोश सदाएं समस्तीपुर जिले के जर्रे जर्रे में जज्ब है।
7: वास्तव में एक पिता का जो त्याग था, तपस्या था, जिद था कि हमको किसी भी तरह जो मैं हासिल नहीं कर सका वो मैं अपने बच्चे को उस मुकाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। वो एकाकी भी देखा कि लोगों से मिलना तक लोगों में, क्योंकि जुनून सवार था कि मैं अपने बेटे को उस मुकाम तक पहुंचाऊं, तो लोगों से मिलना भी बंद किया। उस बीच में कई ऐसी मुसीबतें भी आईं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया।
0: पांच साल के बच्चे को पढ़ाई से दूर कर क्रिकेट के मैदान में पसीना बहाने के लिए खड़ा कर देना किसी भी पिता के लिए आसान फैसला नहीं होगा। पर संजीव सूर्यवंशी ने कलेजे पर पत्थर रख कर ये फैसला लिया। समस्तीपुर जिले की ताजपुर पंचायत में जहां क्रिकेट का कोई नाम लेवा नहीं था, वहां पांच साल के बेटे की प्रैक्टिस के लिए सारी व्यवस्था कर दी। यहां तक कि कुछ हम उम्र और बड़े बच्चों को भी चॉकलेट मिठाई का प्रलोभन देकर साथ जोड़ लिया ताकि वे बॉलिंग करें और वैभव लगातार बैटिंग की प्रैक्टिस करता रहे। पांच साल से सात साल यानी दो साल तक गांव में ही वैभव को दिन रात प्रैक्टिस कराने के बाद एक दिन संजीव सूर्यवंशी को इल्हाम हो गया कि अब अगले लेवल की प्रैक्टिस का वक्त आ गया है, लिहाजा बेटे को लेकर निकल गए ताजपुर से 12 किलोमीटर दूर स्थित पटेल मैदान में, जहां ब्रजेश झा क्रिकेट एकेडमी चलाते थे। क्रिकेटर बनाने का जुनून ऐसा था कि संजीव सूर्यवंशी को जब लगा कि रोजी रोटी के लिए चलने वाला बिजनेस व्यवधान बन रहा है तो बगैर देरी के उसे बंद कर दिया।
8: गार्डियनों का उनका सपोर्ट रहा है कि अपने बच्चे को इतना ज्यादा टाइम किल करते थे, अपने साथ लाना ले जाना, बच्चों के साथ अपना बिजनेस छोड़ के बच्चे के प्रति इतना एक फोकस, गार्जियन का भी कहीं ना कहीं टारगेट था कि हमारा बच्चा ऊपर खेले, और भगवान की दुआ से बच्चा वो मुकाम पर हासिल किया।
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि 7-8 साल की छोटी उम्र में ही वैभव अपने पिता की उम्मीदों की कसौटी पर लगातार खरे उतर रहे थे। जब तक सूर्य की रोशनी धरा पर मौजूद रहती, वैभव बल्ले को दामन से दूर नहीं होने देते। पिता और माँ को छोड़कर घर के बाकी सदस्यों को वैभव की आदत कई बार नागवार गुजरती थी। दादी ने तो कई मौकों पर ऊब कर वैभव की पिटाई भी कर दी थी, पर बचपन में वैभव की पिटाई के वो वाकये आज दादी के लिए सुनहरी यादें बन चुकी हैं।
9: डांटते तो थे,
10: अच्छा,
9: कभी कभी उसको मारते थे, दौड़ते थे उस पर, फिर भी कहता था नहीं दादी हमको अच्छा लगता है, हम खेलेंगे। हम कहे ठीक है बाबू तब खेलो। जब धीरे धीरे जब दल सिंह सराय गया, बेनी पट्टी, उसके बाद आपको क्या कहते हैं बेगूसराय, जब हम देखते रहे कि यह अच्छा खेल में उतर रहा, तब से मेरा भी मनोबल और मन ये हुआ कि हाँ यह खेले।
0: बचपन में वैभव की बैटिंग की खटखट से ऊब जाने वाली दादी का हृदय आज इस बात को जानकर गदगद है कि उनका पौत्र क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़कर आईपीएल के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाला खिलाड़ी बन गया है। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि वैभव को पटना के जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में डालने के लिए संजीव सूर्यवंशी को जमीन तक बेचनी पड़ी थी? दरअसल संजीव सूर्यवंशी को जब ये लगने लगा कि उनका बेटा समस्तीपुर स्थित पटेल मैदान के स्टैंडर्ड से आगे निकल चुका है, तो पटना में जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन कराने का फैसला किया। एकेडमी की फीस और उसके बाद समस्तीपुर से हर रोज पटना आना जाना कॉस्टली अफेयर था, इसीलिए संजीव सूर्यवंशी बेटे वैभव को लेकर हर अल्टरनेट डे पर पटना जाने लगे। जेनेक्स एकेडमी चलाने वाले पूर्व रणजी खिलाड़ी मनीष ओझा भी वैभव के पिता के त्याग और तपस्या को याद कर भावुक हो जाते हैं।
11: माँ का रोल रहता था बच्चे को तैयार करने से लेके उसको, और जब इधर से थक के जाता था तो उसको फिर रिकवरी में, चाहे वो खाने के सेंस में हो, उसको प्यार के सेंस में हो, उसको रेस्ट के सेंस में हो, और पिता का त्याग इस सेंस में था कि अर्ली सारे बोझ को वो अपने कंधे पर उठा रहे थे, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और फिर भी वो जो वो अपने हैसियत से ज़्यादा बढ़ के उन्होंने उस बच्चे के लिए किया, और हर एक वो सुविधा उस बच्चे के लिए उन्होंने अरेंज किया खेल के प्रति कि वो आज इस मुकाम को प्राप्त कर सके।
0: पिता ने अपनी हैसियत की हदों को पार कर वैभव के लिए जमीन तैयार की, और वैभव ने भी पिता के इस त्याग की कीमत को शिद्दत से महसूस करते हुए मैदान पर पसीना बहाने में कोई कोताही नहीं की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था और वैभव को पटना ले जाना ले आना संभव नहीं रहा, तो संजीव सूर्यवंशी ने अपने ताजपुर स्थित घर के बाहर ही नेट प्रैक्टिस के लिए पिच बनवा दी ताकि वैभव की प्रैक्टिस खंडित ना हो।
10: लॉकडाउन में एक्चुअली पूरा बिहार बंद था, तो यहाँ पे पिच का जनरेट किया गया भैया के द्वारा, और टर्बिकेट और सीमेंटेड लॉकडाउन में लोग घर से नहीं निकल रहे थे, उस वक्त में भी इसका प्रैक्टिस सेशन लगातार यहाँ पे चलता रहा।
0: बेटे को क्रिकेटर बनाने का ये जुनून अपने आप में अनूठा है, इसका नतीजा सबके सामने है। आज वैभव के बल्ले से बनने वाले विश्व रिकॉर्ड्स संजीव सूर्यवंशी की दुनिया को रंगीन सपनों से भी ज्यादा सुहावन बना रहे हैं। वैभव की विराट बुलंदी का आलम यह है कि पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट पर संजीव सूर्यवंशी और उनकी पत्नी से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। देश का गौरव बन चुके तेजस्वी पुत्र का पिता होने के लिए बधाई देते हैं। पिता ने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए त्याग तपस्या की, तो बेटा भी दो कदम आगे बढ़कर अपनी विराट उपलब्धियों से हक अदायगी कर रहा है। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उसके 14 साल के बेटे को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2025 को वैभव को राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। साफ है कि पिता के संकल्प और बेटे की जीतोड़ मेहनत का पावन संगम क्रिकेट के मैदान पर चमत्कारिक धारा बनकर नमूदार हो रही है।
5: तो बंदे में है दम में आज आपने वैभव सूर्यवंशी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
12: सूर्य की राशि की विशेषताएं क्या हैं और इसके प्रभाव क्या हैं? चंद्रमा की राशि की कमजोरी क्या है और इसे कैसे सुधारा जाए? क्या है सूर्य और चंद्रमा की राशियों की विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
13: Tailgate Top 20. Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
14: The Tailgate Top 20.
15: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
13: Try to keep up.
5: ऐसी हर एक
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
17: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति माइकल बोलोस के साथ राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जैसलमेर पहुंची। इस दौरान दंपति ने विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर फोर्ट को देखा, जिसे सुनार किला के नाम से भी जाना जाता है, इसका भ्रमण किया। सुनहरे पत्थरों से निर्मित इस भव्य किले की वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत ने उनका ध्यान आकर्षित किया। टिफनी ट्रंप को स्टेट ऑफ गेस्ट का दर्जा दिया गया है। उनके ठहरने के लिए शहर के प्रसिद्ध और भव्य होटल सूर्यगढ़ में विशेष इंतजाम किए गए हैं। होटल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियां कड़ी नजर रख रही हैं, और इस हाई प्रोफाइल दौरे को देखते हुए जैसलमेर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं।
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
14: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
12: सूर्य की राशि की विशेषताएं क्या हैं और इसके प्रभाव क्या हैं, चंद्रमा की राशि की कमजोरी क्या है और इसे कैसे सुधारा जाए, क्या है सूर्य और चंद्रमा की राशियों की विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
15: Discover your new favorites on TuneIn. With over 100,000 music, news, and sports stations to choose from, there's always something to listen to. Even podcasts and audiobooks for you to enjoy. Stay connected for all new recommendations and follow us on social media at TuneIn on Facebook, Instagram, and X. And start listening today. Just ask your device to play TuneIn.
16: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
17: मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम, मौसम खराब होने पर यात्रा पर लगा था अल्प विराम। बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक 7.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन, चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई, बर्फबारी के बीच श्री हेमकुंड साहिब में भी आस्था भारी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में लगा भक्तों का तांता, पूजा अर्चना के साथ हर रविवार को होते हैं धार्मिक अनुष्ठान, दान पुण्य के साथ भक्तों के लिए भंडारे का इंतजाम। यूपी की राजधानी लखनऊ में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को मिली राहत, आसमानी फुहारों से गिरा पारा। उत्तराखंड के चमोली में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का भव्य आगाज, 28 राज्यों के 933 प्रतिभागी कर रहे शिरकत, भारत चीन सीमा के पास लगा रोमांच का मजमा। राजस्थान में फिर उठा रेतीला तूफान, तेज हवाओं के साथ जैसलमेर के आसमान पर छाया बवंडर, दिन में हुआ अंधेरा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर आसमान में दिखा ब्लू मून का दुर्लभ नजारा, नीला नहीं बल्कि नारंगी नजर आया चांद, टेलीस्कोप से अनोखी खगोलीय घटना का दीदार करते दिखे लोग।
16: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: विरासत में बेस्ट, तकनीक में श्रेष्ठ, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार, हिंदुस्तान बना रहा है स्वदेशी हथियार।
1: जो देश अपने हथियार खुद बनाता है, वही देश अपनी तकदीर भी खुद लिखता है।
0: आज भारत तोप की गोली से लेकर मिसाइल तक और फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक सब कुछ खुद ही तैयार कर रहा है। एक वक्त था जब भारत अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे भारत ने अपनी ताकत को समझा, उसे जाना और खुद आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची। आज रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो अपने यहाँ ही बना रहा है। कई देशों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत ही भारत ने अपने यहाँ ही कई रक्षा उपकरणों को बनाना शुरू किया है। नतीजा ये है कि आज की डेट में भारत न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि दूसरे देशों का निर्यातक भी बन रहा है। डिफेंस सेक्टर में दिनों दिन भारत की तेज होती धमक ये बताने के लिए काफी है कि रक्षा क्षेत्र में आने वाला वक्त हमारा होगा।
1: अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है।
0: हर दिन नए हथियारों की चमक दुश्मनों को भयभीत कर रही है। भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जो दुश्मन की नापाक हरकतों का माकूल जवाब दे सके।
1: आज के युद्धों में स्पीड और प्रिसीजन, सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ड्रोन, ऑटोमेटेड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो सिस्टम्स हैं, दुश्मन पर ज्यादा सटीक हमला कर सकते हैं और अपने सैनिकों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। साथियों, इसका एक और लाभ सीमा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो बहुत ही कठिन है, जटिल है, टफ है। हर जगह सैनिकों की तैनाती करना या कोई आसान काम नहीं होता, मैं प्रत्यक्ष से महसूस कर रहा हूं। और ऐसे में ऑटोमेटेड निगरानी सिस्टम, रोबोटिक वाहन और सेंसर दिन रात सीमा की निगरानी कर सकते हैं, ऐसा सभी अब स्वीकार करने लगे हैं। इससे सुरक्षा भी बढ़ती है और कठिन परिस्थितियों में जो हमारे सैनिक तैनात होते हैं उन पर दबाव भी कम रहता है।
0: म्यूनिशन और ऑटोमेटेड सिस्टम में भारत अगुआ बनकर उभरे, इसके लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है।
1: भविष्य के युद्धों में सबसे बड़ा अंतर इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपके पास सैनिकों की संख्या कितनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका देश म्यूनिशन और ऑटोमेशन की दृष्टि से कितना एडवांस है और कितना कैपेबल है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सिर्फ युद्ध की आवश्यकता नहीं, बल्कि शांति, विकास और आर्थिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। रक्षा क्षेत्र में यदि हम अभी तक दूसरों पर निर्भर रहे थे तो यकीन मानिए इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारे डिफेंस सेक्टर और हमारे फाइनेंस सेक्टर को होता। लेकिन अब क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची, खास तौर पर रक्षा के क्षेत्र में, तो यही वजह है कि खास तौर पर तकनीक के मामले में और रक्षा तकनीक के मामले में आज भारत अपने पैरों पर खड़ा है। 23 मई को महाराष्ट्र के शिरडी में एक बेहद आधुनिक गोला बारूद निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया, जिसमें सालाना 5,00,000 आर्टिलरी शेल्स तैयार किए जाएंगे। साथ ही भारत के पहले 300 किलोमीटर वाले सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम को भी हरी झंडी दिखाई गई। सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दो रेंज वेरिएंट्स में डिजाइन किया गया है। पहला वेरिएंट 150 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों तक हमला कर सकता है और दूसरा लंबी दूरी वाला वेरिएंट 300 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकता है। भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र की खरीद का ऑर्डर भी दे दिया है।
2: सूर्यास्त्र भारत की सेनाओं को एक ऐसा जबरदस्त वेपन और फोर्स मल्टीप्लायर मिलने वाला है जो वाकई में दुश्मन की कमर तोड़ने में कामयाब होगा, क्योंकि इसका पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की क्षमता है कि 5 मीटर के अंदर लिखा हो लेकिन 2 मीटर के रिजल्ट दिए गए 300 किलोमीटर दूर। आप समझिए कि जब वो हमला करने में सक्षम है दुनिया के कमांड सेंटर पर, जहाँ पे उनके शीर्ष अधिकारी बैठे होते हैं, प्लानिंग चल रही है, वहाँ पर हमले के पहले हमारा हमला होता है, उनकी सारी प्लानिंग ध्वस्त हो जाती है। कम्युनिकेशन सिस्टम पर जहाँ से बातचीत होती है उसको ख़त्म कर दें, रडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, लॉजिस्टिक बेस जहाँ से उनके हथियारों का भंडारण है, अम्यूनिशन का भंडारण है, तेल है, पिन पॉइंट हमला करने में सक्षम है।
0: सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम में प्रिसिजन गाइडेड रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये पारंपरिक हथियारों की तरह इधर उधर नहीं गिरते बल्कि बिल्कुल उसी जगह पर प्रहार करते हैं जहां इन्हें भेजा गया, यानी निशाना एकदम अचूक। सूर्यास रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में 150 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट का सीईपी यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल महज 1.5 मीटर है, वहीं 300 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट का सीईपी 2 मीटर है। इसका मतलब ये है कि रॉकेट अपने टारगेट से औसतन 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर गिरता है, जो युद्ध में बहुत बड़ी ताकत है।
2: सूर्यास्त्र देखा जाए तो एक टेक्नोलॉजी का बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है। इससे 122 mm, 306 mm, 370 mm के रॉकेट फायर किए जा सकते हैं, साथ साथ में कामिकाजी ड्रोन भी फायर किया जा सकता है। 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी और तकरीबन 5 मीटर कहा जाता है, लेकिन इससे बेहतर रिजल्ट्स इसके मिले 2 मीटर का सर्कुलर एरर पे, यानी कि 2 मीटर के अंदर अंदर ये फायर करने में सक्षम है। ये इसका प्रिसीजन है, ये इसकी एक्यूरेसी है। क्या फ़ायदा होगा इसका? यह होगा कि दुश्मन के कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक बेस, उनकी गन पोजीशन, एडी सिस्टम, रडार स्टेशन और जहाँ पे उनकी रॉकेट सिस्टम है, जहाँ सब पर भी उनका जो एक स्ट्रेटजिक टारगेट्स हैं उनको हम पिन पॉइंट हमला करने में ये सक्षम है।
0: भारतीय सेना को अब लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाले रॉकेट्स मिलेंगे, जिससे दुश्मन के ठिकानों जैसे कि आर्टिलरी पोजीशंस, कमांड सेंटर्स और दूसरे अहम टारगेट्स को सुरक्षित दूरी से तबाह किया जा सकेगा।

सूर्यास की सबसे बड़ी ताकत है इसकी मल्टी बैरल क्षमता, जिसमें अलग अलग तकनीक के हथियार एक साथ लगाए जा सकते हैं और दागे भी जा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि निशाना भी सटीक और लॉजिस्टिक का खर्च भी बहुत कम। सूर्यास के अलग अलग पॉड्स को मिशन के हिसाब से बदला जा सकता है। 370 mm कैलिबर की प्रेडेटर हॉक गाइडेड रॉकेट सूर्यास सिस्टम का सबसे घातक हथियार है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। सूर्यास सिस्टम का एक और घातक हथियार है एक्स्ट्रा रॉकेट। 306 mm कैलिबर का ये गाइडेड रॉकेट 150 किलोमीटर तक दुश्मन के बंकरों और कमांड सेंटर्स को तबाह कर सकता है। सूर्यास सिस्टम से 122 mm और 160 mm कैलिबर के बेहद किफायती एक्यूलर रॉकेट्स दागे जा सकते हैं, जो 40 से 100 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। सूर्यास सिस्टम से स्काई स्ट्राइकर लॉयटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन भी दागे जा सकते हैं, जो हवा में रहकर दुश्मन की खोज करते हैं और सटीक हमला करते हैं। सूर्यास रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से दागी जाने वाली प्रेडेटर हॉक रॉकेट्स में GPS INS सेंसर फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये तकनीक प्रेडेटर हॉक रॉकेट को बिना किसी भारी मदद के बेहद खराब मौसम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के बीच भी सटीक निशाना लगाने की क्षमता देती है।

0: देखा जाए तो प्रेडेटर हॉक सूर्य अस्त्र का सबसे खतरनाक रॉकेट है। 300 किलोमीटर तक जाता है, 370 mm है और 140 से 200 किलोग्राम तक का ये एक्सप्लोसिव ले जा सकता है और छत के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर, बंकर्स के ऊपर बहुत इफेक्टिव है। तोड़ के अंदर तक उनको तहस नहस कर सकता है। सेल्फ गाइडेंस है, गाइडेंस बड़ी अच्छी है और पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है, जैसा कि 5 मीटर का बताया जाता है, लेकिन 2 मीटर की हमको इसमें एक्यूरेसी मिली है। और शूट एंड स्कूट का इसका फैसिलिटी है कि फायर करे, उसके बाद जगह बदली कर सकता है।
1: हॉक रॉकेट सुपरसोनिक स्पीड से हमला करने में सक्षम है, जबकि ये 140 किलोग्राम का भारी वॉरहेड लेकर अपने टारगेट से टकराता है तो भारी मात्रा में काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। इस ऊर्जा के कारण बिना विस्फोट हुए भी ये रॉकेट सिर्फ अपनी रफ्तार और वजन के दम पर कंक्रीट की कई फीट मोटी दीवारों को मलबे में तब्दील कर सकता है। सूर्यास्त्र की सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक पारंपरिक क्रूज और एक बैलिस्टिक मिसाइल के 15% खर्चे से भी सस्ता है, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि युद्ध के क्षेत्र में हमें भारी भरकम खर्च उठाने की जरूरत नहीं है। हम मल्टीपल रॉकेट्स दुश्मन पर दाग सकते हैं। आधुनिक युद्ध में आर्टिलरी की भूमिका निर्णायक होती है और सूर्यास्त्र शूट एंड स्कूट क्षमता के साथ दुश्मन के काउंटर अटैक से बचते हुए तेज हमला करने में सक्षम है। इसमें हाई मोबिलिटी व्हीकल भी लगाया गया है, जिससे ये बहुत तेजी से जगह बदल सकता है। सूर्यास्त्र को 6x6 भारी ट्रकों पर माउंट किया गया है। हमला करने के बाद ये सिस्टम फौरन अपना लोकेशन बदलने में सक्षम है, जिससे दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना और निशाना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। जानते हैं कि भारत सरकार ने किस तरह के चेंजेस किए हैं, जिस वजह से 5000 तरह के उपकरण भारत में ही बनाए जा रहे हैं। दरअसल अभी अगर बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट पार्टनरशिप 20-30% है, जिसे बढ़ाकर सरकार 50% तक करना चाह रही है। इसको लेकर विचार हो रहा है। मोदी सरकार ने FDI, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जैसे बड़े सुधार किए हैं। सूर्यास्त्र भारत की आर्टिलरी ताकत में काफी इजाफा करेगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के पास जो पिनाका मौजूद है उसमें और सूर्यास्त्र में क्या अंतर है? तो सबसे पहले दोनों रॉकेट सिस्टम की ताकत और खासियत जान लीजिए। सिस्टम की बात करें तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च है, जो सिर्फ रॉकेट लॉन्चिंग के लिए ही है। सूर्यास्त्र यूनिवर्सल लॉन्चर है, जो रॉकेट और मिसाइल दोनों दाग सकता है। पिनाका में कैलिबर फिक्स है और इसे सिर्फ 214 mm रॉकेट से ही दागा जा सकता है। सूर्यास्त्र मल्टी कैलिबर है, जो 122 mm, 306 mm, 370 mm के वेपन्स दाग सकता है। रेंज की बात की जाए तो पिनाका MK1 40 किलोमीटर और पिनाका एक्सटेंडेड रेंज 75 से 90 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। वहीं सूर्यास्त्र की रेंज 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर है। पॉड रीलोड सिस्टम की बात करें तो पिनाका के रीलोडिंग में करीब 4-5 मिनट का समय लगता है। वहीं सूर्यास्त्र में जो पॉड सिस्टम लगा है उसे रीलोड करने में 10 मिनट का वक्त लगता है।
0: पिनाका और सूर्यास्त्र में फर्क ये है कि पिनाका में एक साथ बहुत सारे रॉकेट फायर होते हैं, 6-6 रॉकेट यानी 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ गिरते हैं एक इलाके में, और वो एक एरिया वेपन के तौर पे, यानी कि 214 mm के रॉकेट हैं, एक ही कैलिबर के होंगे और वो एक जगह जाके पूरे इलाके को सैचुरेट कर देंगे, भस्म कर देंगे। जबकि सूर्य अस्त्र में अलग अलग कैलिबर के रॉकेट फायर हो सकते हैं, 122 mm, 306 mm या 370 mm, 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज होती है। और ये फर्क ये कि पिन पॉइंट अटैक करता ही है।

0: पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट 4,666 आइटम्स की 5 लिस्ट जारी की गई है जिन्हें सिर्फ स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा। नेगेटिव लिस्ट, इसमें 310 उपकरणों जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, तोप के आयात पर 2020 से 27 तक रोक लगाई गई है। डैप 2020 यानी कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में खरीद को प्राथमिकता दी गई यानी कि स्वदेशी डिजाइन और प्रोडक्शन को बढ़ावा। सृजन पोर्टल, इसमें 19,509 पहले आयातित आइटम्स को स्वदेशी बनाने के लिए लिस्ट किया गया। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा, इसमें टाटा, L&T, भारत फोर्स और MSME को बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। FDI में छूट, डिफेंस में 74% तक FDI ऑटोमेटिक रूट से और 100% सरकार की मंजूरी से होगी। अगला है R&D को बढ़ावा, इसमें IDEX और TDF स्कीम्स से स्टार्टअप्स और MSMEs को फंडिंग दी जा रही है। साल 2025 में TDF के लिए 60 करोड़ रुपए और IDEX प्राइम के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए।
1: हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर ना सिर्फ सुरक्षा के मामले में डिफेंस प्रोटेक्शन में होना पड़ेगा, तमाम ऐसी विधाएं हैं उसमें हर एक में आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसका कि प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियर कट कॉल दिया हुआ है। जहां तक डिफेंस का सवाल है, देखिए हिंदुस्तान की सुरक्षा में को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। आप ऐसे समय में दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें जब आपको उस इक्विपमेंट की, उस हथियार की, उस गोला बारूद की, उस एमनिशन की जरूरत है, लिहाजा आपको स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा और हिंदुस्तान देखिए धीरे धीरे इसके तरफ अग्रसर हो रहा है।
0: प्राइवेट कंपनियों को भी सरकार की तरफ से सहूलियतें दी गई हैं। सरकार ने भारत की निजी हथियार निर्माता कंपनियों के लिए ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है कि बड़ी तेजी से ये आगे बढ़ने लगे। इस पूरी बढ़ोतरी में हिस्सेदारी की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2024-25 में कुल रक्षा उत्पादन में DPSU यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान करीब 77% रहा, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 23% रहा। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले बढ़ी है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 21% थी, वो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 23% हो गई।
1: सबसे पहले मैं टच करूंगा पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन, इसके तहत वो सारी चीजें हैं जो कि डिफेंस में जिसकी रिक्वायरमेंट है और जिसको हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सकती है, चाहे वो PSUs हो, DPSUs हो, प्राइवेट सेक्टर हो। अब हम नेगेटिव लिस्ट की बात करते हैं, टाइम टू टाइम ये लिस्ट रिवाइज की जाती है। नेगेटिव लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें कि उन आइटम को बैन किया गया है जिसका हम बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे। ये सारे के सारे आइटम हिंदुस्तान में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लिहाजा ये नेगेटिव लिस्ट में दिन रात इजाफा हो रहा है और इन आइटम को हम अब बाहर से इंपोर्ट करना डिफेंस सेक्टर में बंद करेंगे। सृजन पोर्टल देखिए एक ऐसा पोर्टल है जिसमें तमाम प्राइवेट प्लेयर और पब्लिक सेक्टर की यूनिट इसमें लॉग इन कर सकते हैं, अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं, जिससे कि तमाम आगे आने वाले दिनों में जो हमारे डिफेंस की प्रोक्योरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, किसका टेंडर निकलने वाला है, क्या उसका क्वालिफिकेशन क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों की उसमें लिस्टिंग होती है।
0: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत अपने डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा तवज्जो दे रहा है और इसी के तहत देश में डिफेंस कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में सिर्फ दो ही कॉरिडोर हैं। रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाएगी।
3: Whatever you're in the mood for, tune in has the music to match, from today's hits
4: Somebody save me
3: to timeless favorites
4: and, life is like a song.
3: And new discoveries.
4: So much more than a history. Wake up.
3: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति माइकल बोलोस के साथ राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जैसलमेर पहुंची। इस दौरान दंपति ने विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर फोर्ट को देखा, जिसे सुनार किला के नाम से भी जाना जाता है। इसका भ्रमण किया। सुनहरे पत्थरों से निर्मित इस भव्य किले की वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत ने उनका ध्यान आकर्षित किया। टिफनी ट्रंप को स्टेट ऑफ गेस्ट का दर्जा दिया गया है। उनके ठहरने के लिए शहर के प्रसिद्ध और भव्य होटल सूर्यगढ़ में विशेष इंतजाम किए गए हैं। होटल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियां कड़ी नजर रख रही हैं और इस हाई प्रोफाइल दौरे को देखते हुए जैसलमेर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems, from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम। मौसम खराब होने पर यात्रा पर लगा था अल्प विराम। बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक 7.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई। बर्फबारी के बीच श्री हेमकुंड साहिब में भी आस्था भारी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में लगा भक्तों का तांता। पूजा अर्चना के साथ हर रविवार को होते हैं धार्मिक अनुष्ठान। दान पुण्य के साथ भक्तों के लिए भंडारे का इंतजाम। यूपी की राजधानी लखनऊ में हुई झमाझम बारिश। भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को मिली राहत। आसमानी फुहारों से गिरा पारा। उत्तराखंड के चमोली में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रारन का भव्य आगाज। 28 राज्यों के 933 प्रतिभागी कर रहे शिरकत। भारत चीन सीमा के पास लगा रोमांच का मजमा। राजस्थान में फिर उठा रेतीला तूफान। तेज हवाओं के साथ जैसलमेर के आसमान पर छाया बवंडर। दिन में हुआ अंधेरा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर आसमान में दिखा ब्लू मून का दुर्लभ नजारा। नीला नहीं बल्कि नारंगी नजर आया चांद। टेलीस्कोप से अनोखी खगोलीय घटना का दीदार करते देखे लोग।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का विस्फोटक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो है तो महज 15 साल का, लेकिन क्रिकेट के मैदान में बल्ले से ऐसे ऐसे कीर्तिमान रच रहा है कि बड़े बड़े सूरमाओं की चमक उसके आगे फीकी पड़ती जा रही है।

आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बीते 27 मई को आईपीएल के एक मुकाबले में बल्ले से विस्फोट की नई इबारत लिखने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी है। जी हां, 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की जो विस्फोटक पारी खेली उसकी धमक में क्रिकेट के कई दिग्गजों के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स दफन हो गए। वैभव ने एक पारी में इतने रिकॉर्ड्स बना दिए कि ये खुद अपने आप में रिकॉर्ड हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वाली पारी। दरअसल पिछले 2 साल से वैभव मैदान में टिककर जिस तरह से आतिशबाजी कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले वर्ष